0: एसईओ समिट के लिए किर्गिस्तान पहुंचे पीएम मोदी। उज्बेकिस्तान में पीएम मोदी को मिला सर्वोच्च सम्मान। द्विपक्षीय वार्ता में रिश्तों की नई उड़ान पर जोर। शुद्धिकरण विवाद में राहुल गांधी पर हल्द्वानी में एफआईआर दर्ज। एससीएसटी एक्ट के तहत अनुसूचित जाति के युवक ने करवाया केस। यूपी की लड़ाई भ्रष्टाचार पर गरमाई। योगी के जेपी एनआईसी पर आरोप के जवाब में अखिलेश यादव ने अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का मुद्दा उठाया, कहा इन लोगों ने खाया पैसा। लखनऊ में हिंदूवादी नेता धीरेन्द्र प्रताप की हत्या के मामले में खुलासा। ड्राइवर ने ही दो दोस्तों के साथ मिलकर मारी गोली। जमीन विवाद में मर्डर की आशंका। और नेपाल में खत्म नहीं हो रहा है खतरा। फिर उफान पर त्रिशूली नदी। तेज धार में बहा पुल। तबाही में मौत का आंकड़ा 788 तक पहुंचा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब बात उत्तर प्रदेश में मची सियासत की करते हैं। यूपी की सियासत में भ्रष्टाचार को लेकर जंग तेज हो गए हैं। एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो योगी सरकार पर जेपी एनआईसी से लेकर एक्सप्रेसवेज और राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी है जो पलटवार कर रही है और अखिलेश सरकार के दौर के खर्च और योजनाओं पर सवाल खड़े कर रही है।
1: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार हो रही है और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है सियासत में नए पुराने सवालों की फाइलें खुल रही हैं और आरोपों की धार तेज हो रही है। इस राजनीतिक लड़ाई का ताजा केंद्र बना है लखनऊ का जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र यानी जेपीएनआईसी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जेपीएनआईसी को लेकर संगीन आरोप मढ़ाए।
2: इनके मॉडल हैं, वो मॉडल इनके जेब भरने वाले हैं। जेपीएनआईसी बीजेपी ने जेपी बेच दिया।
1: इसके जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेपीएनआईसी के निर्माण की लागत और खर्च पर सवाल उठा चुके हैं। सीएम योगी का दावा है कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचार के जीवंत स्मारक। भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए जिसने जीवन खपा दिया उन जेपी के नाम पर बने स्मारक को बनने में 200 करोड़ लगने थे लेकिन खर्च कर दिए 864 करोड़। इसके बावजूद काम अधूरा रहा। सीएम योगी ने इन आंकड़ों के आगे अखिलेश यादव के परिवारवाद को भी कटघरे में खड़ा किया।
3: सब कुछ इनके लिए बनेगा, कमाई इनके घर में जाएगी, जिसमें कौन है उसमें अखिलेश यादव हैं, डिंपल यादव हैं, धर्मेंद्र यादव हैं।
1: अखिलेश यादव लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से जुड़े निर्माण कार्यों और सड़क धंसने की घटनाओं को लेकर सरकार पर निशाना साध चुके हैं। उनका आरोप है कि निर्माण में गुणवत्ता के मानकों की अनदेखी हुई और सरकारी बजट के इस्तेमाल पर सवाल खड़े होते हैं। वहीं बीजेपी का तर्क है कि सड़क निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में यूपी ने बड़े पैमाने पर काम किया है और विपक्ष राजनीतिक आरोपों के जरिए विकास के काम को निशाना बना रहा है। भ्रष्टाचार की इस राजनीतिक बहस में राम मंदिर चंदे का मुद्दा भी पहले अखिलेश यादव के निशाने पर रहा है।
2: मंदिर में चोरी करने वाले धर्मद्रोही अधर्मी गिरोह है ये भारतीय जनता पार्टी।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर यूपी में लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, आस्था राजनीति और पारदर्शिता के बीच खींची जा रही एक राजनीतिक रेखा की भी है जिसको लेकर सीएम योगी समाजवादी पार्टी की दुखती रग पर हाथ रख चुके हैं।
3: समाजवादी की पीड़ा भी यही है कि जिन राम भक्तों पर हमने गोली चलाई थी अंततः राम भक्तों का संकल्प पूरा हुआ। जो राम भक्त नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे।
1: अब सवाल यह है कि 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार कितना बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा, क्योंकि यूपी में चुनाव सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। यहाँ सड़क बिजली पानी कानून व्यवस्था रोजगार और विकास के साथ साथ सरकार की नीयत और भरोसे का सवाल भी वोट में बदलता है। इसलिए अखिलेश यादव के लिए चुनौती है कि इन आरोपों को वो एक व्यापक राजनीतिक नैरेटिव में बदल पाते हैं या नहीं। और बीजेपी के सामने चुनौती है कि वो अपने शासन के दौरान उठे सवालों का जवाब सिर्फ विपक्ष पर पलटवार करके देगी या ठोस आंकड़ों और कार्रवाई के जरिए देगी। आज तक देखो।
0: अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता कार्यक्रम को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संबोधित किया और इस दौरान मोहन भागवत ने धर्म मानवता और एकता को लेकर कई बयान दिए, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा चर्चा उनके मुसलमानों पर दिए गए बयान की हो रही है। अब उनके बयान पर सियासत भी जबरदस्त है।
4: अमेरिका के न्यूयॉर्क में मानवता को लेकर कार्यक्रम था। कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत थे। मोहन भागवत ने यूं तो धर्म मानवता और एकता को लेकर कई बयान दिए, लेकिन भारत में रह रहे मुस्लिमों को लेकर उन्होंने जो बयान दिया वो चर्चा का विषय बन गया। पहले वो बयान सुनिए।
5: इफ एनी हिंदू थिंक्स दैट देयर शुड बी नो मुस्लिम इन भारत, ही विल नॉट रिमेन हिंदू। If you want to call yourself Hindu, you must believe that all paths are leading to the same. And every human has a dignity. There is no difference between human beings.
4: मोहन भागवत ने उधर न्यूयॉर्क में बयान दिए और यहाँ हिंदुस्तान में हलचल तेज हो गई। मोहन भागवत के बयान को मुस्लिम धर्म गुरुओं ने हाथों हाथ लिया।
6: हिंदू और मुसलमान मुल्क की दो आंखें हैं और चेहरा उसी वक्त अच्छा लगता है जब चेहरे के ऊपर दोनों आंखें सलामत हो। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमान, हिंदू को जब भी प्रॉब्लम आई मुसलमान खड़ा हुआ, मुसलमान को जब भी प्रॉब्लम आई हिंदू खड़ा हुआ। अजीज रिश्तेदार, भाई, नातेदार बाद में आता है, पड़ोसी पहले खड़ा होता है।
7: भागवत साहब ने जो बयान दिया है वो एक बड़ा बयान है, अहम बयान है, बशर्ते कि ग्राउंड लेवल पर उसको अमली जामा पहनाया जाए।
4: मोहन भागवत के बयान ने भारत की सियासत में भूचाल ला दिया। विपक्ष भागवत के बहाने बीजेपी को घेरने लगी।
8: अपने जो उनके निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, उनके पार्टी के पदाधिकारी उनके आचरण की समीक्षा करके उनको उनके बारे में निर्णय ले ले। मोहन आदरणीय भागवत जी,
9: केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री कौन सी जुबान बोलते हैं? मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के, तीन चार को तो तुरंत आप फौरी तौर पे गिन सकते हैं। ये नहीं कि हिंदुस्तान के सरजमी पे एक बात और अमेरिका की धरती पे सुविधानुसार दूसरी बात, ये विरोधाभास देश को लील लेगा।
4: मोहन भागवत के बयान पर अब सियासत सुलगी हुई है। आज तक ब्यूरो।
0: आरक्षण के मुद्दे पर एनडीए के दो सहयोगी दलों के बीच में विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने ही सहयोगी और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के इस्तीफे की मांग कर दी है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने आरक्षण नीति की समीक्षा की मांग की थी, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच ये बयानबाजी तेज हुई है।
4: सवर्ण छात्रों ने जिस रोज से आरक्षण में बदलाव के लिए आवाज उठाई उसी रोज से आरक्षण को लेकर सियासत जोर पकड़ने लगी। इसी सियासत के जोर में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने आरक्षण की समीक्षा वाला बयान दे दिया और इसी बयान ने एनडीए में बवाल खड़ा कर दिया। चिराग पासवान नाराज हो गए।
10: संविधान के आधार में तो कभी ये नहीं लिखा कि भाई आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया जाएगा। बता दीजिए कहां कहा गया कि आर्थिक आधार पे। तो जब आधार ही आर्थिक नहीं है तो इस पर चर्चा कहाँ से, जब आधार ही सामाजिक और समाज में भी छुआछूत का। मैं बड़े वर्ग के आरक्षण की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाले लोगों को आरक्षण देने की, जिनके बारे में कहा जाता है कि क्रीमी लेयर क्यों नहीं, तो ये छोड़ दें आरक्षण का लाभ लेना, छोड़ दें वो आरक्षण का लाभ लेना, छोड़ दें। जब इसमें सब क्लासिफिकेशन की बात की जाती है तो जो लोग कह रहे हैं, जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, तो आइए फिर बैठ के हम लोग चर्चा कर लें सदन में। मांझी जी को अगर लगता है कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए तो क्या मांझी जी पहले इस्तीफा दे दें, ले आए क्रीमी लेयर का कंसेप्ट ना भाई, फिर उसमें तो आप भी आते हैं ना, आप भी इस्तीफा दे दें।
4: चिराग पासवान सीधे सीधे जीतन राम मांझी का इस्तीफा मांगने लगे तो जीतन राम मांझी का भी पलटवार सामने आया। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान समझ ही नहीं पा रहे हैं कि संतोष सुमन क्या कह रहे हैं। अब मांझी ने भी चिराग का इस्तीफा मांग लिया है।
11: वो नहीं समझ रहे हैं कि संतोष क्या कह रहे हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं कि वैसे वैसे लोग को आरक्षण के लाभ से वंचित हो जाना पड़ेगा, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि लार्जर इंटरेस्ट में और लार्जर लोगों के हित में बंटवारा बहुत जरूरी है। संतोष कुमार ने कहा, कोई नई बात नहीं कहा है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का एक सिद्धांत है जिसके तहत उसने कहा है और उसको लेकर के चल रहा है। इसमें चाहे जो भी होगा हम लोग सब इसके लिए लड़ेंगे करेंगे, और क्योंकि हमारे गरीब लोगों को वो देखना नहीं चाहते हैं इसलिए उनको ही इस्तीफा देना चाहिए।
4: मतलब आरक्षण पर एनडीए के नेताओं ने आपस में ही विवाद कर लिया है। इन बयानों के बीच में संतोष सुमन का बयान दोबारा आया है।
12: मैंने स्पष्ट कहा है कि आरक्षण का जो लाभ मिल रहा है अनुसूचित जाति और जनजाति भाइयों को, चाहे किसी को भी, तो समाज में कुछ ऐसे जातियां हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जहां तक अभी आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचा है। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि उनके लिए हम सबको सोचना चाहिए, हम सबको संवेदना रखनी चाहिए और ऐसी नीति और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उनको भी आरक्षण का लाभ हो सके।
4: अब आरक्षण पर कोहराम मचा हुआ है। एनडीए के भीतर ही नेता एक दूसरे का इस्तीफा मांग रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: अब आज जयपुर की, जहां पर नीट पीजी की परीक्षा के दौरान जमकर हंगामा हुआ है और छात्रों ने आरोप लगाया कि परीक्षा के दौरान बार बार लाइट कटी, कंप्यूटर बंद हुए जिससे उनकी परीक्षा प्रभावित हुई। छात्रों के हंगामे के बाद इस सेंटर पर परीक्षा रद्द कर दी गई है।
4: ये छात्रों का आक्रोश है, ये छात्रों का विरोध प्रदर्शन है, ये शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ छात्रों की नारेबाजी है। तस्वीरें जयपुर के सीतापुर में एक सेंटर की है जहां नीट पीजी की परीक्षा होनी थी। वैसे तो देश भर के 1000 से ज्यादा सेंटर्स पर आज नीट पीजी की परीक्षा हुई, मगर जयपुर के सीतापुर में ये परीक्षा नहीं हो सकी। आरोप है कि बिजली न होने से परीक्षा में देरी हुई। बाद में लगातार पावर कट हुआ तो छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया जिसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। परीक्षा रद्द हुई तो छात्र और उनके परिजनों की आंखों में आंसू आ गए।
13: पाँच साल MBBS की तैयारी करी है, PG की तैयारी में लगा हुआ है, कितना पढ़ना पड़ता है, दोबारा पेपर देगा, इसका ट्रोमा हम नहीं झेल सकते। 3 साल PG की उसमें लगेगा, वहाँ पे भी ट्रोमा है। इनको एडिशनल बेनिफिट मिलना चाहिए। आज पेपर इजी आया था, इन लोगों का अगर एग्जाम होता है तो प्लीज आप इनको एडिशनल बेनिफिट।
14: उसमें न AC है, 3.5 घंटे तक कोई एग्जाम देगा, उसमें कोई भी एग्जाम नहीं दे सकता। मैं पूरे पसीने में हो गया था स्टार्टिंग से।
15: अगर 9:15 के आसपास 36 क्वेश्चंस अगर बट चुके हैं तो ये पेपर लीक है। क्या पता किसी और सेंटर पे कोई इन 36 क्वेश्चन को देख चुका हो। 36 क्वेश्चन जानते हैं आप कितने होते हैं, सेम नंबर पे 1000 रैंक में चेंज आ जाती है। क्लस्टरिंग इतनी गंदी होती है, सेम क्वेश्चन, सेम पेपर पे, सेम क्वेश्चन पे। तो अगर
16: ना लाइट गई ना कुछ गया, सिर्फ कंप्यूटर बंद हो गया ऑटोमेटिक, ऐसे कैसे कंप्यूटर बंद हो जाएगा। और ये सिस्टम में ग्लीच नहीं है, ये पेपर लीक है, नीचे हैकिंग चल रही थी, कोई भाई पैसे देके पास हो चुका है।
4: छात्राओं का गुस्सा फूटा और छात्र परीक्षा को रद्द करने की मांग करने लगे।
17: जयपुर में नीट PG एग्जाम के बीच बिजली गुल हुई और उसके बाद अभ्यर्थी थे जो कि एग्जाम छोड़कर बाहर आ गए और अब परीक्षा सेंटर के बाहर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, जो अभ्यर्थी है वो नीट एग्जाम को रद्द करने की मांग को लेकर ये बीच एग्जाम छोड़कर यहाँ पर आ गए, जिसके बाद यहाँ पर ये एग्जाम सेंटर के बाहर यहाँ पर हंगामा बरपा। ये देखिए अभ्यर्थी बड़ी संख्या में यहाँ पर है, आंकड़ों से इनसे ही बातचीत करते हैं। क्या है पूरा मामला, कब हुई ये बिजली गुल हुई?
18: सर ये जब हम एग्जाम स्टार्ट हुआ था तो स्टार्ट होने से पहले आधे घंटे के लिए बिजली गुल हो गई, इनके सारे सिस्टम बंद हो गए। उसके बाद में डेढ़ घंटे में कम से कम 5 से 7 बार सिस्टम बंद हुआ है और हर बार कम से कम 5-10 क्वेश्चन ओपन हो रहे हैं और बच्चे आपस में एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं, खुलेआम चीटिंग हो रही है।
4: छात्रों के प्रदर्शन के बाद इस सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी गई है। अब ये परीक्षा 5 सितंबर को होगी। विशाल शर्मा, जयपुर, आज तक।
0: पंजाब के संगरूर में भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ किसानों ने बड़ा मोर्चा खोल दिया है। सैकड़ों किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ DC दफ्तर पहुंच गए हैं। दोनों ही मुख्य रास्तों को घेर कर लंबे धरने की तैयारी पूरी कर ली है।
19: यहां
4: भारत यूएस ट्रेड डील के विरोध में फिर से उतर आए हैं पंजाब के किसान। संगरूर में डीसी ऑफिस के बाहर किसानों ने तंबू गाड़ दिया है। किसानों के पास राशन, चारपाई, चूल्हे, पंखे और एसी तक मौजूद है। ट्रॉलियों को ही रहने खाने का ठिकाना बना लिया गया है। किसानों ने धरना स्थल को ही अपना पूरा आशियाना बना लिया है। ट्रॉलियों के भीतर चारपाइयां बिछ चुकी हैं, राशन का पूरा बंदोबस्त है और चूल्हे भी चढ़ा दिए गए हैं। लंबे समय तक डटे रहने के इरादे से जरूरत का हर सामान पहले ही जुटा लिया गया है। वहीं भीषण गर्मी से राहत के लिए ट्रॉलियों में पंखे लगाए गए हैं। इस पूरे इंतजाम से किसानों का इरादा साफ नजर आता है। वे अपनी मांगों पर लंबे समय तक प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं। इस धरने की मुख्य वजह प्रस्तावित भारत अमेरिका ट्रेड डील है, जिससे किसान अपनी आमदनी पर बड़ा खतरा मान रहे हैं। इसके अलावा किसान मजदूरों की पूरी कर्ज माफी, फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी और नई कृषि नीति लागू करने की मांग भी जोर शोर से उठा रहे हैं। यह पूरा मोर्चा भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहक की अगुवाई में खोला गया है। संगठन ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस बात नहीं बनती तब तक ये धरना जारी रहेगा। कमलजीत संधू के साथ कुलवीर सिंह, संगरूर, आज तक।
0: अब बात करेंगे चित्रकूट में आए सैलाबी संकट की, जहां पर मंदाकिनी नदी का बढ़ा हुआ जलस्तर भारी आफत लेकर आया है। नदी किनारे घाट डूब गए हैं, शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है, लोग संकट में घिरे हैं और लोगों की मदद के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भारी बारिश के बीच में पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ है।
19: आसमान देखिए, मौसम कैसा है।
20: ये इधर कुछ दो आदमी लाल जाने के होंगे।
21: पानी में तैरता हुआ शहर देखा है कभी? अब देख लीजिए, जहां सड़कें थी वहां नाव चल रही है। शहर में सैलाब आया है, दुकान मकान सब पानी में डूबे हुए। भारी बारिश के बीच मंदाकिनी नदी उफनाई तो लहरें जद पार कर शहर तक पहुंच गई। चित्रकूट के कई इलाकों से आफत की तस्वीरें सामने आने लगी।
22: चित्रकूट जनपद में मंदाकिनी नदी ने रौद्र रूप धारण कर पिछले 23 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिससे कल मंदाकिनी नदी लगभग 9 मीटर के ऊपर बह रही थी, जिससे रामघाट का जो एरिया था पूरी तरीके से जलमग्न हो गया था। जिन सड़कों पर कभी वाहन चलते थे वहां नाव चलने लगी थी। मंदाकिनी नदी के बाढ़ की स्थिति इतनी भयावह हो गई थी कि मध्य प्रदेश प्रशासन को यहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू करना पड़ा है और SDPRF टीम, जो यूपी प्रशासन था, SDRF टीम और PAC टीम को लगा करके जो लोग अपने घरों में फंसे थे उनको रेस्क्यू करके बचाया गया है।
21: बाढ़ ने चित्रकूट का ऐसा बुरा हाल कर दिया है कि कई इलाकों में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। घर डूबे हुए हैं, लोग फंसे हुए हैं, बारिश के बीच लोग भारी मुसीबत झेल रहे हैं। शहर की एक एक तस्वीर बता रही है कि यहाँ का हाल कितना बुरा है। हालात इतने खराब है कि कहीं आने जाने के लिए सड़कों पर भी नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। प्रशासन कुछ इस तरह से लोगों तक मदद पहुंचा रहा है।
19: अभी आप आसमान देखिए, मौसम कैसा है। ऊपर बोर्ड पे अगर खाना है तो दे दो, जो बचे हैं उनको खाना दे दो, निकालो इनको भाई, आप लोग बचा सकते हो उनको उतारो।
21: दिन ब दिन स्थिति बेहद खराब हो रही है। लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए कई टीमों की तैनाती की गई है।
23: लगभग 10 टीम्स और अभी एक्सपेक्टेड हैं, अब वर्तमान में रास्ते में हैं और अतिशीघ्र ही यहाँ पहुँचने वाली हैं। उसके माध्यम से तत्काल यहाँ पे जो रामघाट है, संबंधित एरियाज हैं जहाँ पे भी जल भराव की स्थिति है, वहाँ पर इन टीम्स को डिप्लॉय किया जा रहा है और इन टीम्स को डिप्लॉय करके जल्दी जो है वो सभी लोग जो भी अपने घरों में हैं उनको रेस्क्यू कर लिया जाए।
21: चित्रकूट में मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ बेहद भयावह हो चुकी है। नदी लगातार खतरे के निशान के ऊपर बह रही है।
24: इस हम खड़े हैं रामघाट पे, जहाँ आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो मंदाकिनी नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण जो मंदाकिनी नदी का बाढ़ का पानी है वह जो रामघाट एरिया है, जो कस्बा है, वहां पर पहुंच गया है। जो बनी दुकानें, यहां पर सैकड़ों दुकानें हैं जो जलमग्न हो चुकी हैं, लोग अपनी जान बचाकर घरों के छतों के ऊपर पहुंच गए हैं। जो मठ मंदिर है पूरी तरीके से डूब गए हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो यह घर है किस तरीके से जो जलमग्न हो गया है। यहाँ पर लोग अपने घरों के छतों पर यहाँ पर बैठे हुए हैं और बाढ़ के पानी के कम होने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ से लगभग आधा दर्जन से लोगों का गाँव का संपर्क टूट गया है।
21: हालात इतने खराब हैं कि लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों की छतों पर बैठे हुए हैं। प्रशासन लोगों को प्रभावित इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश में लगा है। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है।
1: और पानी का जो जलस्तर वो निरंतर घट रहा है, तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप अपना संयम बनाए रखें पूरी प्रकार से। जहाँ पे भी जो लोग भी फंसे हुए हैं वहाँ पर हमारे द्वारा जो है वो फूड पैकेट्स, पानी, पीने के पानी की व्यवस्था सभी को पहुंचाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। लगभग 1000 से ऊपर जो है वो फूड पैकेट, पीने के पानी जो है वो ऑलरेडी हम मल्टीपल राउंड्स में वितरित कर चुके हैं।
21: संकट बड़ा है, सैलाब की मार से शहर सहमा हुआ है। कई लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है। ऐसे में प्रशासन ने रैन बसेरों का भी इंतजाम किया है ताकि लोगों को राहत पहुंचाई जा सके।
1: आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ पर रैन बसेरा नगर पालिका जो यूपी टूरिज्म चौराहे के पास है वहाँ पर रात पे रुकने की, खाने की, चाय इत्यादि सभी प्रकार की व्यवस्थाएं जो है वहाँ पर की गई है। अगर किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता है कि वहाँ पर रुकने की जरूरत है या कहीं पे किसी का रेस्क्यू किया गया है या कहीं पर भी जल भराव की स्थिति है तो आज आप आने वाले समय में जो है वहाँ पे रुक सकते हैं। सभी व्यवस्थाएं की गई है।
21: अब इन तस्वीरों को देखिए, ये नेशनल हाईवे 35 पर झांसी मिर्जापुर मार्ग पर बना पुल था जिसे मंदाकिनी की लहरें अपने साथ बहा ले गई।
24: ऐसे हम खड़े हैं उसी मंदाकिनी रोड के पुल पर जहां आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह मंदाकिनी नदी का मेन पुल है जो NH 35 पे यह पुल बनाया गया है जो शहर को जोड़ता है। उसी रास्ते से प्रयागराज के लिए जाया जाता है। लेकिन कल मंदाकिनी नदी का जल स्तर इतना बढ़ गया था कि पुल के ऊपर से यहाँ पानी बह रहा था, जिसके कारण जो मंदाकिनी नदी के पुल का अप्रोच रोड है वह उसका रोड का लगभग 20 मीटर नीचे धस गया है, जिसकी वजह से ये अप्रोच रोड का जो एक कोना है वह हट गया है। यहाँ पर पुल को बनाने के लिए जो कर्मी है यहाँ पर लगे हुए हैं।
21: चित्रकूट की स्थिति को देखते हुए यूपी और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों का प्रशासन अलर्ट पर है। अधिकारियों की टीमें लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचे और उन तक मदद पहुंचाई। दिन रात लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है क्योंकि यहां अभी बारिश का दौर पूरी तरह थमा नहीं है। अगर मौसम की मार ऐसी ही जारी रही तो स्थिति और खराब हो सकती है। अखिलेश कुमार सोनकर, चित्रकूट आज तक।
0: अब नेपाल में मचे हाहाकार के नेपाल में तबाही के बीच में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन जिन इलाकों में ये तबाही सबसे ज्यादा हुई है वहां पर पहुंचना ही सबसे बड़ी चुनौती है क्योंकि सड़कें टूट चुके हैं, संपर्क के साधन ठप हैं और दुर्गम पहाड़ों तक पहुंचने का एकमात्र सहारा हेलीकॉप्टर है। नुआकोट एयरबेस से लगातार उड़ाने भरी जा रही है कहीं लोगों को निकालने के लिए, कहीं राहत पहुंचाने के लिए। देखिए इन पहाड़ों में जिंदगी बचाने की जंग आखिर कैसे लड़ी जा रही है।
21: नेपाल में आपदाग्रस्त इलाकों की हालत कैसी है इसको ऐसे समझिए कि नुआकोट एयरबेस पर एक हेलीकॉप्टर ठीक से लैंड भी नहीं कर पाता कि दूसरा टेक ऑफ कर जाता है। हर कुछ देर में कोई ना कोई हेलीकॉप्टर आता है, कुछ लोगों को उतारता है और फिर जरूरी सामान लेकर उन दुर्गम पहाड़ों की ओर उड़ जाता है जहां जिंदगी बचाने की जद्दोजहद चल रही है।
2: राहत बचाव कार्य पूरी तेजी से चल रहा है। नेपाल की सेना लगातार हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके उन दुर्गम इलाकों की ओर जा रही है जहां से लोग बचाया जा रहा है।
21: अगर मौसम प्रतिकूल ना हो तो नुआकोट एयरबेस पर हेलीकॉप्टर के इंजन कभी बंद नहीं होते, रेस्क्यू टीमें लगातार उड़ान भर रही हैं। नेपाली सेना के साथ साथ सिविल हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू मिशन में लगा दिए गए हैं।
2: लगातार राहत बचाव कार्य यहां पर काफी तेजी से चल रहे हैं, एक के बाद एक उड़ाने हैं हेलीकॉप्टर, या तो जो सैनिक हैं या फिर जवान रेस्क्यूअर हैं उन्हें एयर ड्रॉप कर रहे हैं या फिर इसके साथ साथ खाना पीना जा रही है।
21: नेपाल के आपदाग्रस्त इलाकों में

0: जो अभी सुरक्षित है लेकिन फंसे हुए हैं, उन तक मदद के लिए पानी और खाना पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।
1: इन लोगों ने अपनी आंखों के सामने मौत को देखा, जिंदगियों को मलबे में सिमटते देखा। कुछ लोग किस्मत वाले भी थे जो किसी तरह से बच गए।
0: आप लोग किस इलाके में थे? कितने दिन से थे आप लोग वहाँ पे? बात नहीं, तो वहाँ पर क्या स्थिति थी? खाना पीना था? कितने दिन से फंसे हुए थे आप लोग? कितने लोग थे आप लोग जो वहाँ पे थे? कितना जना था वहाँ पे? तीन जना थे।
1: रसुआ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया है। वहाँ मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है, इसलिए जो लोग किस्मत से बच भी गए हैं वो संपर्क नहीं कर पा रहे हैं।
0: आप लोग वहीं पे थे?
2: लैंडस्लाइड हुआ है।
0: तो आप लोग मतलब बचे कैसे वहाँ पे? जब आए तो कहाँ गए थे?
2: ऊपर से तड़ा गए,
0: फोन कॉल लग रहा था बात के, खाना
2: पाना लेकिन फोन तो नहीं है।
1: रेस्क्यू करके लाए जा रहे लोगों को बेस कैंप में फर्स्ट एड दी जा रही है। नेपाली सेना ने हेलीकॉप्टर लैंडिंग साइट के पास ही मेडिकल कैंप लगाया है, जहां पीने के पानी के साथ साथ जरूरी दवाएं दी जा रही हैं।
0: इस आपदा में घायल लोगों के इलाज के लिए नेपाली सेना ने यहां पर एक मेडिकल कैंप तैयार किया है। एक चौथा फिर अस्पताल आप समझ लीजिए एयर बेस है, तो जहाँ पर लोगों को इवैक्यूएट करके लाया जा रहा है, उसके बाद यहाँ उनका इलाज किया जाता है। और उसके बाद कई बार जो गंभीर खतरे में है उन्हें तुरंत काठमांडू में लिफ्ट कर लिया जाता है। आप समझिए कि जिस तरह के लोग आई है, जो पानी के बहाव में, मलबे के बहाव में है, किसी का दम टूट रहा था, उन सबको ला सकते हैं। बड़ी चुनौती है, और इसीलिए जितनी एजेंसियां हैं, जितने हाथ हैं, हर कोई मदद के लिए खड़ा है। इधर नेपाल की सेना जो है अपने जीवन जान के लिए मेडिकल कैंप में उनका ख्याल रखा जा रहा है, इलाज पहुंचाया जा रहा है, इलाज किया जा रहा है।
1: आशुतोष मिश्रा, नुआकोट बेस कैंप, नेपाल। आज तक
3: वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

मधुबनी में FIR दर्ज। SC ST एक्ट के तहत अनुसूचित जाति के युवक ने कराया केस, अनुसूचित वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। आज से किर्गिस्तान के बिश्केक में SCO समिट हिस्सा लेने पहुंचे PM मोदी। बैठक के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की आज मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर होगी बातचीत। यूपी की लड़ाई भ्रष्टाचार पर गरमाई, योगी के JPNIC पर आरोप के जवाब में अखिलेश यादव ने अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति को सामने लाया, कहा इन लोगों ने पैसा खाया।

गिरफ्तार, पूछताछ में बताया जमीन विवाद में मर्डर। नेपाल में खत्म नहीं हो रहा खतरा, फिर से उफान पर त्रिशूली नदी तेज धार में बहा पुल, मौत का आंकड़ा 788 तक पहुंचा, जारी रेस्क्यू ऑपरेशन।

0: की इस बयान से दलित समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। एससी वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है और आरोप है कि राहुल गांधी ने हल्द्वानी के रामलीला मैदान में शुद्धिकरण के मामले को जातिगत रंग देते हुए इसे छुआछूत से जोड़ दिया और शिकायतकर्ता ने यह भी कहा है कि इस बयान से दलित समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। 196/299 के तहत FIR दर्ज हुई है धारा। वहीं हल्द्वानी शुद्धिकरण मामले में अब राहुल गांधी पर एक बार फिर से FIR दर्ज हुई है। आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में मची सियासी हरकत की। दरअसल यूपी की सियासत में भ्रष्टाचार को लेकर जंग तेज हो गई है। एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो कि योगी सरकार पर JPNIC से लेकर एक्सप्रेसवे और राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी है जो कि पलटवार करते हुए अखिलेश सरकार के दौर के खर्च और योजनाओं पर सवाल खड़े कर रही है।
1: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार हो रही है और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है सियासत में नए पुराने सवालों की फाइलें खुल रही हैं और आरोपों की धार तेज हो रही है। इस राजनीतिक लड़ाई का ताजा केंद्र बना है लखनऊ का जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र यानी JPNIC। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर JPNIC को लेकर संगीन आरोप मढ़ाए।
2: इनके मॉडल हैं, वो मॉडल इनके जेब भरने वाले हैं। JPNIC बीजेपी ने जेपी बेच दिया।
1: इसके जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ JPNIC के निर्माण की लागत और खर्च पर सवाल उठा चुके हैं। सीएम योगी का दावा है कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचार के जीवंत स्मारक, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए जिसने जीवन खपा दिया उन जेपी के नाम पर बने स्मारक को बनने में 200 करोड़ लगने थे लेकिन खर्च कर दिए 864 करोड़, इसके बावजूद काम अधूरा रहा। सीएम योगी ने इन आंकड़ों के आगे अखिलेश यादव के परिवारवाद को भी कटघरे में खड़ा किया।
3: सब कुछ इनके लिए बनेगा, कमाई इनके घर में जाएगी, जिसमें कौन है उसमें अखिलेश यादव है, डिंपल यादव हैं, धर्मेंद्र यादव हैं।
1: अखिलेश यादव लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से जुड़े निर्माण कार्यों और सड़क धंसने की घटनाओं को लेकर सरकार पर निशाना साध चुके हैं। उनका आरोप है कि निर्माण में गुणवत्ता के मानकों की अनदेखी हुई और सरकारी बजट के इस्तेमाल पर सवाल खड़े होते हैं। वहीं बीजेपी का तर्क है कि सड़क निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में यूपी ने बड़े पैमाने पर काम किया है और विपक्ष राजनीतिक आरोपों के जरिए विकास के काम को निशाना बना रहा है। भ्रष्टाचार की इस राजनीतिक बहस में राम मंदिर चंदे का मुद्दा भी पहले अखिलेश यादव के निशाने पर रहा है।
2: मंदिर में चोरी करने वाले धर्मद्रोही अधर्मी गिरोह है ये भारतीय जनता पार्टी।
1: राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर यूपी में लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, आस्था, राजनीति और पारदर्शिता के बीच खींची जा रही एक राजनीतिक रेखा की भी है जिसको लेकर सीएम योगी समाजवादी पार्टी की दुखती रग पर हाथ रख चुके हैं।
3: समाजवादी की पीड़ा भी यही है कि जिन राम भक्तों पर हमने गोली चलाई थी अंततः राम भक्तों का संकल्प पूरा हुआ, जो राम भक्त नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे।
1: अब सवाल यह है कि 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार कितना बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा, क्योंकि यूपी में चुनाव सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, यहाँ सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था, रोजगार और विकास के साथ साथ सरकार की नीयत और भरोसे का सवाल भी वोट में बदलता है। इसलिए अखिलेश यादव के लिए चुनौती है कि इन आरोपों को वो एक व्यापक राजनीतिक नैरेटिव में बदल पाते हैं या नहीं, और बीजेपी के सामने चुनौती है कि वो अपने शासन के दौरान उठे सवालों का जवाब सिर्फ विपक्ष पर पलटवार करके देगी या ठोस आंकड़ों और कार्रवाई के जरिए देगी। आज तक ब्यूरो।
0: अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता कार्यक्रम को RSS प्रमुख मोहन भागवत ने संबोधित किया और इस दौरान मोहन भागवत ने धर्म, मानवता, एकता को लेकर कई बयान दिए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा भारत में मुसलमानों पर दिए गए उनके बयान की हो रही है। अब उनके बयान पर सियासत भी जबरदस्त हो रही है।
4: अमेरिका के न्यूयॉर्क में मानवता को लेकर कार्यक्रम था। कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत थे। मोहन भागवत ने यूं तो धर्म, मानवता और एकता को लेकर कई बयान दिए, लेकिन भारत में रह रहे मुस्लिमों को लेकर उन्होंने जो बयान दिया वो चर्चा का विषय बन गया। पहले वो बयान सुनिए।
5: इफ एनी हिंदू थिंक्स दैट देयर शुड बी नो मुस्लिम इन भारत, ही विल नॉट रिमेन हिंदू। If you want to call yourself Hindu, you must believe that all paths are leading to the same. And every human has a dignity. There is no difference between human beings.
4: मोहन भागवत ने उधर न्यूयॉर्क में बयान दिए और यहाँ हिंदुस्तान में हलचल तेज हो गई। मोहन भागवत के बयान को मुस्लिम धर्म गुरुओं ने हाथों हाथ लिया।
6: हिंदू और मुसलमान मुल्क की दो आंखें हैं और चेहरा उसी वक्त अच्छा लगता है जब चेहरे के ऊपर दोनों आंखें सलामत हो। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमान, हिंदू को जब भी प्रॉब्लम आई मुसलमान खड़ा हुआ, मुसलमान को जब भी प्रॉब्लम आई हिंदू खड़ा हुआ। अजीज रिश्तेदार, भाई, नातेदार बाद में आता है, पड़ोसी पहले खड़ा होता है।
7: भागवत साहब ने जो बयान दिया है वो एक बड़ा बयान है, अहम बयान है, बशर्ते कि ग्राउंड लेवल पर उसको अमली जामा पहनाया जाए।
4: मोहन भागवत के बयान ने भारत की सियासत में भूचाल ला दिया। विपक्ष भागवत के बहाने बीजेपी को घेरने लगी।
8: अपने जो उनके निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, उनके पार्टी के पदाधिकारी उनके आचरण की समीक्षा करके उनको उनके बारे में निर्णय ले ले। मोहन आदरणीय भागवत जी,
9: केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री कौन सी जुबान बोलते हैं? मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के, तीन चार को तो तुरंत आप फौरी तौर पे गिन सकते हैं। ये नहीं कि हिंदुस्तान के सर जमी पे एक बात और अमेरिका की धरती पे सुविधानुसार दूसरी बात, ये विरोधाभास देश को लील लेगा।
4: मोहन भागवत के बयान पर अब सियासत सुलगी हुई है। आज तक ब्यूरो।
0: आरक्षण के मुद्दे पर एनडीए के दो सहयोगी दलों के बीच विवाद खुलकर सामने आ गया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने ही सहयोगी और केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी के इस्तीफे की मांग कर दी है। जितिन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने आरक्षण नीति की समीक्षा की मांग की थी, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है।
4: सवर्ण छात्रों ने जिस रोज से आरक्षण में बदलाव के लिए आवाज उठाई उसी रोज से आरक्षण को लेकर सियासत जोर पकड़ने लगी। इसी सियासत के जोर में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने आरक्षण की समीक्षा वाला बयान दे दिया और इसी बयान ने एनडीए में बवाल खड़ा कर दिया। चिराग पासवान नाराज हो गए।
10: संविधान के आधार में तो कभी ये नहीं लिखा कि भाई आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया जाएगा। बता दीजिए कहां कहा गया है कि आर्थिक आधार पे। तो जब आधार ही आर्थिक नहीं है तो इस पर चर्चा कहाँ से, जब आधार ही सामाजिक और समाज में भी छुआछूत का। मैं बड़े वर्ग के आरक्षण की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाले लोगों को आरक्षण देने की, जिनके बारे में कहा जाता है कि क्रीमी लेयर क्यों नहीं, तो ये छोड़ दें आरक्षण का लाभ लेना, छोड़ दें वो आरक्षण का लाभ लेना, छोड़ दें। जब इसमें सब क्लासिफिकेशन की बात की जाती है तो जो लोग कह रहे हैं, जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, तो आइए फिर बैठ के हम लोग चर्चा कर लें सदन में। मांझी जी को अगर लगता है कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए तो क्या मांझी जी पहले इस्तीफा दे दें, ले आएं क्रीमी लेयर का कंसेप्ट ना भाई, फिर उसमें तो आप भी आते हैं ना, आप भी इस्तीफा दे दें।
4: चिराग पासवान सीधे सीधे जीतन राम मांझी का इस्तीफा मांगने लगे तो जीतन राम मांझी का भी पलटवार सामने आया। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान समझ ही नहीं पा रहे हैं कि संतोष सुमन क्या कह रहे हैं। अब मांझी ने भी चिराग का इस्तीफा मांग लिया है।
11: वो नहीं समझ रहे हैं कि संतोष क्या कह रहे हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं कि वैसे वैसे लोग को आरक्षण के लाभ से वंचित हो जाना पड़ेगा, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि लार्जर इंटरेस्ट में और लार्जर लोगों के हित में बंटवारा बहुत जरूरी है। संतोष कुमार ने कहा, कोई नई बात नहीं कहा है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का एक सिद्धांत है जिसके तहत उसने कहा है और उसको लेकर के चल रहा है। इसमें चाहे जो भी होगा हम लोग सब इसके लिए लड़ेंगे करेंगे और क्योंकि हमारे गरीब लोगों को वो देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए।
4: मतलब आरक्षण पर एनडीए के नेताओं ने आपस में ही विवाद कर लिया है। इन बयानों के बीच में संतोष सुमन का बयान दोबारा आया है।
12: मैंने स्पष्ट कहा है कि आरक्षण का जो लाभ मिल रहा है अनुसूचित जाति और जनजाति भाइयों को, चाहे किसी को भी, तो समाज में कुछ ऐसे जातियां हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जहां तक अभी आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचा है। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि उनके लिए हम सबको सोचना चाहिए, हम सबको संवेदना रखनी चाहिए और ऐसी नीति और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उनको भी आरक्षण का लाभ हो सके।
4: अब आरक्षण पर कोहराम मचा हुआ है। एनडीए के भीतर ही नेता एक दूसरे का इस्तीफा मांग रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: ये बात कर लेते हैं जयपुर की, जहां पर नीट पीजी की परीक्षा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। छात्रों ने आरोप लगाया है कि परीक्षा के दौरान बार बार लाइट कटी और कंप्यूटर भी बंद हुए, जिससे कि परीक्षा प्रभावित हुई है। छात्रों के हंगामे के बाद इस सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी गई।
4: ये छात्रों का आक्रोश है, ये छात्रों का विरोध प्रदर्शन है, ये शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ छात्रों की नारेबाजी है। तस्वीरें जयपुर के सीतापुर में एक सेंटर की है, जहां नीट पीजी की परीक्षा होनी थी। वैसे तो देश भर के 1000 से ज्यादा सेंटर्स पर आज नीट पीजी की परीक्षा हुई, मगर जयपुर के सीतापुर में ये परीक्षा नहीं हो सकी। आरोप है कि बिजली न होने से परीक्षा में देरी हुई। बाद में लगातार पावर कट हुआ तो छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। परीक्षा रद्द हुई तो छात्र और उनके परिजनों की आंखों में आंसू आ गए।
13: पाँच साल MBBS की तैयारी करी है, पीजी की तैयारी में लगा हुआ है, कितना पढ़ना पड़ता है, इस दोबारा पेपर देगा, इसका ट्रोमा हम नहीं झेल सकते। 3 साल पीजी की उसमें लगेगा, वहाँ पे भी ट्रोमा है। इनको एडिशनल बेनिफिट मिलना चाहिए। आज पेपर इजी आया था, इन लोगों का अगर एग्जाम होता है तो प्लीज आप इनको एडिशनल बेनिफिट।
14: उसमें न AC है, 3.5 घंटे तक कोई एग्जाम देगा, उसमें कोई भी एग्जाम नहीं दे सकता। मैं पूरे पसीने में हो गया था स्टार्टिंग से।
15: अगर 9:15 के आसपास 36 क्वेश्चंस अगर बट चुके हैं तो ये पेपर लीक है। क्या पता किसी और सेंटर पे कोई इन 36 क्वेश्चन को देख चुका हो। 36 क्वेश्चन जानते हैं आप कितने होते हैं, सेम नंबर पे 1000 रैंक में चेंज आ जाती है। क्लस्टरिंग इतनी गंदी होती है, सेम क्वेश्चन, सेम पेपर पे, सेम क्वेश्चन पे। तो अगर
16: ना लाइट गई ना कुछ गया, सिर्फ कंप्यूटर बंद हो गया ऑटोमेटिक, ऐसे कैसे कंप्यूटर बंद हो जाएगा। और ये सिस्टम में ग्लीच नहीं है, ये पेपर लीक है, नीचे हैकिंग चल रही थी, कोई भाई पैसे देके पास हो चुका है।
4: छात्राओं का गुस्सा फूटा और छात्र परीक्षा को रद्द करने की मांग करने लगे।
17: जयपुर में नीट पीजी एग्जाम के बीच बिजली गुल हुई और उसके बाद अभ्यर्थी थे जो कि एग्जाम छोड़कर बाहर आ गए और अब परीक्षा सेंटर के बाहर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, जो अभ्यर्थी है वो नीट एग्जाम को रद्द करने की मांग को लेकर ये बीच एग्जाम छोड़कर यहां पर आ गए, जिसके बाद यहां पर ये एग्जाम सेंटर के बाहर यहां पर हंगामा बरपा। ये देखिए अभ्यर्थी बड़ी संख्या में यहां पर है, आक्रोश से इनसे ही बातचीत करते हैं। क्या है पूरा मामला, कब ये बिजली गुल हुई?
18: सर ये जब हम एग्जाम स्टार्ट हुआ था तो स्टार्ट होने से पहले आधे घंटे के लिए बिजली गुल हो गई, इनके सारे सिस्टम बंद हो गए। उसके बाद में डेढ़ घंटे में कम से कम 5 से 7 बार है सिस्टम बंद हुआ है और हर बार कम से कम 5-10 क्वेश्चन ओपन हो रहे हैं और बच्चे आपस में एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं, खुलेआम चीटिंग हो रही है।
4: छात्रों के प्रदर्शन के बाद इस सेंटर की परीक्षा रद्द कर दी गई है। अब ये परीक्षा 5 सितंबर को होगी। विशाल शर्मा, जयपुर, आज तक।
0: पंजाब के संगरूर में भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ किसानों ने बड़ा मोर्चा खोल दिया। दरअसल सैकड़ों किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ डीसी दफ्तर तक पहुंच गए और दोनों मुख्य रास्तों को घेरकर लंबे धरने की पूरी तैयारी कर ली है।
4: भारत US ट्रेड डील के विरोध में फिर से उतर आए हैं पंजाब के किसान। संगरूर में डीसी ऑफिस के बाहर किसानों ने तंबू गाड़ दिया है। किसानों के पास राशन, चारपाई, चूल्हे, पंखे और एसी तक मौजूद हैं। ट्रॉलियों को ही रहने खाने का ठिकाना बना लिया गया है। किसानों ने धरना स्थल को ही अपना पूरा आशियाना बना लिया है। ट्रॉलियों के भीतर चारपाइयां बिछ चुकी हैं, राशन का पूरा बंदोबस्त है और चूल्हे भी चढ़ा दिए गए हैं। लंबे समय तक डटे रहने के इरादे से जरूरत का हर सामान पहले ही जुटा लिया गया है। वहीं भीषण गर्मी से राहत के लिए ट्रॉलियों में पंखे लगाए गए हैं। इस पूरे इंतजाम से किसानों का इरादा साफ नजर आता है। वे अपनी मांगों पर लंबे समय तक प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं। इस धरने की मुख्य वजह प्रस्तावित भारत अमेरिका ट्रेड डील है, जिससे किसान अपनी आमदनी पर बड़ा खतरा मान रहे हैं। इसके अलावा किसान मजदूरों की पूरी कर्ज माफी, फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी और नई कृषि नीति लागू करने की मांग भी जोर शोर से उठा रहे हैं। यह पूरा मोर्चा भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहक की अगुवाई में खोला गया है। संगठन ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस बात नहीं बनती, तब तक यह धरना जारी रहेगा। कमलजीत संधू के साथ कुलवीर सिंह, संगरूर, आज तक।
0: चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चित्रकूट में आए सैलाबी संकट की बात करते हैं, क्योंकि यहां पर मंदाकिनी नदी का बढ़ा जलस्तर भारी आफत लेकर आया है। नदी किनारे घाट डूब गए, शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है, लोग संकट में घिरे हुए हैं। लोगों की मदद के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऐसे में भारी बारिश के बीच पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ है।
19: आसमान देखिए मौसम कैसा है।
20: ये इधर कुछ दो आदमी लाल जाने के होंगे।
21: पानी में तैरता हुआ शहर देखा है कभी? अब देख लीजिए, जहां सड़कें थी वहां नाव चल रही है। शहर में सैलाब आया है, दुकान मकान सब पानी में डूबे हुए। भारी बारिश के बीच मंदाकिनी नदी उफनाई तो लहरें जद पार कर शहर तक पहुंच गई। चित्रकूट के कई इलाकों से आफत की तस्वीरें सामने आने लगी।
22: चित्रकूट जनपद में मंदाकिनी नदी ने रौद्र रूप धारण कर पिछले 23 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिससे कल मंदाकिनी नदी लगभग 9 मीटर के ऊपर बह रही थी, जिससे रामघाट का जो एरिया था पूरी तरीके से जलमग्न हो गया था। जिन सड़कों पर कभी वाहन चलते थे वहां नाव चलने लगी थी। मंदाकिनी नदी के बाढ़ की स्थिति इतनी भयावह हो गई थी कि मध्य प्रदेश प्रशासन को यहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू करना पड़ा है, और SDTRF टीम जो यूपी प्रशासन था, SDRF टीम और PAC टीम को लगा करके जो लोग अपने घरों में फंसे थे उनको रेस्क्यू करके बचाया गया है।
21: बाढ़ ने चित्रकूट का ऐसा बुरा हाल कर दिया है कि कई इलाकों में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। घर डूबे हुए, लोग फंसे हुए हैं। बारिश के बीच लोग भारी मुसीबत झेल रहे हैं। शहर की एक एक तस्वीर बता रही है कि यहाँ का हाल कितना बुरा है। हालात इतने खराब है कि कहीं आने जाने के लिए सड़कों पर भी नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। प्रशासन कुछ इस तरह से लोगों तक मदद पहुंचा रहा है।
19: अभी आप आसमान देखिए मौसम कैसा है। बोर्ड पे अगर खाना है तो दे दो, जो बचे हैं उनको खाना दे दो, निकालो इनको भाई, आप लोग बचा सकते हो उनको उतारो।
21: दिन ब दिन स्थिति बेहद खराब हो रही है। लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए कई टीमों की तैनाती की गई।
23: लगभग 10 टीम्स और अभी एक्सपेक्टेड हैं, अब वर्तमान में रास्ते में हैं और अतिशीघ्र ही यहाँ पहुँचने वाली हैं। उसके माध्यम से तत्काल यहाँ पे जो रामघाट है, संबंधित एरियाज हैं जहाँ पे भी जल भराव की स्थिति है, वहाँ पर इन टीम्स को डिप्लॉय किया जा रहा है। उन टीम्स को डिप्लॉय करके जल्दी जो है वो सभी लोग जो भी अपने घरों में हैं उनको रेस्क्यू कर लिया जाए।
21: चित्रकूट में मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ बेहद भयावह हो चुकी है। नदी लगातार खतरे के निशान के ऊपर बह रही है।
24: इस हम खड़े हैं रामघाट पे, जहां मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो मंदाकिनी नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण जो मंदाकिनी नदी का बाढ़ का पानी है वह जो रामघाट एरिया है, जो कस्बा है, वहां पर पहुंच गया है। जो बनी दुकानें, यहां पर सैकड़ों दुकानें हैं जो जलमग्न हो चुकी है। लोग अपनी जान बचाकर घरों के छतों के ऊपर पहुंच गए हैं। जो मठ मंदिर है पूरी तरीके से डूब गए हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो यह घर है किस तरीके से जो जलमग्न हो गया है। यहाँ पर लोग अपने घरों के छतों पर यहाँ पर बैठे हुए हैं और बाढ़ के पानी के कम होने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ से लगभग आधा दर्जन से लोगों का गाँव का संपर्क टूट गया है।
21: हालात इतने खराब हैं कि लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों की छतों पर बैठे हुए हैं। प्रशासन लोगों को प्रभावित इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश में लगा है। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है।
1: और पानी का जो जल स्तर वो निरंतर घट रहा है, तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप अपना संयम बनाए रखें। पूरी प्रकार से जहाँ पे भी जो लोग भी फंसे हुए हैं वहाँ पर हमारे द्वारा जो है वो फूड पैकेट्स, पानी, पीने के पानी की व्यवस्था सभी को पहुंचाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। लगभग 1000 से ऊपर जो है वो फूड पैकेट, पीने के पानी जो है वो ऑलरेडी हम मल्टीपल राउंड्स में वितरित कर चुके हैं।
21: संकट बड़ा है, सैलाब की मार से शहर सहमा हुआ है। कई लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है। ऐसे में प्रशासन ने रैन बसेरों का भी इंतजाम किया है ताकि लोगों को राहत पहुँचाई जा सके।
1: आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ पर रैन बसेरा नगर पालिका जो यूपी टूरिज्म चौराहे के पास है वहाँ पर रात पे रुकने की, खाने की, चाय इत्यादि सभी प्रकार की व्यवस्थाएं जो है वहाँ पर की गई है। अगर किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता है कि वहाँ पर रुकने की जरूरत है या कहीं पे किसी का रेस्क्यू किया गया है या कहीं पर भी जलभराव की स्थिति है तो आज आप आने वाले समय में जो है वहाँ पे रुक सकते हैं। सभी व्यवस्थाएं की गई है।
21: अब इन तस्वीरों को देखिए। ये नेशनल हाईवे 35 पर झांसी मिर्जापुर मार्ग पर बना पुल था जिसे मंदाकिनी की लहरें अपने साथ बहा ले गई।
24: ऐसे हम खड़े हैं उसी मंदाकिनी रोड के पुल पर जहां इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह मंदाकिनी नदी का मेन पुल है जो NH 35 पे यह पुल बनाया गया है जो शहर को जोड़ता है। उसी रास्ते से प्रयागराज के लिए जाया जाता है, लेकिन कल मंदाकिनी नदी का जल स्तर इतना बढ़ गया था कि पुल के ऊपर से यहाँ पानी बह रहा था, जिसके कारण जो मंदाकिनी नदी के पुल का अप्रोच रोड है वह उसका रोड का लगभग 20 मीटर नीचे धस गया है, जिसकी वजह से ये अप्रोच रोड का जो एक कोना है वह हट गया है। यहाँ पर पुल को बनाने के लिए जो कर्मी है यहाँ पर लगे हुए हैं।
21: चित्रकूट की स्थिति को देखते हुए यूपी और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों का प्रशासन अलर्ट पर है। अधिकारियों की टीमें लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचे और उन तक मदद पहुंचाई। दिन रात लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है क्योंकि यहां अभी बारिश का दौर पूरी तरह थमा नहीं है। अगर मौसम की मार ऐसी ही जारी रही तो स्थिति और खराब हो सकती है। अखिलेश कुमार सोनकर, चित्रकूट आज तक।
0: नेपाल में मचे हाहाकार की नेपाल में तबाही के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन जिन इलाकों में यह तबाही सबसे ज्यादा हुई वहां पहुंचना ही सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। सड़कें टूट चुकी हैं, संपर्क के साधन ठप है और दुर्गम पहाड़ों तक पहुंचने का एकमात्र सहारा अब हेलीकॉप्टर है। नुआकोट एयरबेस से लगातार उड़ानें भरी जा रही हैं, कहीं पर लोगों को निकालने के लिए तो कहीं राहत पहुंचाने के लिए। देखिए रिपोर्ट।
21: नेपाल में आपदा ग्रस्त इलाकों की हालत कैसी है इसको ऐसे समझिए कि नुआकोट एयरबेस पर एक हेलीकॉप्टर ठीक से लैंड भी नहीं कर पाता कि दूसरा टेक ऑफ कर जाता है। हर कुछ देर में कोई ना कोई हेलीकॉप्टर आता है, कुछ लोगों को उतारता है और फिर जरूरी सामान लेकर उन दुर्गम पहाड़ों की ओर उड़ जाता है जहां जिंदगी बचाने की जद्दोजहद चल रही है।
2: राहत बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। नेपाल की सेना लगातार हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके उन दुर्गम इलाकों की ओर जा रही है जहां से लोग बचाया जा रहा है।
21: अगर मौसम प्रतिकूल ना हो तो नुआकोट एयरबेस पर हेलीकॉप्टर के इंजन कभी बंद नहीं होते, रेस्क्यू टीमें लगातार उड़ान भर रही हैं। नेपाली सेना के साथ साथ सिविल हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू मिशन में लगा दिए गए हैं।
2: लगातार राहत बचाव कार्य यहां पर काफी तेजी से चल रहे हैं। एक के बाद एक उड़ाने हैं, हेलीकॉप्टर या तो सैनिक हैं या फिर जवान रेस्क्यूअर हैं उन्हें एयर ड्रॉप कर रहे हैं या फिर इसके साथ साथ खाना पीना जो है प्रभावित इलाकों में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।
21: नेपाल के आपदाग्रस्त इलाकों में जाने का एकमात्र तरीका ये हेलीकॉप्टर ही है क्योंकि रसुआ समेत कई इलाके पूरी तरह से सड़क मार्ग से कट गए हैं।
2: नुआकोट के हेलीपैड पर जो एयर ऑपरेशन है उसे बढ़ा दी गई है। जहाजों की संख्या, हेलीकॉप्टर की संख्या अब 20 है और वो लगातार यहाँ पर उतर रहा है। और इसी के साथ साथ यहाँ जो राहत बचाव सामग्री है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अभी सुरक्षित है लेकिन फंसे हुए हैं, उन तक मदद के लिए पानी और खाना पहुँचाने की कोशिश की जा रही है।
21: इन लोगों ने अपनी आंखों के सामने मौत को देखा, जिंदगियों को मलबे में सिमटते देखा। कुछ लोग किस्मत वाले भी थे जो किसी तरह से बच गए।
2: आप लोग किस इलाके में थे? कितने दिन से थे आप लोग वहाँ पे? बात नहीं, तो वहाँ पर क्या स्थिति थी? खाना पीना था? कितने दिन से फंसे हुए थे आप लोग? कितने लोग थे आप लोग जो वहाँ पे थे? कितना जना था वहाँ पे? तीन जना थे।
21: रसुआ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया है। वहाँ मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है, इसलिए जो लोग किस्मत से बच भी गए हैं वो संपर्क नहीं कर पा रहे हैं।
3: बाहर जीना है।
2: आप लोग वहीं पे से पानी?
3: हाँ, लैंडस्लाइड हुआ है।
2: तो आप लोग मतलब बचे कैसे वहाँ पे? जब आए तो कहाँ गए थे?
3: ऊपर से चढ़ा के
2: फोन कॉल लग रहा था, बात खाना पीना,
3: खाना पाना तो ठीक है लेकिन फोन तो नहीं है।
21: रेस्क्यू करके लाए जा रहे लोगों को बेस कैंप में फर्स्ट एड दी जा रही है। नेपाली सेना ने हेलीकॉप्टर लैंडिंग साइट के पास ही मेडिकल कैंप लगाया है, जहां पीने के पानी के साथ साथ जरूरी दवाएं दी जा रही हैं।
2: इस आपदा में घायल लोगों के इलाज के लिए नेपाली आई है, जो पानी के बहाव में, के मलबे के बहाव में है, किसी का दम टूट रहा था, उन सबको ला सकते। बड़ी चुनौती है और इसीलिए जितनी एजेंसियां हैं, जितने हाथ हैं, हर कोई मदद के लिए खड़ा है। इधर नेपाली सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया। मेडिकल कैंप में
21: आशुतोष मिश्रा, नुआकोट बेस कैंप, नेपाल। आज तक
0: यह वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
6: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर, हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

हल्द्वानी के शुद्धिकरण विवाद में अब राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने से मामला और गर्मा गया है। इसी खबर के साथ करेंगे शुरुआत। दरअसल दलित समाज से जुड़े अमित कुमार की शिकायत पर हल्द्वानी कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि राहुल गांधी ने हल्द्वानी के रामलीला मैदान में हुए शुद्धिकरण के मामले को जातिगत रंग देते हुए इसे छुआछूत से जोड़ दिया। शिकायतकर्ता का

0: रत्न के नुकसान करने पर सर में दर्द होने लगता है? कौन सा रत्न नुकसान करने पे मोटापा बढ़ा देता है? और किस रत्न के नुकसान करने पर प्रेम और रिश्तों में दिक्कत आ जाती है? क्या आपको किसी रत्न से नुकसान हो रहा है? कैसे जाने, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
1: '47 में हमारा देश आजाद हुआ, पहले प्रधानमंत्री हमारे नेहरू जी बने। उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे पहले प्रधानमंत्री बनते तो भारत की क्या दिशा और दशा होती?
2: ये जो तुमने सवाल क्वेश्चन किया, ये संसद में होता तो बड़ा मजा आता। तरीकी एक पार्टी बोलती कि कश्मीर हमारा होता, अफगानिस्तान तक हम कब्जा कर लेते, पब्लिक बाहर सुन के ताली वाली ही बजाती।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

हल्द्वानी में FIR दर्ज। SC/ST एक्ट के तहत अनुसूचित जाति के युवक ने कराया केस, अनुसूचित वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। आज से किर्गिस्तान के बिश्केक में SCO समेत हिस्सा लेने पहुंचे PM।

मोदी। बैठक के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की आज मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर होगी बातचीत। यूपी की लड़ाई भ्रष्टाचार पर गरमाई, योगी के जेपीएनआईसी पर आरोप के जवाब में अखिलेश यादव ने अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति को सामने लाया, कहा इन लोगों ने पैसा खाया।

और पूछताछ में बताया जमीन विवाद में मर्डर। नेपाल में खत्म नहीं हो रहा खतरा, फिर से उफान पर त्रिशूली नदी तेज धार में बहा पुल, मौत का आंकड़ा 788 तक पहुंचा, जारी रेस्क्यू ऑपरेशन।

0: साथ पूजा शुरुआत करते हैं यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर से रफ्तार के कहर के साथ। दरअसल नोएडा से मथुरा की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक से बेकाबू हो गया और डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में जा पहुंचा। इसके बाद सामने से आ रहे कई वाहनों को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। पूरे हादसे में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। ट्रक की जोरदार टक्कर के बाद ये पूरा हादसा हुआ। नोएडा से मथुरा जा रहा था ये ट्रक। यमुना एक्सप्रेसवे पर ये हादसा हुआ है। डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में अचानक से पहुंचा जिसके बाद 4 लोगों की मौत हो गई है।
1: लेनो कार जिसमें 4 व्यक्ति सवार थे जो कि मथुरा से नोएडा की तरफ जा रहे थे और एक ट्रेलर जो कि नोएडा से आगरा की तरफ जा रहा था। किलोमीटर 36 पर ट्रेलर जो है वो अपने दाहिने तरफ की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए यमुना एक्सप्रेसवे पे नोएडा जाने वाले रास्ते पे आने के फलस्वरूप बलेनो और ट्रेलर में एक्सीडेंट हो जाता है। इसमें 4 सवार जो थे बलेनो गाड़ी में ये एक्सीडेंट के फलस्वरूप घायल होने के कारण अचेत अवस्था में पाए गए। इनको तत्काल गाड़ी से निकाला गया और तत्काल इनको अस्पताल पहुंचाया गया जहां अस्पताल पहुंचने पर थोड़ी देर के बाद डॉक्टर द्वारा इन सभी को मृत घोषित कर दिया गया है।
0: चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में मची सियासत की। दरअसल यूपी की सियासत में भ्रष्टाचार को लेकर जंग तेज हो गई है। एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो कि योगी सरकार पर JPNIC से लेकर एक्सप्रेसवे और राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी है जो पलटवार करते हुए अखिलेश सरकार के दौर के खर्च और योजनाओं पर सवाल खड़े कर रही है।
2: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार हो रही है और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है सियासत में नए पुराने सवालों की फाइलें खुल रही हैं और आरोपों की धार तेज हो रही है। इस राजनीतिक लड़ाई का ताजा केंद्र बना है लखनऊ का जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र यानी JPNIC। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर JPNIC को लेकर संगीन आरोप मढ़ाए।
3: इनके मॉडल हैं, वो मॉडल इनके जेब भरने वाले हैं। JPNIC बीजेपी ने जेपी बेच दिया।
2: इसके जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ JPNIC के निर्माण की लागत और खर्च पर सवाल उठा चुके हैं। सीएम योगी का दावा है कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचार के जीवंत स्मारक, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए जिसने जीवन खपा दिया उन जेपी के नाम पर बने स्मारक को बनने में 200 करोड़ लगने थे लेकिन खर्च कर दिए 864 करोड़, इसके बावजूद काम अधूरा रहा। सीएम योगी ने इन आंकड़ों के आगे अखिलेश यादव के परिवारवाद को भी कटघरे में खड़ा किया।
4: सब कुछ इनके लिए बनेगा, कमाई इनके घर में जाएगी, जिसमें कौन है उसमें अखिलेश यादव हैं, डिंपल यादव हैं, धर्मेंद्र यादव हैं।
2: अखिलेश यादव लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से जुड़े निर्माण कार्यों और सड़क धंसने की घटनाओं को लेकर सरकार पर निशाना साध चुके हैं। उनका आरोप है कि निर्माण में गुणवत्ता के मानकों की अनदेखी हुई और सरकारी बजट के इस्तेमाल पर सवाल खड़े होते हैं। वहीं बीजेपी का तर्क है कि सड़क निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में यूपी ने बड़े पैमाने पर काम किया है और विपक्ष राजनीतिक आरोपों के जरिए विकास के काम को निशाना बना रहा है। भ्रष्टाचार की इस राजनीतिक बहस में राम मंदिर चंदे का मुद्दा भी पहले अखिलेश यादव के निशाने पर रहा है।
3: मंदिर में चोरी करने वाले धर्मद्रोही अधर्मी गिरोह है ये भारतीय जनता पार्टी।
2: राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर यूपी में लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, आस्था, राजनीति और पारदर्शिता के बीच खींची जा रही एक राजनीतिक रेखा की भी है जिसको लेकर सीएम योगी समाजवादी पार्टी की दुखती रग पर हाथ रख चुके हैं।
4: समाजवादी की पीड़ा भी यही है कि जिन राम भक्तों पर हमने गोली चलाई थी अंततः राम भक्तों का संकल्प पूरा हुआ, जो राम भक्त नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे।
2: अब सवाल यह है कि 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार कितना बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा, क्योंकि यूपी में चुनाव सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। यहाँ सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था, रोजगार और विकास के साथ साथ सरकार की नीयत और भरोसे का सवाल भी वोट में बदलता है। इसलिए अखिलेश यादव के लिए चुनौती है कि इन आरोपों को वो एक व्यापक राजनीतिक नैरेटिव में बदल पाते हैं या नहीं, और बीजेपी के सामने चुनौती है कि वो अपने शासन के दौरान उठे सवालों का जवाब सिर्फ विपक्ष पर पलटवार करके देगी या ठोस आंकड़ों और कार्रवाई के जरिए देगी। आज तक ब्यूरो।
0: अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता कार्यक्रम को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संबोधित किया और इस दौरान मोहन भागवत ने धर्म, मानवता, एकता को लेकर कई बयान दिए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा भारत में मुसलमानों पर दिए गए उनके बयान की हो रही है। अब उनके बयान पर सियासत भी जबरदस्त हो रही है।
5: अमेरिका के न्यूयॉर्क में मानवता को लेकर कार्यक्रम था। कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत थे। मोहन भागवत ने यूं तो धर्म, मानवता और एकता को लेकर कई बयान दिए, लेकिन भारत में रह रहे मुस्लिमों को लेकर उन्होंने जो बयान दिया वो चर्चा का विषय बन गया। पहले वो बयान सुनिए।
6: इफ एनी हिंदू थिंक्स दैट देयर शुड बी नो मुस्लिम इन भारत, ही विल नॉट रिमेन हिंदू। If you want to call yourself Hindu, you must believe that all paths are leading to the same. And every human has a dignity. There is no difference between human beings.
5: मोहन भागवत ने उधर न्यूयॉर्क में बयान दिए और यहाँ हिंदुस्तान में हलचल तेज हो गई। मोहन भागवत के बयान को मुस्लिम धर्म गुरुओं ने हाथों हाथ लिया।
7: हिंदू और मुसलमान मुल्क की दो आंखें हैं और चेहरा उसी वक्त अच्छा लगता है जब चेहरे के ऊपर दोनों आंखें सलामत हो। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमान, हिंदू को जब भी प्रॉब्लम आई मुसलमान खड़ा हुआ, मुसलमान को जब भी प्रॉब्लम आई हिंदू खड़ा हुआ, अजीज रिश्तेदार, भाई, नातेदार बाद में आता है, पड़ोसी पहले खड़ा होता है।
8: भागवत साहब ने जो बयान दिया है वो एक बड़ा बयान है, अहम बयान है, बशर्ते कि ग्राउंड लेवल पर उसको अमली जामा पहनाया जाए।
5: मोहन भागवत के बयान ने भारत की सियासत में भूचाल ला दिया। विपक्ष भागवत के बहाने बीजेपी को घेरने लगी।
9: अपने जो उनके निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, उनके पार्टी के पदाधिकारी उनके आचरण की समीक्षा करके उनको उनके बारे में निर्णय ले ले। मोहन आदरणीय भागवत जी,
10: केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री कौन सी जुबान बोलते हैं? मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के, तीन चार को तो तुरंत आप फौरी तौर पे गिन सकते हैं। ये नहीं कि हिंदुस्तान के सरजमी पे एक बात और अमेरिका की धरती पे सुविधानुसार दूसरी बात, ये विरोधाभास देश को लील लेगा।
5: मोहन भागवत के बयान पर अब सियासत सुलगी हुई है। आज तक ब्यूरो।
0: आरक्षण के मुद्दे पर एनडीए के दो सहयोगी दलों के बीच विवाद खुलकर सामने आ गया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपने ही सहयोगी और केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी के इस्तीफे की मांग कर दी है। जितिन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने आरक्षण नीति की समीक्षा की मांग की थी, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है।
5: सवर्ण छात्रों ने जिस रोष से आरक्षण में बदलाव के लिए आवाज उठाई,

0: उसी रोज से आरक्षण को लेकर सियासत जोर पकड़ने लगी। इसी सियासत के जोर में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने आरक्षण की समीक्षा वाला बयान दे दिया और इसी बयान ने एनडीए में बवाल खड़ा कर दिया। चिराग पासवान नाराज हो गए।
1: संविधान के आधार में तो कभी ये नहीं लिखा कि भाई आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया जाएगा। बता दीजिए कहाँ कहा गया कि आर्थिक आधार पे। तो जब आधार ही आर्थिक नहीं है तो इस पर चर्चा कहाँ से, जब आधार ही सामाजिक और समाज में भी छुआछूत का। मैं बड़े वर्ग के आरक्षण की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाले लोगों को आरक्षण देने की, जिनके बारे में कहा जाता है कि क्रीमी लेयर क्यों नहीं, तो ये छोड़ दें आरक्षण का लाभ लेना, छोड़ दें वो आरक्षण का लाभ लेना, छोड़ दें। जब इसमें सब क्लासिफिकेशन की बात की जाती है तो जो लोग कह रहे हैं, जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, तो आइए फिर बैठ के हम लोग चर्चा कर लें सदन में। माझी जी को अगर लगता है कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए तो क्या माझी जी पहले इस्तीफा दे दें, ले आए क्रीमी लेयर का कंसेप्ट ना भाई, फिर उसमें तो आप भी आते हैं ना, आप भी इस्तीफा दे दें।
0: चिराग पासवान सीधे सीधे जीतन राम मांझी का इस्तीफा मांगने लगे तो जीतन राम मांझी का भी पलटवार सामने आया। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान समझ ही नहीं पा रहे हैं कि संतोष सुमन क्या कह रहे हैं। अब मांझी ने भी चिराग का इस्तीफा मांग लिया है।
2: वो नहीं समझ रहे हैं कि संतोष क्या कह रहे हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं कि वैसे वैसे लोग को आरक्षण के लाभ से वंचित हो जाना पड़ेगा, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि लार्जर इंटरेस्ट में और लार्जर लोगों के हित में बंटवारा बहुत जरूरी है। संतोष कुमार ने कहा, कोई नई बात नहीं कहा है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का एक सिद्धांत है जिसके तहत उसने कहा है और उसको लेकर के चल रहा है। इसमें चाहे जो भी होगा हम लोग सब इसके लिए लड़ेंगे करेंगे, और क्योंकि हमारे गरीब लोगों को देखना नहीं चाहते हैं इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए।
0: मतलब आरक्षण पर एनडीए के नेताओं ने आपस में ही विवाद कर लिया है। इन बयानों के बीच में संतोष सुमन का बयान दोबारा आया है।
3: मैंने स्पष्ट कहा है कि आरक्षण का जो लाभ मिल रहा है अनुसूचित जाति और जनजाति भाइयों को, चाहे किसी को भी, तो समाज में कुछ ऐसे जातियां हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जहाँ तक अभी आरक्षण का लाभ नहीं पहुँचा है। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि उनके लिए हम सबको सोचना चाहिए, हम सबको संवेदना रखनी चाहिए और ऐसी नीति और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उनको भी आरक्षण का लाभ हो सके।
0: अब आरक्षण पर कोहराम मचा हुआ है। एनडीए के भीतर ही नेता एक दूसरे का इस्तीफा मांग रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
4: पंजाब के संगरूर में भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ किसानों ने बड़ा मोर्चा खोल दिया। दरअसल सैकड़ों किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ डीसी दफ्तर तक पहुंच गए और दोनों मुख्य रास्तों को घेरकर लंबे धरने की पूरी तैयारी कर ली है।
0: भारत यूएस ट्रेड डील के विरोध में फिर से उतर आए हैं पंजाब के किसान। संगरूर में डीसी ऑफिस के बाहर किसानों ने तंबू गाड़ दिया है। किसानों के पास राशन, चारपाई, चूल्हे, पंखे और एसी तक मौजूद हैं। ट्रॉलियों को ही रहने खाने का ठिकाना बना लिया गया है। किसानों ने धरना स्थल को ही अपना पूरा आशियाना बना लिया है। ट्रॉलियों के भीतर चारपाइयां बिछ चुकी हैं, राशन का पूरा बंदोबस्त है और चूल्हे भी चढ़ा दिए गए हैं। लंबे समय तक डटे रहने के इरादे से जरूरत का हर सामान पहले ही जुटा लिया गया है। वहीं भीषण गर्मी से राहत के लिए ट्रॉलियों में पंखे लगाए गए हैं। इस पूरे इंतजाम से किसानों का इरादा साफ नजर आता है। वे अपनी मांगों पर लंबे समय तक प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं। इस धरने की मुख्य वजह प्रस्तावित भारत अमेरिका ट्रेड डील है, जिससे किसान अपनी आमदनी पर बड़ा खतरा मान रहे हैं। इसके अलावा किसान मजदूरों की पूरी कर्ज माफी, फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी और नई कृषि नीति लागू करने की मांग भी जोर शोर से उठा रहे हैं। यह पूरा मोर्चा भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा की अगुवाई में खोला गया है। संगठन ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस बात नहीं बनती तब तक ये धरना जारी रहेगा। कमलजीत संधू के साथ कुलवीर सिंह, संगरूर, आज तक।
4: इस वक्त की एक बड़ी खबर, हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड में दो शूटर्स का एनकाउंटर हो चुका है। सुबह सवेरे एनकाउंटर हुआ, यूपीएसटीएफ ने अंकित बालियान हत्याकांड में शामिल दोनों शूटर प्लस को मार गिराया है। सुमित और मोहित को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक बड़ी कामयाबी यूपी पुलिस को हाथ लगी है। मुठभेड़ में अंकित बालियान की हत्या में शामिल दो संदिग्ध बदमाशों को मार गिराया गया। सुमित और मोहित नाम से इनकी पहचान हुई है। दो शूटर्स ये थे जिनको ढेर कर दिया गया है। यूपी पुलिस ने एनकाउंटर किया है सुबह सवेरे, और अंकित बालियान जो एक सिंगर है उनके हत्याकांड में शामिल दोनों शूटर्स को ढेर कर दिया गया है। हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान, हत्याकांड के दो शूटर्स सुमित नाम से एक की पहचान हुई है और दूसरा मोहित जिसको यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। मारे गए दोनों संदिग्ध की पहचान हो चुकी है। सुमित और मोहित नाम उनका बताया जा रहा है और दोनों ही अंकित बालियान की हत्या मामले में संदिग्ध थे जिनको सुबह सवेरे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। तो एक बड़ी कामयाबी यूपी पुलिस को हाथ लगी है। सुमित और मोहित नाम के दो शूटर्स को ढेर कर दिया है एनकाउंटर में, और अंकित बालियान हत्याकांड से जुड़े ये दो संदिग्ध थे जिनका एनकाउंटर हो चुका है। बात नेपाल में मचे हाहाकार की। नेपाल में तबाही के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन जिन इलाकों में ये तबाही सबसे ज्यादा हुई वहां पहुंचना ही सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। सड़कें टूट चुकी हैं, संपर्क के साधन ठप है और दुर्गम पहाड़ों तक पहुंचने का एकमात्र सहारा अब हेलीकॉप्टर है। नुआकोट एयरबेस से लगातार उड़ाने भरी जा रही है, कहीं पर लोगों को निकालने के लिए तो कहीं राहत पहुंचाने के लिए। देखिए रिपोर्ट।
5: नेपाल में आपदा ग्रस्त इलाकों की हालत कैसी है, इसको ऐसे समझिए कि नुआकोट एयरबेस पर एक हेलीकॉप्टर ठीक से लैंड भी नहीं कर पाता कि दूसरा टेक ऑफ कर जाता है। हर कुछ देर में कोई ना कोई हेलीकॉप्टर आता है, कुछ लोगों को उतारता है और फिर जरूरी सामान लेकर उन दुर्गम पहाड़ों की ओर उड़ जाता है जहां जिंदगी बचाने की जद्दोजहद चल रही है।
6: राहत बचाव कार्य पूरी तेजी से चल रहा है। नेपाल की सेना लगातार हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके उन दुर्गम इलाकों की ओर जा रही है जहां से लोगों को बचाया जा रहा है।
5: अगर मौसम प्रतिकूल ना हो तो नुआकोट एयरबेस पर हेलीकॉप्टर के इंजन कभी बंद नहीं होते। रेस्क्यू टीमें लगातार उड़ान भर रही हैं। नेपाली सेना के साथ साथ सिविल हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू मिशन में लगा दिए गए हैं।
6: लगातार राहत बचाव कार्य यहां पर काफी तेजी से चल रहे हैं। एक के बाद एक उड़ाने हैं, हेलीकॉप्टर या तो जो सैनिक हैं या फिर जवान रेस्क्यूअर हैं उन्हें एयर ड्रॉप कर रहे हैं या फिर उसके साथ साथ थोड़ा सा खाना पीना प्रभावित इलाकों में कोशिश की जा रही है।
5: नेपाल के आपदाग्रस्त इलाकों में जाने का एकमात्र तरीका ये हेलीकॉप्टर ही है, क्योंकि रसुआ समेत कई इलाके पूरी तरह से सड़क मार्ग से कट गए हैं।
6: नुआकोट के हेलीपैड पर जो एयर ऑपरेशन है उसे बढ़ा दी गई है। जहाजों की संख्या, हेलीकॉप्टर की संख्या अब 20 है और वो लगातार यहाँ पर उतर रहे हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ जो राहत बचाव सामग्री है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अभी सुरक्षित है लेकिन फंसे हुए हैं, उन तक मदद के लिए पानी और खाना पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।
5: इन लोगों ने अपनी आंखों के सामने मौत को देखा, जिंदगियों को मलबे में सिमटते देखा। कुछ लोग किस्मत वाले भी थे जो किसी तरह से बच गए।
6: आप लोग किस इलाके में थे? कितने दिन से थे आप लोग वहाँ पे? बात नहीं, तो वहाँ पर क्या स्थिति थी? खाना पीना था? कितने दिन से छुटे हुए थे आप लोग? कितने लोग थे आप लोग जो वहाँ पे थे?
5: रसुआ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया है। वहाँ मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है, इसलिए जो लोग किस्मत से बच भी गए हैं वो संपर्क नहीं कर पा रहे हैं।
6: आप लोग वहीं पे थे?
7: लैंडस्लाइड हुआ है।
6: तो आप लोग मतलब बचे कैसे वहाँ पे? जब आए तो फंस गए थे?
7: ऊपर से चढ़ा के
5: रेस्क्यू करके लाए जा रहे लोगों को बेस कैंप में फर्स्ट एड दी जा रही है। नेपाली सेना ने हेलीकॉप्टर लैंडिंग साइट के पास ही मेडिकल कैंप लगाया है जहां पीने के पानी के साथ साथ जरूरी दवाएं दी जा रही हैं।
6: इस आपदा में घायल लोगों के इलाज के लिए नेपाली सेना ने यहाँ पर एक मेडिकल कैंप तैयार किया है। एक चौथा फिर अस्पताल आप समझ लीजिए एयर बेस है, तो जहाँ पर लोगों को इवैक्यूएट करके लाया जा रहा है, उसके बाद जहाँ उनका इलाज किया जाता है और उसके बाद कई बार जो गंभीर खतरे में है उन्हें तुरंत काठमांडू में लिफ्ट कर लिया जाता है। आप समझिए कि जिस तरह के लोग आई है जो पानी के बहाव में।

0: का दम घुट रहा था, हम सब बुला सकते हैं। बड़ी चुनौती है और इसीलिए जितनी एजेंसियां हैं, जितने हाथ हैं, हर कोई मदद के लिए खड़ा है। करने वाले से पंजाब के लिए मेडिकल कैंप में उनका ख्याल रखा जा रहा है, इलाज पहुंचाया जा रहा है, इलाज किया जा रहा है।
1: आशुतोष मिश्रा, नुआकोट बेस कैंप, नेपाल, आज तक।
2: रूस ने इस महीने यूक्रेन की राजधानी कीव को इतने जख्म दिए हैं कि उन्हें भरने में कई साल लग जाएंगे। पिछले 3 दिन से रूस लगातार मिसाइल और ड्रोन से बम बरसा रहा है, जिसमें कि कई लोगों की जान भी चली गई है। रिहायशी इलाकों में कई इमारतों में इन हमलों के बाद आग लग गई, जिसे कि बुझाने में बचाव दल को काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस को सबक सिखाने की चेतावनी भी दी।
3: कीव में रूसी हमले ने मचाया कोहराम। एयर स्ट्राइक में 37 लोगों की गई जान। आग की लपटों में घिरे दफ्तर दुकान। कीव एक बार फिर दहल रहा है। कीव एक बार फिर रूसी हमलों का शिकार बना है। यूक्रेन की राजधानी की ये तस्वीरें तबाही की सारी कहानी बयां कर रही हैं। रूसी बमबारी ने कीव और आसपास के कई इलाकों पर इतने बम बरसाए हैं कि 37 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। लगातार तीसरी रात भर रूस के ड्रोन बम बरसाते रहे, एक के बाद एक धमाके होते रहे। रिहायशी इलाकों की कई इमारतों में आग लग गई और लोग फंस गए। सारी रात बचाव अभियान चलाया गया और आग बुझाने की कोशिश की जाती रही। धू धू कर जलता ये वेयर हाउस तो पूरी तरह से तबाह हो गया है। धमाके के साथ ही इसमें आग लग गई और काले धुएं का गुब्बार कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड को कई घंटे लग गए। रूसी हमलों ने कीव रीजन में ही नहीं, ओडेसा में भी भारी तबाही मचाई है, जहां एक शख्स की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए।
4: Станом на цей час відомо, що 37 людей загинули. Голова громади загинув, допомагаючи з рятувальною операцією. Мої співчуття усім рідним та близьким. Завали ще розбирають, кількість загиблих, на жаль, може збільшитись. Десятки людей постраждали, серед них місцеві та рятувальники. Прем'єр-міністр, міністр внутрішніх справ були на місці. Всі необхідні сили залучені, щоб ліквідувати наслідки удару і пожежі, і щоб допомогти людям.
3: रूसी मिसाइलें और ड्रोन लगातार अलग अलग शहरों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन एंटी मिसाइल सिस्टम न होने से यूक्रेन इन्हें रोकने में नाकाम हो रहा है। आज तक ब्यूरो।
2: यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

रत्न के नुकसान करने पर सर में दर्द होने लगता है। कौन सा रत्न नुकसान करने पे मोटापा बढ़ा देता है और किस रत्न के नुकसान करने पर प्रेम और रिश्तों में दिक्कत आ जाती है? क्या आपको किसी रत्न से नुकसान हो रहा है? कैसे जाने, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

हल्द्वानी में FIR दर्ज। SC ST एक्ट के तहत अनुसूचित जाति के युवक ने कराया केस, अनुसूचित वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। आज से किर्गिस्तान के बिश्केक में SCO समेत हिस्सा लेने पहुंचे PM मोदी। बैठक के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की आज मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर होगी बातचीत। यूपी की लड़ाई भ्रष्टाचार पर गरमाई, योगी के JPNIC पर आरोप के जवाब में अखिलेश यादव ने अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति को सामने लाया, कहा इन लोगों ने पैसा खाया।

ताया जमीन विवाद नु मर्डर नेपाल में खत्म नहीं हो रहा खतरा, फिर से उफान पर त्रिशूली नदी तेज धार में बहा पुल, मौत का आंकड़ा 788 तक पहुंचा, जारी रेस्क्यू ऑपरेशन।

देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन की तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए हम रत्न धारण करते हैं। रत्न को पहनने से बहुत लाभ भी होते हैं और कभी कभी नुकसान भी होता है। आपने रत्न पहना है वो आपको नुकसान तो नहीं कर रहा है, कैसे जानेंगे इस बात को, आज इस पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 31 अगस्त 2026 दिन सोमवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, प्रातः 8:50

तक नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो दर्पण में चेहरा देखकर, जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपने कोई रत्न धारण किया और कहीं वो रत्न आपको नुकसान तो नहीं कर रहा है, इस बात को कैसे जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि रत्न किस तरह हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में रंग का और तरंग का सर्वाधिक महत्व है और रत्न भी इन्हीं रंगों और तरंगों के माध्यम से आपके ऊपर प्रभाव डालते हैं। आपके शरीर में जो ग्रह विद्यमान हैं वो आकाश के ग्रहों से जुड़े होते हैं और जब आकाश के ग्रहों का संबंध शरीर के ग्रहों से टूट जाता है या कमजोर होता है तब जीवन में समस्या शुरू होती है। रत्न का प्रयोग करके आप आकाश के ग्रहों से शरीर के ग्रहों का संबंध बेहतर बना लेते हैं और इसी आधार पर रत्न आपको फायदा पहुंचाते हैं। वो एक तरह से आकाश की तरंगों को खींच करके आपके शरीर की तरंगों तक पहुंचा देते हैं, लेकिन अगर रत्न नुकसान करे तो समस्या भी होती है। बहुत बार शौकिया बिना जाने हुए हम कोई भी रत्न पहन लेते हैं और उस वजह से जीवन में समस्या शुरू हो जाती है। सबसे पहले रत्न मन पर असर डालते हैं, इसके बाद आपके शरीर पर असर डालते हैं। ऐसा देखा गया है कि रत्नों का लाभ थोड़ी देर में होता है, लेकिन रत्नों का नुकसान तुरंत हो जाता है। और आप कोई रत्न पहनते हैं, अगर वो नुकसान करने वाला है तो नुकसान आपको तुरंत महसूस होगा, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो। अलग अलग रत्नों के बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विवादों से बचाव करें, चोट चपेट से बचाव करें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि,
काम की रुकावट दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अतिथि का आगमन होगा। शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मिथुन राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक मामलों में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। सबसे पहले सूर्य के रत्न की बात करते हैं जिसका नाम है माणिक्य, अंग्रेजी में कहते हैं रूबी। क्या विशेषता है इसकी? सूर्य से संबंधित अगर जीवन में समस्या है तो उस समस्या के निवारण के लिए माणिक्य पहना जाता है। कन्या लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न वालों को कभी माणिक्य नहीं पहनना चाहिए। इनके लिए माणिक्य पहनना बहुत नकारात्मक है। आपने माणिक्य पहना और अगर ये नुकसान करेगा तो सर में भारीपन आ जाएगा, सर दर्द होगा और हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो अगर माणिक्य पहनने के साथ सर दर्द, हड्डियों के दर्द की शिकायत लगातार बनी रह रही है तो माणिक्य निकाल दीजिएगा। दूसरा रत्न है चंद्रमा का रत्न जिसको कहते हैं मोती, पर्ल। क्या विशेषता है? मन और शीतजन्य समस्या, मानसिक समस्या, कोल्ड कफ की समस्या के निवारण में मोती पहनने से अद्भुत फायदा होता है, अद्भुत लाभ होता है। लेकिन वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या लग्न और मकर लग्न में मोती भयंकर परिणाम दे सकता है, इनको मोती पहनने से बचना चाहिए। मोती आपने पहना और मोती अगर नुकसान करे तो मानसिक स्थितियां बिगड़ने लगती हैं, बेवजह की चिंता और बेवजह का तनाव बढ़ने लगता है। अगला रत्न है मूंगा, इंग्लिश में कहते हैं कोरल। मंगल का रत्न है मूंगा। देखिए ज्योतिष में लाल रंग के और नारंगी रंग के मूंगे का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। मिथुन लग्न, कन्या लग्न और तुला लग्न वालों को मूंगा छूना भी खतरनाक है, इनको मूंगे से भयंकर नुकसान हो सकता है, खास तौर से मिथुन लग्न और कन्या लग्न वालों को। जो लोग स्वभावतः क्रोधी हों, जल्दी जल्दी इरिटेट होते हों, उनको लाल मूंगा नहीं पहनना चाहिए। अगर मूंगा आपको पहनने के बाद नुकसान करेगा तो आपको चोट चपेट लगेगी, दुर्घटना होगी और रक्त की समस्या आपको परेशान कर सकती है। बाकी रत्नों की भी आगे बात करेंगे लेकिन बता दें
कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, इसमें कौन सा उपाय करना चाहिए। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पारिवारिक समस्याएं हो सकती हैं, धन के खर्चों पर ध्यान दें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ के योग हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न राज सिंह जी ने हमें लिखा है, नई दिल्ली से लिखते हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 23 दिसंबर 1994, 8:35 प्रातः दिल्ली। ये कह रहे हैं कुछ अजीब सी स्थितियों में मेरे पुत्र की पहली शादी टूट चुकी है, उनका दूसरा विवाह कब होगा और भविष्य कैसा रहेगा। देखिए, आपके पुत्र की कुंडली बनती है धनु लग्न की और सिंह राशि की, महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा मंगल की चल रही है। आपके पुत्र की कुंडली में अगले साल 2027 में जनवरी से अक्टूबर में इनके दूसरे विवाह होने का योग बनता है और दूसरा विवाह इनका कुल मिला जुला के बेहतर दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में करियर, पैसा और विवाह को लेकर बहुत दिक्कत की स्थिति नहीं बनती है। आप ऐसा करिए, इनको एक पीला पुखराज पहना दीजिए, 6 से 8 रत्ती का पीला पुखराज, सोने या पीतल में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे एक पुखराज पहनाइए और इनसे बोलिए कि रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करेंगे तो इनके लिए बेहतर होगा। अब बात करते हैं बुध के रत्न की, जिसका नाम है पन्ना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एमरल्ड। पन्ना एक ऐसा रत्न है जो दिमाग को और मन को मजबूत करता है, बुद्धि को शार्प करता है, बुद्धि को प्रखर करता है। लेकिन मेष, कर्क और वृश्चिक लग्न में पन्ना पहनना नकारात्मक है,
मेष लग्न, कर्क लग्न और वृश्चिक लग्न में पन्ना पहनने के परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। पन्ना आपने पहना और अगर ये नुकसान कर रहा है तो आपको त्वचा में दिक्कतें दिखाई देंगी, त्वचा में समस्या होगी। अगर ऐसा है तो इसको उतार दीजिए। पन्ना नुकसान करने लगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, व्यक्ति सही गलत का निर्णय नहीं कर पाता है और त्वचा की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। अब बात करते हैं बृहस्पति के रत्न की, जिसका नाम है पीला पुखराज, येलो सैफायर। क्या विशेषता है? ये जो पीला पुखराज है ये आध्यात्मिक शक्ति, वाणी, धर्म और ज्ञान में वृद्धि करता है। आध्यात्मिक उन्नति में, ज्ञान के मामले में पीला पुखराज पहनने से बहुत लाभ होता है। वृष, तुला, मकर और कुंभ लग्न में इसको धारण नहीं करना चाहिए। इन लग्नों में पुखराज पहनना नुकसान करेगा। जिन लोगों को पेट की, खास तौर से लिवर की समस्या हो, उन लोगों को पुखराज नहीं पहनना चाहिए। जिन लोगों का मोटापा बहुत जल्दी घटता या बढ़ता है, मोटापे की प्रवृत्ति वाले लोगों को भी पुखराज धारण करने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी टेंडेंसी मोटापे की है और आप पुखराज पहनेंगे तो आपका मोटापा बढ़ेगा। बाकी रत्नों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की रुकावट दूर होगी, किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, काम में सफलता मिलेगी, विवादों से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, काम की अधिकता रहेगी, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात करते हैं हीरे की, डायमंड की। शुक्र का रत्न है ये,
इसकी विशेषताएं क्या हैं? हीरा प्रेम सौंदर्य चमक और संपन्नता का रत्न है, लेकिन अगर हीरा आपने पहना और आपको जरा भी नुकसान करे तो ये वैवाहिक जीवन में उथल पुथल ला सकता है, वैवाहिक जीवन टूटने की नौबत आ सकती है। वृषभ लग्न, मिथुन लग्न, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न में हीरा पहनना शुभ होता है। मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक और मीन लग्न में हीरा पहनना खतरनाक होता है। जिन लोगों का मन चंचल रहता है या जिनके मन में काम चिंतन ज्यादा रहता है, ऐसे लोगों को हीरा धारण करने से बचना चाहिए। और अगर जरूरत ज्यादा है तो हीरे की जगह सफेद अमेरिकन डायमंड पहन सकते हैं। हीरा भी तुरंत नुकसान करता है, अगर ये नुकसान करे तो वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ जाती हैं, प्रेम के रिश्ते टूट सकते हैं, रिश्तों में दिक्कत आनी शुरू हो सकती है। अब बात करते हैं शनि के रत्न की, जिसका नाम है नीलम, ब्लू सैफायर। इस रत्न को सामान्यतः बिना जांच पड़ताल किए हुए नहीं पहनना चाहिए। रत्नों में सबसे ज्यादा खतरनाक प्रभाव नीलम का होता है। नीलम अगर जरा भी नुकसान करे तो व्यक्ति को जीवन का संकट भी आ सकता है। नीलम अगर आपको पहनना है तो कुंडली का गंभीर अध्ययन करने के बाद नीलम पहनने की सलाह दी जा सकती है। सिंह लग्न वालों को किसी भी स्थिति में नीलम नहीं पहनना चाहिए, और आपकी कुंडली में जब तक शनि बहुत फेवरेबल ना हो तब तक नीलम ट्राई करने की, नीलम पहनने की कोशिश ना करें। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर में सफलता के योग हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला।

रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण काम निपटाने का प्रयास करें। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मीन राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में शुभ कार्य होंगे। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। रत्न धारण करने के पहले उसको गंगा जल से या कच्चे दूध से धोकर शुद्ध किया जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, जब आप रत्न खरीदते हैं उसके पहले वो कई हाथों से गुजरता है, बनाते समय भी कई हाथों के प्रभाव से गुजरता है, इसीलिए रत्न के अंदर अलग अलग लोगों की तरंगे आ सकती हैं। तो रत्न बिल्कुल शुद्ध हो, उसके अंदर कोई भी निगेटिव या पॉजिटिव तरंग ना हो, रत्न बिल्कुल शुद्धता से काम करे, इसके लिए उसको पहनने के पहले गंगा जल से या कच्चे दूध से शुद्ध कर लेना आवश्यक है। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, विवादों से बचाव करें। नंबर 2, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 3, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 4, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 5, करियर की बाधाएं हल होंगी। नंबर 6, विवाह के योग बन रहे हैं। नंबर 7, धन लाभ के योग हैं। नंबर 8, करियर में सफलता मिलेगी। और नंबर 9, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा।

10:30 से लगभग 12 बजे तक इस समय में जितना संभव हो शिव जी के मंत्र का, नमः शिवाय का जप करिएगा। ऐसा करने से आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति में सुधार होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइए, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, चीनी खाके घर से जाइए, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो हल्की सुगंध लगा लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज या चिकित्सा के लिए जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो सफेद रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा।

होगा मीन राशि वालों के लिए, करियर के मामले में, धन के मामले में, जीवन के मामले में सफलता मिलेगी। आज का दिन मंगलमय होगा मिथुन राशि वालों के लिए, चिंताएं समाप्त होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज सावधान रहना होगा धनु राशि के लोगों को, आपकी सेहत बिगड़ सकती है, तनाव बढ़ सकता है। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज तृतीया तिथि है, आज शिव जी को जल अवश्य अर्पित करिएगा और आज शाम को थोड़ा समय निकाल कर शिव मंदिर में एक घी का दीपक जलाइएगा, आपके लिए शुभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: हल्द्वानी के रामलीला मैदान में हुए शुद्धिकरण मामले में अब नया मोड़। श्रीराम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ दी गई तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया। राहुल गांधी पर अनुसूचित वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। शुद्धिकरण विवाद पर कांग्रेस का मौन सत्याग्रह, बारिश में भी डटे नेता कार्यकर्ता। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अमेरिका में विविधता को लेकर दिए गए बयान पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने साधा निशाना। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने तंज कसते हुए कहा कि भागवत का भाषण सुनकर वो सोचने लगे कि ये राहुल गांधी बोल रहे हैं या आरएसएस प्रमुख। ओवैसी ने भागवत के हिंदू मुस्लिम एकता वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा, संगठन की कुछ बातें दुनिया के लिए कुछ, आरएसएस सदस्यों के लिए कुछ और होती हैं। मोहन भागवत के हिंदू मुस्लिम वाले बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, विदेश में एकता की बातें और यहां देश ही को ही बातें। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर तंज कसते हुए सुप्रिया सुले ने कहा कि जो लोग विदेश जाते हैं वो लोकतंत्र और सबके अधिकारों की बात करते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसे देश में जमीनी स्तर पर लागू किया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता उदित राज ने भागवत के बयान पर हमला बोलते हुए कहा, राजनीति में सबसे ज्यादा स्वार्थ आरएसएस का ही है जो बीजेपी का इस्तेमाल अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए करती है। एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक पहुंचे पीएम मोदी। वहां पर कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स के चेयरमैन और राष्ट्रपति प्रशासन के प्रमुख ने गर्मजोशी के साथ किया स्वागत। पीएम मोदी के स्वागत में कलाकारों ने पेश किया पारंपरिक नृत्य। बिश्केक की अपनी दो दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री एससीओ सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे और 1 सितंबर को एससीओ के 26वें शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। इस दौरे में एससीओ के मंच पर आतंकवाद, क्षेत्रीय सुरक्षा और कनेक्टिविटी के मुद्दे अहम रहेंगे। वहीं पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात पर भी सबकी नजरें टिकी। पीएम मोदी 6वें वर्ल्ड नोमैड गेम्स के उद्घाटन समारोह में भी हिस्सा लेंगे। ये आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक खेलों को प्रदर्शित करता है। नेपाल में मरने वालों का बढ़ा आंकड़ा, अब तक 788 मौत। वहीं इस त्रासदी में लापता लोगों की संख्या 2500 के पार। भारत की 19 सदस्यीय फॉरेंसिक टीम ने नेपाल बाढ़ पीड़ितों की डीएनए पहचान के लिए काठमांडू में काम शुरू किया। भारत की खास टनल रेस्क्यू टीम का चिली में और लांगटांग में क्षतिग्रस्त हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साइट पर नेपाली सेना के साथ मिलकर संयुक्त अभियान जारी। नेपाल ने अज्ञात शवों को सामूहिक रूप से दफनाना शुरू किया। त्रिशूली सुरंग में लापता 42 लोगों तक पहुंचने के लिए सेना ने प्रयास तेज किए। नेपाल में लापता हुए मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व जज को लेकर दिल्ली तमिल एडवोकेट्स एसोसिएशन ने सीजेआई सूर्यकांत को पत्र लिखा, सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए दखल देने की अपील। आज मायावती की लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस, यूपी चुनाव को लेकर बीएसपी बनाएगी रणनीति। आज लखनऊ में बीजेपी का सेवा संकल्प अभियान वर्कशॉप, आगामी बड़े राष्ट्रव्यापी अभियान के लिए राज्य स्तर पर योजना बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एआईएमआईएम ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले पर निशाना साधा। एआईएमआईएम नेता शादाब चौहान ने कहा कि अगर अखिलेश मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो उन्हें असदुद्दीन ओवैसी का साथ लेना होगा। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद पर भी साधा निशाना। पार्टी नेता शादाब चौहान ने यहां तक कहा है कि जब तक अखिलेश यादव के पीडीएफ में ए फॉर असदुद्दीन ओवैसी नहीं होता तब तक वो सत्ता का सपना भी नहीं देख सकते। लखनऊ में हिंदूवादी नेता धीरेन्द्र प्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या, नहर में मिला शव, ड्राइवर ही निकला कातिल, दो गिरफ्तार। ड्राइवर पर ही विरोधियों से मिलकर जमीन की रंजिश में हत्या करने का शव, उन्नाव में एक जमीन का विवाद था जिसे लेकर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी ड्राइवर सहित दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। घटना के खुलासे के लिए 6 टीम लगाई गई है। सभी आरोपियों की तलाश के लिए टीम दबिश दे रही है। शुरुआती पूछताछ में दोनों अभियुक्त ने जमीनी विवाद में हत्या की बात कबूली। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच की है और हत्या में इस्तेमाल हथियार, कार समेत अन्य सबूतों को कब्जे में लेकर पड़ताल की जा रही है। हरियाणवी सिंकर अंकित बालियान हत्याकांड में दो शूटर का एनकाउंटर, यूपीएसटीएफ ने हत्याकांड में शामिल होते दोनों शूटर्स को मार गिराया। शामली में हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बालियान की हत्या के मामले में पुलिस ने दो संदिग्ध शूटर्स आर्यन और सत्यम की पहचान की। दोनों को गोगी गैंग से संबंधित बताया। क्यूबा की जोहाना उरांग बनी मिस टीन्स इंटरनेशनल 2026। वहीं जयपुर में जोहाना उरांगा के सिर सजा विजेता का ताज। नामीबिया की चेंटल बोरेन रही फर्स्ट रनर अप। प्रतियोगिता में चेंटल ने हासिल किया दूसरा स्थान। रक्षाबंधन पर यूपी रोडवेज की फ्री बस सेवा में यात्रियों का बना एक नया रिकॉर्ड। रक्षाबंधन के दौरान 3 दिन में करीब 79 लाख यात्रियों ने उठाया निशुल्क बस यात्रा का लाभ। सीएम योगी ने पाते लेकर प्रदेशवासियों को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। बोले, असत्य और अन्याय के अंधकार के बीच सत्य और धर्म का प्रकाश निकला। भारत ने विमेंस टी20 एशिया कप में जीत से शुरुआत की। टीम ने रविवार को थाईलैंड को 94 रन से हराया। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में थाईलैंड 160 रन चेस करते हुए 16.1 ओवर में 65 रन पर ऑल आउट हो गए। प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा ने 36 बॉल पर 64 रन बनाए। भारतीय टीम का दूसरा मैच 5 सितंबर को पाकिस्तान से इसी मैदान पर होगा। जर्मनी चौथी बार हॉकी वर्ल्ड चैंपियन, फाइनल में स्पेन को 1-0 से हराया। पाकिस्तान के सबसे ज्यादा 4 खिताब के रिकॉर्ड की बराबरी। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी में आई भीषण बाढ़ से भारी तबाही मची। रामगढ़ घाट किनारे बने कई घर क्षतिग्रस्त हुए। अभी भी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर जलस्तर। पानी के तेज बहाव में मंदाकिनी नदी पर बना बड़ा पुल नदी के तेज बहाव में बह गया और रामघाट पर लोहिया पुल की रेलिंग टूटी। रामघाट जाने पर लगाई रोक। यूपी के बुंदेलखंड में भीषण बारिश का कहर, कई इलाके जलमग्न। बांदा में नदियां उफान पर। बांदा से चित्रकूट, प्रयागराज, बनारस जाने वाले रास्तों पर पानी भरा। पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। दमन में एक लाइफ गार्ड की सतर्कता और सूझबूझ से 7 साल की लड़की डूबने से बची। खेलने के दौरान लहर की चपेट में आ गई थी। सतना में लगातार भारी बारिश, रेलवे ट्रैक पानी में डूबा। रेलवे कर्मचारियों ने पानी में उतरकर ट्रैक की जांच की और सुरक्षा के साथ ट्रेनों को धीमी गति से रवाना किया। प्रयागराज में बढ़ते गंगा यमुना के जलस्तर का जनजीवन पर असर, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी प्रभावित। गरियाबंद में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर, कई गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। जान जोखिम में डालकर लोग नाला पार करने को मजबूर। लद्दाख के करगिल में बादल फटने के कारण अचानक से बाढ़ जैसी स्थिति। अचानक से बादल फटने के बाद आया सैलाब, मिट्टी संग बहकर आए बड़े बड़े पत्थर। घटना के बाद स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ी। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। प्रशासन की ओर से भी नुकसान का आकलन किया जा रहा है। हरिद्वार में तेज बारिश के बीच गिरी आकाशीय बिजली, हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। कांगड़ा घाटी में जोरदार बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त। सड़कों पर और बस स्टैंड पर पानी भरने के कारण स्थानीय लोगों के साथ साथ तीर्थयात्री भी फंसे। जापान के फुकुई प्रांत में रिकॉर्ड तोड़ मूसलाधार बारिश के कारण कई हिस्सों में गंभीर बाढ़ और जलभराव की स्थिति। प्रांत में कई नदियां उफान पर, तटों पर पानी बहा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में लाखों नागरिकों को सुरक्षा और तुरंत एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए। राहत और बचाव कार्य जारी है तथा लोगों से सुरक्षित स्थानों या इमारतों के ऊपरी मंजिलों पर रहने की अपील की गई। राष्ट्रीय खेल दिवस पर जहानाबाद डीएम का अनोखा अंदाज, खिलाड़ियों के साथ ट्रैक पर लगाई दौड़। परिसीमन के मुद्दे पर रांची में आदिवासी एकता महाजुटान, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग रैली में शामिल हुए। दिल्ली के द्वारका का एक नया इस्कॉन मंदिर पहली बार मनाने जा रहा है जन्माष्टमी। गोकुल धाम थीम पर मंदिर की भव्य सजावट। खरगोन में पुलिस बैंड की सलामी के बीच निकला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिव डोला। हर हर महादेव से गूंजा शहर, उमड़ा जनसैलाब। आईआईटी दिल्ली में इंडिया 2047 समिट का भव्य आयोजन। सामाजिक बदलाव में विशेष योगदान के लिए डॉक्टर रविन्द्रनाथ मुखर्जी को कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने नवाजा। ग्रेटर नोएडा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, ट्रक डिवाइडर तोड़कर कार पर गिरा, 4 की मौत। ट्रक चालक को पुलिस ने हिरासत में लिया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मची और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। गाजियाबाद में मामूली विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदला हिंसक झड़प में 50 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई जबकि कई लोग घायल। गांव में तनाव को देखते हुए एहतियातन पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। सहारनपुर में गोकशी की कोशिश कर रहे बदमाश से पुलिस की मुठभेड़, पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार। आरोपी पर करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज। मैनपुरी में ट्रैफिक सिपाही से मारपीट की घटना के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। आसपास किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर अभियान चलाया। शिवपुरी रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टला। चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान प्लेटफॉर्म ट्रेन के बीच फंसी महिला, आरपीएफ जवान ने खींचकर बचाई उसकी जान। धनबाद में बारिश के बीच भूधसान का कहर, तेज आवाज के साथ बना बड़ा गड्ढा, कई घरों में आई दरारें। लोग जरूरी सामान लेकर सुरक्षित जगह जाने को मजबूर। गया के सोरहर नदी में नहाने के दौरान नदी के तेज पानी के धार में बहा 18 वर्षीय इंटर का छात्र, एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में मुर्गा बनाने की बात पर विवाद, पति ने पत्नी की पीट पीट कर हत्या कर दी, आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में खौफनाक हादसे में बाल बाल बची बुजुर्ग की जान, देवदूत बनकर आसपास के मौजूद दुकानदार ने करंट लगने से बचाया। मुंबई के बांद्रा में एक तेज रफ्तार कार ने 8 वर्षीय बच्चे को कुचला, मौके पर मौत हुई। पुलिस ने महिला ड्राइवर को किया गिरफ्तार। तमिलनाडु के मदुरई में नाबालिग ने की आत्महत्या, स्कूल में एडमिशन के दौरान जातिगत अपमान से हुई थी आहत, प्रिंसिपल पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। नोएडा में पिता ने 5 साल के बेटे को मारा मुक्का, बच्चे ने तोड़ा दम, आरोपी पिता हिरासत में। झारखंड के गढ़वा से अंधविश्वास की खौफनाक वारदात आई सामने, एक महिला को डायन बताकर लोगों ने खौलता पानी फेंका, महिला हुई बुरी तरह से जख्मी, मामले में 6 गिरफ्तार। लखनऊ में वकीलों के चैंबर पर बुलडोजर एक्शन, हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद लखनऊ नगर निगम की टीम ने की कार्रवाई। ऋषिकेश अंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर आगरखाल के पास सीमेंट से भरा एक ट्रक पलटा, हादसे में ट्रक चालक की जान बाल बाल बची। यूपी के झांसी में 4 से 5 दिन पुराना अर्धनग्न हालत में मिला बुजुर्ग दंपति का शव, हत्या की आशंका। दिल्ली के एक प्ले स्कूल में 3 साल के बच्चे के साथ मारपीट, पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ, पुलिस ने मेड को लिया हिरासत में, टीचर की भूमिका की जांच जारी। अमृतसर में श्री हरि मंदिर साहिब के पास होटल में बवाल हुआ, पहचान पत्र मांगने पर भड़के युवक, साथियों संग लौटकर मारपीट। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस का भीषण हमला, एक गोदाम जलकर खाक हुआ, हमले के बाद उठा धुएं का गुबार। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा अमेरिका के साथ बातचीत की तैयारी कर रहा है यूक्रेन, कीव की कई बातों से सहमत है वाशिंगटन। नेपाल में रेस्क्यू के बीच फिर से आई बाढ़, बाढ़ में मरने वालों की संख्या 790 के पार पहुंची, करीब 2500 लोग अब भी लापता। उत्तरी साइप्रस के पास समंदर में बड़ा हादसा, 270 लोगों से भरी यात्री नाव पलटी, 7 लोगों की मौत। स्विट्जरलैंड के उत्तरी शहर में एक रेव पार्टी के दौरान अंधाधुंध गोलीबारी, हमले में एक महिला की मौत, 5 लोग हुए घायल। इस्लामिक यूनिटी वीक के अवसर पर सर्वोच्च नेता मौसवा खामेनेई का संदेश, खामेनेई ने खाड़ी देशों से एकजुटता बनाए रखने की अपील की। पीएम मोदी को मिला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान, राष्ट्रपति शौकत ने पीएम मोदी को दिया सुप्रीम अवार्ड, यूरेनियम समेत कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक पहुंचे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद। आइसलैंड ने खारिज किया यूरोपीय संघ में शामिल होने का प्रस्ताव, 52% से ज्यादा लोगों ने किया विरोध, 47% लोगों ने किया विरोध। नासा का नया और बेहद ही खास रोमन स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष के लिए रवाना हुआ, फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से रॉकेट की हुई लॉन्च।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: बहुत टायर्ड हो गई।
1: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
2: लायन डेट नट बाइट्स।
3: एक तो एक
4: श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: मुल्तानी खू का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी खू का कॉफ सिरप।
2: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
3: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
2: असली शहद, असली स्वाद।

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट एक हिंट तो देते,
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।
3: 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, पहले प्रधानमंत्री हमारे नेहरू जी बने। उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे पहले प्रधानमंत्री बनते तो भारत की क्या दिशा और दशा होती?
4: ये तुमने सवाल क्वेश्चन किया, ये संसद में होता तो बड़ा मजा आता। तरीके एक पार्टी बोलती कि कश्मीर हमारा होता, अफगानिस्तान तक हम कब्जा कर लेते, पब्लिक बाहर सुन के ताली वाली ही बजाती।
5: संविधान के आधार में तो कभी ये नहीं लिखा कि भाई आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया जाएगा। बता दीजिए कहाँ कहा गया कि आर्थिक आधार पे। तो जब आधार ही आर्थिक नहीं है तो इस पर चर्चा कहाँ से, जब आधार ही सामाजिक और समाज में भी छुआछूत का। मैं बड़े वर्ग के आरक्षण की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाले लोगों को आरक्षण देने की, जिनके बारे में कहा जाता है कि क्रीमी लेयर क्यों नहीं, तो ये छोड़ दें आरक्षण का लाभ लेना, छोड़ दें वो आरक्षण का लाभ लेना, छोड़ दें। जब इसमें सब क्लासिफिकेशन की बात की जाती है तो जो लोग कह रहे हैं, जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, तो आइए फिर बैठ के हम लोग चर्चा कर लें सदन में। माझी जी को अगर लगता है कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए तो क्या माझी जी पहले इस्तीफा दे दें, ले आए क्रीमी लेयर का कंसेप्ट ना भाई, फिर उसमें तो आप भी आते हैं ना, आप भी इस्तीफा दे दें, उनके सुपुत्र भी यहाँ पे हैं, फिर वो भी इस्तीफा दे दें।
6: वो नहीं समझ रहे हैं कि संतोष क्या कह रहे हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं कि वैसे वैसे लोग को आरक्षण के लाभ से वंचित हो जाना पड़ेगा, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि लार्जर इंटरेस्ट में और लार्जर लोगों के हित में बंटवारा बहुत जरूरी है। संतोष कुमार ने कहा, कोई नई बात नहीं कहा है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का एक सिद्धांत है जिसके तहत उसने कहा है और उसको लेकर के चल रहा है। इसमें चाहे जो भी होगा हम लोग सब इसके लिए लड़ेंगे करेंगे, और क्योंकि हमारे गरीब लोगों को देखना नहीं चाहते हैं इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए।
7: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: सो सॉरी।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: त्योहारी सीजन आने वाला है और इसके साथ ही हर घर की रसोई का बजट हिलने लगा है। पकवानों की तैयारी के बीच आम आदमी की जेब पर महंगाई का तगड़ा प्रेशर साफ दिखने लगा है। दाल के तड़के से लेकर मीठे तक के बढ़ते दाम लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। प्याज और चीनी की चर्चा के बीच अब अरहर दाल की महंगाई भी जेब पर दबाव बढ़ाने लगी है। आंकड़ों के मुताबिक एक साल के अंदर अरहर दाल के रेट 27% तक बढ़ गए हैं। मार्केट में कम सप्लाई और सीमित स्टॉक की वजह से कीमतों पर दबाव बना हुआ है। चिंता की बात है कि अरहर के साथ ही मसूर दाल भी महंगी होने के संकेत मिल रहे हैं। कनाडा में उत्पादन घटने की आशंका जताई जा रही है, जिसका असर भारत में मसूर दाल की कीमतों पर पड़ सकता है। दाल के साथ साथ सब्जी का स्वाद बढ़ाने वाला प्याज भी लोगों को रुला रहा है। दिल्ली में प्याज की कीमत 55 रुपये प्रति किलो तक पहुँच गई है। हालांकि आम आदमी को इस महंगाई से राहत देने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक प्याज की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने का प्लान तैयार है, जिसके तहत दिल्ली में 35 रुपये किलो के रियायती रेट पर प्याज बेचा जाएगा। इसके लिए 800 टन प्याज लेकर कांदा एक्सप्रेस दिल्ली पहुँच रही है। नाफेड, NCCF और केंद्रीय भंडार के स्टोर के जरिए ये प्याज जनता तक पहुँचाने की तैयारी है। ये मौजूदा एवरेज रिटेल कीमत से करीब 36% सस्ता है। दाल और प्याज की टेंशन के बीच मीठे के शौकीनों के लिए एक अच्छी खबर भी है। चीनी के एक्स मिल रेट में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। फूड सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा के मुताबिक चीनी के दाम नीचे आ गए हैं और आने वाले दिनों में आम जनता को इसका सीधा फायदा मिलेगा। चीनी का एक्स मिल रेट 12 रुपये घटकर 55 रुपये प्रति किलो हो गया है। पिछले हफ्ते के 67 रुपये के रिकॉर्ड हाई रेट से इसमें 18% की कमी आई है। इंपोर्ट को मंजूरी देने और जमाखोरी पर कड़े एक्शन लेने की वजह से ये रेट गिरे हैं। सरकार का कहना है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और कुछ मिलों की ओर से कीमतों में असामान्य बढ़ोतरी देखी गई थी। थोक भाव कम होने का असर जल्द ही रिटेल मार्केट में भी देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर त्योहारों में रसोई का बजट संभालने के लिए एक तरफ सरकार एक्शन मोड में है, तो दूसरी तरफ दाल और प्याज जैसी जरूरी चीजों की महंगाई आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ा रही है। आज तक ब्यूरो,

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: त्योहारी सीजन आने वाला है और इसके साथ ही हर घर की रसोई का बजट हिलने लगा है। पकवानों की तैयारी के बीच आम आदमी की जेब पर महंगाई का तगड़ा प्रेशर साफ दिखने लगा है। दाल के तड़के से लेकर मीठे तक के बढ़ते दाम लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। प्याज और चीनी की चर्चा के बीच अब अरहर दाल की महंगाई भी जेब पर दबाव बढ़ाने लगी है। आंकड़ों के मुताबिक एक साल के अंदर अरहर दाल के रेट 27% तक बढ़ गए हैं। मार्केट में कम सप्लाई और सीमित स्टॉक की वजह से कीमतों पर दबाव बना हुआ है। चिंता की बात है कि अरहर के साथ ही मसूर दाल भी महंगी होने के संकेत मिल रहे हैं। कनाडा में उत्पादन घटने की आशंका जताई जा रही है, जिसका असर भारत में मसूर दाल की कीमतों पर पड़ सकता है। दाल के साथ साथ सब्जी का स्वाद बढ़ाने वाला प्याज भी लोगों को रुला रहा है। दिल्ली में प्याज की कीमत 55 रुपये प्रति किलो तक पहुँच गई है। हालांकि आम आदमी को इस महंगाई से राहत देने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक प्याज की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने का प्लान तैयार है, जिसके तहत दिल्ली में 35 रुपये किलो के रियायती रेट पर प्याज बेचा जाएगा। इसके लिए 800 टन प्याज लेकर कांदा एक्सप्रेस दिल्ली पहुँच रही है। नाफेड, NCCF और केंद्रीय भंडार के स्टोर के जरिए ये प्याज जनता तक पहुँचाने की तैयारी है। ये मौजूदा एवरेज रिटेल कीमत से करीब 36% सस्ता है। दाल और प्याज की टेंशन के बीच मीठे के शौकीनों के लिए एक अच्छी खबर भी है। चीनी के एक्स मिल रेट में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। फूड सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा के मुताबिक चीनी के दाम नीचे आ गए हैं और आने वाले दिनों में आम जनता को इसका सीधा फायदा मिलेगा। चीनी का एक्स मिल रेट 12 रुपये घटकर 55 रुपये प्रति किलो हो गया है। पिछले हफ्ते के 67 रुपये के रिकॉर्ड हाई रेट से इसमें 18% की कमी आई है। इंपोर्ट को मंजूरी देने और जमाखोरी पर कड़े एक्शन लेने की वजह से ये रेट गिरे हैं। सरकार का कहना है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और कुछ मिलों की ओर से कीमतों में असामान्य बढ़ोतरी देखी गई थी। थोक भाव कम होने का असर जल्द ही रिटेल मार्केट में भी देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर त्योहारों में रसोई का बजट संभालने के लिए एक तरफ सरकार एक्शन मोड में है, तो दूसरी तरफ दाल और प्याज जैसी जरूरी चीजों की महंगाई आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ा रही है। आज तक ब्यूरो,

अंकित बालियान हत्याकांड में यूपी पुलिस का एक्शन, शामली में दो शूटर एनकाउंटर में ढेर, सुमित और मोहित नाम के बदमाशों के साथ पुलिस एसटीएफ की मुठभेड़। शुद्धिकरण विवाद में राहुल गांधी पर हल्द्वानी में एफआईआर दर्ज, एससी एसटी एक्ट के तहत अनुसूचित जाति के युवक ने कराया केस, अनुसूचित वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। आज से किर्गिस्तान के बिश्केक में एससीओ समिट हिस्सा लेने पहुंचे पीएम मोदी। बैठक के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की आज मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर होगी बातचीत। यूपी की लड़ाई भ्रष्टाचार पर गरमाई, योगी के जेपीएनआईसी पर आरोप के जवाब में अखिलेश यादव ने अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति पर उठाए सवाल, कहा इन लोगों ने पैसा खाया। नेपाल में खत्म नहीं हो रहा है खतरा, फिर से उफान पर त्रिशूली नदी, तेज धार में बहा पुल, मौत का आंकड़ा 788 तक पहुंचा, जारी रेस्क्यू ऑपरेशन।

0: खबरों की जिस पर पूरे दिन आपकी नजर रहेगी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान केस में यूपीएसटीएफ के बड़े एक्शन की, साथ ही आपको ये बताएंगे कि आखिर लखनऊ में हुई हिंदूवादी नेता की हत्या की जांच में क्या बड़ा खुलासा हुआ है। साथ ही बुलेटिन में सियासी खबरों की भी बात करेंगे। शुद्धिकरण विवाद के बीच उत्तराखंड के हल्द्वानी में राहुल गांधी के खिलाफ SC ST एक्ट में केस दर्ज हुआ है, जिसके बाद इस विवाद ने और भी तूल पकड़ लिया है। इसके साथ आपको बताएंगे कि आखिर संघ प्रमुख मोहन भागवत के हिंदुत्व और मुसलमान पर दिए गए बयान पर कैसे घमासान छिड़ा हुआ है। साथ ही बात पीएम मोदी के विदेश दौरे की भी करेंगे, जो कि आज किर्गिस्तान के बिश्केक में SCO समिट में वो शामिल होंगे। बात पड़ोसी देश नेपाल में भीषण बाढ़ से बची तबाही की भी करेंगे, जिसमें मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही खराब मौसम रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी चुनौती बना हुआ है, डिटेल आपको देंगे। साथ ही उत्तर भारत के कई जिलों में बाढ़ की आफत के बारे में भी आपको बताएंगे। कई जिलों में उफनती नदियों ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर पंजाब के संगरूर में किसानों ने बड़े प्रदर्शन की वजह क्या बताई है। तो सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। अंकित बालियान मर्डर केस के शूटर्स पर बड़े एक्शन की बात है। दरअसल हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बालियान हत्याकांड में यूपीएसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो शूटर्स को एनकाउंटर में मार गिराया है। मारे गए आरोपियों की पहचान सुमित और मोहित के तौर पर हुई है। दोनों पर अंकित बालियान की हत्या में शामिल होने का आरोप था। 26 अगस्त को यूपी के शामली में जिम के बाहर आपको याद होगा अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ही पुलिस और एसटीएफ लगातार हथियारों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस की पड़ताल के मुताबिक अंकित बालियान की हत्या को अंजाम देने के लिए कुल 4 शूटर पहुंचे थे। इनमें से 2 शूटर ढेर हो चुके हैं, बाकी 2 हमलावरों की अभी भी तलाश की जा रही है। पुलिस और एसटीएफ की छापेमारी अभी इस पूरे केस में जारी है। तो अभी 2 शूटर्स की तलाश की जा रही है, 2 का एनकाउंटर सुबह सवेरे हो चुका है। यूपी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिम के बाहर अंकित बालियान की हत्या कर दी गई।
1: दो अपराधी एक बाइक पर निकले, वहां से उनके सामने से रोकने का प्रयास किया इन्होंने, रोकने के बजाय पुलिस पे जानलेवा फायरिंग कर दिए और बाद में वो फायरिंग की गोली जाकर गाड़ी में लगी और बदमाश भागने लगे। वहां पे हमारे सचिव तत्काल वार्डनेस पे पूरे खबर को प्रसारित किए, हमारी पूरी जनपद हाई अलर्ट पर भी, हम भी बाहर निकले, हमारे ASP, हमारे COCT, सीओ कराना, हमारे सारे सवलास फटके बाहर निकले। पुलिस से घिरने के बाद ये लोग अपना पोजीशन ले लिए, पुलिस लोगों ने जानलेवा फायरिंग की। इनकी फायरिंग में हमारे 2 आरक्षी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको हम लोग एडमिट कराए जाके CSC शामली में, और इनको हायर सेंटर रेफर किया गया है। तत्पश्चात पुलिस ने जानलेवा फायरिंग के पश्चात अर्थात फायरिंग के इनके ऊपर 2 बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए, इनको CSC बजाओ, जहां इनकी मौत हो गई।
0: और उत्तर प्रदेश के ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश से बातचीत की हमारे सहयोगी ने इसी केस पर, देखिए।
2: सर नमस्कार, ये अंकित बालियान में एक एनकाउंटर हुआ है, क्या डिटेल है सर?
3: अंकित बालियान की हत्या कुछ शूटर द्वारा शामली कोतवाली क्षेत्र में कर दी गई थी। CCTV फुटेज और आसपास के लोगों से जिन्होंने घटना को देखा था उससे जानकारी हुई कि इन्वॉल्व थे। इसके अलावा बहुत ही जल्द एक सोशल मीडिया पोस्ट आया जिसमें इस कार्य की जिम्मेदारी बोगी गैंग द्वारा दी गई थी जी। ये पोस्ट इस पोस्ट से जो जानकारी मिली वो सिर्फ एक लीक था, पोस्ट के पीछे पोस्ट पूरी तरह से वेरीफाइड नहीं थी, लेकिन अलग अलग लीक्स पर पुलिस ने काम करना शुरू किया। फाइनली ये 2 शूटर्स जो इस घटना में शामिल थे इनको शामली पुलिस ने मार गिराया है। अन्य अपराधियों की तलाश जारी है और गैंग लीडर जिन्होंने शूट आउट को ऑर्डर किया वो उनके भी आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस जारी है।
2: ये गैंग कौन है सर? ये गैंग कौन इन्वॉल्व थे, किस गैंग से थे सब ये सर?
3: ये ब्रॉडली बोगी गैंग कहा जाता है। बोगी गैंग, बोगी की हत्या कोर्ट में दिल्ली रोहिणी कोर्ट में हो गई थी, उसके बाद भी इस गैंग को लोग चला रहे हैं इसी नाम से
2: जी।
3: इसके कुछ बड़े अपराधी अलग अलग जेलों में बंद
2: जी। कितने शूटर्स में इन्वॉल्व होंगे सर, और कोई जानकारी मिली सर?
3: इस प्रकरण में अभी तक जो जानकारी मिली है खास करके CCTV फुटेज से कि 4 लोग डायरेक्टली शूटिंग में इन्वॉल्व थे और ये दो मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गए थे। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जो जिन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया लेके किया इत्यादि, उनके ही पहचान की कोशिश की जा रही।
0: इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, अभी भी दो जो लोग हैं उनकी तलाश की जा रही है और इनकी जिनका एनकाउंटर हुआ है, इस पूरी कार्रवाई को कैसे अंजाम दिया गया, इनकी पहचान कैसे हो पाई थी?
4: देखिए, मैं इस अंकित बालियान शूटआउट में जब सीसीटीवी फुटेज आए, सीसीटीवी फुटेज आने के बाद हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस के साथ जो इंटेलिजेंस शेयरिंग हुई उसमें सुमित और मोहित इन दोनों का आइडेंटिफिकेशन हुआ। इसमें से एक जो एनकाउंटर में ढेर हुआ है उसके ऊपर लगभग 14 मुकदमे दर्ज हैं हरियाणा में और दूसरे पर एक मर्डर का मुकदमा दर्ज है। और यूपी पुलिस लगातार इनको चेज कर रही थी, यूपी एसटीएफ की मेरठ और नोएडा यूनिट को लगाया गया था, जिसके बाद यूपी पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में एसटीएफ और शामली पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में इन दोनों सुमित और मोहित को एनकाउंटर में
5: इन सबको इन सभी को कानून के दायरे में लाया जाएगा।
0: जी जी संतोष, संतोष ये भी बताइएगा कि इन चार के अलावा, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि दो लोग और इसमें शामिल थे, क्या संख्या और ज्यादा है इन शूटर्स की? क्या इस मामले में और भी लोग जुड़े हुए थे?
4: शूटर्स ये चार ही थे, लेकिन इनकी रेकी करने वाले, इनके मदद करने वाले कुछ और लोग भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक जो इनके मदद में रेकी में दो अन्य नाम आए हैं, यानी कि कुल छह नाम ऐसे थे जो यूपी पुलिस को पता चले हैं, जिसमें से दो का एनकाउंटर हो गया है और चार की गिरफ्तारी होना बाकी है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए यूपी एसटीएफ और शामली पुलिस लगी हुई है। लेकिन इस पूरे शूटआउट को अंजाम देने वाले चार शूटरों में जो मुख्य शूटर थे सुमित और मोहित, इनको यूपी एसटीएफ ने शामली में एनकाउंटर में मार गिराया है। इनको शामली के शहर कोतवाली पे कैराना रोड का इलाका है जहां पर ये एनकाउंटर हुआ है। दोनों बदमाश ढेर कर दिए गए हैं, ये हरियाणा के रहने वाले हैं जिन्होंने अंकित बालियान हत्याकांड को अंजाम दिया था। इनके दो अन्य साथी जो इस शूटिंग में इन्वॉल्व थे, शूटआउट में इन्वॉल्व थे, और दो अन्य लोग और थे जो रेकी कर रहे थे, इनकी मदद कर रहे थे, इनको हर एक अपडेट दे रहे थे कि अंकित जिम से निकल चुका है, अंकित के शूटआउट के बाद किस रास्ते से जाना है, कहां से आना है। ये दो अन्य मददगार भी थे जिनके बारे में जानकारी मिल चुकी है। अब और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें तमाम अन्य और भी नाम बढ़ सकते हैं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में, जैसे जैसे नाम आएंगे उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन इस शूटआउट को अंजाम देने वाले दो मुख्य शूटर्स थे सुमित और मोहित, इन पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था, जिनको यूपी एसटीएफ और शामली पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में ढेर कर दिया है, एनकाउंटर में मार गिराया है। और बाकी शूटआउट में दो अन्य जो शामिल थे और दो साजिशकर्ता मददगार, उनकी तलाश की जा रही है।
0: चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष तमाम जानकारी के लिए। अब बात कर लेते हैं यूपी की राजधानी लखनऊ में हुई हिंदूवादी नेता धीरेन्द्र प्रताप सिंह की हत्या की। दरअसल इसकी जांच के बीच कई अहम खुलासे हो रहे हैं और तफ्तीश के बीच पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में लगी हुई है। हिंदूवादी नेता की हत्या में एक खुलासे कई हो रहे हैं और इसकी जांच में कई अहम खुलासे हो रहे हैं, ऐसे में तफ्तीश के बीच पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुड़ी हुई है।
6: लखनऊ की ये वही नहर है जहां कुछ दिन पहले तक सिर्फ पानी बह रहा था, लेकिन अब यही नहर एक हत्या की कहानी का सबसे अहम सबूत बन गई है। लखनऊ के दुबग्गा इलाके की इसी नहर से हिंदूवादी नेता धीरेन्द्र प्रताप सिंह का शव बरामद हुआ था। पहले गोली मारी गई, फिर शव को फॉर्च्यूनर से लाकर नहर में फेंक दिया गया। मामला सामने आया धीरेन्द्र की पत्नी ममता सिंह की शिकायत के बाद। आरोप है कि उनके पति को ड्राइवर रवि अपने साथ लेकर गया था, जिसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। पुलिस ने जांच शुरू की और शक धीरे धीरे ड्राइवर रवि पर पहुंच गया। रवि ने पुलिस को बताया कि धीरेन्द्र प्लासियो मॉल गए थे, जहां उन्होंने अपने दोस्तों से मुलाकात की थी। रवि के मुताबिक धीरेन्द्र ने कहा था कि उन्हें लौटने में वक्त लगेगा और घर पर इसकी जानकारी न दी जाए, लेकिन सीसीटीवी ने रवि की कहानी पर सवाल खड़े कर दिए। न धीरेन्द्र मॉल में दिखे, न उनकी गाड़ी।
7: इस गाड़ी में जो सबसे ज्यादा जो शक पैदा करता है, ये बिना नंबर की तो गाड़ी है ही, जो शक पैदा कर रहा है कि इसी गाड़ी में हत्या हुई। और पुलिस को भी जो पूछताछ में बातें सामने आई वो आपको तस्वीरों से दिखाते हैं कि फ्रंट सीट पर आपको एक लाइव कार्टेज अगर देख पा रहे होंगे तो ये आपको दिखाते हैं। ये दूसरी तरफ से पूरी ब्लैक कलर की गाड़ी और ब्लैक कलर के शीशे चारों तरफ से, तो दूसरी तरफ से दिखाते कि ये गाड़ी के अंदर ही धीरेन प्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
6: यहीं से पुलिस का शक और गहरा गया। पूछताछ आगे बढ़ी तो रवि की बताई कहानी और पुलिस की जांच में बड़ा फर्क सामने आने लगा।
8: यह अभी तक की विवेचना में जानकारी प्राप्त हुई है कि जो इनका ड्राइवर है और उसके द्वारा अपने साथियों के साथ मिल करके धीरेन प्रताप जी की हत्या जो है वो कर दी गई है। बॉडी जो है रिकवर कर लिया गया है और जिस गाड़ी में इनकी हत्या जो है वो की गई है वो गाड़ी भी रिकवर कर ली गई है। पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई जो है वो की जा रही है।
6: पुलिस के मुताबिक इसके बाद रवि से सख्ती से पूछताछ की गई और जांच में हत्या की पूरी कहानी सामने आने लगी। आज तक ब्यूरो।
0: तो वही होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव एक बार फिर से बढ़ गया है। अमेरिका ने समुद्री खदानें तैनात करने के खतरे को हवाला देते हुए ईरान के लारक द्वीप पर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके जवाब में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला बोल दिया है। लारक्वीप के सैन्य ठिकानों पर अमेरिका ने हमला किया है, जिसके जवाब में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला बोल दिया। जॉर्डन में US ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं, इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से सोशल मीडिया पर एक AI वीडियो पोस्ट किया गया है ट्रंप द्वारा, जिसमें लिखा गया है खर्ग द्वीप को पूरी तरह से तबाह किया जा रहा है। ये AI पोस्ट आप देख रहे हैं जो ट्रंप द्वारा सामने आया है, इसमें लिखा गया है कि खर्ग द्वीप को तबाह किया जा रहा है। ये AI की तस्वीर जारी की गई है, AI वीडियो पोस्ट किया गया है सोशल मीडिया पर अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा, और ये वीडियो पोस्ट करते हुए उसके साथ उन्होंने लिखा है खर्ग द्वीप को पूरी तरह से तबाह किया जा रहा है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं ट्रंप के पोस्ट का, ईरान पर ताजा हमले के बीच ट्रंप ने ये पोस्ट किया है, जिसके साथ उन्होंने तबाही की ये तस्वीर AI तस्वीर ये जारी की है। AI वीडियो जारी करते हुए उन्होंने उसके साथ लिखा है कि पूरी तरह से तबाह किया जा रहा है खर्ग द्वीप को। और अभी इससे पहले आपने तस्वीरें देखी बैलिस्टिक मिसाइल कैसे ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने भी

0: बाद सियासी खबरों की कर लेते हैं। हल्द्वानी के शुद्धिकरण विवाद में अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने से मामला और ज्यादा गर्मा गया है। जी हां, दलित समाज से जुड़े अमित कुमार की शिकायत पर हल्द्वानी कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि राहुल गांधी ने हल्द्वानी के रामलीला मैदान में हुए शुद्धिकरण के मामले को जातिगत रंग देते हुए इसे छुआछूत से जुड़ा मामला बताया। शिकायतकर्ता का कहना है कि इस बयान से दलित समाज की भावनाएं आहत हैं और इसलिए उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। शुद्धिकरण मामले में राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज की गई है। एक बार फिर से राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और शिकायतकर्ता का ये कहना है कि इस बयान से दलित समाज की भावनाएं आहत हैं। तो एक तरफ शुद्धिकरण विवाद को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन सत्याग्रह किया। बारिश के बीच हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता डटे रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घटना की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। शुद्धिकरण विवाद को लेकर जहां राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन सत्याग्रह किया। बारिश यहां पर हुई लेकिन इस बीच भी हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस नेता कार्यकर्ता डटे नजर आए।
1: कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने एफआईआर दर्ज करवा दी है, एप्लीकेशन दी है हल्द्वानी में कि मुकदमा कायम करवाया जाए राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने अपमान किया। अरे भाई, एक राष्ट्रीय स्तर के अनुसूचित जाति के नेता जो देश की सबसे बड़ी और सबसे ऐतिहासिक पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके भाषण देने के बाद आप शुद्धिकरण कर रहे हैं, आप हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, गंगा जल छिड़क रहे हैं और सारे मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में छपा है, प्रूफ है कि शुद्धिकरण हुआ। जहां रामलीला मैदान में खड़गे जी ने भाषण दिया उसका शुद्धिकरण किया गया और अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे राहुल गांधी को एफआईआर करके धमकाना चाहती है भाजपा। एफआईआर करके देख लीजिए, बहुत एफआईआर हुई है।
0: तो वहीं अमेरिका में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू मुस्लिम एकता और भारत की विविधता की बात की, लेकिन भागवत के इस बयान पर अब देश में सियासी घमासान छिड़ गया है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि अगर यही सोच है तो इसे देश में भी लागू क्यों नहीं किया जाता।
2: क्या भागवत के बयान से बदलेगी सियासत? क्या हिंदू मुस्लिम एकता पर अब नई बहस छिड़ गई है? भागवत के बयान पर विपक्ष क्यों हमलावर है? अमेरिका में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू मुस्लिम एकता और भारत की विविधता की बात की। उन्होंने कहा कि देश में हर धर्म और हर समुदाय का सम्मान होना चाहिए। भागवत के बयान का बीजेपी ने समर्थन किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारतीय संस्कृति सभी को साथ लेकर चलने की रही है।
3: ये जो तत्व है बिल्कुल सही तत्व है, क्योंकि हिंदुत्व का आत्मा क्या है? सहिष्णुता। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता ये हिंदू सभ्यता है।
2: वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भागवत के बयान पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विदेश में कुछ और देश में कुछ कहने से बदलाव नहीं आएगा। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी भागवत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर विविधता और भाईचारे की बात हो रही है तो इसे देश में भी दिखाई देना चाहिए। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी भागवत के बयान पर सवाल उठाए।
4: उनका भाषण ये दुनिया के लिए होता है और उनके मेंबर्स के लिए खुद आरएसएस के, तो शुरू का उनका हमेशा ये प्लेबुक स्टाइल है उनका।
2: हालांकि विपक्ष में भी भागवत के बयान को लेकर अलग राय सामने आई। स्वागत राय ने कहा कि अगर आरएसएस प्रमुख दूसरे समुदायों के साथ भाईचारे की बात कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है।
5: ये अगर मोहन भागवत कहते हैं तो अच्छा है, लेकिन आरएसएस एकदम एक तो हिंदू कट्टर हिंदू संगठन है। ये वो बोल रहे हैं, विश्वास करते हैं कि नहीं पता नहीं।
2: कुल मिलाकर मोहन भागवत का अमेरिका में दिया बयान अब भारतीय राजनीति में बहस का मुद्दा बन गया है। विपक्ष इसे कथनी और करनी से जोड़कर सवाल उठा रहा है तो बीजेपी इसे हिंदुत्व की मूल भावना से जोड़कर देख रही है। आज तक ब्यूरो।
0: चलिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किर्गिस्तान दौरे की। बिश्केक में आज SCO समिट के मंच पर पीएम मोदी की कूटनीतिक सक्रियता देखने को मिलेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति पुतिन और किर्गिस्तान की राष्ट्रपति सदिर समेत कई नेताओं के साथ एक अहम मुलाकातें होने वाली हैं। यूक्रेन और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच एससीओ की यह बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो वहीं भारत आतंकवाद, अलगाववाद और साथ ही उग्रवाद के खिलाफ अपनी स्पष्ट नीति को भी मजबूती से सामने रखेगा। तो चलिए अब आपको समझाते हैं कि आज का पूरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या होने वाला है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने वाली है और ये मुलाकात काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लगभग 11 बजे गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। द्विपक्षीय बैठक 11:50 पर शुरू होगी और 1:30 बजे आर्मेनिया पीएम से मुलाकात पीएम मोदी की होगी। वहीं 2:45 पर किर्गिज राष्ट्रपति से भी मुलाकात होने वाली है प्रधानमंत्री की, तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है। 5:30 बजे रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। वहीं 7:30 बजे वर्ल्ड नोमैड गेम्स का उद्घाटन किया जाएगा और एक अनौपचारिक डिनर भी रखा गया है। तो 11 बजे लगभग शुरुआत हो जाएगी पूरे कार्यक्रम की। अब आगे बढ़ते हैं। हिमालय में कुदरत का कहर जारी है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ग्लेशियर टूटने के बाद आई बाढ़ और मलबे ने नेपाल से लेकर चीन के तिब्बत तक तबाही मचा दी है। कई इलाके मलबे में दबे हुए हैं, सड़कें टूट गई हैं और सुरंग में जिंदगियां फंसी हुई हैं।
2: पहाड़ों पर कुदरत का ऐसा कहर टूटा कि चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। ग्लेशियर टूटा तो बर्फ, पानी और मलबे का सैलाब पहाड़ों से नीचे की तरफ बह निकला। कहीं सड़कें मलबे में दब गईं, तो कहीं सुरंगों में जिंदगियां फंसी हुई हैं। नेपाल में फ्लैश फ्लड से हालात बिगड़े हुए हैं। बाढ़ और मलबे के बीच राहत टीमें लगातार लोगों की तलाश में जुटी हैं। नेपाल में अब तक 781 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 2500 से ज्यादा लोग लापता हैं। 9535 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। वहीं 267 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस आपदा का असर सिर्फ नेपाल तक नहीं है, चीन का तिब्बत इलाका भी इसकी चपेट में आया है। तिब्बत में 16 लोगों की मौत हुई है, जबकि 546 लोग अब भी लापता है। सबसे बड़ी चिंता उन लोगों को लेकर है जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंगों में फंसे हुए हैं। नेपाल की सेना ने त्रिशूली 3 इस सुरंग में लापता 42 लोगों तक पहुंचने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया है। मलबा हटाया जा रहा है और सुरंग के अंदर फंसी जिंदगियों को बाहर निकालने की कोशिश जारी है। त्रिशूली नदी का जल स्तर बढ़ने के बाद कई जगहों से लोगों को सुरक्षित ऊंचाई वाले इलाकों में पहुंचाया गया है। आपदा के बाद सीमा के पास एक झील भी बन गई थी, जिससे नए सैलाब का खतरा बढ़ गया था। हालांकि पानी का स्तर अब कम हुआ है, लेकिन नए भूस्खलन ने चिंता बढ़ा दी है। इस तबाही के बीच अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चिंता जताई है। एक तरफ रेस्क्यू टीमें मलबे के बीच जिंदगी तलाश रही, तो दूसरी तरफ हजारों परिवार अपनों के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
0: इसी के साथ सुपर 8 में आ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए आज।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
9: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
10: सोच बदलो और बैंक भी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: एक दो एक
2: श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: मैं करता हूँ ना,
2: मैं करूँगा।
3: ओए कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
1: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
3: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टे, डाइनिंग एंड मच मोर।
1: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB दोनों ही चैंपियन है।
3: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।
4: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: मुल्तानी खू का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी खू का कॉफ सिरप।
6: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
7: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
8: लायन डेट नट बाइट्स।
9: गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
10: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: आज तक ना होता तो हमारी बात देश दुनिया तक नहीं पहुंचती।
3: हम लोग को बड़े चैनल का सहयोग नहीं मिला था, हम लोग गरीब छात्र लोग हैं, तो आज आप लोग का सहयोग मिला है तो पूरा भारत और पूरा दुनिया में यहाँ की आवाज गूंज रही है।
2: खबरों के साथ पक्षपात नहीं।
4: 19 साल के छात्र साहिल लजा पे दावा किया, उन पर सुरक्षा बलों ने पेलेट गन का इस्तेमाल किया जिससे उनकी एक आंख की रोशनी जाने की नौबत आ गई।
2: हर बात देश के सामने।
5: अंजना मैम, सबसे पहले तो हम लोग आवाज को बुलंद किए हैं, इसके लिए आपके पूरे टीम को धन्यवाद देते हैं।
2: मुद्दा कोई भी हो, सोए हुए सिस्टम को जगाता है आज तक।
6: 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, पहले प्रधानमंत्री हमारे नेहरू जी बने। उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे पहले प्रधानमंत्री बनते तो भारत की क्या दिशा और दशा होती?
7: ये तुमने सवाल क्वेश्चन किया, ये संसद में होता तो बड़ा मजा आता। हर तरीके की एक पार्टी बोलती कि कश्मीर हमारा होता, अफगानिस्तान तक हम कब्जा कर लेते, पब्लिक बाहर सुन के ताली वाली ही बजाती।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: 100 घंटे के अंदर यूपीएससीएफ ने किया अंकित बालियान के दो हथियारों का एनकाउंटर। शामली में गोगी गैंग के शूटर्स ढेर। सुमित और मोहित नाम के बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़, बाकी दो की तलाश जारी। शुद्धिकरण विवाद में राहुल गांधी पर हल्द्वानी में एफआईआर दर्ज। एससी एसटी एक्ट के तहत अनुसूचित जाति के युवक ने दर्ज कराया केस, जातिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। आज बिश्केक के एससीओ समिट में एक मंच पर होंगे पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग। रूसी राष्ट्रपति से होगी प्रधानमंत्री की मुलाकात, कारोबार और ऊर्जा संकट पर होगी बात। एक बार फिर से शुरू हुई अमेरिका ईरान जंग। लारक द्वीप पर यूएस अटैक का आईआरजीसी ने दिया जवाब। जॉर्डन के अमेरिकी ठिकाने मिसाइल हमले, ट्रंप ने शेयर किया खार्ग आइलैंड की तबाही का एआई वीडियो। नेपाल में कम नहीं हुआ कुदरत का क्रोध, फिर से उफान पर त्रिशूली नदी, तेज धार में बहा पुल, मौत का आंकड़ा 788 तक पहुंचा, 2500 से ज्यादा अब भी लापता।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: बालियान हत्याकांड में दो शूटर्स का एनकाउंटर, यूपीएसटीएफ ने हत्याकांड में शामिल दोनों शूटर्स को मार गिराया। शामली में अंकित बालियान की हत्या मामले में पुलिस ने दो संदिग्ध शूटर की पहचान की, दोनों का गोगी गैंग से संबंध। मारे गए दोनों आरोपियों पर अंकित बालियान की हत्या में शामिल होने का आरोप। 26 अगस्त को शामली में जिम के बाहर बालियान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक अंकित बालियान की हत्या में कुल 6 लोगों की भूमिका, इनमें से दो शूटर ढेर, दो की तलाश जारी, बाकी दो शूटर रेकी में थे शामिल। अंकित बालियान हत्याकांड पर एडीजी ने कहा, योगी सरकार की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस है, इस पॉलिसी को टेस्ट करने की कोशिश ना करें। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में हुए शुद्धिकरण मामले में अब नया मोड़। श्रीराम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ दी गई तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया। राहुल गांधी पर अनुसूचित वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। राहुल गांधी ने शुद्धिकरण यज्ञ को बताया था दलित विरोधी। शुद्धिकरण विवाद पर कांग्रेस का मौन सत्याग्रह, बारिश में भी डटे नेता कार्यकर्ता। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अमेरिका में विविधता को लेकर दिए गए बयान पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने साधा निशाना। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने तंज कसते हुए कहा कि भागवत का भाषण सुनकर वो सोचने लगे कि ये राहुल गांधी बोल रहे हैं या फिर आरएसएस प्रमुख। ओवैसी ने भागवत के हिंदू मुस्लिम एकता वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा, संगठन की कुछ बातें दुनिया के लिए कुछ, आरएसएस सदस्यों के लिए कुछ और होती है। मोहन भागवत के हिंदू मुस्लिम वाले बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, विदेश में एकता की बातें और यहां देश के ही बातें। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर तंज कसते हुए सुप्रिया सूले ने कहा, जो लोग विदेश जाते हैं वो लोकतंत्र और सबके अधिकारों की बात करते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने जो कुछ भी कहा उसे देश में जमीनी स्तर पर लागू किया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता उदित राज ने भागवत के बयान पर हमला बोलते हुए कहा कि राजनीति में सबसे ज्यादा स्वार्थ आरएसएस का ही है, जो बीजेपी का इस्तेमाल अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए करती है। एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक पहुंचे पीएम मोदी। किर्गिज गणराज्य के कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स और चेयरमैन और राष्ट्रपति प्रशासन के प्रमुख ने गर्मजोशी के साथ किया स्वागत। पीएम मोदी के स्वागत में कलाकारों ने पेश किया पारंपरिक नृत्य। होटल पहुंचने पर वंदे मातरम के नारों से गूंजा माहौल, पीएम मोदी ने जताया आभार। बिश्केक की अपनी दो दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री एससीओ सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे और 1 सितंबर को एससीओ के 26वें शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। इस दौरे में एससीओ के मंच पर आतंकवाद, क्षेत्रीय सुरक्षा और कनेक्टिविटी के मुद्दे अहम रहेंगे। वहीं पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात पर भी सबकी नजरें टिकी। पीएम मोदी 6वें वर्ल्ड नोमैड गेम्स के उद्घाटन समारोह में होंगे शामिल। यह आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक खेलों को प्रदर्शित करता है। आज मायावती की लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस, यूपी चुनाव को लेकर बीएसपी बनाएगी रणनीति। आज लखनऊ में बीजेपी का सेवा संकल्प अभियान वर्कशॉप, आगामी बड़े राष्ट्रव्यापी अभियान के लिए राज्य स्तर पर योजना बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एआईएमआईएम ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले पर निशाना साधा। एआईएमआईएम नेता शादाब चौहान ने कहा है कि अगर अखिलेश मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो उन्हें असदुद्दीन ओवैसी का साथ लेना होगा। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद पर भी साधा निशाना। पार्टी नेता शादाब चौहान ने यहां तक कहा है कि जब तक अखिलेश यादव के पीडीए में A4 असदुद्दीन ओवैसी नहीं होता तब तक वो सत्ता का सपना भी नहीं देख सकते। लखनऊ में हिंदूवादी नेता धीरेंद्र प्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या। नहर में मिला शव, ड्राइवर ही निकला कातिल, दो गिरफ्तार। ड्राइवर पर ही विरोधियों से मिलकर जमीन की रंजिश में हत्या कराने का शक। उन्नाव में एक जमीन का विवाद था जिसे लेकर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी ड्राइवर सहित दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घटना के खुलासे के लिए 6 टीम लगाई गई। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच की और हत्या में इस्तेमाल हथियार, कार समेत अन्य सबूतों को कब्जे में लेकर पड़ताल की जा रही है। सीएम योगी ने पाती लिखकर प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी और बोले, असत्य और अन्याय के अंधकार के बीच सत्य और धर्म का प्रकाश। नेपाल में मरने वालों का बढ़ा आंकड़ा, अब तक 788 मौत। वहीं इस त्रासदी में लापता लोगों की संख्या 2500 के पार। भारत की 19 सदस्यीय फॉरेंसिक टीम ने नेपाल बाढ़ पीड़ितों की डीएनए पहचान के लिए काठमांडू में काम शुरू किया। भारत की खास टनल रेस्क्यू टीम का चिली में और लांगटांग में क्षतिग्रस्त हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साइट पर नेपाली सेना के साथ मिलकर संयुक्त अभियान जारी। नेपाल ने अज्ञात शवों को सामूहिक रूप से दफनाना शुरू किया। त्रिशूली सुरंग में लापता 42 लोगों तक पहुंचने के लिए सेना ने प्रयास तेज किए। नेपाल में लापता हुए मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व जज को लेकर दिल्ली तमिल एडवोकेट्स एसोसिएशन ने सीजेआई सूर्यकांत को पत्र लिखा, सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए दखल देने की अपील। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी में आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। रामघाट किनारे बने कई घर क्षतिग्रस्त, अभी भी खतरे के निशान के 1 मीटर ऊपर जलस्तर। पानी के तेज बहाव में मंदाकिनी नदी पर बना बड़ा पुल नदी के तेज बहाव में बह गया और रामघाट पर लोहिया पुल की रेलिंग टूटी। रामघाट जाने पर लगाई रोक। यूपी के बुंदेलखंड में भीषण बारिश का कहर, कई इलाके जलमग्न। बांदा में नदियां उफान पर। बांदा में चित्रकूट प्रयागराज बनारस जाने वाले रास्तों पर पानी भरा, पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। दमन में एक लाइफगार्ड की सतर्कता और सूझबूझ के कारण 7 साल की लड़की की डूबने की वजह से जान बची। उतरकर ट्रैक की जांच की और सुरक्षा के साथ ट्रेनों को धीमी गति से रवाना किया। प्रयागराज में बढ़ते गंगा यमुना के जलस्तर पर जनजीवन प्रभावित हुआ, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी प्रभावित। गरियाबंद में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर, कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। जान जोखिम में डालकर लोग नाला पार करने को मजबूर। लद्दाख के कारगिल में बादल फटने के कारण अचानक से बाढ़ जैसी स्थिति। अचानक से बादल फटने के बाद आया सैलाब, मिट्टी संग बहकर आए बड़े बड़े पत्थर। घटना के बाद स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ी, अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। प्रशासन की ओर से नुकसान का आकलन किया जा रहा। हरिद्वार में तेज बारिश के बीच गिरी आकाशीय बिजली, हादसे में कोई हताहत नहीं। कांगड़ा घाटी में जोरदार बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़कें और बस स्टैंड पर पानी भरने के कारण स्थानीय लोगों के साथ साथ तीर्थयात्री भी फंसे। जापान के फुकुई प्रांत में रिकॉर्ड तोड़ और मूसलाधार बारिश के कारण कई हिस्सों में गंभीर बाढ़ और जलभराव की स्थिति। प्रांत में कई नदियां उफान पर, तटों का पानी बाहर आया। स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों के लाखों नागरिकों को सुरक्षा और तुरंत एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए। राहत और बचाव कार्य जारी है तथा लोगों से सुरक्षित स्थानों या इमारतों के ऊपरी मंजिलों पर रहने की अपील की गई। राष्ट्रीय खेल दिवस पर जहानाबाद डीएम का अनोखा अंदाज, दरअसल खिलाड़ियों के साथ ट्रैक पर लगाई उन्होंने दौड़। और इसी मन के मुद्दे पर रांची में आदिवासी एकता महाजुटान, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग रैली में शामिल हुए। राजनीतिक हिस्सेदारी और अधिकारों पर चर्चा हुई। दिल्ली के द्वारका का नया इस्कॉन मंदिर पहली बार मनाने जा रहा है जन्माष्टमी। गोकुलधाम थीम पर मंदिर की भव्य सजावट। खरगोन में पुलिस बैंड की सलामी के बीच निकला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिवडोला। हर हर महादेव से गूंजा शहर, उमड़ा जनसैलाब। शिवडोले में इस बार धार्मिक आस्था के साथ सांस्कृतिक विविधता की भी विशेष झलक देखने को मिली। 4 किलोमीटर का भ्रमण करीब 18 घंटे में पूरा हुआ। बगहा में गंडक नदी के कटाव से बचाव के लिए चल रहे कटाव विरोधी कार्य की धीमी रफ्तार से विधायक नाराज हुए, बोले 9 साल में भी पूरा नहीं हुआ काम। बगहा में चंपारण हमसफर एक्सप्रेस से निकला धुआं, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। आग की आशंका से यात्रियों में मची अफरातफरी। तमिलनाडु पुलिस ने मणिपुर से मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के सूटकेस से महिला के शरीर के टुकड़े मिलने की वजह से फैली सनसनी।

छत्तीसगढ़ के सुकमा में ग्रेटर नोएडा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, ट्रक डिवाइडर से तोड़कर कार पर जाकर गिरी, चार की मौत। ट्रक चालक को पुलिस ने हिरासत में लिया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। गाजियाबाद में मामूली विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदला। हिंसक झड़प में 50 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर हुई मौत, जबकि कई लोग घायल। गांव में तनाव को देखते हुए एहतियातन पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। सहारनपुर में गोकशी की कोशिश कर रहे बदमाश से पुलिस की मुठभेड़, पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार। आरोपी पर करीब एक दर्जन मुकदमे दर्ज। मैनपुरी में ट्रैफिक सिपाही से मारपीट की घटना के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। आसपास किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर अभियान चलाया गया। शिवपुरी रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टला। चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान प्लेटफॉर्म ट्रेन के बीच फंसी महिला आरपीएफ जवान ने खींचकर बचाई जान। धनबाद में बारिश के बीच भूधसान का कहर, तेज आवाज के साथ बना बड़ा गड्ढा, कई घरों में आई दरारें। लोग जरूरी सामान लेकर सुरक्षित जगह को जाने को मजबूर। गया के सोरहर नदी में नहाने के दौरान नदी के तेज पानी के धार में बहा 18 वर्षीय इंटर का छात्र। एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में मुर्गा बनाने की बात पर विवाद हुआ। पति ने पत्नी की पीट पीट कर हत्या कर दी, आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में खौफनाक हादसे में बाल बची बुजुर्ग की जान, देवदूत बनकर आसपास के मौजूद दुकानदार ने करंट लगने से बचाया। मुंबई के बांद्रा में एक तेज रफ्तार कार ने 8 वर्षीय बच्चे को कुचला, मौके पर मौत हुई। पुलिस ने महिला ड्राइवर को किया गिरफ्तार। तमिलनाडु के मदुरई में नाबालिग ने की आत्महत्या, स्कूल में एडिशन के दौरान जातिगत अपमान से हुई थी आहत, प्रिंसिपल पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। नोएडा में पिता ने 5 साल के बेटे को मारा मुक्का, बच्चे ने तोड़ा दम, आरोपी पिता गिरफ्तार। झारखंड के गढ़वा से अंधविश्वास की खौफनाक वारदात आई सामने। एक महिला को डायन बताकर लोगों ने खौलता पानी फेंका, महिला हुई बुरी तरह से जख्मी, मामले में 6 गिरफ्तारी। लखनऊ में वकीलों के चैंबर पर बुलडोजर एक्शन, हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद लखनऊ नगर निगम की टीम ने की कार्रवाई। ऋषिकेश चंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर आगराखाल के पास सीमेंट से भरा ट्रक पलटा, हादसे में ट्रक चालक की जान भी बार बार बची। यूपी के झांसी में 4 से 5 दिन पुराना अर्धनग्न हालत में मिला बुजुर्ग दंपति का शव, हत्या की आशंका। दिल्ली के एक प्ले स्कूल में 3 साल के बच्चे के साथ मारपीट, पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज। पुलिस ने मेड को लिया हिरासत में, टीचर की भूमिका की जांच जारी। अमृतसर के श्री हरि मंदिर साहिब के पास होटल में बवाल मचा, पहचान पत्र मांगने पर भड़के युवक साथियों संग लौटकर मारपीट। भारत ने विमेंस T20 एशिया कप में जीत से शुरुआत की। टीम ने रविवार को थाईलैंड को 94 रन से हराया। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में थाईलैंड 160 रन चेस करते हुए 16.1 ओवर में 65 रन पर ऑल आउट हो गई। प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली शर्मा ने 36 बॉल पर 64 रन बनाए। भारतीय टीम का दूसरा मैच 5 सितंबर को पाकिस्तान से इसी मैदान पर होगा। जर्मनी चौथी बार हॉकी वर्ल्ड चैंपियन, फाइनल में स्पेन को 1-0 से हराया। पाकिस्तान से सबसे ज्यादा 4 खिताब के रिकॉर्ड की बराबरी। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस का भीषण हमला, एक गोदाम जलकर खाक। हमले के बाद उठा धुएं का गुबार। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा अमेरिका के साथ बातचीत की तैयारी कर रहा है यूक्रेन। कीव की कई बातों से सहमत वाशिंगटन। नेपाल में रेस्क्यू के बीच फिर से आई बाढ़, बाढ़ में मरने वालों की संख्या 790 के पार पहुंची, करीब 2500 लोग अब भी लापता। उत्तरी साइप्रस के पास समंदर में बड़ा हादसा, 270 लोगों से भरी यात्री नाव पलटी, 7 लोगों की मौत हुई। स्विट्जरलैंड के उत्तरी शहर में एक रेव पार्टी के दौरान अंधाधुंध गोलीबारी हुई, हमले में एक महिला की मौत, 5 लोग घायल। इस्लामिक यूनिटी वीक के अवसर पर सर्वोच्च नेता मोहम्मद खामेनेई का संदेश, खामेनेई ने खाड़ी देशों से एकजुटता बनाए रखने की अपील की। पीएम मोदी को मिला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान। राष्ट्रपति शौकत ने पीएम मोदी को दिया सुप्रीम अवार्ड। यूरेनियम समेत कई अहम समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक पहुंचे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद। आइसलैंड ने खारिज किया यूरोपीय संघ में शामिल होने का प्रस्ताव, 52% से ज्यादा लोगों ने किया विरोध, 47% लोगों ने किया विरोध। नासा का नया और बेहद ही खास रोमन स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष के लिए रवाना। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से रॉकेट की हुई लॉन्च।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 31 अगस्त 2026 दिन सोमवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, प्रातः 8:50 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो दर्पण में चेहरा देखकर, जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विवादों से बचाव करें, चोट चपेट से बचाव करें। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, काम की रुकावट दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अतिथि का आगमन होगा, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मिथुन राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक मामलों में सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। कर्क राशि, करियर में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पारिवारिक समस्याएं हो सकती हैं, धन के खर्चों पर ध्यान दें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला।
राशि धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ के योग हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। तुला राशि धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की रुकावट दूर होगी, किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वृश्चिक राशि स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, काम में सफलता मिलेगी, विवादों से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी।

करें, काम की अधिकता रहेगी। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मकर राशि, करियर में सफलता के योग हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण काम निपटाने का प्रयास करें। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मीन राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में शुभ कार्य होंगे। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
2: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
3: एजुकेशन या काम को रिजेक्ट करती हैं सेफ्टी के कारण।
4: सियासत में एक नई महाभारत छिड़ गई है।
3: हिंसा से बचने के लिए 50% महिला।
4: हाल ही में महिलाओं के साथ कार्यक्रम में स्मैश द पेट्रियार्की के ऐलान के साथ राहुल गांधी ने मनुस्मृति पर हमला बोला था
3: कि एक माइंडसेट है। मनुस्मृति का माइंडसेट, महिलाओं को दबाने का माइंडसेट।
4: स्मैश द पेट्रियार्की यानी पितृसत्ता को कुचलना वो विचार है जो दावा करता है कि महिलाओं को समाज में दबाया गया, उन्हें अवसर नहीं मिले। इसके पीछे समाज की दकियानूस

0: सत्ता को कुचलना वो विचार है जो दावा करता है कि महिलाओं को समाज में दबाया गया, उन्हें अवसर नहीं मिले। इसके पीछे समाज की दकियानूसी सोच जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार बेटियों को बेटों के बराबर मौका और सम्मान देने की बात कह चुके हैं, लेकिन अब बीजेपी का आरोप है कि स्मैश द पेट्रियार्की कहकर राहुल हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं। बीजेपी ने राहुल गांधी का पुराना वीडियो पोस्ट करते हुए एक्स पर लिखा था, मनुस्मृति और हिंदू महिलाओं के संदर्भ में राहुल गांधी पितृसत्ता को ध्वस्त करने की बात करते हैं, लेकिन जब बात हिजाब और अबाया की आती है तो वही चुनाव की स्वतंत्रता बन जाता है।
1: सर, अगर आप सत्ता में आएंगे, अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो आपका क्या नजरिया होगा कि एक औरत अबाया और हिजाब पहनकर फ्री नहीं फील करती है? क्या अबाया और हिजाब उतार
2: देखिए, मेरा मेरी व्यू है, मेरी व्यू है कि जो महिला पहनना चाहती है वो उसके ऊपर है। अगर वो अबाया पहनना चाहती है, कुछ और पहनना चाहती है, वो उसका बिजनेस है, उसका काम है, उसको अलाउ करना चाहिए। मेरी तो ये राय है।
0: बीजेपी ने इंस्टाग्राम पोस्टर में भी राहुल गांधी पर हमला बोला था। राहुल के स्मैश द पेट्रियार्की के जवाब में पोस्टर में लिखा है, भारत माता की जय शुरू करते हैं। इसी पोस्ट के दूसरे पोस्टर्स में शाहबानो केस, 3 तलाक, 33% महिला आरक्षण और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में महिलाओं की भागीदारी नहीं होने को लेकर सीधा प्रहार है। इसी महीने राहुल के मंच पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पर फूहड़ टिप्पणी पर भी बीजेपी ने उन्हें घेरा था।
3: 22 अगस्त को उन्होंने पुणे के मंच पर यह बयान दिया और 10 दिन पहले खुद राहुल गांधी जी संदीप दीक्षित के साथ एक बहुत ही ओछे मजाक में शिरकत करते हैं एक महिला प्रधानमंत्री के खिलाफ, और वो भी हमारे एक मित्र देश इटली की।
0: मनुस्मृति के विरोध के नाम पर सियासत का नया हंगामा ऐसे समय में शुरू हुआ है जब एक एक कर राज्यों के चुनावों में महिला वोटरों को लुभाने की स्कीम्स के बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: साथ हुई मुठभेड़, बाकी दो की तलाश। शुद्धिकरण विवाद में राहुल गांधी पर हल्द्वानी में एफआईआर, SC ST एक्ट के तहत अनुसूचित जाति के युवक ने दर्ज कराया केस, जातिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। आज बिश्केक के SCO समिट में एक मंच पर होंगे प्रधानमंत्री मोदी, पुतिन और जिनपिंग। रूसी राष्ट्रपति से होगी प्रधानमंत्री की मुलाकात, कारोबार और ऊर्जा संकट पर होगी बात। फिर शुरू हुई अमेरिका ईरान जंग, लारक द्वीप पर US अटैक का IRGC ने दिया जवाब, जॉर्डन के अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल हमले, ट्रंप ने शेयर किया खार्ग आइलैंड की तबाही का AI वीडियो। नेपाल में कम नहीं हुआ कुदरत का क्रोध, फिर उफान पर त्रिशूली नदी, तेज धारा में बहा पुल, मौत का आंकड़ा 781 तक पहुंचा, 2500 से ज्यादा अब भी लापता।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद भारत।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं खबरें रफ्तार से और विस्तार से, लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूपी में एक और एनकाउंटर की, अंकित बालियान हत्याकांड के आरोपियों के एनकाउंटर की पूरी कहानी आपको दिखाएंगे। बात करेंगे SCO समिट की, जहां आज प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति पुतिन मिलने वाले हैं। खबर नेपाल से, वहां पर अब भी जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन, दिखाएंगे कैसे वहां मिशन जिंदगी के लिए सेना ने जी जान लगा दिया। ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर, लेकिन सबसे पहले रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बालियान के हत्याकांड से जुड़ी हुई है। इस मामले में 2 आरोपियों का एनकाउंटर हो चुका है। UPSTF ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शिफ्टर्स को एनकाउंटर में मार गिराया है। मारे गए आरोपियों की पहचान सुमित और मोहित के तौर पर हुई है। दोनों पर अंकित बालियान की हत्या में शामिल होने का आरोप था। इन पर 50,000 का इनाम रखा गया था। 26 अगस्त को यूपी के शामली में जिम के बाहर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद से पुलिस और STF लगातार हथियारों की तलाश कर रही थी। पुलिस की पड़ताल के मुताबिक अंकित बालियान की हत्या को अंजाम देने के लिए कुल 4 शूटर्स पहुंचे थे। इनमें से 2 शूटर्स ढेर हो चुके हैं, बाकी 2 हमलावरों की तलाश में पुलिस और STF की छापेमारी जारी है। आज एनकाउंटर के बाद पुलिस ने मौके से हथियार बरामद किए हैं।
2: दो अपराधी एक बाइक पर निकले, वहां से उनके सामने से रोकने का प्रयास किया इन्होंने, रोकने के बजाय पुलिस पे जानलेवा फायरिंग कर दिए और बाद में वो फायरिंग की गोली जाकर के गाड़ी में लगी और बदमाश भागने लगे। वहां पे हमारे सचिव तत्काल वार्डलेस पे पूरे खबर को प्रसारित किए, हमारी पूरी जनपद हाई अलर्ट पर, हम भी बाहर निकले, हमारे ASP, हमारे COCT, CO कराना, हमारे सारे सवलास फटके बाहर निकले। पुलिस से घिरने के बाद ये लोग अपना पोजीशन ले लिए, पुलिस लोगों ने जानलेवा फायरिंग की। इनकी फायरिंग में हमारे 2 आरक्षी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको हम लोग एडमिट कराया जाके CSC शामली में और इनको हायर सेंटर रेफर किया गया है। तत्पश्चात पुलिस ने जानलेवा फायरिंग के पश्चात फायरिंग के इनके ऊपर 2 बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए, इनको CSC भेजा गया जहां इनकी मौत हो गई।
3: इस प्रकरण में अंकित बालियान की हत्या शामली कोतवाली के पास कर दी गई थी। CCTV फुटेजेस के एनालिसिस से और आसपास के लोगों से पूछताछ से ही जानकारी हुई कि इस प्रकरण में 4 शूटर्स इन्वॉल्व थे, जो 2 मोटरसाइकिल से फरार हो गए। इनका लगातार पीछा किया गया। आज सुबह 2 शूटर्स सुमित और मोहित, ये शामली पुलिस से मुठभेड़ में मारे गए हैं। इनके पास से सोफिस्टिकेटेड वेपन्स बरामद हुए हैं। इन्होंने शामली पुलिस पर काफ़ी फायर भी किया, उसमें हमारे 2 कांस्टेबल भी घायल हैं। इस प्रकरण में अन्य शूटर्स और गैंग के हायर मेंबर्स, इन सब के बारे में तफ्तीश की जा रही है और इन सभी को कानून के दायरे में लाया जाएगा।
0: उत्तर प्रदेश पुलिस के एनकाउंटर को लेकर अंकित बालियान के पिता ने CM योगी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि हमें आधा इंसाफ मिल चुका है, आधा और मिलना चाहिए, अब तो उम्मीद है कि पुलिस कर देगी। साथ ही कहा कि योगी आदित्यनाथ ने हमारा इंसाफ किया है, लेकिन आधा इंसाफ बाकी।
4: हमारा तो यही कहना है कि हमें इंसाफ मिल गया, आधा और मिलना चाहिए। तो ये आधा कब तक का उम्मीद करोगे पुलिस कर देगी?
5: कर देगी, अब तो उम्मीद है। उनको बड़ी बड़ी बधाई हो, उन्होंने हमारा इंसाफ किया, लेकिन आधा बाकी है।
0: संतोष शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। संतोष, क्या ये जो दो अपराधी इनकाउंटर में मारे गए हैं, इन्हें जिंदा पकड़ पाना मुमकिन था या फिर नहीं?
6: देखिए, इन लोगों ने फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने एनकाउंटर में इनको ढेर किया है। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से बेखौफ होकर इनके द्वारा अंकित बालियान की हत्या की गई, उसके बाद से यूपी पुलिस ने इसको चैलेंज के तौर पे लिया। और इनकी शिनाख्त के जैसे इनकी पता चला, उसके शिनाख्त के 100 घंटे के अंदर ही यूपी एसटीएफ और शामली पुलिस ने इसको इस हत्याकांड में शामिल दो शूटरों को मार गिराया है। सुमित और मोहित हैं, दोनों पर 50,000 का इनाम था। और सबसे बड़ी बात कि इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने वाले जो शूटर थे, इनकी न सिर्फ पहचान की गई बल्कि इनको एनकाउंटर में ढेर किया गया। पुलिस ने जब इनको घेराबंदी की तो उसके बाद पुलिस कर्मियों पर फायरिंग की, जिसमें शामली पुलिस के 2 कांस्टेबल्स इसमें घायल हुए हैं, जो हायर सेंटर इलाज के लिए भेजे गए हैं। तो पुलिस के साथ मुठभेड़ में इनको एनकाउंटर में मार गिराया गया है। सुमित और मोहित नाम है, 50,000 के इनाम थे। सबसे बड़ी बात कि अंकित बालियान हत्याकांड के बाद से यूपी पुलिस ने इसको चैलेंज के तौर पर लिया। यूपी एसटीएफ चीफ खुद इसको मॉनिटर कर रहे थे और उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले दोनों शूटरों को मार गिराया गया। 100 घंटे के अंदर का वक्त लिया यूपी पुलिस ने, यूपी एसटीएफ ने, 100 घंटे के अंदर ही शिनाख्त होते ही इनको मार गिराया गया। तो यूपी पुलिस ने जैसे चैलेंज दिया, उस चैलेंज को एक तरीके से पूरा किया। और यूपी में जिस तरीके से गैंगस्टर्स ने हाथ घुसने की कोशिश की, इससे पहले दिशा पाटनी केस में भी इस लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ने शूट आउट करने की कोशिश की, उनको भी मार गिराया गया था। और अब अंकित बालियान हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटर्स को मार गिराया गया। तो यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ का एक बड़ी कामयाबी है, अंकित बालियान हत्याकांड को अंजाम देने वाले दोनों शूटर ढेर कर दिए गए। अभी 2 शूटरों की तलाश है, उनके 2 मददगारों की तलाश जारी है। जी
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बात यूपी की राजधानी लखनऊ की, यहां पर हिंदूवादी नेता धीरेन्द्र प्रताप सिंह की हत्या की बात करेंगे। और इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक धीरेन्द्र प्रताप सिंह का ड्राइवर है। उससे पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए।
7: लखनऊ की ये वही नहर है जहां से हिंदूवादी नेता धीरेन्द्र प्रताप सिंह का शव बरामद हुआ। धीरेन्द्र प्रताप सिंह की बेरहमी से हत्या की गई। पहले उन्हें सिर में एक गोली मारी गई, फिर दूसरी गोली पेट में मारी और शव को फॉर्च्यूनर से लाकर नहर में फेंक दिया गया। हत्या का खुलासा तब हुआ जब उन्हें लेकर परिजनों पुलिस ने उनके अपहरण की शिकायत की। जांच तेज हुई तो सच सामने आते देर नहीं लगी। आरोप है कि धीरेन्द्र प्रताप सिंह को उनका ड्राइवर रवि अपने साथ लेकर गया था, तभी से उनका कोई अता पता नहीं था। घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने तलाश तेज की, 6 टीमें गठित कर दी गई। जांच की कड़ियों को जोड़ते जोड़ते शक की सुई ड्राइवर रवि की तरफ घूमी। तब पुलिस ने आरोपी ड्राइवर से पूछताछ शुरू की। रवि ने पुलिस को बताया कि धीरेन्द्र प्लासियो मॉल गए थे, जहां उन्होंने अपने दोस्तों से मुलाकात की थी। रवि के मुताबिक धीरेन्द्र ने कहा था कि उन्हें लौटने में वक्त लगेगा और घर पर इसकी जानकारी न दी जाए। लेकिन सीसीटीवी से सच्चाई सामने आते देर नहीं लगी। रवि के बयान की पड़ताल शुरू हुई तो सवाल खड़े हुए, क्योंकि मॉल में ना धीरेन्द्र दिखे ना उनकी गाड़ी। यहीं से पुलिस का शक और गहरा गया। तब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की। इस दौरान उसने हत्या की बात कबूल ली। हिंदूवादी नेता धीरेन्द्र प्रताप सिंह की हत्या उनकी काली फॉर्च्यूनर में की गई थी। पुलिस ने जब फॉर्च्यूनर की जांच की तो आगे ड्राइवर की सीट पर एक खाली खोखा मिला और दूसरी तरफ फॉर्च्यूनर गाड़ी के पीछे सीट पर खून से सना हुआ डिब्बा मिला। साथ ही सीट पर खून के धब्बे मिले हैं, हाथापाई के निशान भी मिले हैं। वहीं पीछे के एक गेट पर चप्पल भी पड़ी हुई है।
8: इसमें जगह जगह पर खून के निशान लगे हुए हैं। एक डिब्बा है जो पीछे की सीट पर है, आप देखिए, ये आपको ये जो डिब्बा दिखाई पड़ रहा है, एक किसी सिरप का डिब्बा है जिसके ऊपर खून का निशान, खून से पूरा सना हुआ है। और ये सिर्फ इसी डिब्बे पर नहीं, पूरी जो पीछे की सीट है उस पर भी जगह जगह पर खून के निशान है। और ड्राइवर की उस जो सीट, जो गेट है, गेट के बगल में एक चप्पल पड़ी हुई है। सीट के ऊपर किसी के जैसे चढ़ने के निशान है, धूल के निशान है, जिससे कोई नंगे पैर चढ़ा हुआ हो, शायद धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने जब अपने को बचाने के लिए कोशिश की तब उस समय पर जो मजम्मत हुई बचाने के लिए। और इसके अलावा जो दूसरी अहम चीज है वो है इस गाड़ी की जो फ्रंट सीट पर ये कार्टेज मिला है।
7: पुलिस ने एक्शन लेते हुए ड्राइवर रवि और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया, फिर उनकी निशानदेही पर शव भी बरामद कर लिया गया।
9: डीसीपी साउथ की टीम के द्वारा घटना का सफलतापूर्वक अनावरण करते हुए इस घटना में शामिल दो अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों अभियुक्त के द्वारा इस घटना को इकबाल करते हुए अपहृत की डेड बॉडी को बरामद कराया गया तथा इस घटना में शामिल जो वाहन है उसको बरामद कर लिया गया है।
7: जानकारी के मुताबिक हत्या में कुल तीन आरोपी बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर विवाद था, उसी को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। अब आज गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस कोर्ट में पेश करेगी आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात शुद्धिकरण विवाद की। इस विवाद में अब एक्शन और सियासत तेज है। उत्तराखंड पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। ये एफआईआर एक दलित युवक ने दर्ज कराई है। उसने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने हल्द्वानी के रामलीला मैदान में हुए शुद्धिकरण के मामले में जातिगत रंग देते हुए इसे छुआछूत से जोड़ दिया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि राहुल के बयान से दलित समाज की भावनाएं आहत।
10: मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम के बाद शुद्धिकरण के आयोजन को लेकर संसद तक शोर मचा रहा। खड़गे ने आरोप लगाए तो सरकार को सफाई तक देनी पड़ी। उस मामले को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। उन्होंने 8 अगस्त को किए गए शुद्धिकरण की तुलना छुआछूत से कर दी। 29 अगस्त को दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने शुद्धिकरण का आरोप लगाते हुए ऐसा करने वालों पर एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग भी की थी।
11: जिन लोगों ने शुद्धिकरण किया है उत्तराखंड में उन पर एफआईआर लागू हो। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वो हर जात के हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनके पार्टी का चीफ कह रहा है कि शुद्धिकरण ठीक हुआ। उनके लोगों ने शुद्धिकरण किया, आरएसएस के लोगों ने शुद्धिकरण किया है। तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री ऑर्डर दें कि इन व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर एससीएससी एक्ट में एफआईआर दर्ज किया जाए।
10: राहुल के उसी बयान पर कानूनी शिकंजा कसा है। उत्तराखंड पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। 8 अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में खड़गे की रैली हुई थी। उसके बाद कथित शुद्धिकरण का आयोजन हुआ। दलित युवक अमित कुमार ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें आयोजन को सफाई और धार्मिक अनुष्ठान बताया गया है। साथ ही राहुल पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने गलत और अधूरे तथ्यों के आधार पर अनुसूचित जाति के खिलाफ जाति सूचक और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया।
12: अभी ये रामला मैदान में जो शुद्धिकरण का मामला था, ये हमने वहाँ सफाई करी और शुद्धिकरण करा। वह है कि वहाँ पर यूरिन से भरी बोतलें और गुटखा खा के ये बोतल पे और इधर उधर गंदगी बहुत करी थी, तो हमने उसकी सफाई करी। और हमने वहाँ पर, हम एक सनातनी है, हमारा पहला प्रथम हक और फर्ज है कि हम जहाँ अपनी हमारे श्री राम जी की पूजा होती है, जहाँ सारे अन्य कार्यक्रम होते हैं पूजा पाठ से रिलेटेड, हमने वहाँ की सिर्फ सफाई करी है। अब राहुल, एक खुद में एक दलित हूँ और राहुल गांधी जी के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि इनके ऊपर मुकदमा करो, कार्रवाई करो, तो खुद एक हम दलित है, हमारे संग दलित समाज के और भी भाई लोग थे वहाँ।
10: कांग्रेस ने इस शुद्धिकरण को खड़गे का अपमान बताया था, दलित का अपमान बताया था। इसलिए कल संसद से सड़क तक कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया और अब एफआईआर पर कांग्रेस सवाल उठा रही है।
13: रामलीला मैदान में खड़गे जी ने भाषण दिया, उसका शुद्धिकरण किया गया और अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे राहुल गांधी को एफआईआर करके धमकाना चाहती है भाजपा। एफआईआर करके देख लीजिए, बहुत एफआईआर हुई है पूरे देश के अलग अलग राज्यों में, राहुल गांधी जी के खिलाफ एफआईआर हुई है, यहां भी करके देख लीजिए। लेकिन उत्तराखंड में जो अपराध भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में भाजपा के समर्थकों ने किया है उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
10: एफआईआर दर्ज होने के बाद उत्तराखंड से दिल्ली तक सियासत तेज है। अब बीजेपी कांग्रेस पर इस मामले को गलत तरीके से तूल देकर राजनीति करने का आरोप लगा रही है।
14: उत्तराखंड की देवभूमि में जीवन जीना बहुत कठिन होता है और इसलिए यहाँ की परंपराओं के, यहाँ के संस्कारों को, यहाँ की संस्कृति को कृपया करके जाति के उन्माद के रास्ते में लाके ना फैलाएं। यहाँ की जो सौहार्द का जो वातावरण है उसको इस प्रकार से राजनीति का मंचन ना बनाएं। और कोई विषय को ले सकते हैं, ये ठीक विषय नहीं है, और इस विषय को बना करके वो अपनी राजनीतिक गणित ना बनाएं।
10: खड़गे के कार्यक्रम के बाद शुद्धिकरण उस पर तेज सियासत और अब राहुल गांधी पर FIR ने इस विवाद को और बढ़ा दिया है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: अंकित शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। अंकित, FIR तो दर्ज हो गई है, अब आगे की कार्रवाई क्या होगी, क्या एक्शन होगा?
15: नेहा, सबसे पहले मैं FIR के जो कंटेंट्स हैं उस पर आपको ले जाना चाहूंगा। जिस तरह से FIR दर्ज हुई है, इसमें दो तहरीर सामने आई थी, और सबसे पहले जो अमित सिंह की तरफ से तहरीर आई, उसके बाद विनोद आर्या की तरफ से तहरीर आई, जो कि श्री राम सेना धर्मात न्यास के सदस्य हैं। और FIR के मुताबिक मैं इसमें FIR अगर देखेंगे तो मैं इसमें जूम करके दिखाना चाहूंगा कि इसमें तीन सेक्शंस दर्ज हुए हैं। पहला है 31Q, जो कि कहता है कि जो FIR है उसमें जो अधिकारी है उसको भ्रमित करने की कोशिश की गई है, जो कि SC ST के सदस्य से के खिलाफ जो है कार्रवाई कर सके। दूसरा है 196 BNSS और 299 BNSS, जिसका मतलब है कि धार्मिक जो उन्माद है उसको खराब करने की कोशिश करी, जो दो ग्रुप्स हैं उनमें एनिमिटी बढ़ाने की कोशिश की गई है। और इसमें जो पॉइंटर्स हैं, करीब 19 पॉइंटर्स में ये पूरी FIR दर्ज हुई है, जिसमें कि ये भी कहा गया है कि जो रामलीला मैदान है वहां पर कूड़ा पाया गया था, बॉटल्स पाई गई थी जिसमें यूरिन था, और उसको साफ सफाई के लिए जो है ये पहले साफ सफाई की गई, उसके बाद इसके शुद्धिकरण के लिए पूजा पाठ किया गया और शुद्धिकरण किया गया, गंगा जल छिड़का गया। शुद्धिकरण को ये सही मान रहे हैं, लेकिन इसमें कहना है कि किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी जाति से इसका लेना देना नहीं है, लेकिन ये आरोप लगाया गया है कि जो ये आरोप राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए हैं वो जरूर इनको अलग करता है, और इन पर जो धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगता है, और जो ये SC ST कम्युनिटी के व्यक्ति है जिन्होंने FIR दर्ज करी है उनको।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अब बात अमेरिका ईरान युद्ध की करेंगे, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका ईरान के बीच टकराव एक बार फिर से बढ़ गया है। अमेरिका ने समुद्री माइन तैनात करने के खतरे का हवाला देते हुए ईरान के लारक द्वीप पर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके जवाब में ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला बोल दिया। तो लारक द्वीप के सैन्य ठिकानों पर अमेरिकी हमला, युद्ध अभी भी एक गति से जारी है। US के हमलों के बाद ईरान का भी जवाबी अटैक हुआ है।

0: और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक एआई वीडियो जारी किया जिसमें लिखा है कि खर्ग द्वीप को पूरी तरह से तबाह किया जा रहा है। इसमें दर्शाया गया है कि कैसे खर्ग द्वीप अब पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ताजा हमले के बीच ट्रंप का ये पोस्ट आया है जो कि एआई वीडियो है और इसे ट्रंप ने अपने आधिकारिक हैंडल पर पोस्ट किया है। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, आप इस पोस्ट के थोड़े मायने बताएंगे, क्योंकि अगर एआई के जरिए ट्रंप ये पोस्ट कर रहे हैं तो वो क्या दर्शाना चाह रहे हैं?
1: नेहा, अगर आपने पिछले वीकेंड के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट देखा हो तो वो बहुत सारे एआई वीडियो, तरह तरह के एआई वीडियोस जनरेट करके और वो पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें कि जो कार्यवाही हुई है उसमें और जो वीडियो पोस्ट किया गया है या उसमें जो दावा किया गया है, उन दोनों के बीच में कई मील का फासला है। यानी खर्ग जो आइलैंड है वो पर्शियन गल्फ के अंदर कुवैत के और ईरान का जो पश्चिमी छोर है उसके करीब है, जबकि जो लरक आइलैंड है जहां पर अमेरिकी सेना की कार्यवाही की गई है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मध्य के अंदर है, कशम आइलैंड के पास में। तो इन दोनों के बीच में, यानी जो पोस्ट किया जा रहा है उसमें और जो वास्तविकता में सैन्य कार्यवाही हुई है उसमें अंतर है। लेकिन आप जानती हैं कि खर्ग आइलैंड को लेकर पहले भी अमेरिकी सेना कार्यवाही कर चुकी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं क्योंकि वो ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट के लिहाज से एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। करीब 90% जो ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट है वो इस खर्ग आइलैंड से होता है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तौर पर इन सोशल मीडिया पोस्ट का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। लेकिन इससे अलग अगर ये देखा जाए कि पिछले एक महीने में अचानक ऐसा क्या हुआ कि अमेरिकी सैन्य कार्यवाही एक बार फिर ईरान के खिलाफ हो रही है, तो उसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि पिछले हफ्ते अमेरिका की तरफ से दावा किया गया था कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई लैंड माइन नहीं, कोई सी माइन नहीं है, अब वो पूरी तरह से आवाजाही के लिए मुक्त है और जो जहाज हैं वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अभी भी चिंता है, संकट है, इस कारण से जहाजों की आवाजाही उस तरह से नहीं हो रही है जैसी कि 27 फरवरी 2026 यानी इस संघर्ष के शुरू होने के पहले चल रही थी। हर दिन करीब 150 के करीब जहाज गुजर रहे थे, वो वैसी स्थिति तो अभी नहीं लौट पाई है। और अब अमेरिका ने यह कहते हुए कि ईरान एक बार फिर सी माइंस बिछाना चाह रहा है, इस सैन्य कार्यवाही को अंजाम दिया है, इसको लेकर गंभीर चिंता के सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं नेहा कि वो जो शांति प्रयास किए जा रहे थे, वो जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख अभी तेहरान गए थे, बहुत सारी बातचीत की बातें दावे किए जा रहे थे, वो एक बार फिर धराशायी खड़े नजर आ रहे हैं। क्योंकि 6 महीने हो चुके हैं इस संघर्ष को, अभी तक न तो किसी तरीके का निदान निकला है न किसी तरीके का समाधान दिखाई दे रहा है।
0: बने रहे हमारे साथ। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान दौरे पर है। बीती रात वो राजधानी बिश्केक पहुंच गए। आज से वो SCO समिट में हिस्सा लेने जा रहे हैं। बिश्केक में हो रहे 2 दिन के इस आयोजन में आज पहला दिन है और आज का दिन बेहद अहम बताया जा रहा है, क्योंकि आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई देश के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने वाले हैं। सबसे अहम मुलाकात रूसी राष्ट्रपति पुतिन से होने वाली है। भारत समय अनुसार शाम 5 बजे प्रधानमंत्री पुतिन की मुलाकात तय है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच कई अहम मसलों पर चर्चा हो सकती है। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी बिश्केक पहुंचे हैं। किर्गिज गणराज्य के कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स के चेयरमैन और राष्ट्रपति प्रशासन के प्रमुख आला शोविच ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। जरान हवाई अड्डे पर पारंपरिक किर्गिज नृत्य का आयोजन किया गया। प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, आज जो द्विपक्षीय वार्ता होनी है पुतिन और प्रधानमंत्री के बीच, उसके बारे में डिटेल में जानकारी दीजिए।
1: नेहा, 9 महीने के भीतर दूसरी बार मुलाकात हो रही होगी प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में। दोनों देशों के बीच में व्यापक रणनीतिक साझेदारी है, लेकिन हाल के जो मुद्दे सामने आए हैं, चाहे वो ऊर्जा सप्लाई का मुद्दा हो, चाहे भारत के न्यूक्लियर सेगमेंट के या न्यूक्लियर सेक्टर के विकास के लिए भारत जिस तरीके से विस्तार कर रहा है उसमें रूसी साझेदारी का मसला हो, चाहे फर्टिलाइजर क्राइसिस का मुद्दा हो। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मॉस्को गए थे, वहां उनकी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात भी हुई थी और उस दौरान भी राष्ट्रपति पुतिन ने इस बात का आश्वासन दिया था कि भारत के अंदर फर्टिलाइजर संकट की चिंता से रूस वाकिफ है और भारत की जो चिंताएं हैं उनको दूर करने के लिए रूस यथासंभव सारी मदद करेगा जो कि भारत में फर्टिलाइजर संकट को दूर कर सके। भारत के कृषि क्षेत्र के लिए, खासतौर पर रबी की फसल के लिहाज से, ये फर्टिलाइजर संकट महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो हाल में रूस और भारत के संबंधों में आया है कि द्विपक्षीय कारोबार तो बढ़ा है, लेकिन इस द्विपक्षीय कारोबार के अंदर व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी हम रूस से खरीद ज्यादा रहे हैं और रूस को निर्यात कम कर रहे हैं, इसको लेकर भारत की चिंता है। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की इस मुलाकात के बीच एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा कि किस तरीके से इस व्यापार घाटे को कम किया जा सके, किस तरीके से दोनों देश आर्थिक साझेदारी को आगे बढ़ा सके जिसमें भारतीय कारोबार, भारतीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ हो सके। और इसके अलावा जो रक्षा क्षेत्र की ऐसी परियोजनाएं हैं, चाहे वो S-400 की रिमेनिंग बैटरीज की सप्लाई का मुद्दा हो जो कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसके अलावा जो ज्वाइंट मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट्स हैं, उन तमाम चीजों के साथ साथ कई जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं, जो क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय इश्यूज हैं, उनके ऊपर भी चर्चा होगी। और साथ ही आप जानती हैं कि अगले 10 दिनों के अंदर राष्ट्रपति पुतिन को भारत भी आना है ब्रिक्स की शिखर बैठक के लिए, तो उस लिहाज से भी प्रधानमंत्री अपने निमंत्रण को एक बार फिर दोहराएंगे।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं कनाडा के टोरंटो पहुंचे मोहन भागवत ने हिंदू विश्व बंधु एम्ब्रेस द वर्ल्ड इन फ्रेंडशिप कार्यक्रम में हिस्सा लिया और वहां आए लोगों को संबोधित भी किया। इस दौरान भागवत ने कहा कि दुनिया के किसी भी कोने में मदद करना भारत के डीएनए में है, ये हमारी परंपरा है।
2: व्हेनेवर देयर वाज क्राइसिस एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड हेल्प फ्रॉम भारत वाज सॉट, भारत नेवर सेड नो। And without even calling for help, it helps. This is the tradition. This is the DNA of Bharat. Therefore, you heard the song. Hindu jage to Vishwa jagega. You heard the first stanza. हिंदू सदा से विश्व बंधु है, हिंदू इज ऑलवेज लाइक दैट।
0: और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नेपाल त्रासदी की। रसुआ के बेलुंग में भोटे कोशी नदी की नई तस्वीरें आई हैं। नेपाल सेना ने वीडियो जारी किया है, बताया जा रहा है कि वीडियो रविवार की सुबह का है। कल भी यहां भोटे कोशी नदी में जबरदस्त तूफान दिखा, बाढ़ जैसी स्थिति भोटे कोशी नदी में दिखाई दे रही है और ऐसे में ये वीडियो बयां करता है वहां के लोगों में किस तरीके से दहशत भर गई है। ये कल यानी कि रविवार सुबह की तस्वीरें हैं जो सेना ने जारी की हैं। और जैसे ही भोटे कोशी नदी में ये उफान सा दिखाई दिया, लोग इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए। वहीं नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन का छठा दिन है, बाढ़ से अब तक 781 लोगों की जान जा चुकी है। प्रधानमंत्री बालेन शाह ने बताया कि रसुआ की भोटे कोशी नदी में आई विनाशकारी बाढ़ से हुई जन धन और भौतिक क्षति का पूरा विवरण जुटाना अब भी चुनौतीपूर्ण है। प्रतिकूल मौसम, कठिन भौगोलिक परिस्थितियां और लगातार बने जोखिम के बावजूद सरकार नागरिकों की जान बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है।

0: पहाड़ों पर कुदरत का ऐसा कहर टूटा कि चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। ग्लेशियर टूटा तो बर्फ, पानी और मलबे का सैलाब पहाड़ों से नीचे की तरफ बह निकला। कहीं सड़कें मलबे में दब गईं, तो कहीं सुरंगों में जिंदगियां फंसी हुई हैं। 9,535 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, वहीं 267 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस आपदा का असर सिर्फ नेपाल तक नहीं है, चीन का तिब्बत इलाका भी इसकी चपेट में आया है। तिब्बत में 16 लोगों की मौत हुई है, जबकि 546 लोग अब भी लापता है। सबसे बड़ी चिंता उन लोगों को लेकर है जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंगों में फंसे हुए हैं। नेपाल की सेना ने त्रिशूली 3 ए सुरंग में लापता 42 लोगों तक पहुंचने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया है। मलबा हटाया जा रहा है और सुरंग के अंदर फंसी जिंदगियों को बाहर निकालने की कोशिश जारी है। त्रिशूली नदी का जल स्तर बढ़ने के बाद कई जगहों से लोगों को सुरक्षित ऊंचाई वाले इलाकों में पहुंचाया गया है। आपदा के बाद सीमा के पास एक झील भी बन गई थी, जिससे नए सैलाब का खतरा बढ़ गया था। हालांकि पानी का स्तर अब कम हुआ है, लेकिन नए भूस्खलन ने चिंता बढ़ा दी है। इस तबाही के बीच अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चिंता जताई है। एक तरफ रेस्क्यू टीमें मलबे के बीच जिंदगी तलाश रही हैं, तो दूसरी तरफ हजारों परिवार अपनों के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
1: तो नेपाल में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लोग बड़ी संख्या में मदद की आस भी लगा रहे हैं। आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा वहीं पर मौजूद हैं, उनकी रिपोर्ट देखिए।
2: 5 दिन पहले तक ये बच्चे अपने अपने घरों में थे, अपने स्कूलों में थे, घरों में खेलते कूदते थे, लेकिन 5 दिनों में जिंदगी इतनी बदल गई है कि अब वो रिलीफ कैंप में आ गए हैं। दुनिया के कई सारे संगठन, रेड क्रॉस जैसे तमाम जो एनजीओ हैं, तमाम जो ऐसी संस्थाएं हैं, वो भी मदद के लिए नेपाल पहुंच रही हैं, ताकि इन बच्चों को कुछ समय के लिए कम से कम आशियाना जरूर मिले। अब सोचिए, अपना घर, अपना स्कूल, अपने दोस्त सबको खोने के बाद रिलीफ कैंप की ये जिंदगी। नेपाल को फिर से पटरी पे लाने पे काफी समय लगेगा, लेकिन अभी जो प्राथमिकता है वो ये है कि जो लोग मुश्किल में हैं, जिन्हें बचाया जा सके, उन्हें निकाला जा सके, और एक बार जब सारे इवैक्यूएशन, रेस्क्यू, रिलीफ पूरा होगा, तब चुनौती होगी नेपाल को फिर से पटरी पर खड़ा करने की।
1: तो बिना ब्रेक की खबरों का सिलसिला लगातार 9 बजे में जारी रहेगा। वक्त हो गया है हेडलाइंस का।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
4: इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: शामली में गोगी गैंग के शूटर्स ढेर, सुमित और मोहित नाम के बदमाशों के साथ मुठभेड़, बाकी दो की तलाश। शुद्धिकरण विवाद में राहुल गांधी पर हल्द्वानी में FIR, SC/ST एक्ट के तहत अनुसूचित जाति के युवक ने दर्ज कराया केस, जातिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। बिश्केक के SCO समिट में एक मंच पर होंगे PM मोदी, पुतिन और जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति से होगी प्रधानमंत्री की मुलाकात, कारोबार और ऊर्जा संकट पर होगी बात। फिर शुरू हुई अमेरिका ईरान की जंग, लारक द्वीप पर US अटैक का IGC ने दिया जवाब, जॉर्डन के अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल से हमले, ट्रंप ने शेयर किया खारगा आइलैंड की तबाही का AI वीडियो। नेपाल में कम नहीं हुआ कुदरत का क्रोध, फिर उफान पर त्रिशूली नदी, तेज धार में बहा पुल, मौत का आंकड़ा 781 तक पहुंचा, 2500 से ज्यादा अब भी लापता।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर।
0: MP के सतना में लगातार हो रही बारिश से हालात गंभीर, पानी में डूबा रेलवे ट्रैक, कर्मचारियों ने ट्रैक की जांच के बाद ट्रेनों को किया रवाना। प्रयागराज में बढ़ते गंगा यमुना के जलस्तर का जनजीवन पर असर, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया प्रभावित। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर, जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं लोग। लद्दाख के करगिल में बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात, अचानक आए सैलाब में मिट्टी संग बहकर आए बड़े बड़े पत्थर। फ्लैश फ्लड में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं, प्रशासन की ओर से नुकसान का आकलन किया जा रहा है। हरिद्वार में तेज बारिश के बीच गिरी आकाश में बिजली, हादसे में कोई हताहत नहीं। कांगड़ा घाटी में जोरदार बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त, पानी भरने के कारण स्थानीय लोगों के 7 तीर्थयात्री शामिल। जापान के फुकुई में रिकॉर्ड तोड़ बारिश के कारण कई हिस्सों में बाढ़, नदियां उफान पर, स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों के लाखों नागरिकों को सुरक्षा और तुरंत एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए। राहत और बचाव का काम जारी, लोगों से सुरक्षित स्थान या इमारतों के ऊपरी मंजिलों पर रहने की अपील की गई। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी में आई भीषण बाढ़ ने मचाई तबाही, रामघाट किनारे बने कई घर क्षतिग्रस्त, खतरे के निशान के पार है जलस्तर। चित्रकूट में मंदाकिनी का पानी यमुना में पहुंचा, बैकफ्लो से राजापुर के करीब 10 गांवों का संपर्क टूटा। दमन में एक लाइफगार्ड की सतर्कता, सूझबूझ से 7 साल की लड़की डूबने से बची, खेलने के दौरान लहर की चपेट में आ गई थी। हापुड़ में गंगा एक्सप्रेसवे पर हादसे में थार कार सवार 4 युवक की दर्दनाक मौत, एक युवक गंभीर रूप से घायल। मुंबई पोर्ट पर जहाज पर गिरी 140 टन की क्रेन, भीषण आग से हड़कंप, 2 ऑपरेटर घायल। हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड में 2 शार्प शूटर्स का एनकाउंटर, UP STF ने हत्याकांड में शामिल दोनों शूटर्स को मार गिराया। शामली में अंकित बालियान की हत्या मामले में पुलिस ने 2 संदिग्ध शूटर्स की पहचान की, दोनों का गोगी गैंग से संबंध है। मारे गए आरोपियों पर अंकित बालियान की हत्या में शामिल होने का आरोप, 26 अगस्त को शामली में जिम के बाहर बालियान पर गोली मारकर इन लोगों ने हत्या की थी। पुलिस के मुताबिक अंकित बालियान की हत्या में कुल 6 लोग शामिल, इनमें से 2 शूटर ढेर, 2 की तलाश जारी, बाकी 2 शूटर रेकी में थे शामिल। अंकित बालियान हत्याकांड में ADG ने कहा है योगी सरकार के अपराध के प्रति 0 टॉलरेंस है, इस पॉलिसी को टेस्ट करने की कोशिश न करें। हल्द्वानी रामलीला मैदान में शुद्धिकरण मामले में नया मोड़, श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास की ओर से राहुल गांधी पर के खिलाफ की गई तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया। राहुल गांधी पर अनुसूचित वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप, राहुल गांधी ने शुद्धिकरण यज्ञ को बताया था दलित विरोधी। शुद्धिकरण विवाद पर कांग्रेस का मौन सत्याग्रह, बारिश में डटे नेता और कार्यकर्ता। RSS प्रमुख मोहन भागवत के अमेरिका के कार्यक्रम में विविधता को लेकर बयान पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल और AIMM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने साधा निशाना। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने तंज कसते हुए कहा कि भागवत का भाषण सुनकर सोचने लगे थे कि राहुल गांधी बोल रहे हैं या RSS प्रमुख। ओवैसी ने भागवत के हिंदू मुस्लिम एकता वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा संगठन की कुछ बातें दुनिया के लिए हैं और कुछ सदस्यों के लिए कुछ और होती हैं। मोहन भागवत के हिंदू मुस्लिम वाले बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया, उन्होंने कहा कि विदेश में एकता की बातें और यहां देश को ही बांटे। RSS प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर तंज कसते हुए सुप्रिया सुले ने कह दिया कि जो लोग विदेश जाते हैं वो लोकतंत्र और सबके अधिकारों की बात करते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता पर RSS प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसे देश में जमीनी स्तर पर लागू किया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता उदित राज ने भागवत के बयान पर हमला बोलते हुए कहा राजनीति में सबसे ज्यादा स्वार्थ RSS का है जो BJP का इस्तेमाल अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए करती है। SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, किर्गिज गणराज्य के कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स के चेयरमैन और राष्ट्रपति प्रशासन के प्रमुख से ने गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी के स्वागत में कलाकारों ने पेश किया पारंपरिक नृत्य। होटल पहुंचने पर वंदे मातरम किनारों से गूंजा माहौल। बिश्केक की अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री एससीओ सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। 1 सितंबर को एससीओ के 26वें शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। इस दौरे में एससीओ के मंच पर आतंकवाद, क्षेत्रीय सुरक्षा और कनेक्टिविटी के मुद्दे अहम होंगे। प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई। पीएम मोदी 6वें वर्ल्ड नोमैड गेम्स के उद्घाटन समारोह में लेंगे हिस्सा। यह आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध संस्कृति, विरासत और पारंपरिक खेलों को प्रदर्शित करता है। यूपी में मिशन 2027 की तैयारी तेज। आज लखनऊ में बीजेपी एसपी बीएसपी की बड़ी बैठकें। यूपी चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी, आज बड़ी कार्यशाला में शामिल होगी नव नियुक्त महामंत्री स्मृति ईरानी। बीजेपी कार्यशाला में हर जिले से 5 पदाधिकारी होंगे शामिल। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम समेत 700 पदाधिकारी जुटेंगे। संगठन और जमीनी रणनीति पर होगी चर्चा। राष्ट्रीय महामंत्री बनने के बाद पहली बार लखनऊ बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे हरीश द्विवेदी। कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी का विपक्षी नेताओं पर निशाना, बोले योगी सरकार में खत्म हुआ गुंडा राज, 2027 पे किया था जीत का दावा।

0: और इस बीच बड़ी खबर, हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बालियान की हत्या से जुड़ी हुई। इस मामले में दो आरोपियों के एनकाउंटर हो चुका है। यूपीएसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो शार्प शूटर्स को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। मारे गए आरोपियों की पहचान सुमित और मोहित के तौर पर हुई है। दोनों पर अंकित बालियान की हत्या में शामिल होने का आरोप है। इन पर 50,000 का इनाम रखा गया था। 26 अगस्त को यूपी के शामली में जिम के बाहर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से पुलिस और एसटीएफ लगातार हथियारों की तलाश में जुटी थी। पुलिस की पड़ताल के मुताबिक अंकित बालियान की हत्या को अंजाम देने के लिए कुल 4 शूटर्स पहुंचे थे। इनमें से 2 शूटर्स ढेर हो चुके हैं। बाकी 2 हमलावर की तलाश में पुलिस और एसटीएफ की छापेमारी जारी है। आज एनकाउंटर के बाद पुलिस ने मौके से हथियार बरामद किए। अंकित बालियान की पत्नी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है, जो यूपी पुलिस और एसटीएफ का अभी तक एक्शन हुआ है, क्या आप उसे संतोषजनक मानती हैं?
1: जी मैम, जो भी कार्रवाई अभी तक हुई है उससे हमें बहुत उम्मीदें बंधी है कि केस पे अच्छा काम हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का बार बार धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने इस केस को बहुत गंभीरता से लिया है। अंकित जी को उन्होंने अपना ही बच्चा समझ के इस केस पे काम करवाया है। बार बार धन्यवाद करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का कि उन्होंने इस केस को बहुत अच्छे से हैंडल किया है, और उनसे एक गुहार लगाना चाहूंगी कि इस काम को जड़ से खत्म करिए, क्योंकि आज हमारी फैमिली से एक बच्चा गया है, कल किसी और फैमिली का बच्चा ना जाए। क्योंकि अभी 2-3 लोग और हैं जो खुले घूम रहे हैं, उन्होंने बोला था कि मिशन अभी इनकम्प्लीट है, ऐसा कुछ सर्कुलेट हो रहा था। तो आगे किसी के साथ ऐसा ना हो, हम तो अपना हमारा तो सब कुछ बर्बाद हो ही चुका है, आगे किसी फैमिली का बर्बाद ना हो, क्योंकि ये असामाजिक तत्व है, ये कुछ नहीं देखते किसी की फैमिली का और भी बच्चा ना जाए। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से गुहार लगाना चाहूंगी कि जो उनकी कार्यशैली है उसी कार्यशैली में जवाब दे, और उन्होंने इस केस को इतनी गंभीरता से लेते हुए लॉ एंड ऑर्डर का जो उनका एक है, जो उनकी गवर्नमेंट के एक जो नींव है, उनको उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो नंबर 1 CM क्यों है। हमारे प्रदेश को उनकी जरूरत है अभी, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि योगी जी आपने इस केस पे बहुत करके पूरे गिरोह का पर्दा कीजिए सर, जो और आरोपी फरार हैं अभी उनको भी इसी तरह से पकड़वाइए।
0: जो बाकी बचे हुए आरोपी हैं, क्योंकि कुल 6 लोग इन्वॉल्व थे, 2 का एनकाउंटर हो चुका है, 4 अब भी फरार हैं, उनके खिलाफ भी क्या इसी तरह का एनकाउंटर वाला एक्शन चाहती हैं आप?
1: मैम देखिए, ये हमारे लिए ही नहीं केवल, ये समाज के लिए भी जरूरी है, क्योंकि जो लोग ऐसा काम कर सकते हैं, एक ऐसा इंसान जिसकी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, जो अपने काम से काम रखता था, जो एक वेस्ट यूपी का एक उभरता हुआ सितारा था, जिसने जमीन से उठ के अपना नाम किया था, उस बच्चे की अगर हत्या हो सकती है तो वो बच्चा किसी का भी हो सकता है। आज हमारे फैमिली से गया है, कल किसी और की फैमिली का भी हो सकता है वो, तो किसी और के साथ ऐसा ना हो, तो ऐसे असामाजिक तत्वों का खत्म हो जाना ही जरूरी है।
0: ठीक है सीमा जी, अगर सीमा जी जब ये हत्या हुई उसके बाद से आपको धमकी भरे कोई कॉल या फिर चिट्ठी इस तरह की कोई चीज?
1: नहीं नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं, धमकी या मेल या ऐसा कुछ नहीं हुआ है।
0: जब ये हत्याकांड हुआ और उसके बाद आपको इसकी जानकारी मिली, तब से लेकर अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की थी, क्या आप उस पूरी कार्रवाई से अब तक संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं?
1: संतुष्ट पूरी तरह से तो नहीं है, लेकिन काम बहुत अच्छे से किया है। कहीं ना कहीं SP और DM साहब जो आए थे, हमें आश्वासन देके गए थे कि आप निश्चिंत रहिए, हम काम करेंगे, उन्होंने अच्छा काम किया है अभी तक इस केस पे, और आगे भी उम्मीद है वो इसी तरह केस पे काम करते रहेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी का इस केस पे बहुत ध्यान था शुरू से ही।
0: सीमा जी, क्या वजह रही इस हत्या के पीछे, क्योंकि किसी से अगर कोई बैर नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं थी, तो क्यों अंकित को मारा गया? क्या एक मैसेज देने की कोशिश है, दहशत फैलाने की कोशिश है, क्या वजह रही?
1: मैम कहीं ना कहीं ये दहशत फैलाने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि पूरी सोसाइटी में, पूरे गांव में, पूरे स्टेट में, हरियाणा में, दिल्ली में, वो जहां जहां पे भी रहे, आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो इंसान ऐसा था कि उसका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़ों तक उसका प्यार था, आज तक किसी से कोई उसकी तू तू मैं भी नहीं हुई थी। अगर ऐसे इंसान के साथ ऐसा व्यवहार हो जाता है, वो क्यों हो गया? तो ये तो वही है कि सोसाइटी को कहीं ना कहीं यही मैसेज देने का ट्राई किया है उन्होंने। क्योंकि आप देख लीजिए, अगर गाने को ही माना जाए, गाने तो और भी बनाते हैं लोग। कितने सालों पहले संजय दत्त साहब ने गाना बनाया था खलनायक हूं मैं, उनकी जान पे तो कभी नहीं बन के आई। या और भी हरियाणा इंडस्ट्री में और भी लोग बना रहे हैं गाने, और बदमाशी से रिलेटेड हर स्टेट में गाने बन रहे हैं, लेकिन किसी के जान पे नहीं आई। फिर ये इन्हीं की जान पे बन के क्यों आ गई? कहीं ना कहीं इसका यही कारण दिखाई देता है कि एक बहुत कम समय में कहीं ना कहीं बहुत ऊंचे पायदान पे पहुंच गए थे अंकित जी। बहुत 3-4 साल के अंदर ही उनका
0: ठीक है,
1: वेस्ट यूपी में बहुत अच्छा नाम हो गया था, और हरियाणा में भी बाई फेस उनको कहीं ना कहीं हर कोई जानता था। तो इतने कम समय में इतनी उपलब्धि जो उन्होंने हासिल की, 5-6 गाने मुश्किल से उनके आए होंगे, 5-6 गानों से ही उनकी जो प्रसिद्धि का लेवल था वो कहीं ना कहीं हर लीक से हटके दिखाई देता है। तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं सफलता भी उसमें हो सकता है कि उनकी
0: ठीक है
1: सफलता से कुछ लोग
0: सीमा जी,
1: नाराज भी
0: शायद
1: हो।
0: अंकित की बहन भी आपके साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। रीना जी, इस बार की राखी आपके लिए सुनी रही, अपने भाई की कलाई पर आप राखी नहीं बांध पाई, कितना भारी था वो दिन, वो पल आपके लिए?
2: बहन ये चीज तो एक बहन ही समझ सकती है कि राखी के बिना अगर उसका भाई ना हो तो उसके ऊपर क्या बीत सकती है।
0: जब अभी आपने इस एनकाउंटर के बारे में सुना है, क्या लग रहा है कि आगे भी जो दो शूटर्स बचे हैं उनको भी एनकाउंटर में ही देर किया जाएगा?
2: जी मैम, पूरी उम्मीद है कि उनका भी हमें एनकाउंटर ही चाहिए। और मैम उनका यहाँ एनकाउंटर नहीं, जो मैम जड़ है, जड़ को ही खत्म किया जाए। क्योंकि कल मेरे भाई के साथ हुआ है, पर किसी के भी साथ हो सकता है ये
0: आपको क्या लगता
2: मैम।
0: है कि आपके भाई ने कम समय में प्रसिद्धि हासिल की, या कोई पर्टिकुलर गाने को लेकर किसी तरह का बैर था और यही हत्या का कारण बना?
2: मैम ये इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैम जो मेरा भाई था ना, इतना इंटेलिजेंट था कि बचपन से इतनी उम्र नहीं थी कि जितना उसने काम किया है। और मैम ये चाहता था कि गांव बंदीखेड़ा के लिए जो बच्चे हैं वो ना, मैम कबड्डी प्लेयर था तो मैम उसकी ना इसमें कमर में और घुटनों में चोट लगी थी, तो उसका ऑपरेशन हुआ था, तो उस वजह से उसने कबड्डी को छोड़ दिया था। तो वो चाहता था कि गांव में बच्चों के लिए स्टेडियम बने, कुछ बड़ा करना चाहता था वो गांव बंदीखेड़ा के लिए। तो मैम आपसे अपील है कि मेरे भाई के नाम पर कुछ बड़ा किया जाए, ताकि हमेशा याद रखा जाए जैसे शहीदों को याद किया जाता है। मैम ये मेरी आपसे बड़ी अपील है कि मेरे भाई के नाम पर कुछ किया जाए।
0: रीना जी और सीमा जी, ये जो 6 आरोपी हैं उनकी तस्वीरें भी आपने देखी होंगी, इनमें से किसी को आप लोग पहचानती हैं?
2: नहीं मैम, मैम हम भी एक
0: ये
2: गांव में आए थे।
0: कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं, और इनके इनकी पहचान के बारे में, इनके आइडेंटिटी के बारे में अभी ज्यादा कुछ नहीं मालूम है इनके नाम के अलावा, लेकिन अगर कभी इनके बारे में आपने कुछ सुना हो, कुछ कभी कोई ऐसी इंसिडेंट हो जहां पर देखा हो इनको?
2: मैंने सीधे साधे लोग हैं मैम, हमें क्या पता होगा इनके बारे में।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, रीना और सीमा, बहन और पत्नी अंकित बालियान की। और इस पूरे एनकाउंटर मामले में अब यूपी सरकार का बड़ा एक्शन, पुलिस और एसटीएफ के जॉइंट ऑपरेशन में दो शार्प शूटर्स को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है, बाकी दो की तलाश जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का उछला है, बने रहिए हमारे साथ, दिखते रहिए आज तक।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: ओह नो, बहुत बोर लग रहा है।
3: Take a date, not bites.
4: No added sugar, preservative के बिना। Dates, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया। Lion dates, not bites.
3: Lion date, not bites.
5: मुल्तानी कोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी कोका कॉफ सिरप।
6: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
7: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
8: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
9: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
10: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बाय एकदम सॉलिड।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए. सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स. और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती.
2: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स.

0: इन एसोसिएशन विद विमल बोलो जुबा केसरी। हिंट, एक हिंट तो देते,
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
2: देश की राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश हो रही है और थोड़ी सी देर की बारिश में देश की राजधानी का क्या हाल है, ये आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है।
3: हालांकि मुख्य सड़क, आप सोचिए नई दिल्ली की ये मुख्य सड़क है, लेकिन जैसे तेज बरसात शुरू हुई है और काफी मूसलाधार बारिश हुई है, दिल्ली के कुछ इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, तो ज्यादातर जो हिस्से हैं वो रेड अलर्ट की चपेट में है। दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास अमित वधवार के साथ में आशुतोष मिश्रा। आज तक
4: 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, पहले प्रधानमंत्री हमारे नेहरू जी बने। उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे पहले प्रधानमंत्री बनते तो भारत की क्या दिशा और दशा होती।
5: ये तुमने सवाल क्वेश्चन किया, ये संसद में होता तो बड़ा मजा आता। हर तरीके एक पार्टी बोलती कि कश्मीर हमारा होता, अफगानिस्तान तक हम कब्जा कर लेते, पब्लिक बाहर सुन के ताली वाली ही बजाती।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिश्केक में मौजूद हैं, छात्रों से संवाद कर रहे हैं, सीधे आपको वहीं ले चलें।
5: जीवन के सब क्षेत्रों में वो बहुत ही प्रेरणा देने वाला और अध्यात्म भी है, फिलोसॉफी है, व्यवहारु ज्ञान भी है। जब आप 80 साल मना रहे हैं तो क्या ये कल्पना कर सकते हैं कि उज्बेक में तिरुकुरल का यहाँ के लैंग्वेज में अनुवाद हो, ऐसा कोई मिशन ले सकते हैं?
6: जी हाँ, हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे,
5: क्योंकि सचमुच में वो यहाँ बहुत बड़ा आपके ज्ञान के अंदर वो संवर्धन करेगा, इतना सामर्थ्यवान है और काफी कुछ आप निकटता अनुभव करेंगे उसमें। और विश्व की सबसे पुरातन भाषा में जो चिंतन होगा, हमें अंदाज आएगा कि मानव की विकास यात्रा में कितनी गहरी सोच प्रारंभ से रही है। ये सिर्फ एक डिग्री प्राप्त करने की इंस्टीट्यूशन नहीं है, यहाँ वो साधना है जो ज्ञान के सागर में डूबने का अवसर देती है। आपने किताबों के माध्यम से ज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना, जो भाषा से परिचित नहीं उन तक पहुंचाने का प्रयास किया है, ये सराहनीय है, अभिनंदनीय है।
4: रुकेंगे यहां शुरू से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, दिखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
3: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
4: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार हो रही है और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है सियासत में नए पुराने सवालों की फाइलें खुल रही हैं और आरोपों की धार तेज हो रही है। इस राजनीतिक लड़ाई का ताजा केंद्र बना है लखनऊ का जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र यानी JPNIC। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर JPNIC को लेकर संगीन आरोप मढ़ाए।
1: इनके मॉडल हैं, वो मॉडल इनके जेब भरने वाले हैं। JPNIC

0: बिश्केक के एससीओ समिट में एक मंच पर होंगे पीएम मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग। रूसी राष्ट्रपति से होगी प्रधानमंत्री की मुलाकात। कारोबार और ऊर्जा संकट पर होगी बात। यूपी में आज 2027 के सभी चुनावी योद्धाओं का शक्ति प्रदर्शन। वर्कशॉप में बीजेपी कार्यकर्ताओं का महाजुटान, तो समाजवादी पार्टी करेगी जिला पदाधिकारियों के साथ संवाद। मायावती की भी मीटिंग। शुद्धिकरण विवाद में राहुल गांधी पर हल्द्वानी में एफआईआर। एससी एसटी एक्ट के तहत अनुसूचित जाति के युवक ने दर्ज कराया केस। जातिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। सौ घंटे के अंदर यूपीएसटीएफ ने किया अंकित बालियान के दो हथियारों का एनकाउंटर। शामली में गोगी गैंग के शूटर्स ढेर। सुमित और मोहित नाम के बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़, बाकी दो की तलाश। नेपाल में कम नहीं हुआ कुदरत का क्रोध, फिर उफान पर त्रिशूली नदी, तेज धार में बहा पुल, मौत का आंकड़ा 781 के पार, 2500 से ज्यादा अब भी लापता।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल। अगले साल देश के 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव 2027 की शुरुआत में होंगे, लिहाजा अब इन राज्यों में चुनावी माहौल बनने लगा है। साथ ही देश के कई अहम घटनाक्रमों का असर भी इन राज्यों की सियासत पर दिखने लगा है। सुबह 10 बजे के बुलेटिन में बात ऐसी ही 10 सियासी खबरों की जिनका सिरा चुनाव से सीधा जुड़ा हुआ है। बुलेटिन में बात दलित राजनीति पर छिड़े संग्राम की होगी, जिसमें शुद्धिकरण विवाद में राहुल गांधी पर FIR के बाद विवाद और ज्यादा गर्मा गया है। साथ ही बताएंगे कि आखिर आरक्षण को लेकर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच जुबानी जंग क्यों बढ़ती जा रही है। इसके साथ बात मोहन भागवत के हिंदुत्व और मुसलमानों पर दिए बयान पर छिड़ी राजनीति की भी होगी। साथ ही चर्चा यूपी में जारी सियासी हलचल पर भी होगी। लखनऊ में JPNIC को लेकर BJP और समाजवादी पार्टी पर पहले ही दोनों में संग्राम छिड़ चुका है, और इस बीच आज समाजवादी पार्टी ने पदाधिकारियों की आपात बैठक बुला ली है। बात समाजवादी पार्टी और AIMIM के बीच जुबानी जंग की भी करेंगे, जिसमें अब AIMIM के नेता ने PDA में A का मतलब असदुद्दीन ओवैसी बताकर एक नया एंगल दे दिया है। उधर जाति का मुद्दा उठाते हुए जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है। वहीं BJP ने भी यूपी में अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। आज लखनऊ में पार्टी की ओर से बड़ी कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस बीच BSP प्रमुख मायावती ने चुनाव को लेकर आज प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों की अहम बैठक भी बुलाई है। बात अंकित बालियान केस में 2 शूटरों के एनकाउंटर की भी करेंगे, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी पर सियासी हमला शुरू हो गया है। तो ये सारी बातें होंगी, लेकिन बात करते हैं उत्तराखंड से। सबसे पहले बात शुद्धिकरण विवाद की, जिसमें राहुल गांधी पर हल्द्वानी में SC ST एक्ट के तहत केस दर्ज होने के बाद अब विवाद गर्मा गया है। तो बड़ी खबर ये आ रही है कि कांग्रेस FIR पर अब सवाल उठा रही है और दावा कर रही है कि जिन धाराओं में राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है वो गलत है। उत्तराखंड कांग्रेस की उपाध्यक्ष सुजाता पॉल ने कहा है कि विपक्ष ऐसी कार्रवाई से घबराने वाला नहीं है। तो कई सवाल उठा रही है उत्तराखंड कांग्रेस भी, जो FIR की धाराएं लगाई गई हैं राहुल गांधी पर, उनके खिलाफ वो आपत्ति जता रहे हैं।

0: में धाराएं लगाई गई हैं बीएनएस की 196-299 एससीएसटी एक्ट 31Q। अब सवाल ये उठता है कि ये धाराएं लगाने का क्या तात्पर्य है, क्योंकि ना तो इन्होंने किसी दो समूहों के बीच में वैमनस्य फैलाया जो आपकी धारा के बारे में कहा जा रहा है 196-299 में किसी धर्म का अपमान, वो कब किया राहुल गांधी जी ने, या एससीएसटी एक्ट की धारा 31Q इसके अनुसार किसी फॉल्स या फ्रिवलेस इंफॉर्मेशन पर किसी पब्लिक सर्वेंट को दी जाए जिसके कारण उस पब्लिक सर्वेंट के द्वारा अपने लॉफुल पावर का इस्तेमाल करके किसी एससीएसटी सदस्य को इंजरी या अनॉयंस पहुंचाई जाए। राहुल गांधी जी ने कौन सी इंफॉर्मेशन फॉल्स दी और कौन से पब्लिक ऑफिसर को दी, मतलब कुछ भी चल रहा है।
1: तो एक तरफ कांग्रेस सवाल उठा रही है कि ये धाराएं जो अंधाधुंध तरीके से लगाई गई हैं वो क्यों है, उधर हल्द्वानी में शिकायत दर्ज करने वाले विनोद कुमार आर्य ने कहा कि राहुल गांधी रामलीला मैदान में हुए शुद्धिकरण पर गलत जानकारी फैला रहे थे और दलित समाज के लोगों पर ही केस दर्ज करने की मांग कर रहे हैं।
2: और जैसे कि अभी ये रामलीला मैदान में जो शुद्धिकरण का मामला था, ये हमने वहाँ सफाई करी और शुद्धिकरण करा, वह है कि वहाँ पर यूरिन से भरी बोतलें और गुटखा खा के ये बोतल पे और इधर उधर गंदगी बहुत करी थी, तो हमने उसकी सफाई करी और हमने वहाँ पर, हम एक सनातनी है, हमारा पहला प्रथम हक और फर्ज है कि हम जहाँ अपनी हमारे श्री राम जी की पूजा होती है, जहाँ सारे अन्य तरह के कार्यक्रम होते हैं पूजा पाठ से रिलेटेड, हमने वहाँ की सब सफाई करी है। अब राहुल, एक खुद में एक दलित हूँ और राहुल गांधी जी के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि इनके ऊपर मुकदमा करो, कार्रवाई करो, तो खुद एक हम दलित है, हमारे संग दलित समाज के और भी भाई लोग थे वहाँ, तो ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ और करें, तो ऐसा है कि हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जी के ऊपर यहाँ से हम FIR हो, हम उनके ऊपर खुद मुकदमा करें, में दलित समाज से, और वो हमें गिरफ्तारी के लिए हमारे ऊपर ही दबाव बना रहे हैं।
1: दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीते शुक्रवार को उत्तराखंड के हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खड़गे के सभा स्थल के शुद्धिकरण को छुआछूत और अपराध बताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से इस मामले में तुरंत FIR दर्ज कराने की मांग भी की थी।
3: जिन लोगों ने शुद्धिकरण किया है उत्तराखंड में, उन पर FIR लागू हो। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि वो हर जात के हैं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनके पार्टी का चीफ कह रहा है कि शुद्धिकरण ठीक हुआ, उनके लोगों ने शुद्धिकरण किया, RSS के लोगों ने शुद्धिकरण किया है, तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री ऑर्डर दें कि इन व्यक्तियों के खिलाफ FIR SC एक्ट में FIR दर्ज किया जाए।
1: और हमारे सहयोगी अंकित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए देहरादून से, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अंकित, उत्तराखंड पुलिस क्या कह रही है कि ये जो धाराएं लगाई हैं जिन पर आपत्ति जता रही है कांग्रेस, आखिर किस आधार पे लगाई गई हैं, क्या लॉजिक है उनका?
4: अंजलि, अभी उत्तराखंड पुलिस का इस मामले में कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया है, लेकिन अगर FIR की डिटेल्स में अगर हम जाएंगे तो उसमें मुख्य तीन धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटीज अगेंस्ट SC ST कम्युनिटी एक्ट है, 31Q धारा है जिसमें ये कहते हैं कि जो जानकारी दी गई वो एक अधिकारी को भ्रमित करने के लिए जानकारी दी गई जिससे कि वो ST कम्युनिटी के मेंबर के अगेंस्ट कार्रवाई कर सके, दूसरा है एक ही कम्युनिटी के दो ग्रुप्स में नफरत फैलाना, तीसरा है धार्मिक उन्माद फैलाना। तो ये तीन धाराएं हैं, 299, 196 और 31Q जो धारा है। हालांकि जो तहरीर दी गई थी अमित सिंह और विनोद आर्या की तरफ से, वो दलित समाज से आते हैं और उन्होंने कई धाराएं उसमें दी थी जिसमें कि उनका अपमान होना, SC ST कम्युनिटी का अपमान होना, इस तरीके के उन्होंने पूरे 19 पॉइंटर्स की तहरीर दी थी जिसमें कि उन्होंने कहा था कि जो रामलीला मैदान है उसमें यूरिन की बॉटल्स पाई गई थी, कूड़ा कचरा पाया गया था जिसकी सफाई के बाद उनको शुद्धिकरण करना पड़ा क्योंकि वहां राम जी की पूजा होती है और इसी वजह से ये पूरा शुद्धिकरण किया गया। तो शुद्धिकरण को वो सही मान रहे हैं लेकिन वो कह रहे हैं कि ये किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ या किसी जाति के खिलाफ नहीं था। लेकिन इस FIR के तहत तीन बातों को देखना होगा क्योंकि जो राम सेना धर्मांत संस्था है जिसके अध्यक्ष गिरीश पांडे हैं वो मेन ऑर्गेनाइजर थे इसके हवन के। दूसरी बात यह है कि अगर वहां पे कूड़ा करकट हुआ था, यूरिन की बॉटल्स पाई गई थी, तो उसमें नगर पालिका की क्या रिपोर्ट आई है। तीसरा जो मेन पहलू जिसमें ये कहा जा रहा है कि नफरती नारे लगाए गए थे उस मैदान में, जिसकी वजह से भी शुद्धिकरण हुआ, तो उस पर अब तक एसटीएफ ने या साइबर सेल ने अपनी रिपोर्ट दी है, क्या कोई मामला दर्ज हुआ है? और यही सवाल कांग्रेस कर रही है कि जो धाराएं दर्ज हुई हैं उस तरीके का राहुल गांधी का कोई इसमें कोई एक्शन नहीं है, ना ही उन्होंने ऐसी कोई चीज करी है। उनका सिर्फ ये सवाल था कि जिसने भी ये शुद्धिकरण किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और इसी पर कांग्रेस अडिग है और लगातार कार्रवाई की मांग कर रही है। फिलहाल सरकार जो है, पहले जेपी नड्डा का बयान आता है राज्यसभा में जिस तरह से उन्होंने माफी मांगी और कार्रवाई करने की बात करी, फिर पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि इनसे जो जिन लोगों ने हवन कराया उनसे कोई लेना देना नहीं है।
1: सियासत गर्म है उत्तराखंड में इस पूरे मुद्दे को लेकर, शुक्रिया आपका। उधर बीजेपी मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा के बाद शुद्धिकरण में पार्टी कार्यकर्ताओं की भूमिका से ही इनकार करती रही है। अब केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि राहुल इस मुद्दे पर सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं।
5: इसमें जो अभी राहुल गांधी जी को याद आ गया, क्योंकि इस घटना का उल्लेख मल्लिकार्जुन खड़गे जी 15-20 दिन पहले किए थे। फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, उसी दिन माननीय जेपी नड्डा जी ने कहा था कि इसमें कोई बीजेपी का या संघ परिवार का कोई नहीं है, ये तो स्पष्ट किया गया था। तो उसके बावजूद भी उन्होंने खंडन किया था, माननीय नड्डा जी ने एज ए लीडर ऑफ दी राज्यसभा वो खंडन किया था। राहुल गांधी जी को जब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब इसके बारे में बहुत दुख व्यक्त किया, अभी उनको याद आ गया है। लेकिन इसमें बीजेपी का, बीजेपी कार्यकर्ता का कोई लेना देना नहीं है, ये स्पष्ट है कि उधर जो हुआ है हमको कोई इसका संबंध नहीं है, कोई इसका तालुका नहीं है। फिर भी राहुल गांधी ये ड्रामा करते रहते हैं।
1: शुद्धिकरण विवाद में एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने आरएसएस पर हमला बोल दिया है। ओवैसी ने कहा कि शुद्धिकरण करने वाले आरएसएस से जुड़े हुए थे और सरकार उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। तो अब असदुद्दीन ओवैसी भी इस पूरे विवाद में कूद पड़े हैं और कह रहे हैं कि दरअसल शुद्धिकरण करने वाले आरएसएस से जुड़े हुए हैं।
6: ये बात बिल्कुल सच है कि राज्यसभा में खड़गे साहब ने इस मसले को उठाया। ये बात भी सच है कि बीजेपी की सरकार की तरफ से नड्डा साहब ने उसका मजम्मत भी की। मगर ये बात भी सच है कि जिन लोगों ने वो जाकर वो जो भी किया, गंदा काम किया, वो तमाम के तमाम आरएसएस के मेंबर हैं। सोशल मीडिया पर, मीडिया में भरे पड़े हुए उनकी तस्वीर, आरएसएस के कपड़ों में खड़े हैं। नहीं नहीं नहीं, सुन सुन सुन सुन लीजिए, देखिए, अगर मैं खड़गे साहब या किसी के भी खिलाफ होता है इस तरह की हरकत, तो ये अनटचेबिलिटी तो हमने बैन कर दी इस देश में संविधान के तहत। कैसे 2026 में इस तरह की हरकत होती, मैं इसका कंडेम करता हूं और सरकार को एक्शन लेना चाहिए।
1: बढ़ते दूसरी खबर की तरफ। अब खबर हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बालियान हत्याकांड से जुड़ी हुई। इस मामले में दो आरोपियों का एनकाउंटर हो गया है। यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो शूटर्स को एनकाउंटर में मार गिराया है। मारे गए आरोपियों की पहचान सुमित और मोहित के तौर पर हुई है। दोनों पर अंकित बालियान की हत्या में शामिल होने का आरोप था। इन पर 50,000 रुपए का इनाम भी था। 26 अगस्त को उत्तर प्रदेश के शामली में जिम के बाहर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से पुलिस और एसटीएफ लगातार हथियारों की तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस की पड़ताल के मुताबिक अंकित बालियान की हत्या को अंजाम देने के लिए कुल 4 शूटर वहां पहुंचे थे। इनमें से 2 शूटर्स अब ढेर हो चुके हैं। बाकी 2 हमलावरों की तलाश में पुलिस और एसटीएफ की छापेमारी जारी है। आज एनकाउंटर के बाद पुलिस ने मौके से हथियार भी बरामद किए हैं।
7: अगस्त को सायंकाल अंकित बालियान जी जब जिम से बाहर निकल रहे थे तो उन्हें 4 शूटर्स ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मौके पर से 18 खोखा कारतूस मिले थे, जिसका अर्थ था कि भारी संख्या में फायरिंग की गई। सीसीटीवी फुटेजेस से ये जानकारी हुई कि 4 शूटर्स थे जो 2 मोटरसाइकिल्स पर फरार हुए। तत्काल इनकी तलाश शुरू की गई। बहुत जल्दी एक सोशल मीडिया पोस्ट भी आया जिसमें गोगी गैंग द्वारा भोलू शाहपुरिया नाम के एक व्यक्ति ने इस घटना की जिम्मेदारी ली। इस सोशल मीडिया पोस्ट का ओरिजिन इंडिया के बाहर से था, इसलिए इसकी पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन पुलिस ने सभी एंगल्स पर तफ्तीश शुरू की। अंकित बालियान जी हरियाणवी सिंगिंग में एक बड़ा नाम बन चुके थे और सोशल मीडिया प्रेजेंस उनकी काफी अच्छी खासी थी, इसलिए ये एक यूपी पुलिस के लिए एक चैलेंज भी था। जब आज सुबह लगभग 5 बजे एक मुठभेड़ हुई शामली पुलिस और इन शूटर्स के बीच में, और ये 2 शूटर्स मारे गए हैं, सुमित और मोहित, और इनके पास से भारी मात्रा में आग्नेयास्त्र बरामद हुए हैं। इन्होंने पुलिस पर भारी फायरिंग भी की है, जिससे 2 कांस्टेबल्स भी हमारे घायल हुए हैं। अभी इस घटना में और भी लोग शामिल हैं जिनके बारे में तफ्तीश जारी है, और खास करके जो शूटर्स हैं और जो इस गैंग के लीडर्स हैं जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को प्लान किया है या अंजाम दिलाया है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।
1: तो अंकित बालियान केस में 2 शूटर्स एनकाउंटर में ढेर होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है। ओपी राजभर ने सोशल मीडिया पर लिखा है, मैं इनको कोट करती हूँ, अखिलेश जी खबर पता चल गई ना, जिस अंकित बालियान की हत्या पर आप राजनीति करना चाहते थे उसके हत्यारे वहीं पहुंच गए जहां उनकी जगह थी, यानी नर्क। वो आगे लिखते हैं, वैसे किसी बेटे की लाश पर जाट लिखकर राजनीति करना संवेदना नहीं, सौदागरी है, हत्या मानवता के खिलाफ अपराध है, किसी गोत्र की जागीर नहीं है। वो आगे लिखते हैं, आपको जाट तब याद आया जब चुनाव आने वाला है। तो अब बात यूपी की चुनावी हलचल की भी कर लेते हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच लखनऊ में आज 3 अहम बैठकें होने वाली हैं। बीजेपी ने लखनऊ में कार्यशाला यानी कि वर्कशॉप का आयोजन किया है, वहीं अखिलेश यादव ने पार्टी पदाधिकारियों की आपात बैठक बुलाई है। साथ ही बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी आज चुनावों को लेकर एक अहम बैठक करेंगी। तो चुनावी गर्मी देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश में। यूपी चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी ने अपनी जमीनी तैयारियां तेज कर दी हैं। लखनऊ में आज पार्टी की ओर से बड़ी कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें पार्टी महामंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल होंगी। कार्यशाला में पार्टी के 700 पदाधिकारी शामिल होंगे। और इस पूरे मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव का। समर्थ, कितनी अहम है ये कार्यशाला और साथ ही स्मृति ईरानी भी उसमें शामिल होने वाली है, क्या अहमियत है?
8: देखिए, बड़ी बात यहाँ पर यह है कि यूपी चुनाव के मद्देनजर ये सारे ही बैठकें आज हो रही हैं, चाहे विपक्षी दलों की हो रही हो और चाहे बीजेपी की हो रही हो। भारतीय जनता पार्टी की बैठक में स्मृति ईरानी यहाँ शामिल होने वाली हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ही क्षणों में बैठक में पहुंच रहे हैं, डिप्टी सीएम दोनों पहुंच चुके हैं, पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष यहाँ रहने वाले हैं। वर्कशॉप का मतलब कुल मिलाकर यह है कि जिलेवार तैयारियां बीजेपी की बूथ स्तर पर क्या है उसको कहीं ना कहीं बरखा जा सके। मैं जब यहाँ पर आया हूँ तो यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों के कई स्लॉट्स बने हुए हैं और आपको दिखा भी दें अगर तो यहां पर आप देखें तो कई क्षेत्र हैं कि अलग अलग जो है पंजीकरण के लिए क्षेत्र बनाए गए और जितने भी नेता आ रहे हैं वो उनको इस तरह के पैम्पलेट्स यहां पर मिल रहे हैं। आइए थोड़ा दिखाने की भी कोशिश एक बार कर देते हैं, कुछ इस तरीके के पैम्पलेट्स यहां पर दिखाई दे रही है। देखिए ये दिखाइए जरा, ये इस तरह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी हुई है और यहां पर बीजेपी का साइन है और ये अंदर इसमें एक डायरी है और एक इन लोगों को पेन दिया गया है और ये तो महिलाएं हो या कार्यकर्ता हो या कोई हो वो अंदर जा रहे हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं समझ रहे हैं चुनाव के लिए कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को बीजेपी अभी से तैयार कर रही है कि बूथ स्तर तक कोई कमी ना रह जाए, अगर कहीं नाराजगी है तो उसे दूर किया जा सके। 10 साल की सरकार होने जा रही है तो अगर कहीं नाराजगी है तो उस पर काम किया जा सके। इसी वजह से तमाम कार्यकर्ता जो है यहाँ पर मौजूद है, पहुंचे हुए हैं और अपने अपने जो पैम्पलेट्स हैं उनको लेकर अपने अपने
1: होगा, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। उधर चुनावी तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी ने अहम बैठक बुलाई है। सुबह 11 बजे लखनऊ में होने वाली बैठक में 75 जिलों के एसपी अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष शामिल होंगे। बैठक में अखिलेश यादव ने ये अपडेट साथ में उसमें लेंगे कि अब तक कितने नाम उनके क्षेत्र में जुड़े और कितने जुड़ना अभी भी बाकी है। तो एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव का। समर्थ, चुनावी सरगर्मियां इतनी तेज हो गई हैं कि एक ही दिन सभी की बैठकें।
8: देखिए, यूपी का चुनाव है और हर दल इस कोशिश में है कि कैसे अपना वोट बढ़ाया जा सके और प्रदेश की सत्ता हासिल की जा सके। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ बीएसपी है और तीसरी तरफ समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी की कोशिश यह है कि जो भी फॉर्म 16 के जरिए नाम कटे हैं, अगर उनको कैसे हम अपने अपने तरीके से बढ़ा सकें, क्योंकि चुनाव आयोग ने एक प्रक्रिया भी बताई थी कि अगर किसी का नाम कट गया है तो इस प्रक्रिया के तहत आप उसको बढ़ा सकते हैं। फॉर्म 16 समाजवादी पार्टी के लिए बहुत अहम है। पिछले चुनाव में भी हमने देखा था कि किस तरीके से उन्होंने कार्यकर्ताओं को ये बातें समझाई थी। आज प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों को समाजवादी पार्टी कार्यालय बुलाया गया है। तमाम विधायक सांसद भी पार्टी कार्यालय कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच सकते हैं और अखिलेश यादव जिलेवार ये अपडेट लेंगे कहीं ना कहीं कि वहां पर फॉर्म 16 की स्थिति इस वक्त क्या है, क्या कहीं ज्यादा वोट कटे और अगर कटे हैं तो क्यों कटे हैं, उसको लेकर ज्ञापन भी चुनाव आयोग में पार्टी दे सकती है और अगर कहीं पर प्रक्रिया में कुछ ढीलापन है तो कहीं ना कहीं अपने अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको समझाते भी नजर आएंगे। जी
1: शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो यूपी में चुनाव से पहले बीजेपी और एसपी में जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो योगी सरकार पर जेपीएनआईसी से लेकर एक्सप्रेसवे और राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर हमलावर हैं। दूसरी ओर बीजेपी अखिलेश सरकार के दौरान जो खर्च और योजनाओं पर सवाल खड़े होते रहे हैं उनको उजागर कर रही है।
9: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार हो रही है और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है सियासत में नए पुराने सवालों की फाइलें खुल रही हैं और आरोपों की धार तेज हो रही है। इस राजनीतिक लड़ाई का ताजा केंद्र बना है लखनऊ का जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र यानी जेपीएनआईसी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जेपीएनआईसी को लेकर संगीन आरोप मढ़ाए।
10: इनके मॉडल हैं, वो मॉडल इनके जेब भरने वाले हैं। जेपीएनआईसी बीजेपी ने जेपी बेच दिया।
9: इसके जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेपीएनआईसी के निर्माण की लागत और खर्च पर सवाल उठा चुके हैं। सीएम योगी का दावा है कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचार के जीवंत स्मारक, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए जिसने जीवन खपा दिया उन जेपी के नाम पर बने स्मारक को बनने में 200 करोड़ लगने थे लेकिन खर्च कर दिए 864 करोड़, इसके बावजूद काम अधूरा रहा। सीएम योगी ने इन आंकड़ों के आगे अखिलेश यादव के परिवारवाद को भी कटघरे में खड़ा किया।
11: सब कुछ इनके लिए बनेगा, कमाई इनके घर में जाएगी, जिसमें कौन है उसमें अखिलेश यादव हैं, डिंपल यादव हैं, धर्मेंद्र यादव हैं।
9: अखिलेश यादव लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से जुड़े निर्माण कार्यों और सड़क धंसने की घटनाओं को लेकर सरकार पर निशाना साध चुके हैं। उनका आरोप है कि निर्माण में गुणवत्ता के मानकों की अनदेखी हुई और सरकारी बजट के इस्तेमाल पर सवाल खड़े होते हैं। वहीं बीजेपी का तर्क है कि सड़क निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में यूपी ने बड़े पैमाने पर काम किया है और विपक्ष राजनीतिक आरोपों के जरिए विकास के काम को निशाना बना रहा है। भ्रष्टाचार की इस राजनीतिक बहस में राम मंदिर चंदे का मुद्दा भी पहले अखिलेश यादव के निशाने पर रहा है।
10: मंदिर में चोरी करने वाले धर्मद्रोही अधर्मी गिरोह है ये भारतीय जनता पार्टी।
9: राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर यूपी में लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, आस्था राजनीति और पारदर्शिता के बीच खींची जा रही एक राजनीतिक रेखा की भी है जिसको लेकर सीएम योगी समाजवादी पार्टी की दुखती रग पर हाथ रख चुके हैं।
11: समाजवादी की पीड़ा भी यही है कि जिन राम भक्तों पर हमने गोली चलाई थी अंततः राम भक्तों का संकल्प पूरा हुआ, जो राम भक्त नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे।
9: अब सवाल यह है कि 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार कितना बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा, क्योंकि यूपी में चुनाव सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, यहाँ सड़क बिजली पानी कानून व्यवस्था रोजगार और विकास के साथ साथ सरकार की नीयत और भरोसे का सवाल भी वोट में बदलता है। इसलिए अखिलेश यादव के लिए चुनौती है कि इन आरोपों को वो एक व्यापक राजनीतिक नैरेटिव में बदल पाते हैं या नहीं, और बीजेपी के सामने चुनौती है कि वो अपने शासन के दौरान उठे सवालों का जवाब सिर्फ विपक्ष पर पलटवार करके देगी या ठोस आंकड़ों और कार्रवाई के जरिए देगी। आज तक ब्यूरो।
1: वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद।
13: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुमा केसरी।
1: एक दो एक श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
3: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
4: लायन डेट नट बाइट्स।
5: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
8: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
9: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
10: सोच बदलो और बैंक भी।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
12: इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: लिए ट्रैप।
1: चल
2: शाइनर शाइनर
3: इंडिगो पीयू इनामल का सुपीरियर शाइन बन गया इन शैतानों का इंपैक्ट प्लेयर।
1: इंडिगो पीयू इनामल, इसकी शाइन से सब।
4: श्राम

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: In association with
4: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
5: 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, पहले प्रधानमंत्री हमारे नेहरू जी बने। उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे पहले प्रधानमंत्री बनते तो भारत की क्या दिशा और दशा होती?
6: ये तुमने सवाल क्वेश्चन किया, ये संसद में होता तो बड़ा मजा आता। तरी की एक पार्टी बोलती कि कश्मीर हमारा होता, अफगानिस्तान तक हम कब्जा कर लेते, पब्लिक बाहर सुन के ताली वाली ही बजाती।
7: नोवा कोटा से ऊपर मैं त्रिशूली में।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

आज बिश्केक के एससीओ समिट में एक मंच पर होंगे पीएम मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग। रूसी राष्ट्रपति से होगी प्रधानमंत्री की मुलाकात। कारोबार और ऊर्जा संकट पर होगी बात। यूपी में आज 2027 के सभी चुनावी योद्धाओं का शक्ति प्रदर्शन। वर्कशॉप में बीजेपी कार्यकर्ताओं का महाजुटान, तो समाजवादी पार्टी करेगी जिला पदाधिकारियों के साथ संवाद। मायावती की भी मीटिंग। शुद्धिकरण विवाद में राहुल गांधी पर हल्द्वानी में एफआईआर। एससीएसटी एक्ट के तहत अनुसूचित जाति के युवक ने दर्ज कराया केस। जातिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। 100 घंटे के अंदर यूपी एसटीएफ ने किया अंकित बारियान के दो हथियारों का एनकाउंटर। शामली में गोगी गैंग के शूटर्स ढेर। सुमित और मोहित नाम के बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़, बाकी दो की तलाश। नेपाल में कम नहीं हुआ कुदरत का क्रोध, फिर उफान पर त्रिशूली नदी। तेज धार में बहा पुल, मौत का आंकड़ा 903 तक पहुंचा, 2500 से ज्यादा अब भी लापता।

0: एक बार फिर से स्वागत है। अब बात मानसून के कहर की, जिसका शहर शहर में असर दिख रहा है। मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ जाने से चित्रकूट में सैलाबी संकट दिख रहा है। नदी किनारे घाट डूब गए हैं, शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है, लोग संकट में घिरे हुए हैं। वहीं प्रयागराज में गंगा और यमुना का रौद्र रूप दिख रहा है, जिसके चलते बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नदी के किनारे वाले इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों में पानी घुस गया है। यही नहीं, यूपी के कई शहरों में ऐसे ही हाल देखने को मिल रहे हैं। बाराबंकी में सरयू नदी में उफान है तो वाराणसी में गंगा घाट डूब चुके हैं। आलम यह है कि गलियों में दाह संस्कार किया जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं चित्रकूट में आए सैलाबी संकट की, जहां मंदाकिनी नदी का बढ़ा हुआ जलस्तर भारी आफत फैला रहा है। नदी किनारे घाट डूब गए हैं, शहर में कई इलाकों में पानी भर गया है, लोग संकट से घिरे हुए हैं। लोगों की मदद के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
1: अभी आप आसमान देखिए, मौसम कैसा है?
2: ये इधर कुछ दो आदमी लाल जाने के होंगे।
3: पानी में तैरता हुआ शहर देखा है कभी? अब देख लीजिए, जहां सड़कें थी वहां नाव चल रही है। शहर में सैलाब आया है, दुकान मकान सब पानी में डूबे हुए। भारी बारिश के बीच मंदाकिनी नदी उफनाई तो लहरें जद पार कर शहर तक पहुंच गई। चित्रकूट के कई इलाकों से आफत की तस्वीरें सामने आने लगी।
4: चित्रकूट जनपद में मंदाकिनी नदी ने रौद्र रूप धारण कर पिछले 23 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिससे कल मंदाकिनी नदी लगभग 9 मीटर के ऊपर बह रही थी, जिससे रामघाट का जो एरिया था पूरी तरीके से जलमग्न हो गया था। जिन सड़कों पर कभी वाहन चलते थे वहां नाव चलने लगी थी। मंदाकिनी नदी के बाढ़ की स्थिति इतनी भयावह हो गई थी कि मध्य प्रदेश प्रशासन को यहां से हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू करना पड़ा है, और SDRF टीम जो यूपी प्रशासन था, SDRF टीम और PAC टीम को लगा करके जो लोग अपने घरों में फंसे थे उनको रेस्क्यू करके बचाया गया है।
3: बाढ़ ने चित्रकूट का ऐसा बुरा हाल कर दिया है कि कई इलाकों में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। घर डूबे हुए, लोग फंसे हुए, बारिश के बीच लोग भारी मुसीबत झेल रहे हैं। शहर की एक एक तस्वीर बता रही है कि यहाँ का हाल कितना बुरा है। हालात इतने खराब है कि कहीं आने जाने के लिए सड़कों पर भी नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। प्रशासन कुछ इस तरह से लोगों तक मदद पहुंचा रहा है।
1: अभी आप आसमान देखिए, मौसम कैसा है? ऊपर बोर्ड पे अगर खाना है तो दे दो, जो बचे हैं उनको खाना दे दो, निकालो इनको भाई, आप लोग बचा सकते हो उनको उतारो।
3: दिन ब दिन स्थिति बेहद खराब हो रही है। लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए कई टीमों की तैनाती की गई।
5: लगभग 10 टीम्स और अभी एक्सपेक्टेड हैं, अब वर्तमान में रास्ते में हैं और अतिशीघ्र ही यहाँ पहुँचने वाली हैं। उसके माध्यम से तत्काल यहाँ पे जो रामघाट है, संबंधित एरियाज हैं जहाँ पे भी जल भराव की स्थिति है, वहाँ पर इन टीम्स को डिप्लॉय किया जा रहा है। उन टीम्स को डिप्लॉय करके जल्दी जो है वो सभी लोग जो भी अपने घरों में हैं उनको रेस्क्यू कर लिया जाए।
3: चित्रकूट में मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ बेहद भयावह हो चुकी है। नदी लगातार खतरे के निशान के ऊपर बह रही है।
6: इस हम खड़े हैं रामघाट पे, जहाँ मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो मंदाकिनी नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण जो मंदाकिनी नदी का बाढ़ का पानी है वह जो रामघाट एरिया है, जो कस्बा है, वहां पर पहुंच गया है। जो बनी दुकानें, यहां पर सैकड़ों दुकानें हैं जो जलमग्न हो चुकी हैं। लोग अपनी जान बचाकर घरों के छतों के ऊपर पहुंच गए हैं। जो मठ मंदिर है पूरी तरीके से डूब गए हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो यह घर है किस तरीके से जो जलमग्न हो गया है। यहाँ पर लोग अपने घरों के छतों पर यहाँ पर बैठे हुए हैं और बाढ़ के पानी के कम होने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ से लगभग आधा दर्जन से लोगों का गाँव का संपर्क टूट गया है।
3: हालात इतने खराब हैं कि लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों की छतों पर बैठे हुए हैं। प्रशासन लोगों को प्रभावित इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश में लगा है। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है।
7: और पानी का जो जलस्तर वो निरंतर घट रहा है, तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप अपना संयम बनाए रखें पूरी प्रकार से। जहां पे भी जो लोग भी फंसे हुए हैं वहां पर हमारे द्वारा जो है वो फूड पैकेट, पानी, पीने के पानी की व्यवस्था सभी को पहुंचाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। लगभग 1000 से ऊपर जो है वो फूड पैकेट, पीने के पानी जो है वो ऑलरेडी हम मल्टीपल राउंड्स में वितरित कर चुके हैं।
3: संकट पड़ा है, सैलाब की मार से शहर सहमा हुआ है, कई लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है। ऐसे में प्रशासन ने रैन बसेरों का भी इंतजाम किया है ताकि लोगों को राहत पहुंचाई जा सके।
7: आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि हमारे यहां पर रैन बसेरा नगर पालिका जो यूपी टूरिज्म चौराहे के पास है, वहां पर रात पे रुकने की, खाने की, चाय इत्यादि सभी प्रकार की व्यवस्थाएं जो है वहां पर की गई है। अगर किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता है कि वहां पर रुकने की जरूरत है या कहीं पे किसी का रेस्क्यू किया गया है, कहीं पर भी जल भराव की स्थिति है, तो आज आप आने वाले समय में जो है वहां पर रुक सकते हैं, सभी व्यवस्थाएं की गई हैं।
3: अब इन तस्वीरों को देखिए, ये नेशनल हाईवे 35 पर झांसी मिर्जापुर मार्ग पर बना पुल था जिसे मंदाकिनी की लहरें अपने साथ बहा ले गई।
6: हम खड़े हैं उसी मंदाकिनी रोड के पुल पर, जहां इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह मंदाकिनी नदी का मेन पुल है जो NH 35 पे यह पुल बनाया गया है जो शहर को जोड़ता है, उसी रास्ते से प्रयागराज के लिए जाया जाता है। लेकिन कल मंदाकिनी नदी का जल स्तर इतना बढ़ गया था कि पुल के ऊपर से यहाँ पानी बह रहा था, जिसके कारण जो मंदाकिनी नदी के पुल का अप्रोच रोड है वह उसका रोड का लगभग 20 मीटर नीचे धस गया है, जिसकी वजह से ये अप्रोच रोड का जो एक कोना है वह हट गया है। यहाँ पर पुल को बनाने के लिए जो कर्मी है यहाँ पर लगे हुए हैं।
3: चित्रकूट की स्थिति को देखते हुए यूपी और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों का प्रशासन अलर्ट पर है। अधिकारियों की टीमें लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचे और उन तक मदद पहुंचाई। दिन रात लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि यहां अभी बारिश का दौर पूरी तरह थमा नहीं है। अगर मौसम की मार ऐसी ही जारी रही तो स्थिति और खराब हो सकती है। अखिलेश कुमार सोनकर, चित्रकूट आज तक।
0: चित्रकूट के हालात आपने देख लिए, अब आपको प्रयागराज की तस्वीरें दिखाते हैं जहां गंगा और यमुना ने रौद्र रूप धर लिया है। गंगा के किनारे वाले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं, लोगों के घरों में पानी घुस आया है, लोग अपने सामान के साथ दूसरी सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट हो रहे हैं।

0: देखते ही देखते ये पूरा ट्रक पानी में समा गया। इतना पानी कि डूबे हैं मकान, डूबी हैं दुकानें, डूबे हैं मैदान, डूबी है सड़क, डूबा है शहर, मचा है कहर। ये प्रयागराज की तस्वीरें हैं। गंगा और यमुना में ऐसा उफान आया कि शहर पानी पानी हो गया। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बढ़ते जलस्तर का असर अब शहर की प्रमुख सड़कों पर साफ दिखाई देने लगा है। प्रयागराज का दारागंज इलाका लबालब है। लोग अपना सामान सुरक्षित जगहों पर ले जा रहे हैं।
1: ये प्रयागराज का दारागंज इलाका है और इस दारागंज इलाके में दशाश्वमेध घाट है। यहाँ पर भी गंगा का पानी सड़कों पर आ गया है और लोग अपना सामान इसी तरह निकाल रहे हैं, क्योंकि अचानक लोगों का कहना है कि पानी आया और इनकी जो दुकानें हैं वो पानी में डूब गई हैं, और इस तरह से ये अपना सामान पानी से सुरक्षित बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि ये परेशानी इनका कहना हर साल की है और ऐसे ही इनको हर साल परेशान होना पड़ता है। अपना सामान ये लोग निकाल रहे हैं क्योंकि ये दुकानदार हैं और इनका जो सामान है इस बाढ़ के पानी में डूबता जा रहा है। यहाँ पर सब्जियों की दुकानें लगा करती थी, लेकिन बाढ़ की वजह से यहाँ पर भी इनका सामान डूब रहा है। कुछ लोग अपना सामान निकाल रहे हैं, लेकिन लगातार ऐसे ही जलस्तर बढ़ता रहा तो ये पूरी सड़क भी पानी से भर जाएगी।
0: लोग परेशान हैं, जाए तो कहाँ जाए।
2: औरतों का भाई अब का करी, मने हटाई पढ़ाई है ये, अब अकाउंट लगवा है तो दाम नहीं मिल के अकाउंट है ले दुकान दौड़े तक। अरे रहा सब्जी और दुकान रखे रहे ऐसे किराना रहा
3: सब।
2: अरे हमारा तो पूरा दुकान सब दब पाही गवा।
4: परेशानी क्या बड़े, परेशानी आने जाने में तकलीफ होती है और सब्जी साग खरीदने में, और प्लस आपका यहाँ मतलब इतने गंगा जी बढ़ जाती हैं कि मतलब नाव भी चलती हैं और समस्याएं तो बहुत है। अब क्या बताएं।
3: अच्छा सड़कें सामान भी डूब रहा है।
4: हाँ सामान तो डूबता ही है,
3: दुकानें डूब रही
4: है। हाँ दुकान भी डूबते, नुकसान भी होता है, ऐसा नहीं नुकसान नहीं होता, नुकसान भी होता।
3: अच्छा जब पानी बढ़ जाता है तो किस तरह से आने जाने का सारा नाव रहता है।
4: नाव नाव के अलावा कोई रास्ता ही नहीं इधर।
3: अभी तो बढ़ेगा।
4: हाँ अभी तो बढ़ेगा, अभी बढ़ेगा लगभग एक मंजिल तक, एक मंजिल दो मंजिल भी जा सकता है।
0: इसी तरह बक्सी बांध के पास गंगा पथ पूरी तरह पानी में डूब गया। यहीं पर इस ट्रक को पानी ने अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते ट्रक का अधिकांश हिस्सा पानी के बाढ़ में समा गया। बताया जा रहा है कि जलस्तर बढ़ने के बाद गंगा पथ पर पानी भर चुका था, लेकिन ड्राइवर ने उसी रास्ते से ट्रक निकालने की कोशिश की और ट्रक बीच गहरे पानी में फंस गया। ये तो शुक्र था कि ड्राइवर ने किसी तरह अपनी जान बचा ली। गंगा के बढ़ते जलस्तर का असर नागवासुकी रोड यानी मरीन ड्राइव पर भी देखने को मिल रहा है। सड़क पर कई फीट तक पानी भर जाने से रास्ते को बंद कर दिया गया है। शाम के समय बड़ी संख्या में लोग जिस मरीन ड्राइव पर घूमने आते थे, वहां चारों ओर बाढ़ का पानी नजर आ रहा है। सड़क के जलमग्न होने से आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया है।
1: हम इस वक्त नागवासुकी रोड पे है और गंगा यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस नागवासुकी रोड में बाढ़ का पानी अब रास्तों पर आ गया है। इसे मरीन ड्राइव कहते हैं। शाम के वक्त लोग यहाँ घूमने और अपना मन बहलाने आते हैं, लेकिन यहाँ पर पानी बढ़ने के कारण सड़कों पर पानी आ गया है, लोगों के घर डूब रहे हैं और यहाँ पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी है ताकि यहाँ पर लोग गहरे पानी में ना जाएं। और यहाँ पर लगातार दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण सड़कों पर पानी आ गया है। ये सलोरी बघाड़े का इलाका है जहाँ पर ये बाढ़ का पानी आने से लोगों को घरों में पानी अब जाने से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। और पीछे की तरफ यहाँ पर गंगा पथ है जो कि कुंभ के दौरान 2019 में बनाया गया था, जिसमें एक ट्रक गहरे पानी में समा गया है। फिलहाल दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में जो लोग रहते हैं उनकी परेशानी भी बढ़ना तय माना जा रहा है।
5: सिर्फ चित्रकूट और प्रयागराज में ही नदियों में उफान नहीं है, यूपी के कई शहरों में ऐसा ही हाल है। बाराबंकी में सरयू नदी में उफान है तो वाराणसी में गंगा घाट डूब चुके हैं। आलम यह है कि गलियों में दाह संस्कार किया जा रहा है।
0: धसती जमीन और ये कटान खौफनाक है। तस्वीरें बाराबंकी की, देखिए सरयू में उफान आया और आसपास का इलाका पानी पानी हो गया। रामनगर तहसील के गांव केदारीपुर बेलहरी और सरसंडा क्षेत्र में तेज कटान के चलते कई मकान और कई बीघा खेत नदी में समा गए। लगातार हो रही कटान से ग्रामीण और किसान दहशत में है। अब आपको वाराणसी की तस्वीरें दिखाते हैं। गंगा में आई बाढ़ की विभीषिका ने न केवल आम लोगों के जीवन पर असर डाला है बल्कि मोक्ष के रास्ते पर भी एक बड़ी अड़चन बनकर खड़ी हो गई है। बाढ़ के पानी में शमशान घाट डूब गए हैं, जिसके बाद मजबूरी में पक्के घाटों के ऊपर तंग गलियों में मुखाग्नि दी जा रही है।
6: पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में दिखना शुरू हो गया है। दो बार घटने के बाद वाराणसी में गंगा का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि न केवल आम जनजीवन बल्कि मोक्ष के द्वार भी बाढ़ का पानी पहुंच गया है, क्योंकि इस समय हमारी मौजूदगी हरिश्चंद्र शमशान घाट पर है और देख सकते हैं कि बाढ़ के पानी ने पूरे पक्के घाटों को डुबो दिया है, शमशान घाट को डुबो दिया है, जिसकी वजह से इस तंग गली, सकरी गली, गंदगी, उमस, तपिस से होते हुए शव यात्रियों को आना पड़ रहा है।
0: यूपी के बाद बिहार के कटिहार की तस्वीरें देखी। सड़कों पर सैलाब आया है, यहाँ नाव चलने की नौबत आ गई है। लोग नाव के सहारे जरूरी सामान ला रहे हैं। देखिए, जहाँ तक नजर जाती है सिर्फ सैलाब नजर आता है। लोग बाइक को नाव पर लाद कर ले जा रहे हैं। ये स्कूल भी पूरी तरह डूबा नजर आ रहा है। लोग परेशान हैं कि इस समस्या से निजात कैसे मिले।
7: बाहर है पंडित जी।
8: अच्छा,
7: अब बहुत भीषण बाढ़ है।
8: अच्छा,
7: दरवाजा पर पानी पूरा भरा हुआ है, जनता के गलने पर दुख होता है, तकलीफ होता है।
8: तो सरकार की तरफ से नाव का व्यवस्था दिया है?
7: कुछ नहीं दिया है।
8: तो कैसे
9: बाढ़ आज लगभग 15 दिन से है।
8: अच्छा, कौन कौन गांव बाढ़ में डूबा हुआ है?
9: मोहना चांदपुर 83 धुरिया ही पंचायत पड़ता है, मोहना चांदपुर पंचायत है, भवानीपुर है, ये पूरा बाढ़ से डूबा हुआ है।
8: अच्छा, कैसे आप लोग आना जाना कर रहे हैं?
9: नाव से।
8: अच्छा, सर, प्राइवेट नाव है, सरकारी नाव?
9: प्राइवेट नाव, सरकारी नाव नहीं है।
8: पैसा भी लगता है जाने में?
9: हाँ।
8: कितना लेता है?
9: 40 रुपया लेता है गाड़ी आदमी से, हम लोग का।
10: अच्छा, पानी हो गया है, पानी के टेंशन से यहाँ नीचे ऊपर में आए हैं, और न पखेना का साधन है, न पानी का साधन है, न लाइन का साधन है। यही
0: कटिहार में बाढ़ क्षेत्र का मुआयना करने कांग्रेस नेता तारिक अनवर पहुँचे।
11: स्थिति तो बहुत गंभीर है मोहना चांदपुर का, और इसीलिए आए जब हमको जानकारी मिली कि पूरे गाँव में करीब 7-8 वार्ड में पानी घुस चुका है और चारों तरफ से यहाँ गांव में लोग घिरे हुए हैं। तो वो ये वस्तु स्थिति को जानने के लिए, देखने के लिए हम सब लोग आए थे।
0: नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और इसी के साथ बढ़ रही है लोगों की समस्याएं, जिनसे निजात कब मिलेगा मालूम नहीं। आज तक ब्यूरो।
5: एक बड़ी खबर जो दिल्ली से आ रही है, एक शर्मसार कर देने वाली खबर। दिल्ली में स्लीपर बस में एक 16 वर्षीय छात्रा के साथ गैंग रेप की वारदात सामने आई है। दरअसल कश्मीरी गेट इलाके में स्लीपर बस में 16 साल की छात्रा के साथ गैंग रेप हुआ है। पुलिस ने गैंग रेप के आरोपी ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल वारदात 4 अगस्त की रात की बताई जा रही है। पीड़िता उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की रहने वाली थी और 11वीं क्लास में पढ़ती है। पीड़िता के मुताबिक दरअसल ड्राइवर और कंडक्टर ने उसके साथ रेप किया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। आरोपी पीड़िता को देर रात कश्मीरी गेट बस अड्डे के पास रिंग रोड पर उतारकर फरार हो गए। घबराई हुई छात्रा ने कश्मीरी गेट पुलिस से संपर्क किया और पूरी घटना की जानकारी दी। तो खबर ये आ रही है कि पुलिस ने दोनों आरोपियों को तिमारपुर की एक बस पार्किंग से गिरफ्तार कर लिया है। हमारे सहयोगी अरविंद ओझा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या पता चल रहा है इस मामले में?
12: देखिए, जो ड्राइवर है कुलदीप और जो कंडक्टर है संदीप, उन दोनों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और जो पीड़िता है उसने बताया कि जो ड्राइवर और कंडक्टर है उसने नोएडा के परी चौक इलाके से लड़की को बिठाया था और उसके बाद चूंकि बारिश हो रही थी तो नोएडा ही में ही चलती बस में दोनों ने गैंगरेप किया और उसके बाद दिल्ली के ISBT बस अड्डे पर उतार दिया। उसके बाद दिल्ली पुलिस को जब जानकारी मिली तो मामला चूंकि बेहद संवेदनशील था लिहाजा दिल्ली पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज किया और तिमारपुर इलाके से जो ये लग्जरी स्लीपर बस है अगर आप देखें तो चारों तरफ से ये पैक्ड है बंद है इसको रिकवर किया और साथ ही साथ जो ड्राइवर और कंडक्टर है उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि वारदात 4 अगस्त की है और जैसे ही जानकारी मिली थी तुरंत एक्शन लिया गया FIR दर्ज की गई और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जी
5: शुक्रिया अरविंद इस पूरी जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
14: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: नुआ कोटा से ऊपर मैं त्रिशूली में आया हूँ, देख लीजिए सैलाब का ये सितम।
4: ये वही त्रिशूली नदी है जिसमें पानी मलबे के साथ पूरे आवेग के साथ आया।
3: पीछे जो आपको इमारतें दिख रही है ना, वो सारी बिल्कुल खंडहर हो चुकी है।
4: जो निचले इलाके हैं उन सबसे ऊंचाई की तरफ लोगों को जाने के लिए कहा गया है।
5: चितवन में आज तक की टीम मौजूद है और आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं।
3: मैं आशुतोष मिश्रा,
5: रोहित सिंह,
4: श्वेता सिंह, नेपाल आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: भारत में एक मंच पर होंगे पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग। रूसी राष्ट्रपति से होगी प्रधानमंत्री की मुलाकात। कारोबार और ऊर्जा संकट पर होगी बात।
1: यूपी में आज 2027 के सभी चुनावी योद्धाओं का शक्ति प्रदर्शन। वर्कशॉप में बीजेपी कार्यकर्ताओं का महाजुटान, तो समाजवादी पार्टी करेगी जिला पदाधिकारियों के साथ संवाद। मायावती की भी मीटिंग।

0: सुमित और मोहित नाम के बदमाशों से हुई मुठभेड़, बाकी दो की तलाश जारी।
1: नेपाल में कम नहीं हुआ कुदरत का क्रोध, फिर उफान पर त्रिशूली नदी, तेज धार बहा पुल, मौत का आंकड़ा 903 तक पहुंचा।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाद।
0: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव ढौंडिया। शुरुआत करते हैं बुलेटिन के शतक आज तक के साथ।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड में 2 शूटर्स का एनकाउंटर, यूपीएससी अपने हत्याकांड में शामिल दोनों ही शूटर को मार गिराया। शामली में अंकित बालियान की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 संदिग्ध शूटर की पहचान सुमित और मोहित के तौर पर की और दोनों का गोगी गैंग के साथ संबंध। दोनों पर अंकित बालियान की हत्या में शामिल होने का आरोप था और इन पर 50,000 रुपए का इनाम भी था। अंकित बालियान की पत्नी ने मुख्यमंत्री योगी और यूपी पुलिस का जताया आभार, कहा कि सभी आरोपियों को पकड़ा जाए। पुलिस के मुताबिक अंकित बालियान की हत्या में कुल 6 लोगों की भूमिका, इनमें से 2 शूटर ढेर, बाकी 2 शूटर रेकी में शामिल थे, चारों की तलाश जारी। अंकित बालियान हत्याकांड पर एडीजी ने कहा कि योगी सरकार के अपराध के प्रति 0 टॉलरेंस है और इस पॉलिसी को टेस्ट करने की कोशिश कोई ना करे। अंकित बालियान केस में एनकाउंटर में ओपी राजभर ने लिखा, अखिलेश जी खबर पता चल गई ना, किसी बेटे की लाश पर जाट लेकर राजनीति करना संवेदना नहीं, सौदागिरी है। ओपी राजभर ने लिखा कि जिस अंकित बालियान की हत्या पर आप राजनीति करना चाहते थे, उसके हत्यारे वहीं पहुंच गए जहां पर उनकी जगह थी, यानी कि नर्क।
1: हल्द्वानी के रामलीला मैदान में हुए शुद्धिकरण मामले में नया मोड़, श्रीराम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ दी गई तहरीर पर पुलिस ने दर्ज की FIR। राहुल गांधी पर अनुसूचित वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप, राहुल गांधी ने शुद्धिकरण यज्ञ को बताया था दलित विरोधी। शुद्धिकरण विवाद पर कांग्रेस का मौन सत्याग्रह, बारिश में डटे रहे नेता कार्यकर्ता। RSS प्रमुख मोहन भागवत के अमेरिका में विविधता को लेकर दिए गए बयान पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल और AIMM प्रमुख ओवैसी ने साधा निशाना। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने तंज कसते हुए कहा कि भागवत का भाषण सुनकर वो सोचने लगे कि राहुल गांधी बोल रहे हैं या RSS प्रमुख। ओवैसी ने भागवत के हिंदू मुस्लिम एकता वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा, संगठन की कुछ बातें दुनिया के लिए कुछ, RSS सदस्यों के लिए कुछ और होती हैं। मोहन भागवत के हिंदू मुस्लिम वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, उन्होंने कहा विदेश में एकता की बातें और यहां देश की ही बातें। RSS प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर तंज कसते हुए सुप्रिया सुले ने कहा कि जो लोग विदेश जाते हैं वो लोकतंत्र और सबके अधिकारों की बात करते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता पर RSS प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, उन्होंने जो कुछ किया है उसे देश में जमीनी स्तर पर लागू किया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता उदित राज ने भागवत के बयान पर हमला बोलते हुए कहा, राजनीति में सबसे ज्यादा स्वार्थ RSS का है जो बीजेपी का इस्तेमाल अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए करती है।
0: यूपी में 2027 की तैयारियां तेज, आज लखनऊ में बीजेपी SP BSP की बड़ी बैठक है। यूपी चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी आज बड़ी कार्यशाला में शामिल होगी नवनियुक्त महामंत्री स्मृति ईरानी। बीजेपी की कार्यशाला में हर जिले से 5 पदाधिकारी होंगे शामिल, सीएम योगी दोनों डिप्टी सीएम समेत 700 पदाधिकारी जुटेंगे, संगठन और जमीनी रणनीति पर मंथन। राष्ट्रीय महामंत्री बनने के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे बीजेपी मुख्यालय हरीश द्विवेदी, कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी का विपक्ष नेताओं पर निशाना बोले कि योगी सरकार में खत्म हुआ गुंडा राज, 2027 में फिर जीत का दावा। 2 सितंबर को होगी राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक, सीईओ की नियुक्ति को लेकर स्थायी सुरक्षा समिति के गठन समेत कुल 12 मुद्दों पर चर्चा। राम मंदिर ट्रस्ट के 2 सत्रों में बैठक होगी, सीईओ नियुक्ति के लिए अलग पैनल मंथन और सर्च कमेटी के सदस्य अयोध्या पहुंचेंगे आज। राम मंदिर के नाम चेन्नई की महिला ने 4 करोड़ का चेक दिया, खाते में सिर्फ 3 रुपए होने पर भुगतान अटक गया, श्रद्धालु के खिलाफ बैंक भेजेगा नोटिस। आज लखनऊ में SIR को लेकर समाजवादी पार्टी की अहम बैठक पर

0: सत्तर जिलों के जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष इसमें होंगे शामिल। फॉर्म 6 पर अखिलेश यादव लेंगे जिलाध्यक्षों से अपडेट, नाम जोड़ने का डेटा और चुनावी तकनीकी ट्रेनिंग पर भी चर्चा।
1: आज मायावती की लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस, यूपी चुनाव को लेकर बीएसपी बताएगी अपनी रणनीति। आज लखनऊ में बीजेपी का सेवा संकल्प अभियान वर्कशॉप, आगामी बड़े राष्ट्रव्यापी अभियान के लिए राज्य स्तर पर योजना बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीरे फॉर्मूले पर एआईएमआईएम ने साधा निशाना। एआईएमआईएम नेता शादाब चौहान ने कहा कि अगर अखिलेश मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो उन्हें ओवैसी का साथ लेना होगा। पार्टी नेता शादाब चौहान ने यहां तक कहा कि जब तक अखिलेश यादव के पीरे में ए फॉर ओवैसी नहीं, असदुद्दीन ओवैसी नहीं होता, तब तक वो सत्ता का सपना नहीं देख सकते। लखनऊ में हिंदूवादी नेता धीरेन्द्र प्रताप सिंह की गोली मारकर हत्या, नहर मिला शव, ड्राइवर ही निकला कातिल, दो गिरफ्तार। ड्राइवर पर ही विरोधियों से मिलकर जमीन की रंजिश में हत्या कराने का शक, उन्नाव में एक जमीन का विवाद था जिसे लेकर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी ड्राइवर सहित दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही, घटना के खुलासे के लिए 6 टीम लगाई गई है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच की और हत्या में इस्तेमाल हथियार, कार समेत अन्य सबूत को कब्जे में लेकर पड़ताल। सीएम योगी ने पाती लिखकर प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी, बोले सत्य और अन्याय के अंधकार के बीच सत्य और धर्म का प्रकाश है।
0: नेपाल में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा, अब तक 903 लोगों की मौत, रास्ते में लापता लोगों की संख्या 2500 के पार है। भारत की 19 सदस्यीय फॉरेंसिक टीम ने नेपाल बाढ़ पीड़ितों की डीएनए की पहचान के लिए काठमांडू में काम किया शुरू। भारत की खास टनल रेस्क्यू टीम का चिली में और लांगटांग में क्षतिग्रस्त हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साइट्स पर नेपाली सेना के साथ मिलकर संयुक्त अभियान जारी। रसुवा में भोटेकोशी नदी के नई तस्वीर आई सामने, भोटेकोशी नदी में जबरदस्त उफान। नेपाल में बाढ़ से डूबी बैंक शाखा से 50 करोड़ का बताया जा रहा सोना बरामद हुआ और नकदी भी मिल गई। एमपी के सतना में लगातार हो रही बारिश के बाद हालत गंभीर, पानी में डूबा रेलवे ट्रैक, कर्मचारियों ने ट्रैक की जांच के बाद ट्रेनों को किया रवाना। प्रयागराज में बढ़ते गंगा यमुना जलस्तर पर जनजीवन पर इसका इंपैक्ट, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया प्रभावित। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं लोग। लद्दाख के कारगिल में बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात, अचानक आए सैलाब के साथ मिट्टी संग बहकर बड़े बड़े बोल्डर पत्थर आए। फ्लैश फ्लड में अभी तक किसी की हताहत होने की खबर नहीं है, प्रशासन की ओर से नुकसान का आकलन किया जा रहा है।
1: हरिद्वार में तेज बारिश के बीच गिरी आकाश में बिजली, हादसे में कोई हताहत नहीं। कांगड़ा घाटी में जोरदार बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त, पानी भरने के कारण स्थानीय लोगों के साथ तीर्थयात्री फंसे। जापान के फुकुई में रिकॉर्ड तोड़ और मूसलाधार बारिश के कारण कई हिस्सों में आई बाढ़, कई नदियां उफान पर। स्थानीय प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों के लाखों नागरिकों की सुरक्षा और तुरंत एहतियाती कदम उठाने के दिए निर्देश। राहत और बचाव काम जारी, लोगों से सुरक्षित स्थानों या इमारतों के ऊपरी मंजिल पर रहने की अपील की गई। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी में आई भीषण बाढ़ ने मचाई तबाही, रामघाट किनारे बने कई घर क्षतिग्रस्त, खतरे के निशान से ऊपर है जलस्तर। चित्रकूट में मंदाकिनी का पानी यमुना में पहुंचा, बैकफ्लो से राजापुर के करीब 10 गांवों का संपर्क टूटा। दमन में एक लाइफगार्ड की सतर्कता और सूझबूझ से 7 साल की लड़की डूबने से बची, खेलने के दौरान हुआ हादसा। हापुड़ में गंगा एक्सप्रेसवे पर हादसे में थार कार सवार 4 युवकों की दर्दनाक मौत, एक युवक की हालत गंभीर। मुंबई पोर्ट पर जहाज पर गिरी 140 टन की क्रेन, भीषण आग से हड़कंप, 2 ऑपरेटर घायल।
0: बिजनौर में घायल महिला को थाना प्रभारी गोदी में उठाकर अस्पताल ले जाते देखे, पीछे चलती दिखी पुलिस की गाड़ी का वीडियो वायरल, सवाल भी उठे। बगह में गंडक नदी के कटाव से बचाव के लिए कटाव विरोधी कार्य की धीमी रफ्तार से विधायक नाराज, बोले कि 9 साल में भी पूरा नहीं हुआ काम। बगह में चंपारण हम सफर एक्सप्रेस से निकला धुआं, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल, आग की आशंका से यात्रियों में अफरा तफरी। तमिलनाडु पुलिस ने मणिपुर में मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी के सूटकेस से महिला के शरीर के टुकड़े मिलने से सनसनी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली डैम का भंडाफोड़, जंगल से विस्फोटक बरामद। नोएडा ग्रेटर नोएडा के पास यमुना एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा, ट्रक डिवाइडर तोड़कर कार पर जा गिरे, 4 लोगों की मौत। ट्रक चालक को पुलिस ने हिरासत में लिया, हादसे के बाद मौके से पर अफरा तफरी मची, पुलिस बल भी तैनात हुआ। गाजियाबाद में मामूली विवाद को देखते ही यह खूनी संघर्ष में तब्दील, हिंसक झड़प में 50 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर मौत, कई लोग घायल। गांव में तनाव को देखते हुए एहतियातन पुलिस बल तैनात किया गया और पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। सहारनपुर में गौकृषि की कोशिश कर रहे बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ पुलिस के साथ मुठभेड़, पैर में लगी गोली, आरोपी गिरफ्तार।
1: दिल्ली में स्लीपर बस में 16 साल की लड़की के साथ गैंगरेप, मामले की जांच जारी। मैनपुरी में ट्रैफिक सिपाही से मारपीट की घटना के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की, आसपास किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर अभियान तेज। गोरखपुर में मां से नाराज होकर किशोरी ने की पानी की टंकी से कूदने की कोशिश, महिला दरोगा ने सूझबूझ से बचाई जान। और अरैया में 9 साल का मासूम खेलते हुए गहरे कुएं में गिरा, फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर सुरक्षित बाहर निकाला। कुकटपल्ली के अस्पताल के पास नर्स की हत्या, इलाके में मचा हड़कंप, जांच में जुट गई है पुलिस। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में खौफनाक हादसे में बाल बाल बची बुजुर्ग की जान, देवदूत बनकर आसपास के मौजूद दुकानदारों ने करंट लगने से बचाया। मुंबई के बांद्रा में एक तेज रफ्तार कार ने 8 वर्षीय बच्चे को कुचला, मौके पर मौत, पुलिस ने महिला ड्राइवर को किया गिरफ्तार। तमिलनाडु के मदुरई में नाबालिग ने की आत्महत्या, स्कूल में एडमिशन के दौरान जातिगत अपमान से हुई थी आहत। नोएडा में पिता ने 5 साल के बेटे को मारा मुक्का, बच्चे ने तोड़ा दम, आरोपी पिता हिरासत में। झारखंड के गढ़वा में अंधविश्वास की खौफनाक वारदात, एक महिला को जान बताकर लोगों ने खौलता पानी फेंका, महिला हुई जख्मी, 6 गिरफ्तार।
0: लखनऊ में वकीलों के चैंबर पर बुलडोजर एक्शन, हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद लखनऊ नगर निगम की टीम ने की कार्रवाई। ऋषिकेश अंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आगरा खाल के पास में सीमेंट से भरा हुआ ट्रक पलट गया, हादसे में ट्रक चालक की बाल बाल बच गई जान। यूपी के झांसी में 4 से 5 दिन पुराना और नग्न हालत में मिला बुजुर्ग दंपत्ति का शव, हत्या की आशंका। दिल्ली के प्ले स्कूल में 3 साल के बच्चे के साथ मारपीट, पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज, मेड को भी पुलिस ने हिरासत में लिया, टीचर की भूमिका भी संदिग्ध। अमृतसर में श्री हरि मंदिर साहिब के पास में होटल में बवाल पहचान पत्र मांगने पर भड़के युवक साथियों के साथ मारपीट की। भारत ने विमेंस T20 एशिया कप में जीत के साथ की शुरुआत, टीम ने रविवार को थाईलैंड को 94 रन से हरा दिया। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में थाईलैंड 160 रन चेस करते हुए 16.3 ओवर में 65 रन पर ही ऑल आउट। प्लेयर ऑफ द मैच रहे शेफाली वर्मा, जिन्होंने 36 गेंद पर 64 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। जर्मनी चौथी बार हॉकी वर्ल्ड चैंपियन फाइनल के में स्पेन को 1-0 से उन्होंने हराया, पाकिस्तान के सबसे ज्यादा 4 खिताब के रिकॉर्ड की बराबरी की।
1: राजकुमार संतोषी की नई फिल्म में सनी देओल की एंट्री, 1996 में रिलीज फिल्म घातक से जुड़े किरदारों की दिखाई जाएगी कहानी। मुसाफिर कैफे की सफलता के बाद विक्रांत मेसी की लगी लॉटरी, फिल्म कर्ण में आएंगे नजर। बिलियनेयर सीरीज में विजय माल्या के रोल में नजर आएंगे अर्जुन रामपाल, नवंबर में शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। हनुमान अंश बनी 2026

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान के दौरे पर हैं, सीधे आपको वहीं ले चलेंगे।
1: ये तस्वीरें हैं, बिश्केक पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। भारतीय समुदाय के लोग यहां पर भी उनका इंतजार करते देखे और उनसे प्रधानमंत्री मोदी मिले भी हैं। ये तस्वीरें हैं जहां उन्होंने नमन भी किया है, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाए दे रहे हैं। एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए बिश्केक पहुंचे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भारत के लिए, लेकिन उससे पहले भारतीय समुदाय के साथ पीएम मिले हैं और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है।
0: इससे पहले छात्रों को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री, और दरअसल इस एससीओ समिट में आज सबसे अहम मुलाकात रूस के राष्ट्रपति पुतिन से आज शाम होनी है भारतीय समय अनुसार, और उससे पहले आज दिन भर का कार्यक्रम इसी तरीके से प्रधानमंत्री का चलता रहेगा, जिसमें बिश्केक में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात के साथ साथ अन्य कार्यक्रम भी शामिल होंगे।
1: तो ये तस्वीर आप इस समय देख रहे हैं, भारतीय समुदाय के लोगों से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की, जो हाथ में तिरंगा लिए हुए पीएम से मिलने के लिए पहुंचे थे, और पीएम ने उनको समय भी दिया, उनके साथ बातचीत भी की और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनको नमन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी दिखे हैं। और 26वां एससीओ समिट बहुत इंपॉर्टेंट है, किस किस से मुलाकात होती है, द्विपक्षीय बातचीत किस किस के साथ होती है, क्या बातचीत होती है, उस पर सबकी निगाहें। लेकिन कार्यक्रम शुरू हो, एससीओ समिट शुरू हो से पहले पीएम के अलग अलग कार्यक्रम और छोटे छोटे से कार्यक्रम, जहां पर पीएम देखिए वहां की संस्कृति को देखते हुए एक पुस्तक भी उनको अब तस्वीरें देखेंगे कि दी गई है।
0: इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से, यहां पर स्लीपर बस में 16 साल की छात्रा से गैंग रेप की वारदात सामने आई। कश्मीरी गेट इलाके में स्लीपर बस में 16 साल की छात्रा से गैंग रेप हुआ है। पुलिस ने गैंग रेप के आरोपी ड्राइवर कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। 4 अगस्त की रात की ये वारदात बताई जा रही। पीड़िता उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की रहने वाली और 11वीं क्लास में पढ़ती है। पीड़िता के मुताबिक उसके बाद ड्राइवर और कंडक्टर ने रेप किया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। आरोपी पीड़िता को देर रात कश्मीरी गेट बस अड्डे के पास रिंग रोड पर उतार कर ये दोनों फरार हो गए। घबराई हुई छात्रा ने कश्मीरी गेट पुलिस से संपर्क कर पूरी घटना की जानकारी दी। दोनों आरोपियों को तिमारपुर के एक बस पार्किंग से गिरफ्तार किया गया। घटना में इस्तेमाल स्लीपर बस को जब्त किया गया है, फोरेंसिक जांच की जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी बस में खराबी आने के बाद बस को सूरजपुर की वर्कशॉप में रिपेयरिंग के लिए लेकर गए थे। रिपेयरिंग के बाद ड्राइवर कंडक्टर खाली बस लेकर तिमारपुर जा रहे थे। इस दौरान परी चौक पर छात्रा उन्हें मिली और यहां से कश्मीरी गेट तक करीब 47 किलोमीटर तक सफर उसने बस में तय किया। बस स्लीपर होने की वजह से उसमें पर्दे लगे हुए थे, इसके कारण किसी भी राहगीर को बस के अंदर दिखाई नहीं दिया।
2: दिल्ली में एक बार फिर से एक ऐसा मामला सामने आया है जो फिर से पूरी दिल्ली एनसीआर को शमसार कर देगा। दरअसल ये मामला चलती बस में एक गैंग रेप का है। 16 वर्षीय मैनपुरी की रहने वाली 11वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की घर से बाहर निकलती है, बस पकड़ के अपने भाई के घर मैनपुरी से नोएडा आना चाहती है, लेकिन उस रात बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से उसे पता नहीं लगा और परी चौक के पास वो बस से उतर जाती है, जिसके बाद वो हाथ देकर एक स्लीपर बस को रोकती है। बस रुकती है और उसे कहती है कि वो सेक्टर 63 तक उसे छोड़ देंगे। बस पे चढ़ने के कुछ देर बाद ही जो बस का कंडक्टर है उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, उसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट करने लगता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने कुछ किया तो उसे जान से मार देंगे। इसके बाद करीब 47 किलोमीटर तक जो वो बस है दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर चलती है। नोएडा में इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद लड़की को कश्मीरी गेट के पास लाकर उतार दिया जाता है और फिर वो लड़की पीड़िता खुद पुलिस के पास पहुंचती है। और यहां आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन है। इसी पुलिस स्टेशन में आकर वो कंप्लेन देती है। लड़की में इतनी हिम्मत थी उस इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी कि वो अक्यूज को आइडेंटिफाई करती है, गाड़ी को आइडेंटिफाई करती है, व्हीकल नंबर को आइडेंटिफाई करती है और उस लड़की के वजह से ही दिल्ली पुलिस जाकर के इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। बस को भी हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से ये हादसा दिल्ली की सड़कों पे हुआ, परी चौक से लेकर के कश्मीरी गेट तक 47 किलोमीटर तक ये जो पूरा हादसा था दिल्ली की सड़कों पर होता रहा, लेकिन एक बार भी किसी भी तरह की जो पुलिस प्रशासन थी या किसी भी पुलिस ने एक बार रोक करके बस को चेक करने की कोशिश नहीं की। आपको ये भी बता दें कि बस में पर्दे भी लगे हुए थे जो कि इलीगल है। दिल्ली में चलती हुई बसों में, चाहे स्लीपर बस हो या कोई और बस हो, किसी भी तरह का ब्लैक फिल्म या पर्दे आप रात को कवर नहीं कर सकते, और अगर पर्दे लगे भी हैं तो रात को चलते वक्त बस की लाइटें ऑन होनी चाहिए और पर्दे खुले होने चाहिए। लेकिन उसके बाद भी इन सारे नियमों का पालन नहीं हुआ, लड़की का रेप हुआ, गैंग रेप हुआ और अब दिल्ली पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि जो आरोपी हैं वो भी कानपुर के हैं, बस का नंबर भी यूपी का है, लड़की भी मैनपुरी की है। लेकिन ये पूरा हादसा एनसीआर में हुआ। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करके जो है आगे की कार्रवाई की है, अक्यूज को हिरासत में ले लिया है और उन्हें अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष झा के साथ अंशुल सिंह आज तक।
1: देश की राजधानी दिल्ली कितनी सुरक्षित है, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, ये तो लगातार सवालों में है। हमारे संवाददाता अंशुल इस खबर पर लाइव इस समय हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। अंशुल ये बताइए, 4 तारीख की घटना है और ये मामला आज सामने आ रहा है, इतने दिनों से ये इस मामले में क्या कोई एक्शन नहीं हुआ या आज ही एफआईआर हुई, पहले इस बारे में बताएं।
2: नहीं, जो पूरा मामला है ये 4 तारीख को ही हुआ था। पुलिस ने जो आरोपियों को भी गिरफ्तार 4 की रात को ही कर लिया था, लेकिन उसके बाद जो पीड़िता थी उसको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने रखा गया था। पीड़िता की काउंसलिंग हो रही थी और काउंसलिंग खत्म होने के बाद जब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने ये सुझाव दिया कि इसको घर वापस भेज सकते हैं, तब घर वालों के पास वो पीड़िता आई और उसके बाद ये पूरा मामला जो है अब सामने आया है। इस वक्त मैं अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये वही बस है जिसमें ये पूरा हादसा हुआ। अगर आप देखें तो ये एक स्लीपर लग्जरी बस है तो बस के अंदर की लाइटें जली होनी चाहिए और जो पर्दे हैं ये पर्दे पूरी तरीके से खुले होने चाहिए। लेकिन 47 किलोमीटर तक दिल्ली की सड़कों पर ये बस चलती रही, किसी ने भी एक बार भी बस को रोक करके ये देखने की कोशिश नहीं की कि आखिर ये पर्दे बंद क्यों हैं, अंदर क्या हो रहा है, कौन लोग मौजूद है। वो तो पीड़िता की हिम्मत है कि वो पहुंचती है पुलिस के पास, खुद पहुंचती है और पूरी वारदात का विवरण पुलिस को देती है, जिसके बाद सीसीटीवी के जरिए पुलिस बस को ट्रैक करती है और फिर अक्यूज को पीड़िता खुद ही आइडेंटिफाई भी कर देती है। लेकिन दोनों जो अक्यूज है उन्हें हिरासत में लेकर के अभी न्यायिक हिरासत में पुलिस ने भेज दिया है। मामले की आगे कार्रवाई चल रही है, लेकिन जिस तरीके से यह हादसा एक बार फिर से दिल्ली की सड़कों पर हुआ है, कहीं ना कहीं ये काफी बड़े सवाल खड़े करता है पुलिस प्रशासन की तैयारी पे और विजिलेंस पे कि कितने विजिलेंट है। और ऐसे हादसों से ये पता लगता है कि जितनी जरूरत है उतनी विजिलेंस हमें सड़कों पर नहीं दिखती।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे शुरू से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, दिखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
6: सोच बदलो और बैंक भी।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: देश की राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश हो रही है और थोड़ी सी देर की बारिश में देश की राजधानी का क्या हाल है ये आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है।
3: हालांकि मुख्य सड़क, आप सोचिए नई दिल्ली की ये मुख्य सड़क है, लेकिन जैसे तेज बरसात शुरू हुई है और काफी मूसलाधार बारिश हुई है, दिल्ली के कुछ इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, तो ज्यादातर जो हिस्से हैं वो रेड अलर्ट की चपेट में हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास अमित वधवार के साथ में आशुतोष मिश्रा। आज तक
4: 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, पहले प्रधानमंत्री हमारे नेहरू जी बने। उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे पहले प्रधानमंत्री बनते तो भारत की क्या दिशा और दशा होती?
5: ये तो तुमने सवाल क्वेश्चन किया, ये संसद में होता तो बड़ा मजा आता। हर तरीके एक पार्टी बोलती कि कश्मीर हमारा होता, अफगानिस्तान तक हम कब्जा कर लेते, पब्लिक बाहर सुन के ताली वाली ही बजाती।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: AU सोच बदलो और बैंक भी।
2: एक्सलेंसी माय ब्रदर, हमारे भव्य स्वागत और आपके मित्रता भरे शब्दों के लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से कल भोजन पर आपने जो मुझे अनुभव कराए, एक एक चीज में आप पर्सनली इन्वॉल्व रहे, इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूं। स्वादिष्ट खाने के साथ साथ मुझे टैलेंटेड बच्चों का गाना और डांस भी देखने को मिला। ऐसा लग रहा था आपने जैसे हिंदुस्तानी खड़ा कर दिया हो, ऐसा लग रहा था आपने मेरा गुजरात ही फिर से यहां एक बार जागृत कर दिया हो। इतना ही नहीं, आपने पूरे शहर को भारत के तिरंगे झंडे के रंगों से रंग दिया, ये भी दिल को छूने वाला था। यह सब दिखाता है कि आप भारत को अपने हृदय के कितना करीब रखते हैं। दो दिन बाद आपके इंडिपेंडेंस डे की 35th एनिवर्सरी है। मैं इस अवसर पर आपको और उज्बेकिस्तान के सभी लोगों को अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सुखद संयोग से हम इस वर्ष अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 15th एनिवर्सरी भी मना रहे हैं।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: आज बिश्केक के एससीओ समिट में एक मंच पर होंगे पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग। रूसी राष्ट्रपति से होगी प्रधानमंत्री की मुलाकात। कारोबार और ऊर्जा संकट पर होगी बात।
1: यूपी में आज 2027 के सभी चुनावी योद्धाओं का शक्ति प्रदर्शन। वर्कशॉप में बीजेपी कार्यकर्ताओं का महाजुटान। तो समाजवादी पार्टी करेगी जिला पदाधिकारियों के साथ संवाद। मायावती की भी मीटिंग।
0: शुद्धिकरण विवाद में राहुल गांधी पर हल्द्वानी में एफआईआर। एससी एसटी एक्ट के तहत अनुसूचित जाति के युवक ने दर्ज कराया केस। जातिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप।
1: दिल्ली में चलती स्लीपर बस में 16 साल की छात्रा से रेप के आरोपी ड्राइवर और कंडक्टर गिरफ्तार। कश्मीरी गेट इलाके में हुई थी वारदात। ग्रेटर नोएडा के परिचौक से बस में सवार हुई थी पीड़ित।
0: नेपाल त्रासदी में बढ़ते आंकड़ों से दुनिया सन। जान गंवाने वालों की संख्या 900 के पार। लापता लोगों की तादाद 4200 के ऊपर। मलबे में ढूंढे जा रहे हैं जिंदगी के निशान।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माह।
0: रणवीर सिंगर और यूट्यूबर अंकित बालियान हत्याकांड में 2 आरोपियों का एनकाउंटर हो चुका। यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शूटर्स को एनकाउंटर में ढेर किया है। मारे गए आरोपियों की पहचान सुमित और मोहित के तौर पर हुई है। दोनों पर अंकित बालियान की हत्या में शामिल होने का आरोप है। इन पर 50,000 का इनाम भी था।
1: 26 अगस्त को यूपी के शामली में जिम के बाहर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से पुलिस और एसटीएफ लगातार हत्यारों की तलाश में जुटी थी। पुलिस की पड़ताल के मुताबिक अंकित बालियान की हत्या को अंजाम देने के लिए कुल 4 शूटर्स आए थे। इनमें से 2 शूटर ढेर हो चुके हैं। बाकी 2 हमलावरों की तलाश में पुलिस और एसटीएफ की छापेमारी जारी है। अब इस हत्याकांड में गौर करने वाली बात और चिंता वाली बात यह है कि जिन 2 आरोपियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है, उनमें से एक की उम्र 24 साल, दूसरे की उम्र 22 साल है। बालियान हत्याकांड के पीछे जेन जी गैंग का हाथ बताया जा रहा है और इन 2 मुठभेड़ से बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है।
0: हालांकि यूपी पुलिस की मुश्किल ये भी है कि अब भी 2 हत्यारे फरार हैं, इसलिए अंकित बालियान के पिता का कहना है कि अभी आधा इंसाफ हुआ है।
3: सिंगर मर्डर केस में एक्शन। 2 शूटरों का सीधे एनकाउंटर।
4: जानलेवा फायरिंग के पश्चात अब सब फायरिंग के इनके ऊपर।
3: 26 अगस्त को बालियान की हत्या। 100 घंटे के भीतर आरोपी ढेर।
4: 2 बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए, इनको सीएससी भेजा गया जहां इनकी मौत हो गई।
3: शामली में योगी मॉडल, जैसे को तैसा वाला जवाब।
5: माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से कहना चाहती हूं कि क्या योगी जी, अंकित जी आपका बच्चा नहीं था क्या? हम आपके बच्चे नहीं है? हमने भी तो आपको वोट देंगे, आपको जन प्रतिभागी बनाया है ना, अपना वोट दिया है ना, तो आप हमारे लिए आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? आप तो माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं ना, तो फिर इस केस पे इतना लेट कार्रवाई क्यों हो रही है?
3: सुनिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम की अपील। 26 अगस्त को शामली में हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बालियान की हत्या होती है। 4 दिन तक जब कोई एक्शन नहीं होता तो बालियान की पत्नी सीमा सीएम योगी से हत्यारों को मिट्टी में मिला देने की अपील करती है और 1 दिन बाद हत्या के 2 आरोपियों का हिसाब किताब हो जाता है। कैराना में पुलिस और एसटीएफ की आरोपियों से मुठभेड़ होती है। हत्या के 2 आरोपियों को पुलिस की टीम घेर लेती है। एनकाउंटर में दोनों आरोपियों को मार गिराया जाता है।
6: सुबह 2 शूटर सुमित और मोहित ये शामली पुलिस से मुठभेड़ में मारे गए हैं। इनके पास से सोफिस्टिकेटेड वेपन्स बरामद हुए हैं। इन्होंने शामली पुलिस पर काफी फायर भी किया, इसमें हमारे 2 कांस्टेबल भी घायल हैं। इस प्रकरण में अन्य शूटर्स और गैंग के हायर मेंबर्स, इन सब के बारे में तफ्तीश की जा रही है और इन सभी को कानून के दायरे में लाया जाएगा।
3: बीते 5 दिनों से यूपी पुलिस की इस केस में बड़ी किरकिरी हो रही थी। अंकित बालियान इस इलाके का जाना पहचाना चेहरा था। हरियाणवी सिंगर के तौर पर बालियान की काफी लोकप्रियता थी। बालियान की 26 अगस्त को शामली में जिम से बाहर निकलते हुए हत्या कर दी गई थी। परिवार इस हत्याकांड को लेकर एक्शन की लगातार मांग कर रहा था। अब एनकाउंटर पर बालियान के पिता कह रहे हैं अभी तो आधा इंसाफ हुआ है।
7: तो यही कहना है कि हमें सरकार का इंसाफ मिल गया, आधा और मिलना चाहिए।
8: तो ये आधा कब तक का उम्मीद करोगे पुलिस कर देगी?
7: कर देगी, अब तो उम्मीद है अब तो कर देगी।
3: अंकित बालियान की हत्या के दो आरोपी का एनकाउंटर हो चुका है। 22 साल का मोहित ओक, 24 साल का सुमित मुठभेड़ में मारा जा चुका है। इतनी छोटी सी उम्र में दोनों पर कई केस दर्ज हो चुके थे। 22 साल के मोहित पर 14 केस दर्ज थे और वो जेल भी जा चुका था। अपराध के जिस रास्ते पर दोनों आगे निकल चुके थे उसका यही अंजाम होना था। शामली से शरद मलिक के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
1: और इस बीच में बड़ी जानकारी आपको देते हैं, जयंत चौधरी बताया जा रहा है कि अंकित बालियान के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। दो आरोपियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है, बाकियों की तलाश चल रही है। इस बीच में अंकित बालियान के परिवार से जयंत चौधरी ने मुलाकात की, तस्वीरें हैं। इससे पहले अखिलेश यादव के लगातार इस विषय को उठाने, परिवार से मिलने, उस पर खूब राजनीति देखने को मिली। उन्होंने यूपी सरकार को काफी घेरा भी। अब जयंत चौधरी परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। मशहूर हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बालियान, जिनकी बहुत फैन फॉलोइंग भी है, अब उनके परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं जयंत चौधरी।
0: संतोष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संतोष, जाहिर तौर पर एक बड़ा मामला, उसमें अब एनकाउंटर वाला एक्शन, ऐसे में राजनीति तो होगी।
9: देखिए, बिल्कुल राजनीति तो होगी और यही वजह है कि इस हत्याकांड के बाद समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने उनके परिवार से बात की और अब जयंत चौधरी पहुंचे हुए हैं। और वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटना को जब हुआ उसी के बाद से ही संज्ञान लिया और यूपीएससीएफ की टीमें लगाई गई और जिसका नतीजा था कि इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले 4 शूटरों में 2 शूटर सुमित और मोहित को एनकाउंटर में मार गिराया गया। अभी 2 शूटर और उनके मददगार का गिरफ्तार होना, कानून की जद में आना बाकी है, लेकिन शिनाख्त होने के 100 घंटे के अंदर ही यूपीएसटीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में शामली पुलिस के साथ इन दोनों बदमाशों को, जिन लोगों ने अंकित बालियान को जिम से निकलते हुए गोलियों से भूना था, उनको मौत घाट तारा गया। एनकाउंटर हुआ इनका, पुलिस से मुठभेड़ हुई, इसमें 2 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं और इस एनकाउंटर में दोनों
10: दैनिक वाला लगा लीजिए, उनको भी माइक पकड़ लें, माइक दे दें और वो पकड़ लेगा दैनिक का। माइक पकड़ा दो आगे, हाँ जी, यहाँ देखिए, मैं बंती खेड़ा में हम लोग खड़े हैं और सभी लोग, पूरे क्षेत्र के लोग, हम सबकी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। अंकित एक कलाकार था और जिस प्रकार से सुनियोजित तरीके से ये अपराध रचा गया, संगीन अपराध है, उसे सब लोगों ने उसको गंभीरता से लिया है और कार्रवाई पुलिस की, प्रशासन की अभी जारी है। मैं यहाँ मिलने आया हूँ, ये हमारा गांव है, हमारे लोग हैं और यही मैंने परिवार से, उनके पिताजी से कहा, वो खुद आर्मी में रह चुके हैं, मैंने उनको यही बताया कि आप इतनी हिम्मत वाले हो और धैर्य रखो। कल मेरी मुख्यमंत्री जी से लखनऊ में भी इस संबंध में जो बातचीत, जो वार्ता हुई, उन्होंने भी यही संदेश दिया कि परिवार के प्रति के अपनी संवेदनाएं, और कानून की अपनी चाल होती है, व्यवस्था, कानून व्यवस्था तभी मजबूती से कायम रह पाती है जब लोग, आम नागरिक, उनका विश्वास उस व्यवस्था पे बना रहे, कानून का अपना इकबाल हो और इन्वेस्टिगेशन में, पुलिस की कार्रवाई में, पुलिस के प्रबंधन और व्यवस्थाओं में अनैतिक राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनतम हो और सरकार ऐसी हो जो कुशल संचालन कर पाए कायदे कानून का। तो तीनों चीज हैं, इसलिए ही जो है ये जो वारदात है इस प्रकार से उस पर कार्रवाई हो रही है। देखिए, सबकी सहानुभूति है, जब इस तरह का अपराध हुआ और सब लोग आजाद हैं, सबको अपनी बात व्यक्त भी करनी चाहिए।
11: सर, अवधेश सांसद हैं अयोध्या से, उन्होंने सवाल किया है कि जो ये एनकाउंटर हुआ है ये किस परिस्थिति में हुआ, वो सवाल उठा रहे हैं।
10: देखिए, एनकाउंटर शब्द मैं नहीं कहूंगा, अभी जल्दबाजी होगी, जो परिस्थितियां हैं उसके जवाब जो है पुलिस आपको दे सकते हैं, अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने क्या जवाबी कार्रवाई की। और ये कोई सुनियोजित नीति नहीं होती, राज की नीति नहीं है एनकाउंटर, पुलिस को कार्रवाई करनी होती है।
12: आपसे खुश नहीं हूँ, आज ही खुशी मुख्यमंत्री ने दी है।
13: नहीं देखो, खुश कौन होता है इन परिस्थितियों में। जो वारदात ऐसी घिनौना अपराध हुआ है, इन्होंने तो सब कुछ खो दिया है, दुख की घड़ी है इनके लिए। और हम सबको बहुत संवेदनशीलता से इसमें बर्ताव करना है, हम सब लोग हिम्मत ही देने आए उनको। बाकी मैं, वो भी धैर्यवान व्यक्ति हैं, हिम्मत वाले हैं, सबको जैसा मैंने कहा ये विश्वास रहना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को लेके कोई समझौता सरकार नहीं कर रही। जीरो टॉलरेंस है इस प्रकार के क्राइम के लिए, जीरो टॉलरेंस है, क्योंकि जब इस तरह की चीजें होती हैं तो स्वाभाविक है कि वक्त लगता है इन्वेस्टिगेशन में। नहीं, एक सेकंड, देखिए वो बात की है अभी तो, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जारी है। और अभी मैं अपने भाव को व्यक्त कर रहा हूँ परिवार के प्रति, मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के इन्वेस्टिगेशन को भी टाइम लगता है। ये भी लाजमी है कि जब इस तरह की वारदात हुई, इतनी गोलियां चली हैं, तो एक भय भी लोगों में उत्पन्न होता है। लेकिन मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कोई समझौता कानून व्यवस्था के किसी सवाल को लेकर सरकार टॉलरेट नहीं कर रही, वही संदेश हर नागरिक तक पहुंचा है। इस संबंध में चर्चा हुई, खुली चर्चा हुई, उन्होंने अपनी संवेदना भी परिवार के प्रति व्यक्त की और उन्होंने यही मैसेज दिया जीरो टॉलरेंस का, और वो उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी है।
1: तो आखिर एनकाउंटर के इस पूरे ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया, इस बारे में हमने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश के साथ डिटेल में बातचीत की है।
14: 26 अगस्त को सायंकाल अंकित बालियान जी जब जिम से बाहर निकल रहे थे तो उन्हें 4 शूटर्स ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मौके पर से 18 खोखा कारतूस मिले थे, जिसका अर्थ था कि भारी संख्या में फायरिंग की गई। सीसीटीवी फुटेजेस से ये जानकारी हुई कि 4 शूटर्स थे जो 2 मोटरसाइकिल्स पर फरार हुए। तत्काल इनकी तलाश शुरू की गई। बहुत जल्दी एक सोशल मीडिया पोस्ट भी आया जिसमें गोगी गैंग द्वारा भोलू शाहपुरिया नाम के एक व्यक्ति ने इस घटना की जिम्मेदारी ली। इस सोशल मीडिया पोस्ट का ओरिजिन इंडिया के बाहर से था, इसलिए इसकी पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन पुलिस ने सभी एंगल्स पर तफ्तीश शुरू की। अंकित बालियान जी हरियाणवी सिंगिंग में एक बड़ा नाम बन चुके थे और सोशल मीडिया प्रेजेंस उनकी काफी अच्छी खासी थी, इसलिए ये एक यूपी पुलिस के लिए एक चैलेंज भी था। जब आज सुबह लगभग 5 बजे एक मुठभेड़ हुई शामली पुलिस और इन शूटर्स के बीच में, और ये 2 शूटर्स मारे गए हैं, सुमित और मोहित, और इनके पास से भारी मात्रा में आग्नेयास्त्र बरामद हुए हैं। इन्होंने पुलिस पर भारी फायरिंग भी की है जिससे 2 कांस्टेबल्स भी हमारे घायल हुए हैं। अभी इस घटना में और भी लोग शामिल हैं जिनके बारे में तफ्तीश जारी है, और खास करके जो शूटर्स हैं और जो इस गैंग के लीडर्स हैं जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को प्लान किया है या अंजाम दिलाया है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।
15: सर, एक सवाल ये कि इसमें जो 2 शूटर्स हैं जो बाकी हैं अभी, क्या उनकी शिनाख्त हो पाई, जो मददगार थे, रेकी करने वाले थे, फंडर थे, फाइनेंसर थे, वो शिनाख्त हो पाई है? कुल कितने लोग अभी तक शिनाख्त हो पाई है इस हत्याकांड में शामिल थे?
14: इस घटना में जैसा मैंने आपको पहले बताया, 4 शूटर्स मौके पर मौजूद थे। इसके अलावा रेकी करने वाले अथवा इन्फॉर्मेशन देने वाले लोग भी थे, गैंग के लीडर्स भी हैं जो कुछ, जिसमें से कुछ जेल में हैं। इन सभी के बारे में तफ्तीश की जा रही है और बहुत ही जल्दी इन सभी को कानून के दायरे में लाया जाएगा।
15: हत्याकांड की वजह कुछ समझ में आई इन्वेस्टिगेशन में कि क्या वजह रही होगी, क्यों हत्या कर दी गई? कोई सुपारी किलिंग है, इनको भाड़े के हत्यारे थे तो कुछ इनको कुछ सुपारी दी गई थी?
14: इंडीड ये गैंग किलिंग है, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं और अभी कारणों के बारे में कुछ भी कहना प्रीमैच्योर होगा।
0: तो अंकित बालियान का परिवार लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। इनकाउंटर के बाद हमने बालियान की पत्नी और बहन से बातचीत की अब से कुछ ही देर पहले। तो यूपी पुलिस और एसटीएफ का अभी तक एक्शन हुआ है, क्या आप उसे संतोषजनक मानती हैं?
16: जी मैम,
5: जो भी कार्रवाई अभी तक हुई है उससे हमें बहुत उम्मीदें बंधी है कि केस पे अच्छा काम हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का बार बार धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने इस केस को बहुत गंभीरता से लिया है। अंकित जी को उन्होंने अपना ही बच्चा समझ के इस केस पे काम करवाया है। बार बार धन्यवाद करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का कि उन्होंने इस केस को बहुत अच्छे से हैंडल किया है, और उनसे एक गुहार लगाना चाहूंगी कि इस काम को जड़ से खत्म करिए, क्योंकि आज हमारी फैमिली से एक बच्चा गया है, कल किसी और फैमिली का बच्चा ना जाए। क्योंकि अभी 2-3 लोग और हैं जो खुले घूम रहे हैं, उन्होंने बोला था कि मिशन अभी इनकम्प्लीट है, ऐसा कुछ सर्कुलेट हो रहा था, तो आगे किसी के साथ ऐसा ना हो। हम तो अपना हमारा तो सब कुछ बर्बाद हो ही चुका है, आगे किसी फैमिली का बर्बाद ना हो, क्योंकि ये असामाजिक तत्व है, ये कुछ नहीं देखते किसी की फैमिली का और भी बच्चा ना जाए। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से गुहार लगाना चाहूंगी कि जो उनकी कार्यशैली है उसी कार्यशैली में जवाब दे, और उन्होंने इस केस को इतनी गंभीरता से लेते हुए लॉ एंड ऑर्डर का जो उनका एक है, जो उनकी गवर्नमेंट के एक जो नींव है, उनको उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो नंबर 1 CM क्यों है। हमारे प्रदेश को उनकी जरूरत है अभी, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि योगी जी आपने इस केस पे करके पूरे गिरोह का पर्दा कीजिए सर, जो और आरोपी फरार हैं अभी उनको भी इसी तरह से पकड़वाइए।
0: जो बाकी बचे हुए आरोपी हैं, क्योंकि कुल 6 लोग इन्वॉल्व थे, 2 का एनकाउंटर हो चुका है, 4 अब भी फरार हैं, उनके खिलाफ भी क्या इसी तरह का एनकाउंटर वाला एक्शन चाहती हैं आप?
5: मैम देखिए, ये हमारे लिए ही नहीं केवल, ये समाज के लिए भी जरूरी है, क्योंकि जो लोग ऐसा काम कर सकते हैं, एक ऐसा इंसान जिसकी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, जो अपने काम से काम रखता था, जो एक वेस्ट यूपी का एक उभरता हुआ सितारा था, जिसने जमीन से उठ के अपना नाम किया था, उस बच्चे की अगर हत्या हो सकती है तो वो बच्चा किसी का भी हो सकता है। आज हमारे फैमिली से गया है, कल किसी और की फैमिली का भी हो सकता है वो, तो किसी और के साथ ऐसा ना हो, तो ऐसे असामाजिक तत्वों का खत्म हो जाना ही जरूरी है।
1: और अब बात करते हैं यूपी के चुनावी हलचल की। विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच में लखनऊ में आज 3 अहम बैठकें होनी है। बीजेपी ने लखनऊ में कार्यशाला का आयोजन किया है, वहीं अखिलेश यादव ने पार्टी पदाधिकारियों की आपात बैठक बुलाई है। साथ ही बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी आज चुनावों को लेकर अहम बैठक करने वाली है। तो ये 3 अहम मुलाकातें और चिंतन मंथन का दौर, हर पार्टी अपनी तैयारियां 2027 के मद्देनजर कर रहे हैं। बीजेपी की कार्यशाला है जिसमें तमाम पदाधिकारी पहुंचने वाले हैं और अलग अलग जिलों से ही आएंगे और चिंतन मंथन करेंगे, और समाजवादी पार्टी की भी एक आपात बैठक है, तो बीएसपी भी मीटिंग करने वाली है।
0: वहीं यूपी चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी ने अपनी जमीनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। लखनऊ में पार्टी की ओर से बड़ी कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पार्टी महामंत्री स्मृति ईरानी शामिल होंगी। कार्यशाला में पार्टी के 700 पदाधिकारी शामिल।
1: स्मृति ईरानी, जिनको नई फिर से जिम्मेदारी मिली है, जिनको ये नेतृत्व जो है मिला है, उसके बाद वो उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं, तो वो अब इस बैठक का वो भी हिस्सा होंगे। और लखनऊ में ये कार्यशाला आयोजित की गए है, 700 पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचकर चिंतन मंथन करने वाले हैं। बीजेपी कैसे आगे बढ़ सकते हैं, संगठन कैसे बेहतर तरीके से काम कर सकता है, इस पर चिंतन मंथन होगा। 2 बैक-टू-बैक टर्म बीजेपी के हो गए हैं और प्रयास की तीसरे बार भी वापस सत्ता में आए 2027 में, तो उसके लिए बीजेपी अपनी तैयारियां कर रही है।
16: में तो जादू देख लिया, आप खुद भी वहां रहे, अब यूपी का चुनाव है, कार्यशाला है, क्या कुछ तैयारी है?
17: अच्छी तैयारी है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक काम करने का तरीका है, कार्यशैली है, और हमारे नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है और उत्तर प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ जी का है, ऐसा प्रभावशाली नेतृत्व हमको मिला है। हम सब कार्यकर्ता भाग्यशाली हैं, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, हम सर्व समाज को लेकर आगे बढ़ने का काम करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जिसको कोई पूछता नहीं तो हम उसको पूजने का काम करते हैं। कभी वाराणसी में जाकर वहाँ पर सफाई कर्मचारियों के भी पग पघारने का काम करते हैं। आज वही लोग आरोप लगाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की कोई कार्यकर्ता इस प्रकार की ओछी हरकत नहीं कर सकता है, जिस प्रकार के आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाए जा रहे हैं।
16: जिले से पदाधिकारी भी आ रहे हैं, विधायक सांसद भी आ रहे हैं, क्या प्रक्रिया आज की कार्यशाला की है और चुनाव के मद्देनजर इस कार्यशाला का प्रभाव क्या पड़ने वाला है?
17: देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन के रूप में हम सदैव इस प्रकार के काम करते रहते हैं और इसमें जब भी कोई बात होती है, आपने कोरोना काल में देखा होगा कि पूरा पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसमें जुट गया था। उसी प्रकार से जब जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं देश में, तो हम पूरा संगठन उसमें सेवा भाव में आ जाता है।
16: कितना इम्पोर्टेंट है बीजेपी के लिए इस इलेक्शन के पॉइंट?
18: वर्कशॉप भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित हम लोग करेंगे आज, और पूरे प्रदेश में ये अभियान चलेगा, जो सेवा का कार्य चलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 25 वर्ष सेवा कर्तव्य प्रणता के पूरे हुए हैं और सभी कार्यकर्ता प्रशिक्षित हो।
1: हमारे संवाददाता समर श्रीवास्तव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। समर, क्या चिंतन मंथन होगा? अब नए पदाधिकारी भी इसमें आने वाले हैं।
16: नहीं राजीव, देखिए, कुल मिलाकर बीजेपी इस तरह के इवेंट समय समय पर करती रहती है और क्योंकि चुनाव नज़दीक है इसलिए इस तरह के वर्कशॉप्स का बहुत महत्व है। आज जब हम वहां कवरेज कर रहे थे उस वक्त भी देखा गया कि तमाम कार्यकर्ता, हर जिले से 5-5 पदाधिकारी बुलाए गए हैं, जिला अध्यक्ष बुलाए गए हैं, सांसद हैं, जो अपने अपने क्षेत्र के विधायक हैं उनको बुलाया गया और उनको एक तरीके से एक एक डायरी पेन देकर अंदर भेजा गया, जैसे कि जो आला नेता है पार्टी के, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद हो, डिप्टी सीएम पंकज चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष स्मृति ईरानी जो हैं, उनकी तरफ से जो भी एक तरीके से सीख मिले उनको अपनी डायरी में नोट डाउन करें और बूथ स्तर पर कहीं अगर कमजोरियां हैं उनको दुरुस्त किया जाए। और क्योंकि देखिए 10 साल की सरकार हो रही है, एंटी इनकंबेंसी भी एक फैक्टर होता है, सरकार को यह चीज मालूम है, तो अगर कहीं पर कोई परेशानियां हैं, लोगों को समस्याएं हैं, तो उसका आकलन भी क्षेत्रवार ही करना पड़ेगा। बीजेपी को इस बात को जानती है और इस वजह से यह वर्कशॉप बीजेपी के लिए बेहद अहम होने वाली है उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आप देखें वहां पर मौजूद है और शुरुआत ही इसकी वंदे मातरम से होती है।
0: यानी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। यूपी में चुनाव से पहले बीजेपी और एसपी में जुबानी जंग तेज है। एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो योगी सरकार पर जेपीएनआईसी से लेकर एक्सप्रेसवे और राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर हमलावर है, दूसरी ओर बीजेपी अखिलेश सरकार के दौरान खर्च और योजनाओं पर सवाल खड़े कर रही है।
19: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार हो रही है और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, सियासत में नए पुराने सवालों की फाइलें खुल रही हैं और आरोपों की धार तेज हो रही है। इस राजनीतिक लड़ाई का ताजा केंद्र बना है लखनऊ का जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, यानी जेपीएनआईसी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जेपीएनआईसी को लेकर संगीन आरोप मढ़ाए।
20: इनके मॉडल हैं, वो मॉडल इनके जेब भरने वाले हैं। जेपीएनआईसी बीजेपी ने जेपी बेच दिया।
19: इसके जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेपीएनआईसी के निर्माण की लागत और खर्च पर सवाल उठा चुके हैं। सीएम योगी का दावा है कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचार के जीवंत स्मारक, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए जिसने जीवन खपा दिया, उन जेपी के नाम पर बने स्मारक को बनने में 200 करोड़ लगने थे लेकिन खर्च कर दिए 864 करोड़, इसके बावजूद काम अधूरा रहा। सीएम योगी ने इन आंकड़ों के आगे अखिलेश यादव के परिवारवाद को भी कटघरे में खड़ा किया।
20: सब कुछ इनके लिए बनेगा, कमाई इनके घर में जाएगी, जिसमें कौन है उसमें अखिलेश यादव है, डिंपल यादव हैं, धर्मेंद्र यादव हैं।
19: अखिलेश यादव लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से जुड़े निर्माण कार्यों और सड़क धंसने की घटनाओं को लेकर सरकार पर निशाना साध चुके हैं। उनका आरोप है कि निर्माण में गुणवत्ता के मानकों की अनदेखी हुई और सरकारी बजट के इस्तेमाल पर सवाल खड़े होते हैं। वहीं बीजेपी का तर्क है कि सड़क निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में यूपी ने बड़े पैमाने पर काम किया है और विपक्ष राजनीतिक आरोपों के जरिए विकास के काम को निशाना बना रहा है। भ्रष्टाचार की इस राजनीतिक बहस में राम मंदिर चंदे का मुद्दा भी पहले अखिलेश यादव के निशाने पर रहा है।
20: मंदिर में चोरी करने वाले धर्मद्रोही अधर्मी गिरोह है ये भारतीय जनता पार्टी।
19: राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर यूपी में लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, आस्था, राजनीति और पारदर्शिता के बीच खींची जा रही एक राजनीतिक रेखा की भी है, जिसको लेकर सीएम योगी समाजवादी पार्टी की दुखती रग पर हाथ रख चुके हैं।
20: समाजवादी की पीड़ा भी यही है कि जिन राम भक्तों पर हमने गोली चलाई थी अंततः राम भक्तों का संकल्प पूरा हुआ, जो राम भक्त नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे।
19: अब सवाल यह है कि 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार कितना बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा, क्योंकि यूपी में चुनाव सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। यहाँ सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था, रोजगार और विकास के साथ साथ सरकार की नीयत और भरोसे का सवाल भी वोट में बदलता है। इसलिए अखिलेश यादव के लिए चुनौती है कि इन आरोपों को वो एक व्यापक राजनीतिक नैरेटिव में बदल पाते हैं या नहीं, और बीजेपी के सामने चुनौती है कि वो अपने शासन के दौरान उठे सवालों का जवाब सिर्फ विपक्ष पर पलटवार करके देगी या ठोस आंकड़ों और कार्रवाई के जरिए देगी। आज तक ब्यूरो।
1: और अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
21: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
22: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
23: सोच बदलो और बैंक भी।
24: संविधान के आधार में तो कभी ये नहीं लिखा कि भाई आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया जाएगा। बता दीजिए कहाँ कहा गया कि आर्थिक आधार पे। तो जब आधार ही आर्थिक नहीं है तो इस पर चर्चा कहाँ से, जब आधार ही सामाजिक और समाज में भी छुआछूत का। मैं बड़े वर्ग के आरक्षण की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाले लोगों को आरक्षण देने की, जिनके बारे में कहा जाता है कि क्रीमी लेयर क्यों नहीं, तो ये छोड़ दें आरक्षण का लाभ लेना छोड़ दें, वो आरक्षण का लाभ लेना छोड़ दें। जब इसमें सब क्लासिफिकेशन की बात की जाती है तो जो लोग कह रहे हैं, जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, तो आइए फिर बैठ के हम लोग चर्चा कर लें सदन में। माझी जी को अगर लगता है कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए तो क्या माझी जी पहले इस्तीफा दे दें, ले आए क्रीमी लेयर का कंसेप्ट ना भाई, फिर उसमें तो आप भी आते हैं ना, आप भी इस्तीफा दे दें, उनके सुपुत्र भी यहाँ पे हैं, फिर वो भी इस्तीफा दे दें।
25: वो नहीं समझ रहे हैं कि संतोष क्या कह रहे हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं कि वैसे वैसे लोग को आरक्षण के लाभ से वंचित हो जाना पड़ेगा, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि लार्जर इंटरेस्ट में और लार्जर लोगों के हित में बंटवारा बहुत जरूरी है। संतोष कुमार ने कहा, कोई नई बात नहीं कहा है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का एक सिद्धांत है जिसके तहत उसने कहा है और उसको लेकर के चल रहा है। इसमें चाहे जो भी होगा हम लोग सब इसके लिए लड़ेंगे करेंगे, और क्योंकि हमारे गरीब लोगों को वो देखना नहीं चाहते हैं इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

शामली में गोगी गैंग के शूटर्स ढेर, परिवार से मिलने पहुंचे आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी, का अपराध पर जीरो टॉलरेंस। यूपी में आज 2027 के सभी चुनावी योद्धाओं

0: अयोध्याकरण विवाद में राहुल गांधी पर हल्द्वानी में FIR, SC/ST एक्ट के तहत अनुसूचित जाति के युवक ने दर्ज करवाया केस, जातिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। नेपाल त्रासदी में बढ़ते आंकड़ों से दुनिया सन, जान गंवाने वालों की संख्या पहुंची 900 के पार, लापता लोगों की तादाद 4200 के ऊपर, मलबे में ढूंढे जा रहे हैं जिंदगी के निशान।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नमस्कार, 12 बजे 12 रिपोर्टर देख रहे हैं आप, मैं हूं राजीव ढौंडिया। शुरुआत करते हैं सिलसिले की, सबसे पहले बड़ी खबर आपको देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम से जुड़ी हुई खबर है, शुद्धिकरण विवाद को लेकर राहुल गांधी पर FIR दर्ज हुई है और एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। एक दिन पहले ही उत्तराखंड पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज की है। अब इसे लेकर आज उत्तराखंड कांग्रेस शुद्धिकरण को लेकर सभी जिलों में FIR दर्ज करवाने जा रहे हैं। उधर दिल्ली में कुछ ही देर में कांग्रेस उत्तराखंड की प्रभारी कुमारी शैलजा मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने वाले हैं और राहुल गांधी पर दर्ज FIR को लेकर भी बातचीत होगी। आपको यह बता दें कि कल ही एक दलित युवक ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाया, FIR दर्ज करवाए और आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने हल्द्वानी में रामलीला मैदान में हुए शुद्धिकरण के मामले को जातिगत रंग दिया और इसे छुआछूत के साथ जोड़ा, जिसकी वजह से दलित समाज की भावनाएं आहत हुई है। हमारे संवाददाता राहुल गौतम इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। राहुल, आज मुलाकात होनी है कुमारी शैलजा की मल्लिकार्जुन खड़गे की, क्या बातचीत होगी और FIR के बाद क्या एक्शन हो रहा है जो कल FIR हुई है?
2: राजीव, मैं 10 राजी मार्ग के बाहर ही खड़ा हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे का आधिकारिक निवास है और यहां पर उत्तराखंड की जो प्रभारी हैं कुमारी शैलजा, वो पहुंच गई हैं और दोनों के बीच में बताया जा रहा है जिस प्रकार से शुद्धिकरण का विवाद गहराता जा रहा है। राहुल गांधी जो कि मांग कर रहे थे, बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि इस पूरे मामले में FIR करी जाए, उन्हीं खुद के खिलाफ अब एक SC/ST प्रावधानों में FIR हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर सड़क पर है। 7 तारीख को बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के अंदर, देहरादून के अंदर एक बड़ा प्रदर्शन होगा। इसके अलावा तमाम जो जिले हैं उत्तराखंड के, वहां पर जो इकाइयां हैं कांग्रेस पार्टी की, उनको कहा गया है कि आप FIR दर्ज कराइए। दरअसल इस पूरे मामले के अंदर कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि जो दलित वोट बैंक है उसको साधा जा सकता है और इसीलिए आप देखिए राहुल गांधी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अभी जो आप ये कह सकते हैं जो मुलाकात चल रही है, इसमें भी रूपरेखा तय की जा रही है कि आखिर इस पूरे मामले पर बीजेपी पर दबाव किस प्रकार से बढ़ाना है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि ये दर्शाता है कि किस प्रकार से दलित मानसिकता है बीजेपी की, क्योंकि जहां पर उनको खुद को FIR करनी चाहिए थी, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ FIR कर दी है। आप ये मान के चलिए ये पूरा मुद्दा, अभी जब तक राहुल गांधी इस पूरे मामले के अंदर FIR दर्ज नहीं करा देंगे, तब तक इस मामले के अंदर आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर नहीं जाएगी।
0: राहुल, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। यूपी में भी सियासी संग्राम तेज है, आगामी चुनावों को लेकर सभी दलों ने अपनी रणनीति तेज कर दी। आज लखनऊ में जबरदस्त हलचल है, बीजेपी बड़ी कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं, इसमें पार्टी के नवनियुक्त महामंत्री स्मृति ईरानी भी पहुंचे हैं। लखनऊ में बीजेपी की इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री योगी और स्मृति ईरानी की मौजूदगी में सबसे पहले वंदे मातरम का गायन हुआ। स्टेज पर सीएम योगी और स्मृति ईरानी, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के साथ दोनों ही डिप्टी सीएम भी ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य भी नजर आए।
3: भारतीय जनता पार्टी आज एक बड़ी वर्कशॉप कर रही है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी, डिप्टी सीएम प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी पहुंचे हैं और यहां IGP पर भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। ये केवल बीजेपी के लिए एक वर्कशॉप नहीं है बल्कि कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की उस तैयारियों का एक तरीके से उदाहरण है जिसमें हर जिले से 5-8 पदाधिकारी, विधायक, सांसदों को आज बुलाया गया है। एक खाका तैयार किया जाएगा यूपी चुनाव के मद्देनजर कि किस तरीके से आखिर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को जवाब देने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी भी आज ही लखनऊ में बड़ी बैठकें कर रही हैं। देखना यह है कि इन बैठकों के दौर में कौन बाजी मारेगा, लेकिन एक बात तो साफ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे चुनाव में चेहरे के तौर पर नजर आ रहे हैं और स्मृति ईरानी का ध्यान भी अब उत्तर प्रदेश में केंद्रित हो चुका है।
0: यूपी की लड़ाई जबरदस्त देखने को मिला है, समाजवादी पार्टी और BSP ने भी इधर अपनी अभियान तेज कर दिया है। इस वक्त BSP सुप्रीमो मायावती बड़ी बैठक कर रही हैं। 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर मायावती 75 जिला अध्यक्षों के संगठन की रिपोर्ट लेंगी, साथ ही प्रत्याशियों के चयन पर भी मंथन की उम्मीद है। वहीं अखिलेश यादव की मौजूदगी में यूपी के सभी 75 जिलों के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और महानगर

0: अध्यक्ष बुलाए गए हैं।
1: उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी अब दोनों मैदान में चुनावी तैयारी पर लगे हैं। एक तरफ बहुजन समाज पार्टी जो अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ सभी मंडल अध्यक्षों के साथ एक बड़ी बैठक कर रही हैं और जिसमें वो निर्देश देंगी, वो मूल मंत्र देंगी कि किस तरीके से 2027 का चुनाव जीता जाए, और ये बैठक मायावती खुद दे रही हैं तो काफी अहम हो जाता है। आकाश आनंद जिस तरीके से जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने अपने कई विधायकों, कई कार्यकर्ताओं और अपने बूथ अध्यक्ष के साथ साथ जो जिले के अध्यक्ष हैं उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। ये मीटिंग यह भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि आखिर समाजवादी पार्टी किस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब पूरी तरीके से उतरने जा रही है, और जहां पर पीडीए को लेकर ये खास लड़ाई देखी जा रही है बहुजन समाज पार्टी और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, दोनों ओबीसी और मुस्लिम वोट बैंक का दावा करते आ रहे हैं।
2: और अब खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किर्गिस्तान दौरे के बिश्केक में सीओ समिट हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अब से कुछ देर पहले बिश्केक में पीएम मोदी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करने वाले हैं। सबसे अहम मुलाकात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ होने वाली है। भारतीय समय अनुसार शाम 5 बजे पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात तय है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच में कई अहम मसलों पर बातचीत हो सकती है। बात अब दिल्ली की करेंगे। दिल्ली में फिर से बस में गैंगरेप की वारदात हुई है। 16 साल की लड़की के साथ हैवानियत की खबर है। इस वारदात के बाद दिल्ली पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है, लेकिन इसने दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर फिर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं।
3: बस आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वही बस है जिसमें 16 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया। दरअसल ये मामला पूरा नोएडा से स्टार्ट होता है। जो पीड़ित है लड़की, वो मैनपुरी की रहने वाली है और अपने घर से लड़कर वो घर पे बिना बताए हुए नोएडा की तरफ आती है अपने भाई के घर जाने। तभी उसे पता लगता है कि वो गलत लोकेशन पर उतर गई है। वो हाथ दे करके इस स्लीपर बस को रोकती है, उसे स्लीपर बस में बैठाया जाता है और इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। करीब 47 किलोमीटर तक परी चौक से लेकर के यहाँ कश्मीरी गेट तक लगातार दिल्ली की सड़कों पर यह बस चलती रही और इसके अंदर उस पीड़िता के साथ लगातार दुष्कर्म होता रहा। अगर आप देखें तो अब दिल्ली पुलिस ने इस बस को सीज कर लिया है और अगर आप बस को देखें तो इसमें अभी भी जो ये हैं पर्दे लगे हुए हैं। बताया यह जा रहा है कि इन पर्दों के वजह से ही जो है बाहर किसी को नहीं पता लग पाया कि आखिरकार बस के अंदर चल क्या रहा है।
2: हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बालियान हत्याकांड मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। 2 आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है। यूपी एसटीएफ ने कार्रवाई की है, 2 शूटर्स को मार गिरा है। इस मामले में खुलासा हुआ है कि मारे गए शूटर मोहित और सुमित ने 20 से 21 अगस्त को अंकित की रेकी भी की थी और उनके सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें आई है जो शामली के सूर्या होटल की है। मोहित और सुमित 20 अगस्त को शामली के सूर्या होटल में रुके थे।
4: बार बार धन्यवाद करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का कि उन्होंने इस केस को बहुत अच्छे से हैंडल किया है, और उनसे एक गुहार लगाना चाहूंगी कि इस काम को जड़ से खत्म करिए, क्योंकि आज हमारी फैमिली से एक बच्चा गया है, कल किसी और फैमिली का बच्चा ना जाए। क्योंकि अभी 2-3 लोग और हैं जो खुले घूम रहे हैं, उन्होंने बोला था कि मिशन अभी इनकम्प्लीट है, ऐसा कुछ सर्कुलेट हो रहा था, तो आगे किसी के साथ ऐसा ना हो। हम तो अपना, हमारा तो सब कुछ बर्बाद हो ही चुका है, आगे किसी फैमिली का बर्बाद ना हो।
5: आज सुबह लगभग 5 बजे एक मुठभेड़ हुई शामली पुलिस और इन शूटर्स के बीच में, और ये 2 शूटर्स मारे गए हैं, सुमित और मोहित, और इनके पास से भारी मात्रा में आग्नेयास्त्र बरामद हुए हैं। इन्होंने पुलिस पर भारी फायरिंग भी की है जिससे 2 कांस्टेबल्स भी हमारे घायल हुए हैं। अभी इस घटना में और भी लोग शामिल हैं जिनके बारे में तफ्तीश जारी है, और खास करके जो शूटर्स हैं और जो इस गैंग के लीडर्स हैं जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को प्लान किया है या अंजाम दिलाया है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।
6: देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना थी और प्रदेश पुलिस ने उन्हें पुलिस मुठभेड़ में मारा है। अंकित बलियान जी की जो निर्मम हत्या हुई थी, प्रदेश दुखी था। उन हत्यारों ने पुलिस पर भी गोलियां चलाई जिसकी किए की सजा उन्हें मिल चुकी है।
7: शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बलियान की जिम से निकलते हुए बाइक से आई
0: चार बदमाशों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। बदमाशों की शिनाख्त के 100 घंटे के अंदर ही यूपीएसटीएफ और शामली पुलिस ने दो बदमाशों को एनकाउंटर में मार गिराया। मारे गए दोनों बदमाशों की पहचान सुमित और मोहित के तौर पर हुई है, जिन पर यूपी पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। और अब इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले दो अन्य शूटर और उनके मददगारों की तलाश में यूपी पुलिस की टीमें लग गई हैं। यूपी से लेकर हरियाणा तक छापेमारी की जा रही है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ संतोष कुमार आज तक।
2: नेपाल के नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन का छठा दिन है। बाढ़ में अब तक 903 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि अब 4200 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। यह संख्या बहुत बड़ी है। अब भी 10,400 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू अब तक किया जा चुका है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह ने बताया कि विनाशकारी बाढ़ में हुई जन धन और भौतिक क्षति का पूरा विवरण जुटाना अब भी चुनौतीपूर्ण है।
7: राहत बचाव कार्य अभियान पूरे होने के बाद बड़ी चुनौती है रास्तों को खोलना। धुंडे से लेकर के त्रिशूली का रास्ता खोल दिया गया है, लेकिन इस बीच अब जो सैनिटेशन वर्कर हैं, नगर पालिका के लोग हैं, वो पहुंचे हैं बड़े पैमाने पर। लोगों की संपत्तियां या तो बचा ली जाए, और उसी के साथ साथ अब ये कोशिश हो रही है कि अगर इस मलबे में, इस दलदल में लोगों के शव हैं, जो लोग गुमशुदा हैं, उन्हें भी खोजा जा सके। कैजुअल्टी अगर है तो अगर यह संभावनाएं अब जीवित की बहुत कम है। जब लड़ाई इस तरह वक्त के अगेंस्ट हो तो आप समझिए कि बड़ी मुश्किलें होती हैं। तो अब यहाँ पर खुदाई करके दरअसल चीजें देखी जा रही हैं। देखिए पूरा दलदल है। तो अब जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की मालमत्ता बचाई जा सके, और अगर इस मलबे में लोग भी हैं जो दबे हो सकते हैं, कम से कम उनके शव बरामद किए जा सके।
2: अब बात नेपाल त्रासदी की नई तस्वीर की। रसुवा के मैलुंग के भोटोकोशी नदी की नई तस्वीर सामने आई है। नेपाली सेना ने यह वीडियो जारी किया और बताया जा रहा है कि यह वीडियो रविवार की सुबह का है, और कल भी भोटेकोशी नदी में जबरदस्त तूफान दिखा और बाल बाल बचे। ये कल का विजुअल है। कल एक बार फिर से भोटेकोशी नदी में यह उफान देखने को मिला। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, सेना भी वहां पर काम कर रही है, लेकिन एकाएक वहां नदी का जलस्तर ऐसे बढ़ा कि उनकी खुद जान खतरे में पड़ गई है। ये विजुअल सिर्फ उस समय की तस्वीरें, उसके बाद वो खुद जो वहां बचाव के लिए, राहत बचाव के लिए पहुंचे थे, खुद अपने बचाव के लिए ऊपर की तरफ भागते हुए दिखाई दिए, और उसी दौरान ये वीडियो शूट किया गया। नेपाल में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सबसे बड़ी चुनौती वहां पर मलबे में भरे हुए घरों में घुसकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना है। तमाम चुनौतियों के बीच में राहत बचाव की टीमें हालात में, मुश्किल हालात में भी अभियान चला रही हैं। बचाव कर्मी हर लापता को खोजने में जुटे हैं। मलबों में दबे घरों से बचे हुए लोगों को बचाव हुआ उनका सामान निकालने की कोशिश की जा रही है।
7: सिविल डिफेंस वर्कर हैं, इनके साथ हम इस इमारत के सबसे ऊपर मंजिल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अंधेरा है, लाइट नहीं है, और लोग जहां तक पहुंच सकते हैं कोशिश कर रहे हैं कि मदद की जा सके। देखिए इमारत में बहुत ही डरावना, और ये देखिए सोचा सारा का सारा मलबा है, सीढ़ियां जो हैं वो मलबे से ढकी हैं। ये हम आ गए हैं इमारत की दूसरी मंजिल पर, और पूरी तरह दलदल है ये, और सोचिए कि दूसरी मंजिल दलदल में दब गई है। हालांकि तीसरी मंजिल साफ सुरक्षित है, लेकिन दूसरी मंजिल जो है ये आप देख रहे हैं पूरी तरह दबी हुई है। अब जो लोग हैं बचा कुचा सामान निकालने की मदद कर रहे हैं, जिसका घर है उसके मालिक बचे हुए हैं, और अब यहाँ एक अभियान चलाया जा रहा है।
2: 12:12 रिपोर्टों में आप प्रयागराज की खबर आपको देते हैं, जहां पर गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दोनों ही नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच गए हैं। बाढ़ का पानी अब संगम क्षेत्र में तेजी से फैल रहा है। संगम जाने वाले लगभग सभी रास्ते बंद हो गए हैं। हालात ये है कि जिन सड़कों पर कभी गाड़ियों की आवाजाही हुआ करती थी, आज उन्हीं सड़कों पर नाव चल रहे हैं।
8: संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हम इस वक्त संगम क्षेत्र में हैं और हनुमान मंदिर के पास हैं। ये पूरी सड़क पानी में डूबती जा रही है, आप हमारे पीछे देख सकते हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी पानी यहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। यहां पर कुछ दुकानदार रहते थे, उनकी झोपड़ियां भी डूब गई हैं, उनकी जो दुकानें हैं वो भी पानी में डूब रही हैं। लोग इसी पानी के बीच निकलकर जा रहे हैं। ये दुकानें हैं, जिस तरह से ये पानी में दुकानें डूब रही हैं, लोग सुरक्षित अपना सामान ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। ये यहाँ पर चाय की दुकान हुआ करती है, लेकिन इसमें भी पानी आ गया है। और यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनके ये जो दुकानें हैं वो पानी में डूब रही हैं।
2: घर दुकान सब डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये पानी रिहायशी इलाके में पहुंचा है या रिहायशी इलाका नदियों के इतना निकट पहुंच गया कि अब नदियों की चपेट में आ गया है, यही मौजूदा तस्वीर भी है। और आप देखेंगे कि जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थी वहां पर अब नाव खड़ी दिख रही हैं, वहां पर नाव चल रहे हैं, नाव से आवागमन हो रहा है और पूरा शहर आप देखेंगे कि खासतौर पर जो सटा हुआ इलाका है नदी से, वहां पर सब बाढ़ की चपेट में, सब पानी की चपेट में। क्या आपको इस तस्वीर में कहीं भी घाट दिखाई दे रहा? नहीं, क्योंकि सब डूबता हुआ दिखाई दे रहा है, सब डूबा हुआ मौजूदा परिस्थिति में है। ये उनका गंगा यमुना का रौद्र रूप इस समय प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें हैं। चित्रकूट जिले में कल मंदाकिनी नदी का जलस्तर घट भी गया था, लेकिन आज एक बार फिर से खतरा बढ़ा हुआ है और पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 2 मीटर के ऊपर पहुंच गया है, जिससे एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। अब ये मंदाकिनी नदी का रौद्र रूप देखिए। चित्रकूट में हमने पहले तस्वीरें दिखाई थी आपको, वहां भी रिहायशी इलाकों में नाव चलती दिखी थी और एक बार फिर से 2 मीटर के ऊपर नदी का जलस्तर है, खतरे के निशान के 2 मीटर ऊपर ये नदी बह रही है और लोग जहां तहां फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं और राहत बचाव का कार्य भी लगातार चल रहा है, लेकिन बाढ़ अपने चपेट में इस शहर को लेते दिख रहे हैं।
9: हम खड़े हैं रामघाट में, जहां इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मंदाकिनी नदी का जो जलस्तर बढ़ा अब धीमे धीमे से बढ़ने लगा है। जो ये पुल बना है अब पुल के ऊपर पानी चढ़ने लगा है। जो एक दिन पहले जो बाढ़ आई थी उससे काफी यहां पर नुकसान पहुंचा था। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो विद्युत पोल है वह गिर गया था, आगे की जो दुकानें हैं पूरी तरीके से जलमग्न है। इधर मंदाकिनी के जल स्तर को नापने के लिए यहां पर गेज जो बना है आप देख सकते हैं उसमें कि लगभग 128 जो मीटर है वहां पर मंदाकिनी नदी का जल स्तर है और लगातार मंदाकिनी नदी अपने रौद्र रूप को धारण करती जा रही है। इससे पहले जो मंदाकिनी नदी थी वह लगभग 135 मीटर के करीब पहुंची थी, दो 23 साल का रिकॉर्ड टूट गया था।
2: पंजाब यूनिवर्सिटी में आज छात्र संघ चुनावों के लिए मतदान चला है और लगभग 16,500 छात्रों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हालांकि कुछ छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें वोट डालने की अनुमति नहीं दी गई। अब काउंटिंग शुरू हो गई है। संवाददाता कमलजीत संधू हमारे साथ जुड़ गए। कमलजीत, अब काउंटिंग शुरू हो गए है, समय का क्या अपडेट है?
10: देखिए, ये चुनाव बहुत अहम है, 4 कॉर्नर फाइट है। आपको बता दें NSUI, ABVP साथ ये सब हैं और उसके साथ में आपको ये भी बता दें कि सोए है उन्होंने समर्थन ABVP का दे दिया। इसके साथ में अगर हम बता दें ASAP है जो कि आम आदमी पार्टी बैक्ड है वो भी हैं। तो 16 कैंडिडेट्स हैं और आपको बता दें 16,500 स्टूडेंट्स हैं जो कि वोट डाल रहे हैं। और उसके बाद आपको बता दें क्योंकि 11 बजे ये प्रक्रिया खत्म होगी, लेकिन कई स्टूडेंट्स का कहना था कि वोटिंग उससे पहले ही खत्म कर दी गई और कई स्टूडेंट्स हैं वो वोट नहीं डाल पाए, उसके लेके नारेबाजी भी हुई है। लेकिन आपको बता दें क्योंकि ये पंजाब के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुआ है, काफी अहम माना जा रहा है और इसको एक पेनल्टीमेट तरीके से, और हमने देखा कि किस तरह से बढ़ चढ़ के है राजनीतिक पार्टीज ने अपने नुमाइंदों को सपोर्ट भी किया है और इसी वजह से अहम हो जाता है। और ये भी बता दें कि यूनिवर्सिटी के इलेक्शन से ये भी एक चीज पता चलती है कि जो CJP का जो प्रोटेस्ट है जो कि जंतर मंतर में हुआ था, उसके बाद जेन जी का जिस तरह से यहाँ पे रुझान रहा है वहां पे दिलचस्प होगा कि किस तरफ से वोटिंग जाता है, क्योंकि 4 कॉर्नर फाइट तो है ही, लेकिन क्योंकि 48 ईयर्स के बाद ABVP ने अपना परचम लास्ट ईयर पिछले साल लहराया था, तो इस बार एक बार फिर उन्होंने मुहिम चलाई है। इस बार उनको समर्थन अकाली दल के स्टूडेंट विंग स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया से भी मिला है। तो बहुत दिलचस्प चुनाव है और यहाँ पर एक कड़ी लड़ाई है जो कि स्टूडेंट्स के बीच में है और उस बीच में हमने देखा है कि किस तरह से बढ़ चढ़ के स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया है। लेकिन जैसे हमें आपको पहले बता रही थी, कई स्टूडेंट्स में नाराजगी इस बात को लेकर भी थी कि वो आखिरी मोमेंट तक अपना वोट नहीं डाल पाए।
2: जी कमलजीत, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच में टकराव एक बार फिर से बढ़ गया है। अमेरिका ने समुद्री माइंस तैनात करने के खतरे का हवाला देते हुए ईरान के लारक द्वीप पर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिकी अधिकारियों के माने तो अमेरिकी सेना ने ईरान के लड़ाक द्वीप पर मौजूद दो ईरानी लॉन्चर्स को निशाना बनाया, टारगेट किया। ट्रंप ने एक AI वीडियो पोस्ट किया है और ये लिखा है कि खार्ग द्वीप को पूरी तरह तबाह किया जा रहा है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट है। आपको ये भी बताते हैं कि ईरान की तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा है कि एक भी जहाज बिना ईरान की अनुमति के गुजर नहीं सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमारा नियंत्रण था, हमारा नियंत्रण है, हमारा ही नियंत्रण रहेगा। लेकिन अब ईरान के लारक द्वीप पर हमले की बात कही जा रही है, निशाना साधा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति एक AI वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। ये AI वीडियो है, वो खार्ग द्वीप को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के बाद कह रहे हैं।
11: के बीच स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तनाव एक बार और फिर बढ़ गया है। अमेरिका ने लार्क द्वीप पर एक बार फिर बीती रात जबरदस्त हमला किया, जिसमें ईरान का दावा है कि उनके कई सारे IRGC मेंबर्स के साथ साथ सिविलियंस की मौत अमेरिकी हमलों में हुई है। जबकि अमेरिका का कहना है कि उन्होंने खार्ग द्वीप को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि वहां से जो है माइनस को स्टेट ऑफ हॉर्मुज में लगाया जा रहा था, और साथ ही साथ उन्होंने दो मिसाइल लॉन्च सेंटर्स को निशाना बनाया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से जॉर्डन में अमरीकी बेस पर हमला किया है। इस बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्टिफिशियल वीडियो जारी करते हुए ये दावा किया है कि खार्ग द्वीप को पूरी तरह से तबाह किया जा रहा है।
2: उधर ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दे दी है कि अगर किसी भी कार्रवाई का अगर आप करते हैं तो करारा जवाब दिया जाएगा। ईरान के IRGC ने जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर पहले से मिसाइलों से हमला बोला है। दावा किया गया है कि उसने अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को हॉर्मुज में तबाह कर दिया है। दावे के मुताबिक ये अमेरिकी ड्रोन फारस की खाड़ी में गिर गया। ये अमेरिकी हमले के बाद ईरान की तरफ से पलटवार है। दावा के MQ-9 ड्रोन को हॉर्मुज में उन्होंने तबाह कर दिया है, साथ ही साथ धमकी भी दी है। और IRGC ने जॉर्डन में भी अमेरिकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। तो ईरान चेतावनी भी दे रहा है, पलटवार भी कर रहा है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि अगर कोई भी कार्रवाई की जाती है तो उस कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और फिर से पलटवार किया है। जॉर्डन में तो अमेरिकी टारगेट पर अटैक किया गया बैलिस्टिक मिसाइल से। दावा यह भी किया गया कि MQ-9 ड्रोन अमेरिका का जो है उसे भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तबाह कर दिया गया है, और अमेरिकी ड्रोन फारस की खाड़ी में दावा किया जा रहा है ईरान की तरफ से गिर गया है।
12: अमेरिका और ईरान के बीच में एक बार फिर से एक महीने के बाद सीजफायर टूट चुका है। अमेरिका ने लाख द्वीप पर हुए हमले के बाद ईरान तिलमिला गया। ईरान ने भी जॉर्डन और कई जगहों पर हमले शुरू कर दिए, यहाँ तक कि अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को मार गिराने का दावा भी किया गया। हालांकि ईरान ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इसका खामियाजा न सिर्फ अमेरिका को सैन्य नुकसान के तौर पर चुकाना होगा बल्कि आर्थिक रूप से भी वो अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा।
2: खबरों का सिलसिला जारी है, अब रुकने छोड़े से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस इन एसोसिएशन विद भारत की अप...
14: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: मुल्तानी घो का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घो का कॉफ सिरप।
2: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बाय एकदम सॉलिड।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: इनो पीने से आराम मिल गया है या एंटासिड लेने से आपके छाती का दर्द कम हो गया है, तो ये मत सोचिए कि हार्ट अटैक नहीं है। देखिए, वर्ल्ड ओवर एवरेज एज ऑफ हार्ट अटैक अराउंड 60 इयर्स, बट इंडिया में ये 10 साल कम है, यानी कि 50 इयर्स है। सो बाईपास सर्जरी बेसिकली जब आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस होते हैं, आपको हार्ट अटैक हो चुका है या फिर एंजाइना यानी कि दर्द रहता है, आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी कम है, तब स्टेंट की जगह यू नो वी प्रेफर बाईपास सर्जरी। दूसरे, अगर कोई ऊपर से हेल्दी दिख रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि उसकी मेटाबॉलिक प्रोफाइल भी हेल्दी है।
3: हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, इसमें डिफरेंस क्या है?
2: कार्डियक अरेस्ट इज फाइनली द कॉज ऑफ डेथ, यहाँ के ऊपर होने वाला कोई भी पेन, कोई भी एबनॉर्मल सेंसेशन हार्ट अटैक हो सकता है।
4: 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, पहले प्रधानमंत्री हमारे नेहरू जी बने। उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे पहले प्रधानमंत्री बनते तो भारत की क्या दिशा और दशा होती?
5: ये तुमने सवाल क्वेश्चन किया, ये संसद में होता तो बड़ा मजा आता। हर तरीके एक पार्टी बोलती कि कश्मीर हमारा होता, अफगानिस्तान तक हम कब्जा कर लेते, पब्लिक बाहर सुन के ताली वाली ही बजाती।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

जंगी गैंग के शूटर्स ढेर। परिवार से मिलने पहुंचे आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी, कहा अपराध पर जीरो टॉलरेंस। यूपी में आज 2027 के सभी चुनावी योद्धाओं का शक्ति प्रदर्शन, वर्कशॉप में बीजेपी कार्यकर्ताओं का महाजुटान, तो सपा करेगी जिला पदाधिकारियों के साथ संवाद, मायावती की भी मीटिंग। आज बिश्केक के एसईओ समिट में एक मंच पर होंगे पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग। रूस राष्ट्रपति से होगी प्रधानमंत्री की मुलाकात, कारोबार और ऊर्जा संकट पर होगी बात। शुद्धिकरण विवाद में राहुल गांधी पर हल्द्वानी में एफआईआर, एससीएसटी एक्ट के तहत अनुसूचित जाति के युवक ने दर्ज करवाया केस, जातिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। नेपाल त्रासदी में बढ़ते आंकड़ों से दुनिया शन, जान गंवाने वालों की संख्या पहुंची 900 के पार, लापता लोगों की तादाद 4200 के ऊपर, मलबे में ढूंढे जा रहे हैं जिंदगी के निशान।

0: ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यूपी का चुनावी यज्ञ आप देख रहे हैं और शुरुआत करते हैं यूपी एक्सप्रेस वे से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस।
0: यूपी में मिशन 2027 की तैयारी तेज, आज लखनऊ में बीजेपी समाजवादी पार्टी बीएसपी की बड़ी बैठक। यूपी चुनावों की तैयारी में जुटी बीजेपी, लखनऊ में आयोजित कार्यशाला में सीएम योगी के साथ मंच पर नव नियुक्त महामंत्री स्मृति ईरानी भी दिखी। बीजेपी कार्यशाला में हर जिले से 5 पदाधिकारी शामिल, सीएम योगी, दोनों ही डिप्टी सीएम समेत 700 पदाधिकारी जुटे, संगठन और जमीनी रणनीति पर मंथन। राष्ट्रीय महामंत्री बनने के बाद पहली बार लखनऊ बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे हरीश द्विवेदी, कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ किया स्वागत। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी का विपक्षी नेताओं पर निशाना, बोले योगी सरकार में खत्म हुआ गुंडा राज, 2027 में किया जीत का दावा। 2 सितंबर को होगी राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक, सीईओ की नियुक्ति से लेकर स्थायी सुरक्षा समिति के गठन समेत कुल 12 मुद्दों पर चर्चा। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक 2 सत्रों में होगी, सीईओ नियुक्ति के लिए तैयार पैनल पर मंथन, सर्च कमेटी के सदस्य आज पहुंचेंगे अयोध्या। राम मंदिर के नाम चेन्नई की एक महिला ने 4 करोड़ का भेजा चेक, खाते में सिर्फ 3 रुपए से अटका भुगतान, श्रद्धालु के खिलाफ बैंक भेजेगा नोटिस। लखनऊ में नए मतदाताओं को लेकर समाजवादी पार्टी की अहम बैठक शुरू, 75 जिलों के जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष इसमें शामिल। फॉर्म 6 पर अखिलेश यादव लेंगे जिलाध्यक्षों का से अपडेट, नाम जोड़ने का डेटा और चुनावी तकनीकी ट्रेनिंग पर चर्चा। लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस, यूपी चुनाव को लेकर पार्टी बना रही है रणनीति। 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर 75 जिलाध्यक्षों के साथ मायावती की संगठन पर रिपोर्ट, प्रत्याशियों के चयन पर भी मंथन। यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एआईएमआईएम ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले पर साधा निशाना। एआईएमआईएम ने तशादाब चौहान ने कहा कि अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो उन्हें असदुद्दीन ओवैसी का साथ लेना होगा, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद पर भी निशाना। शादाब चौहान ने तो यहां तक कहा कि जब तक अखिलेश के पीडीए में एफ और असदुद्दीन ओवैसी नहीं होता तब तक वो सत्ता का सपना छोड़ दें। हरियाणवी सिंह और अंकित बालियान हत्याकांड में 2 शूटर्स का एनकाउंटर, यूपीएससीएफ ने हत्याकांड में शामिल दोनों शूटर को मार गिराया। शामली में अंकित बालियान की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 संदिग्ध शूटर्स की पहचान सुमित और मोहित के रूप में की थी और दोनों का गोगी गैंग के साथ ताल्लुक। दोनों पर अंकित बालियान की हत्या में शामिल होने का आरोप था और इन पर 50,000 रुपए का इनाम भी था। अंकित बालियान की पत्नी ने सीएम योगी और यूपी पुलिस का जताया आभार, कहा कि सभी आरोपियों का को पकड़ा जाए। पुलिस के मुताबिक अंकित बालियान की हत्या में कुल 6 आरोपियों की भूमिका, इनमें से 2 शूटर ढेर, बाकी 2 शूटर रैकी में शामिल थे और चारों की तलाश जारी। अंकित बालियान हत्याकांड में ईडीजी ने कहा कि योगी सरकार के अपराध के प्रति 0 टॉलरेंस की पॉलिसी और इस पॉलिसी को टेस्ट करने की कोई कोशिश न करें। ब्रजेश पाठक ने कहा कि अंकित बालियान के हथियारों को सजा मिल चुकी है, जो पुलिस पर गोलियां बरसाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। शामली में अंकित बालियान के घर पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी, परिवार वालों से मुलाकात की। अंकित बालियान केस में एनकाउंटर पर ओपी राजभर ने लिखा, अखिलेश जी खबर पता चल गई ना, किसी बेटे की लाश पर जाट लेकर राजनीति करना संवेदना नहीं सौदागिरी। ओपी राजभर ने लिखा कि जिस अंकित बालियान की हत्या पर आप राजनीति करना चाहते थे उसके हत्यारे वहीं पहुंच गए जहां पर उनकी जगह थी, यानी नर्क।

0: और अब इस वक्त ये बड़ी खबर आपको संभल से देते हैं। संभल में चारागाह की सरकारी भूमि पर बने हुई मजार पर बुलडोजर एक्शन हुआ। ये बुलडोजर एक्शन होने वाला है और तहसीलदार धीरेन्द्र कुमार सिंह, नायब तहसीलदार शुभम प्रताप सिंह थोड़ी देर में मजार को हटाने की कार्रवाई शुरू करने वाले हैं। इस कार्रवाई के लिए आधा दर्जन लेखपाल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है। ये रायसती थाना इलाके के नीमखेड़ा बझेड़ा का मामला है। राजस्व रिकॉर्ड में गाटा संख्या 1148 की चारागाह के नाम पर दर्ज सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके मजार बना दी गई। तहसीलदार धीरेन्द्र कुमार सिंह ने धारा 67 के तहत बेदखली का आदेश जारी किया था। हमारे संवाददाता अभिनव माथुर इस खबर पर लाइव इस समय हमारे साथ जुड़ गया। अभिनव, अब ये कैसी मजार है, इसका दावेदार कौन है, कितने हैं और क्या किसी वक्फ से भी इनके मैनेजमेंट का कोई कनेक्शन है? अभिनव, मेरी आवाज मिल रही है आपको? अभिनव, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, प्लीज एक बार चेक कर लें, दोबारा आपके पास लौटते हैं। तो इस समय ये बड़ा अपडेट, बड़ी खबर आपको दे देते हैं कि संभल में एक्शन की तैयारी है, बुलडोजर तैयार है, प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। इस ही अवैध मजार को तोड़ने की अब कार्रवाई शुरू होने वाली है। पुलिस बल भी पूरी तरह से तैयार है, वहां पर तैनात है वहां पर। और ये चारागाह की जमीन पर अवैध मजार बना दी गई और इस अवैध मजार को अब तोड़ दिया जाएगा। तो रायसती थाने के नीमखेड़ा का मामला है, धारा 67 के तहत बेदखली का आदेश इसमें जारी हुआ और इसको अवैध पाया गया और अवैध था तो इसको तोड़ा जा रहा है और बुलडोजर एक्शन पूरी तरह से अब तैयार है। अवैध मजार पर थोड़ी देर में बुलडोजर एक्शन होने वाला है। तो ये संभल से बड़ी खबर। अभिनव माथुर हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। तो संभल में लाइव एक्शन कितने देर बाद होने वाला है, क्या कोई दावेदार है, विस्तार से बताएं अभिनव।
1: देखिए बिल्कुल, लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर ये पूरी कार्यवाही जो शुरू की गई है, जबकि लेखपाल ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि जो गाटा संख्या 1148 है उसमें चारागाह के नाम पर जो सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज जमीन है उसके लगभग 50 मीटर से ज्यादा जो जगह है उस पर जो है मजार बना करके कब्जा किया गया है, जिसके बाद इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो तहसीलदार धीरेन्द्र कुमार सिंह की कोर्ट में चली और उस कोर्ट में सुनवाई होने के बाद अब तहसीलदार धीरेन्द्र कुमार सिंह की तरफ से ये पूरा आदेश जारी किया गया और उसके बाद अब इस पूरी बेदखली के आदेश के बाद यहाँ पर नायब तहसीलदार शुभम प्रताप सिंह सहित जो आधा दर्जन राजस्व कर्मियों की टीम है वो अब से कुछ ही मिनट के अंदर यहाँ पहुंचने वाली है और सामने आप देखेंगे तो देखिए यहीं पर इसी के ठीक पीछे जो है रास्ता है और देखिए सामने आपको दिखाई देगा, देखिए सामने आपको जो पुलिसकर्मी हैं वो आपको भीड़ में जो है दिखाई देंगे और जो कि यहाँ पर इस वक्त पहले जो है कानून व्यवस्था को बनाने के लिए यहाँ पर जो भी पुलिसकर्मी है उनकी यहाँ पर तैनाती की जा रही है, लेकिन फिलहाल गाँव में जो हलचल है वो कहीं ना कहीं जो शुरू हो चुकी है और फिलहाल इसी के पीछे बनी हुई वो अवैध मजार है जिसको यहाँ पर ध्वस्त करने के लिए ये पूरी जो टीम है वो यहाँ अब से कुछ ही देर में बुलडोजर एक्शन जो शुरू करेगी। लेकिन फिलहाल देखिए आप यहाँ पीछे देखेंगे तो देखिए पुलिसकर्मी लगातार यहाँ पर आपको जो है पहुंचते हुए नजर आएंगे, जो अलग अलग थानों की जो पुलिस फोर्स है उसको यहाँ पर कॉल किया जा रहा है, यहाँ पर जो है रायसती थाने की पुलिस हो चाहे वो आसपास के दूसरे थानों की पुलिस हो उसको यहाँ पर जो बुलाया जा रहा है जिससे कि किसी भी हाल में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो किसी भी हाल में जो डिस्टर्ब ना हो और जो शांतिपूर्ण ढंग से जो की कार्यवाही है वो संपन्न हो सके। आप देखेंगे तो देखिए महिला पुलिसकर्मी भी आपको सामने आती हुई नजर आएंगी और इसी तरह से जब यहाँ पर
0: मजार का मैनेजमेंट कौन देख रहा था?
1: देखिए बिल्कुल इससे जुड़े हुए जो भी लोग थे जो है जिन लोगों ने इसको लेकर के पहले जो है वो दावा किया था कि ये उनकी संपत्ति है उसको लेकर के नोटिस भी जारी किया गया था तहसीलदार की तरफ से, लेकिन बाद में उन लोगों ने सामने आकर के कोई जवाब नहीं दिया और जिसके बाद तहसीलदार की तरफ से ये बेदखली का आदेश जारी किया गया और अब इसी पूरी कार्रवाई को करने के लिए देखिए जो पुलिसकर्मी है उनको यहाँ पर तैनात किया जा रहा है। शुभम प्रताप सिंह नायब तहसीलदार के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई की जाएगी।
0: ठीक है अभिनव, नजर बनाए रखिए, अपडेट्स के लिए आपके पास लौटेंगे। अवैध मजार पर थोड़ी देर में बुलडोजर एक्शन होने वाला है और इस समय यूपी के डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सीधा लिए चलते हैं।
2: मुरक्षार्थ पुलिस ने फायरिंग की, उसमें दोनों अभियुक्त घायल हुए, उन्हें तत्काल जिला संयुक्त अस्पताल में ले जाया गया शामली में, जहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित किया। अभियुक्तों के कब्जे से 3 पिस्टल, बड़ी संख्या में जिंदा और खोखा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और तमाम चीज मिली हैं। पूरे प्रकरण में नियमानुसार प्रधान कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत 26 अगस्त को शाम लगभग 7:45 बजे हुई थी। हरियाणवी गायक अंकित बालियान, ये शामली कोतवाली क्षेत्र में नाला पटरी इलाका पड़ता है, वहां पर एक जिम से, फिटनेस जिम से बाहर निकलकर आ रहे थे, तभी 4 हथियारबंद अपराधियों ने उन पर फायरिंग की और उनकी हत्या कर दी। मृतक के पिता के द्वारा 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम कराया गया और इसके गंभीरता को देखते हुए इस पूरी घटना के अनावरण के लिए कई टीमों का गठन किया गया। एडीजी मेरठ जोन और एडीजी एलओ, एडीजी एसटीएफ के नेतृत्व में कई टीमों का गठन किया गया, जिसमें 11 पुलिस अधिकारियों की विशेष टीमें लगाई गई, जिसमें 4 अपर पुलिस अधीक्षक थे और 7 हमारे पुलिस उपाधीक्षक भी थे, बाकी इंस्पेक्टर शामिल थे। एसटीएफ मेरठ और एसटीएफ गौतम बुद्ध नगर की यूनिट्स को भी इसमें लगाया गया। पुलिस की प्राथमिकता बिल्कुल स्पष्ट थी, हत्या में सीधे शामिल जो शार्प शूटर्स हैं उनकी पहचान करना, उनकी गिरफ्तारी करना और उनके पीछे मौजूद सारी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और गैंग नेटवर्क को भी सामने लाना। ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस के बेसिस पर लगातार साक्ष्य एकत्रित किए गए, सीसीटीवी, डिजिटल गतिविधियां, आरोपियों के मूवमेंट, ठहरने के स्थान, भुगतान, आपसी संपर्क, इन सब के आधार पर सारे साक्ष्य एकत्रित किए गए। विवेचना में सामने आया कि हत्या से पहले आरोपियों द्वारा अंकित बालियान की गतिविधियों की रेकी भी की गई थी और जिम के आने जाने की गतिविधियों पर भी नजर रखी गई थी। जांच में यह भी सामने आया कि शूटर्स को कहीं बाहर से हथियार भी उपलब्ध कराए गए थे और हत्या के दिन 4 हमलावरों ने योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद अपराधी पुलिस से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदलते रहे। घटना के बाद जो घटित टीमें थीं उन्होंने कई प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश में भी और कई प्रदेशों में छापेमारी की, जिसमें हरियाणा में, हिमाचल में, गुजरात में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई विभिन्न स्थानों पर दबिश दी और आरोपियों की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए रखी। इसी क्रम में 29 अगस्त को ह्यूमन और टेक्निकल इंटेलिजेंस के बेसिस पर घटना में शामिल अभियुक्तों की पहचान की गई और इसमें से 2 अभियुक्त, मोहित और सुमित, आज की पुलिस कार्रवाई में मारे गए हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मोहित के विरुद्ध हरियाणा में लगभग 14 आपराधिक अभियोग पंजीकृत हैं और सुमित के विरुद्ध भी कम से कम 1 आपराधिक अभियोग पंजीकृत होने की जानकारी प्राप्त हुई है। इनके अन्य आपराधिक इतिहास का भी सत्यापन कराया जा रहा है। विवेचना में इस हत्याकांड के पीछे गोगी गैंग से जुड़े नेटवर्क की भूमिका सामने आई है। 26-27 अगस्त को सोशल मीडिया पर राहुल उर्फ भोलू शाहपुरिया के द्वारा उससे जुड़े इंस्टाग्राम अकाउंट से हत्या की जिम्मेदारी ली गई थी और इसकी जांच भी विवेचना का एक हिस्सा है, जिसकी जांच की जा रही है। इस हत्या के पीछे की पृष्ठभूमि भी महत्वपूर्ण है। वर्ष 2021 में रोहिणी कोर्ट दिल्ली में जितेंद्र मान उर्फ गोगी की हत्या हुई और उसके बाद गोगी और पिल्लू राजपुरिया के गैंगों के बीच में चली गैंगवार की कड़ियां इस विवेचना में सामने आई हैं। अंकित बालियान द्वारा अभिनीत, मतलब उनके द्वारा इसमें सिर्फ एक्टिंग की गई है, एक गाना जो YouTube पर काफी पॉपुलर हुआ उसको कथित रूप से गोगी की हत्या के घटनाक्रम से जोड़कर देखा गया, जो ये गैंग था उनके द्वारा देखा गया और उनके द्वारा इसमें पूर्व में भी उसको धमकियां वगैरह दी गई। अंकित द्वारा भी ये स्पष्ट बताया गया था कि इस गीत में उनके द्वारा सिर्फ अभिनय किया गया है, इसकी गीत के बोल और उसकी धुन उनकी नहीं थी। इसके बावजूद इस गैंग के द्वारा इसे विरोधी गैंग से जोड़कर देखने की बात विवेचना में सामने आई है। अभी तक की जांच से यह संकेत मिलता है कि यह कोई अचानक हुई वारदात नहीं थी, बल्कि इसके पीछे पूरी एक प्री प्लान्ड प्लानिंग थी। शूटर्स का मोबिलाइजेशन था, हत्या के बाद का एस्केप प्लान था और सुनियोजित क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी थी। उत्तर प्रदेश पुलिस इस हत्याकांड में शामिल शेष अपराधियों, उनके नेटवर्क के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां हमको प्राप्त हुई हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार टीमें कार्य कर रही हैं। इस केस में हमारा उद्देश्य केवल शूटर्स तक पहुंचना नहीं है, बल्कि जिन लोगों ने साजिश रची, संसाधन उपलब्ध कराए, हथियार दिए, रैकी कराई या अपराधियों को संरक्षण दिया, ये पूरी चेन को कानून के दायरे में लाया जाएगा। मेरे द्वारा शामली पुलिस को और एसटीएफ को इस साहसिक कृत्य के लिए 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया है। मैं आपके माध्यम से यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई यहीं समाप्त नहीं हो रही। इस अपराध की साजिश में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका तय होगी और उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की सीमा के बाहर बैठकर अपराध की साजिश रचने वाले ये भ्रम ना पालें कि ये दूरी उनको कानून की पहुंच से दूर कर देगी। इसमें बाहर से जो शूटर्स भेजे गए, गैंगवार करने या अपराध कराने वालों के विरुद्ध उपलब्ध सभी कानूनी और अंतर्राज्यीय समन्वय के साथ ये कार्रवाई की जा रही है। मैं बताना चाहूंगा कि इस पूरी कार्रवाई में जो हमारे पड़ोसी प्रदेश थे, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, उनका पूरा समन्वय और सहयोग रहा, जिससे कि बहुत ही अल्प समय में इस घटना को वर्कआउट भी किया गया और ये कार्रवाई भी हुई। किसी भी हालत में उत्तर प्रदेश की भूमि को किसी भी गैंग की राइवलरी या उनकी शरण स्थली बनने की इजाजत किसी भी क्रिमिनल गैंग को नहीं दी जा सकती। और अगर जो अपराधी सोचते हैं कि अपराध कहीं करेंगे, छुप कहीं और जाएंगे और कानून के पहुंच से बाहर पहुंच जाएंगे, तो वो अच्छी तरह से इस बात को स्पष्ट संदेश है कि किसी भी प्रकार का अपराध करके कहीं पर भी छुपेंगे, कानून के हाथ उनकी इस दौड़ से आगे हैं उससे, और वो कानून की जद में जरूर आएंगे। इसलिए जो ये आगे की कार्रवाई है उसमें कुछ अपराधी जेल में बैठे हुए हैं, जेल में बैठकर भी षड्यंत्र रच रहे हैं, कुछ अपराधी विदेशों में हैं, उन सभी के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की जा रही है और बहुत शीघ्र ही उस कानूनी कार्रवाई के अंजाम तक हम सभी पहुंचेंगे। धन्यवाद।
3: सर, गैंग का जो लीडर है वो पहले ही मारा जा चुका है दिल्ली में, जैसा कि आपने रोहिणी कोर्ट ने बताया, तो ये माना जाए सर कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जो हुई है ये उसी गिरोह ने कराई है या किसी और का? ये
2: नहीं, वो तो घटना करीब 4 साल पहले हो चुकी है, उसके बाद से जो हमारी जानकारी है, इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य आए हैं, गैंग की कमान दूसरे लोगों ने ले ली है। तो नाम अभी जो मृतक गैंगस्टर है उनके नाम पर वो गैंग चल रहा है, बट उसकी कमान और लोगों के हाथ में है जिनके द्वारा घटना कराई गई है।
4: सर, मोलू शाह पुजिया का नाम सामने आया है, ये पता चल रहा है कि कनाडा में है वो, वहां से ऑपरेट कर रहा है, तो उसको लेकर भी क्या बाकी एजेंसी की मदद की जा रही है?
2: मैंने आपसे बताया कि मैं अभी इसके स्पेसिफिक्स के बारे में तो नहीं बताऊंगा कि अभी तक क्या क्या एविडेंस हमको मिले हैं और उनका लोकेशन कहां कहां पर है, लेकिन सभी पहलुओं पर बहुत गहराई से जांच चल रही है। भारत सरकार के जो संस्थाएं हैं, बाकी प्रदेशों की जो पुलिस है, उनके साथ पूरा समन्वय है। हाल ही में आपने देखा होगा कि विदेशों में बैठे हुए अपराधियों को एलआर के माध्यम से या रेड कॉर्नर नोटिस के माध्यम से, इंटरपोल के माध्यम से लाने की कार्रवाइयां हुई हैं। उसी कड़ी में जो भी अपराधी, चाहे वो बाहर हो, चाहे वो जेल में हो, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या विदेश में हो, सभी के विरुद्ध ये कार्रवाई की जाएगी।
5: सर, लॉरेंस बिश्नोई का कोई कनेक्शन आया या गोभी गैंग से लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन बताया जाता है?
2: अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो नाम आएंगे, जो एविडेंस के बेसिस पर चीजें सामने आएंगी, उसके बेसिस पर हम कार्रवाई करेंगे।
5: असलहे कहां से कैसे प्रोवाइड कराए गए?
2: मैंने आपको बताया कि ये जो 4 शूटर्स थे, इनको इन्हीं के गैंग के सदस्यों के द्वारा ये लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कराया गया था, जिन बिंदुओं पर हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हमको साक्ष्य मिले हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है।
6: सर, ये असलहे बाहरी थे, विदेशी थे या इंडियन थे? सर, इंडियन मेड असलहे जो बरामद हुए हैं?
2: फैक्ट्री मेड असलहे थे।
0: तो अंकित बालियान मर्डर केस को लेकर पुलिस ने जानकारी दी है, डीजीपी ने पूरी जानकारी दी है और अंकित बालियान मर्डर केस में अपराधियों पर एक्शन हुआ है, 2 को एनकाउंटर में मार गिरा है और अपराध से अधिक सियासत भी इस बीच में हो रही है, क्योंकि इस हत्याकांड की बुनियाद में ही जात गोत्र बड़ी वजह थी। हत्या के बाद अखिलेश यादव ने भी उसी जाति गोत्र की बात की तो राजनीति गर्म हो गई और अब अंकित बालियान का परिवार और घर राजनेताओं के लिए सहानुभूति की सियासत का सेंटर बन गया है।

0: शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित पालियान की हत्या के बाद यूपी में सक्रिय अपराधी नेटवर्क से ज्यादा जात्र गोत की राजनीति की चर्चा चल रही है। जाति वोट की सियासत ऐसी कि अंकित बालियान की हत्या के बाद एक तरफ पुलिस प्रशासन हत्यारों की धरपकड़ में लगा था और सियासत वोटों की धरपकड़ में। पश्चिमी यूपी की सियासत के बड़े चेहरों की अंकित बालियान के घर कतार लग गई। हत्या जैसी घटना पर अफसोस से लेकर सहानुभूति और कानून व्यवस्था पर सवालों वाली राजनीति ने भी रफ्तार पकड़ी और इसी बीच शुरू हो गई जात की बात। अंकित बालियान हत्याकांड पर अखिलेश यादव ने हत्या से ज्यादा जाट की जात पर तवज्जो देने की कोशिश की, जिस पर बीजेपी की ओर से डिप्टी सीएम से लेकर एनडीए में शामिल दलों तक के नेताओं ने अखिलेश पर राजनीतिक बयान दिए।
1: कानून की अपनी चाल होती है, व्यवस्था, कानून व्यवस्था तभी मजबूती से कायम रह पाती है जब लोग, आम नागरिक, उनका विश्वास उस व्यवस्था पे बना रहे, कानून का अपना इकबाल हो।
2: अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जाति में आप रोष है,
1: देखो इन चीजों में जाति ना ढूंढी जाए तो अच्छा, पूरा सब समाज एकत्रित है।
0: दरअसल अंकित बालियान की हत्या के बाद गमजदा परिवार से मिल रहे नेताओं के लिए इतने गंभीर अपराध को लेकर भी कानून व्यवस्था से ज्यादा राजनीति में दिलचस्पी थी और उसका असर हुआ कि अंकित के पिता ने कभी योगी राज में इंसाफ के तकाजे पर सवाल उठाया तो पत्नी ने माफिया को मिट्टी मिलाने वाले दावे की उलाहना दी और बहन ने तो राहुल गांधी तक से मुद्दा उठाने की अपील कर डाली। अंकित के आरोपी हत्यारों के एनकाउंटर के बाद अंकित बालियान का परिवार कुछ संतोष जाहिर कर रहा है लेकिन इंसाफ अधूरा बता रहा है। दूसरी तरफ एनकाउंटर के बाद अब एनडीए के साथी दल अखिलेश की जाट और जात वाली बात पर पलटवार कर रहे हैं। राजभर ने हत्याकांड में शामिल शूटरों के एनकाउंटर के बाद पोस्ट किया, किसी बेटे की लाश पर जाट लिखकर राजनीति करना संवेदना नहीं, सौदागरी है। हत्या मानवता के खिलाफ अपराध है, किसी गोत्र की जागीर नहीं। आपको जाट तब याद आया जब चुनाव आने वाला है। दरअसल इस हत्याकांड की बुनियाद में भी जाति गोत्र का मसला नजर आया है क्योंकि शामली पुलिस के मुताबिक इस पूरी हत्या की साजिश गोगी गैंग से जुड़े राहुल उर्फ भोलू शाहपुरिया ने रची थी। भोलू ने ही शूटरों से संपर्क किया, उन्हें हथियार और पैसे दिए और रेकी करवाकर अंकित की हत्या के लिए शामली भेजा क्योंकि गोगी गैंग के लोग अंकित बालियान के एक वीडियो सॉन्ग को गोगी की हत्या पर बनाया गया तंज वाला गाना मान रहे थे।
3: अपराधियों से विस्तार से बात हुई, उन्होंने बताया कि हम लोगों ने गोगी भाई की जो हत्या हुई थी कोर्ट में रोहिणी में, उसके संबंध में अंकित बालियान ने अभिनय करके एक गाना बनाया था कि कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान, जज भी जज के पसीने आएंगे।

0: यही मोटिव था, चूंकि हम लोगों ने मना कराया था इसको कि ये तुम गाना मत बनाओ, हम लोग अपमानित बेइज्जत होते हैं, लेकिन नहीं माना।
1: इस गाने और हत्याकांड कनेक्शन के पीछे गैंगवार की पुरानी कहानी सामने आ रही है, जिसमें 5 साल पहले 24 सितंबर 2021 को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट के रूम नंबर 207 में जितेंद्र मान उर्फ गोगी को विरोधी टिल्लू ताजपुरिया गैंग के शूटरों ने वकील के भेष में आकर 18 गोलियां मारी थी। हालांकि 23 मई 2023 को तिहाड़ में ही टिल्लू ताजपुरिया की हत्या हो गई थी, लेकिन उससे पहले ही अंकित बालियान का ये गाना 22 दिसंबर 2022 को रिलीज हुआ था, जिसमें अंकित बालियान ने कलाकार की भूमिका अदा की थी। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
2: अंकित बालियान की हत्या को लेकर विपक्षी दलों, खासकर समाजवादी पार्टी की ओर से जिस तरह कानून व्यवस्था को लेकर, इसके साथ साथ जाट, जात और गोत्र का भी सवाल उठाया गया, उसे लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से हमारे संवाददाता ने बातचीत की। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना थी और प्रदेश पुलिस ने उन्हें पुलिस मुठभेड़ में मारा है। अंकित बालियान जी की जो निर्मम हत्या हुई थी, प्रदेश दुखी था। उन हत्यारों ने पुलिस पर भी गोलियां चलाई, जिसकी किए की सजा उन्हें मिल चुकी है।
4: ये लगातार अखिलेश यादव और राहुल गांधी नैरेटिव सेट कर रहे हैं,
3: आप कुछ नहीं, नैरेटिव परेशान है, व्याकुल है, सत्ता चली गई मिलने वाली नहीं है, उनकी पीड़ा दूर होने वाली नहीं है, उनको शांति से घर में बैठना चाहिए।
2: खबरों का सिलसिला लगातार जारी, अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: नोवा कोटा से ऊपर मैं त्रिशूली में आया हूँ, देख लीजिए सैलाब का ये सितम।
8: ये वही त्रिशूली नदी है जिसमें पानी मलबे के साथ पूरे आवेग के साथ आया।
7: पीछे जो आपको इमारतें दिख रही है ना, वो सारी बिल्कुल खंडहर हो चुकी है।
8: जो निचले इलाके हैं उन सब से ऊंचाई की तरफ लोगों को जाने के लिए कहा गया है।
9: चितवन में आज तक की टीम मौजूद है और आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं।
7: मैं आशुतोष मिश्रा,
9: रोहित सिंह,
8: श्वेता सिंह, नेपाल आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

जिला पदाधिकारियों के साथ संवाद, मायावती की भी मीटिंग। आज बिश्केक के एससीओ समिट में एक मंच पर होंगे पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग। रूसी राष्ट्रपति से होगी प्रधानमंत्री की मुलाकात। कारोबार और ऊर्जा संकट पर भी होगी बात। शुद्धिकरण विवाद में राहुल गांधी पर हल्द्वानी में एफआईआर। एससी एसटी एक्ट के तहत अनुसूचित जाति के युवक ने दर्ज कराया केस। उत्तराखंड में कांग्रेस का भारी विरोध प्रदर्शन। नेपाल राज्य में बढ़ते आंकड़ों से दुनिया सन्न। जान गंवाने वालों की संख्या पहुंची 900 के पार। लापता लोगों की तादाद 4200 से ऊपर। मलबे में ढूंढे जा रहे हैं जिंदगी के निशान।

हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड में दो शार्प शूटर्स का एनकाउंटर, यूपीएसटीएफ ने हत्याकांड में शामिल दोनों शूटर्स को मार गिराया। शामली में अंकित बालियान की हत्या मामले में पुलिस ने दो संदिग्ध शूटर्स की पहचान सुमित और मोहित के तौर पर की है। दोनों पर अंकित बालियान की हत्या में शामिल होने का आरोप था, इन पर 50,000 का इनाम भी रखा गया था। अंकित बालियान की पत्नी ने सीएम योगी और यूपी पुलिस का जताया आभार, कहा सभी आरोपियों को पकड़ा जाए। पुलिस के मुताबिक अंकित बालियान की हत्या में कुल 6 लोग की भूमिका, इनमें से 2 शूटर ढेर, बाकी 2 शूटर रेकी में थे शामिल, चारों की तलाश जारी। अंकित बालियान हत्याकांड पर एडीजी ने कहा योगी सरकार के अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस है, इस पॉलिसी को टेस्ट करने की कोशिश न करें। ब्रजेश पाठक ने कहा अंकित बालियान के हत्यारों को सजा मिल चुकी है और जो पुलिस पर गोलियां बरसाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। शामली में अंकित बालियान के घर पहुंचे केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी, परिजनों से की मुलाकात। अंकित बालियान केस में एनकाउंटर पर ओपी राजभर ने लिखा अखिलेश जी खबर पता चल गई ना, किसी बेटे की लाश पर जाट लिखकर राजनीति करना संवेदना नहीं सौदागिरी। ओपी राजभर ने लिखा जिस अंकित बालियान की हत्या पर आप राजनीति करना चाहते थे उसके हत्यारे वहीं पहुंच गए जहां उनकी जगह थी यानी नर्क। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में शुद्धिकरण मामले में नया मोड़, श्रीराम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ दी गई तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। राहुल गांधी पर अनुसूचित वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप, राहुल गांधी ने शुद्धिकरण यज्ञ को बताया था दलित विरोधी। हल्द्वानी शुद्धिकरण मामले में कांग्रेस ने थाने में दी तहरीर, दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। शुद्धिकरण विवाद पर कांग्रेस का मौन सत्याग्रह, बारिश में डटे रहे नेता कार्यकर्ता। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अमेरिका में विविधता को लेकर दिए गए बयान पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल और ओवैसी ने साधा निशाना। ओवैसी ने भागवत के हिंदू मुस्लिम एकता वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा संगठन की कुछ बातें दुनिया के लिए हैं, कुछ और हैं, आरएसएस सदस्यों के लिए कुछ और होती है। मोहन भागवत के हिंदू मुस्लिम वाले बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया, कहा उन्होंने देश में एकता की बातें कही और यहां पर देश को ही बांटते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर तंज कसते हुए सुप्रिया सुले ने कहा कि जो लोग विदेश जाते हैं वो लोकतंत्र और सबके अधिकारों की बात करते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान, करीब 16,500 छात्रों ने अपने मताधिकार का किया इस्तेमाल। पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव को लेकर लॉ डिपार्टमेंट में छात्रों की नारेबाजी। यूपी मिशन 2027 की तैयारी तेज, आज लखनऊ में बीजेपी एसपी बीएसपी की बड़ी बैठकें। यूपी चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी, लखनऊ में आयोजित कार्यशाला में सीएम योगी के साथ मंच पर दिखी नवनियुक्त महामंत्री स्मृति ईरानी। बीजेपी कार्यशाला में हर जिले से 5 पदाधिकारी शामिल, सीएम योगी दोनों डिप्टी सीएम समेत 700 पदाधिकारी जुटे, संगठन और जमीनी राजनीति पर मंथन। राष्ट्रीय महामंत्री बनने के बाद पहली बार लखनऊ बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे हरीश द्विवेदी, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री हरीश द्विवेदी का विपक्ष के नेताओं पर निशाना, बोले योगी सरकार में खत्म हुआ गुंडा राज, 2027 में किया जीत का दावा। 2 सितंबर को होगी राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक, सीईओ की नियुक्ति से लेकर स्थायी सुरक्षा समिति के गठन समेत कुल 12 मुद्दों पर होगी चर्चा। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में 2 सत्रों में होगी सीईओ नियुक्ति के लिए तैयार पैनल पर मंथन, सर्च कमेटी के सदस्य आज पहुंचेंगे अयोध्या। राम मंदिर के नाम पर चेन्नई की महिला ने दिया 4 करोड़ का चेक, खाते में से 3 रुपए होने पर अटका भुगतान, श्रद्धालु के खिलाफ बैंक भेजेगा नोटिस। लखनऊ में नए

मतदाताओं को लेकर समाजवादी पार्टी की बैठक शुरू, 75 जिलों के जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष शामिल। फॉर्म 6 पर अखिलेश यादव लेंगे जिलाध्यक्षों से अपडेट, नाम जोड़ने का डेटा और चुनावी तकनीकी ट्रेनिंग पर चर्चा। लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस, यूपी चुनाव को लेकर पार्टी बना रही है रणनीति। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर 75 जिलाध्यक्षों से मायावती ले रही है संगठन की रिपोर्ट, प्रत्याशियों के चयन पर मंथन। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एआईएमआईएम ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले पर साधा निशाना। शादाब चौहान ने कहा, अगर अखिलेश मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो उन्हें ओवैसी का साथ लेना होगा। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद पर भी साधा निशाना। संभल में सरकारी चारागाह जमीन पर बनी मजार पर होगा बुलडोजर एक्शन, प्रशासन ने गठित की पुलिस राजस्व की टीमें। नेपाल में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा, 903 मौतें, इस राजनी में लापता लोगों का आंकड़ा 2500 के पार। भारत की 19 सदस्यीय फोरेंसिक टीम ने नेपाल बाढ़ पीड़ितों की डीएनए पहचान के लिए काठमांडू में काम शुरू कर दिया है। भारत की खास टनल रेस्क्यू टीम का चिलिमे और लांगटांग में क्षतिग्रस्त हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साइट्स पर नेपाली सेना के साथ मिलकर संयुक्त अभियान। रसुआ में बोटे कोशी नदी की तस्वीर आई सामने, नदी में जबरदस्त तूफान। नेपाल बाढ़ में डूबी बैंक शाखा से 50 करोड़ का सोना बरामद, नकदी भी मिली। एमपी के सतना में लगातार हो रही बारिश से हालात गंभीर, पानी में डूबा रेलवे ट्रैक, कर्मचारियों ने ट्रैक की जांच के बाद ट्रेनों को किया रवाना। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में हो रही है बारिश से नदी नाले उफान पर, जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं लोग। ऋषिकेश में दो वाहनों की जोरदार टक्कर में फंसे चार लोग, एसडीआरएफ ने अभियान चलाकर चार लोगों को वाहन से सुरक्षित बाहर निकाला। उत्तराखंड के बागेश्वर में पहाड़ दरका, 70 परिवारों पर मंडराया खतरा।

भारी बारिश के बावजूद उत्साह से जारी है केदारनाथ यात्रा। अब तक 14,73,000 से अधिक भक्त कर चुके हैं दर्शन। हरिद्वार में तेज बारिश के बीच गिरी आकाश बिजली, हादसे में कोई हताहत नहीं। कांगड़ा घाटी में जोरदार बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त, पानी भरने के कारण स्थानीय लोगों को तीर्थयात्री और स्थानीय लोगों को परेशानी। 18,600 फीट पर पायलट का साहस, नुनकुन की पहाड़ी पर सेना के हेलीकॉप्टर ने स्किड टिकाकर मरीज को बचाया। गैर जरूरी सामान हटाकर और कम ईंधन लेकर हेलीकॉप्टर का वजन किया कम, पायलट ने सटीकता साहस के साथ बचाव कार्य को दिया अंजाम। सिंदौरी में बाढ़ में फंसे लोगों के लिए देवदूत बनी पुलिस, चंद्रप्रभा नदी में फंसे 3 लोगों का रेस्क्यू। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी में आई भीषण बाढ़ ने तबाही मचाई है, रामघाट किनारे बने कई घर क्षतिग्रस्त। चित्रकूट में मंदाकिनी का पानी यमुना में घुसा, बैकफ्लो से राजापुर के करीब 10 गांवों का संपर्क टूटा। दमन में एक लाइफ गार्ड की सतर्कता और सूझबूझ से 7 साल की लड़की डूबने से बची, खेलने के दौरान लहर की चपेट में आई। हापुड़ में गंगा एक्सप्रेसवे पर हादसे में थार कार सवार 4 युवकों की दर्दनाक मौत, एक युवक गंभीर रूप से घायल। मुंबई पोर्ट पर जहाज पर गिरी 140 टन की क्रेन, भीषण आग से मचा हड़कंप, 2 ऑपरेटर घायल। जामनगर में हाईवे पर ट्रिपल सड़क हादसा, कार बाइक रिक्शा की टक्कर में 3 की मौत, 5 बच्चे और 2 महिलाएं घायल। सूरत रेलवे स्टेशन पर पैटीज खाते चूहे का वीडियो वायरल, रेलवे प्रशासन तुरंत फूड स्टॉल को सील किया। ग्रेटर नोएडा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, ट्रक डिवाइडर तोड़कर कार पर गिरा, 4 की मौत। गाजियाबाद में मामूली विवाद को लेकर हिंसक झड़प, हादसे में 50 वर्षीय व्यक्ति की मौत जबकि कई घायल। सहारनपुर में गोकशी की कोशिश कर रहे बदमाश से पुलिस की मुठभेड़, पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार आरोपी पर करीब 1 दर्जन मुकदमे दर्ज। बिजनौर में घायल महिला को थाना प्रभारी गोदी बैठाकर अस्पताल ले जाते दिखे, पीछे चलती दिखी पुलिस गाड़ी का वीडियो वायरल। बगहा में गंडक नदी के कटाव से बचाव के लिए चल रही कटाव विरोधी कार्य की धीमी रफ्तार से विधायक नाराज, बोले 9 साल में पूरा नहीं हुआ है काम। बगहा में चंपारण हमसफर एक्सप्रेस से निकला धुआं, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, लाख की आशंका से यात्रियों में अफरा तफरी। तमिलनाडु पुलिस ने मणिपुर से मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी के सूटकेस से महिला के शरीर के टुकड़े मिलने से सनसनी फैली। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली डंप का भंडाफोड़, जंगल में भारी विस्फोटक बरामद। दिल्ली में स्लीपर बस में 16 साल की लड़की के साथ गैंगरेप, आरोपी बस कंडक्टर गिरफ्तार। मैनपुरी में ट्रैफिक सिपाही से मारपीट की घटना के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की, आसपास के अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर अभियान चलाया। गोरखपुर में मां से नाराज होकर किशोरी ने की पानी टंकी से कूदने की कोशिश, महिला दरोगा ने समय रहते बचाई जान। औरैया में 9 साल की मासूम खेलते समय गहरे कुएं में गिरी, फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर सुरक्षित बाहर निकाला। हैदराबाद के कुकटपल्ली से अस्पताल के पास नर्स की हत्या, इलाके में मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में खौफनाक हादसे में बाल बाल बची बुजुर्ग की जान, देवदूत बनकर आसपास के मौजूद दुकानदारों ने करंट लगने से बचाया। मुंबई के बांद्रा में तेज रफ्तार कार ने 8 वर्षीय बच्चे को कुचला, मौके पर मौत, पुलिस ने महिला ड्राइवर को किया गिरफ्तार। तमिलनाडु के मदुरई में नाबालिग ने की आत्महत्या, स्कूल में एडमिशन के दौरान जातिगत अपमान से हुई थी आहत। नोएडा में पिता ने 5 साल के बेटे को मारा मुक्का, बच्चे ने तोड़ा दम, आरोपी पिता हिरासत में। झारखंड गढ़वा में अंधविश्वास की खौफनाक वारदात, एक महिला को डायन बताकर लोगों ने खोलते पानी में फेंका, महिला हुई जख्मी। भारत ने विमेंस T20 एशिया कप में जीत से शुरुआत की, टीम ने रविवार को थाईलैंड को 94 रन से हराया। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में थाईलैंड 160 रन चेज करते हुए 16.3 ओवर में 65 रन पर ऑल आउट। प्लेयर ऑफ द मैच शिपाली शर्मा ने 36 बॉल में 64 रन बनाए। भारतीय टीम का दूसरा मैच 5 सितंबर को पाकिस्तान से इसी ग्राउंड में होगा। जर्मनी 4th बार हॉकी वर्ल्ड चैंपियन फाइनल में स्पेन को 1-0 से हराया, पाकिस्तान सबसे ज्यादा 4 खिताब के रिकॉर्ड की बराबरी की। राजकुमार संतोषी की नई फिल्म सनी देओल की एंट्री, 1996 में रिलीज फिल्म घातक से जुड़े किरदारों की दिखाई जाएगी कहानी। मुसाफिर कैफे की अपार सफलता के बाद विक्रांत मेसी की लगी लॉटरी, फिल्म कर्ण में आएंगे नजर। बिलियनेयर सीरीज में विजय माल्या के रोल में नजर आएंगे अर्जुन रामपाल, नवंबर में शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। अरमान अंश बनी 2026 की सरप्राइज ब्लॉकबस्टर, 2 करोड़ के बजट में बनी फिल्म में अब तक 39 करोड़ की कमाई की। टॉक्सिक ने कमाई में करप्पू को पछाड़ा, जन नायकन को भी छोड़ दिया पीछे। अमेरिकी सेना ने ईरान के लाराक द्वीप पर मौजूद 2 ईरानी सैन्य ठिकानों पर किया हमला, जुलाई के आखिर के बाद से ईरान पर अमेरिकी सेना का ये पहला हमला। अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने जॉर्डन मौजूद अमेरिकी एयरबेस किंग हुसैन और अल अजराक पर किया हमला। ईरान के तेहरान में मशहद सहित कई दूसरे शहरों में पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन मनाया गया, हजारों लोगों ने अमेरिका इसराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसराइली पीएम नेतन्याहू ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक के गांव कुसरा में फिलिस्तीनियों के घरों पर हुए हमले की निंदा की, कहा वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।
यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया कीव के एक गोदाम पर हुए रूसी हमले में मरने वालों की संख्या 38 हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक मैप पोस्ट किया जिसमें लेक ओंटारियो के नाम से जानी जाने वाली झील को लेक अमेरिका के तौर पर दिखाया गया है। ट्रंप ने कहा वेनेजुएला के साथ हाल ही में डील से मिलने वाले तेल का इस्तेमाल स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को फिर से भरने के लिए किया जाएगा। अमेरिका के ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क में अचानक आई बाढ़ से 20 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर है। हांगकांग में एक इंडिपेंडेंट बुक स्टॉल के बंद होने के बाद अपनी यादों को ताजा करने के लिए बड़ी तादाद में पहुंचे लोग। साल के आखिरी सबसे बड़े टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन की शुरुआत, पूर्व चैंपियन डेनिल मेदवेदेव आसानी से दूसरे दौर में।

0: इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम से जुड़े शुद्धिकरण विवाद को लेकर राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हुई तो एक बार फिर सियासत तेज है। एक दिन पहले उत्तराखंड पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अब उसे लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं ने देहरादून में पुलिस से मिलकर शिकायत की है और राहुल पर दर्ज एफआईआर को लेकर नाराजगी जाहिर की है। आपको बता दें, कल ही एक दलित युवक ने राहुल पर गंभीर आरोप लगाते हुए यह एफआईआर दर्ज कराई। आरोप यह है कि राहुल गांधी ने हल्द्वानी के रामलीला मैदान में हुए शुद्धिकरण के मामले में जातिगत रंग देते हुए इसे छुआछूत से जोड़ दिया था, जिसकी वजह से दलित समाज की भावनाएं आहत हुई हैं।
1: विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये जो कुकृत्य किया है, उत्तराखंड पुलिस पार्टी बन गई है। हमने अभी डीजीपी साहब से फोन टेलीफोनिकली और नीलेश भरणे जी जो आप आईजी हैं, जो ज्ञापन लेने आए थे, उनको हमने कह दिया है कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आरएसएस और बीजेपी पार्टी थी, उन लोगों ने कुकृत्य किया था, लेकिन पुलिस ने उसमें आग में घी डालने का काम किया है। पुलिस कौन होती है? अगर कॉग्निजेंस लेना था आपने तो आप 10 तारीख के प्रकरण का कॉग्निजेंस लेते और मुकदमा कायम करते, लेकिन आपने मुकदमा कायम कर दिया राहुल गांधी के खिलाफ। किन धाराओं में किया आपने? क्या अपराध किया राहुल गांधी ने? अगर देश के राष्ट्रीय पटल पे उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों के अपमान का मामला उठाया तो उन्होंने अपराध कर दिया, उनके खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया आपने। सुनाई बात में, और जो लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं, स्वयं मुख्यमंत्री कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं, अजय टमटा कह रहे हैं कि वहां पर गंदगी हो गई थी, वहां पर यूरिन की भरी हुई बोतल थी, तो नगर निगम क्या कर रही थी? नगर निगम में मेयर कौन सी पार्टी का है? राज्य में सरकार तुम्हारी, केंद्र में सरकार तुम्हारी, नगर निगम में मेयर तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा, और कांग्रेस ने वहां पर पैसा जमा किया था बाकायदा, उस ग्राउंड के लिए पैसा जमा किया था नगर निगम को, तो नगर निगम क्या कर रहा था? उसने सफाई क्यों नहीं करी अगर वहां गंदगी थी?
0: अंकित मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। अंकित, अब कांग्रेस क्या मांग कर रही है? एफआईआर वापस ली जाए तब शांत होगा मामला?
2: जी बिल्कुल नया, देखिए जिस तरह से कांग्रेस वहां पहुंची थी पुलिस मुख्यालय पर, कांग्रेस का कहना है कि इसमें पुलिस की पार्टी बन रही है, क्योंकि पुलिस को पहले जांच करनी चाहिए थी। जो डिप्टी एसपी लेवल का अधिकारी होता है वो इस मामले में जांच करता है, चाहे वो प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटीज अगेंस्ट एससी एसटी एक्ट का कोई भी प्रावधान हो, उसमें जांच होनी चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने इस एफआईआर को पहुंच करने के लिए बोला है। साथ ही उन्होंने कहा है जो श्रीराम सेना धर्मार्थ सेवा संस्थान है जिसने ये यज्ञ कराया था, उसके अध्यक्ष गिरीश पांडे पर एफआईआर होनी चाहिए एस सी एस टी एक्ट के अगेंस्ट और कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है कि वो पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे। वहीं इस समय हम लैंडडाउन चौक पे मौजूद है, जहां पर अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नेता विपक्ष राहुल गांधी का पुतुल दहन भी किया है। उनकी मांग है कि बार बार जो विपक्ष है राहुल गांधी वो अनुसूचित जाति का अपमान कर रहे हैं, नेताओं से भी यहाँ पर बातचीत की है और वो खुद शुद्धिकरण से हालांकि वो बता रहे हैं, लेकिन लगातार उनका कहना है कि शुद्धिकरण बीजेपी ने नहीं किया है, जो दूसरे संस्थान है या फिर जो अनुसूचित जाति के समाज के लोग हैं उन्होंने ये शुद्धिकरण किया है, जिसको
0: बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। उधर दिल्ली में कुछ ही देर में उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने खड़गे से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद शैलजा ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस समाज को बांट रही है। शुद्धिकरण को लेकर शैलजा ने कहा कि चुनाव आ रहे हैं और बीजेपी जहर की राजनीति कर रही है।
3: बात हमारे संविधान की है और हर एक नागरिक की है, ये अलग बात
4: है और एफआईआर दर्ज करे, लेकिन उनके खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर दी गई है। क्या ये आफ्टर थॉट है आपके हिसाब से इस पूरे मामले में?
3: देखो, आफ्टर थॉट और इनकी जो सोच है, एक निम्न स्तर की सोच भाजपा की है, भाजपा आरएसएस की है, इनकी डबल इंजन सरकार की है, उसी का हिस्सा है। राहुल जी की हर एक्शन से ये लोग बौखला जाते हैं। भाजपा को आपने देखा, चाहे यहां पर हो चाहे सदन में हो, राहुल जी बोलते हैं लेकिन कोई उनका जवाब देने तक को नहीं आ पाते हैं, और वहां पर भी गलत बयानबाजी होती है, लोकसभा में भी और पूरे पार्लियामेंट में आते नहीं है ये लोग। राहुल जी लोगों के बीच में जाकर असलियत दिखाते हैं, तो इन चीजों से राहुल जी पीछे हटने वाले नहीं है और ना कांग्रेस पीछे हटेगी।
4: बीजेपी कह रही है शुद्धिकरण का मामला नहीं, इसमें जाति का कोई एंगल नहीं है, जिन लोगों ने किया उनमें तमाम जातियों के लोग थे। जो एफआईआर दर्ज कराई गई है जिस व्यक्ति के द्वारा,
3: इसका मतलब शुद्धिकरण को वो मान रहे हैं? इसका मतलब मान रहे हैं वो? शुद्धिकरण होता क्या है पहले ये बताओ, क्या है शुद्धिकरण? किस चीज का शुद्धिकरण कर रहे हो आप? पहले अपने मानसिक अपनी जो उनकी सोच है उसका शुद्धिकरण करें, देश में ऐसे जहर ना फैलाएं। क्यों नहीं आपने FIR की, क्यों नहीं किया? अगर वहां पे उस तरह से खड़गे जी के जाने के बाद ऐसा किया तो आपने FIR लॉज करनी चाहिए थी, उसके बाद करते इंक्वायरी, पता चलता। लेकिन अब
0: और अब आपको सीधे लिए चलेंगे अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में।
5: सबका हमने सहयोग मांगा है और सबकी जिम्मेदारी से काम करेंगे और वोटर लिस्ट को न केवल ठीक कराएंगे बल्कि बूथ स्तर पे वोट डालने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि अब चुनाव में कोई समय नहीं बचा है। कल से हमारी पार्टी का प्रचार एक तरह से शुरू बूथ स्तर पे। STF, हालांकि हमारे कुछ साथी खड़े हैं इसलिए पूरा साफ नहीं दिख पा रहा है, मुख्यमंत्री जी की STF, स्वजाति टॉर्चर फोर्स, स्वजाति टॉर्चर फोर्स और लगातार PDA का उत्पीड़न हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमने, आपने सुना, दो दिन ही हुए हैं कि बदायूं में एक दलित नौजवान की थाने में हत्या हो गई, जान चली गई उसकी। बदायूं में 22 थाने हैं, 22 थाने, स्वजाति मुख्यमंत्री के 10 लोग हैं वहां पर, PDA के 10 हैं लोग। मान लीजिए ये समाजवादी सरकार होती तो क्या खबर चल रही होती है, अगर 10 ऐसे हैं समाजवादी के होते तो। और 28 साल के राजेश कोरी को पुलिस हिरासत में ले गए लेकिन वो जिंदा घर नहीं लौटे। वो वीडियो आपने, हमने सबने देखा, अगर आप चाहें तो वो भी दिखा सकते हैं हम लोग। और पुलिस कारण क्या बता रही है, कार्डिक अरेस्ट। ये सबसे आसान तरीका है, जितनी भी कस्टोडियल डेथ हैं सब में पुलिस क्या बताती है, कार्डिक अरेस्ट हो गया उसको। और यूपी नंबर 1 होता जा रहा है कस्टोडियल डेथ में। और जो वीडियो आया है और पुलिस और थाने की कहानी मैच नहीं कर रही है। आप पुलिस की कहानी देखिए और जो CCTV वीडियो आया है उन दोनों में कोई मैच नहीं है। इसी तरह हमारे एक साथी ने बताया कि वाराणसी में भी घटना हुई, मुख्यमंत्री जी के स्वजाति लोगों ने आदिवासी मजदूर को राम जन्म को पीट पीट करके मार दिया। और उसकी गलती क्या थी सोचिए आप, केवल वो ईंट भट्टे पे दूसरी जगह काम करना चाहता था बस। उस मजदूर की गलती क्या थी, उसका अपराध केवल इतना ही था वो दूसरे ईंट भट्टे पर काम करने जाना चाहता था लेकिन किस तरीके से मारा गया, उसकी जान चली गई। मुख्यमंत्री जी के स्वजाति लोगों के जो दबंग लोग हैं उनके निशाने पर PDA है और गिनती आप निकाल लीजिए। STF जो काम कर रहा है वो भी आपको पता है, मैं पहले भी बता चुका हूं। STF में 20 में स्वजाति लोग हैं, कितने, 10। हवाई चप्पल में एनकाउंटर वाली तस्वीर भी याद होगी आपको।
0: रुकना भैया, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर, दिखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, पहले प्रधानमंत्री हमारे नेहरू जी बने। उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे पहले प्रधानमंत्री बनते तो भारत की क्या दिशा और दशा होती?
3: ये तुमने सवाल क्वेश्चन किया, ये संसद में होता तो बड़ा मजा आता। हर तरीके एक पार्टी बोलती कि कश्मीर हमारा होता, अफगानिस्तान तक हम कब्जा कर लेते, पब्लिक बाहर सुन के ताली वाली ही बजाती।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: देना।
1: वो वाली MDH की सुपर हींग।
2: MDH सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद।
3: MDH सुपर हींग शुद्धता का असली तड़का।
4: असली मसाले सच सच MDH MDH।
5: कोटा से ऊपर मैं त्रिशूली में आया हूँ, देख लीजिए सैलाब का ये सितम।
6: ये वही त्रिशूली नदी है जिसमें पानी मलबे के साथ पूरे आवेग के साथ आया।
5: पीछे जो आपको इमारतें दिख रही है ना, वो सारी बिल्कुल खंडहर हो चुकी है।
6: जो निचले इलाके हैं उन सबसे ऊंचाई की तरफ लोगों को जाने के लिए कहा गया है।
7: चितवन में आज तक की टीम मौजूद है और आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं।
5: मैं आशुतोष मिश्रा,
7: रोहित सिंह,
6: श्वेता सिंह, नेपाल आज तक।
8: ये मार्केट को पता कैसे लग जाता है सर, कुछ बड़ा होने वाला है?
9: देखिए, तेजी में सबको सब चीज पे भरोसा होता है, मंदी में सब सवाल उठते हैं कि ये कैसे हो गया। तो बफेट साहब ने भी बोला ना, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। क्या होता है कि जब भी जैसे अभी हम लोग वी आर लिविंग थ्रू दिस ना, कि रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है, तेल का दाम बढ़ रहा है, वॉर चल रहा है, यू नो बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे होएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होएगा, ये सब चिंता हो रही है लोगों को।
8: डोनाल्ड ट्रंप
9: साहब है, जियो पॉलिटिक्स है, वॉर है, ये चिंता हो रही है। पिछले 27 साल से मैं वो मार्केट में 6 बार हो चुका है, तो मैंने क्या देखा है कि जितना नंबर चेंज नहीं होता ना, उतना लोगों का मूड चेंज हो जाता है। तो आज के जमाने में वैल्यू की डेफिनेशन ही ये है, मिसप्राइज्ड ग्रोथ।
10: एक्सलेंसी माय ब्रदर, हमारे भव्य स्वागत और आपके मित्रता भरे शब्दों के लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से कल भोजन पर आपने जो मुझे अनुभव कराए, एक एक चीज में आप पर्सनली इन्वॉल्व रहे, इसके लिए मैं आपको विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूं। स्वादिष्ट खाने के साथ साथ मुझे टैलेंटेड बच्चों का गाना और डांस भी देखने को मिला। ऐसा लग रहा था आपने जैसे हिंदुस्तानी खड़ा कर दिया हो, ऐसा लग रहा था आपने मेरा गुजराती फिर से यहां एक बार जागृत कर दिया है। इतना ही नहीं, आपने पूरे शहर को।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

हथियार के दो हथियारों का एनकाउंटर, डीजीपी बोले पूरे गैंग की कमर तोड़ कर रहेंगे, सबका सुराग मिल चुका है। परिवार से मिले आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी। कल से शुरू होगा समाजवादी पार्टी का चुनाव प्रचार, अखिलेश यादव का ऐलान, वर्कशॉप में बीजेपी कार्यकर्ताओं का महाजुटान, तो मायावती ने भी बुलाई मीटिंग। आज बिश्केक के एससीओ समिट में एक मंच पर होंगे पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति से होगी प्रधानमंत्री की मुलाकात, कारोबार और ऊर्जा संकट पर होगी बात। शुद्धिकरण विवाद में राहुल गांधी पर एफआईआर होने के बाद कांग्रेस का विरोध, बीजेपी कर रही है प्रदर्शन, एससी एसटी एक्ट के तहत अनुसूचित जाति के युवक ने दर्ज कराया राहुल पर केस। नेपाल त्रासदी में बढ़ते आंकड़ों से दुनिया सन्न, जान गंवाने वालों की संख्या पहुंची 900 के पार, लापता लोगों की तादाद 4,200 के ऊपर।

0: नमस्कार, मैं इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नेपाल में आई भीषण बाढ़ से बड़ी तबाही हुई है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस बीच मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। नेपाल में बाढ़ से तबाही में अब तक 903 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जबकि 4200 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस बीच लगातार लोगों की तलाश के लिए नेपाल की सेना रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, दुर्गम इलाकों तक फंसे लोगों को निकालने की कोशिश में। नेपाल में भीषण तबाही के बीच खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। नेपाल में भोटेकोशी नदी फिर से उफान पर बताई जा रही है। नेपाली सेना ने भोटेकोशी नदी का रविवार को एक वीडियो जारी किया, जिसमें भीषण सैलाब साफ दिखाई दे रहा है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, त्राजी में मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 903 लोगों की जान गई है, लेकिन यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो लापता हैं और इतने दिन बीत जाने के बाद उनका जिंदा पाया जाना लगभग नामुमकिन है। 4200 से ज्यादा लोग लापता हैं, ये ऑफिशियल आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं जो नेपाल सरकार द्वारा जारी किए गए। तो नेपाल में कुदरत के कहर के बीच लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन है, लेकिन तबाही इतनी बड़ी है कि ऑपरेशन आसान नहीं है। गांव के गांव मलबे से पट गए हैं, घरों के अंदर मलबा भर गया है। इसी बीच लोगों तक मदद पहुंचाने का प्रयास हो रहा है।
1: नेपाल में मची तबाही के 6 दिन बीत चुके हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इस बीच कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसे देखकर ही मन में दहशत पैदा होती है। अब तक जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में पहले सड़कों से मलबा हटाने की कोशिश हुई, रास्तों को साफ करने का प्रयास हुआ। अब बचाव टीमें तमाम इलाकों में घरों के अंदर तक पहुंच रही हैं और यहां की तस्वीरें इस त्रासदी की भयावहता की गवाही दे रही हैं। ये तस्वीरें नेपाल के घर की है, घर के अंदर सिर्फ मलबा ही मलबा फैला है, पूरे घर में ही दलदल सा हाल हो रखा है। घर में कई जगहों पर अंधेरा है और इसी मुश्किल हालात में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
2: ये अंधेरी सीढ़ियों से निकलते हुए आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम उन घरों में, आप समझिए कि ऐसी जगहों पर जो ऑपरेशन है वो भी चलाना कितना मुश्किल। देखिए, सिविल वॉलंटियर है, ये भी मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने टॉर्च की रोशनी से हमें भी रास्ता दिया। इनका जो अभियान चल रहा है, हम इन इलाकों तक पहुंचे हैं और बहुत बड़ी त्रासदी है, तो बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस भी जरूरी हैं लापता लोगों की तलाश के लिए। और ऐसे में जो कि क्विक रिस्पांस पूरा हो चुका है, तो जो ग्रामीण फोर्स हैं, जो नगर पालिकाएं हैं, उनकी कोशिश है, वो अपने गांव के लोगों को जानते हैं, घरों को जानते हैं, इलाके को पहचानते हैं, और ऐसे में ज्यादा संभावनाएं होती हैं कि यदि अधिकतर संख्या में लोगों को वो वहां से निकाल सके।
1: कुछ दिनों पहले तक यहाँ परिवार अपना खुशहाल जीवन बिताता होगा। दीवार पर भगवान के साथ साथ परिवार वालों की भी तस्वीर लगी है और दूसरी ओर घर में आपदा की मार की साफ झलक दिख रही है।
2: जैसे ही आपदा आई, इस घर में रहने वाला परिवार सबसे ऊपर की मंजिल पर भागा, इसलिए उनकी जो जिंदगी थी वो बच गई, खतरा उन्होंने टाल दिया। हालांकि खतरा प्रवाह का था, ये उस परिवार की तस्वीरें हैं। उन्होंने सोची कि अपनी यादें सहित करके रखी थी, लेकिन उन यादों के ठीक नीचे ऊपर जो है वो दलदल कीचड़ है, तबाही के निशान है, और अब घर की जरूरत की चीजें जो है वो यहाँ से निकाली जा रही है। सिविक डिफेंस जो वॉलंटियर्स हैं वो घर घर जा रहे हैं, ये देखने की कहीं मलबों में शव बरामद हो जाए, जो लोग लापता हैं उनके बारे में पता लग सके।
1: सैलाब कितना ज्यादा है, लहरें कितना मलबा लेकर आई, उसे घर की दूसरी मंजिल का ये हाल देखकर ही समझा जा सकता है।
2: इन घरों से दरअसल छतों के रास्ते जो छोटे छोटे हिस्से हैं, वहां से कोशिश की जा रही है लोगों निकालने के लिए, ताकि बचा हुआ जो सामान दिखे। दूसरी मंजिल है छत की, और ये दूसरी मंजिल भी पूरी तरह से बाढ़ सैलाब के साथ आए, कीचड़ मलबे में पूरी तरह दबी हुई है। परिवार की तस्वीर मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, उन भगवान की तस्वीर है, परिवार की तस्वीर है, और अब घर और जिंदगी बचाने की जद्दोजहद इसमें ये तमाम जो वॉलंटियर्स हैं ये काम कर रहे हैं यहाँ से, ताकि लोगों को बचा के उनका कम से कम जो जरूरत की चीजें हैं वो यहाँ से निकाली जा सके।
1: पूरी इमारत बर्बाद हो गई है, किसी तरह फंसे लोगों को घरों से निकालने की कोशिश हो रही है, सिर्फ एक नहीं पूरे के पूरे गांव का यही हाल है, जो बता रहा है कि नेपाल में आई तबाही का मंजर आखिर कितना बड़ा है।
2: एक सिविल डिफेंस वर्कर है, इनके साथ हम इस इमारत के सबसे ऊपर मंजिल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अंधेरा है, लाइट नहीं है और लोग जहां तक पहुंच सकते हैं कोशिश कर रहे हैं कि मदद की जा सके। देखिए इमारत में बहुत ही डरावना, और ये देखिए सोचा सारा का सारा मलबा है, सीढ़ियां जो हैं वो मलबे से ढकी हैं। ये हम आ गए हैं इमारत की दूसरी मंजिल और पूरी तरह दलदल है ये, और सोचिए कि दूसरी मंजिल दलदल में दब गई है। हालांकि तीसरी मंजिल साफ सुरक्षित है, लेकिन दूसरी मंजिल जो है ये आप देख रहे हैं पूरी तरह दबी हुई है। अब जो लोग हैं बचा कुचा सामान निकालने की मदद कर रहे हैं, जिसका घर है उसके मालिक बचे हुए हैं, और अब यहाँ एक अभियान चलाया जा रहा है।
1: नेपाल में रेस्क्यू टीमें लगातार इसी कोशिश में लगी है कि मलबे के बीच से जिंदगी की तलाश की जाए, किसी तरह त्रासदी की मार झेल रहे लोगों तक राहत पहुंचाई जाए। लेकिन इन तस्वीरों से साफ है कि आखिर चुनौती कितनी बड़ी है, कैसे कुदरत की मार नेपाल में हजारों लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ी है। आशुतोष मिश्रा, नेपाल आज तक।
0: आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे नेपाल से, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आशुतोष, आप तो खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, कैसे आपने घर के भीतर से रिपोर्ट दिखाई, जिंदगी की कितनी उम्मीद अब भी बाकी, क्योंकि कई दिन गुजर चुके हैं, कई लोग लापता हैं, आंकड़ा लगातार मौत का बढ़ता जा रहा है, ऐसे मलबों में लोगों को ढूंढने की जो मुहिम है उस पर कौन सारी कितनी मुश्किलें हैं?
3: नेहा, मलबों में जो दलदल कीचड़ है उसमें जीवित की संभावना ना के बराबर है। रेस अगेंस्ट टाइम में 12 घंटे बहुत क्रिटिकल होते हैं। हालांकि जो लोग पहाड़ी इलाकों पर इन जगहों पर फंसे हैं वहां से उन्हें इवैक्यूएट किया जा रहा है, लेकिन अब मैं जहां पर जैसे पीपलटार के इलाके में आया हूं, ज्यादातर लोग ये पूरे गांव सब बह चुके हैं। अब वो आप देखिए नदी के पार जो इलाका दिखाई दे रहा है आपको, सोचिए वहां पूरा का पूरा गांव हुआ करता था, लेकिन अब वो गांव के लोग कैंपों में चले गए हैं या फिर वहां पर एक समतल मैदान नजर आया, ऐसा लग रहा होगा कि ये रेत का कोई बीच का टीला है। लेकिन इसके बाद इन इलाकों के साथ हुआ दरअसल ये है कि अब जहां पर तलाश चल रही है वो तलाश है कि कम से कम जो लापता लोग हैं पता तो चले कि उनके अपने कहां गए हैं, उनके अपने आखिर किस हाल में होंगे। मैं जिस घर में गया था वहां बच्चों के खिलौने, कॉपी किताब सब कुछ मिल रही थी। लोग जो क्या है, जो लोग बच गए थे वो अब आए हैं कि अपनी जिंदगी शुरू कर रही है तो घर का जरूरत सामान निकाले, और इसीलिए मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए अभी पीपलटार में रिलीफ कैंप है, सब लोग रिलीफ कैंपों में आने लगे, यहां मदद पहुंचाई जाने लगी है। अब जिन पहाड़ों के पास 6 दिन पहले तक अपने घर मकान थे वो अब रिलीफ कैंप में हैं। यहां पर नेपाल की सेना जो है वो अभियान चला रही है, रास्तों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। तो जीवित की संभावना ना के बराबर है, जो जिंदगियां बची हैं वो अब आ चुके हैं यहां पर रिलीफ कैंपों में। लेकिन दिक्कत दरअसल इस बात की है कि जो लोग पहाड़ी इलाकों पे, आज ही सरकार ने कहा है कि इवैक्यूएशन के लिए अब बहुत जरूरत हो तभी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो पहाड़ों पर सुरक्षित हैं वहां तक खाना पहुंचाया जाएगा, रसद पहुंचाया जाएगा। वहां आपको सीधे देखिए कैसे जो बचपन होता है अब वो स्कूल कॉलेज अपने घर से महरूम है, वो तमाम छोटे छोटे बच्चे, और यहाँ जो वॉलंटियर्स हैं पूरा नेपाल एकजुट है अपने लोगों की मदद के लिए, वो आए हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं जिनको स्कूलों में होना चाहिए था वो रिलीफ कैंप में आए हैं, महिलाएं आई हैं यहाँ पर, और अलग अलग जो संगठन है रेड क्रॉस से लेकर के दुनिया भर के संगठन वो खाना, रसद, दवाइयाँ ये सब मुहैया करा रहे हैं उन घरों में। कोशिश दरअसल इसकी है कि जिसके घर बच गए हैं उनको ज़रूरत का सामान मिल जाए, उसके साथ बच जाएं, कम से कम अपना आशियाना वो फिर से बसा सकें। मलबों में जिंदा होने की उम्मीदें ना के बराबर हैं, लेकिन जो लोग लापता, आप सोचिए उनकी संख्या अगर 4000 पार कर गई है तो ये कोशिश है कि कम से कम जो लोग लापता हैं पता तो चले वो कहाँ गए, अगर शव भी बरामद होंगे तो कम से कम घर वाले या उनके जो लोग हैं उन्हें ये जानकारी मिल पाएगी, उनके अपने लौट कर नहीं आएंगे। लेकिन चमत्कार और उसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा होती है। हम आपको पीपलटार के रिलीफ कैंप की तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए कितने सारे लोग हैं जो किन मुश्किलों से निकल करके इन छोटे छोटे बच्चों ने अपनी वो मुश्किल देखी है। वो 6 दिन पहले ये भी अपने बड़ों के साथ भागे थे, कहीं महिलाएं अलग बैठी हैं, जरूरत का सामान यहाँ पर बांटा जा रहा है, खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं ये सब नदी किनारे गांव में रहते थे, गांव कस्बे सब कुछ बुरी तरह से तबाह बर्बाद हो गया है। 6 दिन पहले तक जिनके पास अपने घर थे आज वो बेघर हैं, बेसहारा हैं। रिलीफ कैंप में देखिए जैसे खाना आया है, खाने के लिए लाइन है, कपड़ों के लिए लाइन है, ज़रूरत के लिए लाइन है, महिलाएं हैं तो अलग अलग जो स्वयंसेवी संगठन हैं वो जरूरत के सामान, सैनिटरी नैपकिन, कपड़े, जो कुछ भी है। कल मैंने उन लोगों को भी देखा नेहा कि जो यहाँ के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, वो कह रहे थे हमें पैसा, हमें नाम शोहरत नेपाल ने दिया है और ये समय है नेपाल को जरूरत के समय वो सब कुछ लौटाने का। ऐसी एकजुटता, ऐसा भाव और अपने लोगों के प्रति ये निष्ठा, ये नेपाल ही दिखाता है कि मुश्किल में कैसे ये लोग एक दूसरे के लिए खड़े हैं। जिंदगी यहाँ रिलीफ कैंपों में आ चुकी है, ऊपर राहत बचाव कार्य चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है, अब सोचिए 900 लोग 6 दिन में आंकड़ा पहुंचा है और ये कोई नहीं जानता कि ये आंकड़ा यहाँ थम जाएगा या ये भी इस डरावने मंजर की सिर्फ शुरुआत है। लापता लोगों की संख्या कल तक 2600 थी, आज 4200 है और लापता लोगों के बारे में जब तक ये पता न लग जाए, कई सारी उम्मीदें हैं, फोन कॉल कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, हमारे पास जो संदेश आ रहे हैं उसमें भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि क्या अपनों का पता चल पाएगा।
0: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। वही त्रासदी के बाद नेपाल के तमाम घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। जो घर त्रिशूली नदी के पास थे वो पूरी तरह बह चुके हैं।
2: नेपाल की आपदा के बाद घर, गांव, कस्बे सब कुछ तबाह हो गए हैं। अब इन घरों में अगर आप देखेंगे, सोचिए पंखा सर के ऊपर है, मैं जिस घर में जा रहा हूँ ये छत का सबसे ऊंचा हिस्सा है और यहाँ पर भी आप सोचिए इतना ऊंचा तो मलबा है, 5 से 6 फीट तो घरों के ऊपर है जो कि मैं घर की पहली मंजिल पे हूँ। अगर आप पहली मंजिल पर इस तरह की तबाही देख रहे हैं तो सोचिए नीचे का हिस्सा तो पूरी तरह जमींदोज है। लोग जो होंगे कितनी मुश्किल होगी उन्हें घर से भागने में। और ठीक मेरे पीछे जो है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये त्रिशूली नदी है, एकदम नदी मेरे ठीक पीछे देखिए, पूरा हिस्सा बह गया, तोड़ गया, पानी यहाँ से आया, अपने साथ जो है बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर, सब कुछ लेकर के नदी चले आई। इन घरों में हम आपको इसीलिए दिखाने के लाए हैं कि आखिर तबाही कितनी ज्यादा थी और अब लोगों को जब फिर से अपनी जिंदगी खड़ी करनी होगी तो कितनी ज्यादा मुश्किलें आएंगी।
0: वहीं त्रिशूली नदी के करीब नुवाकोट का धुंडे गांव भीषण बाढ़ के बाद पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। घरों का हाल देखकर ही समझा जा सकता है कि आखिर यहां सैलाब ने कैसे तबाही मचाई।
3: धुंडे गांव में तबाही कैसे आई होगी, कितना खौफनाक डरावना रहा होगा। मैं इस घर में पहुंचा हूं और ये देखिए घर का पंखा जमीन से कितना ऊंचा होता है और ये नीचे जो है ये पूरा मलबा है। आप समझिए कि जो हाइड्रो प्रोजेक्ट में भी मलबा आया होगा वहां कैसे लोग फंसे होंगे। इस दलदल में निकलना मुश्किल होगा क्योंकि आप ऊपरी मंजिल पर है, नीचे से भाग करके आए। हालांकि जो परिवार सबसे ऊपर था वो सुरक्षित रह गया, उन्हें बाद में क्विक रिस्पांस टीम ने बचाया। ये देखिए ये घर का पंखा है, घर के जरूरत के सामान, ये लॉबी का हिस्सा है, इसके आगे जा करके कमरे हैं और अब इन इलाकों में घुस करके कोशिशें की जा रही कि क्या कोई ऐसा हो सकता है जो मलबे में दबा हो जिसे निकाला जा सके। ज़्यादा दिन तक शव अगर यहाँ पर होते हैं तो महामारी भी फैलने का खतरा हो सकता है। चुनौतियाँ बहुत हैं नेपाल के सामने, जितने हाथ हों उतने कम पड़ेंगे इस मुश्किल दौर से लोगों को, नेपाल को फिर से पटरी पर लाने के लिए।
0: नेपाल में राहत बचाव में लगी टीमें घर घर जाकर तलाशी कर रही हैं कि कहीं मलबे में बीच कोई फंसा तो नहीं है।
3: प्राकृतिक आपदा सब कुछ तबाह कर देती है, जिंदगियों के लिए मुश्किल खड़ी कर देती है और इस आपदा के बाद जिंदगी को शुरू करना बड़ी चुनौती है। इन मकानों में अब नगर पालिका, सिविल कर्मचारी जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग जीवित बच गए हैं अब उनके घरों से बचा हुआ सामान निकाला जा सके ताकि उनकी जिंदगी फिर से शुरू हो सके। मरने वालों का आंकड़ा ज्यादा है, लापता लोगों की संख्या ज्यादा है, लेकिन इन सब के बीच कोशिश ये भी हो रही है कि जिनके बारे में कोई पता न चल पाए घर घर जा करके मलबों में तलाशा जा रहा है। इस दलदल के बीच ये तमाम सारे लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम जिन लोगों का पता ही नहीं चल रहा है कुछ तो उनकी जानकारी लगे, जो लोगों का घर बच गया है उनके घरों से सामान वापस उन तक सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया जा सके। ये ऑपरेशन जिंदगी बड़े पैमाने पर नेपाल के दुर्गम इलाकों में चलाई जा रही है।
0: इस बीच बड़े बड़े ट्रकों की मदद से मलबा हटाने का काम जारी है। सबसे बड़ी चुनौती रास्तों को साफ करने की है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आ सके।
3: रिस्टोरेशन सबसे बड़ी चुनौती है और उसी के साथ साथ अब जो स्थानीय प्रशासन के लोग हैं वो घर घर जा रहे हैं कोशिश करने के लिए कि दलदल कीचड़ में जिनके मकान मलबे में दब गए हैं क्या संभवतः जो लोग लापता हैं उन्हें खोजा जा सके। बड़े बड़े ट्रकों का इस्तेमाल करके पूरे मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है, रास्ता हटाया जा रहा है। ऑपरेशन कनेक्टिविटी अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती है और इन इलाकों में ये भी के साथ साथ कि जो लोग बचे हैं उनके घरों से जरूरत से उनकी संपत्ति निकाली जा सके और अगर कुछ लोग घरों में ही उनके शव बरामद हो सके तो कम से कम ये तो पता चल सके कि कितने लोग जो लापता हैं कहाँ हैं।
0: नेपाल में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच टीम ने बैंक से मलबा हटाया तो मलबे के बीच भारी रकम और सोना बरामद हुआ।
4: नेपाल में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज है, कोशिश मलबे में फंसे लोगों को बचाने की हो रही है। जिंदगी की जंग लड़ रहे लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। इसी अभियान के बीच रेस्क्यू टीम को 50 करोड़ का सोना, कई बक्सों में कैश और चांदी बरामद हुआ है। ये तस्वीरें नुवाकोट के त्रिशूली की हैं, जहां भोटेकोशी नदी में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली में कृषि विकास बैंक की शाखा पूरी तरह डूब गई थी। हालात सामान्य हुए, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हुआ तो बैंक से करीब 50 करोड़ नेपाली रुपए मूल्य का सोना, 1.5 करोड़ नेपाली रुपए और चांदी बरामद हुआ। नेपाल पुलिस के मुताबिक बाढ़ में कृषि विकास बैंक की त्रिशूली ढूंगे शाखा बुरी तरह प्रभावित हुई थी। पानी और मलबे के बीच बैंक के लॉकर और अन्य हिस्सों तक पहुंचना बेहद चुनौतीपूर्ण था। इसके बावजूद पुलिस और संबंधित टीमों ने करीब 8 घंटे तक लगातार अभियान चलाकर बैंक के अंदर रखी कीमती धातुओं और नकदी को सुरक्षित बाहर निकाला। भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ ने नेपाल के कई इलाकों में जनजीवन को प्रभावित किया। तेज बहाव के कारण सड़कें और आसपास के इलाके जलमग्न हो गए। कई स्थानों पर बाढ़ का पानी और मलबा भरने से राहत बचाव में भी मुश्किल आई। इसी त्रासदी के बीच त्रिशूली स्थित बैंक शाखा में रखी करोड़ों की संपत्ति को सुरक्षित निकालना भी बेहद चुनौतीपूर्ण था। बैंक शाखा के पानी में डूबने के बाद सबसे बड़ी चिंता वहां रखे सोने, नकदी और महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सुरक्षा को लेकर थी। बचाव दल ने जोखिम के बीच बैंक के अंदर अभियान चलाया और एक एक करके कीमती सामान को सुरक्षित बाहर निकाला। आज तक ब्यूरो।
0: और अब बात चित्रकूट में आए सैलाबी संकट की करेंगे। यहां मंदाकिनी नदी का बढ़ा जलस्तर भारी आफत लेकर आया है। नदी किनारे घाट सब कुछ डूब गए हैं। शहर में कई इलाकों में पानी भर गया है। लोग संकट से घिरे हैं। लोगों की मदद के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भारी बारिश के बीच पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ है।
5: भारी बारिश के बीच मंदाकिनी नदी उफनाई।
6: पलट गई भाई, गई डूब गई।
5: ये तो लहरें जद पार कर शहर तक पहुंच गई। चित्रकूट के कई इलाकों से आफत की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। बाढ़ ने चित्रकूट का ऐसा बुरा हाल कर दिया है कि कई इलाकों में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। घर डूबे हुए हैं, लोग फंसे हुए हैं। बारिश के बीच लोग भारी मुसीबत झेल रहे हैं। शहर की एक एक तस्वीर बता रही है कि यहाँ का हाल कितना बुरा है। हालात इतने खराब हैं कि कहीं आने जाने के लिए सड़कों पर भी नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। दिन ब दिन स्थिति बेहद खराब हो रही है। लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए कई टीमों की तैनाती की गई है।
7: लगभग 10 टीम्स और अभी एक्सपेक्टेड हैं, अब वर्तमान में रास्ते में हैं और अतिशीघ्र ही यहाँ पहुँचने वाली हैं। उसके माध्यम से तत्काल यहाँ पे जो रामघाट है, संबंधित एरियाज हैं जहाँ पे भी जल भराव की स्थिति है, वहाँ पर इन टीम्स को डिप्लॉय किया जा रहा है। और इन टीम्स को डिप्लॉय करके जल्दी जो है वो सभी लोग जो भी अपने घरों में हैं उनको रेस्क्यू कर लिया जाएगा।
5: चित्रकूट में मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ बेहद भयावह हो चुकी है। नदी लगातार खतरे के निशान के ऊपर बह रही है।
8: इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मंदाकिनी नदी का जो जलस्तर बढ़ा अब धीमे धीमे से बढ़ने लगा है। जो ये पुल बना है अब पुल के ऊपर पानी चढ़ने लगा है। जो एक दिन पहले जो बाढ़ आई थी उससे काफी यहां पर नुकसान पहुंचा था। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो विद्युत पोल है वह गिर गया था। आगे की जो दुकानें हैं पूरी तरीके से जलमग्न है। इधर मंदाकिनी के जल स्तर को नापने के लिए यहाँ पर गेज जो बना है आप देख सकते हैं उसमें कि लगभग 128 जो मीटर है वहां पर मंदाकिनी नदी का जल स्तर है और लगातार मंदाकिनी नदी अपने रौद्र रूप को धारण करती जा रही है।
5: हालात इतने खराब हैं कि लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों की छतों पर बैठे हुए हैं। प्रशासन लोगों को प्रभावित इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश में लगा है। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है।
9: पानी का जो जल स्तर वो निरंतर घट रहा है, तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप अपना संयम बनाए रखें, पूरी प्रकार से जहां पे भी जो लोग भी फंसे हुए हैं वहां पर हमारे द्वारा जो है वो फूड पैकेट्स, पानी, पीने के पानी की व्यवस्था सभी को पहुंचाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। लगभग 1000 से ऊपर जो है वो फूड पैकेट्स, पीने के पानी जो है वो ऑलरेडी हम मल्टीपल राउंड में वितरित कर चुके हैं।
5: संकट बड़ा है, सैलाब की मार से शहर सहमा हुआ है, कई लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है। ऐसे में प्रशासन ने रेन बसेरों का भी इंतजाम किया है ताकि लोगों को राहत पहुंचाई जा सके।
9: हमारे यहाँ पर रेन बसेरा नगर पालिका जो यूपी टूरिज्म चौराहे के पास है वहाँ पर रात पे रुकने की, खाने की, चाय इत्यादि सभी प्रकार की व्यवस्थाएं जो है वहाँ पर की गई है। अगर किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता है कि वहाँ पर रुकने की जरूरत है या कहीं पे किसी का रेस्क्यू किया गया है या कहीं पर भी जल भराव की स्थिति है तो आज आप आने वाले समय में जो है वहाँ पे रुक सकते हैं, सभी व्यवस्थाएं की गई हैं।
5: चित्रकूट की स्थिति को देखते हुए यूपी और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों का प्रशासन अलर्ट है। अधिकारियों की टीमें लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि यहाँ अभी बारिश का दौर पूरी तरह थमा नहीं है, अगर मौसम की मार ऐसे ही जारी रही तो स्थिति और खराब हो सकती है। चित्रकूट से अखिलेश कुमार, सुनकर आज तक।
0: वक्त एक ब्रेक का उछला, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: संविधान के आधार में तो कभी ये नहीं लिखा कि भाई आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया जाएगा। बता दीजिए कहाँ कहा गया कि आर्थिक आधार पे। तो जब आधार ही आर्थिक नहीं है तो इस पर चर्चा कहाँ से, जब आधार ही सामाजिक और समाज में भी छुआछूत का। मैं बड़े वर्ग के आरक्षण की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाले लोगों को आरक्षण देने की, जिनके बारे में कहा जाता है कि क्रीमी लेयर क्यों नहीं, तो ये छोड़ दें आरक्षण का लाभ लेना छोड़ दें, वो आरक्षण का लाभ लेना छोड़ दें। जब इसमें सब क्लासिफिकेशन की बात की जाती है तो जो लोग कह रहे हैं, जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, तो आइए फिर बैठ के हम लोग चर्चा कर लें सदन में। माझी जी को अगर लगता है कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए तो क्या माझी जी पहले इस्तीफा दे दें, ले आएं क्रीमी लेयर का कंसेप्ट ना भाई, फिर उसमें तो आप भी आते हैं ना, आप भी इस्तीफा दे दें, उनके सुपुत्र भी यहाँ पे हैं, फिर वो भी इस्तीफा दे दें।
4: वो नहीं समझ रहे हैं कि संतोष क्या कह रहे हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं कि वैसे वैसे लोग को आरक्षण के लाभ से वंचित हो जाना पड़ेगा, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि लार्जर इंटरेस्ट में और लार्जर लोगों के हित में बंटवारा बहुत जरूरी है। संतोष कुमार ने कहा, कोई नई बात नहीं कहा है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का एक सिद्धांत है जिसके तहत उसने कहा है और उसको लेकर के चल रहा है। इसमें चाहे जो भी होगा हम लोग सब इसके लिए लड़ेंगे करेंगे, और क्योंकि हमारे गरीब लोगों को देखना नहीं चाहते हैं इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

जीपी बोले, पूरे गैंग की कमर तोड़ कर रहेंगे। सबका सुराग मिल चुका है, परिवार से मिले आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी। कल से शुरू होगा समाजवादी पार्टी का चुनाव प्रचार, अखिलेश यादव का ऐलान। एसटीएफ को बताया 100 जातीय टॉर्चर फोर्स। वर्कशॉप में बीजेपी कार्यकर्ताओं का महाजुटान, तो मायावती ने भी बुलाई मीटिंग। आज बिश्केक में एससीओ समिट में एक मंच पर होंगे प्रधानमंत्री मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग। रूसी राष्ट्रपति से होगी प्रधानमंत्री की मुलाकात, कारोबार और ऊर्जा संकट पर होगी बात। शुद्धिकरण विवाद में राहुल गांधी पर एफआईआर होने के बाद कांग्रेस का विरोध, बीजेपी कर रही है प्रदर्शन। एससी एससी एक्ट के तहत अनुसूचित जाति के युवक ने दर्ज कराया था राहुल गांधी पर केस। नेपाल त्रासदी में बढ़ते आंकड़ों से दुनिया सन, जान गंवाने वालों की संख्या पहुंची 900 के पार, लापता।

0: नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। दो बजे की तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहली बड़ी खबर जो आ रही है राहुल गांधी को लेकर। दरअसल उत्तराखंड में राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और हल्द्वानी में राहुल गांधी के खिलाफ शुद्धिकरण के मामले पर FIR दर्ज की गई है। और इसके बाद लगातार कांग्रेस के कई नेता जो है वो पुलिस के कई अधिकारियों से, उन्होंने आला अधिकारियों से मुलाकात भी किया। और इसके बाद बीजेपी की तरफ से भी लगातार राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। राहुल गांधी पर FIR से उत्तराखंड में एक नया बवाल मच चुका है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर राहुल गांधी के खिलाफ लगातार बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस ने पुलिस के अधिकारियों से मिलकर शिकायत का विरोध किया है, FIR का विरोध किया। लेकिन इसी बीच बीजेपी की तरफ से भी लगातार अब कांग्रेस के राहुल गांधी के खिलाफ अब प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ अंकित हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अंकित, लगातार FIR में किन चीजों का जिक्र किया गया है? कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने कल जब ये बयान दिया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी को भी उन्होंने कहा था कि FIR होनी चाहिए इस मामले पर, शुद्धिकरण के मामले, लेकिन अब राहुल गांधी के खिलाफ ही FIR हो गई है। क्या कुछ FIR में जिक्र किया गया?
1: सिलसिला सबसे पहले जब शुरू हुआ, जब 8 तारीख को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली थी हल्द्वानी में, उसके 2 दिन के बाद 11 तारीख को शुद्धिकरण हवन होता है। और जब मामला तूल पकड़ता है तो उस समय संसद भी चल रही थी। संसद में JP नड्डा इस मामले का संज्ञान लेते हैं और उन्होंने इस मामले पे माफी मांगी। लेकिन उसके बाद मामला तूल पकड़ता गया और 29 तारीख को जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ जो ये जो प्रत्यय हुआ है, जिस तरह से ये शुद्धिकरण हवन हुआ है, ये अनुसूचित जाति समाज के खिलाफ एक बड़ा अपराध है और इसमें FIR दर्ज होनी चाहिए। लेकिन 2 दिन के बाद हम क्या देखते हैं कि राहुल गांधी पर ही FIR हो जाती है हल्द्वानी में। और 2 व्यक्ति हैं, विनोद आर्या और अमित कुमार, जो कि राम सेवा धर्मार्थ सेवा संगठन के जो मेंबर हैं, उन्होंने इस पर FIR करी है और उनका कहना है कि उनके समाज का अपमान हुआ है, जिसमें ये FIR होनी चाहिए। जो 3 धाराएं हैं वो है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, जो है SC ST एक्ट में 3(1)(q) धारा है, जो कि ये कहती है कि किसी भी अधिकारी को आप भ्रमित करते हैं कि SC ST के किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो। दूसरी जो धारा है 99, जो कहती है कि धार्मिक उन्माद चलाने की कोशिश की है। 296 भी यही कहती है कि 2 संगठनों में या 2 कम्युनिटीज में जो हेट्रेड बढ़ाने का काम किया है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है, ये धाराएं गलत है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस कह रही है जो राम सेना धर्मार्थ सेवा संस्थान है उसके जो अध्यक्ष हैं गिरीश पांडे और जो सचिव हैं उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं पे भी अनुसूचित समाज का भी कोई अपमान नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि जो शुद्धिकरण हुआ है उसके खिलाफ जिन लोगों ने, जो मेन ऑर्गेनाइजर थे, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं बीजेपी आज प्रदर्शन कर रही थी। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने जो SC ST समाज है उसका अपमान किया है और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन हमने उनसे सवाल किया कि
0: बिल्कुल देखिए, हमारे संवाददाता अंकित शर्मा लगातार देहरादून से जुड़े हुए थे, बता रहे थे कि FIR के बेसिस क्या है और क्या क्या उसमें शिकायतकर्ता ने दर्ज कराया। आपको बता दें कि राहुल गांधी के ऊपर हुई FIR के बाद कांग्रेस भी आक्रामक हो गई है। कांग्रेस के कई नेता जो है वो पुलिस के अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की और इस FIR का विरोध भी किया है। हम आपको बता दें कि FIR के बाद, यानी कल से ही, इसके बाद घमासान उत्तराखंड की सियासत में मचा हुआ है। इसके बाद अब कांग्रेस के कई नेताओं ने जाकर खुद पुलिस के अधिकारियों से मुलाकात की और इस FIR पर विरोध भी दर्ज कराया।
2: दलित विरोधी ये सरकार
3: नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
0: आपको तस्वीरें भी हम आप दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हल्द्वानी, देहरादून और दिल्ली की तस्वीरें। कुमारी शैलजा लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है उन्होंने। इसके अलावा कांग्रेस का प्रदर्शन देहरादून में भी हुआ और शुद्धिकरण पर केस पर FIR के बाद हल्द्वानी में भी कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया। 3 तस्वीरें जहां पर कांग्रेस अब इस FIR के बाद आक्रामक होती नजर आ रही है।
4: दसवाना जी, जिस तरह से ये पूरा मामला दर्ज हुआ है, इसको पहली बात तो ये है कि आप यहाँ पहुँचे हैं, आपने अभी किस पर, किन किन लोगों पर कार्रवाई करने के लिए DGP को कहा है और आगे ये पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं, क्या करने वाली कांग्रेस?
5: देखिए, हमारी 2 मांग है और सीधी सीधी मांग है। पहली मांग तो ये है कि जो फर्जी मुकदमा राहुल गांधी जी के खिलाफ सरकार के दबाव में भारतीय जनता पार्टी के

0: दबाव में हल्द्वानी की पुलिस ने कायम किया है, उस मुकदमे को तत्काल निरस्त किया जाए। सारा नियम कानून पे ताक पे रख करके ये मुकदमा कायम किया गया है। कोई जांच नहीं हुई। सीओ लेवल का आदमी जांच करता है। जब कोई एससी एसटी एक्ट में या दहेज उत्पीड़न के मामले में अगर कोई मुकदमा कायम होता है, अगर बहुत अर्जेंसी ना हो तो उसमें पहले जांच होती है। जांच कोई आपने करी नहीं, एक कंप्लेंट आई उस पर आपने मुकदमा कायम कर दिया। मुकदमा उन लोगों पर कायम होना चाहिए था जिन लोगों ने 10 तारीख को 10 अगस्त को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की रैली के बाद शुद्धिकरण का काम किया रामलीला मैदान में, और हवन किया, यज्ञ किया, गंगा जल छिड़क करके कहा कि यहाँ पे खड़गे आए थे, यहाँ पर शैलजा जी आई थी, यहाँ पर यशपाल आ रहे आए थे और उनके आने के कारण ये अशुद्ध हो गया और शुद्धिकरण का काम किया, तो अपराध तो उन्होंने किया था।
1: नहीं, जिस तरह से कह रहे कि वहाँ पर गंदगी थी, यूरिन थी बॉटल्स में, उसके बाद शुद्धिकरण तो करना बनता था, उसको जायज ठहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि, लेकिन ये कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं था। इस पर कांग्रेस
0: दिल्ली में सरकार बीजेपी की, केंद्र में सरकार बीजेपी की, राज्य में सरकार बीजेपी की, नगर निगम में सरकार बीजेपी की, जिसके लिए नगर निगम के उस रामलीला मैदान के लिए पैसा जमा किया गया था, तो नगर निगम के लोग झक मार रहे थे क्या? अगर वहां पर कोई इस प्रकार की गंदगी थी तो नगर निगम के लोगों ने सफाई 2 दिन तक क्यों नहीं करी?
2: और देखिए, ना सिर्फ उत्तराखंड बल्कि दिल्ली के सियासी गलियारों में भी इसके बाद घमासान मच गया। कुमारी शैलजा की खड़गे के साथ मुलाकात हुई। आपको बता दें, कुमारी शैलजा कांग्रेस की प्रभारी हैं उत्तराखंड के, और इसी के बीच उन्होंने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात भी की और इस मामले पर कई दोनों के बीच में कई मुख्य बिंदुओं पर चर्चा भी की गई है। देखिए, आपको बता दें कि जैसे ही राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर हुई है उसके बाद कांग्रेस भी एक्टिव हो गई। ना सिर्फ विरोध किया जा रहा है इस एफआईआर का उत्तराखंड में, बल्कि अब दिल्ली में भी चुनावी गलियारों के अंदर इसको लेकर जो आप कह सकते हैं कि जो सरगर्मी है या फिर जो बातचीत है वो होनी शुरू हो गई। कुमारी शैलजा की मुलाकात मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके निवास पर हुई।
3: राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी अशुद्धिकरण मामले पर। उन्होंने कहा कि हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है और एफआईआर दर्ज करे, लेकिन उनके खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर दी गई है। क्या यह आफ्टर थॉट है आपके हिसाब से इस पूरे मामले में?
4: देखो, आफ्टर थॉट और इनकी जो सोच है, एक निम्न स्तर की सोच भाजपा की है, भाजपा आरएसएस की है, इनकी डबल इंजन सरकार की है, उसी का हिस्सा है राहुल जी की। हर एक्शन से ये लोग बौखला जाते हैं। भाजपा को आपने देखा, चाहे यहां पर हो चाहे सदन में हो, राहुल जी बोलते हैं लेकिन कोई उनका जवाब देने तक को नहीं आ पाते हैं, और वहां पर भी गलत बयानबाजी होती है, लोकसभा में भी और पूरे पार्लियामेंट में आते नहीं है ये लोग। राहुल जी लोगों के बीच में जाकर असलियत दिखाते हैं, तो इन चीजों से राहुल जी पीछे हटने वाले नहीं है और ना कांग्रेस पीछे हटेगी।
3: बीजेपी कह रही है शुद्धिकरण का मामला नहीं है, इसमें जाति का कोई एंगल नहीं है। जिन लोगों ने किया उनमें तमाम जातियों के लोग थे। जो एफआईआर दर्ज कराई गई है जिस व्यक्ति के द्वारा,
4: इसका मतलब शुद्धिकरण को वो मान रहे हैं? इसका मतलब मान रहे हैं वो? शुद्धिकरण होता क्या है पहले ये बताओ, क्या है शुद्धिकरण? किस चीज का शुद्धिकरण कर रहे हो आप? पहले अपने मानसिक, अपनी जो उनकी सोच है उसका शुद्धिकरण करें, देश में ऐसे जहर ना फैलाएं। क्यों नहीं आपने एफआईआर की, क्यों नहीं किया? अगर वहां पे उस तरह से खड़गे जी के जाने के बाद ऐसा किया तो आपने एफआईआर लॉज करनी चाहिए थी, उसके बाद करते हैं इंक्वायरी, पता चलता। लेकिन अब आप राहुल जी के खिलाफ करने लगे हैं, तो ये तो सोच मानसिक जो इनकी स्थिति है वो संतुलन खत्म हो गया भाजपा।
3: आप खड़गे साहब से मिलके आए, ब्रीफ किया आपने इन तमाम चीजों के बारे में?
4: देखो, कई चीजें हैं, हमारे राजनीतिक भी हैं लेकिन हमारे संगठन का भी मामला है, तो कई चीजों के बारे में बातचीत।
3: एफआईआर के लिए उन्होंने, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी?
4: देखिए, राहुल जी के खिलाफ जो हुआ है, अपना तो वो बहुत कुछ सहन करते हैं, करते रहे हैं, लेकिन राहुल जी के खिलाफ जो हुआ है उसके प्रति सबको बहुत रोष है, सबको रोष है।
2: और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल गौतम भी हमारे साथ जुड़ गए। राहुल गौतम, कांग्रेस पार्टी खासतौर पर राहुल गांधी इस पर लेकर आक्रामक हो रहे थे, उन्होंने एफआईआर की बात की, लेकिन अब राहुल गांधी के ऊपर ही एफआईआर हो गई है, 360 डिग्री पूरा ये मामला चेंज हो गया। राहुल,
3: देखिए इसीलिए अब कांग्रेस ने फैसला किया है कि अब वो इसको एक बड़ा हथियार बनाएंगे। राहुल गांधी को इस प्रकार पेश किया जाएगा कि देखिए अगर इस देश में एकमात्र व्यक्ति कोई लड़ रहा है अब वो राहुल गांधी है, चाहे वो दलितों का मुद्दा हो, चाहे सामाजिक न्याय का मुद्दा हो। और आप देखिए इसी वजह से आज पूरी उत्तराखंड कांग्रेस आप देखिए सड़क पर है, तमाम थानों के अंदर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो जा रहे हैं, FIR की मांग कर रहे हैं। 7 सितंबर को बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक बड़ा प्रदर्शन उत्तराखंड के अंदर करेगी जिसमें तमाम उसकी इकाइयां शामिल होंगी। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि देखिए 50 FIR तो पहले ही है हमारे नेता के खिलाफ, तो एक और FIR हो जाएगी तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जाहिर है कांग्रेस का यह आरोप है, यह दर्शाता है कि कैसे बीजेपी गोल पोस्ट को चेंज कर रही है, वो डाइवर्जनरी टैक्टिक का इस्तेमाल कर रही है, ध्यान भटका रही है। और आप देखिएगा आने वाले दिनों के अंदर इसको कांग्रेस एक बड़ा मुद्दा बनाएगी उत्तराखंड के अंदर चुनावों से पहले।
2: बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राहुल गौतम। देखिए ये सियासत कितनी ज्यादा बढ़ गई है इसको लेकर AIIM के चीफ OVC ने भी एक बयान दिया, आइए आपको वो भी सुनाते हैं।
5: ये बात बिल्कुल सच है कि राज्यसभा में खड़गे साहब ने इस मसले को उठाया। ये बात भी सच है कि बीजेपी की सरकार की तरफ से नड्डा साहब ने उसका मजम्मत भी की। मगर ये बात भी सच है कि जिन लोगों ने वो जाकर वो जो भी किया गंदा काम किया वो तमाम के तमाम RSS के मेंबर हैं। सोशल मीडिया पर मीडिया में भरे पड़े हुए उनकी तस्वीर RSS के कपड़ों में खड़े हैं। नहीं नहीं नहीं, सुन लीजिए। देखिए अगर मैं खड़गे साहब या किसी के भी खिलाफ होता है इस तरह की हरकत, तो ये अनटचेबिलिटी तो हमने बैन कर दी इस देश में संविधान के तहत। कैसे 2026 में इस तरह की हरकत होती, मैं इसका कंडेम करता हूं और सरकार को एक्शन लेना चाहिए।
2: चलिए उत्तराखंड के बाद अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के अंदर 3 महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है जिसमें ना सिर्फ बीजेपी की तरफ से 700 से ज्यादा आप कह सकते हैं पदाधिकारियों को बुलाया गया, इसके अलावा BSP और समाजवादी पार्टी की भी एक महत्वपूर्ण मीटिंग है। समाजवादी पार्टी की तरफ से और खासतौर पर मायावती की तरफ से 75 जिलों से संवाद जारी किया गया और जिलाध्यक्षों के साथ अखिलेश यादव की भी चुनावी तैयारियों को लेकर एक बड़ी मीटिंग है। आपको तीन तस्वीरें दिखा रहे हैं, मीटिंग हो चुकी है। बीजेपी के कार्यशाला के अंदर 700 पदाधिकारी आज शामिल हुए और तीनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की मीटिंग जो करीबन 700 से ज्यादा पदाधिकारियों को इसमें शामिल किया गया। और आपको बता दें कि ये महत्वपूर्ण मीटिंग है उत्तर प्रदेश के चुनावी तैयारियों को लेकर, जहां पर बीजेपी के हर जिले से 5 पदाधिकारियों को बुलाया गया था जिसमें एक सांसद, एक MLA और इसके अलावा 5 जोन के अलग अलग आप कह सकते हैं जिला अध्यक्ष हैं और मोर्चा अध्यक्ष हैं, उनको भी इसमें बुलाया गया था। और इस मीटिंग का पूरा फोकस था हर जिले से लगातार रिव्यू लेना और इस कार्यशाला के अंदर हर जिले की रिपोर्ट या फिर आप कह सकते हैं उनकी मीटिंग के अंदर हर पहलू के ऊपर जिलेवाइज तरीके से चर्चा भी की गई। एक जिले से एक विधायक और एक सांसद को भी इस मीटिंग में बुलाया गया था। कार्यशाला के अंदर तमाम आप कह सकते हैं 700 से ज्यादा पदाधिकारी इसमें शामिल किए गए थे। हमारे साथ हमारे सहयोगी समर श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। समर श्रीवास्तव का रुख करते हैं। समर, देखिए ये मीटिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है स्ट्रैटेजीज और खास तौर पर आप कह सकते हैं कि जो बीजेपी का जो अग्रेसिव हमेशा स्ट्रैटेजीज रहती है वो सामने आने लगी है।
6: बिल्कुल सुमित, और एक तरीके से एक वर्कशॉप थी आज बीजेपी की जो अभी खत्म हो चुकी है, और जैसा कि आपने बताया लगभग हर जिले से 5-5 पदाधिकारियों को आज बुलाया गया था। इसमें विधायक भी थे, सांसद भी थे और कुल मिलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी डिप्टी CM दोनों, पंकज चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीधा संवाद किया है कार्यकर्ताओं से, उन्हें तमाम चीज़ें बताई हैं, हिदायतें दी हैं और एक तरीके से एक नोटबुक भी दी गई और एक पेन दिया गया कि भाई उसमें आप नोट डाउन भी कर लें कि आपको चुनाव के मद्देनजर अपने अपने बूथ स्तर पर अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने महानगर में क्या क्या करना है। इसमें बहुत बड़ी चर्चा का विषय जेंजी भी रहा है कि जेंजी ने जो है पुरानी सरकारें नहीं देखी हैं कांग्रेस के समाजवादी पार्टी की, उन्होंने बीजेपी की ही सरकार देखी है, तो उनको जाएं और जेंजी को बताएं कि उनकी सरकारों में क्या हुआ करता था। इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा यह भी था कि विपक्ष का जो नैरेटिव है उसको ब्रेक करने की बात थी। बीजेपी को लगता है कि विपक्ष ने जो अफवाहें फैलाई हैं तमाम मुद्दों पर वो लोगों के घर कर गई हैं, और ऐसे में क्षेत्रीय कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि वो घर घर जाए, नुक्कड़ नुक्कड़ जाए और विपक्ष के उस एजेंडे को फेल करे, उस अफवाह लॉबी को फेल करे जिसके दम पर विपक्ष ने सारी सीटें लोकसभा चुनाव में यूपी में जीती थी, ऐसा बीजेपी को लगता है। और यह भी एक गुरुमंत्र कहीं ना कहीं बीजेपी के आला जो नेता हैं उनकी तरफ से कार्यकर्ताओं को दिया गया है। इसके अलावा जो विकास योजनाएं बीजेपी की हैं उनको आप घर घर पहुंचाइए, फिर चाहे घर की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला सिलेंडर हो, या फिर जो स्टेट लेवल की योजनाएं उनको घर पहुंचाइए, क्योंकि यही एक तरीका है जिसके जरिए आप अपना वोट बैंक बचा भी सकते हैं और वोट बैंक बढ़ा भी सकते हैं।
2: तो आज की वर्कशॉप देखे की प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी जब जनजी के साथ संवाद शुरू किया गया तब ये तय माना जा रहा था कि आने वाले चुनावों में हर जगह इसका रिफ्लेक्शन नजर आएगा और शायद इसी वजह से इन तैयारियों में उसको प्रमुखता से रखा गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ तैयारियां बीजेपी की तरफ से हो रही है, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी तैयारियां पुरजोर से की जा रही है और खासतौर पर कल से इस चुनावी आगाज या फिर आप कह सकते हैं प्रचार का आगाज समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जाएगा। समाजवादी पार्टी कल से शुरू करेगी अपना चुनाव प्रचार और देखिए जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, चुनाव करीब आते जा रहे हैं, ऐसे में सभी पॉलिटिकल पार्टी तीनों प्रमुख पार्टियां लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी तैयारियों को और ज्यादा अग्रेसिव और ज्यादा मजबूत करने में लगी हुई है। कल से समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इस चुनाव प्रचार की शुरुआत की जाएगी और देखिए समाजवादी पार्टी का पूरा फोकस होगा कि बूथ स्तर पे इसको लेके जाया जा सके। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की बैठक हुई है, हम आपको बता रहे हैं कि कैसे इस बैठक के कई महत्वपूर्ण बिंदु हम आपको दिखाने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। बूथ लेवल पर अब ये फोकस रहेगा, 75 जिलों के अध्यक्षों को और महानगर प्रमुखों को इसमें शामिल किया गया और खास फोकस था कि ब्लॉक वाइज और बूथ वाइज स्ट्रेटजीज को डिफाइन या फिर उनको और ज्यादा मजबूत किया जा सके और इसी वजह से माना जा रहा है कि कल से चुनाव प्रचार की तैयारियां पूरी हो जाएगी। फॉर्म 6 पर भी अखिलेश यादव ने खुद की आप इस पे चर्चा की गई, इसको लेकर भी प्रमुखता से रखा गया। फॉर्म 6 पर अखिलेश ने खुद की अपने बातचीत की अपने जिला अध्यक्षों से और इसके बाद मीटिंग के दौरान अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं।
7: अब सुनने में आया है कि एक बड़ी साजिश हो रही है, बड़ा षड्यंत्र होने जा रहा है यूपी में कि चुनाव से पहले एक एनुअल रिवीजन करेंगे ये लोग SAR, जिससे कि ये अपने लोगों के वोटों को एडजस्ट करेंगे। सुनने में आ रहा है कि बड़े पैमाने पर बिहार से लोग, झारखंड से लोग, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उनके ये लोग वोट बनाएंगे और अपने बूथों पर वोट बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए हमारे संगठन, हमारे जो बूथ स्तर पर ऐप के माध्यम से काम कर रहे हैं, उन सब का हमने सहयोग मांगा है और सबकी जिम्मेदारी से काम करेंगे और वोटर लिस्ट को न केवल ठीक कराएंगे बल्कि बूथ स्तर पर वोट डालने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि अब चुनाव में कोई समय नहीं बचा है। कल से हमारी पार्टी का प्रचार एक तरह से शुरू।
2: और देखिए अखिलेश यादव चुनाव प्रचार का आगाज तो कर बैठे लेकिन वो लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार पर भी आक्रामक हुए। उन्होंने एसटीएफ को लेकर भी बयान दिया, एसटीएफ को लेकर उन्होंने योगी सरकार पर हमला भी किया। देखिए आपको बता दें कि एसटीएफ को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बड़ा हमला किया है और खास बात यह भी कि एसटीएफ को लेकर सीएम योगी पर सीधे तौर पर उन्होंने निशाना साधा है। अखिलेश यादव लगातार एसटीएफ के काम करने पर उन्होंने कहा कि स्वजाति टॉर्चर फोर्स है ये, एसटीएफ का मतलब यानी स्वजातीय टॉर्चर फोर्स, ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। जाति देखकर होता है फर्जी एनकाउंटर, ये भी अखिलेश यादव ने कहा।
7: मुख्यमंत्री जी की एसटीएफ स्वजाति टॉर्चर फोर्स, स्वजाति टॉर्चर फोर्स और लगातार पीडीए का उत्पीड़न हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमने आपने सुना, दो दिन ही हुए हैं कि बदायूं में एक दलित नौजवान की थाने में हत्या हो गई, जान चली गई उसकी। बदायूं में 22 थाने हैं, 22 थाने, स्वजाति मुख्यमंत्री के 10 लोग हैं वहां पर, पीडीए के 10 हैं लोग।
2: अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, हम आपको बता दें कि लगातार अखिलेश यादव भी अपनी स्ट्रेटजीज में अपने काम करने के तरीके को और ज्यादा अग्रेसिव बनाते जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए। संतोष का रुख, संतोष देखिए एक तरफ बीजेपी की बैठक, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और मायावती की भी बैठक, यानी तीनों तरफ से अगर आप देखें तीनों प्रमुख पार्टियां लगातार अब इस मैदान में अपनी पूरी वर्कफोर्स के साथ उतर चुकी हैं और तैयारियों में कि चुनाव के नतीजे उन्हीं के फेवर में है। इस समय समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटेजी कैसे अलग है कंपैरेटिवली पहले अगर हमने देखा हो तो?
8: देखिए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव न सिर्फ जैसे अभी बताया कि बूथ लेवल पर मजबूती कर रहे हैं, बल्कि वो अपने पीडीए के जरिए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की डेफिनेशन से उसको वास्ट कर रहे हैं। पीडीए के अलावा वो समय समय पर डेफिनेशन कभी पंडित शामिल कर लेते हैं, कभी प्लेयर्स शामिल कर लेते हैं, तो वो जैसी जरूरत होती है वो पीडीए के में अपने परिवार को, पीडीए का जो वोट बैंक है, पीडीए उनका बड़ा हथियार है और उस पीडीए के हथियार को वो 2024 में चुनाव में वो टेस्ट कर चुके हैं और वो टेस्ट उनको सफल रहा है। तो ऐसे में पीडीए के जरिए ही वो एक अपने दोबारा से सत्ता पाने की कोशिश में लगे हुए हैं और पीडीए के डेफिनेशन से बदलकर अपने वोट बैंक को बढ़ा रहे हैं और यही वजह है कि अखिलेश यादव लगातार पीडीए के उत्पीड़न की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अखिलेश यादव हमेशा ये कहते रहे, चाहे वो जेपीएनआईसी का मुद्दा हो, जेपीएनआईसी का लगातार मुद्दा उठाया जा रहा है, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे हो या गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे हो, वहां पर जो भ्रष्टाचार हुआ आरोप लगा करके 4,000 करोड़ की सड़क है 20 दिन में उखड़ गई, 70,000 करोड़ की सड़क गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, तो इतना महंगा कैसे एक्सप्रेसवे बन सकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार। ये भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जहां बीजेपी और उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने वोट बैंक को भी बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव अपनी दोहरी स्ट्रेटेजी, एक तरफ अपने वोट बैंक को बढ़ावा और दूसरी तरफ बीजेपी को काउंटर करने की, बीजेपी को भ्रष्ट।
2: बिल्कुल संतोष, देखिए लगातार हमने बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तो बात कर ली, कैसे लगातार बीजेपी जो है जिला लेवल के ऊपर काम कर रही है, अखिलेश यादव जो है बूथ लेवल पे, लेकिन मायावती की स्ट्रैटेजीज भी कैसे अलग है इन चुनावों को लेकर, क्योंकि मायावती भी अब लगातार इस चुनावी बिगुल में या फिर चुनावी तैयारियों में जुट गई है। आइए आपको ये भी दिखाते हैं और देखिए हम आपको तैयारियां बता रहे हैं कि 75 जिलों के अध्यक्षों के साथ मुलाकात हुई है और रिपोर्ट पर चर्चा की है। इसमें ना सिर्फ हर जिले के बारे में जानकारी हासिल की गई है बल्कि ये भी देखा गया है कि कौन कौन से संभावित और उम्मीदवार हो सकते हैं, कौन कौन से प्रत्याशी हो सकते हैं जो चुनाव प्रचार के साथ साथ उनकी बीएसपी के लिए एक बड़े उम्मीदवार के तौर पर होंगे, इनको इनके नामों को लेकर भी चर्चा की गई और इन तमाम रिपोर्ट्स में ये देखा गया 75 जिलों के अंदर कि बीएसपी की स्ट्रैटेजी इन जिलों के अलग से या फिर एक ज्वाइंट या फिर एक यूनिवर्सल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए या फिर हर जिले के हिसाब से एक अलग तैयारियां की जाए। और आपको बता दें कि बीएसपी की तरफ से भी लगातार इन तैयारियों का रिव्यू लिया गया है। और देखिए अब आपको बताया कि उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर, आपको बताया कि संभल में अनधिकृत यानी अनऑथराइज बाजार को लेकर भी बड़ा एक्शन हुआ है। आपको बताया कि इससे पहले भी जो नोटिस था वो जिला प्रशासन की तरफ से दिया गया था, लेकिन उसके बाद तहसीलदार ने खुद जाकर मौके पर जाकर इस अवैध मजार को हटाने की प्रक्रिया शुरू की। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिनव माथुर हमारे साथ जुड़ गए। अभिनव, लगातार कहा जा रहा था कि प्रशासन ने पहले ही नोटिस दिए थे, पहले ही जानकारी दी थी, लेकिन फिर भी जब नहीं हटा तो खुद अधिकारी वहां पहुंचे, यहां तक कि तहसीलदार वहां मौके पर पहुंचे और अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को हटाया गया।
9: देखिए बिल्कुल, नीमखेड़ा बजेड़ा ये पूरा गांव है जहां पर क्षेत्रीय लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर ये पूरी कार्रवाई धारा 67 के तहत शुरू की गई और यहां 1148 जो गाटा संख्या है उसमें चारागाह की जो जमीन पर बनी हुई ये पूरी अवैध रूप से मजार है, जिसको हटाने के लिए फिलहाल जो टीम है वो मौके पर आपको नजर आएगी। और फिलहाल यहां पर आप देखेंगे तो देखिए ये वो पूरा स्ट्रक्चर है जो कि मजार के रूप में बना हुआ है और फिलहाल यहां पर जो भारी संख्या में पुलिस फोर्स है उसको यहां पर तैनात किया गया है। नायब तहसीलदार शुभम प्रताप सिंह और जो सीओ अमन सिंह है उनकी यहाँ पर मौजूदगी यहाँ पर बनी हुई है। और देखिए हम फिलहाल यहाँ जो नायब तहसीलदार हैं उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, क्या ये पूरा मामला है जिस सर पूरी इस मजार को यहाँ पर हटाया जाना है उस पर पूरा सा बुलडोजर एक्शन
10: है? ये नीमखेड़ा बजेड़ा ग्राम है और जो तहसील संभल के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के तहत न्यायालय तहसीलदार महोदय के यहाँ वाद दर्ज किया गया, जिसके अनुक्रम में ये 9 जून को यह आदेश पारित किया गया, 9/6/2026 को, और बेदखली का आदेश दिया गया। इस उसी आदेश के अनुपालनार्थ मैं आज यहां अपनी राजस्व टीम के साथ मौजूद हूं।
9: सर, इसको पूरा बुलडोजर एक्शन के जरिए सर इसको हटाया जाएगा। सर, क्या कब से ये पूरा कब्जा था, कितनी पुरानी सर ये मजार है?
10: ये लगभग 20 वर्ष पुराना कब्जा है और ये पूरी जमीन लगभग 1.5 हेक्टेयर है, जिसमें ये लगभग 50-70 वर्ग मीटर के दायरे में इस मजार का निर्माण किया गया है, जिसे अभी बुलडोजर के माध्यम से इसे बेदखल किया जाएगा।
9: देखिए ये पूरा बुलडोजर एक्शन के जरिए इस पूरे अवैध मजार को हटाया जाएगा, लेकिन उससे पहले किसी भी हाल में लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो उसके मद्देनजर यहाँ 3 थानों की पुलिस फोर्स को तैनात किया गया, 1 प्लाटून पीएसी को तैनात किया गया है, सीओ खुद मौके पर मौजूद है सीओ अमन सिंह और लगातार पूरे जो क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर के पुलिस
2: बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा क्योंकि वहां पर आला अधिकारी मौजूद है और अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को हटाने की प्रक्रिया जारी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है लेकिन ब्रेक के बाद भी न्यूज रूम जारी रहेगा। आप देखते रहिए आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
4: मुल्तानी को का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी को का कॉफ सिरप,

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: आज तक ना होता तो हमारी बात देश दुनिया तक नहीं पहुंचती।
3: हम लोग को बड़े चैनल का सहयोग नहीं मिला था, हम लोग गरीब छात्र लोग हैं, तो आज आप लोग का सहयोग मिला है तो पूरा भारत और पूरा दुनिया में यहाँ की आवाज गूंज रही है।
2: खबरों के साथ पक्षपात नहीं।
4: 19 साल के छात्र साहिल रजा ने दावा किया उन पर सुरक्षा बलों ने पेलेट गन का इस्तेमाल किया, जिससे उनकी एक आंख की रोशनी जाने की नौबत आ गई।
2: हर बात देश के सामने।
5: अंजना मैम, सबसे पहले तो हम लोग आवाज को बुलंद किए, इसके लिए आपके पूरे टीम को धन्यवाद देते हैं।
2: मुद्दा कोई भी हो, सोए हुए सिस्टम को जगाता है आज तक।
6: 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, पहले प्रधानमंत्री हमारे नेहरू जी बने। उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे पहले प्रधानमंत्री बनते तो भारत की क्या दिशा और दशा होती?
7: ये तुमने सवाल क्वेश्चन किया, ये संसद में होता तो बड़ा मजा आता। हर तरीके की एक पार्टी बोलती कि कश्मीर हमारा होता, अफगानिस्तान तक हम कब्जा कर लेते, पब्लिक बाहर सुन के ताली वाली ही बजाती।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

एसटीएफ ने किया अंकित बालियान के दो हत्यारों का एनकाउंटर। डीजीपी बोले, पूरे गैंग की कमर तोड़ कर रहेंगे, सबका सुराग मिल चुका है। परिवार से मिले आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी। कल से शुरू होगा समाजवादी पार्टी का चुनाव प्रचार। अखिलेश यादव का ऐलान, एसटीएफ को बताया स्वजातीय टॉर्चर फोर्स। वर्कशॉप में बीजेपी कार्यकर्ताओं का महाजुटान, और तो मायावती ने भी बुलाई मीटिंग। आज बिश्केक में एसईओ समिट में एक मंच पर होंगे प्रधानमंत्री मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग। रूसी राष्ट्रपति से होगी प्रधानमंत्री की मुलाकात। कारोबार और ऊर्जा संकट पर होगी बातचीत। शुद्धिकरण विवाद में राहुल गांधी पर एफआईआर होने के बाद कांग्रेस का विरोध, बीजेपी कर रही है प्रदर्शन। एससी एक्ट के तहत अनुसूचित जाति के युवक ने दर्ज कराया राहुल गांधी पर केस। नेपाल त्रासदी के बढ़ते आंकड़ों से दुनिया सन, जान गंवाने वाले की संख्या पहुंची 900 के पार। लापता लोगों की तादाद 4200 के ऊपर। मलबे में ढूंढ रहे हैं जिंदगियों के निशान।

0: न्यूज रूम लाइव में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की ईरान के राष्ट्रपति से मुलाकात को लेकर। दरअसल अब से थोड़ी देर पहले यह मुलाकात शुरू हो गई। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ईरान के राष्ट्रपति पजेशकियान के साथ मुलाकात कर रहे हैं। 2024 के बाद ये दूसरी मुलाकात है, या फिर आप कह सकते हैं कि युद्ध के दौरान ये पहली मुलाकात है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और ईरान के राष्ट्रपति पजेशकियान कई मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें ना सिर्फ आप कह सकते हैं कि युद्ध के दौरान जो सेफ ट्रांजिट पॉइंट्स हैं या फिर शिप्स के आने जाने का रास्ता है उसको लेकर बातचीत होगी, इसके अलावा भारत और ईरान के कई व्यापारिक समझौते या फिर चाबार को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं जो इस समय आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी और ईरान के राष्ट्रपति पजेशकियान की मुलाकात को लेकर। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी जुड़ के पड़े। देखिए ये महत्वपूर्ण मुलाकात है क्योंकि 2024 के बाद ये पहली मुलाकात होगी जहां पर आमने सामने बैठकर दोनों आप कह सकते हैं कि जो नेता हैं वो मुलाकात करेंगे, और ऐसे वक्त में जब स्टेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर सबसे ज्यादा सवाल है उसके सेफ एग्जिट को लेकर या फिर सेफ ट्रांजेक्शन को लेकर।
1: निश्चित रूप से सुमित, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये तस्वीरें बहुत मायने रखती हैं क्योंकि 6 महीने हो चुके हैं पश्चिम एशिया के इस संघर्ष को। पहली बार राष्ट्रपति पजेशकियान और प्रधानमंत्री मोदी एक साथ आमने सामने की इस मुलाकात में हैं। निश्चित रूप से भारत की जो चिंताएं हैं इस पश्चिम एशिया के संघर्ष को लेकर, भारत का जो पक्ष है कि शांति और बातचीत के जरिए, डिप्लोमेटिक कोशिशों के जरिए इस समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिए, जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री के बयानों में, उनके चर्चाओं में इस चीज का जिक्र आएगा। साथ ही जो भारतीय सी फेयरर्स के सामने मुश्किलें आ रही हैं, जो जानमाल का नुकसान हुआ है, वो भी एक चिंता होगी जिस पर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से उनको उसको सामने रखा जाएगा। इसके अलावा एनर्जी सप्लाईज का जो डिसरप्शन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने के कारण, वो सारी चीजें हैं। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरीके से भारतीय समुदाय, आप तो खुद चूंकि ईरान होके आए हैं, वहां जो भारतीय समुदाय है उसकी सुरक्षा जैसे सुनिश्चित हुई, उसको लेकर एक तरीके से कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की तरफ से आभार भी जताया जाएगा। साथ ही वहां से भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित कर किस तरह से की जा सकती है, वो तमाम विषय भी होंगे। बहुत सारी व्यापक विषय हैं। आपने चाबार का जिक्र किया, भारत ने करीब $120 मिलियन जो है वो ईरान को चाबार की परियोजना के लिए दिए हैं, और उस परियोजना पर काम फिलहाल रुका हुआ है, संघर्ष के कारण भी रुका हुआ है, तनाव के कारण भी रुका हुआ है। लेकिन चाहे SCO का मंच हो, चाहे ब्रिक्स का मंच हो, भारत की कोशिश है कि उस चाबार पोर्ट की कनेक्टिविटी, जो पूरा सेंट्रल एशिया है, मध्य एशिया का इलाका है, उसके साथ, और साथ ही जो रूस की अगुवाई में बन रहा INSTC का कॉरिडोर है उससे किस तरीके से इसे जोड़ा जा सकता है, व्यापक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिहाज से चाबार की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो निश्चित रूप से उन परियोजनाओं पर भी चर्चा होगी, लेकिन ये सारी परियोजनाएं, सारे विकास के जो वादे हैं, जो सारे इरादे हैं, वो सब जो चीजें इस पर निर्भर करती हैं सुमित, कि आगे शांति की व्यवस्था कैसे बनाई जा सकती है इस पूरे इलाके के अंदर, जो है आखिर शांति प्रक्रिया में आगे क्या हो रहा है, और इसको लेकर क्या कोशिशें, क्या प्रयास चल रहे हैं, इस पर भी जानने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से होगी ईरान के राष्ट्रपति के साथ में। तो ये काफी महत्वपूर्ण मुलाकात है जो काफी हद तक तय करेगी कि इस पूरे इलाके के अंदर ईरान क्या कर रहा है, भारत की क्या अपेक्षाएं हैं, और भारत किस तरीके से शांति में एक भूमिका अदा कर सकता है।
0: और इस मीटिंग के दौरान ये भी पढ़े, ये भी बात है कि ऊर्जा संकट को लेकर, आपने जैसा बताया कि ऊर्जा संकट को लेकर क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं, किस तरीके से आगे बातचीत बढ़ सकती है, क्योंकि चाबार को लेकर भी हमने देखा था कि इस फरवरी के बाद इस युद्ध में पहली बार ऐसा हुआ कि चाबार को भी, उसके आसपास के इलाकों को भी टारगेट करने की कोशिश की थी, जो एक मेजर कंसर्न था भारत के लिए भी।
1: निश्चित रूप से बंदर अब्बास जो है, चाबहार, ये सारे वो पोर्ट्स हैं जो कि निशाने पर आए हैं, लगातार बमबारी हुई है, खासतौर पर अगर हम ईरान की तटरेखा की बात करें। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता है पूरी दुनिया के लिए सुमित, वो ये है कि बीते 6 महीनों से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का गलियारा है वो लगातार बाधित बना हुआ है। 27 फरवरी 2026 को जहां करीब हर दिन 130 से 150 जहाज गुजरा करते थे, अब वो आंकड़ा बहुत गिर गया है। कई दिन तो ऐसे गुजरे जब एक भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं गुजरा, और निश्चित रूप से इसका सीधे तौर पर असर भारत जैसे उन देशों की अर्थव्यवस्था को झेलना पड़ रहा है जिनका इस संघर्ष से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिनके ऊर्जा के साधन संसाधन जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए आते हैं, खाड़ी के देशों से आते हैं। तो निश्चित रूप से उसको लेकर तो भारत की चिंता है ही सही, क्योंकि भारत के कई जहाज, कई टैंकर भी जो है वो इसका निशाना बने हैं, वहां पे जो माइंस हैं उनको लेकर चिंताएं हैं। इसके साथ साथ एक बड़ी चिंता है सी फेयरर्स को लेकर।
0: बिल्कुल प्रणय, देखिए लगातार चिंता भारत की भी और पूरी दुनिया की भी है, क्योंकि 70 से ज्यादा ऑयल टैंकर्स को इस दौरान युद्ध में आप कह सकते हैं टारगेट किया गया, और शायद ये मेजर कंसर्न पूरी दुनिया में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय उपाध्याय हमारे से जुड़ने के लिए। लेकिन आज एससीओ का मंच बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की ना सिर्फ मुलाकात ईरान के राष्ट्रपति से हुई है, बल्कि वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी मुलाकात करेंगे, और इस दौरान भी कई महत्वपूर्ण चीजों के ऊपर चर्चा होने की संभावना है। लेकिन अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की मौत को लेकर आज एसटीएफ ने दो शूटर्स को मार गिराया है और अब भी उन दो शूटर्स की तलाश जारी है।

0: अंकित बालियान केस के अंदर 100 घंटों के अंदर ही यूपी एसटीएफ ने दोनों शूटर्स को मार गिरा। हालांकि दो शूटर अब भी फरार हैं, उनकी तलाश में एसटीएफ अब भी लगातार कई जगहों पर आप कैसे सर्च ऑपरेशन चलाए हुए। हालांकि अंकित बालियान के पिता ने कहा है कि ये अधूरा इंसाफ है क्योंकि अब भी दो शूटर फरार है।
1: सिंगर मर्डर केस में एक्शन, दो शूटरों का सीधे एनकाउंटर,
2: जानलेवा फायरिंग के पश्चात अब सब फायरिंग के इनके ऊपर।
1: 26 अगस्त को बालियान की हत्या, 100 घंटे के भीतर आरोपी ढेर।
2: दो बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए, इनको सीएससी भेजा गया जहां इनकी मौत हो गई।
1: शामली में योगी मॉडल, जैसे को तैसा वाला जवाब।
3: माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से कहना चाहती हूं कि क्या योगी जी, अंकित जी आपका बच्चा नहीं था क्या? हम आपके बच्चे नहीं है? हमने भी तो आपको वोट देंगे, आपको जन प्रतिभागी बनाया है ना, अपना वोट दिया है ना, तो आप हमारे लिए आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? आप तो माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं ना, तो फिर इस केस पे इतना लेट कार्रवाई क्यों हो रही है?
1: सुनिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम की अपील। 26 अगस्त को शामली में हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बालियान की हत्या होती है।
4: चार दिन तक जब कोई एक्शन नहीं होता है तो बालियान की पत्नी सीमा सीएम योगी से हत्यारों को मिट्टी में मिला देने की अपील करती है और एक दिन बाद हत्या के दो आरोपियों का हिसाब किताब हो जाता है। कैराना में पुलिस और एसटीएफ की आरोपियों से मुठभेड़ होती है। हत्या के दो आरोपियों को पुलिस की टीम घेर लेती है। एनकाउंटर में दोनों आरोपियों को मार गिराया जाता है।
5: सुबह दो शूटर सुमित और मोहित, ये शामली पुलिस से मुठभेड़ में मारे गए हैं। इनके पास से सोफिस्टिकेटेड वेपन्स बरामद हुए हैं। इन्होंने शामली पुलिस पर काफ़ी फायर भी किया, उसमें हमारे दो कांस्टेबल भी घायल हैं। इस प्रकरण में अन्य शूटर्स और गैंग के हायर मेंबर्स, इन सब के बारे में तफ्तीश की जा रही है और इन सभी को कानून के दायरे में लाया जाएगा।
1: बीते 5 दिनों से यूपी पुलिस की इस केस में बड़ी किरकिरी हो रही थी। अंकित बालियान इस इलाके का जाना पहचाना चेहरा था। हरियाणवी सिंगर के तौर पर बालियान की काफी लोकप्रियता थी। बालियान की 26 अगस्त को शामली में जिम से बाहर निकलते हुए हत्या कर दी गई थी। परिवार इस हत्याकांड को लेकर एक्शन की लगातार मांग कर रहा था। अब एनकाउंटर पर बालियान के पिता कह रहे हैं, अभी तो आधा इंसाफ हुआ है।
6: आधा और मिलना चाहिए।
7: तो ये आधा कब तक का उम्मीद करोगे पुलिस कर देगी?
6: अब तो उम्मीद है।
1: अंकित बालियान के हत्या के दो आरोपी का एनकाउंटर हो चुका है। 22 साल का मोहित ओक, 24 साल का सुमित मुठभेड़ में मारा जा चुका है। इतनी छोटी सी उम्र में दोनों पर कई केस दर्ज हो चुके थे। 22 साल के मोहित पर 14 केस दर्ज थे और वो जेल भी जा चुका था। अपराध के जिस रास्ते पर दोनों आगे निकल चुके थे उसका यही अंजाम होना था। शामली से शरद मलिक के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: अंकित बालियान मर्डर केस के अंदर कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी हाथ लगी। दरअसल ये कहा जा रहा है कि अंकित बालियान की रेकी कई बार की गई थी, उसके लगातार कहां से निकलता है, कब जाता है, इसको लेकर कई दिनों से उसके ऊपर नजर भी रखी जा रही थी और गोगी गैंग के कहने पर ही इस वारदात को अंजाम दिया गया।

0: ਸੱਟ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੱਖਾਂ ਚ ਚੱਕੇ ਪੀਵਾਂਗੇ ਪਸੀਨੇ ਦੇ।
1: क्या एक गाना सिंगर अंकित बालियान की मौत की वजह बन गया? क्या एक गाने की वजह से अंकित बालियान गैंगस्टर के निशाने पर आ गया? क्या इसी गाने की वजह से अंकित बालियान की सरयाम हत्या की गई?
0: परी कोरत में गोली मारांगे मेरी जान मखां च चुके पियांगे पसीने दे।
1: क्योंकि अंकित मर्डर केस में दो शूटरों के एनकाउंटर के बाद अब कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है, जिसका खुलासा खुद डीजीपी राजीव कृष्ण ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है।
2: इस हत्या के पीछे की पृष्ठभूमि भी महत्वपूर्ण है। वर्ष 2021 में रोहिणी कोर्ट दिल्ली में जितेंद्र मान उर्फ गोगी की हत्या हुई और उसके बाद गोगी और टिल्लू राजपुरिया के गैंगों के बीच में चली गैंगवार की कड़ियां इस विवेचना में सामने आई हैं। अंकित बालियान द्वारा अभिनीत, मतलब उनके द्वारा इसमें सिर्फ एक्टिंग की गई है, एक गाना जो YouTube पर काफी पॉपुलर हुआ, उसको कथित रूप से गोगी की हत्या के घटनाक्रम से जोड़कर देखा गया, जो ये गैंग फॉर्म द्वारा देखा गया, और उनके द्वारा इसमें पूर्व में भी उसको धमकियां वगैरह दी गई।
1: 26 अगस्त की शाम जब शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की जिम से निकलते समय ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी, तो इस वारदात ने हर किसी को हैरान कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की पड़ताल की, जांच तेज की, तो इस केस की कड़ियां गोगी गैंग से जुड़ने लगी। पता चला इस वारदात को गोगी गैंग के शूटरों ने अंजाम दिया है।
2: विवेचना में इस हत्याकांड के पीछे गोगी गैंग से जुड़े नेटवर्क की भूमिका सामने आई है। 26-27 अगस्त को सोशल मीडिया पर राहुल उर्फ भोलू शाहपुरिया के द्वारा उससे जुड़े इंस्टाग्राम अकाउंट से हत्या की जिम्मेदारी ली गई थी और इसकी जांच भी विवेचना का एक हिस्सा है, जिसकी जांच की जा रही है।
1: जांच में पता चला है कि शूटर कई दिनों से अंकित बालियान के मर्डर का प्लान बना रहे थे, कई दिनों से रेकी की जा रही थी। जिस शूटर मोहित और सुमित को एनकाउंटर में मार गिराया गया है, उन दोनों ने 20-21 अगस्त को भी अंकित की रेकी भी की थी। ये तस्वीरें शामली के सूर्या होटल की हैं, जहां मोहित और सुमित 20 अगस्त को आकर रुके थे और फिर मोहित और सुमित ने अंकित के सारे मोमेंट की रेकी की।
2: सीसीटीवी, डिजिटल गतिविधियां, आरोपियों के मूवमेंट, ठहरने के स्थान, भुगतान, आपसी संपर्क, इन सब के आधार पर सारे साक्ष्य एकत्रित किए गए। विवेचना में सामने आया कि हत्या से पहले आरोपियों द्वारा अंकित बालियान की गतिविधियों की रेकी भी की गई थी और जिम के आने जाने की गतिविधियों पर भी नजर रखी गई थी। जांच में यह भी सामने आया कि शूटर्स को कहीं बाहर से हथियार भी उपलब्ध कराए गए थे और हत्या के दिन 4 हमलावरों ने योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को अंजाम दिया।
1: 26 अगस्त को अंकित की हत्या के बाद से आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे थे, लेकिन पुलिस की कई टीमों ने छापेमारी कर आखिरकार 2 शूटरों को ढेर कर दिया।
2: घटना के बाद अपराधी पुलिस से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदलते रहे। घटना के बाद जो घटित टीमें थीं, उन्होंने कई प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश में भी और कई प्रदेशों में छापेमारी की, जिसमें हरियाणा में, हिमाचल में, गुजरात में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई विभिन्न स्थानों पर दबिश दी और आरोपियों की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए रखी। इसी क्रम में 29 अगस्त को ह्यूमन और टेक्निकल इंटेलिजेंस के बेसिस पर घटना में शामिल अभियुक्तों की पहचान की गई और इसमें से 2 अभियुक्त मोहित और सुमित आज की पुलिस कार्रवाई में मारे गए।
1: मर्डर केस में 2 शूटर अब भी फरार हैं। पुलिस अब इन दोनों की तलाश में लगी है, साथ ही इस मर्डर केस की पूरी साजिश का पर्दाफाश कर रही है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ अरविंद ओझा, आज तक।
3: अंकित बालियान मर्डर केस में भले ही 2 एनकाउंटर हो गए हों, लेकिन इस पर सियासत अब भी जारी। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने इसको लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूपी में सिर्फ मर्डर होते हैं और फर्जी एनकाउंटर होते हैं, जिसके बाद अंकित बालियान के पिता ने इसको लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान ना दे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ही खुद सुमित और मोहित के नाम की पुष्टि की थी और इन्हीं दोनों ने लगातार फायर भी की थी।
4: फर्जी बोल रहा, गलत बोल रहा।
5: वो सवाल उठा रहे थे कि एनकाउंटर करना चाहिए, अब एनकाउंटर का फिर किस सवाल, ये जो कहा है उन्होंने कि ये फर्जी, इसके पीछे आप क्या क्या समझते हैं?
4: भाई वो तो राजनीतिक पार्टी है, वे तो पता नहीं क्या कहेगी क्या नहीं, लेकिन जब मैं खुद देख आया उनको दोनों को जिन्होंने पीछे से गोली मारी थी, तो मैं फर्जी कैसे कहूंगा।
5: क्या एनकाउंटर में जो मारे गए हैं सुमित और मोहित वही शार्प शूटर हैं?
4: हाँ वही थे, पीछे से जो गोली मारी थी उन्होंने ही मारी थी, सामने वाले दो रह रहे।
5: समाजवादी पार्टी का बयान गलत है?
4: हाँ गलत है।
5: अभी दो और बाकी हैं।
4: ऐसे बयान नेताओं को मेरे प्रतिपक्ष देने भी नहीं चाहिए, क्यों? मेरा खुद का मामला है, मेरा कोई पार्टी से कोई किसी से कोई मतलब नहीं है।
3: अंकित बालियान मर्डर केस के अंदर लगातार परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है, और इसी बीच लगातार एनकाउंटर के बाद परिवार के लोगों से बातचीत की है आज तक ने, आइए आपको सुनाते हैं।
6: तो यूपी पुलिस और एसटीएफ का अभी तक एक्शन हुआ है, क्या आप उसे संतोषजनक मानती हैं?
7: जी मैम, जो भी कार्रवाई अभी तक हुई है उससे हमें बहुत उम्मीदें बंधी है कि केस पे अच्छा काम हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का बार बार धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने इस केस को बहुत गंभीरता से लिया है। अंकित जी को उन्होंने अपना ही बच्चा समझ के इस केस पे काम करवाया है। बार बार धन्यवाद करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का कि उन्होंने इस केस को बहुत अच्छे से हैंडल किया है, और उनसे एक गुहार लगाना चाहूंगी कि इस काम को जड़ से खत्म करिए, क्योंकि आज हमारी फैमिली से एक बच्चा गया है, कल किसी और फैमिली का बच्चा ना जाए। क्योंकि अभी दो तीन लोग और हैं जो खुले घूम रहे हैं, उन्होंने बोला था कि मिशन अभी इनकम्प्लीट है, ऐसा कुछ सर्कुलेट हो रहा था, तो आगे किसी के साथ ऐसा ना हो। हम तो अपना, हमारा तो सब कुछ बर्बाद हो ही चुका है, आगे किसी फैमिली का बर्बाद ना हो, क्योंकि ये असामाजिक तत्व है, ये कुछ नहीं देखते किसी की फैमिली का और भी बच्चा ना जाए। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से गुहार लगाना चाहूंगी कि जो उनकी कार्यशैली है उसी कार्यशैली में जवाब दे, और उन्होंने इस केस को इतनी गंभीरता से लेते हुए लॉ एंड ऑर्डर का जो उनका एक है, जो उनकी गवर्नमेंट के एक जो नींव है, उनको उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो नंबर वन सीएम क्यों है। हमारे प्रदेश को उनकी जरूरत है अभी, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि योगी जी आपने इस केस पे बहुत अच्छी से करके पूरे गिरोह का पर्दा कीजिए सर, जो और आरोपी फरार हैं अभी उनको भी इसी तरह से पकड़वाइए।
6: जो बाकी बचे हुए आरोपी हैं, क्योंकि कुल छह लोग इन्वॉल्व थे, दो का एनकाउंटर हो चुका है, चार अब भी फरार हैं, उनके खिलाफ भी क्या इसी तरह का एनकाउंटर वाला एक्शन चाहती हैं आप?
7: मैम देखिए, ये हमारे लिए ही नहीं, केवल ये समाज के लिए भी जरूरी है, क्योंकि जो लोग ऐसा काम कर सकते हैं, एक ऐसा इंसान जिसकी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, जो अपने काम से काम रखता था, जो एक वेस्ट यूपी का एक उभरता हुआ सितारा था, जिसने जमीन से उठ के अपना नाम किया था, उस बच्चे की अगर हत्या हो सकती है तो वो बच्चा किसी का भी हो सकता है। आज हमारे फैमिली से गया है, कल किसी और की फैमिली का भी हो सकता है वो, तो किसी और के साथ ऐसा ना हो, तो ऐसे असामाजिक तत्वों का खत्म हो जाना ही जरूरी है।
3: और इस पूरे एनकाउंटर को कैसे अंजाम दिया गया इसको लेकर हमारे सहयोगी ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश से बातचीत की, आइए आपको वो भी सुनाते हैं।
8: 26 अगस्त को सायंकाल अंकित बालियान जी जब जिम से बाहर निकल रहे थे तो उन्हें चार शूटर्स ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मौके पर से 18 खोखा कारतूस मिले थे, जिसका अर्थ था कि भारी संख्या में फायरिंग की गई। सीसीटीवी फुटेजेस से ये जानकारी हुई कि चार शूटर्स थे जो दो मोटरसाइकिल्स पर फरार हुए। तत्काल इनकी तलाश शुरू की गई। बहुत जल्दी एक सोशल मीडिया पोस्ट भी आया जिसमें गोगी गैंग द्वारा भोलू शाहपुरिया नाम के एक व्यक्ति ने इस घटना की जिम्मेदारी ली। इस सोशल मीडिया पोस्ट का ओरिजिन इंडिया के बाहर से था, इसलिए इसकी पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन पुलिस ने सभी एंगल्स पर तफ्तीश शुरू की। अंकित बालियान जी हरियाणवी सिंगिंग में एक बड़ा नाम बन चुके थे और सोशल मीडिया प्रेजेंस उनकी काफी अच्छी खासी थी, इसलिए ये एक यूपी पुलिस के लिए एक चैलेंज भी था। जब आज सुबह लगभग 5 बजे एक मुठभेड़ हुई शामली पुलिस और इन शूटर्स के बीच में, और ये 2 शूटर्स मारे गए हैं, सुमित और मोहित, और इनके पास से भारी मात्रा में आग्नेयास्त्र बरामद हुए हैं। इन्होंने पुलिस पर भारी फायरिंग भी की है जिससे 2 कांस्टेबल्स भी हमारे घायल हुए हैं। अभी इस घटना में और भी लोग शामिल हैं जिनके बारे में तफ्तीश जारी है, और खास करके जो शूटर्स हैं और जो इस गैंग के लीडर्स हैं जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को प्लान किया है या अंजाम दिलाया है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।
3: चलिए न्यूज रूम लाइव में इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: नेपाल में आई त्रासदी के बाद मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी आंकड़ा करीबन 903 के करीब पहुंच चुका है। इसके अलावा करीबन 4500 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि खराब मौसम के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन को कई बार रोकना पड़ा, लेकिन अब भी नेपाल की सेना वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हुए, इसमें हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

ईरान अमेरिका जंग के बीच में एससीओ समिट में ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान से पीएम मोदी की मुलाकात। ऊर्जा संकट में कई मुद्दों पर चर्चा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी प्रधानमंत्री की मीटिंग होगी। शुद्धिकरण विवाद में आमने सामने कांग्रेस बीजेपी। राहुल गांधी पर एफआईआर होने के बाद सड़क पर उतरे दोनों राजनीतिक दल। एससी एसटी एक्ट के तहत अनुसूचित जाति के युवक ने दर्ज कराई राहुल के खिलाफ एफआईआर। सौ घंटे के अंदर यूपी एसटीएफ ने किया अंकित बालियान के दो हथियारों का एनकाउंटर। डीजीपी बोले पूरे गैंग की कमर तोड़ कर रखेंगे। पिता बोले बेटे के मर्डर में इंसाफ मिला। सीएम योगी पर पूरा भरोसा। कल से शुरू होगा समाजवादी पार्टी का चुनाव प्रचार। अखिलेश यादव का ऐलान। एसटीएफ को बताया स्वजातीय टॉर्चर फोर्स। वर्कशॉप में बीजेपी कार्यकर्ताओं का महाजुटान तो मायावती ने भी बुलाई मीटिंग। नेपाल त्रासदी में बढ़ते आंकड़ों से दुनिया सन। जान गंवाने वालों की संख्या पहुंची 900 के पार। लापता लोगों की तादाद 4200 के ऊपर। मलबे में ढूंढे जा रहे हैं जिंदगी के निशान।

0: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। अब समय हो गया है आपकी शहर की खबर सुपर फास्ट अंदाज में आपको दिखाने का, 100 शहर 100 खबर में।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड में दो शूटर्स का एनकाउंटर, यूपीएससीएफ ने हत्याकांड में शामिल दोनों ही शूटर्स को मार गिराया। अंकित बालियान की हत्या के मामले में पुलिस ने दो संदिग्ध शूटर्स की पहचान सुमित और मोहित के तौर पर की और दोनों का गोगी गैंग के साथ संबंध था। इन पर 50,000 का इनाम भी था। अंकित बालियान की पत्नी ने मुख्यमंत्री योगी और यूपी पुलिस का जताया आभार, कहा कि सभी आरोपियों को पकड़ा जाए। समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव के फर्जी एनकाउंटर वाले बयान पर अंकिता के पिता की तरफ से नसीहत, बोले मेरे मामले में बयानबाजी ना करे विपक्ष। पुलिस के मुताबिक अंकित बालियान की हत्या में कुल 6 लोगों की भूमिका, इनमें से 2 शूटर्स ढेर,

अंकित बालियान के घर पहुंचे केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी, परिवार वालों से मुलाकात। अंकित बालियान केस में ओपी राजभर ने लिखा कि अखिलेश ये खबर पता चल गई ना, किसी बेटे की लाश पर जाट लिखकर राजनीति करना संवेदना नहीं सौदागिरी। ओपी राजभर ने लिखा कि जिस अंकित बालियान की हत्या पर आप राजनीति करना चाहते थे उसके हत्यारे वहीं पहुंच गए जहां उनको पहुंचना था, यानी कि नर्क। यूपी में मिशन 2027 की तैयारियां थे, इस लखनऊ में बीजेपी एसपी बीएसपी की बड़ी बैठक। यूपी चुनाव में तैयारियों में जुटी बीजेपी लखनऊ में आयोजित कार्यशाला में सीएम योगी के साथ मंच पर दिखी नवनियुक्त महामंत्री स्मृति ईरानी। बीजेपी कार्यशाला में हर जिले से 5 पदाधिकारी शामिल, सीएम योगी दोनों ही डिप्टी सीएम समेत 700 पदाधिकारी जुटे, संगठन और जमीनी रणनीति पर मंथन। कैबिनेट मंत्री कपिल देव अग्रवाल बोले जेन जी तक पहुंचने और उसे वोट में बदलने की रणनीति पर बीजेपी कर रही है काम। लखनऊ में नए मतदाताओं को लेकर समाजवादी पार्टी की बैठक, 75 जिलों में जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष शामिल। फॉर्म 6 पर अखिलेश यादव के जिला अध्यक्षों से उन्होंने अपडेट लिया, नाम जोड़ने का डेटा और चुनावी तकनीकी ट्रेनिंग भी, उस पर भी चर्चा। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि बूथ स्तर पर समाजवादी पार्टी को लेकर जाना है और पीडीए की सरकार बनानी है। अखिलेश ने एआई से लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार बच्चों के खेल ना खेले, अगर एआई वाला खेल खेलोगे तो उसका जवाब हम देंगे। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, बोले कि यूपी कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 हो रहा है। अखिलेश ने बदायूं की घटना पर भी सवाल उठाया। अखिलेश यादव का यूपीएससीए पर तंज, बोले कि स्पेशल टास्क फोर्स ने स्वजातीय ये टॉर्चर फोर्स है, सिर्फ बदायूं में मुख्यमंत्री की बिरादरी के 10 सीओ हैं। एसपी नेता राम गोपाल यादव का योगी सरकार पर हमला, बोले कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं, हत्याएं और फर्जी एनकाउंटर के अलावा कुछ नहीं। बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह का अखिलेश पर हमला, बोले एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों की सरकार में आतंकियों को छोड़ा जाता था। 2 सितंबर को होगी राम मंदिर ट्रस्ट के अहम बैठक, सीईओ की नियुक्ति को लेकर स्थायी सुरक्षा समिति के गठन और कुल 12 मुद्दों पर चर्चा। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में 2 सत्रों में बैठक होगी, सीईओ नियुक्ति के लिए पैनल पर मंथन और सर्च कमेटी के सदस्य आज पहुंचेंगे अयोध्या। राम मंदिर के नाम पर चेन्नई की एक महिला ने 4 करोड़ का चेक तो दिया लेकिन खाते में 3 रुपए से भुगतान अटक गया, श्रद्धालु के खिलाफ बैंक भेजेगा नोटिस। लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस, यूपी चुनाव को लेकर पार्टी बनाए रहे रणनीति। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर 75 जिला अध्यक्षों से मायावती संगठन की रिपोर्ट ले रहे, प्रत्याशियों के चयन पर भी मंथन। यूपी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर एआईएमआईएम ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश के पीडीए फॉर्म मिले पर निशाना साधा। एआईएमआईएम नेता शादाब चौहान ने कहा कि अगर अखिलेश मुख्यमंत्री बनना चाहते तो उन्हें असदुद्दीन ओवैसी का साथ लेना होगा, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को भी घेरा। संभल में सरकारी चारागाह जमीन पर बनी मजार पर बुलडोजर एक्शन होगा, पुलिस ने गठित की राजस्व टीम। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में शुद्धिकरण मामले पर अब नया मोड़, श्रीराम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर करवाई गई। राहुल गांधी पर अनुसूचित वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप राहुल गांधी ने शुद्धिकरण यज्ञ का दलित विरोधी से बताया था। हल्द्वानी शुद्धिकरण मामले में कांग्रेस ने थाने में तहरीर दी, दोषियों पर कार्रवाई की मांग। शुद्धिकरण विवाद पर कांग्रेस का मौन सत्याग्रह, बारिश में भी डटे नेता कार्यकर्ता। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के अमेरिका में विविधता को लेकर दिए गए बयान पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का निशाना। ओवैसी ने भागवत के हिंदू मुस्लिम वाले एकता वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि संगठन की कुछ बातें दुनिया के लिए कुछ, आरएसएस सदस्यों के लिए कुछ और। मोहन भागवत के हिंदू मुस्लिम वाले बयान पर अखिलेश ने किया पलटवार, उन्होंने कहा कि विदेश में एकता की बातें और यहां देश को ही बांटें। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर तंज कसते हुए सुप्रिया सुले ने कहा कि जो लोग विदेश जाते हैं वो लोकतंत्र और सबके अधिकारों की बात करते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनावों के लिए मतदान, लगभग 16,500 छात्रों ने अपने मताधिकार का किया प्रयोग। पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव से को लेकर लॉ डिपार्टमेंट में छात्रों की नाराजगी भी हुई। नेपाल में बनने वालों का आंकड़ा बढ़ गया, अब तक 900 से ज्यादा लोगों की मौत और इस ताजने में 4,700 से ज्यादा लोग लापता।
भारत की 19 सदस्यीय फोरेंसिक टीम ने नेपाल बाढ़ पीड़ितों के डीएनए पहचान के लिए काठमांडू

0: में काम किया शुरू। रसुवा में भूटे कोशी नदी में नई तस्वीर आई सामने। भूटे कोशी नदी में एकाएक जबरदस्त उफान दिखा। नेपाल में बाढ़ में डूबी बैंक शाखा से 50 करोड़ का सोना बरामद, नकदी भी मिल गई। त्रिशूली टनल रेस्क्यू में लगातार देरी, ब्लास्टिंग के बाद भी नहीं बना कोई रास्ता। एमपी के सतना में लगातार हो रही बारिश के बाद हालत गंभीर, पानी में डूबा रेलवे ट्रैक, कर्मचारियों ने ट्रैक की जांच के लिए प्रयास भी किए। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में हो रहे भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं, जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। ऋषिकेश में दो वाहनों की जबरदस्त टक्कर, फंसे चार लोग, एसडीआरएफ ने अभियान चलाकर चारों लोगों को वाहन से निकाला बाहर। उत्तराखंड के बागेश्वर में पहाड़ दरक गया, 70 परिवारों पर खतरा मंडरा है। भारी बारिश के बावजूद उत्साह के साथ जारी केदारनाथ यात्रा, अभी तक 14,73,000 से ज्यादा भक्त कर चुके हैं दर्शन। हरिद्वार में तेज बारिश के बीच आकाशीय बिजली का कहर, हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। कांगड़ा घाटी में जोरदार बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त, पानी भरने के चलते स्थानीय लोगों के साथ साथ तीर्थयात्री भी फंस गए। 18,600 फीट पर पर्यटकों का साहस दिखा और पायलट्स का भी यहां पर, और नुनकुन की पहाड़ी पर सेना के हेलीकॉप्टर्स ने एक स्किड टिकाकर मरीज को बचा लिया। गैर जरूरी सामान हटाकर और कम ईंधन लेकर हेलीकॉप्टर का वजन कम किया गया, पायलटों ने सटीकता साहस के साथ बचाव कार्य को अंजाम दिया। चंदौली में बाढ़ में फंसे लोगों के लिए देवदूत बनी पुलिस, चंद्रप्रभा नदी में फंसे 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया। उत्तराखंड और हिमाचल समेत कई राज्यों में आज फिर से सक्रिय होगा मौसम, मौसम विभाग ने जारी किया है भारी बारिश का अलर्ट। वाराणसी में भारी बारिश, लोगों को गर्मी से राहत मिली। भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव, वाहन चालकों की परेशानी बढ़ी। भारी बारिश से कई घरों में भी घुसा पानी, गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ा। रायपुर में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया, लोग परेशान। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी में आई भीषण बाढ़ ने मचाई तबाही, रामघाट किनारे बने कई घर क्षतिग्रस्त, खतरे के निशान से ऊपर जलस्तर। चित्रकूट में मंदाकिनी का पानी यमुना में पहुंचा बैक फ्लो से, राजापुर के करीब 10 गांव का संपर्क टूट गया है। दमन में एक लाइफ गार्ड की सतर्कता और सूझबूझ से 7 साल की लड़की डूबने से बच गई, खेलते हुए लहर की चपेट में आ गई। हापुड़ में गंगा एक्सप्रेस वे पर हादसे में थार का सवार 4 लोग की मौत हो गई, इसमें गंभीर रूप से घायल भी। मुंबई पोर्ट पर जहाज पर 140 टन की क्रेन गिर गई, भीषण आग से भी हड़कंप मचा, 2 ऑपरेटर इसमें घायल। जामनगर में हाईवे पर ट्रिपल सड़क हादसा हुआ, कार बाइक रिक्शा की टक्कर, 3 लोगों की मौत, 5 बच्चे और 2 महिलाएं भी घायल। सूरत रेलवे स्टेशन पर पेटीज खाते समय चूहे का एक वीडियो वायरल, पुलिस प्रशासन ने तुरंत फूड स्टॉल को सील करवाया। ग्रेटर नोएडा के पास में यमुना एक्सप्रेस वे पर हादसा, ट्रक डिवाइडर तोड़कर दूसरी तरफ जा घुसा, कार पर ये गिर गया, 4 की मौत। गाजियाबाद में मामूली विवाद को लेकर हिंसक झड़प, हादसे में 50 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर मौत, कई घायल। सहारनपुर में गौकशी की कोशिश कर रहे बदमाशों को पुलिस के साथ मुठभेड़ इनकी हुई, पैर में गोली लगने के बाद आरोपी गिरफ्तार। बिजनौर में घायल महिला को थाना प्रभारी गोदी में उठाकर अस्पताल ले जाते देखे, लेकिन पीछे तो गाड़ी चल रही थी, वीडियो वायरल, सवाल भी उठे। बगहा में गंडक नदी के कटाव के चलते बचाव के लिए कटाव विरोधी कार्य की धीमी रफ्तार देकर विधायक नाराज हो गए, बोले 9 साल में भी काम पूरा नहीं किया। बगहा में चंपारण हमसफर एक्सप्रेस से धुआं निकलता देखा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, आग की आशंका के बीच यात्री डर गए थे। तमिलनाडु पुलिस ने मणिपुर से मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया, आरोपी के सूटकेस से महिला के शरीर के टुकड़े मिलने से सनसनी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली डैम का भंडाफोड़ हुआ, जंगल से भारी विस्फोटक बरामद हुए। दिल्ली में स्लीपर बस में 16 साल की लड़की के साथ गैंगरेप, आरोपी बस कंडक्टर गिरफ्तार। मैनपुर में ट्रैफिक सिपाही से मारपीट की घटना के बाद प्रशासन की कार्रवाई, आसपास के गए अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर अभियान। गोरखपुर में मां से नाराज होकर किशोरी ने पानी की टंकी से कूदने की कोशिश की, महिला दरोगा ने सूझबूझ के चलते जान बचा ली। औरैया में 9 साल की मासूम खेलते समय गहरे कुएं में जा गिरा, फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित निकाला बाहर। हैदराबाद के कुकटपल्ली के अस्पताल के पास में नर्स की हत्या कर दी गई, इलाके में हड़कंप, पुलिस कर रही जांच। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर, रंग बिरंगी लाइट से मंदिर को सजाया गया। भगवान कृष्ण की लीलाओं को लाइट के जरिए दर्शाया गया। 4 सितंबर को मनाया जाएगा जन्माष्टमी का पर्व। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 300 सीसीटीवी कैमरे से श्रद्धालुओं की निगरानी। श्रद्धालुओं के लिए मेडिकल सुविधाओं का खास इंतजाम। 8 एम्बुलेंस तैनात। 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर रहेंगी। राजकुमार संतोषी की नई फिल्म में सनी देओल की एंट्री। 1996 में रिलीज फिल्म घातक से जुड़े हुए किरदारों को की कहानी दिखाई जाएगी। मुसाफिर कैफे की सफलता के बाद विक्रांत मैसे की लकी लॉटरी। फिल्म कर्ण में आएंगे नजर। सलमान खान के साथ स्क्रीन करेंगे शेयर। बिलियनेयर सीरीज में विजय माल्या के रोल में नजर आएंगे अर्जुन रामपाल। नवंबर में शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। हनुमान अंश बनी 2026 की सरप्राइज ब्लॉकबस्टर। 2 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने अब तक 39 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। टॉक्सिक ने कमाई में करुप्पू को पछाड़ दिया है। जननायकम को भी पीछे छोड़ा। 6 दिन में पार किया 200 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा। अमेरिकी सेना ने ईरान के लार्क द्वीप में मौजूद 2 ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। जुलाई के आखिरी के बाद ईरान पर अमेरिका सेना का यह बड़ा हमला है। अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी एयरबेस किंग हुसैन और अल अजराक पर हमला किया। ईरान के तेहरान और मशहद समेत कई दूसरे शहरों पर पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन मनाया गया। हजारों लोगों ने अमेरिका इसराइल के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। इसराइली पीएम नेतन्याहू ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक के गांव कुसरा में फिलिस्तीनियों के घरों पर हुए हमलों की निंदा की, कहा कि वो बर्दाश्त नहीं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बताया कि कीव के गोदाम पर हमला हुआ। रूसी हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 38 हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक मैप किया पोस्ट, जिसमें लेक ओंटारियो के नाम से जाने जाने वाली झील को लेक अमेरिका के तौर पर दिखाया गया। ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला के साथ हाल ही में हुई डील से मिलने वाले तेल का इस्तेमाल स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को फिर से भरने के लिए किया जाएगा। अमेरिका के ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क में अचानक आई बाढ़ के बाद 20 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर। हांगकांग के एक इंडिपेंडेंट बुक स्टोर के बंद होने से पहले अपनी यादों को ताजा करने के लिए बड़ी तादाद में लोग यहां पहुंचे। साल के आखिरी सबसे बड़े टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन की शुरुआत। पूर्व चैंपियन मेदवेदेव आसानी से दूसरे दौर में पहुंच गए। और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको यूपी के कौशाम्बी से देते हैं, जहां पर मनौरी इलाके में एक पटाखा गोदाम में जोरदार धमाका हुआ है। हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। धमाके के बाद जबरदस्त तबाही दिख रही है वहां। इस वक्त की बड़ी खबर है और बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौके पर पहुंचा है। आसपास के लोग भी वहां पर देखने के लिए पहुंचे हैं। मलबे में दबे हुए कई लोगों को निकालकर अभी हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई, पटाखा गोदाम जिस पर धमाका हो गया और इतना जोरदार धमाका था कि 3 लोगों की तो मौत हो गई है, कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। अभी प्राथमिकता रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर जो घायल हैं उनको अस्पताल में पहुंचाना है। ये मनौरी इलाका है जहां पर ये पटाखा गोदाम था और वहां पर ये धमाका हुआ। किन परिस्थितियों में हुआ और तमाम दूसरे सवाल अभी बने हुए, लेकिन प्राथमिकता रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर इन लोगों को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाने का। विस्फोट के बाद आपको सिर्फ मलबे का ढेर वहां दिखाई देगा। ये एक पटाखा फैक्ट्री थी और वहां पर मनेरी इलाके में इस गोदाम में अचानक आग लग गई। हमारे संवाददाता समर्थ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। समर्थ, कैसे ये धमाका हुआ और अब तक क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, कितने लोग घायल हैं, कितनों की जान गई है?
1: देखिए, अभी तक कुल 3 मौतें बताई गई हैं और जिलाधिकारी अमित पाल शर्मा ने 3 मौतों की पुष्टि भी की है और पटाखा विस्फोट का पूरा मामला है। हालांकि अभी जांच की जाएगी कि कहां कहीं ये इलीगली तो नहीं बनाया जा रहा था। यूजुअली जितने केसेस पहले हुए हैं मैक्सिमम इलीगली ये लोग पटाखों का निर्माण करते हैं, वहां पर विस्फोट इस तरीके के होते हैं। जिलाधिकारी अमित पाल ने बताया है पूरी घटना को लेकर कि जैसे ही इसकी सूचना मिली है पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया है। प्रयागराज और कौशाम्बी दोनों ही जिलों की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड ने आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया है और मौके पर एम्बुलेंस और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अब तक निकाले गए लगभग 5 लोग हैं, उनमें से कुछ को गंभीर चोटें भी आई हैं, जिनका इलाज स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद कुछ लोगों को डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। लेकिन एक बात साफ है कि 3 मौतें तो इसमें हुई हैं, ये अभी तक सामने है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। फिलहाल घटना के कारणों की जांच की जा रही है। प्रशासन का पूरा फोकस रेस्क्यू ऑपरेशन तो फिलहाल है, जिससे कि जो भी लोग फंसे अगर है उन्हें समय रहते निकाला जा सके, उसके बाद ये जांच होगी कि आखिर ये इस तरह का विस्फोट क्यों हुआ है। जी
0: बहुत शुक्रिया समर्थ आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो कैसे संचालित हो रहा था, वैध था अवैध था, इसकी भी जांच चल रही है। अब बात करेंगे नेपाल में आई भीषण तबाही की। नेपाल में मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। नेपाल में हुई बाढ़ से तबाही में अब तक 903 लोगों की जान चली गई है और जो लापता लोग हैं उनकी भी तादाद लगातार बढ़ रही है। 4200 से ज्यादा ये लापता लोगों की संख्या अभी हो गई है और ये भी आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। जैसे जैसे जानकारी आ रहे हैं लोग संपर्क कर रहे हैं, अपनों को ढूंढ रहे हैं, तो लापता लोगों की संख्या भी इसी क्रम में बढ़ रही है। इस बीच लगातार लोगों की तलाश के लिए नेपाल की सेना रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से लगातार दुर्गम इलाकों में फंसे लोगों को निकालने की कोशिशें हो रही हैं। नेपाल में कुदरत के कहर के बीच में लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन तबाही इतनी बड़ी है कि यह ऑपरेशन इतना भी आसान नहीं है। गांव के गांव मलबे से पटे हैं, घरों के अंदर मलबा भरा है। इस बीच लोगों तक मदद पहुंचाने का प्रयास भी चल रहा है।

0: नेपाल में मची तबाही के 6 दिन बीत चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इस बीच कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसे देखकर ही मन में दहशत पैदा होती है। अब तक जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में पहले सड़कों से मलबा हटाने की कोशिश हुई, रास्तों को साफ करने का प्रयास हुआ। अब बचाव टीमें तमाम इलाकों में घरों के अंदर तक पहुंच रही हैं और यहां की तस्वीरें इस त्रासदी की भयावहता की गवाही दे रही हैं। ये तस्वीरें नेपाल के घर की हैं। घर के अंदर सिर्फ मलबा ही मलबा फैला है। पूरे घर में ही दलदल सा हाल हो रखा है। घर में कई जगहों पर अंधेरा है और इसी मुश्किल हालात में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
1: ये अंधेरी सीढ़ियों से निकलते हुए आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम उन घरों में, समझिए कि ऐसी जगहों पर जो ऑपरेशन है वो भी चलाना कितना मुश्किल है। सिविल पुलिस वॉलंटियर हैं, ये भी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने टॉर्च की रोशनी से हमें भी रास्ता दिया। इनका जो अभियान चल रहा है, हम इन इलाकों तक पहुंचे हैं और बहुत बड़ी त्रासदी है, तो बड़े पैमाने पर ऑपरेशन भी जरूरी हैं लापता लोगों की तलाश के लिए। और ऐसे में जो कि क्विक रिस्पॉन्स पूरा हो चुका है, तो जो ग्रामीण फोर्स हैं, जो नगर पालिकाएं हैं, उनकी कोशिश है, वो अपने गांव के लोगों को जानते हैं, घरों को जानते हैं, इलाके को पहचानते हैं, और ऐसे में ज्यादा संभावनाएं होती हैं कि यदि अधिकतर संख्या में लोगों को वो वहां से निकाल सके।
0: कुछ दिनों पहले तक यहां परिवार अपना खुशहाल जीवन बिताता होगा। दीवार पर भगवान के साथ साथ परिवार वालों की भी तस्वीर लगी है और दूसरी ओर घर में आपदा की मार की साफ झलक दिख रही है।
1: जैसे ही आपदा, इस घर में रहने वाला परिवार सबसे ऊपर की मंजिल पर भागा, इसलिए उनकी जो जिंदगी थी वो बच गई। खतरा उन्होंने टाल दिया, हालांकि खतरा प्रवाह का था। ये उस परिवार की तस्वीरें हैं, उन्होंने सोची कि अपनी यादें सहित करके रखी थी, लेकिन उन यादों के ठीक नीचे ऊपर जो है वो दलदल कीचड़ है, तबाही के निशान है, और अब घर की जरूरत की चीजें जो है वो यहाँ से निकाली जा रही है। सिविक डिफेंस जो वॉलंटियर्स हैं वो घर घर जा रहे हैं ये देखने की कहीं मलबों में शव बरामद हो जाए, जो लोग लापता हैं उनके बारे में पता चले।
0: सैलाब कितना ज्यादा है, लहरें कितना मलबा लेकर आई, उसे घर की दूसरी मंजिल का ये हाल देखकर ही समझा जा सकता है।
1: इन घरों से दरअसल छतों के रास्ते जो छोटे छोटे हिस्से हैं वहां से कोशिश की जा रही है लोगों निकालने के लिए, ताकि बचा हुआ जो सामान देखे। दूसरी मंजिल है छत की, और ये दूसरी मंजिल भी पूरी तरह से बाढ़ सैलाब के साथ आए, कीचड़ मलबे में पूरी तरह दबी हुई है। परिवार की तस्वीर मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, उन भगवान की तस्वीर है, परिवार की तस्वीर है, और अब घर और जिंदगी बचाने की जद्दोजहद, इसमें ये तमाम जो वॉलंटियर्स हैं ये काम कर रहे हैं यहाँ से, ताकि लोगों को बचा के उनका कम से कम जो जरूरत की चीजें हैं वो यहाँ से निकाली जा सके।
0: पूरी इमारत बर्बाद हो गई है, किसी तरह फंसे लोगों को घरों से निकालने की कोशिश हो रही है। सिर्फ एक नहीं, पूरे के पूरे गाँव का यही हाल है, जो बता रहा है कि नेपाल में आई तबाही का मंजर आखिर कितना बड़ा है।
1: एक सिविल डिफेंस वर्कर हैं, इनके साथ हम इस इमारत के सबसे ऊपर मंजिल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अंधेरा है, लाइट नहीं है, और लोग जहां तक पहुंच सकते हैं कोशिश कर रहे हैं कि मदद की जा सके। देखिए इमारत में बहुत ही डरावना, और ये देखिए सोचा सारा का सारा मलबा है, सीढ़ियां जो है वो मलबे से ढकी है। ये हम आ गए हैं इमारत की दूसरी मंजिल पर, और पूरी तरह दलदल दल है ये, और सोचिए कि दूसरी मंजिल दलदल में दब गई है। हालांकि तीसरी मंजिल साफ सुरक्षित है, लेकिन दूसरी मंजिल जो है ये आप देख रहे हैं पूरी तरह दबी हुई है। अब जो लोग हैं बचा कुचा सामान निकालने की मदद कर रहे हैं, जिसका घर है उसके मालिक बचे हुए हैं, और अब यहाँ एक अभियान चलाया जा रहा है।
0: नेपाल में रेस्क्यू टीमें लगातार इसी कोशिश में लगी है कि मलबे के बीच से जिंदगी की तलाश की जाए, किसी तरह त्रासदी की मार झेल रहे लोगों तक राहत पहुंचाई जाए। लेकिन इन तस्वीरों से साफ है कि आखिर चुनौती कितनी बड़ी है, कैसे कुदरत की मार नेपाल में हजारों लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ी है। आशुतोष मिश्रा, नेपाल आज तक।
2: और अब रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहे आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, पहले प्रधानमंत्री हमारे नेहरू जी बने। उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे पहले प्रधानमंत्री बनते तो भारत की क्या दिशा और दशा होती?
3: ये तुमने सवाल क्वेश्चन किया, ये संसद में होता तो बड़ा मजा आता। हर तरीके एक पार्टी बोलती कि कश्मीर हमारा होता, अफगानिस्तान तक हम कब्जा कर लेते, पब्लिक बाहर सुन के ताली वाली ही बजाती।
4: नोवा कोटा से ऊपर मैं त्रिशूली में आया हूँ, देख लीजिए सैलाब का ये सितम।
5: ये वही त्रिशूली नदी है जिसमें पानी मलबे के साथ पूरे आवेग के साथ आया।
4: पीछे जो आपको इमारतें दिख रही है ना, वो सारी बिल्कुल खंडहर हो चुकी है।
5: जो निचले इलाके हैं उन सबसे ऊंचाई की तरफ लोगों को जाने के लिए कहा गया है।
6: चितवन में आज तक की टीम मौजूद है और आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं।
4: मैं आशुतोष मिश्रा,
6: रोहित सिंह,
5: श्वेता सिंह, नेपाल आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।

0: in association with Vimal Bolo Zubaan Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: ईरान अमेरिका जंग के बीच राष्ट्रपति पेजेश्किन से मिले पीएम मोदी। एससीओ समिट में ऊर्जा संकट पर चर्चा, पुतिन से भी होगी मुलाकात। शुद्धिकरण विवाद में आमने सामने कांग्रेस बीजेपी। राहुल गांधी पर एफआईआर के बाद सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। एससी एसटी एक्ट में दर्ज हुआ है केस। अंकित बालियान हत्याकांड में 100 घंटे के अंदर यूपी एसटीएफ का बड़ा एक्शन। एनकाउंटर में गोगी गैंग के दो शूटर ढेर। पिता को योगी सरकार पर भरोसा। यूपी में कल से चुनावी शंखनाद। अखिलेश शुरू करेंगे प्रचार। एसटीएफ को बताया स्वजातीय टॉर्चर फोर्स। बीजेपी की वर्कशॉप में जुटे कार्यकर्ता, तो मायावती ने भी बुलाई समीक्षा बैठक। नेपाल महात्रासदी से सहमी दुनिया। मलबे में जिंदगी की तलाश के बीच मौत का आंकड़ा 900 के पार। 8200 से ज्यादा लोग अब भी लापता।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस। इन एसोसिएशन विद भारत।
0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किर्गिस्तान दौरे की, जहां बिश्केक में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन से उन्होंने मुलाकात की है। पश्चिम एशिया में जंग शुरू होने के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात है। दोनों नेताओं ने बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। मोदी एससीओ सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान पहुंचे हैं। पेजेश्किन भी समिट में हिस्सा लेने के लिए बिश्केक में मौजूद हैं। पीएम मोदी बिश्केक में आयोजित एससीओ समिट में भाग लेने हैं, जो 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में है। तो मुलाकात की ये तस्वीरें, दरअसल जिस तरीके से भारत और मध्य एशिया के तमाम देशों से मुलाकात के बीच अलग अलग समझौते हो रहे हैं, उस सब के बीच ये मुलाकात भी बेहद अहम। लेकिन इसके साथ ही व्लादिमीर पुतिन से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने वाली है। भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन से पहले एससीओ समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये महत्वपूर्ण एंगेजमेंट्स की तस्वीरें। ईरानी राष्ट्रपति से जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो रही है, कमोवेश ये वही समय है जब एक बार फिर ईरान अमेरिका के बीच जो संघर्ष है वो तेजी पकड़ चुका है। खर्ग आइलैंड पे हमले की एआई तस्वीर जारी करते हैं ट्रंप, तो ईरान भी पलटवार की बात करता है और जॉर्डन में यूएस बेस पर हमला करता है। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। प्रणय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पेजेश्किन की मुलाकात, क्या अहम बिंदु रहे?

0: किस तरीके से समाधान की निकाला जा सकता है, किस तरीके की कोशिशें हो रही हैं। निश्चित रूप से उस प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भारत का रुख और रवैया दोहराया गया कि भारत चाहता है कि डिप्लोमेसी और बातचीत के जरिए ही इस तरीके की समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है, उसकी कोशिशें की जानी चाहिए। साथ ही जो पश्चिम एशिया के संकट के चलते एनर्जी सप्लाई डिसरप्शन हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिस तरीके से बाधित है और खासतौर पर जिस तरीके के संकट का सामना भारत को करना पड़ रहा है, चाहे वो ऊर्जा सप्लाई से जुड़े हुए मुद्दे हों श्वेता, या फिर वो भारतीय जो नाविक हैं जिनकी जान संकट में आई है इस पूरे संकट के इस संघर्ष के दौरान, उसका मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से उठाए गए। लेकिन साथ ही रीजनल कनेक्टिविटी का मुद्दा भी था, चूंकि भारत ने चाबहार की परियोजना के लिए करीब 120 बिलियन डॉलर जो है वो ईरान को दिए हैं, भारत के निश्चित रूप से हित हैं उस पूरे इलाके से जुड़े हुए, और भारत की कोशिश है कि जो रीजनल कनेक्टिविटी की कोशिश है चाहे ब्रिक्स हो चाहे SCO में हो रही है, उसका बहुत सारे सिरे चाबहार के पोर्ट से जुड़ते हैं, चाहे वो INSTC की परियोजना हो या वाइडर रीजनल कनेक्टिविटी के मुद्दे हों। इसलिए उन सारे विषयों के ऊपर भी प्रधानमंत्री की तरफ से जो है ईरानी राष्ट्रपति के साथ जब चर्चा हुई तो उसमें भी बात हुई। लेकिन एक और मुद्दा था जो था भारतीयों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ, चाहे वो ईरान में मौजूद हों या ईरान से सुरक्षित निकासी में जो ईरान की सरकार की तरफ से मदद दी गई उसको लेकर भी एक तरीके से धन्यवाद भारत की तरफ से ईरान की सरकार का दिया गया।
1: बहुत शुक्रिया प्रणय उपाध्याय, हमारे सहयोगी इस बारे में जानकारी दे रहे थे। और अब हम बात हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान मर्डर केस की करते हैं। उत्तर प्रदेश के शामली में हुए अंकित बालियान मर्डर केस के दो शूटरों को STF ने मुठभेड़ में मार गिराया है। इस हत्याकांड में गौर करने वाली और चिंता करने वाली बात यह है कि जिन दो आरोपियों को मुठभेड़ में मारा गया उनमें से एक की उम्र 24 साल दूसरे की उम्र 22 साल है। हालांकि यूपी पुलिस की मुश्किल यह है कि अभी भी दो हत्यारे फरार हैं और इसीलिए अंकित बालियान के पिता का कहना है कि अभी आधा इंसाफ हुआ है।
2: सिंगर मर्डर केस में एक्शन, दो शूटरों का सीधे एनकाउंटर,
3: जानलेवा फायरिंग के पश्चात अब सब फायरिंग के इनके ऊपर।
2: 26 अगस्त को बालियान की हत्या, 100 घंटे के भीतर आरोपी ढेर।
3: दो बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए, इनको CSC भेजा गया जहां इनकी मौत हो गई।
2: शामली में योगी मॉडल, जैसे को तैसा वाला जवाब।
4: माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से कहना चाहती हूँ कि क्या योगी जी, अंकित जी आपका बच्चा नहीं था? क्या हम आपके बच्चे नहीं है? हमने भी तो आपको वोट दे गए, आपको जन प्रतिभागी बनाया है ना, अपना वोट दिया है ना, तो आप हमारे लिए आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? आप तो माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं ना, तो फिर इस केस पे इतना लेट कार्रवाई क्यों हो रही है?
2: सुनिए यूपी के CM योगी आदित्यनाथ के नाम ये अपील। 26 अगस्त को शामली में हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बालियान की हत्या होती है। चार दिन तक जब कोई एक्शन नहीं होता है तो बालियान की पत्नी सीमा CM योगी से हत्यारों को मिट्टी में मिला देने की अपील करती है और एक दिन बाद हत्या के दो आरोपियों का हिसाब किताब हो जाता है। कैराना में पुलिस और STF के आरोपियों से मुठभेड़ होती है। हत्या के दो आरोपियों को पुलिस की टीम घेर लेती है। एनकाउंटर में दोनों आरोपियों को मार गिराया जाता है
5: और ये दो शूटर्स मारे गए हैं, सुमित और मोहित, और इनके पास से भारी मात्रा में आग्नेयास्त्र बरामद हुए हैं। इन्होंने पुलिस पर भारी फायरिंग भी की है जिससे दो कांस्टेबल्स भी हमारे घायल हुए हैं। अभी इस घटना में और भी लोग शामिल हैं जिनके बारे में तफ्तीश जारी है, और खास करके जो शूटर्स हैं और जो इस गैंग के लीडर्स हैं जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को प्लान किया है या अंजाम दिलाया है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।
2: बीते 5 दिनों से यूपी पुलिस की इस केस में बड़ी किरकिरी हो रही थी। अंकित बालियान इस इलाके का जाना पहचाना चेहरा था। हरियाणवी सिंगर के तौर पर बालियान की काफी लोकप्रियता थी। बालियान की 26 अगस्त को शामली में जिम से बाहर निकलते हुए हत्या कर दी गई थी। परिवार इस हत्याकांड को लेकर एक्शन की लगातार मांग कर रहा था। अब एनकाउंटर पर बालियान के पिता कह रहे हैं अभी तो आधा इंसाफ हुआ है।
3: यही कहना है कि हमें आधा इंसाफ मिल गया, आधा और मिलना चाहिए।
6: तो ये आधा कब तक का उम्मीद करोगे पुलिस कर देगी?
3: कर देगी, अब तो उम्मीद है
6: अब तो कर देगी।
2: अंकित बालियान की हत्या के दो आरोपी का एनकाउंटर हो चुका है। 22 साल का मोहित ओक, 24 साल का सुमित मुठभेड़ में मारा जा चुका है। इतनी छोटी सी उम्र में दोनों पर कई केस दर्ज हो चुके थे। 22 साल के मोहित पर 14 केस दर्ज थे और वो जेल भी जा चुका था। अपराध के जिस रास्ते पर दोनों आगे निकल चुके थे उसका यही अंजाम होना था। शामली से शरद मलिक के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
1: सिंगर अंकित बालियान का मर्डर पूरी प्लानिंग के साथ किया गया। कई दिनों तक शूटरों ने अंकित बालियान की मूवमेंट्स की, कहां आते जाते हैं सबकी रेकी की, हर गतिविधि पर नजर रखी और फिर गोगी गैंग के इशारे पर इस वारदात को अंजाम दिया।

0: ਸੱਟ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੱਖਾਂ ਚ ਚਿੱਕੇ ਪੀਵਾਂਗੇ ਪਸੀਨੇ ਦੇ
1: ਕੀ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸਿੰਗਰ ਅੰਕਿਤ ਬਾਲਿਆਨ ਕੀ ਮੌਤ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕੀ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਅੰਕਿਤ ਬਾਲਿਆਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿਆ ਇਸੀ ਗਾਣੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਅੰਕਿਤ ਬਾਲਿਆਨ ਕੀ ਸਰਿਆਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀ ਗਈ
0: ਭਰੀ ਕੋਰਟ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੱਖਾਂ ਚ ਚਿੱਕੇ ਪੀਵਾਂਗੇ ਪਸੀਨੇ ਦੇ
1: ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕਿਤ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਮੇਂ ਦੋ ਸ਼ੂਟਰੋਂ ਕੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਅਬ ਕਈ ਚੌਕਾਨੇ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਕਾ ਖੁਲਾਸਾ ਖੁਦ ਡੀਜੀਪੀ ਰਾਜੀਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੇਂ ਕੀਆ ਹੈ
2: ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਪ੍ਰਿਸ਼ਠਭੂਮੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਵਰਸ਼ 2021 ਮੇਂ ਰੋਹਿਣੀ ਕੋਟ ਦਿੱਲੀ ਮੇਂ ਜਿਤੇਂਦਰ ਮਾਨ ਉਰਫ ਗੋਗੀ ਕੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਗੋਗੀ ਔਰ ਟਿੱਲੂ ਰਾਜਪੁਰੀਆ ਕੇ ਗੈਂਗੋਂ ਕੇ ਬੀਚ ਮੇਂ ਚਲੀ ਗੈਂਗਵਾਰ ਕੀ ਕੜੀਆਂ ਇਸ ਵਿਵੇਚਨਾ ਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਅੰਕਿਤ ਬਾਲਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਅਭਿਨੀਤ ਮਤਲਬ ਉਨਕੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮੇਂ ਸਿਰਫ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਜੋ ਯੂਟਿਊਬ ਪਰ ਕਾਫੀ ਪਾਪੂਲਰ ਹੁਆ ਉਸਕੋ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਸੇ ਗੋਗੀ ਕੀ ਹੱਤਿਆ ਕੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੇ ਜੋੜਕਰ ਦੇਖਾ ਗਿਆ ਜੋ ਇਹ ਗੈਂਗ ਥੰਮ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਨਕੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮੇਂ ਪੂਰਵ ਮੇਂ ਵੀ ਉਸਕੋ ਧਮਕੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗਈ
1: 26 ਅਗਸਤ ਕੀ ਸ਼ਾਮ ਜਬ ਸ਼ਾਮਲੀ ਮੇਂ ਹਰਿਆਣਵੀ ਸਿੰਗਰ ਅੰਕਿਤ ਬਾਲਿਆਨ ਕੀ ਜਿਮ ਸੇ ਨਿਕਲਤੇ ਸਮੇਂ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਸਾ ਕਰ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦੀ ਗਈ ਥੀ ਤੋ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੀ ਕੋ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿਆ ਘਟਨਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਲ ਕੇ ਆਸ ਪਾਸ ਲਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੋ ਕੀ ਫੁਟੇਜ ਕੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕੀ ਤੋ ਇਸ ਕੇਸ ਕੀ ਕੜੀਆਂ ਗੋਗੀ ਗੈਂਗ ਸੇ ਜੁੜਨੇ ਲਗੀ ਪਤਾ ਚਲਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਕੋ ਗੋਗੀ ਗੈਂਗ ਕੇ ਸ਼ੂਟਰੋ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿਆ ਹੈ
2: ਵਿਵੇਚਨਾ ਮੇਂ ਇਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਗੋਗੀ ਗੈਂਗ ਸੇ ਜੁੜੇ ਨੈਟਵਰਕ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ 26-27 ਅਗਸਤ ਕੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਉਰਫ ਭੋਲੂ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀਆ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸਸੇ ਜੁੜੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਸੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਲੀ ਗਈ ਥੀ ਔਰ ਇਸਕੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਵਿਵੇਚਨਾ ਕਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸਕੀ ਜਾਂਚ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
1: ਜਾਂਚ ਮੇਂ ਪਤਾ ਚਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੂਟਰ ਕਈ ਦਿਨੋਂ ਸੇ ਅੰਕਿਤ ਬਾਲਿਆਨ ਕੇ ਮਰਡਰ ਕਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਥੇ ਕਈ ਦਿਨੋਂ ਸੇ ਰੇਕੀ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਥੀ ਜਿਸ ਸ਼ੂਟਰ ਮੋਹਿਤ ਔਰ ਸੁਮਿਤ ਕੋ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮੇਂ ਮਾਰ ਗਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ ਦੋਨੋਂ ਨੇ 20-21 ਅਗਸਤ ਕੋ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀ ਰੇਕੀ ਭੀ ਕੀ ਥੀ ये तस्वीरें शामली के सूर्या होटल की हैं, जहां मोहित और सुमित 20 अगस्त को आकर रुके थे और फिर मोहित और सुमित ने अंकित के सारे मोमेंट की रेकी की।
2: सीसीटीवी, डिजिटल गतिविधियां, आरोपियों के मूवमेंट, ठहरने के स्थान, भुगतान, आपसी संपर्क, इन सब के आधार पर सारे साक्ष्य एकत्रित किए गए। विवेचना में सामने आया कि हत्या से पहले आरोपियों द्वारा अंकित बालियान की गतिविधियों की रेकी भी की गई थी और जिम के आने जाने की गतिविधियों पर भी नजर रखी गई थी। जांच में यह भी सामने आया कि शूटर्स को कहीं बाहर से हथियार भी उपलब्ध कराए गए थे और हत्या के दिन 4 हमलावरों ने योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को अंजाम दिया।
1: 26 अगस्त को अंकित की हत्या के बाद से आरोपी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे थे, लेकिन पुलिस की कई टीमों ने छापेमारी कर आखिरकार 2 शूटरों को ढेर कर दिया।
2: घटना के बाद अपराधी पुलिस से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदलते रहे। घटना के बाद जो घटित टीमें थीं, उन्होंने कई प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश में भी और कई प्रदेशों में छापेमारी की, जिसमें हरियाणा में, हिमाचल में, गुजरात में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई विभिन्न स्थानों पर दबिश दी और आरोपियों की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए रखी। इसी क्रम में 29 अगस्त को ह्यूमन और टेक्निकल इंटेलिजेंस के बेसिस पर घटना में शामिल अभियुक्तों की पहचान की गई और इसमें से 2 अभियुक्त मोहित और सुमित आज की पुलिस कार्रवाई में मारे गए हैं।
1: मर्डर केस में 2 शूटर अब भी फरार हैं। पुलिस अब इन दोनों की तलाश में लगी है, साथ ही इस मर्डर केस की पूरी साजिश का पर्दाफाश कर रही है। लखनऊ से संतोष शर्मा के साथ अरविंद ओझा, आज तक।
3: इस बीच अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बड़ा हमला किया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एसटीएफ को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री की एसटीएफ का मतलब स्वजातीय टॉर्चर फोर्स है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि पीडीएस समाज का लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है।
4: मुख्यमंत्री जी की एसटीएफ स्वजाति टॉर्चर फोर्स, स्वजाति टॉर्चर फोर्स और लगातार पीडीए का उत्पीड़न हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमने आपने सुना, दो दिन ही हुए हैं कि बदायूं में एक दलित नौजवान की थाने में हत्या हो गई, जान चली गई उसकी। बदायूं में 22 थाने हैं, 22 थाने, स्वजाति मुख्यमंत्री के 10 लोग हैं वहां पर, पीडीए के 10 हैं लोग।
3: यानी अंकित बालियान हत्याकांड में दो शूटरों के एनकाउंटर के बाद भी सियासत थमी नहीं है। फर्जी एनकाउंटर के आरोपों पर अंकित के पिता ने खुद जवाब दिया है। अंकित के पिता सतबीर सिंह ने कहा कि मेरे मामले में बयानबाजी न करें, अंकित मर्डर में सही एनकाउंटर हुआ।
5: जो फर्जी बोल रहा हो गलत बोल रहा,
6: वो सवाल उठा रहे थे कि एनकाउंटर करना चाहिए, अब एनकाउंटर का फिर किस सवाल, ये जो कहा है उन्होंने कि ये फर्जी, इसके पीछे आप क्या समझते हैं
5: भाई? वो तो राजनीतिक पार्टी है, वे तो पता नहीं क्या कहेगी क्या नहीं, लेकिन जब मैं खुद देख आया उनको दोनों को जिन्होंने पीछे से गोली मारी थी, तो मैं फर्जी कैसे कहूंगा?
6: क्या एनकाउंटर में जो मारे गए हैं सुमित और मोहित वही शार्प शूटर हैं?
5: हाँ वही थे, पीछे से जो गोली मारी थी उन्होंने ही मारी थी, सामने वाले दो रह रहे।
6: समाजवादी पार्टी का बयान गलत है?
5: हाँ गलत है।
6: अभी दो और बाकी है।
5: ऐसे बयान नेताओं को मेरे प्रतिपक्ष देने भी नहीं चाहिए, क्यों? मेरा खुद का मामला है, मेरा कोई पार्टी से कोई किसी से कोई मतलब नहीं है।
3: अब खबर दिल्ली में नाबालिग छात्रा से हुए गैंग रेप की। दिल्ली में स्लीपर बस में 16 साल की छात्रा से गैंग रेप की वारदात सामने आई है। इस केस में पुलिस ने आरोपी ड्राइवर और बस कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया है।
7: एक बार फिर दिल्ली शर्मसार हुई, एक बार फिर चलती बस में नाबालिग दरिंदगी का शिकार हुई। करीब 47 किलोमीटर तक बस दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर दौड़ती रही और ड्राइवर और कंडक्टर नाबालिग से वहशत को अंजाम देते रहे। वारदात 4 अगस्त की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक छात्रा अपने परिवार वालों से नाराज होकर घर से निकली थी और चचेरे भाई के घर जा रही थी जो नोएडा में रहता है। भारी बारिश और अंधेरे की वजह से छात्रा गलती से परी चौक पर उतर गई। इसी दौरान एक खाली स्लीपर बस वहां से गुजरी, छात्रा को नोएडा सेक्टर 62 छोड़ने का भरोसा दिया और फिर ड्राइवर और कंडक्टर ने छात्रा से गैंग रेप किया। वारदात के बाद आरोपी छात्रा को कश्मीरी गेट बस अड्डे के पास रिंग रोड पर उतार कर वहां से फरार हो गए। फिर छात्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपियों की धरपकड़ की कोशिश शुरू हुई।
8: दिल्ली में एक बार फिर से एक ऐसा मामला सामने आया है जो फिर से पूरी दिल्ली एनसीआर को शमसार कर देगा। दरअसल ये मामला चलती बस में एक गैंग रेप का है। 16 वर्षीय मैनपुरी की रहने वाली 11वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की घर से लड़कर घर से बाहर निकलती है, बस पकड़ के अपने भाई के घर मैनपुरी से नोएडा आना चाहती है, लेकिन उस रात बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से उसे पता नहीं लगा और परी चौक के पास वो बस से उतर जाती है, जिसके बाद वो हाथ देकर एक स्लीपर बस को रोकती है। बस रुकती है और उसे कहती है कि वो सेक्टर 63 तक उसे छोड़ देंगे। बस पे चढ़ने के कुछ देर बाद ही जो बस का कंडक्टर है उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, उसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट करने लगता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने कुछ किया तो उसे जान से मार देंगे। इसके बाद करीब 47 किलोमीटर तक जो वो बस है दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर चलती है। नोएडा में इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद लड़की को कश्मीरी गेट के पास लाकर उतार दिया जाता है और फिर वो लड़की पीड़िता खुद पुलिस के पास पहुंचती है। और यहां आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन है, इसी पुलिस स्टेशन में आकर वो कंप्लेन देती है।
7: दिल्ली पुलिस ने गैंगरेप की वारदात के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। स्लीपर बस को जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। लेकिन इस एक्शन के बीच दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेकर फिर सवाल खड़ा हो गया है। दिल्ली से अंशुल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
3: उधर अखिलेश यादव ने 75 जिलाध्यक्षों से भी चुनावी तैयारियों पर बात की, खासकर फॉर्म 6 को लेकर अखिलेश ने सभी जिलाध्यक्षों से अपडेट लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी का कल से प्रचार अभियान शुरू हो जाएगा और इसकी तैयारी तेज कर दी गई है, दायरा भी काफी व्यापक होगा, ये दावा उन्होंने किया है। साथ ही अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि SIR के बाद अब SAR की साजिश की बात सुनने को। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले एक बार फिर मतदाता सूची का रिविजन कराया जा सकता है, ये आशंका उन्होंने जाहिर की। अखिलेश ने आरोप लगाया कि इसके जरिए वोटों को एडजस्ट करने की कोशिश की जा सकती है।
4: अब सुनने में आया कि एक बड़ी साजिश हो रही है, बड़ा षड्यंत्र होने जा रहा है यूपी में कि चुनाव से पहले एक एनुअल रिवीजन करेंगे ये लोग SAR, जिससे कि ये अपने लोगों के वोटों को एडजस्ट करेंगे। सुनने में आ रहा है कि बड़े पैमाने पर बिहार से लोग, झारखंड से लोग, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उनके ये लोग वोट बनाएंगे और अपने बूथों पर वोट बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए हमारे संगठन, हमारे जो बूथ स्तर पर ऐप के माध्यम से काम कर रहे हैं, उन सब का हमने सहयोग मांगा है और सबकी जिम्मेदारी से काम करेंगे और वोटर लिस्ट को न केवल ठीक कराएंगे बल्कि बूथ स्तर पर वोट डालने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि अब चुनाव में कोई समय नहीं बचा है। कल से हमारी पार्टी का प्रचार एक तरह से शुरू।
3: बहराइच में योगी आदित्यनाथ एक सभा को संबोधित कर रहे हैं, सुनिए।
9: किया था, आश्चर्य होता है कि दशकों तक आजादी के बाद भी महाराज सुहेलदेव को विस्मृत किया गया और जो आक्रांता बाहर से आकर के भारत को अपमानित करना चाहता था उस सालार मसूद के नाम पर यहां उर्स और मेले लगवा करके भारत को अपमानित करने का काम किया जाता था। आज विदेशी आक्रांता के नाम पर कोई आयोजन नहीं, लेकिन महाराज सुहेलदेव की विजय गाथा को कहता हुआ बहराइच के अंदर महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक आज बनकर के तैयार हो चुका है। और
3: अभी के लिए इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
12: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
13: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
14: सोच बदलो और बैंक भी।
15: संविधान के आधार में तो कभी ये नहीं लिखा कि भाई आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया जाएगा। बता दीजिए कहाँ कहा गया है कि आर्थिक आधार पे। तो जब आधार ही आर्थिक नहीं है तो इस पे चर्चा कहाँ से, जब आधार ही सामाजिक और समाज में भी छुआछूत का। मैं बड़े वर्ग के आरक्षण की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाले लोगों को आरक्षण देने की, जिनके बारे में कहा जाता है कि क्रीमी लेयर क्यों नहीं, तो ये छोड़ दें आरक्षण का लाभ लेना, छोड़ दें वो आरक्षण का लाभ लेना, छोड़ दें। जब इसमें सब क्लासिफिकेशन की बात की जाती है तो जो लोग कह रहे हैं, जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, तो आइए फिर बैठ के हम लोग चर्चा कर लें सदन में। माझी जी को अगर लगता है कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए तो क्या माझी जी पहले इस्तीफा दे दें, ले आए क्रीमी लेयर का कंसेप्ट ना भाई, फिर उसमें तो आप भी आते हैं ना, आप भी इस्तीफा दे दें, उनके सुपुत्र भी यहाँ पे हैं, फिर वो भी इस्तीफा दे दें।
16: वो नहीं समझ रहे हैं कि संतोष क्या कह रहे हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं कि वैसे वैसे लोग को आरक्षण के लाभ से वंचित हो जाना पड़ेगा, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि लार्जर इंटरेस्ट में और लार्जर लोगों के हित में बंटवारा बहुत जरूरी है। संतोष कुमार ने कहा, कोई नई बात नहीं कहा है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर का एक सिद्धांत है जिसके तहत उसने कहा है और उसको लेकर के चल रहा है। इसमें चाहे जो भी होगा हम लोग सब इसके लिए लड़ेंगे करेंगे, और क्योंकि हमारे गरीब लोगों को वो देखना नहीं चाहते हैं इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
2: सो सॉरी।

0: मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम के बाद शुद्धिकरण के आयोजन को लेकर संसद तक शोर मचा रहा। खड़गे ने आरोप लगाए तो सरकार को सफाई तक देनी पड़ी। उस मामले को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। उन्होंने 8 अगस्त को किए गए शुद्धिकरण की तुलना छुआछूत से कर दी। 29 अगस्त को दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने शुद्धिकरण का आरोप लगाते हुए ऐसा करने वालों पर FIR दर्ज किए जाने की मांग भी की थी। राहुल के उसी बयान पर कानूनी शिकंजा कसा है। उत्तराखंड पुलिस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। 8 अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में खड़गे की रैली हुई थी। उसके बाद कथित शुद्धिकरण का आयोजन हुआ। दलित युवक अमित कुमार ने जो FIR दर्ज कराई है उसमें आयोजन को सफाई और धार्मिक अनुष्ठान बताया गया है। साथ ही राहुल पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने गलत और अधूरे तथ्यों के आधार पर अनुसूचित जाति के खिलाफ जाति सूचक और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। कांग्रेस ने इस शुद्धिकरण को खड़गे का अपमान बताया था, दलित का अपमान बताया था। इसलिए कल संसद से सड़क तक कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया और अब FIR पर कांग्रेस सवाल उठा रही है।
1: रामलीला मैदान में खड़गे जी ने भाषण दिया, उसका शुद्धिकरण किया गया और अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे राहुल गांधी को FIR करके धमकाना चाहती है भाजपा। FIR करके देख लीजिए, बहुत FIR हुई है पूरे देश के अलग अलग राज्यों में। राहुल गांधी जी के खिलाफ FIR हुई है, यहां भी करके देख लीजिए। लेकिन उत्तराखंड में जो अपराध भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में भाजपा के समर्थकों ने किया है उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
0: FIR दर्ज होने के बाद उत्तराखंड से दिल्ली तक सियासत तेज है। अब बीजेपी कांग्रेस पर इस मामले को गलत तरीके से तूल देकर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। खड़गे के कार्यक्रम के बाद शुद्धिकरण, उस पर तेज सियासत और अब राहुल गांधी पर FIR ने इस विवाद को और बढ़ा दिया है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।

ईरान अमेरिका जंग के बीच राष्ट्रपति पेजेशकियान से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एससीओ समिट में ऊर्जा संकट पर चर्चा, राष्ट्रपति पुतिन से भी होगी मुलाकात। शुद्धिकरण विवाद में आमने सामने कांग्रेस और बीजेपी। राहुल गांधी पर एफआईआर के बाद सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। एससी एसटी एक्ट में दर्ज हुआ है केस।

बैंक के दो शूटर ढेर, पिता को योगी सरकार पर भरोसा। उत्तर प्रदेश में कल से चुनावी शंखनाद, अखिलेश यादव शुरू करेंगे प्रचार। एसटीएफ को बताया स्वजातीय टॉर्चर फोर्स, बीजेपी की वर्कशॉप में जुटे कार्यकर्ता, तो मायावती ने भी बुलाई समीक्षा बैठक। नेपाल महात्रासदी से सहमी दुनिया, मलबे में जिंदगी की तलाश के बीच मौत का आंकड़ा 900 के पार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोको।
2: न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की धमक एसईओ में एकजुट हुए दिग्गज ट्रंप की नाकेबंदी फेल अमेरिका को झटका आतंक के अड्डे पाकिस्तान का मंच पर बहिष्कार
3: नमस्कार मैं हूं गौरव सावंत आप देख रहे हैं रणभूमि कूटनीति की रणभूमि इस समय किर्गिस्तान में है बिश्केक में आयोजित SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन में एक नए उभरते विश्व की तस्वीर यानी एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की धमक अब साफ दिखाई दे रही है और यह धमक तब और महत्वपूर्ण हो जाती है जब कल ही रात अमेरिका और ईरान के बीच फिर से जबरदस्त ताबड़तोड़ हमले हुए इसी वैश्विक गर्मा गर्मी के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिज़िश्कियान बिश्केक पहुंचे और अब से थोड़ी देर पहले उनकी मुलाकात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और यह बेहद महत्वपूर्ण बैठक है खासतौर पर रणनीति की दृष्टि से इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पिज़िश्कियान और किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादिर ज़ापारोव से भी मुलाकात कर चुके हैं लेकिन अब सबकी नजरें टिकी हैं आज की सबसे

0: नजरें टिकी हैं आज की सबसे बड़ी महामुलाकात पर। अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 50 मिनट की बहुप्रतीक्षित द्विपक्षीय बैठक शुरू होने जा रही है। दरअसल अमेरिका की पाबंदियों के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय बैठक में कच्चे तेल की निर्बाध सप्लाई, उर्वरक, द्विपक्षीय व्यापार और आपसी पेमेंट सिस्टम को और सुदृढ़ और सुरक्षित बनाने के व्यवहारिक उपायों पर भारत और रूस एक साझा रणनीति पर काम करेंगे। रक्षा की अगर बात करें तो रक्षा के क्षेत्र में बेहद महत्वपूर्ण है यह बैठक, क्योंकि न केवल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो बकाया डिलीवरी है, मिसाइल स्टॉक और उसके अलावा भारत में मेंटेनेंस हब, स्पेयर पार्ट्स का स्वदेशीकरण की समीक्षा की जाएगी, बल्कि चर्चा तो S-500 की भी इस समय हो रही है। दरअसल बीते एक वर्ष में दोनों वैश्विक महानायक यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यह तीसरी आमने सामने की मुलाकात है। इससे पहले आपको याद होगा सितंबर 2025 में चीन के त्यानजिन शहर में और फिर दिसंबर 2025 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में वार्षिक शिखर सम्मेलन में दोनों दिग्गज मिल चुके हैं, पहले पिछले वर्ष के एससीओ में और फिर एनुअल बायलैटरल समिट में। लेकिन बिश्केक में ये जो तीसरी मुलाकात है ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस वक्त जो दुनिया में अलग अलग चीजें चल रही हैं, अमेरिका के प्रतिबंध हैं, डॉलर का विकल्प है, मध्य पूर्व में तनाव पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, ये सारे बेहद महत्वपूर्ण पहलू हैं। इतना ही नहीं, अगले ही महीने 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए भी राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं। यानी बेहद कम समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यह लगातार चौथी महामुलाकात होगी। और ताजा जानकारी के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय, अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, ये जो बैठक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बिश्केक में और वो भी अंतरराष्ट्रीय माहौल में, ये मुलाकात कई पहलुओं से और उसमें केवल ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा ही नहीं, कई पहलुओं से बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है।
1: निश्चित रूप से गौरव, जब भी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होती है तो कई बार बहुत सारी ड्रामेटिक तस्वीरें आती हैं। आपको याद होगा त्यानजिन के अंदर दोनों का कार में ड्राइव करते हुए जाना और उसके बाद कार में ही करीब करीब एक घंटे तक बैठ के बात करना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि आमने सामने की मुलाकात में होती हैं, जो फोन कॉल्स पर नहीं हो पाती है नेताओं के बीच में। और निश्चित रूप से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री मोदी के बीच में, चूंकि आपने एक साल की तीन मुलाकातों का जिक्र किया, लेकिन ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि बीते 9 महीनों के दौरान ही ये दूसरी बार मुलाकात हो रही है। और अगर आप देखें तो एक साल से कम के वक्त में राष्ट्रपति पुतिन दो बार भारत के दौरे पर आएंगे, क्योंकि अगली 12 और 13 तारीख को ब्रिक्स शिखर बैठक के लिए उन्हें भारत आना है। क्या क्या वो मुद्दे हो सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा एक मुद्दा है जिसकी प्रतिध्वनि आपको डॉक्टर जयशंकर के मॉस्को दौरे में सुनाई दी, वो था कि भारत और रूस के बीच में द्विपक्षीय व्यापार तो बढ़ रहा है लेकिन व्यापार घाटे का बढ़ना चिंता है। यानी हम रूस से आयात ज्यादा कर रहे हैं, निर्यात कम कर रहे हैं, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चिंता है और वो मुद्दा जो है वो उठेगा। इसके अलावा राष्ट्रपति पुतिन ने विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के साथ मुलाकात में भी इस चीज का जिक्र किया, इसके पहले भी वो जिक्र करते रहे हैं कि भारत का फर्टिलाइजर संकट है, इसको लेकर रूस वाकिफ भी है और रूस यथासंभव मदद करेगा। चूंकि भारत के अंदर रबी के फसल की बुआई को लेकर फर्टिलाइजर संकट की चिंताएं हैं, जो सप्लाई चेन डिसरप्शन है, खाड़ी का संकट है, उसके मद्देनजर फर्टिलाइजर क्राइसिस है और रूस इस चीज से वाकिफ भी है और साथ में मदद के लिए तैयार भी है, तो एक निश्चित रूप से एक आश्वासन होगा। इसके अलावा रक्षा, तकनीक, न्यूक्लियर एनर्जी, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जब भारत और रूस जैसे स्पेशल स्ट्रेटेजिक प्रिविलेज पार्टनर्स साथ बैठेंगे तो निश्चित
0: अच्छा, जो बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका का दबाव भी है और बहुत ज्यादा दबाव भारत पर था रूस के साथ व्यापार को कम करने का और खासतौर पर ईंधन को। 50% भारत पर टैरिफ लगाए गए, उसके बावजूद भारत और रूस के संबंधों में कोई दरार नहीं आई। रहिए मेरे साथ, बिश्केक में जारी एससीओ शिखर सम्मेलन से एक और बड़ी और बेहद महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। शंघाई सहयोग संगठन के इस 25वें

ऐतिहासिक वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूरी तरह से घेरा है। बिश्केक पहुंचने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में बिना पाकिस्तान का नाम लिए आतंक को सीधा और स्पष्ट संदेश दे दिया था। भारत इस पूरे क्षेत्र को आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खतरे से मुक्त देखने के विजन पर काम कर रहा है। भारत का यह सख्त रुख मध्य एशियाई देशों की बैठक में भी साफ दिखाई दे रहा है। ताशकंत में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियायोव के साथ बैठक में भी दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का संकल्प दोहराया। वहीं बिश्केक में किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादिर जपारोव के साथ मुलाकात में भी सीमा पार के खतरों से निपटने और क्षेत्रीय सुरक्षा को और मजबूत करने के मुद्दे पर सहमति बनी। जब आप सीमा पार का आतंकवाद का जिक्र करते हैं तो इशारा खास तौर पर पाकिस्तान प्रायोजित कट्टर इस्लामिक आतंकवाद पर है। एक तरफ जहां मध्य एशियाई देश भारत के एंटी टेरर एजेंडे का खुलकर समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाबाज शरीफ बिश्केक पहुंचकर भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूरी तरह से अलग थलग पड़ते दिखाई दे रहे हैं। भारत की इस रणनीतिक घेराबंदी के बाद अब सभी की नजरें जो मुख्य बिश्केक डिक्लेरेशन है उस पर टिकी हुई है, जहां आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई का ये जो मुद्दा है ये आधिकारिक तौर पर पेश किया जाएगा और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और ऐसे में पाकिस्तान अलग थलग पड़ता दिखाई देता है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आज से 26वां शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन शुरू हो चुका है। संगठन की 25वीं वर्षगांठ के इस मौके पर एससीओ प्लस बैठक में जो आयोजन हुआ इसका मुख्य एजेंडा संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस की केंद्रीय भूमिका के साथ एक न्याय संगत और मल्टीलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर को साबित करना था, रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर। और इसकी नींव 26 अप्रैल 1996 को ही पड़ी थी जब 5 देश उस समय चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान ने मिलकर एससीओ उससे पहले शंघाई 5 का समूह बनाया था। इसका शुरुआती मकसद था सीमाओं की सुरक्षा और सीमाओं पर विश्वास बढ़ाना। फिर 15 जून 2001 को उज्बेकिस्तान इस समूह में शामिल हुआ। इसके बाद शंघाई 5 का नाम बदलकर शंघाई सहयोग संगठन या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। भारत और पाकिस्तान 9 जून 2017 को अस्ताना कजाकिस्तान में हुए शिखर सम्मेलन में एससीओ के पूर्णकालिक सदस्य बने। 3.4 अरब की आबादी और वैश्विक जीडीपी का 1/4 हिस्सेदारी वाला ये जो शक्तिशाली मंच है इस पर भारत की जो प्राथमिकताएं हैं वो बेहद स्पष्ट है। तेल, गैस, यूरेनियम, खनिज संसाधनों में जो समृद्ध है मध्य एशियाई देश, उनके साथ भारत अपने संबंधों को, ऊर्जा सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है और बहुत ही कंसिस्टेंट पॉलिसी मतलब स्थिर प्रज्ञ होकर भारत दशकों से यही प्रयास कर रहा है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के देशों के साथ भारत के जो संबंध है वो बायलैटरल भी, द्विपक्षीय भी बहुत मजबूत हो और मल्टीलैटरल इस मोर्चे पर भी और मजबूत हो। अब इसके बाद रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। हम आपको लिए चलते हैं टोरंटो, जहां बीती रात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, उन्होंने 2500 से ज्यादा प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। इस ऐतिहासिक मंच से संघ प्रमुख ने दुनिया को लेकर जो भारत की सोच है उसको साफ किया। उन्होंने कहा, हिंदू सदा से विश्व बंधु रहा है। जब जब हिंदू समाज जागरूक होता है तब तक पूरी दुनिया का कल्याण भी होता है और जागरण भी होता है। और इसी के साथ उन्होंने वो वाक्य याद दिलाया जिसमें ये कहा जाता है, हिंदू जागा तो विश्व जागेगा। टोरंटो से देखिए ये खास रिपोर्ट।

0: अमेरिका के मेडिसन स्क्वायर में भारतीय समुदाय को संबोधित करने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत अपनी विदेश यात्रा के दूसरे पड़ाव पर कनाडा के टोरंटो पहुंचे। संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है और इस मौके पर मोहन भागवत कई देशों के दौरे पर हैं। टोरंटो के भव्य कार्यक्रम में संघ प्रमुख ने दुनिया को लेकर भारत के नजरिए और संस्कृति की पहचान को सामने रखा।
1: Whenever there was crisis anywhere in the world and help from Bharat was sought, Bharat never said no. And without even calling for help, it helps. This is the tradition. This is the DNA of Bharat. Therefore, you heard the song. Hindu jage to Vishwa jagega. You heard the first stanza. Hindu sada se Vishwa bandhu hai. Hindu is always like that and they refuse to give us up.
0: भागवत ने साफ किया कि भारत का उदय दुनिया पर सैन्य या आर्थिक ताकत की धौंस जमाने के लिए नहीं है। भारत एक महाशक्ति के रूप में दूसरों पर प्रभुत्व नहीं जमाना चाहता, बल्कि निस्वार्थ सेवा, ज्ञान और मानवीय मूल्यों के आधार पर विश्व गुरु बनना चाहता है।
1: विश्व का हर देश जब भी दिग्भ्रमित हो लड़खड़ाया, सत्य की पहचान करने इस धरा के पास आया।
0: इतिहास का हवाला देते हुए संघ प्रमुख ने कहा कि मेक्सिको से लेकर साइबेरिया और दक्षिण पूर्व एशिया तक भारतीय पूर्वजों ने आयुर्वेद, खगोल विज्ञान और संस्कृति का प्रसार किया, लेकिन कभी किसी देश पर सैन्य चढ़ाई या धर्मांतरण नहीं किया। इसी कार्यक्रम में कनाडा के पूर्व रक्षा मंत्री जेसन केरी ने मंच से बोलते हुए भारत और कनाडा के संबंधों में आ रहे सकारात्मक बदलावों का खुलकर स्वागत किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव के दौर के बाद रीसेट हो रहे रिश्तों का जिक्र किया।
2: मोदी जी वेंट अप टू द फ्रंट एंड क्वोटेड फ्रॉम सिक्स स्क्रिप्चर and spoke about the importance of the Sikh community in Canada and the importance of unity in diversity. I think he has showed us the way. The renewed momentum in the Canada-India relationship that will be represented by the second visit of Prime Minister Modi ji to Canada later this year.
0: इस आयोजन की कूटनीतिक अहमियत इसलिए बढ़ गई क्योंकि कनाडा के कुछ विपक्षी सांसदों और चुनिंदा संगठनों ने मोहन भागवत के वीजा और कार्यक्रम को रोकने का भारी राजनीतिक दबाव बनाया था। लेकिन कनाडा के 100 से अधिक बड़े हिंदू और सामाजिक संगठनों के पुरजोर समर्थन के बाद ये ऐतिहासिक आयोजन बिना किसी बाधा के पूरा हुआ। आज तक ब्यूरो।
3: और टोरंटो से आपको सीधे लिए चलते हैं नेपाल, जहां खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है।

0: बात करते हैं नेपाल की। 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ और त्रासदी के बाद वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि भोटेकोशी और त्रिशूली नदी में जो खौफनाक तबाही आई थी उसका कारण मानसून की बारिश या ग्लेशियर की झील का फटना नहीं था, बल्कि रसुआ में 5200 मीटर की ऊंचाई से ग्लेशियर और चट्टानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूट कर गिर गया था और यह बर्फीला मलबा करीब 167 किलोमीटर प्रति घंटे की खौफनाक रफ्तार से लहेंदे नदी में गिरा, जिसने चंद मिनटों में सब कुछ तबाह कर दिया। इस त्रासदी में दुर्भाग्यवश मौत का जो आंकड़ा है वो 900 को पार कर चुका है। 4250 से ज्यादा लोग इस समय भी लापता बताए जा रहे हैं। इस त्रासदी पर ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए नेपाल प्रधानमंत्री राहत कोष में 1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया है। वहीं कल भोटेकोशी में एक बार फिर भयंकर उफान से एक बार फिर हड़कंप मच गया। यही वजह है कि अमेरिका ने अब एक एडवाइजरी जारी कर अपने नागरिकों से कहा है कि वो रसुआ, भोटेकोशी और नुआवकोट जैसे आपदा प्रभावित इलाकों में जाने से बचे। नेपाल में मौत के बढ़ते आंकड़े, अमेरिकी एडवाइजरी, वैज्ञानिकों की हैरानी और सदगुरु की इस बड़ी पहल पर देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट।
1: नेपाल में उफनती नदी ने फिर डराया। डूबे बैंक से निकला 50 करोड़ का सोना। मौत का बढ़ता आंकड़ा करीब 4500 अब भी लापता। नेपाल के रसुआ में भोटेकोशी नदी अपने रौद्र रूप में है। मैलूम से आई नेपाली सेना की ये नई तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कुदरत का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ है। रविवार को फिर से उफान पर आई नदी ने बुरी तरह डरा दिया। दूसरी तरफ सैलाबी तबाही ने इंसानी बस्तियों का क्या हाल किया है वो अब इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। चीन नेपाल सीमा से महज 50 किलोमीटर दूर पूरा का पूरा शहर मलबे का ढेर बन चुका है। सड़कें बह गई हैं, घर और सरकारी इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं और चारों तरफ सिर्फ कीचड़ ही कीचड़ नजर आ रही है। चौंकाने वाली एक और तस्वीर नेपाल के नुआवकोट से आई। भोटेकोशी और त्रिशूली नदी के उफान में कृषि विकास बैंक की शाखा पूरी तरह जलमग्न हो गई थी। पुलिस ने 8 घंटे के मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इस डूबे हुए बैंक से करीब 50 करोड़ नेपाली रुपए का सोना और 1.5 करोड़ की नकदी सुरक्षित बाहर निकाली। इन सब के बीच ऑपरेशन जिंदगी के तहत आज तक की टीम लगातार रेस्क्यू और जमीनी हालात का जायजा ले रही है।
2: जैसे ही आपदा इस घर में रहने वाला परिवार सबसे ऊपर की मंजिल पर भागा, इसलिए उनकी जो जिंदगी थी वो बच गई। खतरा उन्होंने टाल दिया, हालांकि खतरा प्रवाह का था। ये उस परिवार की तस्वीरें हैं, उन्होंने सोची कि अपनी यादें सहेज करके रखी थी, लेकिन उन यादों के ठीक नीचे ऊपर जो है वो दलदल कीचड़ है, तबाही के निशान है और अब घर की जरूरत की चीजें जो है वो यहाँ से निकाली जा रही है।
3: ये घर का पंखा है, घर के जरूरत के सामान, ये लॉबी का हिस्सा है, इसके आगे जा करके कमरे हैं और अब इन इलाकों में घुस करके कोशिशें की जा रही कि क्या कोई ऐसा हो सकता है जो मलबे में दबा हो जिसे निकाला जा सके। ज्यादा दिन तक शव अगर यहाँ पर होते हैं तो महामारी भी फैलने का खतरा हो सकता है। लापता लोगों की संख्या ज्यादा है, लेकिन इन सब के बीच कोशिश ये भी हो रही है कि जिनके बारे में कोई पता न चल पाए घर घर जा करके मलबों में तलाशा जा रहा है। इस दलदल के बीच ये तमाम सारे लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम जिन लोगों का पता ही नहीं चल रहा है कुछ तो उनकी जानकारी लगे।
1: तबाही मचाते सैलाब ने सबसे पहला हमला चीन सीमा से सटे जिरोंग पोर्ट पर बोला था। यहीं से नेपाल और चीन के बीच व्यापार और मानसरोवर यात्रा भी हुआ करती थी। अब उस विशालकाय इमारत का नामो निशान नहीं बचा है। चीन के टीवी चैनल CGTN की रिपोर्टर गोंग मिंग ने वहां के हालात बताए।
4: I'm actually at the National Highway G216 repair site. And this is about like 1.6 kilometers away from the original Jerome port, which is severely damaged in this devastating mudslide. Yeah, and you can see behind me that about 50 meters. And the rescue, the engineering rescue team right now is trying to, because first you can see all these parts have been submerged up to 5 meters after the mudslide.
1: जल प्रलय की इस त्रासदी में जैसे जैसे बल्बा हटाया जा रहा है, तबाही के खौफनाक आंकड़े और खौफनाक दृश्य सामने आ रहे हैं। अमेरिकी दूतावास ने नेपाल यात्रा से जुड़ी अपनी ट्रैवल एडवाइजरी को अपडेट करते हुए रसुवा जिले के रसुवा गढ़ी, तिमुरे, सियाफ्रुबेसी इलाके के साथ ही नेपाल चीन सीमा नाका वाले इलाकों में किसी भी कारण से यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। इस बीच सदगुरु जग्गी वासुदेव ने नेपाल की त्रासदी से निपटने के लिए नेपाल पीएम डिजास्टर फंड में 1 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। नेपाल के डुवाकोट में ग्राउंड जीरो से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: त्रासदी बड़ी है लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, खतरा बरकरार है। इस खबर पर रहेगी नजर, लेकिन फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मुल्तानी घो का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घो का कॉफ सिरप।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
1: सोच बदलो और बैंक भी।
2: In association with
3: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
4: 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, पहले प्रधानमंत्री हमारे नेहरू जी बने। उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे पहले प्रधानमंत्री बनते तो भारत की क्या दिशा और दशा होती?
5: ये तुमने सवाल क्वेश्चन किया, ये संसद में होता तो बड़ा मजा आता। तरीके एक पार्टी बोलती कि कश्मीर हमारा होता, अफगानिस्तान तक हम कब्जा कर लेते, पब्लिक बाहर सुन के ताली वाली ही बजाती।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।

0: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। एयू
1: सोच बदलो और बैंक भी।
2: इन एसोसिएशन विद
3: E3 HDMR ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरीवेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
4: नोवा कोटा से ऊपर मैं त्रिशूली में आया हूँ, देख लीजिए सैलाब का ये सितम।
5: ये वही त्रिशूली नदी है जिसमें पानी मलबे के साथ पूरे आवेग के साथ आया।
4: पीछे जो आपको इमारतें दिख रही है ना, वो सारी बिल्कुल खंडहर हो चुकी है।
5: जो निचले इलाके हैं उन सबसे ऊंचाई की तरफ लोगों को जाने के लिए कहा गया है।
6: चितवन में आज तक की टीम मौजूद है और आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं।
4: मैं आशुतोष मिश्रा,
6: रोहित सिंह,
5: श्वेता सिंह, नेपाल आज तक।
7: ये बुक देखिए आपकी, इसमें आपने हमारी द्विपक्षीय इकोनॉमिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए सभी महत्वपूर्ण सेक्टर में प्रोजेक्ट्स की पहचान कर आगे की टाइमलाइन तय की है। मैं इस प्रयास की सराहना करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम साथ मिलकर हम इस पर शीघ्र ही प्रगति करेंगे। ब्रदर, कल रात्रि भोज पर हमारी अच्छी चर्चा हुई, हमने कई महत्वपूर्ण डिसीजन पे लिए, हमारी टीमें भी सेम पेज पर हैं। इसके लिए मैं उन सभी निर्णयों का उल्लेख करना चाहूंगा। हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

ईरान अमेरिका जंग के बीच राष्ट्रपति पेजिश्कियान से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एससीओ समिट में ऊर्जा संकट पर चर्चा, पुतिन से भी होगी मुलाकात। शुद्धिकरण विवाद में आमने सामने कांग्रेस और बीजेपी। राहुल गांधी पर एफआईआर के बाद सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। एससी एसटी एक्ट में दर्ज हुआ है केस। उत्तर प्रदेश में कल से चुनावी शंखनाद। अखिलेश यादव शुरू करेंगे प्रचार। एसटीएफ को बताया स्वजातीय टॉर्चर फोर्स। बीजेपी की वर्कशॉप में जुटे कार्यकर्ता, तो मायावती ने भी बुलाई समीक्षा बैठक। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पटाखा गोदाम में ब्लास्ट, 5 की मौत, कई घायल। सीएम योगी ने अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के दिए निर्देश।

0: चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी विकास दर 7.8% रही।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से पर...
2: कुर्कुस में हाहाकार, अमेरिका का जबरदस्त प्रहार, नहीं माने अमेरिका ईरान, शुरू हुआ घमासान, अमेरिकी हमलों से ईरान के सैन्य ठिकानों में कोहराम, ईरान ने जॉर्डन यूएई में यूएस बेस को पहुंचाया नुकसान, अचानक क्यों बरसने लगी है मिसाइलें, क्या है हमलों का एससीओ कनेक्शन, क्यों बढ़ रही है बाजार में टेंशन, हमलों की ये आग और तेजी से भड़कने लगी है क्योंकि फिर तल्ख हो गए हैं अमेरिका और ईरान के तेवर, तेल का खेल आने वाले दिनों में युद्ध को और भयंकर भड़काने वाला है।

आप देख रहे हैं रणभूमि, आपके साथ मैं हूं गौरव सावंत। एक तरफ किर्गिस्तान में दुनिया की कई ताकतें एक मंच पर आ गई हैं, जिनमें भारत के अलावा चीन है, रूस है, ईरान है। दूसरी तरफ अमेरिका के नए हमलों से ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध हो रहा है, एक बार फिर वो तेज हो गया है। करीब एक महीने बाद हमलों की ये जो नई लहर है ना, ये लड़क द्वीप में है। अमेरिका ने ईरान के लड़क द्वीप पर यह कहते हुए तबाही मचा दी कि ईरान यहीं से बारूदी सुरंगें बिछाने का काम कर रहा था। बहुत महत्वपूर्ण नेवल बेस भी है लड़क पे और एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल बेस भी है। इसके जवाब में ईरान ने जॉर्डन और यूएई दोनों में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए। इसके साथ ही ईरान ने चेतावनी ये दी कि किसी भी तरह की हरकत, किसी भी सूरत में उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, पलटवार होगा, सूद समेत होगा। इससे पहले ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खमेनी ने एक लिखित संदेश जारी करते हुए इस्लामिक देशों से अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एकजुट होने का आवाहन किया। यह संदेश मध्य पूर्व में युद्ध शुरू होने के 6 महीने पूरे होने पर सामने आया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुज्तबा खमेनी 28 फरवरी को घायल होने के बाद से अब तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। ईरान की ओर से उनका कोई भी जो आधिकारिक वीडियो है या ऑडियो है वो भी जारी नहीं किया गया है। खैर, मिसाइलों के एक बार फिर गरजने से दुनिया भर में हड़कंप मच गया है और इसके साथ तेल की कीमतें एकाएक बढ़ने लगी हैं। इन हमलों के बाद तेल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में 2.5% बढ़ चुकी हैं। फिर से शुरू हुए युद्ध की जो तपिश है, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स तक पहुंच गई है। ईरान ने दावा किया है कि उसने यूएई में यूएस के अल मिनहाद एयरबेस पर ड्रोन स्ट्राइक किया है। ईरान का कहना है कि उसकी सेना ने यूएई में यूएस मिलिट्री बेस पर दर्जनों ड्रोन से हमला किया, जिसमें हेलीकॉप्टर सुविधाओं और यूएस सैनिकों को निशाना बनाया गया। ईरान का आरोप है कि अल मिनहाद विदेशी सेनाओं के हवाई अभियान में मदद करने वाला एक प्रमुख एयरबेस है, इसीलिए यूएई में अल मिनहाद को निशाना बनाया गया। उधर यूएई ने एयरबेस पर हमले को बेबुनियाद बताया। हालांकि उसकी वायुसेना ने ईरान की ओर से अपने समुद्री इलाके में आ रहे एक ड्रोन पर जवाबी कार्रवाई जरूर करने का दावा किया है, लेकिन तनाव पूरे मध्य पूर्व में एकाएक और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इस दौर के हमलों की शुरुआत दरअसल अमेरिका की ओर से हुई है। अमेरिका का कहना है कि यूएस नेवी ने ईरान की ओर से बिछाई गई कई बारूदी सुरंगों को तो हटा दिया था, जिससे करीब 1500 कमर्शियल जहाजों के लिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य का रास्ता सुरक्षित था और इस इलाके में ईरान को तेल निर्यात करने से रोका गया था। इससे चिढ़कर ईरान ने फिर से बारूदी सुरंगों को बिछाने की साजिश की और इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने वाला जो उसका केंद्र था, जो बड़ा बेस था, वो लारक द्वीप में था। इसीलिए अमेरिका ने लारक द्वीप पर हमले किए। ईरान का कहना है कि अमेरिका जानबूझकर ईरान को उकसा रहा है और इस उकसावे का नतीजा अमेरिका को और अमेरिकी मित्रों को भुगतना पड़ेगा। पिछले 24 घंटे से ईरान के पलटवार के साथ ही मध्य पूर्व में किस तरह महायुद्ध की वापसी है, आइए हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। एक तरफ यूएई और दूसरी तरफ जॉर्डन में अमेरिका का बेस, ईरान ने किस तरह से पलटवार किया।

0: ईरान के लारक द्वीप पर अमेरिका का मिसाइलों से वार, अमेरिका के मिलिट्री बेस पर ईरान का पलटवार, गरज रही मिसाइलें, बरस रहे हैं बम, लड़खड़ाते मार्केट का फिर निकला दम, गरजती मिसाइलों और बरसते बमों के बीच एक बार फिर अमेरिका और ईरान में युद्ध शुरू हो गया है। अमेरिका ने समुद्री सुरंगों के खतरे का हवाला देते हुए ईरान के लारक द्वीप पर ताबड़तोड़ हमले कर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान के लारक द्वीप पर दो रॉकेट लॉन्चर्स को निशाना बनाया गया है। लारक द्वीप होर्मुज के पास बसा हुआ है। अमेरिका का आरोप है कि ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के सैनिक इस इलाके से होर्मुज में रॉकेट और समुद्री बारूदी सुरंगें लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे। ईरानी सेना ने दावा किया है कि अमेरिका के हमले में कई सैनिक और नागरिक मारे गए जबकि कई लोग घायल हुए हैं। ईरान ने अमेरिका के इस हमले का जवाब देने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। IRGC ने जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला बोल दिया। प्रेस टीवी के मुताबिक किंग हुसैन और अल अजराक एयरबेस के तकनीकी ढांचे और लड़ाकू विमानों की पोजीशन को निशाना बनाया गया। ईरान ने होर्मुज के ऊपर उड़ रहे अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को मार गिराने का भी दावा किया है। ईरान की मिसाइल के वार से ड्रोन फारस की खाड़ी में जा गिरा। ईरान का दावा है कि उसके ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम ने अपना काम बखूबी किया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक AI वीडियो पोस्ट किया है जिसमें लिखा है कि खाड़ द्वीप को पूरी तरह से तबाह किया जा रहा है। अमेरिकी सेना ने पिछले हफ्ते ही होर्मुज के इंटरनेशनल शिपिंग रूट से बारूदी सुरंगें हटाने का काम पूरा किया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में मौजूद सभी सुरंगों को या तो हटा दिया गया या फिर निष्क्रिय कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर कोई जहाज या नाव होर्मुज में नई बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश करेगी तो उसे नष्ट कर दिया जाएगा। अमेरिका को शक है कि ईरान फिर सुरंगों को बिछा रहा है ताकि होर्मुज में जहाजों की आवाजाही पर उसका नियंत्रण बना रहे। अमेरिका का ताजा हमला इसी का नतीजा है। वैसे अमेरिका की नाकेबंदी से ईरान की मुसीबतें लगातार बढ़ रही हैं। ईरान के परमाणु मिशन की वजह से कुछ पाबंदियां उस पर पहले से ही थी। अब युद्ध शुरू होने के बाद कई और पाबंदियों ने उसकी अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार कर रख दिया है। खुद ईरान मान रहा है कि पाबंदियों ने उसके निर्यात को करीब 35% तक कम कर दिया है।
1: بیشتر کم شده وارداتمون بیشتر صادرات یه مقدار کمیش کمتر از وارداته واردات که خیلی کمتر شده ولی معنی این حرف برای کسانی که اقتصاد میدونن معلومه حالا من نمیخوام بازش بکنم یعنی چی یعنی این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره آخه نمیدونم چی به اینو بگم یعنی واقعا عقلم خوب چیزیه فقط همین رو میخوام بگم یعنی عقلم خوب چیزیه یعنی بگن تحریم هیچ اثری نداره
0: एक झगड़ा होर्मुज को लेकर है तो दूसरा ईरान के परमाणु मिशन को लेकर। अमेरिका के दबाव के बावजूद इतने महीनों में एक बार भी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ईरान की किसी भी साइट का निरीक्षण नहीं कर पाई है। इससे ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि इन एटमी साइट्स को हमलों में नुकसान पहुंचा है या नहीं। ईरान भी बार बार अपना रुख साफ कर रहा है कि वो किसी भी कीमत पर एजेंसी को घुसने नहीं देगा।
2: اعتراض نمیکنه محکوم نمیکنه خب این صلاحیت خودش رو و اون استقلال خودش رو زیر سوال میبره در شرایط کنونی هم اونهایی که بهش حمله نشده رو بازرسی که لازم بوده طبق پادبان انجام داده اونایی که بهش حمله شده قانون مجلس رو ما اجرا میکنیم باعث آژانس تکلیف خودش رو با وضعیت امنیت سایت ها روشن بکنه و اعلام بکنه که برای سایت هایی که بهش حمله نظامی میشه چه پروتکلی داره که آژانس چنین پروتکلی رو نداره موضع‌گیری هم نمی کنه فقط تحت فشار امریکا و اسرائیل فشار میاره که بیاد سایت های تخریب شده رو بازدید بکنه فشار اونها هم به خاطر اینه که بیان ببینن با عملیات نظامی که انجام دادن چه اتفاقی بر سر سایت افتاده
0: ظاہر ہے ان حالات میں سیز فائر ہونے یا پھر کسی ڈیل کے ہونے کی امید فی الحال ختم ہوتی جا رہی ہے छह महीने बाद भी मिसाइलों की यह गर्जना बताती है कि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, न तो अमेरिका न ही ईरान। आज तक ब्यूरो।
3: एकाएक ये युद्ध और ज्यादा भड़क गया। प्रश्न उठता है कि लारक द्वीप को ही क्यों निशाना बनाया गया। यह हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। दरअसल ये ईरान के एक बेहद प्रमुख बंदरगाह बंदर अब्बास के बेहद करीब है और हॉर्मूज जलडमरू मध्य हॉर्मूज का जो रास्ता है उसके बिल्कुल बीचों बीच है। ये है वो लारक द्वीप का इलाका जिसे निशाना बनाया गया। अगर आप देखें ये पर्शियन गल्फ है, फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी में ऐसे जब आप निकलते हैं तो ये वो हॉर्मूज जलडमरू मध्य का इलाका है और यहां ओमान की खाड़ी आती है और इसके बिल्कुल बीचों बीच ये लारक द्वीप है जिसे निशाना बनाया गया। ये समुद्री रास्ता दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दुनिया में इस्तेमाल होने वाला जो तेल है करीब 20% यहीं से आता है। लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG की जो आवाजाही है इस रास्ते से होती है और लारक की जो भौगोलिक स्थिति है वो असल कारण है। जहाजों की आवाजाही पर यहां से पैनी निगाह रखी जाती है। एक चीज आप यहां से देखिएगा, ये वो द्वीप है जहां से बहुत साफ तौर पर नजर रखी जाती है जहाजों पर। नजर रखने के अलावा यही वो बेस है जहां से बारूदी सुरंग ईरान लगाता था हॉर्मुज स्ट्रेट में। ये अमेरिका का आरोप है, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर कुछ मिसाइल साइलोज है या मिसाइल लॉन्च पैड्स है, मिसाइल लॉन्चर्स है। अमेरिका का दावा यह है कि वो उन मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बना रहा था। ये जो बेहद बीचों बीच का इलाका है कि ओमान का भी जो रास्ता है, UAE का जो रास्ता है, वहां पर भी लारक द्वीप से बहुत पैनी नजर रखी जा सकती है और इसीलिए ये रास्ता बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि अमेरिका बार बार केशम आइलैंड और खर्ग आइलैंड की बात करता है। यही बात अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी की। खर्ग आइलैंड फारस की खाड़ी में दूसरे छोर पर, ईरान के दूसरे छोर पर आता है। वहां से 90% ईरान से जितना तेल निर्यात होता है वो खर्ग आइलैंड से होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने दावा किया खर्ग आइलैंड का, लेकिन निशाना बनाया गया लारक आइलैंड को। और केशव आइलैंड भी बेहद महत्वपूर्ण है और इन्हीं द्वीपों की श्रृंखला से ईरान बिल्कुल पकड़ मजबूत बनाए रखे हुए है पूरे फारस की खाड़ी पर। लेकिन इस बीच एक सवाल और उठ रहा है कि अचानक अमेरिका ने इस समय हमला क्यों शुरू कर दिया। और वहां कहीं ना कहीं कहा जा रहा है आज जो बिश्केक में SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो शिखर वार्ता शुरू हो रही है कहीं उसका सीधा संबंध तो नहीं है। अमेरिकी हमलों का SCO कनेक्शन क्या है? आज SCO समिट में दुनिया की बड़े ताकतें, उभरती ताकतें, एशिया की प्रमुख ताकतें एक मंच पर आ रही हैं। इसमें भारत भी है, चीन भी है, रूस भी है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज है। भारत, रूस, चीन समेत कई देश SCO समिट में भाग ले रहे हैं। यहां पर नई अर्थव्यवस्था और नए उभरते रूप के विश्व के उस पर भी चर्चा हो रही है और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान भी किर्गिस्तान पहुंचे हुए हैं। अब से थोड़ी देर पहले उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी हुई है। समिट से ठीक एक दिन पहले अमेरिका ने जो हमला किया है वो एक बहुत बड़ा संदेश कि ईरान ये ना सोचे कि वो एक जीते हुए देश के तौर पर SCO समिट में जा रहा है, अभी जंग चल रहा है। अमेरिका एक बहुत बड़ा संदेश SCO को भी दे रहा है। लेकिन क्या ये जो हमला है अमेरिका की बौखलाहट का नतीजा है कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति, आर्थिक महाशक्ति, वो ईरान को 6 महीने के युद्ध के बाद भी घुटनों पर नहीं ला पाई? क्या आर्थिक पाबंदियों पर सख्त रवैया बरकरार रखने का संकेत है ये अमेरिका का हमला कि अगर किसी ने ईरान के साथ व्यापार बढ़ाया या ईरान की किसी तरह से मदद की तो अमेरिका का जो आर्थिक शिकंजा है वो और मजबूत तरीके से उन देशों पर भी कसा जाएगा? क्या ईरान के हमदर्दों के एक मंच पर होने पर बेफिक्री दिखाना चाहता है अमेरिका लेकिन बेहद चिंतित है? आपको याद है पिछले साल जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हुई थी तियानजिन में, तब अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या कहा था कि मैंने भारत और रूस को बहुत ही सह चीन के हाथ खो दिया है। वेरी ब्लैक डार्क चाइना, आई हैव लॉस्ट इंडिया इन रशिया, कुछ इस तरह की शब्दावली का उन्होंने इस्तेमाल किया था। लेकिन क्या इस बार उन्होंने मिसाइलों से, रॉकेटों से जिस तरह से वार किया केश लारक आइलैंड पर, वो संदेश देना चाहते हैं कि ईरान पर जो खतरा है वो टला नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण समय एक प्रश्न है। वैसे अमेरिका के हमलों के बाद ईरान झुका नहीं, ईरान और ज्यादा आक्रामक हो गया है। ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना है किसी भी तरह की सैन्य आक्रामकता का वो कड़ा जवाब देगा। फिर तनाव बढ़ाने के लिए अमेरिका और उसका समर्थन लेने वाले पूरी तरह से जिम्मेदार ही होंगे। तो फास्ट न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि ईरान ने कानूनी और अंतरराष्ट्रीय मामलों के जो उप विदेश मंत्री हैं काजिम गरीबाबादी, उन्होंने तो इतना तक कह दिया है कि लारक द्वीप पर अमेरिकी हमले के बाद इस इलाके से विदेशियों को हट जाना चाहिए, विदेशियों को अब इस पूरे क्षेत्र में नहीं रहना चाहिए क्योंकि युद्ध और बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को एक कड़ा सबक सिखाने की जरूरत है ताकि वो अपनी आक्रामकता दोबारा न दोहराए। खबर तो यह है कि यूएई और जॉर्डन में अमेरिकी बेसिस पर बड़े हमले किए हैं ईरान ने। अब आप यह सोचिए कि अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध है 28 फरवरी को शुरू हुआ था, यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अब 6 महीने से यह युद्ध चल रहा है। अब तक आंकड़ों की अगर हम बात करें तो युद्ध को बीता आधा साल नहीं थमा यह हाहाकार। ईरान में मौत का आंकड़ा 3600 बताया जा रहा है और कुल खाड़ी देशों की बात करें तो 30 लोग खाड़ी देशों में भी मारे जा चुके हैं ईरान के पलटवार में। लेकिन इसराइल में जो मौतें हुई हैं वो 60 है। अमेरिकी सेना से जुड़े लोगों की मौत, यह आंकड़ा 18 पर पहुंच गया है। इसमें कई अमेरिकी लड़ाकू विमान वो अलग, लेकिन जो उनके ट्रांसपोर्ट विमान और अर्ली वार्निंग विमान और मिड एयर रिफ्यूलर है उसमें तो कुछ लोग मारे भी गए थे। इस दौरान लेबनान में 3527 लोगों की मौत हो चुकी है क्योंकि एक अलग लेबनान बनाम इसराइल युद्ध अलग मोर्चे पर चल रहा है। हॉर्मूज पर जहाजों पर हमला, 70 जहाजों पर हमले हुए, 19 नाविकों की उसमें मौत हुई है। इनमें से कुछ भारत के हैं, कुछ और अन्य देशों के भी हैं नाविक जो इसमें मारे गए हैं। और आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिज़िश्कियान से लोगों की को सुरक्षित, जिन भारतीय जहाजों को वहां से निकाला गया उसके लिए उन्हें धन्यवाद भी कहा। अच्छा, ईरान का जो नुकसान हुआ वो हुआ, अमेरिका भी अरबों डॉलर गवा बैठा है, जिससे साफ ये असर पता चल रहा है कि अमेरिका में भी बढ़ती जा रही है कीमतें। किस तरह अमेरिका पर इसका असर पड़ा है वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तेल के खेल में पानी की तरह जो पैसा बहा रहा है, अमेरिका का क्या खर्च हुआ है, 357,677 करोड़ रुपए अमेरिका के भी खर्च हो चुके हैं। इसमें वेतन, ऑपरेशंस, मेंटेनेंस वो सब शामिल है। ये अमेरिका की इकोनॉमी पर, वो जो अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं ना, वो उगाही करेंगे या वसूलेंगे वो ईरान से, ये अमेरिका का खर्चा है। अमेरिकी मीडिया का दावा है खर्च का अनुमान इससे 100% ज्यादा हो सकता है। क्यों? क्योंकि अमेरिकी सैन्य बेसिस को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। आज भी विमानों की मरम्मत कर, कई विमान तो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं, राइट ऑफ हो चुके हैं। फिर वॉरशिप्स के रिप्लेसमेंट की भी अब बात की जा रही है। अमेरिका को अपने सबसे बड़े युद्धपोत को वहां से हटाना पड़ा है। तो इस युद्ध का असर अमेरिका पर भी बहुत जबरदस्त है। लेकिन केवल ये इकलौता युद्ध नहीं है, इस युद्ध में आग एकाएक भड़की। बात करते हैं दूसरे युद्ध की जो रूस और यूक्रेन के बीच हो रहा है। रूस ने पिछले हफ्ते कीव और आसपास के इलाकों में मिसाइल और बम इतने बरसाए 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया है कि रूस लगातार उसके रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है और बेकसूर लोगों की जान ले रहा है। पिछले 4 दिनों की अगर बात करें तो पिछले 4 दिनों में लगभग 1500 ड्रोन लॉन्च किए गए, जिनमें 800 उनमें से जेट पावर ड्रोन्स थे। आप ये सोचिए, जेट पावर ड्रोन्स को रोकना लगभग असंभव है। इन ड्रोन्स को नष्ट करना अभी यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति के मुताबिक इन सब से पार पाने के लिए उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति की मदद चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति के दूत के साथ नई बातचीत की वो तैयारी कर रहे हैं। इस बारे में और जानकारी दी कि हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि ये युद्ध एकमात्र विकल्प न रह जाए। लेकिन क्या बातचीत से रास्ता निकलेगा या यह युद्ध की आग और भड़केगी, इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
7: एयू, सोच बदलो और बैंक भी।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
4: सो सॉरी।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: ईरान अमेरिका जंग के बीच राष्ट्रपति पेजेशकियान से मिले पीएम मोदी। एससीओ समिट में ऊर्जा संकट पर चर्चा, पुतिन से भी होगी मुलाकात। शुद्धिकरण विवाद में आमने सामने कांग्रेस बीजेपी। राहुल गांधी पर एफआईआर के बाद सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। एससी एसटी एक्ट में दर्ज हुआ है केस। यूपी में कल से चुनावी शंखनाद, अखिलेश शुरू करेंगे प्रचार। एसटीएफ को बताया स्वजातीय टॉर्चर फोर्स। बीजेपी के वर्कशॉप में जुटे कार्यकर्ता तो मायावती ने भी बुलाई समीक्षा बैठक। यूपी के कौशाम्बी में पटाखा गोदाम में ब्लास्ट, 5 लोगों की मौत, कई घायल। सीएम योगी ने अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के दिए निर्देश। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार। चालू वित्त वर्ष में पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी विकास दर 7.8% रही। पीएम मोदी बोले निराशावादी लोगों की हुई हार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल यूपी की चुनावी राजनीति में उठे मुद्दों पर। यूपी में आज पक्ष विपक्ष दोनों ओर से बड़ी बैठकें हुई है। बीजेपी के बैठक में सीएम, डिप्टी सीएम से लेकर प्रदेश अध्यक्ष और महासचिव स्मृति ईरानी समेत सभी 75 जिलों के पार्टी अधिकारी आए और तय हुआ कि 17 सितंबर से एक महीने तक सेवा संकल्प अभियान चलेगा, जिसमें सरकारी कामकाज को जनता तक पहुंचाया जाएगा। दूसरी तरफ अखिलेश ने भी 75 जिलों से पार्टी पदाधिकारियों के साथ अपनी टेक टीम को भी बुलाया था, क्योंकि अखिलेश फॉर्म 6 यानी वोटर लिस्ट में नए नाम जोड़ने को लेकर तैयारी कर रहे हैं और बड़ा आरोप यह लगा रहे हैं कि अब बीजेपी यूपी में स्पेशल एनुअल रिविजन यानी जिसे SAR कहते हैं, उसके बहाने वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा कर सकती है। अखिलेश ने आरोप लगाया है कि बीजेपी बिहार, झारखंड, MP, छत्तीसगढ़ के लोगों के नाम फॉर्म 6 के जरिए वोटर लिस्ट में डलवा कर चुनावी फर्जीवाड़ा करेगी। अखिलेश का दावा है कि SIR के बाद SAR गैर कानूनी है। हालांकि अखिलेश जिसे SAR कह रहे हैं वो समरी रिविजन कहा जाता है और वह अनिवार्य रूप से हर साल अक्टूबर नवंबर में होता ही है और इसीलिए इसमें नए वोटर्स के नाम फॉर्म 6 के तहत जोड़े जाते हैं और वह हर पार्टी इस तरीके से कर सकती है। लेकिन अखिलेश का आरोप है कि चूंकि बीजेपी के लोग फर्जी फॉर्म 7 भरने की कोशिश कर चुके हैं, इसीलिए फॉर्म 6 का खतरा बना हुआ है और आरोपों की इस सियासत को बंगाल से भी बल मिल रहा है, क्योंकि वहां खुलासा हुआ है कि तार्किक विसंगति, आपको याद होगा लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर जो नाम काटे गए थे, उन नामों में अब तक जितनी सुनवाई ट्रिब्यूनल के सामने हो पाई है उसमें से 91% नाम सही मिल रहे हैं, यानी उतने लोग सही होकर भी वोट नहीं डाल पाए थे। वहां TMC सवाल उठा रही है कि कई जिलों में 100% नाम सही है और वहां जितने नाम कटे गए हैं उसमें से बहुत कम मार्जिन से वहां पर जीत हार भी हुई है उन्हीं विधानसभा क्षेत्रों में। तो इस तरह यूपी में SIR का भूत एक बार फिर SAR बनकर सामने आया है और इसी पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं।
1: उत्तर प्रदेश में चुनावी दस्तक होने ही वाली है, उससे पहले हर दल पूरी तैयारी में जुटा है। बीजेपी की नई टीम ने सभी जिलाध्यक्षों, मोर्चा अध्यक्षों से लेकर मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम के साथ तैयारी बैठकें की हैं, तो समाजवादी पार्टी ने भी प्रदेश भर से जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्षों को टैग टीम के साथ बुलाया। बीजेपी ने अपनी बैठक में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर सेवा संकल्प अभियान चलाने का प्लान बनाया, तो अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार अभियान का शंखनाद कर दिया।
2: कल से हमारी पार्टी का प्रचार एक तरह से शुरू।
1: घोटाले, भ्रष्टाचार, PDA, अत्याचार, बंद स्कूल, फर्जी मुठभेड़, किसान संकट, अपराध और SAR, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से बड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं
2: कि SIR के बाद भारतीय जनता पार्टी की चुनाव आयोग के माध्यम से साजिश होगी और एक षड्यंत्र होगा कि दोबारा SAR कराया जाए।
1: SAR बोले तो स्पेशल एनुअल रिवीजन, ये चुनाव आयोग अनिवार्य रूप से हर साल करता है, इसे स्पेशल समरी रिवीजन कहा जाता है, जो सालाना आमतौर पर अक्टूबर नवंबर में शुरू होता है। इसमें 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 साल की उम्र के हो चुके नौजवानों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाता है। अखिलेश इस संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं
2: कि चुनाव से पहले एक एनुअल रिवीजन करेंगे ये लोग SAR, जिससे कि ये अपने लोगों के वोटों को एडजस्ट करेंगे। सुनने में आ रहा है कि बड़े पैमाने पर बिहार से लोग, झारखंड से लोग, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उनके ये लोग वोट बनाएंगे और अपने बूथों पर वोट बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए हमारे संगठन, हमारे जो बूथ स्तर पर ऐप के माध्यम से काम कर रहे हैं, उन सबका हमने सहयोग मांगा है।
1: अखिलेश SIR के बाद SAR को नियम के विपरीत बताते हैं और इसे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने की मंशा से किया जाने वाला अभ्यास कहते हैं, जबकि चुनाव आयोग को संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 में वोटर लिस्ट

0: मेंटेन करने के लिए कुछ कानून भी बनाए गए हैं, जिसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की 21 भाग 2 धारा के तहत वोटर लिस्ट का सालाना अपडेट अनिवार्य है और धारा 21 भाग 3 के तहत वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण यानी SIR का भी प्रावधान है। इसके अलावा निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के नियमों के तहत फॉर्म 678 भरने, आपत्तियों और निपटारे के नियम है।
1: कि जो व्यक्ति दस्तखत करना नहीं जानता, उसके दस्तखत करा करके समाजवादी पार्टी के और मुस्लिम मतदाताओं के वोट कटवा रहे थे। हमारे बूथ लेवल एजेंट ने समय पर पकड़ा, जो नियम कहता है कि कितने वोट कटाए जा सकते हैं, 5 से ज्यादा एक व्यक्ति वोट नहीं कटवा सकता है, लेकिन एक ही व्यक्ति ने कितने फॉर्म 7 के कटवाए थे वोट, 125।
0: अखिलेश के सवालों, आशंकाओं और आरोपों के पीछे सिर्फ यूपी की SIR ही नहीं बल्कि बिहार से बंगाल तक जुड़े घटनाक्रम भी हैं, क्योंकि बंगाल में SIR को लेकर जिस तरह राजनीति हुई और चुनाव हुए, उसमें अब गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। बंगाल में कुल करीब 91 लाख वोटर्स के नाम कटे, जो राज्य की आबादी के 11 से 12% है। इनमें तार्किक विसंगति के नाम पर 27,19,000 लोग वोटिंग से दूर रखे गए। RTI से खुलासा हुआ कि ट्रिब्यूनल के सामने जब 82,782 मामलों की सुनवाई हुई, पता चला कि उनमें 91% यानी 75,443 वाजिब वोटर थे जो वोट नहीं दे सके। इसमें मालदा और उत्तरी 24 परगना जिले में करीब 100% वोटर सही मिले थे। इस तथ्य का जिक्र जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में आया, तो अदालत ने फिलहाल चल रहे सिर्फ 19 ट्रिब्यूनल की संख्या बढ़ाने और वाजिब नामों को लिस्ट में जोड़ने को कहा था। आज तक ब्यूरो।
2: उत्तर प्रदेश के भीतर 166 दिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चलाया गया था और उसके बाद 13.39 करोड़ नाम आखिर जो फाइनल लिस्ट आई थी उसमें रखे गए थे, यानी करीब 2 करोड़ नाम काटे गए थे। लेकिन उसके बावजूद अभी भी विपक्ष को कहीं ना कहीं लगता है कि जब स्पेशल रिवीजन होगा, एक बार फिर जो समरी रिवीजन होगा, उसमें नए नाम जोड़े जाएंगे और कहीं ना कहीं साजिश की बू भी उनको आ रही है। तो क्यों आ रही है, चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। शलभमणि त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल होंगे। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी भूमिका इसमें रखेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी को षड्यंत्र की बू क्यों आ रही है वो उनसे जरा पूछेंगे। अनिल यादव, कांग्रेस के प्रवक्ता, भी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। राघवेंद्र द्विवेदी, SBSP के प्रवक्ता, NDA की में शामिल पार्टी है, उनके प्रवक्ता भी चर्चा में शामिल होंगे, क्योंकि आमतौर पर समाजवादी पार्टी का आरोप होता है कि PDA के नाम काटे जाएंगे, तो SBSP के प्रवक्ता से पूछेंगे कि क्या उनको भी उस बात का डर है। 3 सवाल इस पैनल के सामने। पहला सवाल, क्या यूपी में वोटर लिस्ट का SIR को गैर कानूनी बताना सही है? दूसरा सवाल, क्या चुनाव आयोग पर अखिलेश के आरोप चुनावी रणनीति का हिस्सा है? पहले से डरा कर रखिए और उसके बाद फिर बवाल करिए और उसके बाद चुनाव प्रचार में उसका हिस्सा इस्तेमाल करिएगा, क्या ये एक रणनीति उसमें नजर आ रही है? तीसरा सवाल, क्या बंगाल में तार्किक विसंगति वाले वोटर्स का जायज निकलना बड़े सवाल खड़ा करता है? इसका जवाब कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को भी देना होगा, क्योंकि 27 लाख से ज्यादा नाम बंगाल में तार्किक विसंगति के नाम पर काटे गए थे। अब जब सुनवाई हो रही है तो 91% नाम दोबारा वोटर लिस्ट में जोड़े जा रहे हैं और इसीलिए शायद विपक्ष को लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं धांधली है, गड़बड़ी है। शुरुआत करते हैं, लेकिन पहले तो तकनीकी मुद्दे से शुरुआत करनी होगी। अनुराग भदौरिया जी, मैं आपको नियम बता देता हूं और उसके बाद आप जरा मुझे बता दीजिएगा किस आधार पर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि जो SAR होगा, यानी समरी रिविजन जो हर साल होता है, वो गलत तरीके से होगा और वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कानून यहां पर कोर्ट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद अपनी भूमिका आप रखिए उसमें। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 21(2) के तहत हर साल SIR हो या ना हो, लेकिन जो समरी रिवीजन है वो हर साल अक्टूबर नवंबर में होना जरूरी होता है, भले SIR के बाद ये प्रक्रिया शुरू हो जाए, लेकिन जरूरी होता है। 20 साल पहले जब SIR हुआ था तब भी यह प्रक्रिया की गई थी। तो आपको क्यों लगता है कि यह गलत है, कैसे गैर कानूनी है, जरा समझाइए लोगों को।
3: देखिए, सबसे पहली बात तो सरकार का की बात तो एक है, दूसरी चुनाव आयोग की नियत पे शक होता है ना। आप बताइए, पश्चिम बंगाल का उदाहरण ले लिया जाए, तो वहां पे देखा गया कि कुछ विधानसभा, कुछ क्या 27 लाख।
2: अनुराग भदौरिया, आप मेरे ख्याल से आज नेटवर्क के बाहर है, सारे आपके नेटवर्क में कमी है उत्तर प्रदेश के भीतर।
3: नहीं आवाज आ रही
2: है, जरा आपका नेटवर्क ठीक करिए।
3: हाँ तो देखिए अभी नेटवर्क तो भारतीय जनता पार्टी

0: लेकिन कट रही है आपकी आवाज।
1: इनके इनकी सरकार अभी अभी आ रही है, अभी आ रही है आवाज, आ रही है
0: अभी आ रही है।
1: देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नेटवर्क ही नहीं आता। देखिए सवाल यह है कि क्यों ना शक हो, पश्चिम बंगाल में आपने देखा जिस तरह से 27 लाख वोटरों को उनको वोट देने से वंचित रखा गया, और वो जैसे आपने बताया मैं भी ये कह रहा था 91% उसमें सही पाए गए, तो इसके मतलब 31 विधानसभा ऐसी थी जहां पे 14,000 वोट कटे और जीत का अंतर मात्र 400 का था, तो कौन जिम्मेदार होगा? 400 का जीत का अंतर था और विधानसभा वोट काट दिया आपने 14,000, तो ये जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी बनती थी ना चुनाव आयोग की कि भाई एक लोकतंत्र में एक सरकार चुनी जा रही है जनता की मत से चुनी जा रही है और जनता का मत ही अगर उसमें शामिल नहीं है, जनता का वोट अगर एक वोट भी कटता है तो कितना बड़ा पाप होता है, और आपने तो यहाँ 27-28 लाख वोट काट दिए, तो सवाल उठता है कि इस वजह से शंका तो पैदा होती है ना। दूसरी बात अगर उत्तर प्रदेश की बात करें हम, तो उत्तर प्रदेश में जब इन्होंने अपना ड्राफ्ट बनाया था तब के ड्राफ्ट में आए थे 12,55,00,000, और फिर जब फाइनल इन्होंने लिस्ट जारी की तो 13,39,00,000, तो जो 84 लाख इसमें नए नाम जोड़े या इन्होंने नाम ऐड किए वो जब आप ड्राफ्ट बना रहे थे तो फिर जब हमने इसकी आवाज उठाई थी फिर अचानक आपने तारीख बढ़ी, तारीख बढ़ने के बाद फिर 84 लाख नाम ऐड भी हो गए, तो सवाल इन पे ये उठता है कि आपने जो SIR किया है क्या SIR प्रक्रिया इसमें पारदर्शिता है? कोई पारदर्शिता तो दिखती नहीं है, क्योंकि आप समय समय पे पहले तो कहते हो 2 महीना होगा, फिर उसके बाद जैसे आपको लगता है कि अगर आपके वोटर कम है या बीजेपी के वोटर कम है तो तारीख भी बढ़ा दी जाती है, तारीख बढ़ा दी जाती है तो वोटर भी अपने हिसाब से ज्यादा कम हो जाते हैं, ऐसा क्या होता है कि वोट बढ़ता घटता? भाई इंसान तो वही है, इंसान तो कोई बढ़ता जैसे पहले आज
0: लगता है अनुराग भदौरिया अटक अटक कर बात करेंगे। अनुराग भदौरिया जी कहीं ना कहीं आप ऐसी जगह पर है, पता नहीं आप कहां पर है, लेकिन आपकी आवाज बड़ी कट कट के आ रही है, इसलिए आज अनिल यादव को आपकी जिम्मेदारी शायद निभानी पड़ सकती है। लेकिन शलभ मणि त्रिपाठी जहां तक मैं समझ रहा हूं, देखिए मेरा मामला यहां पर अभी आ रही है, लेकिन जरा मैं आप ही ने जो मुद्दे उठाए हैं उस पर जरा शलभ मणि त्रिपाठी के पास चलते हैं। शलभ मणि यहां पर जो मुझे समझ में आ रहा है, देखिए विपक्ष को क्या लग रहा है, यहां पर कानून का सवाल नहीं है, ये तो कानून में है, मैंने तो कानून पढ़ के बताया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, उसके तहत ये समरी रिविजन तो हर साल करनी पड़ती है। आप तो विधायक है, आप चुनाव लड़ चुके हैं, आपको भी मालूम है कि हर साल ये प्रोसेस होता है, जो SIR हो या ना हो वो तो करना ही पड़ता है। यहां पर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है, जो बंगाल के भीतर उन्होंने देखा उसके वजह से है। बंगाल के भीतर करीब 82,782 सुनवाई अब तक हो चुकी है, 27 लाख वोटर्स लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में काटे गए थे, सिर्फ 82,000 यानी करीब 83,000 सुनवाई वहां पर हो चुकी है, और नाम कितने लौट गए हैं वापस, 76,443 यानी गलत तरीके से नाम काटे गए थे, ये जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स के सामने साबित हो चुका है। अरे इसीलिए कहीं ना कहीं उनको डर लगता है कि SIR होगा, दोबारा नाम कटेंगे, नए नाम कहीं और से जोड़े जाएंगे, तो इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया पर कहीं ना कहीं संदेह विपक्ष को यहां पर नजर आ रहा है। चलो
2: साहिल भाई, देखिए आप एक बहुत ख्याति प्राप्त पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और आपने खुद ही बताया कि हर वर्ष ये प्रक्रिया चलती है, SIR की जो प्रक्रिया है चुनाव आयोग की अपनी एक कार्य पद्धति का हिस्सा है, इसके बावजूद अगर समाजवादी पार्टी इसको मुद्दा बना रही है तो आप समझ सकते हैं कितना डर है अपनी हार का। आपको अगर याद हो तो 2022 का जब चुनाव हो रहा था तब समाजवादी पार्टी के लोग यूं ही सड़कों पर उतर पड़े थे, बकायदे SDM की गाड़ी रोकी जाती थी, तमाम मैजिस्ट्रेट की गाड़ी रोकी जाती थी, कूड़े की गाड़ी में कूड़ा जा रहा है तो कहते थे इसमें EVM मशीन छुपा के ले जा रहे हैं। तो 2022 में भी इन्होंने ऐसे ही उपद्रव किया, ऐसे ही अराजकता की, और परिणाम जब आ गया उसके बाद से एक शब्द पिछले 4.5 वर्षों में समाजवादी पार्टी ने एक शब्द उस पर नहीं कहा कि इन्होंने जो अराजकता की उसके पीछे कारण क्या था। आज जब इनको दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में हारने जा रहे हैं और उसकी वजह है, उसकी वजह की आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था और आपने भी अपनी बुलेटिन में इसका जिक्र किया, एक डेडिकेटेड फोर्स जो अपराधियों का सफाया कर रही है। आप देखिए शामली जिले में एक बहुत विख्यात सिंगर का मर्डर हुआ, उनकी पत्नी ने कहा कि हमें योगी जी से उम्मीद है, उनके पिता ने कहा कि हमको योगी जी से उम्मीद है, और हमारी पुलिस ने और STF ने मिलकर जो हत्यारे थे उनके साथ एनकाउंटर हुआ और उस एनकाउंटर में हत्यारे मारे गए। आज उनका परिवार धन्यवाद दे रहा है, जो परिवार 2 दिन पहले रो रहा था, बिलख रहा था और कह रहा था उम्मीद केवल योगी जी से है, उन्होंने नहीं कहा कि हमें उम्मीद समाजवादी पार्टी से, आज उनको न्याय मिला। इसलिए इनको तकलीफ है, इसलिए एसटीएफ से नाराज होते हैं, इसलिए यूपी पुलिस पर गालियां बकते हैं, क्योंकि यूपी पुलिस अपराधियों का सफाया कर रही है। यूपी पुलिस के नेतृत्व में जो कार्रवाइयां हुई हैं उसमें अति गैंग का सफाया हुआ, यह समाजवादी पार्टी का दर्द है। यूपी पुलिस की कार्रवाई में मुख्तार गैंग का सफाया हुआ, यह समाजवादी पार्टी का दर्द है। यूपी पुलिस की कार्रवाई में मुकीम काला और तमाम सारे अपराधी नेस्तनाबूद हुए, यह समाजवादी पार्टी का दर्द है। आरोप तो ये हमेशा लगाते हैं। आपको अगर याद हो तो कोविड के टाइम में जब पूरी दुनिया महामारी से जूझ रही थी और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लोगों से अपील की कि आपको टीका लगवाना चाहिए,
0: तो ये बात भी तो सच्चाई है।
2: क्या स्टेटमेंट दिया था साहिल भाई?
0: आपको पता है कि फॉर्म 6 क्या होता है, फॉर्म 7 क्या होता है? सवाल ये भी उठाया गया कि फॉर्म 7 के जरिए समाजवादी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव कह रहे थे कि फॉर्म 7 के जरिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुन चुन कर जो समाजवादी पार्टी के वोटर है वो कैसे निकाल रहे थे, और इसी की वजह से हमारे मन में संदेह पैदा होता है कि जो बीएलओज है वो आपके लिए काम कर रहे हैं, जो चुनाव आयोग जो है वो जानबूझकर कुछ गड़बड़ी कर सकता है, और उसके बाद फॉर्म 6 के जरिए जो अभी नए नाम उसमें डाले जाएंगे, और थोड़ी देर पहले आपने सुना अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि 84 लाख जो नाम नए जुड़े हैं फाइनल ड्राफ्ट में वो कहां से आए उनको नहीं पता है बोल रहे हैं वो, तो संदेह का माहौल इसके वजह से है कहीं ना कहीं।
2: साहिल भाई आपने डेटा दिया ना कि 2 करोड़ नाम कटे हैं आपने। अनुराग भाई दिमाग सुन लीजिए भाई, आप पता नहीं कहां छुप के, ये समाजवादियों की आदत है छुप छुपा के रहते हैं, और जब नेटवर्क नहीं आता तो सरकार को दोष देते हैं, हरकतें ऐसी छुप के रहना पड़ता है, ऐसी जगह आप खुद ही रहते हो जहां नेटवर्क नहीं आता। अब सुन लो भैया, अरे कृत्य ऐसे हैं, आपके कृत्य ऐसे हैं कि छुप छुपा के रहना पड़ता है, वारंट ऑन होगा आपका, छुपे होंगे कहीं, सुन लीजिए मेरी बात साहिल भाई। सुन लो साहिल भाई, अरे छुप छुपा के रहते हो, वारंट होता है आप लोगों का। साहिल भाई आपने कहा 2 करोड़ वोट काटे गए, आप मुझे बताइए कि एसआईआर की प्रक्रिया हुए लगभग चार महीने बीत गए। अब 4 महीने बीत गए, इन 4 महीनों के दौरान आप मुझे समाजवादी पार्टी की तरफ से एक नाम बताइए कि जो इन्होंने कहा हो कि गलत काटा गया हो। 2 करोड़ नाम कैसे कटे? जो फर्जीवाड़ा ये लोग करते थे, तमाम सारे फर्जी वोटर इन्होंने बना रखे थे, कोई रह रहा है दुबई में उसका वोट बना रखा है, कोई रह रहा है सऊदी में, तो फॉर्म 7 इसलिए जरूरी था क्योंकि फर्जी वोटिंग ये कराते थे समाजवादी पार्टी के लोग। और ये 2 करोड़ जो नाम काटे गए साहिल भाई, उनमें से एक भी नाम लेके आज तक ये नहीं आ पाए कि हाँ ये इसका क्लेम बनता है, इसका वोट होना चाहिए। आज 4 महीने मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बता दी समाजवादी पार्टी की तरफ से जो इन्होंने की हो कि भाई हमारे इस व्यक्ति का नाम काटा गया, इसका नाम जुड़ना चाहिए। दूसरी बात, आपने फॉर्म 6 का जिक्र किया, ये तो राइट है, ये तो एसआईआर की प्रक्रिया आपको पता है हर वर्ष होता है, हर पूरे देश में होता है। 20 साल पहले जब एसआईआर हुआ था तब भी एसआईआर आया था। तो फॉर्म 6 में अगर कोई गलत नाम जुड़ेगा तो बूथ लेवल एजेंट सबकी पार्टी के पास है, कांग्रेस के पास भी है, सपा के पास भी है, बीजेपी के पास भी, सबके पास है, ये कहने का अधिकार है कि भाई ये गलत नाम जुड़ रहा है। तो आप पहले इतना डरे हुए आपके कृत्य ऐसे हैं, आपकी कारस्थानियां ऐसी हैं। उत्तर प्रदेश में लोग समझ चुके हैं कि आपको लाना मतलब उत्तर प्रदेश
0: का 1,57,631
2: 5 सेकंड। समाजवादी पार्टी को पता है इनके कृत्य ऐसे हैं कि इनको लेकर जनता डरी हुई है कि भैया कहीं समाजवादी बताएं, वरना अतीक अहमद मुख्तार अंसारी पैदा होना शुरू हो जाएंगे, उसकी फैक्ट्री है ये लोग। और इसलिए इस दहशत में कि चुनाव हारने जा रहे हैं, पहले ही चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ दो, पहले ही भाजपा पर ठीकरा फोड़ दो, पहले प्रक्रिया पर ठीकरा फोड़ दो,
0: ये राजनीतिक सवाल उठाया गया था हमारे सवालों में और खुद के डर से, ये भी एक सवाल कहीं ना कहीं बनता है। लेकिन उसके पहले अनुराग भदौरिया, 1,57,631 आपके बीएलए वहां पर थे, यानी बूथ लेवल एजेंट समाजवादी पार्टी के, बीजेपी के बाद हाईएस्ट बूथ लेवल एजेंट आपके थे। उसके बावजूद आपने तो पूरा ध्यान रखा होगा, 166 दिन आपको मिले हैं करने के लिए। बंगाल जैसा नहीं हुआ कि घाई गड़बड़ी में फटाफट करवा दिया गया, फिर भी आपको लगता है कि गड़बड़ है।
1: देखिए मैं बिल्कुल इस पे जवाब दूंगा, उन्होंने दूसरी बात भी कही थी, वो कानून व्यवस्था पे सवाल उठा रहे थे। सरकार आपकी, आपकी सरकार में अंकित बालियान को सरेआम गोली से उड़ा दिया जाता है तो आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या काम करता है? उसके बाद आप कहते हो हमने इनकाउंटर कर दिया। अरे एक व्यक्ति का, ये किसी का पति चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी की बहन का चला गया, आप उसके पहले बदमाशों को पकड़ लेते तो कम से कम वो अंकित बालियान बचता तो सही। आप व्यक्ति चला जाता है उसके बाद आप जगते हो। इसी तरह धीरेंद्र प्रताप सिंह की हत्या अभी लखनऊ हुई कि नहीं, तो आपके यहां हत्याएं हो रही हैं, हत्या के बाद अब इनकाउंटर की सोचते हो। अगर ये काम पहले ही कर लो, आपका पहले ही आप बदमाशों को पकड़ लो तो कम से कम किसी के बच्चा तो बचेगा। इसलिए आपके यहां कानून व्यवस्था मत पूछिए, अभी हम गिनाने लग जाएंगे मेरठ से लेके उन्नाव से लेके यहां पे सारी घटना, अगर हम जौनपुर से लेके आईपीएस की मां तक का मर्डर हुआ है, आपको पता होगा अंबेडकर नगर में एक आईपीएस है ना आशुतोष मिश्रा जी, उनकी मदर का यहाँ पे हत्या हुई कि नहीं हुई? सवाल है आपके आईपीएस की मां भी सुरक्षित नहीं है और मुझे कहानी आप दिखाने आए हो? आप अपने यहाँ झांक के देंगे गिरवान में? जब पुलिस वालों के परिवार सुरक्षित नहीं होंगे तो हमारे यहाँ हम आप सुरक्षित कैसे हो सकते हैं? इसलिए आप कानून व्यवस्था की बात मत कीजिए, आपकी कानून व्यवस्था की पोल खुली हुई है और 2000 यहाँ पे 2023 का डाटा देख ले तो महिला अत्याचार में आप नंबर वन है, इसलिए बोलिए मत ज्यादा। दूसरी बात, अब आपको मुद्दे पे बात आ रहा हूँ। मुद्दे की बात है कि इन्होंने 2,15,00,000 वोट इन्होंने कहा या तो शिफ्ट हो गए या पते पे नहीं मिले। अरे भैया ये बताइए उसमें से कितने पते पे नहीं मिले भाई? इस देश के अंदर में, उत्तर प्रदेश के अंदर में आपने रोजगार तो दिया नहीं, रोजगार पाने के लिए दूसरे जगह जाते हैं, वो दूसरे प्रदेशों में उन्हें जाना पड़ता है रोजगार के लिए। जब वो रोजगार के लिए दूसरी जगह जाते हैं तो 6 महीने में लौटते हैं ना या 7 महीने में लौटते हैं, तो आप उनका इंतजार आपको करना चाहिए ना साल भर डेढ़ साल। इसीलिए कहते हैं SIR की प्रक्रिया कम से कम 2-1 साल की होनी चाहिए। अब जो बाहर अपने रोजगार करने गया वो अपने घर पे नहीं मिला तो आपने उसका नाम काट दिया। अरे भैया वो अपने बच्चे पालने के लिए, खुद को पालने के लिए बाहर रोजगार के लिए जाता है, आपने कहा पते पे मिला नहीं। अरे आप इंतजार किया क्या आपने? कितने लोग तो जो पते पे नहीं मिले और कितने लोग तो जो शिफ्ट हो गए, सवाल ये नहीं है। सवाल
0: है इंतजार किया गया है।
1: मैं कह रहा हूँ देखिए देश की बात है, अगर आप तो अगर इस प्रक्रिया को अच्छी तरह से करना है तो साल भर चाहिए, क्योंकि लोग छुट्टियों में अपने घर आते हैं, होली दिवाली का त्योहार होता है, अपने घर लौटते हैं उस समय, उसके पहले ही आपने देखा कि कौन कौन है, जल्दी जल्दी आपने वोट से उनका नाम हटा दिया, तो सवाल उठता है।
0: तो अभी इसीलिए तो SIR किया जा रहा है।
1: सीधा सा एग्जांपल, इसका सीधा सा
0: ये जो रिवीजन अभी होगा, समरी रिवीजन किया जाएगा, जो SIR किया जाएगा उसके जरिए फॉर्म नंबर 6 से भरवा लीजिएगा उनके नाम।
1: तो
0: एक मौका और है आपके लिए, तो चुनाव तो मार्च में होंगे ना अगले साल,
1: तो हम भरवाएंगे,
0: आपके पास अभी भी समय है।
1: लेकिन इनकी मंशा पे शंका है ना, इनकी मंशा तो ठीक नहीं है। पश्चिम बंगाल में आपने देखा क्या किस तरह से उन लोगों का 27-28 लाख लोगों के वोट काट दिए? मैंने बोला ना एक विधानसभा में 14,000 वोट काटे और 400 वोटों की हो रही है, तो कैसे आप इन पे विश्वास कर लिया जाए बताइए आप?
0: तो जरा एक बात बता दीजिएगा अनुराग जी, पश्चिम बंगाल आज जो 75 जिलों से आपके यहाँ लोग आए हुए थे उनको क्या काम दिया गया है? नहीं नहीं वो 75 जिले से जो लोग आए थे उनको क्या काम दिया गया है फॉर्म 6 भरवाने के लिए? नहीं सुनिए तो फॉर्म 6 फॉर्म हाँ। अरे सुन तो लीजिए फॉर्म, आपका नेटवर्क आने के बाद आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं, आप जरा सुन लीजिए ना एक सेकंड। मैं ये कहने की कोशिश कह रहा हूँ कि फॉर्म नंबर 6 भरने के लिए काम दिया गया है या फॉर्म नंबर 7 भर के नाम कटवाने का काम दिया गया या सिर्फ नजर रखने का काम दिया गया है? क्या काम क्या दिया
1: गया? देखिए समाजवादी बहुत चौकन्ने हैं आप, बूथ बूथ पे, जिले जिले पे, और समाजवादियों के साथ उत्तर प्रदेश की जनता भी बहुत चौकन्नी हो गई है। वो जानती है कि भारतीय जनता पार्टी खेला करने में माहिर है, तो इनका खेल अब होगा नहीं, इनका खेला हो जाएगा इस बार 2027 में। जो ये प्रक्रिया अपनाते थे ना, वोट काटना, वोट डालने नहीं देना, वोटों को डराना धमकाना, इस बार उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक हो चुकी है, समझ चुकी है इनके हथकंडे, अब 2027 में
0: जवाब है। उसके बाद मैं अनिल यादव जी के पास चलूंगा। चलिए शलभमणि,
2: अब देखिए साहिल भाई, आपने बंगाल का चुनाव जब खत्म हुआ आपने एक बदली हुई तस्वीर देखी होगी कि जब बंगाल का चुनाव खत्म हुआ उसके बाद से कितनी बड़ी लाइन बांग्लादेश के लिए निकल पड़ी। आपने वो तस्वीर देखी कि नहीं देखी? दुनिया ने देखी कि बांग्लादेश के लिए निकल पड़ी। ये उसके लिए परेशान है। कुल 27 लाख से ज्यादा, यानी 27 लाख से ज्यादा मतदाता हटाए गए, जिनमें से केवल 82,000 का मामला ट्रिब्यूनल के समक्ष है। कहां 27 लाख? ये 27 लाख के लिए परेशान है जो बांग्लादेशी थे, जो विदेशी थे,
0: उनमें मतलब 27 लाख में से 82,000 जानकारी गलत नहीं जानी चाहिए। नहीं एक मिनट, जानकारी गलत नहीं जानी चाहिए, मैं आपको क्लैरिफाई कर, नहीं नहीं जानकारी गलत नहीं जानी चाहिए शलभ मणि जी, जानकारी गलत नहीं जानी चाहिए, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। जो लाइनें आपने बांग्लादेश की सीमा पर देखी है ना, उसी तरीके से ट्रिब्यूनल के सामने भी लंबी कतारें हैं। 27 लाख वोटर जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में कटे हैं,
2: तो
0: 9 ट्रिब्यूनल्स बनाए गए थे, उन 9 ट्रिब्यूनल्स में मई महीने के बाद केवल 83,000 अब तक हो चुका है, अब तक 83,000 हो चुका है। इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ 83,000 हुए, सिर्फ 83,000 ही अब तक हो चुके हैं, बाकी के भी जब हियरिंग होगा तब इमेजिन करिए कितने नाम लौट के आ सकते हैं।
1: बांग्लादेशी ये बात ठीक है।
0: शलभमणि जी जवाब
2: मुझे बोल रहे आप बताइए, आप बताइए ऐसे यार की प्रक्रिया हुए, देखिए इनका सब सामने आ रहा है, बौखला रहा है, इनको शांत कराइए, बांग्लादेशियों के लिए परेशान नहीं है, इनको शांत कराइए साहिल भाई, आप मुझे बताइए, नहीं आप इनको शांत कराइए, पहले इनको शांत कराइए। देखिए देखिए 27 लाख के आसपास वोट करते, आप खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। देखिए बांग्लादेशियों के लिए परेशान है, देखिए बांग्लादेशियों के लिए परेशान है जो भाग रहे हैं, जो बंगाल छोड़ के भाग रहे हैं उनके लिए 27 लाख नाम काटे गए साहिल भाई, 27 लाख नाम काटे गए, ट्रिब्यूनल दरवाजा खोल कर खड़ा है और 27,000 के आसपास लोग सामने आए हैं। आप दोनों का डेटा मैच कर लीजिए, नहीं आप टोप नहीं रहे हो, आप किसके लिए परेशान हो पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है आप किसके लिए परेशान हो, पूरा देश जानता है कि आपके साहिल भाई को रोकिए, साहिल भाई की बात सुनिए, साहिल भाई
0: एक आंकड़ा आपके सामने रखता हूँ। देखिए ये चर्चा क्यों हो रही है, मैं आपको कारण बताता हूँ ना उसका, और एक आंकड़ा बताता हूँ। मालदा जो सीमावर्ती इलाका है और 24 परगना, इन दोनों इलाकों में जो एक जमाने में टीएमसी का गढ़ हुआ करता था, वहां पर जितने नाम कटे हैं 100% नाम ट्रिब्यूनल के सामने हियरिंग के बाद दोबारा जोड़ दिए गए और वहां पर मार्जिन 10,000 वोटों का है। अब आप सोचिएगा विपक्षी जो पार्टियां हैं उनकी दिल की धड़कनें बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी इसके बाद, ये सब सुनने के बाद।
2: अब आप मेरा जवाब सुन लीजिए, उनको शांत करा दीजिएगा। कितने वोट कटे? 27 लाख वोट कटे। और ट्रिब्यूनल दरवाजा खोलकर बैठा है, कितने लोग वापस आ रहे हैं? 82,000 के आसपास जो आप आंकड़ा बता रहे हैं, न कागज दिखा पाए न दस्तावेज दिखा पाए, और कहां 27 लाख की संख्या जो आज तक वापस नहीं लौटे। मैं कहता रहा हूं अभी तक, हाँ दरवाजा खोल के बैठा है। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी कानपुर में गिरफ्तार हुए और जहां तक मेरी जानकारी है सजा हो चुकी है। क्यों गिरफ्तार हुए? बांग्लादेशियों को बनाया, बांग्लादेशियों को वोटर बना दिया, कानपुर के अंदर गिरफ्तार हुए, सदस्यता चली गई, उनकी पत्नी को चुनाव लड़ाना पड़ा। यह है समाजवादी पार्टी कि बांग्लादेशी को कानपुर में लाकर वोटर बना दिया। इनकी तकलीफ इस बात को लेकर है, दर्द इस बात का है। इरफान सोलंकी ने क्या किया पूछिए जरा इनसे, कि बकायदे बांग्लादेशियों को हजारों की संख्या में लाकर कानपुर में वोटर बना दिया। इसलिए इनको दर्द होता है कि बांग्लादेशियों को खदेड़ा क्यों जा रहा है, बांग्लादेशी क्यों बाहर भाग रहे बंगाल से, तो ये इनका चरित्र है। ऐसा यार से इसलिए घबराहट है, ऐसे यार से घबराहट है। इरफान
0: जो महाराष्ट्र गुजरात और अलग अलग राज्यों में जाकर रोटी के लिए काम कर रहे हैं या दिल्ली, उसमें प्रवासी उत्तर प्रदेश के लोग कितने हैं और बांग्लादेशी कितने हैं, उसका आंकड़ा भी आना चाहिए कहीं ना कहीं। क्या जो 2 करोड़ नाम कटे हैं 166 दिनों के बाद में, क्या उनके नाम जिस तरीके से कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में कि आप डिटेक्ट करने के बाद डिलीट कर दीजिएगा और डिपोर्ट कर दीजिएगा, कितने डिपोर्ट हुए हैं? सारे तो बांग्लादेशी नहीं है, बांग्लादेश तो सवाल उठता है शलभ बनी जी।
2: लेकिन बांग्लादेश, साहिल भाई बांग्लादेश के बॉर्डर पे जो लाइन लगी है वो अपने आप में प्रमाण है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी के विधायक जो गिरफ्तार हुए और सजायाफ्ता हुए बांग्लादेशियों को वोटर बनाने में,
0: तस्वीरें और आंकड़े,
1: झूठ बोलना बंद कीजिए,
0: तस्वीरें और आंकड़े बहुत जरूरी होता है।
2: नंबर आपके 27 लाख,
0: लेकिन आज की स्थिति में
1: आपने नाम काटे,
2: आंकड़े जो तस्वीरें हैं उनसे प्रमाण क्या होता है
0: हाल ही में
2: जो तस्वीरें हैं उनसे।
0: लेकिन एक सवाल विपक्ष के पास जाना बहुत जरूरी है,
2: जो हार रहे हैं,
0: जो वोटर लिस्ट डिलीशन का मुद्दा जो कांग्रेस पार्टी ने बिहार के भीतर सबसे पहले उठाया था, एक मिनट, वोट चोरी का मुद्दा सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने उठाया था।
2: चुनाव के बाद
0: कांग्रेस पार्टी ने बिहार में इसके इर्द गिर्द पूरी तरीके से कैंपेन भी की। हरियाणा चुनाव के बाद भी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसी मुद्दे पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। महाराष्ट्र के भीतर भी वोट एडिशन का मुद्दा उसमें जोड़ा गया था। लेकिन हाल ही में हमने एक सर्वे कराया था मूड ऑफ द नेशन का, उसमें हमने सवाल पूछे थे एसआईआर को लेकर, जरा वो सवाल हम आपको दिखा देते हैं अनिल यादव जी, उसके बाद आपसे ही सवाल पूछेंगे। देखिए विपक्षी पार्टियां अभी भी एसआईआर पर लगी हुई है। हमने सवाल ये पूछा था मूड ऑफ द नेशन में, वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए एसआईआर कितना जरूरी है? 60% लोग मान रहे थे हाँ जरूरी है, वोटर लिस्ट पे सुधार करने के लिए एसआईआर जरूरी है, 60% लोगों का यह मानना था कि वो जरूरी है। दूसरा सवाल यह पूछा गया था जो इसी मूड ऑफ द नेशन के सर्वे में जो पूछा गया था, दूसरा सवाल भी हम आपको दिखा देते हैं। दूसरे सवाल में यह पूछा गया था चुनाव आयोग में क्या विश्वास बढ़ा या घटा, बढ़ा कहने वाले 43%, घटा कहने वाले 38%, अंतर नहीं है कहने वाले 9% है, यानी कुल मिलाकर चुनाव आयोग को लेकर 50-50 लोग यहां पर नजर आते हैं। लेकिन अनिल यादव जी, सबसे बड़ा सवाल आज की स्थिति में यही रहता है, और एक सवाल जो हमने पूछा था कि दरअसल क्यों ये जरूरी है एसआईआर की प्रक्रिया, तो बोगस वोटर्स को निकालने के लिए जरूरी है, अमूमन लोगों ने इस बात का जिक्र यहां पर किया हुआ है। तो अनिल यादव जी, क्या अब एसआईआर का मुद्दा चुनावी मुद्दा बन सकता है क्या? आपने बिहार में ट्राई करके देख लिया, बंगाल के भीतर भी आपने ट्राई करके देख लिया।
3: जी सबसे पहले तो आपको और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, लेकिन आप दो बातों को कंफ्यूज कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई एफआईआर जरूरी है या नहीं है, फर्जी वोटर कटने चाहिए नहीं कटने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, एफआईआर भी जरूरी है, फर्जी वोटर करने कटने भी चाहिए, लेकिन जिस प्रक्रिया के तहत ये किया जा रहा है, क्या उसमें फर्जी वोटर कट रहे हैं या असली वोटर कट रहे हैं? अभी आपने तथ्यों के सामने बंगाल की पूरी घटना का जिक्र कर दिया कि 27 लाख लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया चुनाव में, और अब जब ट्रिब्यूनल के सामने जब वो जाते हैं तो उनमें से 83,000 की जांच हुई है और उसमें से 91% सही पाए गए हैं। तो जो 91% जिनका जो मूल अधिकार है वोट डालने का, वो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग की मदद से छीन लिया, तो उसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? और एक बात और, ट्रिब्यूनल को 5-6 महीने लग गए हैं 83,000 वोट चेक करने में, 27 लाख वोट चेक करने में मुझे लगता है 2 सरकारें लग जाएंगी। तो इसका मतलब जनता को तो सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है। और जहां तक आप बार बार कह रहे हैं कि भाई फॉर्म 6 के तहत जो है वोट भरने का अधिकार है, फॉर्म 7 के तहत कटवाने का अधिकार है, एसएआर होना चाहिए, ये उनका अधिकार है, आप समझ ही नहीं रहे हैं खेल को। अधिकार जरूर, भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी गलत करने के लिए किसी अधिकार की जरूरत थोड़ी है, इनको कोई कायदा कानून थोड़ी चाहिए कोई चीज गलत करने के लिए। अब ताजा उदाहरण देखिए ना, उत्तराखंड में क्या हुआ। आज से पहले जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो हम क्या सुनते थे कि किसी व्यक्ति पर एससी एसटी का मुकदमा इसलिए दर्ज हो गया क्योंकि उसने दूसरे व्यक्ति के साथ जातीय में भेदभाव कर दिया। पहली बार ऐसा हुआ है कि राहुल गांधी खड़गे साहब जो कि दलित जाति से आते हैं, उनका अपमान हुआ, उनको अछूत घोषित करने का भारतीय जनता पार्टी के प्यारे न्यारों ने प्रयत्न किया, और उनके सम्मान में कह रहे हैं कि भाई जिन्होंने ये कराया उस पे एफआईआर की जाए, उस पे एससी एसटी के तहत मुकदमा कराया जाए। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि उल्टा इस बात को कहने पर राहुल गांधी पर एससी एसटी का मुकदमा लगा दिया गया है। कोई कानून भी नहीं है ऐसा उस तरीके से, लेकिन इनको अपनी मर्जी चलाने के लिए कोई कानून की जरूरत नहीं है, ये साबित हो गया। दूसरी, अब जहां तक बात है कि एसएआर में क्यों कटवाएंगे ये वोट, देखिए एसएआर ये वोट कटना जो है ये पहली बार तो हो नहीं रहा है। हरियाणा में हमने देखा, ये कह रहे हैं कि भाई कहां थी कांग्रेस, कांग्रेस ने, हमने तो तथ्यों के साथ पेश किया है, हरियाणा में ब्राजील की मॉडल का नाम आ गया बताइए वोट डालने के लिए, उसके बाद ये मानने को तैयार नहीं। चुनाव आयोग ने हमें जवाब दिया क्या? एक एक बूथ पर हमने बकायदा,
0: इसीलिए तो चुनाव आयोग ने कहा कि हम एसआईआर करा रहे हैं, जो बोगस वोटर्स के नाम इसमें घुसाए जा रहे हैं उसको हटाने के लिए तो एसआईआर की प्रक्रिया की जरूरत है। चुनाव आयोग को जब यह सवाल पूछा गया, उनके तरफ से यही कहा गया कि जब हम एसआईआर करते हैं तो उस पर सवाल खड़े करते हैं, और लोग तो ये मानते हैं कि बोगस वोटर्स हटाने के लिए एसआईआर करना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश के भीतर भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का एप्लीकेशन किया गया था, उत्तर प्रदेश के भीतर भी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कहीं
3: थे साहिल जी, बंगाल में जब ये वोट काट रहे थे तब ये थोड़ी कह रहे थे कि हम भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए वोट काट रहे हैं, तब भी कह रहे थे कि बोगस वोटर को हटाने के लिए काट रहे हैं, लेकिन हुआ क्या, 91% लोगों का अधिकार मार लिया ना। हमारी चिंता यही तो है, हमने हरियाणा में बूथ नंबर के साथ बताया कि आपके एक एक बूथ पर 20% एक ही नाम के व्यक्ति के वोट है, एक मकान पे 500-500 से ज्यादा वोट है, तथ्यों के साथ बताया, लेकिन उसके बाद चुनाव आयोग ने हमें जवाब नहीं दिया।
0: अब देखिए बंगाल का तो उदाहरण दिया जा रहा है,
3: हमारा तो काम है जनता को बताएं,
0: और ये बात मुझे उत्तर प्रदेश में पार्टियों से पूछनी है, क्योंकि बंगाल के भीतर एक आरोप ये भी लगाया गया था उत्तर जी, जी आपकी बात खत्म करिए, मुझे राघवेंद्र जी के पास जाना है जी।
3: अब आप ये जानिए कि ये कर क्यों रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में इनकी हैसियत नहीं है दोबारा सरकार में आने की, तो एसआईआर एकमात्र इनका माध्यम है जिससे कि अपने वोटर्स को जोड़े और जो विपक्ष के वोटर उनको काटे। क्योंकि आपने देखा ना, अभी हमने बताया कि ये अभी सल्ब जी कह रहे थे कि भाई शामली के सिंगर को जो जिसने मारा हमने एनकाउंटर कर दिया, दो तो जो अपराधी थे जिन्होंने मर्डर किया उसका, वो विदेश पहुंच गए हैं, ये क्या बात कर रहे हैं। एक बच्ची मैनपुरी में अपने घर से चढ़ती है और यहां पर पूरी बस में उसके साथ
0: कुल मिलाकर
3: इस तरह की घटना उत्तर प्रदेश में घटती है, और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लखनऊ में लूट हो गई, अभी उन्नाव में उद्योगपति को गोली मार दी।
0: बंगाल के भीतर तो नहीं, एक मिनट अनिल यादव जी, हम मुद्दे पर रहेंगे। मेरा ये कहना है कि बंगाल के भीतर तो उदाहरण दिया जा रहा है, बंगाल के भीतर तो मालदा और 24 परगना का भी उदाहरण सामने रखा जा रहा है, बंगाल के भीतर तो यह भी उदाहरण रखने की कोशिश हो रही है कि देखिए 100% नाम वापस लिए गए हैं ट्रिब्यूनल के सामने सुनवाई होने के बाद में। उत्तर प्रदेश के भीतर भी आरोप करने से पहले, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया 166 दिनों में पूरी हुई है, 2 लाख से ज्यादा आपके और समाजवादी पार्टी के मिलाकर करीब करीब उतने बीएलए सड़क पर उतरे हुए थे, बीएलओ के साथ घूम रहे थे, उनकी निगरानी में यह प्रक्रिया पूरी हुई है। उसके बाद कुछ तो आप एविडेंस लेकर सामने आएंगे ना, वहां पर कम से कम तृणमूल कांग्रेस एविडेंस लेकर ट्रिब्यूनल के सामने जाने की कोशिश कर रही थी कि देखिए इनके नाम तो ऐसे ही काटे गए हैं, कोई तो एविडेंस लेकर आप सामने आएंगे। दूसरा एक आरोप राघवेंद्र द्विवेदी बार बार ये लगाया जाता है, जो समाजवादी पार्टी लगा रही है, कि पीडीए यानी पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक जो इनके वोटर है, ये मानते हैं कि ये इनके वोटर है सिर्फ, तो उनके नाम काटे जाने हैं। क्या आपको भी यही अनुभव है? क्या आपको लगता है कि उनके लिए ज्यादा मुश्किल है एसआईआर के भीतर, या आप संतुष्ट है एसआईआर की प्रक्रिया से पूरी तरीके से?
4: देखिए साईं जी, समाजवादी पार्टी के लोग कंफ्यूजन में हैं। जिस समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने पिता पे भरोसा नहीं था, मंच पे माइक छीन लिया, जिस समाजवादी पार्टी के अपने चाचा पे भरोसा नहीं था, चाचा को पार्टी से किनारे कर दिया, जिस समाजवादी पार्टी के लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस पे भरोसा नहीं है, आज एसटीएफ पे भरोसा नहीं है, चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में इनका जनाधार खत्म हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं आज तक के चैनल पर ये मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं कि ये लोग सर्वे करा चुके हैं और हार का एक वाजिब ठोस कारण खोज रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जनता इनको बता चुकी है कि जिस तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगे में जलते थे और सैफई में लोग नाच कराते थे, आज योगी जी की सरकार में अगर कोई अपराधी अपराध करता है, वैसे मैं आपके आज तक पे एक बार और बता दूं कि उत्तर प्रदेश में किसी अपराधी की इतनी हैसियत नहीं है कि हम उत्तर प्रदेश में अपराध कर दे। अपराधी आया, बाहर से आया, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया। अब देखिए एनकाउंटर में भी ये जाति देखते हैं और एनकाउंटर करने वाले का भी जाति देखते हैं। ये जाति में बांटने वाले लोग कभी पीडी से पंडित कहते हैं, कभी पी से पिछड़ा कहते हैं, कभी डी से दलित कहते हैं। जो व्यक्ति 12 बजे सो के जगता हो, 2 बजे पीसी करता हो, वो मदांध व्यक्ति। पल्लवी पटेल ऐसा आदमी जिसको सिंबल दिए थे गठबंधन में, पल्लवी पटेल इन्हीं की पार्टी की विधायक है, वो कहती है कि मदांध हो गए अखिलेश यादव जी।
0: राघवेंद्र जी सारा चीज एक ही जवाब में दे देंगे तो दोबारा आपके पास आने का मौका ही नहीं मिलेगा। राघवेंद्र जी, मैंने सवाल आपसे पूछा है कि जो पीडीए है, जो नाम काटने की कोशिश हुई है, जो समाजवादी पार्टी का आरोप है कि पीडीए के जो नाम है वो काटे जाते हैं, जो इनका वोट बैंक है, क्या आपको लगता है कि सचमुच में एसआईआर के भीतर इस तरीके से नाम कटे हैं? क्या आपको लगता है कि इस तरीके से नाम कटे? ये मेरा सवाल है आपसे।
4: साहिल जी ऐसा कुछ नहीं है, ये आरोप पिछली बार 2022 के भी विधानसभा चुनाव में लगाए थे। अभी जैसे बड़े भाई सलत त्रिपाठी ने बताया कि कूड़े के ढेर में परेशान करते थे, अधिकारियों को परेशान करते थे, तो इनका काम केवल सरकारी काम में बाधा डालने का।
5: जवाब ले लीजिए,
4: ये कालनेमी है, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे वो चुनाव के नाम पे हो, चाहे वो जाति के नाम पे हो, चाहे वो आरक्षण के नाम पे हो, जब जब जनता की बात आती है,
0: जरा एविडेंस दे दीजिएगा अगर आपके पास है तो, कि आप ही के वोटर काटे जाते हैं उसका कोई एविडेंस है तो दे दीजिएगा। अभी
5: बिल्कुल आपको एविडेंस मिलेगा, मुझे बोलने दीजिएगा। देखिए अभी प्रवक्ता महोदय दुनिया भर की लंबी लंबी बातें बता रहे थे। 2022 में जब मेरे साथ मिलकर राजभर जी लड़ रहे थे ना, तो मुख्यमंत्री को क्या क्या बोलते थे, अगर बाइट चला दोगे तो डिबेट छोड़ के भाग जाएंगे। लेकिन हम वो शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते क्योंकि हम लोग समाजवादी लोग हैं, थोड़े संस्कारी हैं। क्या क्या उन्होंने बोला था 2022 में, सवाल ये नहीं हो, हमारे साथ मिलकर लड़े इसलिए विधायक भी बन गए, नहीं तो अब तक विधायक भी नहीं बनते। धन्यवाद दीजिए समाजवादी पार्टी को, आप मंत्री तक पहुंच गए।
0: सवाल ये ऐसे व्यक्तिगत टिप्पणियों से ना पूरा माहौल बिगड़ जाएगा। और भारतीय राजनीति में ना कौन किसका पार्टनर था वो ढूंढने चले जाएंगे तो मामला पूरा बिगड़ जाएगा।
5: अरे उन्होंने व्यक्तिगत की थी इसलिए मैंने व्यक्तिगत किया, हाँ उस बात को छोड़ दें, उनको छोड़ना चाहिए था ना।
0: चले ठीक है, हो गया हो गया, चलिए हो गया हो गया।
5: सवाल ये है कि ये पीडीए की बात करने से डरने लगे, अब सत्ता की मलाई खाना, सत्ता की चाय पीना राजभर जी को इतना अच्छा लगने लगा कि अब पीडीए भूल गए, पिछड़ों की बात करने में इनकी जीभ कपने लगी, लहराने लगे, हो करने लगे। मतलब पीडीओ के न्याय की बात, पीडीए के न्याय की बात नहीं कर सकते? अरे हम तो डंकी की चोट पे कहते हैं जो पीड़ित
0: तो एविडेंस बताइए ना,
5: पीछे पीड़ित सुनिए ना, पीछे पीछे।
0: अब देखिए तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि मालदा और 24 परगना में क्या हुआ,
5: बिल्कुल
0: ट्रिब्यूनल के सामने लेकर गए, आप भी एविडेंस रखिए ना।
5: बिल्कुल आपको, आपने हमने तो कई एविडेंस दिए भाई, कई एविडेंस दिए, एफिडेविट के साथ दिए हमने, भेजे हैं, और हमने ये भी बताया कि जिसको सिग्नेचर नहीं करना आता तो उसे साइन करा के इन्होंने अपने से भेजे होंगे, हमने तो प्रूफ के साथ दिया है। आपने देखा सिग्नेचर करना जिसको नहीं आता उसका सिग्नेचर करवाया इन लोगों ने, सोचो जिसको सिग्नेचर करना नहीं आता व्यक्ति सिग्नेचर कैसे कर देगा, वो चंगुठा लगाता है, सवाल है इनकी
0: नहीं, तो आपकी शिकायत क्या है? पीडीए के नाम काटे हैं वो शिकायत है, या गलत नाम जोड़े गए वो शिकायत है? आपकी शिकायत एक बार जरा फाइनल बता दीजिए मुझे। पीडीए के नाम काटे हैं तो उसका एविडेंस बताइए, गलत नाम जोड़े हैं तो उसका एविडेंस बताइए।
5: मेरी शिकायत ये है कि मैंने आपको पहले बोला फिर बोल रहा हूँ, 2 करोड़ लोग जिन्होंने जिसको ये बता के शिफ्ट कर गए हैं या पते पे नहीं मिले हैं, उसके बाद इन्होंने उनको उनके जो नाम काटे, बाद में 84 लाख नाम अंततः नहीं जुड़ पाए, तो सवाल उठता है बहुत बड़ा कि आप कौन लोग हैं जिनका आप नाम काट रहे हो। तो ज्यादातर पीडीए के लोग है ना, मेरी शिकायत है।
0: तो जो वो 75 जिलों से आपके कार्यकर्ता आए हैं, उन्हें उन्हें काम तो यही दिया होगा ना, फॉर्म नंबर 6 के जरिए नए नाम जोड़िए, आपने भी तो यही काम दिया होगा।
5: मैंने यही बोला
0: 6 से नाम जोड़िए फॉर्म नंबर 6 से।
5: बिल्कुल बिल्कुल, तो हम लोग तो काम कर ही रहे हैं। ये बताइए, हम लोगों को काम करना पड़ता है इस सरकार में, सरकार मदद करने को तैयार नहीं है, हम लोग जा जाके काम कर रहे हैं।
0: तो भाई वही तो शलभ बनी त्रिपाठी भी अपने तो चुनाव क्षेत्र में कराएंगे ना कहीं ना कहीं, वो भी तो फॉर्म नंबर 6 बैठ के लेके अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे, अपने चुनाव क्षेत्र में नए नए फॉर्म भरवाएंगे, अक्टूबर का महीना आ गया है, वो कराएंगे तो गलत, आप कराएंगे तो सही, ऐसे नहीं हो सकता ना।
5: नहीं नहीं नहीं, वो लोग ये करते हैं, मैंने फिर बताया कि 2 करोड़ वोट काटे ना इन्होंने, बाद में हम लोग 2 करोड़ वोट काटने के बाद आवाज उठी तो 84 लाख कहां से आ गए, नए वोटर और पुराने वोटर इन्होंने जोड़े, वो कैसे जोड़े ये भी तो बताए ना। सवाल
0: शलभ मणि जवाब दीजिए,
5: अपनी मन मर्जी से
0: आप भी तो फॉर्म नंबर 6 भरवा रहे होंगे ना,
5: वो कहां से आए, आपने कैसे जोड़े हैं और नए वोटर उसमें कितने हैं आपके पास?
0: चलिए बताइए, शलभ मणि बताइए।
2: साल भाई इनको शांत करिए,
5: आप सिर्फ
2: साल भाई शांत करिए,
5: एक लाइन पूरी हो जाए, एक लाइन पूरी हो जाए
2: और हो गया भाई, अब चुप हो जाओ, बहुत टाइम ले लिया।
0: चलिए एक लाइन, एक
2: बहुत टाइम ले लिया भाई,
0: एक लाइन पूरी कर रहे हैं,
5: एक लाइन पूरी। मैंने कहा राजभर जी पीडीए पीडीए के पीडीए की बात करने से डरने लगे हैं, पिछड़ों की बात करने से डरने लगे हैं, ये सत्ता की मलाई उन्हें इतनी अच्छी लगने लगी, सत्ता की चाय इतनी अच्छी लगने लगी कि ये अपने लोगों को ही भूल गए। आप न्याय नहीं देना चाहते तो दलित
0: बिछड़ा हुआ पार्टनर सबसे ज्यादा दर्द देता है, ये बात तो बिल्कुल साफ है। राजभर जी आपको छोड़ के चले गए, उसके बाद से सबसे ज्यादा जो चुभ रहा है वो राजभर जी का बयान ही आपको चुभ रहा है। शलभ मणि जी जवाब दीजिए, चलिए शलभ मणि।
2: साहिल भाई ये लोग मोदी जी और योगी जी से क्या लड़ेंगे, ये लोग मोदी जी और योगी जी से क्या लड़ेंगे, ये लोग ओम प्रकाश राजभर जी से नहीं लड़ पा रहे, इनकी हालत खराब है। सुबह सुबह ओम प्रकाश राजभर जी इनको होमवर्क दे देते हैं, पूरे दिन ये नाचते घूमते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी को अपमानित कर ले, बेइज्जत कर ले। ओम
0: प्रकाश राजभर जी
2: किसी के पिता के दम पे नहीं आए,
0: अपने दम पे आए,
2: ओम प्रकाश राजभर जी
5: की हैसियत दिखा दी।
2: मैं चुनौती देता हूँ, मैं चुनौती देता हूँ, साहिल भाई रोकिए मत, रुकिए इनको, साहिल भाई रुकिए इनको, साहिल भाई रुकिए,
5: देखिए
2: ओम प्रकाश राजभर जी,
0: ओम प्रकाश राजभर जी प्लीज प्लीज,
2: मैं देखिए साहिल भाई वर्चुअल जोड़ के आप इस प्रकार मत कराया कीजिए, आप एक गंभीर डिबेट कराते हैं, वो फ्रॉड किस्म के लोग इस प्रकार बोलते हैं।
0: थोड़ा
2: शांत प्लीज, साहिल भाई ये समय लूंगा, मैं फिर पूरा समय लूंगा, साहिल भाई मैं फिर पूरा समय लूंगा।
0: ओम प्रकाश राजभर जी के
2: पिताजी का नाम बता
0: दीजिए,
2: ओम प्रकाश राजभर जी के पिताजी का नाम बता दीजिए,
5: अच्छी बात है,
2: ओम प्रकाश राजभर जी के पिताजी का नाम बता दीजिए।
5: अरे
2: भाई सुनो अनुराग, ऐसे मत करो अनुराग, वरना अगली बात तुम भी नहीं बोल पाओगे, मुझे भी करना आता है ऐसे, नहीं मुझे भी ये करना आता है। साहिल भाई आप इनको चुप कराइए पहले, साहिल भाई इनको चुप कराइए पहले, इनको चुप कराइए, साहिल भाई इनको चुप कराइए, अगर आप चाहते हो साहिल भाई ये ठीक नहीं, आप इस प्रकार से आप इनको मौका दे रहे हैं,
0: शांत हो जाइए।
2: नहीं नहीं
0: आपके बीच में कोई नहीं बोला था, प्लीज ऐसे मत,
2: साहिल भाई
0: ऐसे मत करिए, शलभ मणि को अपनी बात खत्म करने दीजिए, उसके बाद अनिल यादव
2: मुझे पूरा समय दीजिएगा,
0: शलभ मणि जी
2: नहीं आप मुझे पूरा समय दीजिए,
0: बिल्कुल बिल्कुल आप बोलिए,
2: आप मुझे पूरा समय दीजिएगा साहिल भाई,
0: दे रहे हैं।
2: ओम प्रकाश राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर के पिताजी का नाम बता दो, मान लूंगा, चुनौती देता हूं, अपने दम पर आए हैं, कोई परिवारवादी वंशवादी परंपरा से नहीं आए हैं, और इसलिए ओम प्रकाश राजभर जी की जो तीव्रता है, जो आक्रामकता है, वो पूरी समाजवादी पार्टी को परेशान करती है। पूरे दिन नाचते रहते हो आप लोग, ऐसे टीवी पे नाचते रहते हो, चिल्लाते रहते हो, उससे कुछ होने वाला नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आपके दोस्त प्रश्न से पूछे कि भाई अगर वोट कटवाया तो बता दो क्या गलत है, और वोट जुड़वाए तो बता दो क्या गलत है, मतलब वोट कटवाने भी आगे आए, वोट जुड़वाने भी आगे आ रहे हैं, उसके बाद चुनाव आयोग पे सवाल भी उठाना है, क्यों? क्योंकि इनको पता है कि उत्तर प्रदेश ये बुरी तरह खोने जा रहे हैं, बिहार के चुनाव से पहले से हल निकालना चाहिए। और मैं साहिब आप ही से पूछता हूं, 27 लाख नहीं देखिए शांत करा इनको, चुप रहो। अच्छा 27 लाख वोट काटे गए बंगाल के भीतर, आप 82,000 वोटों की बात कर रहे हो, बाकी लोगों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? 27 लाख वोट जो काटे गए साहिल भाई, उन पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? 27 लाख में से 82,000 के सामने आए, आप खुद कह रहे
0: हैं पर लाइन इतनी लंबी लगी है। मैं आपको क्लियर करा दो
2: ट्रिब्यूनल
0: दरवाजा खोल कर बैठा है, लेकिन समय देखिए कितना लग रहा है।
2: 26 लाख वोट कहाँ गए? 26 लाख
0: 19 ट्रिब्यूनल होने के बावजूद भी 19 ट्रिब्यूनल होने के बावजूद भी 3 महीने के भीतर सिर्फ और सिर्फ 83,000 एप्लीकेशंस की सुनवाई हो पाई है। सिर्फ और सिर्फ 83,000 27 लाख एप्लीकेशन उनके सामने पड़े हुए हैं।
2: आप तो मत ऐसा बोलिए,
0: 27 लाख एप्लीकेशन उनके सामने पड़े हुए हैं
2: जी, नहीं
0: सिर्फ 83,000 खत्म हुए हैं अभी तक।
2: 27 लाख में सिर्फ 82,000 अपना सबूत दे पाए हैं। 27 लाख जो वोट कटे उनमें
0: उनकी सुनवाई हो पाई है,
2: तो 26 लाख
0: गलत जानकारी दे रहे हैं।
2: ये बांग्लादेश
0: आप गलत जानकारी दे रहे हैं,
2: जो
0: कृपया कर
2: भूमिका जो है वो सही है, लेकिन
0: सिर्फ 83,000 लोगों का फैसला आ चुका है, बाकी कई लाख लोग अभी भी इस इंतजार में है कि उनकी सुनवाई कब होगी। अभी भी इतने लाख लोग इस इंतजार में हैं कि उनकी सुनवाई कब होगी।
2: SIR
0: 19 ट्रिब्यूनल होने के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है।
2: SIR हो चुका है
0: और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि और ट्रिब्यूनल भरवाइए, जल्दी से जल्दी उनकी कार्यवाही पूरी करिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इस बात को लेकर।
2: लेकिन
3: अब मुझे जवाब देने दीजिए,
2: ये भी तो देखिए ना, रही बात उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में जिन लोगों का जलाधार, अनिल भाई बोल रहे थे अभी अपराधों पर बोल रहे थे, मुख्तार अंसारी जैसे माफिया को बैठाकर पंजाब के भीतर इन्होंने पाला और बकायदे प्रियंका वाड्रा जी बचाती रही, उस मुख्तार अंसारी को पंजाब में छुपा कर रखा जो उत्तर प्रदेश का वांटेड था। आज अपराध पर क्या बोलेंगे आप, लोकतंत्र पर क्या बोलेंगे? इमरजेंसी कांग्रेस ने लगाई, ये गुंडों की पार्टी वाले अमदार भदौरिया ये यहाँ भी अराजकता करते हैं, सड़क पर भी अराजकता करते हैं, टीवी डिबेट में भी अराजकता करते हैं।
0: जो सवाल समाजवादी पार्टी को पूछा वही आपके पास लेकर आता हूं मैं, अनिल यादव। जो सवाल समाजवादी पार्टी को पूछा था वही सवाल आपके पास भी लेकर आता हूं। एक तो सबसे पहले जो 2 करोड़ 2 लाख जो 2 करोड़ नाम कटे हैं वो गलत तरीके से कटे हैं, तो उसका एविडेंस बताइएगा आपके पास क्या है। जो नए नाम जोड़े जाएंगे आपको लगता है गलत तरीके से जोड़े जाएंगे, तो उसके पीछे की आपकी आपकी भूमिका क्या है, क्यों आपको लगता है कि गलत नाम जोड़े जाएंगे, उसका भी कोई एविडेंस होगा तो बताइए।
3: साहिल भाई अभी आपने 4 बार तो कम से कम आपने समझा
0: दिया, ये इलेक्शन स्ट्रेटेजी है।
3: हाँ सुन लीजिए ना, मैं बता रहा हूँ, 4 बार तो आपने समझा दिया और 1 बार मैंने समझा दिया और समझाया भी शलभमणि त्रिपाठी को, जो कि काफी समझदार व्यक्ति हैं, लेकिन बार बार नासमझ बनकर गलत तथ्य दे रहे हैं जिससे कि जनता को भ्रमित कर किया जा सके, बताया जा सके कि भाई कुछ अलग हो रहा है। अरे भैया कोर्ट में मामला चल रहा है, तथ्यों के साथ एक एक बात है और आप पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए। आप कह रहे हैं साहिल जी, मैं आपकी बात पे आता हूं, आप कह रहे हैं कि सबूत दीजिए। अरे भाई मैं कह रहा हूं सबूत किसको दीजिए, दिए ना बंगाल में दिए सबूत, क्या हुआ? चुनाव तो ले गई भाजपा, हमने हरियाणा में दिए सबूत, चुनाव आयोग ने जवाब दिया क्या? महाराष्ट्र में 5 महीने में 40 लाख वोट बढ़ गए। हम तथ्यों के साथ बैठे हैं, चुनाव आयोग से मांग करते हैं, हमें मिलने तक का तो समय नहीं दे रहे। आप कह रहे हैं कि फॉर्म 6 फॉर्म 7 भरिए, आपके दफ्तर में लाएं क्या? साहिल जोशी हमें गारंटी दे कि भाई हम जो फॉर्म लाएंगे वो भरवाएंगे तो हम आपके दफ्तर में ले आएंगे। हमारे कार्यकर्ता जाते हैं,
0: मुझे फिर उसी में एक बात, मुझे इस बात का जवाब,
3: अधिकार होता है,
0: बातें कानून है,
3: हम क्या करेंगे? मीडिया हमारे,
0: अनिल यादव जी, अनिल यादव जी, आप राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता है, अनिल यादव जी आप राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता है, आप मुझे एक बात बताइएगा, अगर कोई व्यक्ति किसी प्रदेश में 6 महीने से रह रहा है, आपको पता है ना कि ये जो SIR की जो ड्राइव है वो क्यों की जाती है, अगर कोई व्यक्ति किसी प्रदेश में 6 महीने से रह रहा है उसको अगर उसी प्रदेश में वोट देना है, उस जगह पर वोट देना है, तो उसका नाम जोड़ा जा सके, उसके बाद वो वहां से हट जाएगा, उसका नाम कट जाएगा। कई राजनीतिक पार्टियां इस तरीके का काम करती है, बीजेपी आपसे बेहतर तरीके से कर रही है, क्या आपको लगता है कि इसके वजह से यह दिक्कत हो रही है? आपके पास भी समय है,
3: नहीं, ये बात तो सही है। बीजेपी के समय तो हमारे पास भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरह इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा तो नहीं है ना हमारे पास, हजारों करोड़, हम कहां से इनकी बराबरी करेंगे भाई। ये तो प्रशासन इनके हाथ में है, पूरा तंत्र इनके हाथ में, ये जो चाहे कर सकते हैं। और आप कह रहे हैं ना कि 6 महीने में वोट यहां डलवाई जाती है, हमने देखा नहीं कि जिस व्यक्ति ने पहले चुनाव में दिल्ली में वोट डाली, कुछ महीनों बाद वो बिहार में डाल रहा है।
0: जाते जाते
3: सही है,
0: ये बात तो साफ है कि एसआईआर पर बहस शुरू हो गई, इसका मतलब उत्तर प्रदेश के चुनाव का बिगुल बज गया है। लेकिन जाते जाते एक बड़ी खबर भी आप लोगों को सुना दे, क्योंकि वैश्विक चुनौतियों के बीच में भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेजी से चल रही है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी 7.8% रही है, और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि निराशावादी लोगों की हार हुई है। हाल ही में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और पश्चिम एशिया में जो युद्ध की स्थिति थी, उसके वजह से जीडीपी ग्रोथ का लेकर कई सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन पहली तिमाही में चालू वित्त वर्ष के जीडीपी की ग्रोथ 7.8% रही, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी का यह तंज निराशावादी लोगों की हार हुई है। तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए आज तक के साथ।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: देश की राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश हो रही है और थोड़ी सी देर की बारिश में देश की राजधानी का क्या हाल है ये आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है।
3: हालांकि मुख्य सड़क आप सोचिए नई दिल्ली की ये मुख्य सड़क है, लेकिन जैसे तेज बरसात शुरू हुई है और काफी मूसलाधार बारिश हुई है, दिल्ली के कुछ इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, तो ज्यादातर जो हिस्से हैं वो रेड अलर्ट की चपेट में हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास अमित वधवा के साथ में आशुतोष मिश्रा। आज तक
4: 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, पहले प्रधानमंत्री हमारे नेहरू जी बने। उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे पहले प्रधानमंत्री बनते तो भारत की क्या दिशा और दशा होती?
5: ये तुमने सवाल क्वेश्चन किया, ये संसद में होता तो बड़ा मजा आता। हर तरीके की एक पार्टी बोलती कि कश्मीर हमारा होता, अफगानिस्तान तक हम कब्जा कर लेते, पब्लिक बाहर सुन के ताली वाली ही बजाती।

0: ये सिर्फ मिट्टी नहीं है। यदि मिट्टी किसी के घर का चूल्हा जलाती है तो किसी का सपना बनती है और किसी को 1.5 करोड़ का कारोबार दे देती है। गोरखपुर की टेराकोटा कला अब गांव से निकलकर देश और विदेश तक पहुंच चुकी है। मैं हूं पूजा मरुत्रा और आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल। गोरखपुर के खोटन खास, गुलरिया और औरंगाबाद जैसे गांवों में पीढ़ियों से कुम्हार तालाब की खास चिकनी मिट्टी से हाथी, घोड़े, दिए, मूर्तियां और सजावटी सामान बनाते आ रहे हैं। पहले मिट्टी को गूंथा जाता है, फिर उसे आकार दिया जाता है और भट्टी में पकने के बाद वही साधारण मिट्टी खूबसूरत टेराकोटा बन जाती है। यही कला आज महिलाओं समेत पूरे परिवारों को रोजगार दे रही है। इस कहानी का सबसे बड़ा चेहरा है राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित राजन प्रजापति। कभी मिट्टी के घर में रहने वाले राजन आज करीब 1.5 करोड़ रुपए सालाना का कारोबार करते हैं। उनकी फैक्ट्री से साल में 24 ट्रक टेराकोटा का सामान देश भर में भेजा जाता है। राजन बताते हैं,
1: हमारा जब से ODOP योजना आया तब से हम लोन लिया, आज तक मेरा कंटिन्यू अच्छा चलता है और रिकॉर्ड अच्छा है, हम लोग बराबर लोन बना रहता है हमारा।
0: वहीं पन्नेलाल प्रजापति सरकारी मुफ्त टूल किट मिलने के बाद हर महीने 1 ट्रक माल भेज रहे हैं। उनका कारोबार भी 60 से 70 लाख रुपए सालाना तक पहुंच चुका है। सरकार की ODOP योजना ने बदल दी है पन्नेलाल की जिंदगी। वो बताते हैं,
2: 2017 के बाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसको वो जब लॉन्च किया, इसको पहले कोई कला को जानता नहीं था, उनके माध्यम से विश्वकर्मा संघ सम्मान योजना, ODOP टूल किट, ये सब हम लोग ट्रेनिंग कर चुके हैं।
0: गोरखपुर के टेराकोटा ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया है। फिर मिला इसे GI टैग जिससे इसकी अलग पहचान बनी। सरकार ने प्रशिक्षण टूल किट सब्सिडी देकर कारीगरों को सिर्फ हुनर नहीं बल्कि बाजार भी दिया। कभी गांव की मिट्टी सिर्फ खिलौने बनाती थी, आज वही मिट्टी पहचान बना रही है, रोजगार दे रही है और दुनिया को बता रही है कि भारत की असली ताकत सिर्फ कारखानों में नहीं कारीगरों के हाथों में बसती है।

0: दंगल में मेरे साथ बस इतना ही। अब लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के उस पार अल्लाह बोल। देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: समिट के दौरान थोड़ी देर में पुतिन से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रक्षा सहयोग, निवेश, भुगतान व्यवस्था, इन सब पर होगी बातचीत। ईरान के राष्ट्रपति से हो चुकी है मंत्रणा। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी 7.8 रही। प्रधानमंत्री मोदी बोले, निराशावादी लोगों की हुई हार। शुद्धिकरण विवाद में आमने सामने आई कांग्रेस और बीजेपी। राहुल गांधी पर एफआईआर के बाद सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। एससी एसटी एक्ट में दर्ज हुआ केस। उत्तर प्रदेश में कल से चुनावी शंखनाद। अखिलेश यादव शुरू करेंगे प्रचार। एसटीएफ को बताया स्वजातीय टॉर्चर फोर्स। बीजेपी की वर्कशॉप में जुटे कार्यकर्ता, तो मायावती ने भी बुलाई समीक्षा बैठक। और नेपाल के बुसी तुसु इलाके में 25 लोग बचाए गए। रेस्क्यू में 15 हेलीकॉप्टर्स लगे। मौत का आंकड़ा 900 के पार। 8200 से ज्यादा लापता।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: हमारे सीएलपी राजस्थान के मंदिर जाते हैं। सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के लोग ये करते हैं और ये क्राइम। प्रधानमंत्री ऑर्डर दें कि इन व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर एससी एसटी एक्ट में एफआईआर दर्ज की।

0: उसके वहाँ पर यूरिन से भरी बोतलें और कुत्ता खा के ये बोतल पे और इधर उधर गंदगी बहुत करी थी, तो हमने उसकी सफाई करी।
1: उत्तराखंड में कोई नहीं जानता कि खटके जी की जाति क्या है।
2: Thank you.

0: अंजना ओम कश्यप दलित होने की वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान के आरोपों पर शुरू हुआ सियासी घमासान अब राहुल गांधी को दलित अपमान के कटघरे में खड़ा कर गया है। 8 अगस्त को दरअसल हल्द्वानी उत्तराखंड की हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष एक रैली के बाद 11 अगस्त को वहां जो कुछ हुआ उस पर राहुल गांधी ने FIR दर्ज करने की मांग की थी। उन्होंने सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था, लेकिन अमित कुमार नाम के वाल्मीकि समाज के एक व्यक्ति की शिकायत पर अब राहुल गांधी के ही खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज हो गई है। FIR में अमित कुमार ने आरोप लगाया है कि वो रामलीला मैदान की सफाई और वहां धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हुए थे क्योंकि वहां रैली के बाद शराब की बॉटल्स मिली थी और धार्मिक नारेबाजी की गई थी। लेकिन अमित कुमार की FIR कहती है कि घटनाओं का सत्यापन किए बिना राहुल गांधी ने मुझे वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को ही, वो अपने बारे में कह रहे हैं कि मुझे ही अपमानित किया गया है। इस बीच आज उत्तराखंड में जहां कांग्रेस कथित शुद्धिकरण पर FIR दर्ज करने की मांग पर आक्रामक रही है, तो बीजेपी ने भी राहुल पर दलितों के अपमान का लगातार आरोप लगाकर लड़ाई छेड़ दी है। सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट अपनी दिखाते हैं। देखिए दरअसल सवाल ये है कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद हवन हुआ था या शुद्धिकरण? रामलीला का मैदान, दलित पर घमासान, हल्ला बोल में चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए।
1: जिन लोगों ने शुद्धिकरण किया है उन पर FIR लागू। सिर्फ बीजेपी और RSS के लोग ये करते हैं और ये क्राइम है। तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री ऑर्डर दें कि इन व्यक्तियों के खिलाफ FIR SC/ST एक्ट में FIR दर्ज किया जाए।
0: यही वो बयान है जिसके आधार पर उत्तराखंड की पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज की है। 8 अगस्त को मल्लिकार्जुन खड़गे की हल्द्वानी रैली के बाद 11 अगस्त को वहां के रामलीला ग्राउंड पर श्रीराम सेना धर्मार्थ सेवा न्याय संगठन के लोगों ने पूजा और हवन का आयोजन किया था। कांग्रेस इसे तब से बीजेपी के लोगों की दलित विरोधी सोच करार दे रही है। 29 अगस्त को जब राहुल गांधी ने इस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो दलित समाज से आने वाले अमित कुमार की शिकायत पर हल्द्वानी में राहुल गांधी के खिलाफ SC/ST उत्पीड़न एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई। इसमें लिखा है कि 11 अगस्त 2026 को रामलीला मैदान हल्द्वानी में की गई सफाई और धार्मिक अनुष्ठान की कार्यवाही का किसी व्यक्ति की जाति से कोई संबंध नहीं था। मैं स्वयं और अनुसूचित जाति के अन्य व्यक्ति सहभागी थे। इसके बावजूद राहुल गांधी ने 29 अगस्त 2026 को बिना किसी सत्यापन के उस कार्यवाही को छुआछूत और अनुसूचित जाति के विरुद्ध अपराध घोषित करते हुए इसमें सम्मिलित व्यक्तियों के विरुद्ध SC/ST एक्ट 1989 के तहत FIR दर्ज करने की मांग की। इस वजह से मुझे वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को ही छुआछूत करने वाले और दलित विरोधी के रूप में अपमानित किया गया। इससे समुदायों के बीच वैमनस्य और तनाव पैदा हुआ है। लेकिन अब ये FIR उत्तराखंड समेत पूरे देश में दलितों के नाम पर नए सियासी संग्राम को जन्म दे गई है। उत्तराखंड में कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं की कथित शुद्धिकरण पर FIR दर्ज करने को लेकर पुलिस से बहस हुई।
2: अगर सदन में उठने के बाद भी यहाँ से कार्रवाई की बात नहीं तो उन्हीं को बता दीजिए कि ये कार्रवाई भी है।
3: नड्डा जी ने तो संसद में कहा कि कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ।
2: खेत प्रकट करो।
0: इधर दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा की मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई।
4: समाज में बंटवारा कौन कर रहा है? ये भाजपा और RSS की विचारधारा है जो बंटवारा कर रही है और यही इनका मकसद था जो इन्होंने अपने कुछ लोगों को भेजकर वहां पर सो कॉल्ड शुद्धिकरण करके, मतलब क्या था इनका? अगर राजनीतिक मतलब नहीं था तो क्या था ये बता दें। चुनाव आ रहे हैं, इनका मतलब हमेशा बंटवारा का होता है और अब राहुल जी ने आवाज उठाई है तो ये कर रहे हैं।

0: साफ नजर आ रहा है इनकी जो राजनीति है जहर की राजनीति है।
1: खड़गे के बहाने दलितों के अपमान को मुद्दा बना रही कांग्रेस पर पलटवार बीजेपी ने भी किया। देहरादून में बीजेपी एससी मोर्चा ने राहुल गांधी का पुतला फूंका। एफआईआर से पहले ही राहुल गांधी के बयान पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी।
2: भारतीय जनता पार्टी के कोई पदाधिकारी नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं।

0: कार्यकर्ता नहीं है, इन्होंने भी ये शुद्धिकरण वहां पर हवन किया था। उत्तराखंड में कोई नहीं जानता कि खड़गे जी की जाति क्या है। ऐसे आयोजनों पर जो गंदगी हुई थी, जो धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए थे और एक धर्म विशेष के लोगों ने लगाए थे, उसके विरोध में लोगों ने, जो धार्मिक संगठन थे, उन्होंने उस वहाँ पर शुद्धिकरण का जो कार्यक्रम किया था वो कार्यक्रम था। और इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है।
1: राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज FIR में भी खड़गे की रैली के बाद रामलीला मैदान में न सिर्फ शराब की बोतलें बल्कि धार्मिक नारेबाजी की शिकायत दर्ज है। यानी इस मामले में सिर्फ दलित अपमान पर ही आर पार नहीं बल्कि धार्मिक भावनाओं पर चोट का मामला भी उछल सकता है
2: किसी समाज का।
1: वैसे 13 अगस्त को राज्यसभा में खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब ये मामला उठाया था तब JP नड्डा ने कहा था कि अगर ऐसा हुआ है तो इसे BJP समर्थन नहीं देती।
2: मेरे स्पीच होने के बाद BJP के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किया।
3: माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदायी विषय है। BJP डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर।
1: हल्द्वानी का मामला ऐसे समय में गंभीर राजनीतिक मोड़ ले रहा है जब राहुल चाय की दुकानों पर भी दलितों से भेदभाव जैसे आरोप लगा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। इस रिपोर्ट के जरिए आपने काफी कुछ समझा होगा, लेकिन किस आधार पर अमित कुमार नाम के ये शख्स FIR करा रहे हैं आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले सभी खास मेहमानों से आपकी मुलाकात करा देते हैं। हमारे साथ गुरु प्रकाश पासवान जुड़ रहे हैं जो कि प्रवक्ता हैं BJP के। तनुज पुनिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के। मनोज काका जुड़ रहे हैं जो कि नेता हैं समाजवादी पार्टी के। धीरेन्द्र कुमार प्रवक्ता LJPR के जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस कार्यक्रम पर। चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखिए मामला बहुत गंभीर है और राहुल गांधी पर FIR जो कराई गई है, गुरु प्रकाश पासवान जी अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जो धाराएं लगाई गई हैं SC/ST एक्ट सेक्शन 3(1), BNS सेक्शन 196 और BNS सेक्शन 299। अब सवाल जो है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि सफाई और धार्मिक अनुष्ठान को बिना सत्यापन छुआछूत कहा गया, मुझ वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को अपमानित किया गया, ऐसा अमित कुमार जी कह रहे हैं। ठीक है, अब मुझे यह बताइए कि अपमान की बात पहले तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने खुद ही कही थी, अब फिर आप लोगों को क्या राहुल गांधी मिले जिन पर आपको निशाना साधना आसान था इसलिए FIR की गई? ये कांग्रेस का आरोप है, इस पर आप जवाब दीजिए। ये भारतीय जन माफ कीजिए,
4: देखिए अंजना जी, इस आरोप में कोई दम नहीं है।
1: ठीक है,
4: नहीं देखिए अंजना जी, इस आरोप में कोई दम नहीं है, इस आरोप में कोई तथ्य नहीं है, कोई तर्क नहीं है, ये शुद्ध रूप से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। राहुल गांधी जी को हर हफ्ते एक स्क्रिप्ट चाहिए होता है कि समाज को हम कैसे तोड़े। अभी पिछले हफ्ते हमने डिबेट किया था पेट्रियार्की के नाम पे, तो कभी जेंडर के नाम पे, कभी कास्ट के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पे, कभी भाषा के नाम पे। और आज जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, मैं आपके माध्यम से याद दिलाना चाहता हूं उनको। ये देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा जी का चुनाव का नामांकन चल रहा था, खड़गे जी रूम के बाहर हैं, रूम के बाहर से झांक रहे हैं बेचारे, उनको अंदर क्यों नहीं जाने दिया? ये उनका अपमान नहीं था क्या? ये उनका अपमान है? चलिए ये छोड़िए आप। ये देखिए, दलित समाज के पुदुचेरी के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण स्वामी जी चप्पल उठवा रहे हैं राहुल गांधी जी, ये उनका अपमान नहीं है क्या? देखिए ये लिस्ट जो है ये अंतहीन है। तेलंगाना में देखिए, तेलंगाना में दलित समाज के कांग्रेस पार्टी के उप मुख्यमंत्री बिरमार्क जी जमीन पे बैठे हुए हैं। कुमारी शैलजा जी, जिनका आपने अभी भाषण चलवाया था, मैं बताना चाहता हूं, कुमारी शैलजा जी थक गई, हार गई, लेकिन वहां पे उनको नेता नहीं बनने दिया। बैनर पोस्टर से उनकी तस्वीर तक गायब कर दी गई। कुमारी शैलजा जी देखिए यहां खड़ी है, राहुल गांधी बैठ करके रोल खा रहे हैं। देखिए पूर्व में भी आज भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को यह समझना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर, उनके खिलाफ चुनाव में कैंपेन किसने किया था, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। शुद्ध रूप से जवाहरलाल नेहरू ने यह चिट्ठी लिखा है, सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू, जाकर के देख के आइएगा। मैं बोलना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता को, एडविना माउंटबेटन को चिट्ठी लिखकर के जवाहरलाल नेहरू कह रहे कि आज मैंने बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ चुनाव में प्रचार किया था। अंजना जी, बाबा साहब अंबेडकर हो, बाबू जगजीवन राम हो, सीताराम केसरी हो, वर्तमान में भी
1: अच्छा है, हिस्ट्री कोट करना गलत बात नहीं होती, लेकिन थोड़ी देर 2026 पे रहते हैं, उसके बाद थोड़ा इतिहास के पन्ने भी पलटेंगे। और जो जो आपको बोलना हो, मुझे ये बताइए, आप सत्ताधारी पार्टी की तरफ से आप सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप हमें बताइए कि ये शुद्धिकरण ये किया गया था, नहीं किया गया था, हुआ क्या था, क्या हुआ था वहां पर?
4: नहीं नहीं देखिए अंजना जी, मैं आपको एक बात बहुत जिम्मेदारी से बोलता हूं, हाँ। और रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते बोलता हूं कि जन्म आधारित भेदभाव आज भी हमारे समाज में है, आज भी हमारे देश में, जो कि बहुत दर्दनाक पक्ष है, हाँ। ये एक सामाजिक विषय है, ये पॉलिटिकल विषय नहीं।

0: समाज को उससे निकलना पड़ेगा और हम सबको साथ आना पड़ेगा। लेकिन इस बात पे जो राजनीति होती है, अभी आपका मैं प्रबोधन सुन रहा था, आपने कहा कि राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर हो गया है, जब हल्द्वानी के दो दलित समाज के युवक हैं, राहुल गांधी के आरोप के कारण उनको डराया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, तो वो दलित समाज के युवक दलित नहीं है क्या? वो चूंकि किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, वो सामान्य दलित समाज के युवक है, उन्होंने जाकर के वहां पे कुछ किया है, कुछ प्रक्रिया की है, तो उसके लिए उनको क्या जाए? राहुल गांधी जी कानून के ऊपर हो गए हैं क्या? राहुल गांधी जी की वजह से यदि दलित समाज के दो युवक परेशान हो रहे हैं, उनको डराया जा रहा है, उनको धमकाया जाए, तो बिल्कुल निश्चित रूप से राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। एक्सक्यूज मी, राहुल गांधी इज नॉट अबव द रूल ऑफ लॉ। राहुल गांधी को यह भ्रम जरूर होगा कि वो संविधान के ऊपर है, राहुल गांधी जी इसी देश के हिस्सा हैं और इनको ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए। यदि वो दलित समाज के युवकों को डराएंगे, धमकाएंगे, झूठा आरोप लगाएंगे। और आखिरी 10 सेकंड में चाहता हूं आपसे, अंजना जी, कर्नाटक में 2023 में विधानसभा का शुद्धिकरण हुआ था, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कराया था, गौमूत्र से कराया था, गंगा जल से कराया था। आगे आइए, ग्वालियर में सिंधिया जी गए थे सदस्यता का कार्यक्रम करने रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति के पास, उसका शुद्धिकरण हुआ था, कांग्रेस पार्टी ने करवाया था, तृणमूल कांग्रेस ने कलकत्ता में किया था। तो ये विचित्र सी बात होती है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया पे आज राहुल गांधी जी राजनीति कर रहे हैं, आज आपको दलितों की याद आ रही है, जबकि इतिहास गवाह है, बाबा साहेब अंबेडकर, बाबू जगजीवन राम से लेकर के आज पंजाब में चन्नी परेशान है, हरियाणा में शैलजा परेशान है, बिहार में राजेश राम परेशान है, खड़गे जी खुद पार्टी में परेशान है कि उनको कांग्रेस में मुख्यमंत्री नहीं बनाया कर्नाटका का, और आज दलितों के नाम पे जो घड़ियाले आंसू बहा रहे हैं, देश का दलित देख रहा है, देश का दलित आपके छलावे में नहीं आने वाला है, एक नंबर की दलित विरोधी सामंती पार्टी को ये तो कांग्रेस पार्टी है।
1: अच्छा ठीक है, तनु जी, सांसद महोदय, ये आपके सामने मैं रख रही हूँ, हमारे दर्शक भी इसको देखेंगे, जो धाराएं लगाई गई हैं, तनुजी अपने दर्शकों को दिखाते हैं, SC/ST एक्ट सेक्शन 3/1/196 BNS की धारा और 299। हल्द्वानी उत्तराखंड में शिकायत करता है अमित कुमार, अमित कुमार क्या लिखते हैं वो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, ये राहुल पर जो FIR है उसमें लिखी हुई बात है, ग्राफिक्स नंबर 2 दिखाइए। 11 अगस्त 2026 को रामलीला मैदान हल्द्वानी में की गई सफाई और धार्मिक अनुष्ठान की कार्यवाही का किसी व्यक्ति की जाति से कोई संबंध नहीं था, मैं स्वयं और अनुसूचित जाति के अन्य व्यक्ति सहभागी थे, ये अमित कुमार लिख रहे हैं। इसके बावजूद राहुल गांधी ने 29 अगस्त 2026 को बिना किसी सत्यापन के उस कार्यवाही को छुआछूत और अनुसूचित जाति के विरुद्ध अपराध घोषित करते हुए इसमें सम्मिलित व्यक्तियों के विरुद्ध SC/ST एक्ट 1989 के तहत FIR दर्ज करने की मांग की है। इस वजह से मुझ वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को ही छुआछूत करने वाले और दलित विरोधी के रूप में अपमानित किया गया है, इससे समुदायों के बीच वैमनस्य और तनाव पैदा होगा। अब अगर अमित कुमार, जो कि इन तस्वीरों में ये जो वहां पर किया जा रहा है शुद्धिकरण वाला, वो दिखा दीजिए, जो वीडियो है वहां पर मौजूद है अमित कुमार, और अमित कुमार कह रहे हैं वो वाल्मीकि समाज से हैं, वो कह रहे हैं कि आप हमारे ही खिलाफ ये सब कह रहे हैं और बिना जानकारी के आप वैमनस्य से फैला रहे हैं। एक सेकंड अपने तनु जी, एक फैक्ट चेक है इसमें, एक फैक्ट चेक है कि जो अमित कुमार जिन्होंने ये FIR दर्ज कराई है वो खुद वहां पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके साथ जो करेक्शन इतना है तनुजी, जो मैं बता दे रही हूँ क्योंकि मुझे मेरी रिसर्च टीम बता रही है इस वक्त, कि हम लोगों ने वेरीफाई करने की कोशिश की कि अमित कुमार जो ये FIR जिन्होंने दर्ज कराई है वो इस हवन में वहां पर मौजूद है या नहीं है, तो उनका कंफर्मेशन कि इस वीडियो में वो दिख रहे हैं या नहीं, नहीं हो पाया है। उन्होंने अपने साथ एक और व्यक्ति की बात की है, लेकिन क्या वाल्मीकि समाज के लोगों पर अब आप लोग चाहते हैं कि एक्शन हो, और क्या वो खड़गे जी का अपमान करेंगे?
2: नहीं, देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी प्रकरण होता है, कोई भी चीज राहुल गांधी जी बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग सिटीज में उनके खिलाफ FIR जरूर करते हैं। ये तो स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट है, ये स्टैंडर्ड चीज है। आप देख लीजिए, पूरे देश भर में इतनी FIR उनके ऊपर है, बस जनता का ध्यान भटकाने के लिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकरण से, अगर अमित कुमार जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी के कहने से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, उन्होंने तहरीर लिख करके पुलिस थाने में दी है, उनकी FIR चंद घंटों में दर्ज हो जाती है, और एक दूसरी तरफ का पक्ष जो है 20 दिन से प्रयास कर रहा है कि मेरी भावनाएं जो है आहत हुई हैं, मेरे साथ भेदभाव हुआ है, वो तहरीर देता है थाने में, अगर तो फिर उसकी FIR नहीं दर्ज होती है 20 दिन से।
1: दी है तनुजी,
2: ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है ना। मैं ये तो कह नहीं रहे हैं कि उनको सीधे जेल में डाल दीजिए या उनके साथ उनको लाठी डंडे से मारिए। हमारी सिंपल मांग है कि इनकी भावनाएं अगर आहत हुई हैं तो इनकी FIR लिखिए। और राहुल गांधी जी ने तो 20 दिन बाद ये किया है। हम लोग तो लगातार प्रयास कर रहे थे, हर जगह धरने चल रहे थे, ज्ञापन दिए जा रहे थे, जब वो नहीं सुनी बात सरकार ने। और उत्तराखंड में खुद कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल जी के पास गया था 24 अगस्त को, उन्होंने कहा था ये हो नहीं रहा है, जगह जगह हमने ज्ञापन दिया है, सूचना दी है, कम से कम FIR तो करिए, कम से कम जांच तो होनी चाहिए। नड्डा जी ने सदन में उठ करके बोला कि ये निंदनीय हुआ है, जो हुआ है इसकी जांच हम करवाएंगे। आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है RP सिंह साहब है शायद, मैं नाम मुझे नहीं थोड़ा ध्यान है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये इवेंट उस इवेंट से दूसरा था, शुद्धिकरण किसी और इवेंट के पहले जो है होना, उसके तैयारी के लिए शुद्धिकरण हो रहा था, और अगर ऐसा हुआ है तो उसकी जांच होगी। कौन सी जांच हुई है, कहां जांच हुई है, क्या रिपोर्ट है, आज तक किसी को नहीं पता कहां है वो जांच। तो मेरा ये कहना है कि अमित कुमार जी ने तहरीर दी है, उनकी भावनाएं अगर आहत हुई हैं तो उसकी FIR हो, जांच हो। और अगर हमारे नेता की, अगर नेता नहीं थे, अगर आम व्यक्ति SC समाज के अगर वो होते, वो तहरीर देते, तो क्या उनकी FIR नहीं दर्ज होती? मतलब प्रथम सूचना रिपोर्ट अगर दर्ज करने की मांग करी जा रही है तो इसमें क्या गलत है? मेरा तो सवाल सीधे सीधे है। अभी आपके 2025 की बात अगर ले लीजिए तो इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व विधायक हैं आहूजा जी, ज्ञानदेव आहूजा जी, वो शुद्धिकरण करते हैं जब हमारे CLP लीडर जो है राम मंदिर जाते हैं, जूली जी, टीकाराम जूली जी जब जाते हैं शुद्धिकरण करते हैं, वहां तो बहुत जल्दी कार्रवाई कर दी आपने, आपने माना कि शुद्धिकरण गलत हुआ है, उनको निलंबित कर दिया। और उत्तराखंड में आप जो है कह रहे हैं कि शुद्धिकरण गलत है, ये उनके उनके खड़गे जी के उसमें नहीं हुआ है। तो मतलब कॉन्ट्रडिक्शन बहुत सारे हैं इस पूरे मामले में। हमारी तो सिंपल मांग है, आप FIR करिए, FIR करिए, आगे जांच करिए, लेकिन FIR करके लड़ने का मौका भी नहीं दिया जा रहा है जिना जी यहाँ पे।
1: लेकिन तनु जी ठीक है, देखिए अभी ये दोनों अमित कुमार, विनोद आर्य, दो लोगों के बारे में लिखा गया है इस FIR में। मेन कंप्लेनेंट अमित कुमार है, लेकिन वो अपने दोस्त विनोद आर्य की भी बात करें, और विनोद आर्य वहां पर दिखाई दे रहे हैं। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जो भी है तो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़े, किसने कंप्लेंट दी है हल्द्वानी पुलिस को, दूसरे पक्ष की जो आप बात कर रहे हैं, मतलब खड़गे जी की तरफ से किसने कंप्लेंट दी कि FIR दर्ज नहीं हुई है?
2: नहीं, कई बार जो है हम लोगों ने यहां पे ज्ञापन दिया, और अगर आप 24 अगस्त का देख लें तो माननीय राज्यपाल जी को सीधे सीधे जो है कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि मंडल गया था वहां पे, कांग्रेस पार्टी के
1: FIR तो थाने में होती है ना,
2: उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो है
1: तनु जी FIR तो थाने में
2: तो
1: होती
2: जब
1: है।
2: वहां हो नहीं रही थी इसीलिए तो जगह जगह ये किया जा रहा है। नहीं तो जगह जगह यही किया जा रहा है ना, वहां पे जब नहीं मिल रहा है, वहां FIR नहीं कर रहे हैं वो, तो हमें जगह जगह करना पड़ेगा। हमने
1: जवाब दीजिए,
2: ज्ञापन दिया था,
1: जवाब दीजिए इसका। वो कह रहे हैं कि दूसरे पक्ष की तरफ से तो आप FIR ही नहीं दर्ज करती आपकी पुलिस। हाँ
0: अंजना जी, मैं लाइव टेलीविजन पे नेशनल डिबेट पे ये चैलेंज करना चाहता हूं कि हमारे जो साथी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उस थाने का नाम बता दें, उस थानेदार का नाम बता दें जिन्होंने 20 दिन से इनका FIR नहीं दर्ज किया, और यदि उसका कोई साक्ष्य है तो यहां आपके सामने प्रस्तुत करें। ऐसा कौन सा थाना हो सकता है भाई, कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसका व्यक्ति जाएगा और थाने में FIR नहीं होगा? मतलब बड़ी विचित्र बात है अंजना जी, मैं पूछना चाहता हूं 20 दिन बाद इनको याद आया क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे जी का अपमान हुआ था 20 दिन से, और कथित रूप से यह भी कहा गया है मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कांग्रेस पार्टी के इंटरनल मीटिंग में कहा है। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था क्षमा अंजना जी, अगर एक दूसरे के बीच में बोलना है तो बताइए, हम लोग समय व्यर्थ कर लेते हैं, व्याकुल मत होइए भैया।
1: लेकिन गुरु प्रकाश जी आज तो गए थे कांग्रेस के नेता, आज की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, गुरु प्रकाश जी आज की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता सब गए थे, ये बात सच है कि आज गए, उसको मतलब रिएक्शन भी कहा जा सकता है, लेकिन आज वो गए थे।
0: चलिए अच्छा,
1: FIR दर्ज कर लेते, पहले बोले बाद में बोले, इससे थोड़ी चलेगी पुलिस।
0: अरे वाह वाह अंजना जी, मतलब बड़ा मतलब विचित्र सी बात है, 20 दिन आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान होता रहा, आपकी पार्टी सहती रही। आपको पता है क्यों गए हैं आज? कथित रूप से खड़गे जी ने अपने पार्टी के इंटरनल मीटिंग में कहा है कि आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान हो गया, आप लोगों को थोड़ी भी इसमें खबर नहीं है। उसके बाद कम से कम ये लोग गए हैं, 20 दिन से इनको खड़गे जी के अपमान की याद नहीं आई, और 21वें दिन इनका आंख खुला है। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं, खुली चुनौती दे रहा हूं, आप थाने का नाम, थानेदार का नाम बताइए, और मैं आश्वस्त करता हूं उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन आपको साक्ष्य दिखाना होगा। इनका झूठ का पर्दाफाश यही हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूं अंजना जी, इनका चाल चेहरा चरित्र दलित विरोधी है। क्या बाबा साहब अंबेडकर, क्या बाबू जगजीवन राम, क्या सीताराम केसरी, क्या चरणजीत सिंह जी, क्या आपने चन्नी जी, क्या आपने शैलजा जी, क्या राजेश राम जी, क्या बिरमार्ग जी, क्या परमेश्वर जी, जो भी कांग्रेस पार्टी में दलित समाज का नेता महत्वाकांक्षी बनता है उसको उसका स्थान दिखा दिया जाता है। खड़गे जी का भी यही कहानी है, इनके पहले भी यही कहानी थी। मैं पुनः बोलना चाहता हूं और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहना चाहता हूं, और मैंने अपने प्रबोधन की शुरुआत में कहा था, जन्म आधारित भेदभाव आज भी है और उसका समाधान निकालना हमारे पूरे समाज का काम है। लेकिन इस प्रकार की बात राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आपको दलितों की याद आती है। पहली बार इस देश में आदिवासी की बेटी अंजना जी संविधान के सर्वोच्च स्थान पर पहुंची थी। यही कांग्रेस पार्टी के विधिवत नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी क्या बोला था, पत्नी कहकर संबोधित किया था आपने। ये कांग्रेस पार्टी के लोग, ये राहुल गांधी कहते हैं एससी ओबीसी का, एससी एसटी ओबीसी का है, चार प्रांतों में इनके मुख्यमंत्री हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, शून्य। बीजेपी को मौका मिला तो पहली बार ओडिशा में हम सरकार में आए एक आदिवासी मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री, राजस्थान में दलित समाज का उप मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश में दलित समाज का उप मुख्यमंत्री, और आप हमें ज्ञान देते हैं, अपने पार्टी में स्थान देंगे नहीं, अपने पार्टी में सम्मान देंगे नहीं, अपने पार्टी में भागीदारी देंगे नहीं। जब आपने बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हरवाया तो हम लोग किस खेत की मूली है भाई, मल्लिकार्जुन खड़गे जी किस खेत की मूली है भाई, बिहार के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राजेश राम जी, अंजना जी 7 तारीख को आंदोलन होने वाला है, राजेश राम जी कांग्रेस पार्टी के दलित समाज के प्रदेश के अध्यक्ष, उनके खिलाफ उनके पार्टी के लोग खड़े हैं, चन्नी जी के खिलाफ में वारिंग जी खड़े हैं, शैलजा जी के खिलाफ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा खड़े हैं। ये दिखाता है कांग्रेस पार्टी का नव सामंती मानसिकता।
1: ठीक है, चलिए अब तनु जी रिस्पॉन्ड करेंगे। तनु जी रिस्पॉन्ड,
0: ठीक है, दलितों का कोई स्थान नहीं है, कोई सम्मान।
1: तनु जी वो आपके नेताओं की भी गिनती करा रहे हो, कह रहे हैं कि बताइए ना कहां पर कंप्लेन लेके पहले गए थे लास्ट, अब जब उन्होंने कंप्लेन की तो काउंटर कंप्लेन करने गए।
2: नहीं देखिए, अब कौन से थाने में क्या दिया था ये मैं आपको फैक्ट चेक करके दे दूंगा, लेकिन मेरा ये कहना है इतने दिन से बयानबाजी चल रही है, मुख्यमंत्री जी 14 अगस्त से बयान दे रहे हैं इसके धामी साहब इस प्रकरण में, अगर वाकई में दलित हितैषी इतने बड़े हैं जैसा कि हमारे साथी बता रहे हैं तो वहीं पे सुओ मोटो करके क्यों नहीं कर दिया था, अगर आपको लगता है कि हमने नहीं दी थी कोई तहरीर वहां पे, तो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, आपके प्रवक्ता बोल रहे हैं, 14 अगस्त से लगातार बोल रहे हैं, आपको आपको आपका इतने बड़े दलित हितैषी हैं, आप इतने सारे नाम गिरा रहे हैं कि कांग्रेस में ये नहीं होता वो नहीं होता, तो आप बड़े हितैषी हैं तो सुओ मोटो एक्शन लेते, दलित समाज में खुद आपकी तारीफ करता, आज आज आज आप FIR करवा दीजिए, मैं आपको कैमरे पे तारीफ आपकी करने को तैयार हूं कि आपने आपने कम से कम किया तो ये काम, मैं आपके राजस्थान के जो यूनिट है उसकी तारीफ करता हूं कि उन्होंने कम से कम शुद्धिकरण हुआ तो कम से कम उनको निलंबित तो करने का कदम उठाया, कम से कम दलित समाज के एक व्यक्ति को, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, आम आदमी हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आप समाज की बात कर रहे हैं, समाज में इतने ऊंचे ऊंचे पद पे कांग्रेस पार्टी में दलितों को जगह मिली है, जगह जगह जो है मिलती है, कई स्टेट की इंचार्ज रही है शैलजा जी, आप उसकी उनकी उनकी बात कर रहे हैं, आप जो है
1: ठीक है, मैं इस बात से सहमत हूं तनु जी कि गुरु प्रकाश जी इन फाइटिंग को आप ये कास्टिस्ट कलर दीजिएगा तो फिर वो हर पार्टी में संघर्ष रहती है, हर नेता की महत्वाकांक्षाएं रहती है, लेकिन ये रुकिए, अरे रुकिए गुरु प्रकाश जी, वाह वाह आज बहुत कर रहे हैं, रुकिए रुकिए, लेकिन एक बार ये दिखा दीजिएगा तनु जी को, तनु जी ये दो लोग है ना,
0: अमित कुमार का नाम पूछ लीजिए,
1: अमित कुमार और विनोद आर्या, ये दो लोग जो कंप्लेनेंट है, ठीक है, अब इसमें विनोद आर्या तो सवन में दिख भी रहे हैं, है ना, अब ऐसे में क्या आप चाहेंगे कि पिछड़े समाज से आने वाले इन लोगों का, उनका ये दावा है कि वो पिछड़े समाज से हैं, हमारे पास सर्टिफिकेट तो है नहीं उनके कास्ट का, उन्होंने जो FIR में लिखाया हम वही दावा आपके सामने रख रहे हैं, आप चाहेंगे कि पिछड़े समाज के लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो?
2: नहीं, अगर उनकी मंशा ये थी कि जो है दलित समाज का है इसलिए हम शुद्धिकरण कर रहे हैं तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, FIR की बात मैं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि सबको जेल में डाल दीजिए, ये कर दीजिए, आप लंबी कार्रवाई उस पर करिए, लेकिन मिनिमम जो अगर किसी ने अगर आपको बोला है कि FIR कर दो भैया, हम आहत हुए, हमारी भावनाएं आहत हुई हैं, तो आप FIR क्यों नहीं कर रहे हैं,
1: ठीक है,
2: सिंपल सी बात है,
1: ठीक है,
2: सिंपल सा, बहुत बहुत ही सिंपल,
1: कहां गए कंप्लेन लेके कीजिए ना किसी को, उत्तराखंड में मैसेज कीजिए ताकि आपको कोई रिस्पॉन्ड करके बताए, एक बार फुल स्क्रीन ये दिखा दीजिए अपने दर्शकों के लिए, बता दे रहे हैं अमित कुमार है जो पहला आप देख रहे हैं, ये मेन कंप्लेनेंट है FIR में, इनका दावा है कि खुद वाल्मीकि समाज से हैं, और ये अपने दोस्त विनोद आर्या की बात करें जो उस हवन वाले वीडियो में दिख रहा है, अब विनोद आर्या जी तो वहां दिख रहे हैं, अमित कुमार जी को हम लोग इस वीडियो में जिस भी एंगल से शूट हुआ है वो वहां पर एस्टैब्लिश नहीं हो रहे हैं, लेकिन कंप्लेनेंट अमित जी हैं, अब वो अपने और विनोद आर्या जी के बारे में लिखते हैं भाई कि हम खुद वाल्मीकि समाज से हैं, हमको क्यों कर रहे हैं और हम किसी का अपमान क्यों करेंगे। तो चलिए ये पूरी कहानी अब हमारे दर्शक बेहतर समझे होंगे। गुरु प्रकाश जी जल्दी से एक रिस्पॉन्स जिसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब देखिए कहां गए, क्यों गए, किस कंप्लेंट को लेकर गए, ये सब अपनी जगह पर है, लेकिन इनफाइटिंग को अब आप कोट कर दीजिए कि भाई ये कास्ट फाइट थोड़ी है, कल को आपकी किसी से लड़ाई हो जाएगी या किसी की किसी से हो जाएगी, तो ये थोड़ी कहा जाएगा कि कास्ट की वजह से हो रहा है।
0: चलिए अंजना जी हम आपके आभारी हैं कि आपने उनसे पूछा, थाना पता नहीं, थानेदार पता नहीं, कौन गया एफआईआर लिखाना पता ही नहीं, तो कुछ पता ही नहीं तो 20 दिन बाद आपको याद क्यों आया है। और मैं बोलना चाहता हूं कि जो दो सामान्य दलित समाज के युवक हैं हम उनके साथ खड़े हैं, जिस प्रकार से राहुल गांधी की वजह से उनको डर का सामना करना पड़ रहा है, उनको धमकियां आ रही हैं, राहुल गांधी जी चाहते क्या है? दलित समाज का सामान्य युवक कुछ बोलता है तो आपको दिक्कत होता है, आपको क्या लगता है कि भाई कांग्रेस पार्टी के खड़गे जी हैं या कांग्रेस पार्टी की शैलजा जी हैं? ऐसा नहीं होता अंजना जी, मैंने पहले भी बोला था और पुनः बोल रहा हूं कि इस प्रकार से दलितों को राजनीतिक रोटी सेकने का आप साधन मत बनाइए। आज का दलित जागृत हो गया है, आज का दलित राष्ट्रपति भी बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन जिस प्रकार से आपकी पार्टी ने, आपके संगठन का इतिहास है, आपने दलितों को जिस प्रकार से अपमानित किया है, कहीं सीताराम केसरी के खिलाफ इनफाइटिंग हुई थी क्या? सीताराम केसरी और सोनिया गांधी की इनफाइटिंग थी क्या? चरणजीत सिंह चन्नी और वारिंग की इनफाइटिंग है क्या? कुमारी सैलजा और भूपेंद्र हुड्डा की इनफाइटिंग है क्या? शुद्ध रूप से दलित विरोधी मानसिकता है, बाबा साहब अंबेडकर और नेहरू की इनफाइटिंग थी क्या? अंजना जी मैं पुनः बोल रहा हूं, कांग्रेस पार्टी हैज टर्न्ड इनटू अ फ्यूडल ऑर्गेनाइजेशन, एक कांग्रेस पार्टी सामंतवादी संगठन हो गई है जहां पे पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का कोई मान सम्मान स्वाभिमान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनका अपमान है लगातार। अब देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दलितों का आरक्षण नहीं मिले, शांत, जामिया में दलितों को आरक्षण नहीं मिले, शांत, तुष्टीकरण की आंधी में ये लोग अंधे हो गए हैं, दलितों के लिए कोई मान सम्मान स्वाभिमान का कोई स्थान नहीं है, शासन प्रशासन में दलित आता है इनको बर्दाश्त नहीं होता है। नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या बोला था? नीच जाति के हैं। क्या बोला था? यहां के चाय बेच सकते हैं। तो कोई पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति अंजना जी, कोई दलित समाज का व्यक्ति, कोई आदिवासी समाज का व्यक्ति प्रतिष्ठित स्थान पे पहुंचे, ऐसा कैसे हो गया भाई? हमने कहा बोला था कांग्रेस पार्टी को यदि उनका हृदय इतना बड़ा है तो बनाए ना मुख्यमंत्री, बनाए ना उनको उप मुख्यमंत्री, नहीं बनाएंगे ना, हम जानते हैं
3: जी अंजना जी।
1: क्या ये चुनावों से प्रभावित कास्ट पॉलिटिक्स है जिसको हवा दी जा रही है? हवा क्या मतलब, जोर जोर से फैन किया जा रहा है कि आग दहके धधके?
3: नहीं अंजना, अंजना जी आपके जो सवाल है उसको और व्यापकता के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। ये तो सामाजिक भेदभाव है ना, चुनाव तो राजनैतिक होते हैं और जो भी सामाजिक बदलाव होता है वो राजनैतिक बदलाव से कई गुना ज्यादा जरूरी होता है, और राजनीति इसीलिए की जाती है कि सामाजिक बदलाव आए, समाज में समता आए। साथ ही बहुत सारी बात कह रहे थे, इनको सबका भेदभाव, कांग्रेस का भेदभाव याद आया, सबका भेदभाव याद आया, लेकिन इनको अपने पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का भेदभाव नहीं याद आया। मैं तो जानता हूं आप भी अच्छे वक्ता हैं और अंकल भी अच्छे थे, हम तो चाहते हैं कि आप जैसे युवा जो वंचित तबके से आता है मुख्यमंत्री बने, हमारी पूरी शुभकामना है, और आप पे 22 राज्यों में सरकार है, जो आप जो लोग ये काम कर रहे हैं वो कोई एक व्यक्ति के साथ नहीं किया। हम ये जो भेदभाव होता है ये कभी आर्थिक आधार पर नहीं होता अंदरा जी, अगर आर्थिक आधार पर होता तो उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी का घर थोड़ी धुलवा दिया जाता, हल्द्वानी में क्या हुआ मंदिर जाने पे धुला दिया जाता है, दलितों पिछड़ों को मूछ रखने पे उनकी मूछ कटवा दी जाती है, उनकी हत्या तक कर दी जाती है, राजस्थान से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश तक की कहानियां हैं, ये कौन नहीं जानता। आप जिस प्रांत से आती हैं बिहार में, एक पिछड़े तबके के बिंदेश्वरी प्रसाद जी मुख्यमंत्री बन गए 1968 में, तो ऐसे कहा गया, ऐसे पाखंड फैलाया गया कि अरे जब ऐसा बनेगा, अछूत बनेगा मुख्यमंत्री तब तो गंगा में आग तो लगेगी ही, और आग कैसे लगी थी, एक रिफाइनरी वो हुआ था। तो जो लोग इस तरह की बात करते हैं, अगर ऐसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो साफ साफ कहते हैं, और आपको बहुत बाबा साहब का अपमान याद आया, आप बंच ऑफ थाट पढ़े हैं कि नहीं? मैं बताऊं ऑर्गेनाइजर में बाबा साहब का सबसे ज्यादा अपमान गोलवरकर ने किया, और गोलवरकर आपके आदर्श होंगे गुरु प्रकाश भाई, कभी उसके खिलाफ भी बोलिए, वो कौन लोग थे कि बाबा साहब का जीते जी उसी दिल्ली में उनकी अर्थी लिखनवा दी थी, किसने बोला था? हमारे यहाँ तो एक, आप बात करते हैं, आपकी पूरी पार्टी का कोई शब्द उनके कर्म तक नहीं जाता, दोहरे लोग हैं। हमारे यहाँ चंदौली में एक युवा तिरंगा बचाते हुए मुस्लिम समाज का एक युवा अपनी जान दे दिया, गंगा के धार में बह गया, और आपके उत्तर प्रदेश का विधानसभा अध्यक्ष राष्ट्रगान बजता रहा और जा रहे थे, ये लोग राष्ट्रवादी हैं और लोग देशद्रोही हैं, तो यही इनका पूरा विमर्श है अंजना जी। और एक बात जो आपने प्रारंभिक उद्बोधन में कहा, कोई जात से मतलब नहीं है, ये विभाजनकारी भेदकारी, बहुत ऐसे लोग सवर्ण जातियों में भी हुए कि वो हमेशा भेदभाव का खिलाफ किए, बुद्ध कौन थे, महात्मा बुद्ध कौन थे, गांधी, पूज्य गांधी कौन थे, बहुत ऐसे लोग ही, ऐसा नहीं कह सकते, ये एक मानसिकता है, और इस मानसिकता का कोई आदर्श रूप है तो एमएस गोलवरकर है, बंचाफाट है, हेडगवार है, ऑर्गेनाइजर है, इसके एक नहीं अनेकों उदाहरण है।
1: वो विचारधारा पर चोट कर रहे हैं गुरुप्रकाश जी, इसका जवाब दीजिए, इसके बाद धीरेन्द्र जी आ रही हूँ।
0: नहीं नहीं देखिए मनोज जी,
3: आप पूछिए कि माननीय अखिलेश यादव जी का घर उत्तर प्रदेश में क्यों क्यों धुलवाया गया।
0: मनोज जी अब सुनो भैया,
3: मैं खत्म कर, सबसे ज्यादा आपने बोला है साथी, मैं मेरे 10 सेकंड मुझे दे दीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो तो कोई, हम ये भी नहीं कह सकते कि वो गरीब है, और ये भी नहीं कह सकते कि सामाजिक रूप से भी कमजोर है, लेकिन अगर कमजोर ना होते तो उनका घर क्यों धुलवाया आपने। अगर आपको, आप दूसरे में कहते हैं कि आप जाति नहीं ढूंढते, फिर आप जाति जाति देख के तो आप लोगों का घर धुलवा देते हैं। आपने
1: शुद्धिकरण क्यों करवाया हल्द्वानी में? जवाब सुन, बोलिए प्रकाश जी जल्दी।
0: मनोज जी देख, नहीं देखिए अंजना जी, अभी मनोज जी अभी बह करके कह गए कि भाई वो बिहार में एक पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री बना था तो कहा गया था कि गंगा जी में आग लग जाएगा। किसने कहा था मनोज भैया पता है आपको? विनोदानंद झा, किस पार्टी के नेता है पता आपको? कांग्रेस पार्टी के नेता, जिन्होंने कहा था कि गंगा में आग लग जाएगा यदि कोई पिछड़े समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। तब तो आप कांग्रेस के विरोध में थे, आज आप कांग्रेस के साथ में हैं। और देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार सिर्फ हमारे देश के इतिहास में आरक्षण का विरोध सदन के पटल पे एक ही बार हुआ है। प्रमोशन में आरक्षण ना मिले कौन खड़ा हुआ था? समाजवादी पार्टी। बाबा साहब अंबेडकर हमारे लिए पूजनीय है, बाबा साहब अंबेडकर को भू माफिया कह के किसने संबोधित किया था? आजम खान जी ने। पहली बार अंजना जी देश में दलित समाज की महिला मुख्यमंत्री बनती है, और कथित रूप से मायावती जी ने खुद कहा है कि दलित समाज की महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ हत्या का षड्यंत्र किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। तो आज समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी है, कुछ मजबूरियां हैं उनकी, लेकिन वो भी जानते हैं कि वास्तव में कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे लोगों को लड़ाना चाहते हैं। अंजना जी हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस पे, इस तिमाही का 7.8% का ग्रोथ आया है, राहुल गांधी जी की मंशा क्या है? राहुल गांधी जी जिस इकॉनमी को डेड इकॉनमी बता रहे थे आज इतना अच्छा कर रहा है, तो हम इकॉनमी की चर्चा नहीं करें, हम जाति की चर्चा करें, हम पेट्रियार्की की चर्चा करें, हम क्षेत्र की चर्चा करें। कुल मिलाकर के राहुल गांधी जी की जो जमा पूंजी है, कभी जेंडर पेट्रियार्की पे, कभी क्षेत्र उत्तर और दक्षिण, कभी जाति दलित और ब्राह्मण, मैं बताना चाहता हूं आपको जवाहरलाल नेहरू से लेकर के राहुल गांधी तक कौन था अंजना जी? राजीव गांधी जी ने ऐतिहासिक भाषण दिया था मार्च 1990 में कि मंडल कमीशन की सिफारिशों का मैं विरोध करता हूं। राजीव गांधी सही कि राहुल गांधी सही? जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठी है 1961 उन्होंने लिखा था, मैं बताना चाहता हूं, नेहरू जी लिख रहे हैं अपने मुख्यमंत्री को, दे डिजर्व हेल्प बट इवन सो आई डिसलाइक एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन। नेहरू आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, राजीव गांधी आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, नेहरू बाबा साहेब अंबेडकर के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं। तो आप, आपके शो में आज तय हो जाए अंजना जी कि नेहरू सही, राजीव गांधी सही, कि राहुल गांधी सही, कि खड़गे जी सही।
1: मतलब ये दोहरा चरित्र, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आपको, ये इसका जवाब मिल जाए उसके बाद ही मैं आपके पास आ पाऊंगी। उससे पहले एक खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, ईरान के राष्ट्रपति से मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एससीओ समिट जिसमें मसूद पेजिश्कियान, ईरान के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई है, और प्रधानमंत्री ने भारतीय नाविकों का मुद्दा उठाया है। प्रधानमंत्री ने भारतीय नाविकों का मुद्दा इस बैठक में उठाया है। अब इससे आगे बात कैसे बढ़ती है और कैसे इस पर चर्चा होती है उस पर हम लौटेंगे। जल्दी से तनुज जी इस बात का जवाब दीजिए, क्योंकि आपके तमाम नेताओं को एक लाइन में वो कंपेयर कर रहे हैं। जल्दी से आपका रिस्पॉन्स, फिर मैं सीधा धीरेन जी के पास जाऊंगी। और कोई
2: देखिए, बाबा साहब की बात कर रहे हैं, सबसे बड़े विरोधी बाबा साहब के यही हैं, संविधान के यही हैं विरोधी। आरएसएस ने आज तक जो है संविधान को, इस देश को चलाने को माना नहीं है। बाबा साहब क्योंकि अलग पार्टी से लड़े थे, हमारी पार्टी उसके सामने लड़ रही थी, इसीलिए वो हुआ। लेकिन जब उनको संविधान सभा में भेजना था, जब उनको मंत्री बनाना था, तो अलग से व्यवस्था करके उनको दोबारा सदन भेजने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया है। और बाबा साहब ने स्वयं ये कहा है कि ये संविधान जो आज बना है, ये अगर कांग्रेस पार्टी का समर्थन ना होता तो इस तरह का संविधान ना बन पाता। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों के ऊपर कीचड़ उछाल के इन्होंने जो आज ये बोल रहे हैं कि वो आरक्षण विरोधी थे, वही आरक्षण जो है, जब मद्रास के कोर्ट ने जब कहा था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हम लोग लागू नहीं कर सकते हैं, जॉब्स में लागू नहीं कर सकते हैं, केवल जो है चुनाव में लागू कर सकते हैं, तब 1951 में पहला संशोधन जवाहरलाल नेहरू जी के, जब वो प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के उसमें बाबा साहब के साथ मिलकर के पहला संशोधन किया गया था ताकि दलित समाज के लोगों को, एसटी समाज के लोगों को आरक्षण मिल सके। तो ये कहना कि ये आरक्षण विरोधी है, ये सीधे सीधे कीचड़ उछालने का काम है, उनकी उनकी उनकी जो है उनकी इमेज को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी के सारे प्रधानमंत्री हुए हैं उन्होंने हमेशा दलित समाज के प्रति काम किया है, उनके किया है। सामाजिक न्याय की बात आज भी राहुल गांधी चिल्ला के बोल रहे हैं, सामाजिक न्याय, समाज में बराबरी और समता की बात जो है राहुल गांधी जी बोल रहे हैं।
1: अरे लेकिन पिछड़े समाज के लोग ही तो FIR करा रहे हैं कि हम कैसे अपमान कर सकते हैं पिछड़े समाज का, वाल्मीकि समाज के लोग क्यों अपमान करेंगे, यही तो पूरा इशू है ना तनुज जी। मैं लौट रही हूँ धीरेन्द्र जी, आपके नेता भी तो आजकल यही सब कर रहे हैं, मतलब इधर PDA लेकर अखिलेश जी आए तो वो 3P लेके आए हैं, पंडित पासी पासवान, तो जाति तो हर तरफ से जहां जहां जाति है कि जाति नहीं और जाति है कि लुभाती रहती है।
4: हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी दलित प्रेम चुनाव के समय में नहीं करते, साल भर जीते हैं उस सास में, स्वयं उस पीड़ा को देखा है उन्होंने, उनके परिवार में भी कई ऐसे लोग हैं। हम लोग कोई चुनावी एजेंडा नहीं सेट करते हैं। समाजवादी पार्टी को मैं सुन रहा था, जिस तरह से इन्होंने अभी शुद्धिकरण और दलित प्रेम की बात कर रहे थे, इनके हंडिया के विधायक, इनके उसी जाटो परिवार की हत्या हुई है जमीन अपनाने में, और उसका आरोप इन्हीं के विधायक पर है, उस पर एक शब्द नहीं बोले हैं, न इनके कोई नेता वहां मिलने जाते हैं। होलागढ़ में कई दलितों की हत्याएं हुई है, कहीं पर भी एक आदमी ना कांग्रेस के गए हैं उनसे उनके साहस को और ढांढस को देने के लिए, ना समाजवादी पार्टी के नेता गए हैं। जिस तरह से इस ये चुनाव के लिए इन लोगों के पास दलित प्रेम दिखती है, आप बताइए कि खड़गे साहब को भी वंदे मातरम के समय में आगे किया गया, ये खड़े नहीं हो सकते हैं वंदे मातरम गाने के लिए, ये किस तरह का नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हैं। जब लोकसभा स्पीकर के चुनाव हुआ उसमें पता था कि संख्या बल नहीं है, हारना है, तब भी अपमानित करने के लिए एक दलित व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया, LOP के लिए राहुल गांधी जी तो खुद बन जाते हैं। तो इनका चरित्र तो लगातार आप देख रहे हैं कि दलितों के साथ अपमान करने का रहा है, और शुद्धिकरण की बात ये कह रहे हैं अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव जी के लिए कब शुद्धिकरण हुआ है भाई, और मैं तो कहता हूं कि कब यादवों ने इस तरह का दंश झेला है जिस तरह से दलितों ने झेला है। हम लोग तो भगवान कृष्ण के आप वंशज हैं, आप लोगों के अशुद्धिकरण की तो सवाल ही नहीं होता है, लेकिन इस तरह के नैरेटिव न बिल्ड करें, समाज को एक रहने दे, बांटने की कोशिश नहीं करें। दलितों में बिल्कुल बंटवारा बर्दाश्त नहीं होगा, और देश का संविधान उनके पुरखों ने लिखी है, उस संविधान का मजाक बनाने की कोशिश न कांग्रेस पार्टी करे न कोई और करे, बल्कि उस संविधान का पालन करिए, और नहीं तो NDA की सरकार लगातार संविधान के साथ चलती है। आप देखिए कि जिस तरह से दलितों की सुविधाएं, उनके लिए जिस तरह से गैस के कनेक्शन दिए गए हों, जिस तरह से शौचालय आदरणीय प्रधानमंत्री ने दिया, ये उच्च वर्ग के लोगों के लिए, ये सबसे ज्यादा पीड़ा तो उन्हीं दलित और पिछड़े परिवारों में थी। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी खुद पिछड़े समाज से आते हैं, आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जिस तरह से कोरोना काल में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए आज अनाज का व्यवस्था किया था, ये सोच तो NDA नहीं है ना। आप लोग सिर्फ ब्लू टी-शर्ट पहन के नैरेटिव चला करके बाबा साहब के सच्चे अनुयायी नहीं हो सकते। PPT करके कोई दलित का प्रेम नहीं कर सकता है, उसके लिए उसमें जीना होगा। और आप लोग लगातार जब उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में चुनाव है तो आपको दलित का प्रेम दिखता है, और इसके अलावा राज्यों में भी कहीं बैठे रही, झारखंड में भी दलित छात्र और पिछड़े छात्र बैठे थे अंजना जी, एक भी इन नेताओं ने वहां पे जाके उनके साथ बैठने का काम नहीं किया था। छात्रों में भी ये अलग अलग देखते हैं, युवाओं में भी ये अलग अलग देखते हैं, जहां पर उनको पीड़ा होती है, अगर चुनाव नहीं है तो इनके आंखों में आंसू नहीं आते, इनके पीड़ा नहीं होते, आपके कैमरे, आपके रिपोर्टर जहां जाते हैं वहां पर इनको ये प्रेम दिखता है। आप वोट के खातिर काम करते हैं।
1: तनुजी रिस्पॉन्ड कीजिए, तनुजी रिस्पॉन्ड कीजिए, सिर्फ कैमरे पर ये प्रेम मोहब्बत और कैमरे के लिए ही लड़ाई भी है ताकि वोट कह रहे हैं। हाँ बोलिए।
2: नहीं नहीं देखिए, अभी आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के लोग कहीं जाते नहीं है। आज ही की बात बता दूं, बदायूं में जो कस्टोडियल डेथ हुई है दलित समाज के लड़के की, उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्वयं आज वहां पे हैं। मैं खुद पूरे प्रदेश भर में जब दलित समाज के कोई उत्पीड़न होता है मैं खुद जाता हूं। मथुरा गया था, जब जो है बेटियों के शादी हो रही थी, बारात जा रही थी, घोड़े पे जा रहे थे, उनको जाने नहीं दिए गए, हमला कर दिया गया उनके ऊपर। मैं स्वयं गया था वहां पे, उनकी जब शादी बेटियों की हुई तब गया वहां पे, उनके शादी पूरी करवा के मैं वहां से लौटा हूं। राहुल गांधी जी जब वाल्मीकि समाज का एक व्यक्ति को पीट पीट के मार दिया गया था, वीडियो वायरल हुआ, तो कार्रवाई नहीं हो रही थी ढंग से, तो फतेहपुर स्वयं वो गए, उनके घर गए, मैं 3 बार उनके घर गया हूं। तो ये आरोप लगाना कि कुछ नहीं करते हैं जहां कैमरा होता है केवल करते हैं, ये गलत है। क्या गलत बोल रहे हैं? मेरे पास तो सारा सोशल मीडिया पोस्ट है, मैं भी वहां गया था, राहुल गांधी जी फतेहपुर में गए थे वहां पे। यहाँ पूरे पुरानी घटना की बात नहीं, पूरे प्रदेश में कोई घटना होती है, हमारा डेलीगेशन कांग्रेस पार्टी का, मैं खुद अध्यक्ष हूँ एससी डिपार्टमेंट का मैं अध्यक्ष हूँ, चाहे बस्ती हो, आजमगढ़ हो, मथुरा हो, गाजियाबाद हो, हापुड़ हो, हर जगह हम लोग जाते हैं। और अगर कोई छूट गया हो तो आप संज्ञान दे दीजिए, बता दीजिए, हम लोग चले जाएंगे वहाँ पे। आप अगर कहीं नहीं जा पाए तो आप बता दीजिए, कल ही चले जाएंगे यहाँ पे, हमारा डेलीगेशन कहीं छूट गया हो हमसे, भाई हमारी गलती, हम मानने को वो भी तैयार है कि अगर कोई छूट गया, कोई ऐसा घटना छूट गई हो जो दलित समाज के साथ गई हो, हुई हो, बदायूं, बरेली, हर जगह कोई ऐसा जिला बता दीजिए जहां पे दलित समाज के साथ अगर घटना हुई है और कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन ना पहुंचा हो। मैं आपको हर जिले गिना सकता हूं, आजमगढ़ गिना सकता हूं, बस्ती अभी मैं गिना सकता हूं, गोरखपुर में हुआ था मैं गिना सकता हूं, डेलीगेशन गया है ये बदायूं, आज ही की डेट में हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी वहां गए हैं, आगरा मथुरा में गया हूं, आजमगढ़ में गया हूं।
1: आप कहां नहीं गए? छोटा सा 2 लाइन में सिर्फ
5: मैं बता रहा हूं कि हांडिया में समाजवादी पार्टी का विधायक जाटव समाज का जमीन कब्जा का आरोप में उसकी हत्या होती है और उसका आरोप विधायक पर है सीधा सीधा, न वहां पर समाजवादी पार्टी के कोई लोग गए, न कांग्रेस पार्टी के कोई लोग गए।
1: धीरेन जी तो यूपी में योगी जी के राज में ये सब धांधली हो रहा है, आप बता रहे हैं, अच्छा है तो जाना चाहिए, बीजेपी वालों को भी जाना चाहिए पासवान जी की पार्टी के, उनका तो सरकार चल रही है।
5: हम लोग तो जा ही रहे हैं अंगना जी, ये लोग गलत जो आरोप लगा उस पर कर रहे हैं और कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हो रही है।
6: अरे तो आप एनडीए में हो, आप कार्रवाई कराओ, अगर हमारा विधायक दोषी है तो आपको पूरा हक है। आप तो कम से कम एक बात तो स्वीकार नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जमीन कब्जा हो रही है।
5: आप क्यों नहीं जा रहे हैं? हीट चल रहा है, गंदगी के
6: बनारस में तो एक रिटायर अध्यापक की जमीन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने कब्जा कर लिया, सब आज सबने चलाया
5: सीखा जा रहा है, मच्छरों का इलाज होता है।
1: ठीक है गुरु प्रकाश जी, अब जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, तनु जी से एक सवाल मुझे पूछना है। तनु जी, अल्टीमेटली SC ST एक्ट और जो आरोप लग रहे हैं वो कितने गंभीर हैं, आप भी समझते हैं इसका रेलेवेंस? अब वो जो ये धर्म जाति के आधार पर वैमनस्य फैलाने की कोशिश वाली जो बात जोड़ी गई है, आपको नहीं लगता है कि वो परेशानी बन सकती है आपकी पार्टी के लिए, राहुल जी के लिए?
2: देखिए परेशानी कहा, इतने सारे मुकदमे तो कर रखे हैं, एक मुकदमा और सही। हम तो भैया देखिए, हम तो समाज के लिए लड़ने को तैयार हैं, चाहे आप जितने FIR डालें, आप जितना परेशान हम लोगों करें, समाज की अगर बात आएगी तो हम उसको मजबूती से उठाएंगे। कोई भी समाज हो, कोई भी व्यक्ति हो जिसको परेशानी है, अगर महिलाओं को परेशानी है, अगर लड़कियों को परेशानी हो रही है कहीं, तो उनकी आवाज को मंच देना कोई गलत बात नहीं है। अगर दलित समाज के व्यक्ति को अगर परेशानी हो रही है तो विपक्ष के नाते उसकी आवाज उठाना कोई गलत बात नहीं है। मैं तो अमित कुमार जी के लिए भी कह रहा हूं कि अगर उनको आहत पहुंची है तो उनके खिलाफ से भी उनकी तरफ से भी होनी चाहिए, लेकिन जांच होकर के निष्पक्ष रूप से अगर आप कार्रवाई करें तो हम आपके साथ हैं।
1: ठीक है, अब गुरु प्रकाश जी, पूरे देश में ये देखा जा रहा है कि जिस राज्य में जिसकी सरकार है, विरोधी के खिलाफ वहां पर FIR कर दो। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही हूं सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में हो रहा है, ये कांग्रेस में भी हो रहा है, तो जो भी आपके सामने खड़ा है उसको टारगेट करने के लिए वहां FIR कर दो, इसको उसी कड़ी से जोड़कर क्यों ना देखा जाए?
0: नहीं देखिए अंजना जी, मैंने शुरुआत में भी कहा था और आपको पुनः बोल रहा हूं कि दलित समाज के सशक्तिकरण का मुद्दा ये वोट अबाउटरी का नहीं हो सकता है कि मेरे प्रांत का दलित दलित तुम्हारे प्रांत का दलित दलित नहीं है। ये बिल्कुल, ये कम से कम इस विचार से, इस थॉट प्रोसेस से हमारा कोई संबंध नहीं है। दूसरा, अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस पार्टी के माननीय सांसद महोदय है, सांसद महोदय ने कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूं। जवाहरलाल नेहरू जी का चिट्ठी है, सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू, 1961 में लिखा है सीएम्स को, पैराग्राफ नंबर 24 से एक बार पढ़ के आइएगा। बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस पार्टी बहुत सम्मान करती थी, तो ऐसा क्या हुआ कि दशकों बाद अपने प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न दे दिया आपने, बाबा साहब अम्बेडकर को आपने भारत रत्न क्यों नहीं दिया? आखिरकार 1990 में गैर कांग्रेस सरकार आती है, भाजपा समर्थित सरकार आती है, वहां पे बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न मिलता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे लोगों को भरमाने का जो आपने ये दुकान खोला हुआ है, जो व्यापार किया हुआ है, बिल्कुल ही गलत है। सदन में बाबा साहब अम्बेडकर का तैल चित्र तक नहीं लगने दिया आप लोगों ने, कम से कम फैक्ट चेक करना चाहिए आपको। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं अंजना जी, आपका दलित, मेरा दलित, मेरी आदिवासी, तुम्हारा आदिवासी, ऐसे नहीं देश चलेगा। इस देश को जातियों के नाम पे बांटना बंद करिए। अब आप राहुल गांधी जी की जो स्क्रिप्ट है, ये पता नहीं कहां से लिखवा के लाते हैं, कभी क्षेत्र, कभी जाति, कभी भाषा, मैं ब्राह्मण, तुम दलित, तुम पिछड़ा, मैं अगड़ा, ऐसे नहीं होता है। जन्म आधारित भेदभाव है, जन्म आधारित भेदभाव को खत्म करना है, सामाजिक न्याय को स्थापित करना है, लेकिन संविधान के नाम पे, आरक्षण के नाम पे, बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पे इस प्रकार का झूठ फैलाएंगे तो आपको फैक्ट चेक किया।
1: दो लाइन का कमेंट जल्दी से तनुजी, फिर मनोजी आ रहे
0: हैं, तो कम से कम पूरे जिम्मेदारी से अपने बातों को कहा करिए आप।
1: तनुजी, तो आप ही पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि आप अपनी पार्टी को आईना दिखाइए। तनुजी का शायद संपर्क टूट गया। मनोज जी जल्दी से, मनोज जी।
6: ये कई सारे सवाल खड़े हुए और मैं बस हालिया की घटनाएं बता दे। उत्तर प्रदेश के बनारस में प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में राम जन्म वनवासी की पीट पीट करके हत्या कर दी गई। वहां भारतीय जनता पार्टी बताए और मोदी जी की सरकार बताए कि कब जा रहे हैं और उस वनवासी समाज के युवाओं को न्याय कब मिलेगा। बदायूं में कोरी समाज के जो युवा की हत्या कर दी गई कस्टोडियल दे, तो उसको कब मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी को न संविधान सम्मत पार्टी है, न उसको हमारे देश के राष्ट्रीयता से कोई मतलब है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस देश में अराजकता, पाखंड बढ़ता रहे। नहीं, देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कब कहा कि उनको संविधान पर गर्व है? वो तो आए दिन मनुस्मृति की बात करते हैं। उत्तर जब अगर प्रधानमंत्री इतना संविधान सम्मत होते तो उनके सदन में एक एक एक अल्पसंख्यक समाज से आने वाले सांसद के खिलाफ किस किस तरह के
1: सिर्फ एक लाइन का जवाब गुरुजी आपको देना पड़ेगा, टाइम खत्म हो चुका है।
6: किसी ने
1: सिर्फ एक लाइन
0: नहीं नहीं देखिए ये नहीं नहीं ये मनुस्मृति की बात आपके नेता राहुल गांधी लेकर के आए थे। ये देश अब अनु की बात कर रहा है, एटम की बात कर रहा है, वहां पे आइए आप। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बना रहा है, ड्रोन दीदियां आ रही हैं, अनु के दौर में मनु को लेकर के क्यों आना है भाई? जन्म आधारित भेदभाव पे इस प्रकार से राजनीतिक हथियार बनाना।
1: समय इतने की इजाजत देता है, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज रात 9 बजे जरूर रहिएगा हमारे साथ ब्लैक एंड व्हाइट में। आपको बताएंगे क्या प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन और शी जिनपिंग की मुलाकात को डोनाल्ड ट्रंप लाइव देखेंगे। पिछली बार का क्या उन्होंने पोस्ट किया था तीनों की मुलाकात पर आपको दिखाएंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि अगर नेपाल में प्रलय का अलर्ट मिल गया था तो तबाही क्यों नहीं रुक पाई। और आखिर में आपको दिखाएंगे कि आरएसएस का विरोध करने के लिए तिरंगे का अपमान क्यों।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: बहुत टायर्ड हो गई।
1: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स बादाम पिस्ता काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
2: लायन डेट नट बाइट्स।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
0: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
2: मुल्तानी खू का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी खू का कॉफ सिरप।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
4: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
3: असली शहद, असली स्वाद।
5: In association with
6: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। Sera Sanitary Wear, it's your moment of Sera.
7: Tuck, digital first channels, 11 billion views, 85 million unique viewers, one stop solution for your brand, regional or hyper local reach. Har shahar, har kasbe tak advertise karne ke liye email karein.
8: 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, पहले प्रधानमंत्री हमारे नेहरू जी बने। उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे पहले प्रधानमंत्री बनते तो भारत की क्या दिशा और दशा होती?
9: ये तुमने सवाल क्वेश्चन किया, ये संसद में होता तो बड़ा मजा आता। हां, तरीकी एक पार्टी बोलती कि कश्मीर हमारा होता, अफगानिस्तान तक हम कब्जा कर लेते, पब्लिक बाहर सुन के ताली वाली ही बजाती।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: नोवा कोटा से ऊपर मैं त्रिशूली में आया हूँ, देख लीजिए सैलाब का ये सितम।
3: ये वही त्रिशूली नदी है जिसमें पानी मलबे के साथ पूरे आवेग के साथ आया।
2: पीछे जो आपको इमारतें दिख रही है ना, वो सारी बिल्कुल खंडहर हो चुकी है।
3: जो निचले इलाके हैं उन सबसे ऊंचाई की तरफ लोगों को जाने के लिए कहा गया है।
4: चितवन में आज तक की टीम मौजूद है और आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं।
2: मैं आशुतोष मिश्रा,
4: रोहित सिंह,
3: श्वेता सिंह, नेपाल आज तक।
5: ये सिर्फ मिट्टी नहीं है, यदि मिट्टी किसी के घर का चूल्हा जलाती है तो किसी का सपना बनती है और किसी को 1.5 करोड़ का कारोबार दे देती है। गोरखपुर की टेराकोटा कला अब गांव से निकलकर देश और विदेश तक पहुंच चुकी है। मैं हूं पूजा मरुत्रा और आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल। गोरखपुर के खोटान खास, गुलरिया और औरंगाबाद जैसे गांवों में पीढ़ियों से कुम्हार तालाब की खास चिकनी मिट्टी से हाथी, घोड़े, दिए, मूर्तियां और सजावटी सामान बनाते आ रहे हैं। पहले मिट्टी को गूंथा जाता है, फिर उसे आकार दिया जाता है और भट्टी में पकने के बाद वही साधारण मिट्टी खूबसूरत टेराकोटा बन जाती है। यही कला आज महिलाओं समेत पूरे परिवारों को रोजगार दे रही है। इस कहानी का सबसे बड़ा चेहरा है राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित राजन प्रजापति। कभी मिट्टी के घर में रहने वाले राजन आज करीब 1.5 करोड़ रुपए सालाना का कारोबार करते हैं। उनकी फैक्ट्री से साल में 24 ट्रक टेराकोटा का सामान देश भर में भेजा जाता है। राजन बताते हैं,
6: हमारा जब से ODOP योजना आया तब से हम लोन लिया, आज तक मेरा कंटिन्यू अच्छा चलता है और रिकॉर्ड अच्छा है, हम लोग बराबर लोन बना रहता है हमारा।
5: वहीं पन्नेलाल प्रजापति सरकारी मुफ्त टूल किट मिलने के बाद हर महीने 1 ट्रक माल भेज रहे हैं। उनका कारोबार भी 60 से 70 लाख रुपए सालाना तक पहुंच चुका है। सरकार की ODOP योजना ने बदल दी है पन्नेलाल की जिंदगी। वो बताते हैं,
7: 2017 के बाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसको वो जब लॉन्च किया, इसको पहले कोई कला को जानता नहीं था, उन्हीं के माध्यम से विश्वकर्मा सम्मान योजना, ODOP टूल किट, ये सब हम लोग ट्रेनिंग कर चुके हैं।
5: गोरखपुर के टेराकोटा ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया है। फिर मिला इसे GI टैग जिससे इसकी अलग पहचान बनी। सरकार ने प्रशिक्षण टूल किट सब्सिडी देकर कारीगरों को सिर्फ हुनर नहीं बल्कि बाजार भी दिया। कभी गांव की मिट्टी सिर्फ खिलौने बनाती थी, आज वही मिट्टी पहचान बना रही है, रोजगार दे रही है और दुनिया को बता रही है कि भारत की असली ताकत सिर्फ कारखानों में नहीं कारीगरों के हाथों में बसती है।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: दलित वोट पर आर पार, राहुल गांधी पर एफआईआर। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल में बहस। हम ब्रेक नहीं ले रहे हैं, अब देखिए सात तक नेहा के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं आपके साथ हूं मैं नेहा पाठक। अगले आधे घंटे में आपको देश और दुनिया की हर बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे, लेकिन शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। एससीओ समिट के दौरान पुतिन पीएम मोदी में मुलाकात, रक्षा सहयोग, निवेश, भुगतान व्यवस्था पर होगी बातचीत, ईरान के राष्ट्रपति से हो चुकी है मंत्रणा। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार, चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी 7.8%, पीएम मोदी बोले निराशावादी लोगों की हुई हार। शुद्धिकरण विभाग में आमने सामने कांग्रेस बीजेपी, राहुल गांधी पर एफआईआर के बाद सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता, एससी एसटी एक्ट में दर्ज हुआ है मामला। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी विरोध प्रदर्शन, मामले में एससी में पहुंची दिल्ली पुलिस, 13 एफआईआर रद्द करने की मांग, आपराधिक पृष्ठभूमि के 2873 लोगों पर दर्ज हो चुके हैं केस। यूपी के कौशाम्बी में मरने वालों का आंकड़ा हुआ 11, पटाखा फैक्ट्री धमाके में गई जान, सीएम योगी ने 2-2 लाख मुआवजे का किया ऐलान। शुरुआत कर रहे हैं यूपी में चुनावी सियासत के साथ, जहां सभी दलों ने 27 के चुनाव के लिए कमर कस ली है। लखनऊ में आज का दिन बैठकों का दौर रहा, यूपी की तीन बड़ी पार्टियों ने लखनऊ में तीन बड़ी बैठकें की, बीजेपी, सपा और बीएसपी तीनों ने चुनावी तैयारियों पर मंथन किया। दूसरी तरफ अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी यूपी में स्पेशल एनुअल रिविजन यानी एसएआर के बहाने वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा कराने वाली है।
1: उत्तर प्रदेश में चुनावी दस्तक होने ही वाली है, उससे पहले हर दल पूरी तैयारी में जुटा है। बीजेपी की नई टीम ने सभी जिलाध्यक्षों, मोर्चा अध्यक्षों से लेकर सीएम, डिप्टी सीएम के साथ तैयारी की बैठकें की हैं, तो समाजवादी पार्टी ने भी प्रदेश भर से जिलाध्यक्षों, महानगर अध्यक्षों को टेक टीम के साथ बुलाया था और बीएसपी ने भी अपने सभी जिला प्रमुखों के साथ बैठक की। बीजेपी ने अपनी बैठक में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर सेवा संकल्प अभियान चलाने का प्लान बनाया है।
2: हर जिले से 5-8 पदाधिकारी, विधायक, सांसदों को आज बुलाया गया है। एक खाका तैयार किया जाएगा यूपी चुनाव के मद्देनजर कि किस तरीके से आखिर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को जवाब देने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी भी आज ही लखनऊ में बड़ी बैठकें कर रही है। देखना यह है कि इन बैठकों के दौर में कौन बाजी मारेगा, लेकिन एक बात तो साफ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे चुनाव में चेहरे के तौर पर नजर आ रहे हैं और स्मृति ईरानी का ध्यान भी अब उत्तर प्रदेश में केंद्रित हो चुका है।
1: बैठक के बाद सीएम योगी बहराइच के कार्यक्रम में पहुंचे और यहां उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा।
3: किसी बेटी को, किसी व्यापारी को, किसी माफिया और किसी अपराधी से भयभीत होने की आवश्यकता भी अब यूपी में नहीं पड़ती है, यही है डबल इंजन सरकार की कार्य।
1: इधर समाजवादी पार्टी की बैठक में अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार अभियान का शंखनाद कर दिया।
4: कल से हमारी पार्टी का प्रचार एक तरह से शुरू।
1: अखिलेश यादव के लिए घोटाले, भ्रष्टाचार, पीडीए अत्याचार, बंद स्कूल, फर्जी मुठभेड़, किसान संकट, अपराध और एसएआर ये मुद्दे हैं।
4: एसआईआर के बाद भारतीय जनता पार्टी की चुनाव आयोग के माध्यम से साजिश होगी और एक षड्यंत्र होगा कि दोबारा एसएआर कराया जाए।
1: तो फिर सवाल है कि एसएआर क्या है? एसएआर बोले तो स्पेशल एनुअल रिविजन, ये चुनाव आयोग अनिवार्य रूप से हर साल करता है। इसे स्पेशल समरी रिवीजन कहा जाता है, जो सालाना आमतौर पर अक्टूबर नवंबर में शुरू होता है। इसमें 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 साल की उम्र के हो चुके नौजवानों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाता है। अखिलेश इस संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं
4: कि चुनाव से पहले एक एनुअल रिवीजन करेंगे ये लोग एसएआर, जिससे कि ये अपने लोगों के वोटों को एडजस्ट करेंगे। सुनने में आ रहा है कि बड़े पैमाने पर बिहार से लोग, झारखंड से लोग, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उनके ये लोग वोट बनाएंगे और अपने बूथों पर वोट बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए हमारे संगठन, हमारे जो बूथ स्तर पर ऐप के माध्यम से काम कर रहे हैं, उन सब का हमने सहयोग मांगा है।
1: अखिलेश एसआईआर के बाद एसएआर को नियम के विपरीत बताते हैं और इसे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने की मंशा से किए जाने वाला अभ्यास बता रहे हैं। इस तथ्य का जिक्र जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में सामने आया तो अदालत ने फिलहाल चल रहे सिर्फ 19 ट्रिब्यूनल्स की संख्या बढ़ाने और वाजिब नामों को लिस्ट में जोड़ते जाने को कहा था। आज तक ब्यूरो।
0: संभल में आज बाबा का बुलडोजर गरजा। संभल में ग्राम समाज की जमीन पर अवैध तौर पर मजार बना ली गई थी, जिस पर आज प्रशासन ने एक्शन लिया और बुलडोजर से मजार को ढा दिया गया।
1: फिर गरजा है बाबा का बुलडोजर, फिर ढाया गया है अवैध अतिक्रमण, फिर से हुई है बुलडोजर वाली कार्रवाई। जी हाँ, ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के संभल में नीम खेड़ा बछेड़ा की हैं। आरोप है कि यहाँ ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जा करके ये मजार बना दी गई थी, मगर आज इस अवैध मजार को तोड़ दिया गया।
5: संभल में लगातार सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त करने के लिए प्रशासन का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, जहां संभल के रायसत्ती थाना क्षेत्र के नीमखेड़ा बझेड़ा गांव में सरकारी भूमि पर बनी हुई फिलहाल यहां पर जो मजार थी उसको फिलहाल यहां पर ध्वस्त करने की जो पूरी कार्यवाही है वो यहां पर बुलडोजर एक्शन के जरिए की जा रही है। और फिलहाल यहां आप जो तस्वीरों में देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से जो बुलडोजर एक्शन के जरिए पूरी मजार को यहां पर ध्वस्त किया गया है, और कुछ ही मिनट के अंदर इस पूरी मजार को जमींदोज कर दिया गया है। लगातार बुलडोजर इस पूरी मजार पर गरज रहा है। आपसे कुछ ही देर पहले तक यहाँ मजार बनी हुई थी और अवैध कब्जा करके मजार बनाई गई थी, और देखिए अब यहाँ पर ये पूरा जो बुलडोजर एक्शन के जरिए जो यहाँ पर मजार है उसको यहाँ पर हटाने की कार्रवाई यहाँ की गई है। फिलहाल आप यहाँ जो देखेंगे तो देखिए पुलिस फोर्स की यहाँ पर लगातार यहाँ पर जो तैनाती बनी हुई है, और लगातार फिलहाल यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को यहाँ तैनात किया गया था।
1: दरअसल संभल जिला प्रशासन अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रहा है। इसी क्रम में लेखपाल ने अपनी एक रिपोर्ट में इस मजार के विषय में बताया था, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई।
6: लगातार ग्राम सभा की संपत्तियों से अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है। इसी क्रम में ग्राम नीम खेड़ा बझेड़ा के लेखपाल के द्वारा एक आख्या दी गई तहसीलदार महोदय के न्यायालय में, जिसमें यह बताया गया कि एक अवैध मजार जो है पशुचर की भूमि पे बनाई गई थी। हमारी पशुचर की जमीन लगभग 1.5 हेक्टेयर की थी, उसमें 50 से 70 वर्ग मीटर के भूमि पर लगभग इतनी भूमि पर एक अवैध मजार का निर्माण किया गया था, जिसमें 9/6/2026 को तहसीलदार महोदय के न्यायालय से एक बेदखली का आदेश पारित किया गया। उसी के अनुपालन के लिए आज पुलिस विभाग के साथ समन्वय करके हमारी राजस्व टीम ने इस मजार को बेदखल करके और संपत्ति को ग्राम सभा को सौंप दिया।
1: इस कार्रवाई से एक बात तो साफ है कि यूपी में अगर अवैध मकान दुकान मजार बनाएंगे तो प्रशासन के लोग उसे हर हाल में ढहाएंगे। अभिनव माथुर, संभल।

0: आजतक।
1: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इस वक्त कनाडा में हैं, मगर उनके यूएस में दिए गए बयान पर सियासत तेज है। आज ओवैसी ने भागवत के बयान पर सवाल उठाए। उधर कनाडा में ऐतिहासिक मंच से संघ प्रमुख ने दुनिया को लेकर भारत की सोच को पूरी तरह साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू सदा से विश्व बंधु रहा है और जब जब हिंदू समाज जागरूक होता है तब तब पूरी दुनिया का कल्याण और जागरण होता है।

0: इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आज एससीओ समिट में किर्गिस्तान में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होनी है। ये मुलाकात अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी। बिश्केक में ये मुलाकात होनी है एससीओ समिट में, और ये बेहद अहम मानी जा रही है हर लिहाज से। दोनों देशों के बीच ये कूटनीतिक वार्ता, प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की ये मुलाकात। प्रणय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, वार्ता शुरू हो चुकी है, कितनी देर तक चल सकती है, क्या संभावित मसले हो सकते हैं?
1: देखिए, महत्वपूर्ण मुलाकात जो कि एससीओ शिखर बैठक के हाशिए पर हो रही है प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की, शुरू हो चुकी है। और ये बैठक कई लिहाज से महत्वपूर्ण है, चाहे वो एक बड़ी मैसेजिंग हो कि अमेरिका में या पश्चिमी देशों में भले ही रूस के साथ कारोबार या रूस के साथ संपर्क रखने को लेकर प्रतिबंधों की बात की जा रही हो, लेकिन भारत के संबंध और भारत की जो विदेश नीति है वो अपनी स्वायत्तता रखती है और एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भारत जो है उस पर आगे बढ़ रहा है, इसलिए वो इससे प्रभावित नहीं है। दूसरी बात यह है कि रीजनल कनेक्टिविटी, क्योंकि ये पूरा दौर ऐसा है जिसमें सप्लाई रूट के ऊपर सबसे ज्यादा तनाव महसूस किया जा रहा है, सप्लाई लाइन डिस्ट्रप्टेड हैं, ऊर्जा के साधन संसाधन जो हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, तो ऐसे में भारत और रूस मिलकर किस तरीके से रीजनल कनेक्टिविटी पर आगे काम कर सकते हैं। साथ ही जो बहुपक्षीय सहयोग की प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो ब्रिक्स हो चाहे एससीओ हो, इसमें भारत और रूस मिलकर कैसे काम कर सकते हैं, जो व्यापक व्यवस्थाएं हैं आर्थिक सुधार की, यानी डी डॉलराइजेशन से लेकर अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम से लेकर जो क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन से, उन तमाम मुद्दों के ऊपर भी भारत और रूस किस तरीके से मिलकर काम कर सकते हैं, ये सारे मुद्दे होंगे जो प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की चर्चा में होंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति पुतिन को अगले दो हफ्ते में भारत आना है ब्रिक्स की शिखर बैठक के लिए, तो उस लिहाज से भी ये मुलाकात महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और हमने देखा है कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात हुई है, कोई ना कोई बड़ा महत्वपूर्ण अहम फैसला या कम से कम तस्वीरें तो आई ही हैं। पिछली बार तियानजिन के अंदर दोनों कार के अंदर करीब एक घंटे बैठ के बात करते रहे, और अभी भी संकेत मिल रहे हैं कि संभव है कि इस मुलाकात के ठीक बाद, क्योंकि नोमैड गेम्स का जो इवेंट है उसमें तमाम जो एससीओ के नेता हैं उन्हें पहुंचना है, तो उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एक बार फिर कार में साथ जाते हुए सफर करते हुए नजर आए।
0: इसके अलावा प्रणय, जो वैश्विक हालात चल रहे हैं, चाहे वो ईरान और यूएस युद्ध ही क्यों ना हो, उस पर भी किस तरह से संभवतः चर्चा होगी?
1: बिल्कुल नहीं, ठीक कहा आपने, ये तो एक ऐसा मुद्दा है जो निश्चित रूप से चर्चा के अंदर होगा भारत और रूस के नेताओं की बातचीत के अंदर, खासतौर पर वो अगर एससीओ के हाशिए पर हो रही है, ऐसे समय में हो रही है जब वहां पर ईरान के राष्ट्रपति भी पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अब से कुछ देर पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजशकियान से बातचीत भी हुई थी, तो निश्चित रूप से ये मुद्दा न केवल बातचीत और चर्चा के अंदर होगा दोनों नेताओं की, बल्कि इसके साथ साथ इन चीजों के ऊपर भी चर्चा होनी है। और उम्मीद की जा रही है कि किस तरीके से एक वैकल्पिक व्यवस्था या जो वैश्विक संस्थाएं हैं उनके सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। भारत लंबे समय से ये कहता रहा है कि चाहे वो रूस यूक्रेन की जंग हो, चाहे पश्चिम एशिया का ये संकट हो, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्थाएं जो है वो अपनी भूमिका नहीं अदा कर पा रही है, यानी युद्ध और संघर्षों की गाड़ी के ऊपर एक्सीलेटर तो दबा दिया गया लेकिन अभी तक ब्रेक नहीं लगाया जा पा रहा है। तो इसलिए उन सारी व्यवस्थाओं के ऊपर कैसे मिलकर भारत और रूस काम कर सकते हैं, वो सारी चीजें बातचीत के एजेंडा पर होंगी।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब आज शुद्धिकरण विवाद की, जिस पर उत्तराखंड की सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है। राहुल गांधी पर एफआईआर के बाद इस विवाद ने तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस ने बकायदा पुलिस से मिलकर एफआईआर का विरोध किया, तो बीजेपी ने भी राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया।
2: ये SC ST एक्ट के खिलाफ ये काम है। लेट मी रिपीट हियर, इट इज ए क्राइम टू डू शुद्धिकरण। नो एक्शन हैज बीन टेकन। हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी जिन लोगों ने शुद्धिकरण किया है उत्तराखंड में, उन पर FIR लागू हो। ये जो इंसिडेंट है ये हमें दिखाता है बीजेपी और RSS का माइंडसेट। वो नहीं चाहते कि इस देश के दलित प्रगति करें, वो नहीं चाहते कि इस देश के दलित रिस्पेक्ट के साथ जिए और सक्सेसफुल।
3: यही वो बयान है जिसके आधार पर उत्तराखंड की पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज की है। 8 अगस्त को मल्लिकार्जुन खड़गे की हल्द्वानी रैली के बाद 11 अगस्त को वहां के रामलीला ग्राउंड पर पूजा और हवन किया गया। 29 अगस्त को जब राहुल गांधी ने इस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो दलित समाज से आने वाले अमित कुमार की शिकायत पर हल्द्वानी में राहुल गांधी के खिलाफ SC ST उत्पीड़न एक्ट के तहत FIR दर्ज की गयी। लेकिन अब ये FIR उत्तराखंड समेत पूरे देश में दलितों के नाम पर नए सियासी संग्राम को जन्म दे रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं की

0: स्थित शुद्धिकरण पर एफआईआर दर्ज करने को लेकर पुलिस से बहस हुई।
1: सुन लीजिए, एससी एसटी का मामला है, ये सीओ स्तर का अधिकारी तो जांच करता, लेकिन जांच करने के बाद जो है क्या सही है तो उसके बाद है, लेकिन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लेने के लिए आप तैयार नहीं।
0: इधर दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा के मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई।
2: हमारे समाज में कुछ लोग दलित हैं, लेकिन समाज में बंटवारा कौन कर रहा है? ये भाजपा और आरएसएस की विचारधारा है जो बंटवारा कर रही है, और यही इनका मकसद था जो इन्होंने अपने कुछ लोगों को भेजकर वहां पर सो कॉल्ड शुद्धिकरण करके, मतलब क्या था इनका? अगर राजनीतिक मतलब नहीं था तो क्या था, ये बता दें।
0: खड़गे के बहाने दलितों के अपमान को मुद्दा बना रही कांग्रेस पर पलटवार बीजेपी ने भी किया।
3: यहाँ पर रामलीला का मंचन होता है, बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, ऐसे आयोजनों पर जो गंदगी हुई थी, जो धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए थे और एक धर्म विशेष के लोगों ने लगाए थे, उसके विरोध में लोगों ने, जो धार्मिक संगठन थे, उन्होंने उस वहाँ पर शुद्धिकरण का जो कार्यक्रम किया था वो कार्यक्रम था, और इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी मुद्दाविहीन हो गई है।
4: कांग्रेस प्रेसिडेंट
0: राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर में भी खड़गे की रैली के बाद रामलीला मैदान में न सिर्फ शराब की बोतलें बल्कि धार्मिक नारेबाजी की शिकायत दर्ज है। अब कांग्रेस उत्तराखंड पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगा रही है।
5: हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, आरएसएस और बीजेपी पार्टी थी, उन लोगों ने कुकृत्य किया था, लेकिन पुलिस ने उसमें आग में घी डालने का काम किया है। पुलिस कौन होती है? अगर कॉग्निजेंस लेना था आपने तो आप 10 तारीख के प्रकरण का कॉग्निजेंस लेते और मुकदमा कायम करते, लेकिन आपने मुकदमा कायम कर दिया राहुल गांधी के खिलाफ।
0: हल्द्वानी का मामला ऐसे समय में गंभीर राजनीतिक मोड़ ले रहा है जब राहुल चाय की दुकानों पर भी दलितों से भेदभाव जैसे आरोप लगा रहे हैं। आज तक ब्यूरो,
6: देश के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए।
7: और सीधे आपको किर्गिस्तान ले चलते हैं, जहां पर इस वक्त एससीओ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हो रही है। वहीं की ताजा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बिश्केक में मुलाकात चल रही है। आज सबकी निगाहें इसी मुलाकात पर टिकी हुई थी जब प्रधानमंत्री पुतिन से मुलाकात करेंगे। कई अहम मुद्दों पर इस मुलाकात में चर्चा हो सकती है और ये पहला मौका नहीं है, पिछले कुछ महीनों में ये दूसरी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की। प्रणय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, मुलाकात की कुछ तस्वीरें आई हैं, लेकिन कुछ और फ्रेंडली पिक्चर्स हम शायद उम्मीद कर सकते हैं इस मुलाकात के बाद?
8: निश्चित रूप से, ये जो तस्वीर है ये तो कुछ पुरानी है नेहा, लेकिन ये बात जरूर है कि राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की जो बिश्केक में मुलाकात चल रही है उसकी तस्वीरों पर पूरी दुनिया की नजर होगी। हमने देखा था कि पिछली बार टियानजिन के अंदर जब प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और शी जिनपिंग ठहाका लगाते हुए नजर आए थे, तो उसके बाद जो काफी तीखी और तल्ख प्रतिक्रिया व्हाइट हाउस से राष्ट्रपति पुतिन, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी आई थी। और जहां तक इसके पहले तस्वीरों का आपने जिक्र किया, आपको याद है टियानजिन के अंदर ही वो कार डिप्लोमेसी की तस्वीर जहां प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एक साथ एक कार के अंदर सफर करते नजर आए, फिर उसके बाद उसका अगला संस्करण नजर आया जब दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति पुतिन भारत आए थे, प्रधानमंत्री मोदी न केवल एयरपोर्ट पर उन्हें लेने के लिए गए थे बल्कि दोनों एक साथ कार में सफर करते हुए प्रधानमंत्री निवास लोक कल्याण मार्ग पहुंचे थे। और इस बार फिर उम्मीद की जा रही है कि कुछ इस तरीके की तस्वीर एक बार बिश्केक में भी नजर आ सकती है, लेकिन इन तस्वीरों से परे भारत और रूस के संबंधों का जो दायरा है वो काफी व्यापक है।
7: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात यूपी में हुए मर्डर को लेकर चल रही राजनीति की करेंगे। अंकित बालियान की हत्याकांड के हफ्ते भर के अंदर ही दो आरोपी ढेर कर दिए गए हैं एनकाउंटर में, लेकिन अंकित बालियान मर्डर केस को लेकर अपराध से अधिक सियासत की चर्चा है। दरअसल इस हत्याकांड की बुनियाद में ही जात गोत्र की बड़ी वजह है। हत्या के बाद अखिलेश यादव ने उसी जाति गोत्र की बात की तो राजनीति तेज हो गई।
9: छब्बीस अगस्त को शामली में हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बालियान की हत्या होती है। चार दिन तक जब कोई एक्शन नहीं होता तो बालियान की पत्नी सीएम योगी से हथियारों को मिट्टी में मिला देने की अपील करती हैं, और एक दिन बाद हत्या के दो आरोपियों का हिसाब किताब पूरा हो जाता है। केराना में पुलिस और एसटीएफ के आरोपियों से मुठभेड़ होती है। हत्या के दो आरोपियों को पुलिस की टीम घेर लेती है। एनकाउंटर में दोनों आरोपियों को मार गिराया जाता है।
10: दो शूटर्स मारे गए हैं, सुमित और मोहित, और इनके पास से भारी मात्रा में आग्नेयास्त्र बरामद हुए हैं। इन्होंने पुलिस पर भारी फायरिंग भी की है जिससे दो कांस्टेबल्स भी हमारे घायल हुए हैं। अभी इस घटना में और भी लोग शामिल हैं जिनके बारे में तफ्तीश जारी है, और खास करके जो शूटर्स हैं और जो इस गैंग के लीडर्स हैं जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को प्लान किया है या अंजाम दिलाया है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।
9: लेकिन इस एनकाउंटर पर सियासत सुलग उठी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस पीडीए के लोगों का एनकाउंटर कर रही है। उन्होंने एसटीएफ की भी नई परिभाषा दी।
11: मुख्यमंत्री जी की एसटीएफ स्वजाति टॉर्चर फोर्स, स्वजाति टॉर्चर फोर्स, और लगातार पीडीए का उत्पीड़न हो रहा है।
9: अकेले अखिलेश यादव ही नहीं, समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव भी इस एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं।
12: कोई लॉ एंड ऑर्डर है उत्तर प्रदेश में? सिवाय हत्याएं या गोली मार के एनकाउंटर कराना फर्जी, इसके अलावा कुछ भी नहीं।
9: हालांकि राम गोपाल यादव के बयान को अंकित बालियान के पिता ने ही खारिज कर दिया।
13: कहा है उन्होंने की ये फर्जी, इसके पीछे आप क्या समझते हैं
14: भाई? वे तो राजनीतिक पार्टी है, वे तो पता नहीं क्या कहेगी क्या नहीं, लेकिन जब मैं खुद देख आया उनको दोनों को जिन्होंने पीछे से गोली मारी थी, तो मैं फर्जी कैसे कहूंगा।
9: अब यूपी की सरकार कह रही है कि आरोपियों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
15: बहुत ही दुखद घटना थी और प्रदेश पुलिस ने उन्हें पुलिस मुठभेड़ में मारा है। अंकित बलियान जी की जो निर्मम हत्या हुई थी, प्रदेश दुखी था। उन हत्यारों ने पुलिस पर भी गोलियां चलाई जिसकी किए की सजा उन्हें मिल चुकी है।
9: दो आरोपी पुलिस के एनकाउंटर में मारे गए और बाकी के आरोपियों को पुलिस तलाश रही है। इन सब के बीच अंकित की बहन मांग कर रही है कि बाकी आरोपियों का भी एनकाउंटर होना चाहिए।
16: हमें तब तक संतुष्टि नहीं मिलेगी तब तक मेरे भाई के हत्यारे संपूर्ण खत्म नहीं हो जाते, आपकी जड़ तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे, नहीं हम शांति से बैठेंगे।
9: एक तरफ परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है और दूसरी तरफ एनकाउंटर पर जबरदस्त सियासत हो रही है। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
7: और एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर शर्मसार हुई है। यहां पर निर्भया जैसी दरिंदगी सामने आई। इस बार ग्रेटर नोएडा में बस में चढ़ी एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया गया। हैरानी की बात यह रही कि ग्रेटर नोएडा के परी चौक से कश्मीरी गेट तक बस चली और इस दौरान लड़की के साथ दरिंदगी की गई, लेकिन दोनों राज्यों की पुलिस को कानो कान खबर नहीं हुई।

0: दो राज्यों की पुलिस सचेत रहती तो एक और निर्भया कांड नहीं होता। ग्रेटर नोएडा के सबसे व्यस्त चौराहे परी चौक से बस में सवार एक बच्ची दरिंदों का शिकार हो गई। करीब 47 किलोमीटर तक बस दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर दौड़ती रही और ड्राइवर और कंडक्टर नाबालिग से वहशत को अंजाम देते रहे। वारदात 4 अगस्त की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक छात्रा अपने परिवार वालों से नाराज होकर घर से निकली थी और चचेरे भाई के घर जा रही थी जो नोएडा में रहता है। भारी बारिश और अंधेरे की वजह से छात्रा गलती से परी चौक पर उतर गई। इसी दौरान एक खाली स्लीपर बस वहां से गुजरी। छात्रा को नोएडा सेक्टर 62 छोड़ने का भरोसा दिया और फिर ड्राइवर और कंडक्टर ने छात्रा से गैंगरेप किया। वारदात के बाद आरोपी छात्रा को कश्मीरी गेट बस अड्डे के पास रिंग रोड पर उतार कर वहां से फरार हो गए। फिर छात्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपियों की धरपकड़ की कोशिश शुरू हुई।
1: दिल्ली में एक बार फिर से एक ऐसा मामला सामने आया है जो फिर से पूरी दिल्ली एनसीआर को शमसार कर देगा। दरअसल ये मामला चलती बस में एक गैंग रेप का है। 16 वर्षीय मैनपुरी की रहने वाली 11वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की घर से लड़कर घर से बाहर निकलती है, बस पकड़ के अपने भाई के घर मैनपुरी से नोएडा आना चाहती है, लेकिन उस रात बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से उसे पता नहीं लगा और परी चौक के पास वो बस से उतर जाती है, जिसके बाद वो हाथ देकर एक स्लीपर बस को रोकती है। बस रुकती है और उसे कहती है कि वो सेक्टर 63 तक उसे छोड़ देंगे। बस पे चढ़ने के कुछ देर बाद ही जो बस का कंडक्टर है उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, उसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट करने लगता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने कुछ किया तो उसे जान से मार देंगे। इसके बाद करीब 47 किलोमीटर तक जो वो बस है दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर चलती है। नोएडा में इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद लड़की को कश्मीरी गेट के पास लाकर उतार दिया जाता है और फिर वो लड़की पीड़िता खुद पुलिस के पास पहुंचती है। और यहां आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन है। इसी पुलिस स्टेशन में आकर वो कंप्लेन देती है।
0: दिल्ली पुलिस ने गैंगरेप की वारदात के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। स्लीपर बस को जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है।
2: नए आपराधिक कानूनों के अनुसार बिना ज्यूरिसडिक्शनल इश्यूज में गए हुए थाना कश्मीरी गेट ने तुरंत विक्टिम का मेडिकल कराया और केस दर्ज किया। साथ ही सीसीटीवी कैमरेज की सहायता से कुछ ही घंटे में बस को भी ट्रेस किया और दोनों अपराधियों को भी अरेस्ट किया।
0: सवाल ज्यूरिसडिक्शन का नहीं है, सवाल यह है कि ग्रेटर नोएडा से दिल्ली तक बस चलती रही और गैंगरेप होता रहा और दोनों राज्यों की पुलिस को कानो कान खबर नहीं हुई। सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस की उन साझा बैठकों से क्या हासिल हुआ जो मिलजुल कर अपराध रोकने के लिए होती हैं। दिल्ली से अरविंद ओझा और अंशुल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
3: और बात शेयर बाजार की। कारोबार के दौरान घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ है। इस दौरान सेंसेक्स 307 अंक टूटकर 76,957 और निफ्टी 95 अंक की गिरावट के साथ 24,080 पर बंद हुआ है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से निवेशकों की चिंता बढ़ गई है और FMCG शेयर्स में बिकवाली और विदेशी निवेशकों की लगातार निकासी से भी बाजार पर दबाव रहा। कारोबार के दौरान सेंसेक्स करीब 513 अंक तक टूट गया। हालांकि निचले स्तरों पर खरीदारी से गिरावट कुछ सीमित रही। शेयर बाजार में गिरावट के बावजूद रुपए में मजबूती देखने को मिली और डॉलर के मुकाबले रुपया 26 पैसे मजबूत होकर 95.17 के स्तर पर बंद हुआ। आरबीआई के संभावित हस्तक्षेप और डॉलर में कमजोरी से रुपए को सहारा मिला। हालांकि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के चलते रुपए पर दबाव बना रहा। वहीं सराफा बाजार में आज गिरावट का रुख रहा और सोना 4,453 रुपए गिरकर 1,55,125 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया, जबकि चांदी 8,437 रुपए गिरकर 2,35,455 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में नरमी और मुनाफा वसूली के चलते घरेलू सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। और बात 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की, जिसने दिलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में इतिहास रच दिया है। वैभव दिलीप ट्रॉफी के इतिहास में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने ये मुकाम सेंट्रल जोन के खिलाफ मैच में हासिल किया है।
4: रेड बॉल क्रिकेट में भी वैभवशाली पारी खेली सूर्यवंशी ने। शतक से चूके बाल बाल बचा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड। सफेद ड्रेस और लाल गेंद, आमतौर पर ऐसी तस्वीरों में वैभव सूर्यवंशी जैसे तूफानी बल्लेबाज को देखने की उनके फैंस को आदत नहीं है, क्योंकि उनका अंदाज रंगीन कपड़ों के क्रिकेट में ज्यादा जलवा बिखेरता रहा है। लेकिन सूर्यवंशी का वैभव क्रिकेट के गंभीर फॉर्मेट में भी मैदान के चारों कोनों को गुलजार कर रहा है। मौका था दलीप ट्रॉफी का। वैभव आजकल बेंगलुरु में चल रहे दलीप ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में सेंट्रल जोन के खिलाफ ईस्ट जोन के लिए खेल रहे हैं। खेल क्या रहे हैं, गेंदबाजों की क्लास ले रहे हैं। आज मुकाबले का दूसरा दिन है। ईस्ट जोन की जब बल्लेबाजी आई तो वैभव सूर्यवंशी ओपनिंग करने उतरे। वैभव ने सेंट्रल जोन के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए मैदान के चारों तरफ चौके और छक्के बरसाए। उन्होंने 81 गेंदों में 113 के विस्फोटक स्ट्राइक रेट से 92 रन बनाए, जिसमें 7 चौके और 7 छक्के शामिल थे। आखिरकार वो शतक बनाने से चूक गए, लेकिन सबसे कम उम्र में दलीप ट्रॉफी में अर्धशतक जमाने वाले बल्लेबाज बन गए। वैसे अगर वो 8 रन और बना लेते तो सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाले सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ देते। आज तक ब्यूरो।
3: एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच बिश्केक में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात चल रही है। ये तस्वीरें वहीं से आ रही हैं। ये देखिए, गले मिलते हुए दोनों राष्ट्राध्यक्ष यहां पर दिखाई दे रहे हैं। एससीओ की ये बैठक है, बड़ा मौका, और आज की मुलाकात ये हाईलाइट ऑफ द डे भी कही जा सकती है, जिसमें पहले एक वार्म हैंडशेक, उसके बाद गले मिले राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये उसी वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रणय मेरे सहयोगी जुड़ गए। प्रणय, वार्म हैंडशेक, उसके बाद एक दूसरे से गले मिले। जाहिर तौर पर इसी तरह के विजुअल्स का इंतजार हो रहा था, क्योंकि जब भी दोनों राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं।
5: ये केवल दो नेताओं के रिश्तों की गर्मजोशी नहीं है, गर्माहट नहीं है, बल्कि ये भारत और रूस के जो रणनीतिक संबंध है, जो समय की कसौटी पर खड़े उतरे हैं, उन संबंधों की भी गर्मजोशी है जो इन नेताओं की इस हैंडशेक से लेकर उनके गले मिलने में नजर आती है मेरा। और हमने देखा है किसी तरीके की तस्वीरें दुनिया का शायद कोई भी कोना रहा हो, जब ऐसा मौका आया है जब राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी मिले हैं तो इसी गर्मजोशी के साथ मिले हैं। लेकिन इस गर्मजोशी के साथ साथ वो मुद्दे भी बातचीत की मेज पर होंगे, चाहे वो रूसी सेना के अंदर कुछ भारतीयों की भर्ती के मुद्दे हों जिनको लेकर भारत अपनी चिंता जताता रहा है, या भारत और रूस के बीच में बढ़ता हुआ व्यापार घाटा हो, या रूस से आने वाले जो ऊर्जा सप्लाई है उसको कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है, या ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर प्रधानमंत्री मोदी रूसी राष्ट्रपति के साथ चर्चा करना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे। इसके अलावा ऐसे बहुत से विषय हैं जिस पर भारत और रूस मिलकर काम करना चाहते हैं, चाहे वो रीजनल कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हों, चाहे INSTC और चाबार की परियोजना को जोड़ने जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं हों, या क्षेत्रीय स्तर के ऊपर सेंट्रल एशिया के अंदर भारत और रूस मिलकर किस तरीके से जो व्यापक साझेदारी की परियोजनाएं उनको आगे बढ़ा सकते हैं, या आर्कटिक के मुद्दे पे जहां पर नए सप्लाई रूट, नॉर्दर्न सी रूट खुल रहा है, वहां पर जो एक्सप्लोरेटरी मिशन हैं उसमें भारत किस तरीके से निवेश कर सकता है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो अंतरिक्ष से लेकर और जमीन तक और समंदर के नीचे तक भारत और रूस के रिश्तों की जो व्यापकता है और उनकी जो साझेदारी का व्यापक दायरा है उसको बताते हैं। और उसके लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की न केवल ये मुलाकात महत्वपूर्ण होने वाली है नेहा, बल्कि अगले दो हफ्ते बाद जब राष्ट्रपति पुतिन भारत में होंगे तो भी एक बार फिर हमें इसी तरीके की जोशी की तस्वीरें देखने को मिलेंगी, क्योंकि जब जब दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है न केवल बड़े नतीजे और अच्छी तस्वीरें सामने आई हैं बल्कि दोनों देशों के रिश्तों का ग्राफ भी आगे बढ़ा है।
3: कितने मिनट तक ये वार्ता चल सकती है और क्या चीन भी इस पूरी वार्ता में शामिल हो सकता है, अहम मुद्दे के तौर पर जिस तरह से चीन की गतिविधियां बीते दिनों में रही हैं हिंदुस्तान के लिहाज से?
5: देखिए बहुत सारे क्षेत्रीय मुद्दे ऐसे होते हैं जिसमें चीन का जिक्र भी आ सकता है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उसको लेकर भी जिक्र आएगा, लेकिन भारत और रूस की बातचीत में ही अगर आप प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के व्यवहार की, उनके बातचीत, उनके संबंधों की केमिस्ट्री यदि देखें तो शायद ऐसा कोई विषय नहीं जिसके ऊपर वो सहजता से बात न कर सकते हों और अपना अपना व्यू पॉइंट न रख पाते हों। और इसका एक सबसे बड़ा नमूना तो तब सामने आया था जब रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान समरकंद के अंदर इसी ऐसे ही एससीओ की बैठक के हाशिए पर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठकर उन्हें कहा था कि ये युद्ध का काल नहीं है और उसे राष्ट्रपति पुतिन ने सुना भी था। तो निश्चित रूप से ऐसे बहुत सारे मुद्दे होंगे जो चर्चा की मेज पर होंगे, लेकिन किसी तीसरे देश के विषय के ऊपर उस तरह से बात हो ये कोई बातचीत का एजेंडा, निर्धारित एजेंडा तो नहीं है। निर्धारित एजेंडा में वही विषय होते हैं जो दोनों पक्षों की तरफ से तय किए जाते हैं, लेकिन जहां तक इन देशों के संबंधों का दायरा है, जिस तरीके से आपने पूछा, चीन औपचारिक रूप से तो इस बातचीत का हिस्सा नहीं है, लेकिन हाँ अनौपचारिक रूप से बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं होंगी जिनके ऊपर बातचीत भारत और रूस मिलकर कर सकते हैं, किस तरीके से एससीओ की प्रक्रिया हो चाहे ब्रिक्स की प्रक्रिया हो, क्योंकि इन दोनों ही संगठनों के अंदर चीन उसका एक महत्वपूर्ण सदस्य है, जो संस्थापक सदस्य है एससीओ और ब्रिक्स दोनों का ही, और ऐसे में इस क्षेत्रीय सहयोग को कैसे न केवल आगे बढ़ाया जा सकता है बल्कि एक मिसाल के तौर पर दुनिया में एक वैकल्पिक वैश्विक व्यवस्था के ढांचे के तौर पर खड़ा किया जा सकता है।
3: तस्वीरें और भी आ रही हैं प्रणय, जिसमें राष्ट्रपति पुतिन दिखाई दे रहे हैं और जाहिर तौर पर जो युद्ध पर वार्ता होनी है उस पर भी सबकी
6: डेवलपमेंट ऑफ द रीजन्स इट हेल्प्स टू शेप ए जस्ट मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। I'd like to note with satisfaction the following thing, namely that the Russian-Indian relations continue to get strengthened on the basis of the principles of the special and privileged partnership. Distinguished Prime Minister, of course this is aided by your special attention to the Russian-Indian relations and the business and kind relations, friendly relations that have been established between us, and I'm very grateful to you for that. Recently, your foreign minister, Mr. Jaishankar, visited Moscow and conveyed your message. I fully share everything that is said there. Next year, we are celebrating the 80th anniversary of our diplomatic relations. And of course, we're doing serious preparations for the upcoming BRICS summit in New Delhi in September. Our trade and economic cooperation is demonstrated generally positive momentum. Last year, we saw a little increase, but in the first half year of 2026, our trade turnover grew by 2.6%. A week ago, Moscow hosted the session of the Intergovernmental Commission. It also demonstrated good results. I'd also like to say a couple of words about humanitarian cooperation of ours. I'd like to know that India is among the top countries in terms of its students in Russia. In the recent years, this figure has grown by 7 times, and it amounts to 40,000 students now. We regularly hold cultural festivals of India and Russia. The 2027 will see another round of the festivals in India. We also have active tourist flows, mutual flows. We've seen 16% growth. We closely coordinate our efforts at the United Nations, at BRICS, the G20, and the SCO. And today we have a good chance to compare our notes and to outline future cooperation when it comes to the development of the Russian-Indian relations.
7: Excellency, my friend, आपसे मिलकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। पिछले वर्ष आपकी भारत यात्रा बहुत ही सफल रही और बहुत ही यादगार रही। हमने कई घंटे साथ बिताए और विशेष रूप से बिजनेस फोरम और एक प्रकार से बिजनेस वर्ल्ड का रशिया का हूज हू कहे उन सब को लेकर के आप आए और आर्थिक संबंधों को एक नई ऊंचाई और ज्यादा विस्तार देने का काम भी हमारी चर्चा में हुआ और मुझे खुशी है कि जो आउटकम निकले हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारी दोनों टीमें पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और बड़ी गति के साथ काम कर रही है। यह हमारे लिए गहरे संतोष का विषय है कि हमारा सहयोग निरंतर नई ऊंचाइयों को और बढ़ रहा है और दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा। एक्सलेंसी, यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। पिछली बार भी जब हम मिले थे तब आपने विस्तार से सभी विषयों के बारे में मुझे अवगत किया था। जैसा कि आप जानते हैं, भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देती है, उमंग से भर देती है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर, उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है। जल्द से जल्द सभी विषयों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान हो, यही मानवता की पुकार है, यही भारत का संदेश है। गांधी की धरती का, बुद्ध की धरती का एक ही संदेश है, शांति का मार्ग। आज इन सभी विषयों पर आपसे चर्चा करने का अवसर मिलेगा। कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका और आपके डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा। धन्यवाद। स्पासिबा।
3: तो यहाँ दोनों राष्ट्राध्यक्ष बातचीत में साफ तौर पर ये कहते हुए कि कैसे एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर की स्थिति में भारत हमेशा कारगर रहा है, शांति बनाए रखना भारत के लिए प्राथमिकता रही है और ऐसे में रूस को सहयोग भारत हमेशा देता रहेगा, आपसी सहयोग में कोई कमी नहीं आएगी और मानवता की भलाई के लिए युद्ध खत्म करना होगा। प्रणय मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। देखिए प्रणय, जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे, युद्ध की खास तौर पर बातचीत की गई, एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर की स्थिति कैसे आए और कैसे भारत और रूस के परस्पर रिश्ते बड़े ही हैं, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर हो, चाहे वो वैश्विक स्तर पर कारोबार हो या फिर अन्य कई मुद्दे यहां पर पुतिन और प्रधानमंत्री द्वारा गिनाए गए।
5: निश्चित रूप से नेहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को यदि आप देखें या राष्ट्रपति पुतिन के भाषण को देखें, जहां एक तरफ भारत और रूस की बढ़ती हुई दोस्ती, उनकी आर्थिक संभावनाएं, उनकी मजबूत साझेदारी का जिक्र किया गया, वहीं वैश्विक हालात को लेकर दोनों ही तरफ से जो चिंताएं थी उसकी भी प्रतिध्वनि सुनाई दी। खासतौर पर अगर आप प्रधानमंत्री मोदी के वक्तव्य को देखें तो उन्होंने एक बार फिर उसी चीज को दोहराया जिसका जिक्र वो पहले भी कई बार न केवल राष्ट्रपति पुतिन के साथ अपनी बातचीत और वार्ताओं में करते रहे हैं बल्कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये कहते रहे हैं कि शांति की तरफ बढ़ाया गया हर कदम जो है वो मानवता को एक उम्मीद देता है, वो मानवता की आशा बढ़ाता है, बल्कि युद्ध के क्षेत्र के अंदर और एंडलेस वॉर जो है वो पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि युद्ध का बटन तो दबा दिया गया लेकिन युद्ध का बटन बंद नहीं किया गया।

नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। फ्लैश फ्लड में सेंट्रल नेपाल के कई इलाके पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। छह दिनों के भीतर मलबे में जिंदगी तलाशना सबसे बड़ा टास्क है, और खास तौर पर उन जल विद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि इनके करीब 900 कर्मचारी लापता है। ये भी दावा है कि बहुत से कर्मचारी इन सुरंगों में फंसे हो सकते हैं। इनकी तलाश में नेपाली सेना ने दिन रात एक कर दी है, लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन जिस भी सुरंग में नेपाली सेना पहुंचती है वहां पानी मलबा इतना ज्यादा है कि बहुत मुश्किल है।

0: 900 से ज्यादा लोगों के शव बरामद, 10,451 से ज्यादा लोग बचाए गए, 4,247 लोग अभी भी लापता, 20,819 बचाव कर्मी दिन रात तलाश कर रहे। ये नेपाल में चल रहे ऑपरेशन जिंदगी का अपडेट है। सैलाब के 6 दिनों के बाद अब इस भीषण प्रवाह का प्रभाव नजर आ रहा है। पता चल रहा है कि किस फोर्स से ये बाढ़ आई। मलबे से जिंदगी की तलाश जारी है, लेकिन दिक्कत यह है कि 6 दिनों के बाद अब किसी के जिंदा बचे होने की उम्मीद बेहद कम है, और इस मलबे में फंसे शवों को निकालना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अब ये शव सड़ने लगे हैं। लेकिन नेपाल की हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंगों में अभी भी फंसे हुए लोगों को खोजा जा रहा है।
1: 200 मीटर
0: उनकी तलाश में नेपाल की सेना दिन रात का ऑपरेशन चला रही है। नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के मुताबिक 11 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले 897 कर्मचारी लापता हैं। इनमें सबसे ज्यादा 576 लोग अपर त्रिशूली वन परियोजना से मिसिंग हैं। नेपाल के ऊर्जा और सिंचाई मंत्रालय के मुताबिक अलग अलग परियोजनाओं से 361 लोगों को बचाया गया। चिली में प्रोजेक्ट से 8, रसुआगढ़ी से 93, त्रिशूली 4A से 42 और त्रिशूली 3B से 122 कर्मचारी लापता हैं। इन मिसिंग कर्मचारियों में बहुत से इंजीनियर हैं, मजदूर हैं। ये पता नहीं चल पा रहा कि इस आपदा में ये लोग बह गए या फिर कहीं किसी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। नेपाल की सेना और बचाव दल लगातार इन बिजली परियोजनाओं की तलाशी कर रहे हैं। नेपाली सेना की रेस्क्यू टीम को रसुआगढ़ी जल विद्युत परियोजना की सुरंग में से कुछ नहीं मिला। इस परियोजना से कुल 93 लोग लापता हैं। लेकिन जब नेपाली सेना की टीम यहां रेस्क्यू के लिए गई तो उन्हें सुरंग के अंदर कोई भी जीवित या मृत नहीं मिला। इसके बाद सेना का बचाव दल वापस लौट आया। सुरंग के अंतिम हिस्से में लोगों के फंसे होने की आशंका के बाद नेपाली सेना की टीम इंजीनियरों और ड्रोन टीम के साथ खोज अभियान में जुटी थी। सुरंग के अंतिम पॉइंट पर पहुंचकर पूरी खोज भी की गई, लेकिन किसी के भी होने का संकेत नहीं मिला। नेपाली सेना को यह उम्मीद थी कि जैसे पिछले गुरुवार को उसने त्रिशूली बिजली परियोजना की सुरंग से 350 लोगों का रेस्क्यू किया था, वैसे ही वो रसुआगढ़ी में भी करेंगे, लेकिन यहां तो उन्हें कोई मिला ही नहीं। नेपाली सेना एक एक करके अब इन जल विद्युत परियोजनाओं की सुरंगों को खंगाल रही है। जैसे नेपाली सेना रसुआ में लांगटांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग में भी गई, लेकिन वहां सुरंग के अंदर इतना पानी और कीचड़ भरा हुआ था कि 50 मीटर से आगे जाना संभव नहीं हो पाया। देखिए नेपाली सेना कैसे इस खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। ये लांगटांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग के अंदर का वीडियो है, जिसे नेपाली सेना की तरफ से ही जारी किया गया है। सुरंग के अंदर बहुत ज्यादा मलबा दिख रहा है, भयंकर अंधेरा भी है, और इसमें नेपाली सेना के जवान बहुत मुश्किल से इस सुरंग के अंदर दाखिल हो रहे हैं। इसी तरह से नुवाकोट में अपर त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना की सुरंग में एक क्राउन ब्लास्ट किया गया, जहां भोटेकोशी बाढ़ के बाद कई लोगों के फंसे होने की खबर थी, लेकिन यहां भी सुरंग में पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, इसलिए यहां भी अंदर जाना संभव नहीं हुआ। ये अपर त्रिशूली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल का वीडियो है। यहां एक एक जीवन कैसे तलाशा जा रहा है ये देखिए। यहां कैमरा लगाकर देखा जा रहा है कि कोई फंसा है या नहीं। त्रिशूली नदी ने रसुआ और नुवाकोट में क्या तबाही मचाई है, ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। इन घरों के अंदर अब कीचड़ है, मलबा है, गाद है। घर तो सुरक्षित हैं, लेकिन इसकी दो दो मंजिलें इसी मलबे में डूबी हुई हैं। बताया जा रहा है कि इस घर के मालिक ने किसी तरह से ऊपरी मंजिलों पर पहुंचकर अपनी जान बचाई।
2: नेपाल की आपदा के बाद घर, गांव, कस्बे सब कुछ तबाह हो गए हैं। अब इन घरों में अगर आप देखेंगे, सोचिए पंखा सर के ऊपर है, मैं जिस घर में जा रहा हूँ ये छत का सबसे ऊंचा हिस्सा है, और यहाँ पर भी आप सोचिए इतना ऊंचा तो मलबा है, 5 से 6 फीट तो घरों के ऊपर है, जो कि मैं घर की पहली मंजिल पे हूँ। अगर आप पहली मंजिल पर इस तरह की तबाही देख रहे हैं तो सोचिए नीचे का हिस्सा पूरी तरह जमींदोज है। लोग जो होंगे कितनी मुश्किल होगी उन्हें घर से भागने में। और ठीक मेरे पीछे जो है मैं आपको दिखाता हूँ, ये त्रिशूली नदी है, एकदम नदी मेरे ठीक पीछे देखिए, पूरा हिस्सा बह गया, तोड़ गया, पानी यहाँ से आया, अपने साथ जो है बड़े बड़े पत्थर बोल्डर सब कुछ लेकर के नदी चले आई। इन घरों में हम आपको इसीलिए दिखाने के लाए हैं कि आखिर तबाही कितनी ज्यादा थी और अब लोगों को जब फिर से अपनी जिंदगी खड़ी करनी होगी तो कितनी ज्यादा मुश्किलें आएंगी।
0: सोचिए क्या फोर्स रहा होगा 26 अगस्त को इस त्रिशूली नदी का। इस घर के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो खुशकिस्मत थे कि बच गए और उनका घर भी नहीं बहा, नहीं तो यहाँ आसपास के तमाम मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गए थे।
2: धुंडे गांव में तबाही कैसे आई होगी, कितना खौफनाक डरावना रहा होगा। मैं इस घर में पहुंचा हूं और ये देखिए घर का पंखा जमीन से कितना ऊंचा होता है और ये नीचे जो है ये पूरा मलबा है। आप समझिए कि जो हाइड्रो प्रोजेक्ट में भी मलबा आया होगा वहां कैसे लोग फंसे होंगे, इस दलदल में निकलना मुश्किल होगा क्योंकि आप ऊपरी मंजिल पर हैं, नीचे से भाग करके आए। हालांकि जो परिवार सबसे ऊपर था वो सुरक्षित रह गया, उन्हें बाद में क्विक रिस्पॉन्स टीम ने बचाया। ये देखिए ये घर का पंखा है, घर के जरूरत के सामान, ये लॉबी का हिस्सा है, इसके आगे जा करके कमरे हैं। और अब इन इलाकों में घुस करके कोशिशें की जा रही कि क्या कोई ऐसा हो सकता है जो मलबे में दबा हो जिसे निकाला जा सके। ज़्यादा दिन तक शव अगर यहाँ पर होते हैं तो महामारी भी फैलने का खतरा हो सकता है। चुनौतियाँ बहुत हैं नेपाल के सामने, जितने हाथ हों उतने कम पड़ेंगे इस मुश्किल दौर से लोगों को, नेपाल को फिर से पटरी पर लाने के लिए।
0: तस्वीरों में दिख रहा है कि नदी कितनी दूर थी और वहां से ये नदी अपना प्रवाह छोड़कर इस तरफ आई। अब नुवाकोट के स्थानीय लोग आए हैं वॉलंटियर्स बनकर, जो एक एक करके इन बचे हुए घरों से मलबा हटा रहे हैं। 6 दिन बाद अब जिंदगी की तो उम्मीद भी मुश्किल है, लेकिन अगर यहाँ किसी का शव हो तो उसे तलाशा जा रहा है।
2: प्राकृतिक आपदा सब कुछ तबाह कर देती है, जिंदगियों के लिए मुश्किल खड़ी कर देती है और इस आपदा के बाद जिंदगी को शुरू करना बड़ी चुनौती है। इन मकानों में अब नगरपालिका सिविल कर्मचारी जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग जीवित बच गए हैं अब उनके घरों से बचा हुआ सामान निकाला जा सके ताकि उनकी जिंदगी फिर से शुरू हो सके। मरने वालों का आंकड़ा ज्यादा है, लापता लोगों की संख्या ज्यादा है, लेकिन इन सब के बीच कोशिश ये भी हो रही है कि जिनके बारे में कोई पता न चल पाए घर घर जा करके मलबों में तलाशा जा रहा है। इस दलदल के बीच ये तमाम सारे लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम जिन लोगों का पता ही नहीं चल रहा है कुछ तो उनकी जानकारी लगे, जो लोगों का घर बच गया है उनके घरों से सामान वापस उन तक सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया जा सके। ये ऑपरेशन जिंदगी बड़े पैमाने पर नेपाल के दुर्गम इलाकों में चलाई जा रही है।
0: आशुतोष मिश्रा, नुवाकोट, नेपाल, आज तक।
1: विशेष में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही, आगे देखिए खबरदार मेरी सहयोगी श्वेता सिंह के साथ।
3: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सर इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: मुल्तानी घू का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घू का कॉफ सिरप।
4: अर्जुन कुछ भी पढ़े मेमोरी में नहीं रहता।
5: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
6: लायन डेट नट बाइट्स।
7: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जाम।

0: हमें स्वस्थ रखने वाली सारी चीजें ज्यादातर शुद्ध होनी चाहिए। सूर्य की किरणें और स्वच्छ पानी, वैसा ही है लाइन अरेबियन डेट्स। और अब लाइन लाइना डेट्स, इसमें फाइबर्स और विटामिन्स भी कुदरती हैं, जो देता है स्वास्थ्य भी कुदरती।
1: लाइन लाइना प्रीमियम डेट्स।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, पहले प्रधानमंत्री हमारे नेहरू जी बने। उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे पहले प्रधानमंत्री बनते तो भारत की क्या दिशा और दशा होती?
3: ये तुमने सवाल क्वेश्चन किया, ये संसद में होता तो बड़ा मजा आता। हर तरीके एक पार्टी बोलती कि कश्मीर हमारा होता, अफगानिस्तान तक हम कब्जा कर लेते, पब्लिक बाहर सुन के ताली वाली ही बजाती।
4: नोवा कोटा से ऊपर मैं त्रिशूली में आया हूँ, देख लीजिए सैलाब का ये सितम।
5: ये वही त्रिशूली नदी है जिसमें पानी मलबे के साथ पूरे आवेग के साथ आया।
4: पीछे जो आपको इमारतें दिख रही है ना, वो सारी बिल्कुल खंडहर हो चुकी है।
5: जो निचले इलाके हैं उन सबसे ऊंचाई की तरफ लोगों को जाने के लिए कहा गया है।
6: चितवन में आज तक की टीम मौजूद है और आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं।
4: मैं आशुतोष मिश्रा,
6: रोहित सिंह,
5: श्वेता सिंह, नेपाल आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: ये सिर्फ मिट्टी नहीं है, यदि मिट्टी किसी के घर का चूल्हा जलाती है तो किसी का सपना बनती है और किसी को 1.5 करोड़ का कारोबार दे देती है। गोरखपुर की टेराकोटा कला अब गांव से निकलकर देश और विदेश तक पहुंच चुकी है। मैं हूं पूजा मेहरोत्रा और आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल। गोरखपुर के खोटन खास, गुलरिया और औरंगाबाद जैसे गांवों में पीढ़ियों से कुम्हार तालाब की खास चिकनी मिट्टी से हाथी, घोड़े, दिए, मूर्तियां और सजावटी सामान बनाते आ रहे हैं। पहले मिट्टी को गूंथा जाता है, फिर उसे आकार दिया जाता है और भट्टी में पकने के बाद वही साधारण मिट्टी खूबसूरत टेराकोटा बन जाती है। यही कला आज महिलाओं समेत पूरे परिवारों को रोजगार दे रही है। इस कहानी का सबसे बड़ा चेहरा है राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित राजन प्रजापति। कभी मिट्टी के घर में रहने वाले राजन आज करीब 1.5 करोड़ रुपए सालाना का कारोबार करते हैं। उनकी फैक्ट्री से साल में 24 ट्रक टेराकोटा का सामान देश भर में भेजा जाता है। राजन बताते हैं,
3: हमारा जब से ODOP योजना आया तब से हम लोन लिया, आज तक मेरा कंटिन्यू अच्छा चलता है और रिकॉर्ड अच्छा है, हम लोग बराबर लोन बना रहता है हमारा।
2: वहीं पन्नेलाल प्रजापति सरकारी मुफ्त टूल किट मिलने के बाद हर महीने 1 ट्रक माल भेज रहे हैं। उनका कारोबार भी 60 से 70 लाख रुपए सालाना तक पहुंच चुका है। सरकार की ODOP योजना ने बदल दी है पन्नेलाल की जिंदगी। वो बताते हैं,
4: 2017 के बाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसको वो जब लॉन्च किया, इसको पहले कोई कला को जानता नहीं था, उन्हीं के माध्यम से विश्वकर्मा सम्मान योजना, ODOP टूल किट, ये सब हम लोग ट्रेनिंग कर चुके हैं।
2: गोरखपुर के टेराकोटा ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया है। फिर मिला इसे GI टैग, जिससे इसकी अलग पहचान बनी। सरकार ने प्रशिक्षण टूल किट सब्सिडी देकर कारीगरों को सिर्फ हुनर नहीं बल्कि बाजार भी दिया। कभी गांव की मिट्टी सिर्फ खिलौने बनाती थी, आज वही मिट्टी पहचान बना रही है, रोजगार दे रही है और दुनिया को बता रही है कि भारत की असली ताकत सिर्फ कारखानों में नहीं, कारीगरों के हाथों में बसती है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: बिश्केक में गर्म जोशी के साथ पुतिन, पीएम मोदी की हुई मुलाकात। बातचीत में यूक्रेन का भी उठा मुद्दा। प्रधानमंत्री ने कहा, युद्ध मानवता के लिए खतरा, भारत शांति का पक्षधर। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी 7.8% रही। पीएम मोदी बोले, निराशावादी लोगों की हुई हार। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी विरोध प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट में पहुंची दिल्ली पुलिस। 13 एफआईआर रद्द करने की मांग। आपराधिक पृष्ठभूमि के 2873 लोगों पर दर्ज हो केस। यूपी के कौशाम्बी में मरने वालों का आंकड़ा हुआ 11। पटाखा फैक्ट्री धमाके में गई जान। सीएम योगी ने 2-2 लाख मुआवजे का किया ऐलान। नेपाल में त्रासदी के बाद मरने वालों का नहीं थम रहा आंकड़ा। 939 लोगों की जान गई, 3900 से ज्यादा लापता। रेस्क्यू के काम में भारतीय एक्सपर्ट्स भी शामिल।
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health ka Sach in association with
2: Bharat ki apni electric sawari Sokudo.

0: करने का। अब से कुछ देर पहले एससीओ सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और उन्हें ब्रिक्स समिट में आने का न्योता दिया है और पुतिन से एक बार फिर शांति की वकालत की है। वहीं तमाम अर्थशास्त्रियों के अनुमान से कहीं ज्यादा इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 7.8% की रफ्तार से बढ़ी है। इन दो बड़ी खबरों के बीच आज दिन भर 2027 की सियासी मुठभेड़ को लेकर चर्चा बनी रही। इसीलिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश की खबर से आपको हम खबरदार करेंगे, जहां बुलडोजर और एनकाउंटर यानी अवैध कब्जे और माफिया के खिलाफ योगी सरकार के एक्शन वाले दो बड़े हथियारों की खबर आई है। दोनों का रिश्ता पश्चिमी उत्तर प्रदेश से है। एक तरफ संभल में सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजार पर बुलडोजर चला, दूसरी तरफ शामली में यूपीएसटीएफ ने एनकाउंटर किया। अब इसी एनकाउंटर को लेकर यूपी में राजनीतिक रस्साकशी चलने लगी, जहां हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड से जुड़े दो शूटर को एसटीएफ ने ढेर कर दिया।
1: सितंबर 2021 दिल्ली की रोहिणी अदालत में दिल्ली एनसीआर के गैंगस्टर जितेंद्र मान उर्फ गोगी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है। किसी ने कभी सोचा नहीं होगा कि एक गैंगस्टर की दिल्ली की कोर्ट में 2021 में की गई हत्या का सिरा उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव से पहले जाकर एक हत्याकांड और फिर एनकाउंटर तक जाकर जुड़ सकता है।
2: यूपी माफिया मुक्त हो चुका है और जो माफिया सिर उठाएगा फिर मिट्टी में मिलेगा, उसकी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफिया के खिलाफ अपने चिर परिचित अंदाज में जब ये दम ठोकते हैं तो इसकी वजह शामली की ये तस्वीरें हैं, जहां एक गिरी हुई मोटरसाइकिल, अस्पताल में ढेर पड़े दो बदमाश और मुठभेड़ में मार गिराने के बाद सामने आते पुलिस वाले हैं, जहां एनकाउंटर के बाद एक पिता है जिन्हें लगता है कि एक मुठभेड़ में दो बदमाश अगर यूपी पुलिस ने मारे तो ये आधा इंसाफ है आधा बाकी है।
3: आधा और मिलना चाहिए।
4: तो ये आधा कब तक का उम्मीद करोगे पुलिस कर देगी?
3: कर देगी, अब तो उम्मीद है
4: अब तो कर देगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को
3: उनको बड़ी बड़ी बधाई हो, उन्होंने हमारा इंसाफ किया, लेकिन आधा बाकी है।
1: एनकाउंटर के बाद एक पत्नी जो कहती कि मुख्यमंत्री पर विश्वास है।
5: ये प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों में ही है, अभी उनके संरक्षण में हम सब लोग हैं। वो जो कार्रवाई करेंगे, वो जो कर रहे हैं, वो आगे भी जो करेंगे, हमें उन पे पूर्ण विश्वास है।
1: एक पिता और पत्नी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर मजबूत हुए इसी विश्वास को 5 दिन पहले उत्तर प्रदेश में चुनौती गैंगस्टर्स ने दी, जब 26 अगस्त की शाम 32 साल के सिंगर अंकित बालियान शामली में जिम करके निकलते हैं, तभी हमलावर उन्हें घेरते हैं। 18 राउंड फायरिंग होती है। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने सिंगर अंकित बालियान को मृत घोषित कर दिया। दावा हुआ इस हत्याकांड का रिश्ता 5 साल पुराने गोलीकांड से है। सितंबर 2021 में दिल्ली की कोर्ट में जो गोली गैंगस्टर गोगी को मारी गई, दावा है उसी से जुड़े बदमाशों ने अंकित बालियान को 26 अगस्त 2026 को शामली में जिम के बाहर मार दिया और दावा यह भी होता है कि इसकी वजह एक गाना बनता है।

0: वर्ष 2021 में रोहिणी कोर्ट दिल्ली में जितेंद्र मान उर्फ गोगी की हत्या हुई और उसके बाद गोगी और टिल्लू राजपुरिया के गैंगों के बीच में चली गैंगवार की कड़ियां इस विवेचना में सामने आई हैं। अंकित बालियान द्वारा अभिनीत, मतलब उनके द्वारा इसमें सिर्फ एक्टिंग की गई है, एक गाना जो यूट्यूब पर काफी पॉपुलर हुआ उसको कथित रूप से गोगी की हत्या के घटनाक्रम से जोड़कर देखा गया, जो ये गैंग था उनके द्वारा देखा गया।
1: भरी कोर्ट में गोली मारेंगे मेरी जान वाले बोल के इस गाने में अंकित बालियान ने केवल एक्टिंग की थी, लेकिन फिर भी उसे जब 26 अगस्त को गोली मार दी जाती तो अंकित बालियान की पत्नी सीमा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए ये संदेश दिया था।
2: पता नहीं प्रशासन क्या कर रहा है, कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से कहना चाहती हूँ कि क्या योगी जी, अंकित जी आपका बच्चा नहीं था? क्या हम आपके बच्चे नहीं हैं? हमने भी तो आपको वोट देके आपको जन प्रतिभागी बनाया है ना, अपना वोट दिया है ना, तो आप हमारे लिए आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? आप तो माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं ना, तो फिर इस केस पे इतना लेट कार्रवाई क्यों हो रही है? जब सब कुछ पता है तो उन पे सीधी कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है?
1: इसी के बाद उत्तर प्रदेश के शामली में एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स की टीम अंकित बालियान को मारने वाले चार शूटर में से दो सुमित और मोहित को मुठभेड़ में ढेर कर देती है। पुलिस का दावा है कि दोनों बदमाश सोनीपत भाग रहे थे, जब पुलिस ने उन्हें घेरा फायरिंग बदमाशों ने की, पुलिस ने गोली चलाई, 50,000 की इनामी बदमाश मारे गए।
0: अधीक्षक शामली श्री एनपी सिंह के नेतृत्व में शामली पुलिस ने, स्वाट टीम ने, एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करके हत्याकांड में वांछित दो अपराधी जिन पर 50,000 रुपए का रिवॉर्ड था, ये शार्प शूटर थे जो घटनाक्रम में हत्या में शामिल थे, उनके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है।
3: आज सुबह लगभग 5 बजे एक मुठभेड़ हुई शामली पुलिस और इन शूटर्स के बीच में, और ये दो शूटर्स मारे गए हैं, सुमित और मोहित, और इनके पास से भारी मात्रा में आग्नेय शास्त्र बरामद

0: उत्तर प्रदेश में हत्याकांड से मुठभेड़ तक सवालों की सियासत होने लगी। जहां पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अंकित बालियान की हत्या के बाद पूछा कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाट समाज में फैले आक्रोश को समझेंगे, और अब जब अंकित बालियान के दो हत्यारे एनकाउंटर में मारे गए तो समाजवादी पार्टी इसे फेक एनकाउंटर कह रही है। क्या इसकी वजह पश्चिमी यूपी की जाट वोट वाली सियासत है?
1: मुख्यमंत्री जी की एसटीएफ प्रजाति टॉर्चर फोर्स,
2: समाजवादी पार्टी वो है जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी, भूल गए ये?
3: कोई लॉ एंड ऑर्डर है उत्तर प्रदेश सिवाय हत्याएं या गोली मार के एनकाउंटर कराना फर्जी, इसके अलावा कुछ भी नहीं।
4: अगर अपराधी कोई उसका मतलब प्रतिकार करता है या पुलिस पर हमला करता है तो पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है।
5: तो निर्मम हत्या हुई थी, प्रदेश दुखी था, उन हत्यारों ने पुलिस पर भी गोलियां चलाई जिसकी किए की सजा उन्हें मिल चुकी है।
6: उत्तर प्रदेश में जब भी एनकाउंटर होता है अखिलेश यादव फर्जी मुठभेड़ बताकर सवाल मुख्यमंत्री से करते रहे, लेकिन अब की शामली में जाट समाज से आने वाले अंकित बालियान की हत्या के बाद जब उनके पिता ने खुद हत्यारों के एनकाउंटर की मांग की तो 27 अगस्त को अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाट समाज में व्याप्त आक्रोश और मारे गए लोकप्रिय युवा गायक अंकित बालियान के दुखी पिता की सुनेंगे।
7: जब इनको वोट चाहती है जब तो भाग दौड़ करते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, अभी क्या कर दिया?
8: कुछ मांग रखते हैं योगी जी से कहेंगे मुख्यमंत्री?
7: मांग क्या रखे, मांग तो यही है बस करो एनकाउंटर।
6: लेकिन फिर जब यूपीएसटीएफ की टीम अंकित बालियान पर गोली चलाने वाले दो हत्यारों को मुठभेड़ में मार गिराती तो एसटीएफ से लेकर पुलिस तक पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव इसे फर्जी एनकाउंटर कहते हैं।
1: फेक एनकाउंटर में तो जाति को देख करके एनकाउंटर हुए हैं। आने वाले समय में सरकार बनेगी, इन सब की जांच होगी।
6: असल में अंकित बालियान की हत्या के बाद ही अखिलेश यादव लगातार इस मामले में जाट समाज को केंद्रित करके अपनी बात कहते रहे। जैसे 26 अगस्त की पोस्ट पर गौर करिएगा जहां अखिलेश यादव ने लिखा कि जाट समाज ने हमलावरों की गिरफ्तारी को लेकर सड़क पर ही अपनी मांग बुलंद की है। अखिलेश यादव ने लिखा कि उत्तर प्रदेश का समस्त जाट समुदाय इसे अपने ऊपर प्रहार मानकर आक्रोशित है। इसके बाद 27 अगस्त को भी अखिलेश यादव की सोशल मीडिया पोस्ट में अंकित बालियान हत्याकांड को लेकर जाट समाज से जोड़कर अपनी बात कही जाती है, जिसमें अखिलेश यादव ने लिखा कि बीजेपी सिर्फ वोटों की सगी है, जाट या किसी अन्य समाज की नहीं। अखिलेश यादव ने लिखा कि आज जो जाट नेता बीजेपी के साथ अपने स्वार्थवश खड़े हैं, संपूर्ण जाट समाज उनसे जवाब मांग रहा है, बीजेपी के सहयोगी जाट नेता कहां भूमिगत हो गए हैं। अखिलेश यादव ने लिखा कि युवा जाट आज उन्हें तलाशते फिर रहे हैं। इसके बाद 28 अगस्त आता है, अंकित बालियान हत्याकांड पर अखिलेश यादव अपनी सांसद को परिवार से मिलने भेजते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट में लिखते हैं, बालियान समाज भी अपने उभरते हुए सितारे को खोकर जितना व्यथित है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन जब अंकित बालियान हत्याकांड के दो हत्यारे एनकाउंटर में मारे जाते हैं तो राम गोपाल यादव एनकाउंटर को फर्जी बताने लगे।
3: कोई लॉ एंड ऑर्डर है उत्तर प्रदेश में सिवाय हत्याएं या गोली मार के एनकाउंटर कराना फर्जी, इसके अलावा कुछ भी नहीं।
6: और तब अंकित बालियान के पिता और पत्नी दोनों समाजवादी पार्टी के जाट समाज से जोड़कर हत्याकांड पर सप्ताह से पूछते सियासी सवालों का ही एनकाउंटर कर देते हैं।
9: अगर उनकी फैमिली से उनका बेटा जाता तो क्या वो इस तरह के क्वेश्चन उठाते? कुछ मुद्दे देश में ऐसे हैं जिन पे विपक्ष और ये पक्ष ये नहीं होना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारे घर से जो गया है, मेरा पति जो गया, उसके साथ क्या न्याय हुआ है, उसके साथ क्या हुआ है? वो फिर अगर उनकी हत्याएं हुई हैं तो वो क्या था फिर? उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, और अगर इतना अच्छा काम था तो वो करा ले खुद के साथ फिर, जो लोग ये बोल रहे हैं कि हत्याएं हुई हैं।
10: एनकाउंटर

0: असली है?
1: बिल्कुल असली हो सकता है सर. उनके पास, उन्होंने 20 राउंड फायर चलाए हैं. 20 राउंड फायर चलाने का मतलब है कितनी गोलियां थी उनके पास.
2: नहीं, इनकाउंटर असली है, मैं खुद देखा. फर्जी कैसे है? मैं शनाकत करका. हाँ, जो फर्जी बोल रहा वो गलत बोल रहा. जब मैं खुद देख आया उनको दोनों को, जिन्होंने पीछे से गोली मारी थी, तो मैं फर्जी कैसे कहूंगा?
0: उम्मीद है योगी से?
2: हाँ, उम्मीद है पूरी.
0: क्या उम्मीद है?
2: उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा.
1: हमारा घर उजड़ गया है, उस बात पे क्या राजनीति होनी. उन्होंने जो किया था वो गोलियां, इतनी गोलियां चला के गए हैं. हमारी जगह किसी नेता का बच्चा होता तो क्या वो ये बोलते कि गलत हुआ एनकाउंटर? आम आदमी का बच्चा बच्चा नहीं है इस देश में. अगर माननीय मुख्यमंत्री जी, योगी जी गिरोह को ख़त्म करना चाहते हैं, अगर वो लॉ एंड ऑर्डर पक्का करना चाहते हैं, तो इसमें विपक्ष को क्या दिक्कत हो रही है? असामाजिक तत्व वो अगर होते और वो छूट जाए और हम पे गोलियां चला दे, फिर क्या वो हमें बचाने आ जाएंगे?
3: अखिलेश यादव एसटीएफ की नई परिभाषा देने लगे, मुख्यमंत्री पर निशाना साधकर इसे स्वजातीय टॉर्चर फोर्स बताने लगे.
4: मुख्यमंत्री जी की एसटीएफ स्वजाति टॉर्चर फोर्स, स्वजाति टॉर्चर फोर्स, और लगातार पीडीए का उत्पीड़न हो रहा है.
5: तो एसटीएफ पर गर्व है, प्रदेश को गर्व है, निवासियों को गर्व है. जितने बड़े बड़े माफिया खत्म हुए उसमें एसटीएफ का रोल है. तो आपको कष्ट होगा ही, जब आप मुख्यमंत्री बने तो आप तो एटीएस को खत्म कर रहे थे, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, जिसका मैं फाउंडर चीफ हूँ. कुछ लोगों ने कहा नहीं बदनामी होगी, तो आपने एटीएस को डिफंक्ट कर दिया. कोई आतंकवादियों पर कार्रवाई नहीं होगी और 14 आतंकवादियों की चार्जशीट वापस ली थी अखिलेश यादव जी. तो इस टाइप का फर्जी नैरेटिव बढ़ाने से कोई फायदा नहीं.
6: असल में इन सारी सियासी बयानबाजी की वजह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सीट और वोट गणित है. जहां लोकसभा चुनाव का सीट गणित देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 27 लोकसभा सीटों में बीजेपी की सीटें 3 चुनाव में घटकर 24 से 13 हो गई. वहीं समाजवादी पार्टी की सीटें 3 चुनाव में 3 से 10 तक पहुंची. कांग्रेस का भी खाता पहली बार 2024 लोकसभा चुनाव में खुला. पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जब चुनाव शुरू हुआ तो समाजवादी पार्टी चाहती है कि जो बढ़त 2024 में मिली वो 2027 में भी हासिल हो. इसीलिए उस जाट वोट पर नजर रख रही है जिसका बड़ा हिस्सा बीजेपी पाती रही. हालांकि 2024 में इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बड़े जाट नेता आरएलडी के साथ रहने के बावजूद नहीं जीत पाए थे. इसी तरह विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी का सीट गणित देखें तो बीजेपी समाजवादी पार्टी से दोगुना से कहीं ज्यादा सीट जीत रही है. जहां कुल 136 विधानसभा सीटें आती हैं, वहां 2 चुनाव में बीजेपी की कुछ सीट ही घटी. लेकिन समाजवादी पार्टी से अंतर अब भी कहीं ज्यादा है. ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगे भी हर घटना पर बीजेपी एसपी का टकराव बढ़ता दिखेगा. जिस यूपी पुलिस के भरोसे सत्ता ये विश्वास जनता को देती है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, वहीं ऐसे वीडियो भी आते हैं जिनको लेकर जनता ही सवाल करती है. जैसे आगरा के एतमादपुर थाने का वीडियो वायरल है. इस वीडियो को एक बार आप खुद देखिए, फैसला करिए कि आखिर यूपी की ये पुलिस क्या कर रही है. जहां भीड़ भाड़ के बीच एक शख्स आराम से चलकर आता है, तभी अचानक पुलिस की एंट्री होती है और एकदम से मानो किसी ने एक्शन कहा हो, पुलिस एक्टिव हो जाती है. पुलिस इंस्पेक्टर अचानक सामने से आए शख्स की तलाशी लेकर उसके पास से 315 बोर का तमंचा निकालते हैं. फिर पीछे से आवाज आती है, तलाशी ली जाती है, फिर 2 कारतूस मिलते हैं. पुलिस कहती है खबर मिली थी कि एक शख्स तमंचा लेकर किसी पर हमला करने की योजना के साथ आ रहा है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अवैध हथियार पकड़ लिया, गिरफ्तार किया. लेकिन जो वीडियो है वो ऐसा दिखता है जैसे पुलिस वाले किसी जादूगर की तरह तमंचा तलाशी लेकर निकालते हैं.
7: कारतूस देख रहा था, लोड तो नहीं है.
6: यूपी पुलिस के ऐसे ही वीडियो और कारस्तानी की वजह से कोर्ट तक भी इस साल कई बार एनकाउंटर को लेकर सवाल उठे.
8: फिर उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जाति धर्म देकर के इंटाउन करवाती है।
9: किसी भी गुंडे को और किसी भी माफिया को उत्तर प्रदेश की धरती में पनपने नहीं देंगे।
3: उत्तर प्रदेश में क्या जाति देखकर एनकाउंटर होता है या फिर उत्तर प्रदेश में अपराधियों के एनकाउंटर में जानबूझकर जाति की सियासत लाई जा रही है? इन दो सवालों के बीच 2027 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश खड़ा है।
10: जिन्होंने फर्जी एनकाउंटर किए हैं वो देख रहा हूँ के खिलाफ कार्रवाई होगी और समाजवादी सरकार बनने पर न्याय के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई चलाने का काम होगा।
3: उत्तर प्रदेश में सरकारी आंकड़ा कहता है कि मार्च 2017 से जब से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली यूपी में हर रोज 5 एनकाउंटर हो रहे हैं। सरकारी डेटा है, मार्च 2017 से अब तक 17,043 एनकाउंटर किए गए। इसका सीधा सा मतलब है योगी राज में रोज 5 एनकाउंटर होना। लेकिन पुलिस की गोलियों से कहीं मारे जाने वाले, कहीं पैर पर गोली खाने वाले बदमाशों में जब विपक्ष जाति खोजता है तब मुख्यमंत्री से माफिया मुक्त प्रदेश की पहचान बताते हैं।
11: जब हम तनिक सी संकीर्णता में पड़ करके आत्मघाती कदम उठाते हैं तो उससे माफिया और मच्छर के पनपने का खतरा भी बनता है, क्योंकि वे तो हमेशा इस बारे में इंतजार की प्रतीक्षा करते हैं। लोमड़ी की तरह वे हमेशा इस इंतजार में रहते हैं कब उनको मौका मिले, कब वे लपके शिकार पर। उन लोमड़ियों को अवसर नहीं देना है।
3: यूपी सरकार का ही डेटा कहता है कि योगी राज में हर 12वें दिन एक अपराधी एनकाउंटर में मारा गया है। योगी राज में हर दिन 3 बदमाश पैर में गोली खाकर जख्मी होकर पकड़े गए तो योगी सरकार के कार्यकाल में हर दिन 10 बदमाश एनकाउंटर में ही पकड़े गए हैं।
12: अगर किसी ने छेड़ने का यहाँ काम किया तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं, ये सरकार की घोषित नीति है।
3: किसी ने छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं का बयान जब उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में मुख्यमंत्री देते हैं तो साफ पता चलता है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी का आक्रामक वार 2027 के लिए जारी है।
12: जिन माफियाओं की, गरीबों की जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर बड़ी बड़ी हवेलियां बनी हुई थी, जिन पर बुलडोजर चल रहा है, चूहे जैसे पहले बितकते थे बाद में सुअर बन करके पूरे प्रदेश को ही तबाह करने में उतारू हो गए थे।
3: माफिया पर चुन चुन कर वार करते योगी आदित्यनाथ के इन्हीं बयानों के बीच विपक्ष का सवाल यूपी में होते एनकाउंटर पर उठता रहा है।
13: उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर वर्चस्व की धाक जमाने के लिए कह जाते हैं।
3: योगी सरकार जब बुलडोजर और पुलिस एनकाउंटर से माफिया राज को खत्म करने के साथ अपराध पर लगाम को ताकत मानती है तब इसी साल जनवरी में एनकाउंटर से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के पुलिस अफसर जजों खासकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पर विशिष्ट आदेश पारित करने के लिए दबाव बना रहे हैं।
6: गूगल से अगर आप ग्रेटर नोएडा के परी चौक से दिल्ली के कश्मीरी गेट के बीच की दूरी पूछेंगे तो जवाब 47 किलोमीटर आएगा। इस रास्ते को तय करने में सामान्य ट्रैफिक के दौरान 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगता है। 4 अगस्त को एक नाबालिग लड़की से चलती बस में 47 किलोमीटर तक गैंगरेप हुआ, लेकिन वारदात के 1 से 1.5 घंटे के दौरान किसी ने बस को नहीं रोका। अब कहेंगे कि किसी को क्या पता बस के अंदर क्या हो रहा है, पुलिस कैसे इस बस को रोकती? इस सवाल का जवाब आपको दें, उससे पहले जानिए वारदात का रूट। बताया जाता है कि परी चौक से आरोपियों ने नाबालिग को बस में बिठाया, फिर वो नोएडा सेक्टर 63 होते हुए कश्मीरी गेट की तरफ बढ़े। इस रास्ते में गाजीपुर, मयूर विहार, रिंग रोड, आईटीओ, राजघाट, निगमबोध घाट, कश्मीरी गेट आएगा। इस तरह परी चौक से कश्मीरी गेट पहुंचने में 1.5 घंटे से ज्यादा का समय लगेगा। लेकिन किसी ने इस बस को नहीं रोका क्योंकि इसमें पर्दे लगे थे, जबकि निर्भया कांड के बाद से नियम है कि निजी बसों में रात के वक्त पर्दे नहीं लगेंगे, अंदर लाइट जली रहेगी ताकि बस के अंदर क्या हो रहा है पता चले। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो शायद यह वारदात नहीं होती। सवाल यह है कि क्या इसलिए ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इस तरह की बसों की कोई चेकिंग ही नहीं होती। जब यह बस नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए आगे बढ़ रही थी तब उससे न नोएडा पुलिस ने रोका न दिल्ली पुलिस ने। यही बात सबसे ज्यादा चिंताजनक और खबरदार करने वाली है।
3: ग्रेटर नोएडा के परी चौक से दिल्ली के कश्मीरी गेट के बीच 4 अगस्त को एक नाबालिग से गैंगरेप होता है और दिल्ली पुलिस कहती है
14: 17 वर्षीय लड़की ने आकर सूचना दी कि उसके साथ नोएडा में एक बस में दुष्कर्म हुआ है।
3: ग्रेटर नोएडा के परी चौक से दिल्ली के कश्मीरी गेट के बीच 1.5 घंटे से ज्यादा वक्त तक एक बस में नाबालिग से दुष्कर्म होता रहा, लेकिन दिल्ली पुलिस का जोर इस बात पर रहता है कि वारदात नोएडा यानी उत्तर प्रदेश में हुई।
14: वहीं परी चौक ग्रेटर नोएडा से सेक्टर 63 नोएडा के रास्ते में इसके साथ दुष्कर्म हुआ।
3: सवाल है कि दिल्ली में कई किलोमीटर तक चली इस बस पर किसी भी पुलिस वाले की नजर क्यों नहीं गई, जबकि वारदात के वक्त इसमें नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए पर्दे लगे हुए थे। अगर इस बस को लेकर नोएडा पुलिस भी खबरदार रहती तो शायद ये वारदात ना होती और कार्रवाई के नाम पर उसे इस बस के मालिक की ट्रेवल एजेंसी से इस तरह से धरपकड़ ना करनी पड़ती।
15: जरा बताइए आपको ये पुलिस अभी कहाँ ले जा रही है?
16: सर इनको ही पता होगा सर को।
15: एक बार एक घटना क्या हुई थी, एक बार जरा बताइए।
16: प्लीज प्लीज प्लीज,
15: आप कहाँ ले जा रहे हैं सर?
16: अरे प्लीज भाई,
15: अपराधी नहीं है, एक सेकंड बात करने दीजिए। मोनू जी एक बार जरा डिटेल में बताइएगा कि हुआ क्या घटना हुई थी आपको पुलिस ने कब?
16: सर अभी मुझे पता नहीं है।
3: साल 2012 याद करिए, निर्भया कांड हुआ। चलती बस में एक बेटी से दरिंदगी से सारा देश दहल गया, खूब हंगामा हुआ। गाड़ियों की खिड़कियों पर काली फिल्म या गहरे पर्दे पर पाबंदी लगा दी गई ताकि बस के अंदर की गतिविधि छिपी ना रह जाए, लेकिन अफसोस इस नियम का पालन नहीं हो रहा। अगर हुआ होता तो 14 साल बाद चलती बस में दरिंदे 17 साल की नाबालिग से रेप करने की सोच भी ना पाते। उनके जहन में डर होता कि वो पकड़े जाएंगे। 47 किलोमीटर के रास्ते में किसी की तो इनकी हैवानियत पर नजर जाती।
17: 16 वर्षीय मैनपुरी की रहने वाली 11वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की घर से लड़कर घर से बाहर निकलती है, बस पकड़ के अपने भाई के घर मैनपुरी से नोएडा आना चाहती है, लेकिन उस रात बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से उसे पता नहीं लगा और परी चौक के पास वो बस से उतर जाती है, जिसके बाद वो हाथ देकर एक स्लीपर बस को रोकती है। बस रुकती है और उसे कहती है कि वो सेक्टर 63 तक उसे छोड़ देंगे। बस पे चढ़ने के कुछ देर बाद ही जो बस का कंडक्टर है उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, उसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट करने लगता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने कुछ किया तो उसे जान से मार देंगे। इसके बाद करीब 47 किलोमीटर तक जो वो बस है दिल्ली NCR की सड़कों पर चलती है। नोएडा में इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद लड़की को कश्मीरी गेट के पास लाकर उतार दिया जाता है। बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से ये हादसा दिल्ली की सड़कों पे हुआ, परी चौक से लेकर के कश्मीरी गेट तक 47 किलोमीटर तक ये जो पूरा हादसा था दिल्ली की सड़कों पर होता रहा, लेकिन एक बार भी किसी भी तरह की जो पुलिस प्रशासन थी या किसी भी पुलिस ने एक बार रोक करके बस को चेक करने की कोशिश नहीं किया।
3: अब इस बस को देखिए जिसमें वारदात, इस बस में लगे पर्दे बताते हैं कि ना तो नोएडा पुलिस और ना ही दिल्ली पुलिस दोनों ही निर्भया कांड के बाद नियमों को लेकर खबरदार नहीं।
17: इसी कंपनी से जो ये बस है ये अफिलेटेड थी और दिल्ली से मोबा तक ये बस चला करती थी। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव उनके यहाँ बैठते थे उसे अभी नोएडा पुलिस हमारे सामने ही यहाँ से उठा करके ले गई है। कहाँ ले गई है और क्यों ले गई है इसके पीछे कोई वजह उन्होंने बताया नहीं।
3: नियम साफ है कि इस तरह की बसों में पर्दे नहीं लगेंगे। रात के वक्त अंदर लाइट जलेगी ताकि बस के अंदर की गतिविधि सामने दिखे। अगर ऐसा हुआ होता तो ग्रेटर नोएडा, नोएडा और दिल्ली पुलिस की नजर से यह अपराध बच नहीं पाता। लेकिन नियमों के लागू ना होने का, पुलिस की सुस्ती का, कम पेट्रोलिंग का संदीप और कुलदीप नाम के आरोपियों को फायदा मिला, जिन्होंने 17 साल की नाबालिग लड़की को रेप करने के बाद कश्मीरी गेट के पास छोड़ दिया और तिमारपुर की बस पार्किंग में इस बस को खड़ा कर दिया। पीड़िता ने दिलेरी दिखाते हुए बाद में पुलिस में जाकर शिकायत की और पुलिस ने CCTV की मदद से बस को ट्रेस करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
14: मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए तथा नए आपराधिक कानूनों के अनुसार बिना ज्यूरिस्डिक्शनल इश्यूज में गए हुए थाना कश्मीरी गेट ने तुरंत विक्टिम का मेडिकल कराया और केस दर्ज किया। साथ ही सीसीटीवी कैमरेज की सहायता से कुछ ही घंटे में बस को भी ट्रेस किया और दोनों अपराधियों को भी अरेस्ट किया।
18: 17 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ ये वारदात इसलिए हुई क्योंकि नियमों का पालन नहीं हुआ। 47 किलोमीटर दूर तक नियमों को ताक पर एक बस नोएडा से दिल्ली तक दौड़ती रही। बस में पर्दे लगे थे जो नियमों के खिलाफ हैं, लेकिन न तो दिल्ली पुलिस के किसी जवान की और नोएडा पुलिस के किसी जवान की नजर बस पर पड़ी। अगर बस को रोका जाता तो आरोपी पहले पकड़े जाते। 47 किलोमीटर दूर तक डेढ़ घंटे तक नाबालिग के साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने से रोका जा सकता था।
3: इस वारदात ने बता दिया कि निर्भया कांड के बाद भी कानून तो तमाम बने, लेकिन उनको जमीन पर नहीं उतारा गया। कानून को लागू करने में पुलिस भी फेल साबित हुई। इस वारदात ने फिर खबरदार कर दिया कि सिर्फ कानून बनाने भर से बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। इसके लिए पुलिस को संवेदनशील बनना होगा।
6: दिल्ली एनसीआर में यह वारदात हुई, लेकिन जिस पुलिस पर इसे रोकने की जिम्मेदारी थी वो नोएडा और दिल्ली पुलिस एक दूसरे पर बस उंगली उठा रहे हैं। दिल्ली पुलिस को आपने देखा कैसे सारा जोर इस बात पर दिया कि नोएडा में वारदात हुई, नोएडा में वारदात साबित करने पर यह रहा। अब नोएडा पुलिस कह रही है कि उसे इस मामले की जानकारी आज दी गई। सबसे बड़ी बात, उसकी तरफ से कहा गया कि साक्ष्य और जो पक्ष पेश किया गया है उसमें विरोधाभास। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद ओझा इस समय जुड़ रहे हैं। अरविंद, सीधे सीधे ये पूरा मामला समझ में आता है, इवन जो आम लोग हैं उनको समझ में आ जाता है कि किस तरीके से उस लड़की की तरफ से ये बताया गया कि परी चौक पर बारिश की वजह से पता नहीं चला परी चौक पर उतरी, वहां से एक इस बस में वो सवार हुई और उसके बाद वहां से लेके दिल्ली तक का रास्ता। दिक्कत दोनों मामलों में है, जो गलती है वो दोनों जगह की पुलिस में नजर आ रही है, लेकिन केवल उंगलियां उठाई जा रही हैं।
19: देखिए, पहली दो इसमें बड़ी बातें हैं श्वेता। पहली बार तो जो नोएडा पुलिस का ये बयान है और जो दोनों एक दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं, तो आपको बता दूं एक इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है, ये दावा किया जाता है हर महीने, जिसमें दिल्ली एनसीआर के तमाम जो सीनियर अफसरान हैं वो आते हैं और उसमें क्राइम मीटिंग होती है, जो इन्फॉर्मेशन है वो साझा किया जाता है। तो ये किस तरह की इंटर कोऑर्डिनेशन मीटिंग है जिसमें नोएडा पुलिस कुछ अलग बयान दे रही है, दिल्ली पुलिस कुछ अलग बयान दे रही है? तो ये जो इंटर स्टेट मीटिंग है, पहली बात तो उसकी पोल खोलता है। दूसरी, आप अगर आप वारदात को एक तरफ करें तो नोएडा से दिल्ली तक की ऐसी सैकड़ों बसें हमको, आपको और जनता को दिखाई देती हैं, जिसमें स्लीपर बस, लग्जरी बस तमाम नियमों की अनदेखी करके कुछ ले देकर चलती हैं। ये सभी को बहुत अच्छे से मालूम है, आज तक कई बार इस बात का रियलिटी चेक कर चुका है। तीसरी बड़ी बात की जो नया कानून है उसके मुताबिक पीड़िता कहीं भी अगर शिकायत देती है तो उस मामले में एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए और क्राइम अगेंस्ट मूवमेंट को, वुमेन्स को रोकने का यही तरीका है कि अगर पीड़िता किसी भी स्टेट में जाकर शिकायत देती है तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जो दावा है वो यही किया, जो ज्यूरिडिक्शन है उसका इशू न बनाते हुए जो पीड़िता ने शिकायत दी उस पर एफआईआर दर्ज किया। लेकिन नोएडा पुलिस और दिल्ली पुलिस के ये बयान बताते हैं कि वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स को लेकर कितने संवेदनशील है, नंबर एक। नंबर दो, जो हजारों खर्च करके हर महीने इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है वो उसका असली फेस, असली चेहरा क्या है
6: वाकई और उसका फायदा क्या हो रहा है। बहुत शुक्रिया अरविंद ओझा, हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे हैं। अब बात हम नेपाल की करते हैं। तबाही को आए 6 दिन वहां पर हो गए हैं, लेकिन इस तबाही का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा, मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। ताजा खबर यह है कि नेपाल में मरने वालों की संख्या 939 हो गई है, 3,925 लोग लापता बताए जा रहे हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, जबकि 11,379 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। रेस्क्यू के काम में 21,000 नेपाली सेना के जवान लगे हैं। चीन ने भूस्खलन के खतरे का हवाला देते हुए नेपाल के साथ तातोपानी बॉर्डर पॉइंट को बंद कर दिया है। नेपाल के 11 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स अचानक आई बाढ़ की चपेट में आ गए, जिसमें काम कर रहे 933 मजदूर माना जा रहा है कि इन पावर प्रोजेक्ट्स की सुरंगों में फंसे हुए हैं। इन्हें निकालने के लिए सुरंगों के गेटों से मलबा निकाला जा रहा है, पाइप के जरिए अंदर ऑक्सीजन भेजी जा रही है।
3: त्रिशूली 3A टनल का मुंह खोलने की कोशिश करती टीम। चीर में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के अंदर फंसे मजदूरों को बचाने का अभियान। गटांग हाइड्रो पावर परियोजना की सुरंग में फंसे लोगों को बचाने की एक कोशिश। नेपाल के 11 हाइड्रो प्रोजेक्ट की सुरंग में दावा है कि 898 मजदूर या तो लापता हैं या फिर उनका कोई अता पता नहीं। सबसे ज्यादा मजदूर अपर त्रिशूली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बाढ़ की चपेट में आने के बाद लापता हुए। यहां पर 576 लोगों की कोई जानकारी नहीं मिल रही। ये त्रिशूली हाइड्रो पावर परियोजना में जिंदगी को बचाने की जंग से जुड़ी तस्वीर है, जहां रविवार को बचाव दल की टीम दोपहर के वक्त सुरंग के मुख्य हिस्से तक पहुंची और वहां 2x3 फीट का छेद बनाया। रस्सी की मदद से टीम नीचे उतरी और अंदर फंसे लोगों को आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद बचाव अभियान को आसान और तेज बनाने के लिए बड़े उपकरणों के इस्तेमाल, ब्लास्टिंग और बनाए गए छेद को चौड़ा करने का काम एक साथ जारी रखा गया। लेकिन देर रात रेस्क्यू टीम को त्रिशूली 3A टनल में ब्लास्टिंग के बाद भी रास्ता बनाने में कामयाबी नहीं मिल पाई, जिसके बाद से अब सुरंग को काटकर लोगों के प्रवेश के लिए रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुश्किल ये है कि सुरंग के अंदर लगातार पानी भर रहा है, इसीलिए पानी निकालने के लिए जनरेटर और पंप लगाया जा रहा है। एक तरफ कीचड़ से बंद सुरंग का मुहाना खोलने की कोशिश हो रही है, तो वहीं सुरंग में ड्रिलिंग करके एक पाइप डाला गया है, इसी से अंदर ऑक्सीजन भेजी जा रही है। फंसे लोगों को निकालने के लिए नेपाली सेना के साथ भारत की 11 सदस्यीय टेक्निकल टनल टीम जुटी हुई है। नेपाल में 26 तारीख को जब दुनिया ने हाइड्रो प्रोजेक्ट को तबाह होते देखा था, तब किसी को पता नहीं था कि इतने सारे मजदूर इन प्रोजेक्ट की सुरंग में फंस जाएंगे। लेकिन भोटे कोशी नदी में बाढ़ आने के बाद प्रभावित होने वालों में रसुआगढ़ी जल विद्युत परियोजना भी शामिल है, जिसकी सुरंग के अंदर खोजबीन करने पहुंची नेपाली सेना के नेतृत्व वाली रेस्क्यू टीम को कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं मिला। इसके बाद बचाव दल वापस लौट आया। सुरंग के अंतिम हिस्से में लोगों के फंसे होने की आशंका के बाद नेपाली सेना की टीम इंजीनियर और ड्रोन टीम के साथ खोज अभियान में जुटी थी। बचाव दल ने सुरंग के अंदर अंतिम पॉइंट तक पहुंचकर ड्रोन के जरिए व्यापक खोज की, लेकिन वहां किसी भी जीवित व्यक्ति की मौजूदगी के संकेत नहीं मिले। इस परियोजना में कुल 93 लोगों के लापता होने की जानकारी हाइड्रो पावर कंपनी की तरफ से दी गई थी। नेपाल में तबाही के बाद लोगों को बचाने में सेना और पुलिस लगी है, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने को लेकर है। इस बात का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि टनल से मजदूरों को बचाने के काम में ही 10,000 सुरक्षा कर्मी जुटे। नेपाल के 5 बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट बाढ़ की चपेट में आए। ये रसुआ के चिलमे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल है, जिसमें बचाव कर्मी जा रहे हैं। नेपाल में तबाही में जो समय रहते भागा वही बचा। तबाही के रोज आ रहे नए वीडियो का यही निचोड़ है। इस वीडियो को देखें। नेपाली सेना के जवान लोगों को भागने के लिए चेतावनी दे रहे हैं। जैसे ही लोगों को हालात बिगड़ते दिखते हैं, वो जान बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जो सैकड़ों लोग टनल में फंसे या फिर जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, वो भी अचानक बाढ़ के रूप में साक्षात मौत को देखकर इन सुरंगों की तरफ भागे। उन्हें लगा कि नदी का मलबा इतनी ऊंचाई तक नहीं आ पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और त्रिशूली 3A जैसी टनल के मुंह मलबे की वजह से बंद हो गए, जिन्हें खोलने के लिए नेपाल भारत की भी मदद दे रहा है। भारतीय बचाव दल भी नेपाल के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम में जुटा हुआ है। ये अपर त्रिशूली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल का वीडियो है। यहाँ एक एक जीवन कैसे तलाशा जा रहा है ये आप देखिए। यहाँ कैमरा लगाकर देखा जा रहा है कि कोई फंसा है या नहीं। इस तरह नेपाल में तबाही के बाद जिंदगी को खोजा जा रहा है। सबसे बड़ी जंग करीब 100 घंटों से इन सुरंग में फंसे लोगों की है, जिनमें से कुछ लोग तो सुरक्षित वापस आ गए, लेकिन सैकड़ों की तादाद में अब भी लोग मौत से जंग लड़ रहे हैं।
6: नेपाल में तबाही के बाद अब लापता लोगों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। सुरंगों में मजदूरों की तलाश हो रही है, तो तबाह हो चुके घरों को भी ढूंढा जा रहा है, खंगाला जा रहा है।
20: ये अंधेरी सीढ़ियों से निकलते हुए आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ।
21: नेपाल में आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा की ये रिपोर्ट आज आपको खबरदार करेगी कि नेपाल इस वक्त किन मुश्किलों के बीच से गुजर रहा है।
20: देखिए सिविल वॉलंटियर हैं, ये भी मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने टॉर्च की रोशनी से हमें भी रास्ता दिया। इनका जो अभियान चल रहा है, हम इलाकों तक पहुंचे हैं और बहुत बड़ी त्रासदी है।
21: नेपाल का एक घर इस वक्त दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। नेपाल के नुवाकोट जिले के त्रिशूली बाजार में आई भीषण बाढ़ में ये हरे रंग का घर कैसे सुरक्षित बाढ़ की तेज उफान वाली लहरों के बीच बचा, इस पर बड़े बड़े एक्सपर्ट तर्क दे रहे हैं। लेकिन इसी नुवाकोट में कई घर ऐसे हैं जो भले ही अचानक बाढ़ में बच गए लेकिन उनके अंदर हालात बहुत खराब है। नेपाल की रेस्क्यू टीम के साथ आज तक संवाददाता ऐसे एक घर पहुंचते हैं जहां सिवाय मलबे के कुछ नहीं बचा। इस घर के भीतर हमें सिविल डिफेंस के लोग कुछ खोजते मिले। सवाल है कि जिस घर में सिर्फ मलबा है वहां क्या तलाशा जा रहा है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आज तक की टीम इस घर के भीतर गई, चारों तरफ मलबे के बीच में। दीवार पर परिवार की फोटो ने खबर दी कि कौन इस घर में रहता था, लेकिन सैलाब में सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग गए।
20: खतरा उन्होंने टाल दिया, हालांकि खतरा प्रवाह का था। ये उस परिवार की तस्वीरें हैं, उन्होंने सोची कि अपनी यादें सहित करके रखी थी, लेकिन उन यादों के ठीक नीचे ऊपर जो है वो दलदल कीचड़ है, तबाही के निशान है और अब घर की जरूरत की चीजें जो है वो यहाँ से निकाली जा रही है। सिविल डिफेंस जो वॉलंटियर्स है वो घर घर जा रहे हैं।
21: नेपाल में अचानक आई बाढ़ में लोगों ने अपने घरों की ऊपरी मंजिलों की छतों पर जाकर जान बचाई। अगर वो ऐसा नहीं करते तो मलबे में उनका नामो निशान नहीं रहता, क्योंकि सैलाब का मलबा दूसरी मंजिल में भी भर गया।
20: दूसरी मंजिल है छत की और ये दूसरी मंजिल की पूरी तरह से बाढ़ सैलाब के साथ आए, कीचड़ मलबे में पूरी तरह दबी हुई है। परिवार की तस्वीर मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, उन भगवान की तस्वीर है, परिवार की तस्वीर है और अब घर और जिंदगी बचाने की जद्दोजहद इसमें ये तमाम जो वॉलंटियर्स हैं ये काम कर रहे हैं। यहाँ से
21: पहली दो मंजिलों के बाद हम इसकी सबसे ऊंची मंजिल पर पहुंचे जहां पर हमें उम्मीद थी कि मलबा नहीं होगा, लेकिन यहां भी हमें सिवाय मलबे के कुछ नहीं मिला।
20: एक सिविल डिफेंस वर्कर हैं, इनके साथ हम इस इमारत के सबसे ऊपर मंजिल पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अंधेरा है, लाइट नहीं है और लोग जहां तक पहुंच सकते हैं कोशिश कर रहे हैं कि मदद की जा सके। देखिए इमारत में बहुत ही डरावना है और ये देखिए सोचा सारा का सारा मलबा है, सीढ़ियां जो हैं वो मलबे से ढकी हैं। ये हम आ गए हैं इमारत की दूसरी मंजिल और पूरी तरह दलदल दल है ये, और सोचिए कि दूसरी मंजिल दलदल में दब गई है। हालांकि तीसरी मंजिल साफ सुरक्षित है, लेकिन दूसरी मंजिल जो है ये आप देख रहे हैं पूरी तरह दबी हुई है। अब जो लोग हैं बचा कुचा सामान निकालने की मदद कर रहे हैं, जिसका घर है उसके मालिक बचे हुए हैं और अब यहाँ एक अभियान चलाया जा रहा है।
21: नेपाल में सिविल डिफेंस और स्थानीय प्रशासन अचानक सैलाब में आए घरों के अंदरों की जांच कर रहा है, देख रहा है कि कोई यहाँ पर मलबे में दबा रहा हो। नेपाल में राहत बचाव के काम में महामारी का खतरा भी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि 26 तारीख को आई तबाही को 6 दिन बीते हैं। देवीघाट इलाके में बदबू फैलने लगी, सेना के लोग यहाँ फंसे शवों को निकालने में जुटे ताकि तबाही के बाद महामारी ना फैले। आशुतोष मिश्रा, नुवाकोट, नेपाल, आज तक।
6: प्रधानमंत्री भले ही विदेश में हों लेकिन देश पर उनकी पूरी नजर है। पहली तिमाही के नतीजे उम्मीद से कहीं बेहतर आए हैं। जीडीपी की ग्रोथ 7.8% रही, इस पर पीएम मोदी का ट्वीट आया है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत की 7.8% की शानदार जीडीपी ग्रोथ एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। निराशावादी गलत साबित हुए, भारत ने एक बार फिर कामयाबी की, नई ऊंचाई को छुआ है। उधर पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच किर्गिस्तान में थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं का दोस्ताना एक बार फिर दिखा है। मोदी और पुतिन ने एक साथ एक गाड़ी में सफर किया है। इससे पहले पुतिन से मोदी ने मुलाकात की। पीएम मोदी ने एक बार फिर यूक्रेन को लेकर शांति का संदेश दिया, कहा कि युद्ध से हटकर आगे बढ़ना चाहिए, मानवता के लिए जरूरी है कि युद्ध खत्म हो।
0: एक्सलेंसी, यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। पिछली बार भी जब हम मिले थे तब आपने विस्तार से सभी विषयों के बारे में मुझे अवगत किया था। जैसा कि आप जानते हैं, भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देती है, उमंग से भर देती है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर, उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
2: और अब आपको राजस्थान के युवाओं के हक में खबरदार होना है, जहां 2022 से लेकर अब तक लाखों बेरोजगार स्कूल लेक्चरर भर्ती में साजिश के तहत फेल करने का आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ स्कूल लेक्चरर पद खाली जा रहे हैं, दूसरी तरफ स्कूलों में टीचरों की कमी की भरपाई के लिए सरकार ने 76,000 अस्थायी शिक्षक ठेके पर रखने का फैसला किया।
22: बच्चियां कहती हैं कि लेक्चरर है नहीं तो पढ़ाई होगी कैसे। और जो लेक्चरर बनने की योग्यता रखते हैं वो पूछते हैं कि बताइए कौन सा सिलेबस पढ़कर हम परीक्षा दें।
23: सर ऐसा नहीं है कि हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के पढ़ रहे हैं, फिर भी 40% ही नहीं आ रहे। और 2024 के बाद में 25 में तो और ज्यादा मेहनत की थी, फिर भी नहीं ला पाए। सर बहुत ही सामान्य घर परिवारों के बच्चे हैं, गाँव ढाणियों से आते हैं, माता पिता बहुत ही उम्मीद से भेजते हैं और जब रिजल्ट आता है देखते कि सब कुछ करके भी फिर भी फेल हो गए, उसे कोई रास्ता नहीं दिखता है। समझ में ही नहीं आता कि कमी कहाँ पे रह गई, कहाँ पे सुधार करें। और सर अब तो इन 40% से डर लगने लग गया है, तो सर आपसे बहुत ही विनम्र अपील है कि आप हमें थोड़ा रास्ता दिखाइए, कौन से सोर्स को फॉलो करें या फिर किस हिसाब से पढ़े कि कम से कम 40% तो ले आए।
22: इसको कहते हैं भवर में फंसा दो भविष्य और राज करो। एक तरफ राजस्थान में स्कूल लेक्चरर की कमी जेन अल्फा छात्रों के आंदोलन का बड़ा मुद्दा है, लेकिन स्कूल लेक्चरर बनने के लिए जेन जी बेरोजगार भी आंदोलन कर रहे हैं। दोनों के आंदोलन के बीच में खड़ी है राजस्थान सरकार और राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाएं, क्योंकि सरकार ने स्कूल लेक्चरर बनने वालों भर्ती परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम 40% नंबर लाने का नियम बना दिया। दावा है कि इसकी वजह से आधे से ज्यादा छात्र पास ही नहीं हो पा रहे। हालत यह है कि 5 बार नेट परीक्षा पास कर चुके और पीएचडी डिग्रीधारी विजेंद्र 2022 से पॉलिटिकल साइंस स्कूल लेक्चरर बनने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इनके 40% नंबर भी भर्ती परीक्षा में नहीं आ पाए। इनका कहना है कि जो नेट और पीएचडी कर चुका है क्या वो 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ाने लायक भी नहीं। आरोप है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग जानबूझकर ऐसा सिलेबस तय कर रहा है जिससे कोई पास ना हो पाए।
24: मैं खुद हूं तो मैं 5 बार नेट क्वालिफाइड हूं सर। एक तरफ यूजीसी हमें नेट क्वालिफाइड कर रही है और ये कह रही है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य हो, तो और मैं खुद पीएचडी कर रहा हूं, तो इसमें योग्यता का सवाल कहीं नहीं उठता है, हम योग्य हैं इस तरह से देखे तो।
25: मैं पहली बार स्कूल व्याख्याता भर्ती में बैठा था, मैं 2022 से ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूं। लगभग 2022 में मैंने पहली बार फॉर्म भरा था, फिर उसके बाद में 2024 में पोस्टें खाली गई, 2025 में पोस्टें खाली गई, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि सरकार की मंशा भर्ती करने की है, लेकिन आयोग अपनी हठधर्मिता पे है कि वो परीक्षाएं करा तो रहा है, करोड़ों रुपए खर्च भी कर रहा है, लेकिन पेपर का स्तर इस तरीके से बना रहा है कि अभ्यर्थी पास ही ना हो सके।
22: टोडा भीम के रहने वाले लेखराज मीणा का दावा है कि 2022 से 26 तक वो स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा की तैयारी करते आए, ऐसा नहीं है कि ये पढ़ाने की ताकत नहीं रखते, लेकिन आरोप है कि सिलेबस सेट करने वाले भर्ती परीक्षा में खेल कर रहे हैं।
1: तो ऐसा नहीं है कि राजस्थान में लोग पढ़ते नहीं है, वो पेपर का इस लेवल का बनाना, फर्स्ट पेपर इतना लेंथी है, सेकंड पेपर है, उनका दोनों का सिलेबस और वो मेंटेन नहीं हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो लेंथी बहुत ज्यादा लेंथी, तो उसमें क्वालिफाइंग 40% क्रिटेरिया, हर सब्जेक्ट का इतना डीपली जाना, जैसे पॉलिटिकल साइंस है उसमें फर्स्ट पेपर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ऑक्सफोर्ड की बुकों से आ रहे हैं, और जैसे कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं तो हिस्ट्री के जो लड़के हैं सब्जेक्ट के उनसे भी वो क्वेश्चन नहीं हो रहे, हर सब्जेक्ट में बहुत डीपली जा रहे हैं, तो फर्स्ट पेपर में क्वालिफाइंग नहीं हो रहे और कुछ का सब्जेक्ट का उस हिसाब से।
22: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट जब से जारी किया है तब से विवाद और बढ़ा है। 2025 में 4,825 पदों पर स्कूल लेक्चरर की भर्ती परीक्षा हुई, 5,68,000 लोगों ने फॉर्म भरा, इसमें पॉलिटिकल साइंस के सबसे ज्यादा 76,000 परीक्षार्थियों ने फॉर्म भरा। 24 अगस्त तक 3,909 पदों का रिजल्ट जारी हुआ, इनमें से 1,574 पद खाली रह गए क्योंकि किसी को भी 40% नंबर नहीं आए। 2024 की स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा में भी 409 पद खाली रह गए थे। दोनों साल एससी एसटी और ओबीसी के सारे पद खाली रह गए। सबसे खराब हालत पॉलिटिकल साइंस और एग्रीकल्चर विषय में है। 2024 में स्कूल लेक्चरर परीक्षा में पॉलिटिकल साइंस की 225 पद के लिए 46,000 बेरोजगारों ने परीक्षा दी, पास केवल 6 हुए। 2026 में 645 पद के लिए परीक्षा हुई, पास केवल 67 हुए। कृषि विषय में लेक्चरर पद के 552 पदों में केवल 49 बेरोजगार पास हो पाए।
4: 2021-22 में स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के सिलेबस में यह कहकर बदलाव किया गया था कि कोचिंग माफियाओं की कमर तोड़नी है, मगर इस तरह से सिलेबस से क्वेश्चन आने लगे कि लगातार बच्चे फेल होने लगे और पद खाली रहने लगे। हालात अब ये हैं कि लाखों बच्चे पिछले 4 साल में सरकारी नौकरी के इंतजार में बैठे हैं, लगातार पढ़ भी रहे हैं, परीक्षा भी दे रहे हैं, मगर नौकरी नहीं मिल रही है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि सवाल कहां से आएंगे।
2: एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप रहिए खबरदार।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: Stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
9: आगे आगे
26: अरे उधर
9: उधर किधर
26: करेक्ट करेक्ट
27: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार।
1: जुमा बोलो, जुमा केसरी।
2: एक दो एक
3: श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: मुल्तानी को का कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी को का कॉफ सिरप।
3: ओह नो, बहुत बोर लग रहा है।
4: Take a date, not bites.
5: No added sugar, preservative के बिना। Dates, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया। Lion dates, not bites.
4: Lion date, not bites.
6: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
7: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
9: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: आगे आगे,
1: अरे उधर
0: उधर यार,
1: करेक्ट करेक्ट,
2: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: state of mind with a cola spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with a cola spa at home.
1: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
3: सोच बदलो और बैंक भी।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: क्या भागवत के बयान से बदलेगी सियासत? क्या हिंदू मुस्लिम एकता पर अब नई बहस छिड़ गई है? भागवत के बयान पर विपक्ष क्यों हमलावर है? अमेरिका में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू मुस्लिम एकता और भारत की विविधता की बात की। उन्होंने कहा कि देश में हर धर्म और हर समुदाय का सम्मान होना चाहिए। भागवत के बयान का बीजेपी ने समर्थन किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारतीय संस्कृति सभी को साथ लेकर चलने की रही है।
3: ये जो तत्व है बिल्कुल सही तत्व है, क्योंकि हिंदुत्व का आत्मा क्या है? सहिष्णुता। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता ये हिंदू सभ्यता है।
2: वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भागवत के बयान पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विदेश में कुछ और देश में कुछ कहने से बदलाव नहीं आएगा। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी भागवत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर विविधता और भाईचारे की बात हो रही है तो इसे देश में भी दिखाई देना चाहिए। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी भागवत के बयान पर सवाल उठाए।
4: उनका भाषण ये दुनिया के लिए होता है और उनके मेंबर्स के लिए खुद आरएसएस के, तो शुरू का उनका हमेशा ये प्लेबुक स्टाइल है उनका।
2: हालांकि विपक्ष में भी भागवत के बयान को लेकर अलग राय सामने आई। सौगत राय ने कहा कि अगर आरएसएस प्रमुख दूसरे समुदायों के साथ भाईचारे की बात कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है।
5: ये अगर मोहन भागवत कहते हैं तो अच्छा है, लेकिन आरएसएस एकदम एक तो हिंदू कट्टर हिंदू संगठन है। ये वो बोल रहे हैं, विश्वास करते हैं कि नहीं पता नहीं।
2: कुल मिलाकर मोहन भागवत का अमेरिका में दिया बयान अब भारतीय राजनीति में बहस का मुद्दा बन गया है। विपक्ष इसे कथनी और करनी से जोड़कर सवाल उठा रहा है, तो बीजेपी इसे हिंदुत्व की मूल भावना से जोड़कर देख रही है। आज तक ब्यूरो।

0: खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट अंजना के साथ और हरदम रहिए खबरदार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर किर्गिस्तान के बिश्केक से है, जहां एससीओ समिट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन मुद्दे पर भारत का रुख जो है वो स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत शांति का पक्षधर है, इसलिए पुतिन को युद्ध रोकने की पहल करनी चाहिए। इस मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के अलावा किर्गिस्तान और आर्मेनिया के राष्ट्र प्रमुखों के साथ भी द्विपक्षीय बैठक कर चुके हैं। इन मुलाकातों के साथ आपको कल होने वाली प्रधानमंत्री मोदी, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बारे में बताएंगे। इस मुलाकात पर किसकी नजर है? जी हां, डोनाल्ड ट्रंप की सीधी नजर है। और वो क्यों बनी हुई है और क्या ट्रंप इस मुलाकात को लाइव देखेंगे? आज आपको ये भी बताएंगे कि आखिर एससीओ समिट में ऐसा क्या है जो अमेरिका को परेशान कर रहा है। कहानी पूरी तरह से ताकत के समीकरण की है। आखिर डोनाल्ड ट्रंप एससीओ समिट पर हर बार परेशान क्यों होते हैं? दशकों तक अमेरिका और यूरोप को लगता था कि एशिया के देश ये क्या कर लेंगे, एशिया के देश एक मंच पर आ ही नहीं सकते और आ भी गए तो क्या कर लेंगे, कभी भी बड़े प्लेयर नहीं बन सकते। लेकिन जब एससीओ के बहाने भारत, रशिया, चाइना एक साथ फ्रेम में आ रहे हैं तो अमेरिका के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। भारत अपनी कूटनीति के दम पर दोनों तरफ संतुलन बना रहा है। इसके बाद आपको ईरान पर अमेरिका के बड़े हमले के बारे में बताएंगे। अमेरिका ने ईरान के लारक और खार्क द्वीप पर हमला किया है। लारक द्वीप पर हमले की जानकारी अमेरिका की सेना पहले ही दे चुकी थी। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि खार्ग आइलैंड को भी निशाना बनाया गया है। इसके जवाब में ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। देखिए,

और इसके बाद आपको नेपाल में आई तबाही के पीछे की वजह बताएंगे। शुरुआत में कहा गया था कि तिब्बत में ग्लेशियर फटने चाइना की चुप्पी की वजह से तबाही आई। नेपाल में अनेकों वैज्ञानिक एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि चाइना ने पहले बताया होता तो शायद लोग बच जाते। नेपाली वैज्ञानिकों और रॉयटर्स की नई रिपोर्ट में अब यह दावा किया है कि आपदा किसी झील के फटने से नहीं बल्कि 5000 मीटर की ऊंचाई से बर्फ और चट्टानों के अचानक गिरने से हुई थी। इस मलबे की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। और इसके बाद आपको बताएंगे कि न्यूयॉर्क में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने न सिर्फ भारत विरोधी नारे लगाए बल्कि तिरंगे का भी अपमान कर दिया। इस हरकत पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि तिरंगे के अपमान की कीमत चुकानी होगी। दूसरी तरफ मोहन भागवत के उस बयान पर भी सियासी पारा चढ़ गया है जिसमें उन्होंने कहा कि जो मुसलमानों को देश से निकालने की बात करे वो हिंदू हो ही नहीं सकता। और इसके बाद आपको हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान मर्डर केस के बारे में बताएंगे। हत्या के 4 दिन के भीतर पुलिस ने मुठभेड़ में शामिल रहे 2 शूटर्स मोहित और सुमित का एनकाउंटर कर दिया। अब इस एनकाउंटर के बाद सियासी पारा भी चढ़ गया है। अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल

सवाल उठाए जिस पर अंकित के पिता ने नाराजगी जताई है और कहा है कि अभी तो दो ही मरे हैं, आधा इंसाफ बताया है, बाकी दो फरार आरोपी सत्यम और आर्यन पर भी जल्द शिकंजा कसने की मांग की है। इसके बाद आपको संभल में फिर से बुलडोजर एक्शन दिखाएंगे। यहां प्रशासन ने चारागाह की सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजार को ध्वस्त किया। प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम के अलावा मौके पर भारी पुलिस फोर्स लगाई गई। करीब 20 मिनट तक बुलडोजर कार्रवाई चली है।

और इसके बाद आपको बताएंगे कि देश की बहुत सारी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो कैसे अपनी रैंक बढ़ाने के लिए किस तरह का झोल करते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की टॉप रैंकिंग के पीछे असल खेल इंडियन पेटेंट ऑफिस के आंकड़ों से सामने आया है। अब ये यूनिवर्सिटी तमाम फिजूल के जो पेटेंट्स हैं उनको फाइल कर देते हैं। असल में इनका मकसद कुछ नया खोजना नहीं है बल्कि NIRF रैंकिंग के उस नियम का फायदा उठाना है जो सिर्फ पेटेंट फाइल और पब्लिश होने पर पॉइंट्स दे देता है, फिर चाहे वो कोई बेतुकी भी चीज हो, क्योंकि उसके मेरिट को देखा नहीं जाता है। और आखिर में आपको पूर्व टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर की वो तस्वीर दिखाएंगे जब वो रो पड़े। एक वक्त था जब कोर्ट पर गुस्सा उतारने वाले रोजर फेडरर के हाथों में रैकेट टूट जाते थे, लेकिन जब इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में उन्हें टेनिस के सर्वकालिक महान का ताज पहनाया गया तो वही लेजेंड अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए। लेकिन इस वक्त SCO समिट को लेकर तीन बड़े अपडेट्स हैं जो आपको बताना चाहते हैं। पहला बड़ा अपडेट यह है कि जिस वक्त हम आपको यह खबर दिखा रहे हैं तब किर्गिस्तान में राष्ट्रपति सादिर जापरोव SCO समिट में आए सभी राष्ट्राध्यक्षों के सम्मान में एक शानदार गाला डिनर होस्ट कर रहे हैं। दूसरा, आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की अपील की है। और तीसरा अपडेट यह है कि SCO का 26वां शिखर सम्मेलन कल सुबह 9:50 से दोपहर 1 तक चलेगा जिसमें चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे एक साल बाद एक ही मंच पर नजर आएंगे। और इसके बाद ऐसी उम्मीद है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स समिट में भी शामिल हो सकते हैं।

0: तो काफी भव्य रंगारंग कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है और एआई और ग्राफिक्स का किस तरह से इस्तेमाल हुआ है वो भी आप देख रहे हैं। जब भारत की टीम को बुलाया गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका अभिवादन किया और बहुत ही खुशनुमा इस वक्त वहां पर तस्वीरें। इस वक्त लेकिन जब आप देख रहे हैं तो एक गाला डिनर वहां पर चल रहा है। इससे पहले आज शाम प्रधानमंत्री मोदी और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय मुलाकात हुई जो आधे घंटे तक चली। इस मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि हमें युद्धों से हटकर अब आगे बढ़ना चाहिए, युद्ध का हर एक दिन मानवता को पीछे धकेल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अब एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर की तरफ बढ़ना होगा, यानी अंतहीन युद्धों से युद्ध के अंत की तरफ जाना होगा। जबकि राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि भारत और रशिया का रिश्ता अटूट है और रशिया अब भी भारत के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत कर रहा है।
1: Prime Minister, of course, this is aided by your special attention to the Russian-Indian relations.

0: जैसा कि आप जानते हैं, भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देती है, उमंग से भर देती है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर, उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: पिछले एक साल में राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की यह तीसरी मुलाकात है। इनमें पहली मुलाकात चाइना के तियानजिन शहर में सितंबर 2025 को हुई थी। दूसरी मुलाकात दिसंबर 2025 में हुई, जब राष्ट्रपति पुतिन भारत के दौरे पर आए थे। और तीसरी मुलाकात आज हुई है और कूटनीतिक रूप से इस मुलाकात के चार बड़े मायने हैं। पहला, जब अमेरिका और पश्चिमी जितने देश हैं वो रशिया को पूरी तरह अलग थलग कर रहे हैं, तब प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्रपति पुतिन से हाथ मिलाना यह दिखाता है कि भारत अपनी विदेश नीति किसी के दबाव में तय नहीं करता और हम अपने कूटनीतिक संबंधों को बैलेंस करेंगे। हम रशिया से अच्छा रिश्ता रखेंगे, अमेरिका से भी अच्छा रिश्ता रखने की कोशिश करेंगे। दूसरा, यूक्रेन युद्ध के बाद से रशिया कूटनीतिक रूप से चाइना के ज्यादा करीब आया है और ऐसे में भारत के लिए जरूरी है कि वो रशिया के साथ मजबूत रिश्ते रखे ताकि मॉस्को पूरी तरह बीजिंग के पाले में ना चला जाए। तीसरा, ये मुलाकात भारत में 11 दिनों बाद होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए एक मजबूत नींव की तरह है, जहां राष्ट्रपति पुतिन खुद भारत का दौरा करने वाले हैं। और चौथा, भारत अपनी विदेश नीति से यह स्पष्ट कर रहा है कि रशिया के साथ उसके रिश्ते किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये विशुद्ध रूप से भारत के अपने राष्ट्रीय हित, अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए है। यानी जब राष्ट्रपति ट्रंप रशिया के साथ भारत के रिश्तों को लेकर एतराज जताते हैं, कहते हैं कि वो युद्ध में लगा हुआ है फिर भी उससे तेल खरीद रहे हैं, तब भारत अपने इस रुख पर कायम है कि रशिया के साथ हमारा रिश्ता किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं है और रशिया हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी है, सहयोगी भी है। अब उदाहरण के लिए, मौजूदा वक्त में भारत अपनी जरूरत का जानते हैं 50% यानी आधा कच्चा तेल अकेले रशिया से खरीद रहा है। इसके अलावा रशिया आज भी भारत को कई आधुनिक हथियार निर्यात कर रहा है, जिनमें S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। ऐसा माना जा रहा है कि इस मुलाकात में भी S-400 की आपूर्ति और ऊर्जा संकट को लेकर चर्चा हुई है। इसके पीछे कारण यह है कि यूक्रेन लगातार रशिया की तेल रिफाइनरीज को निशाना बना रहा है, जिसके कारण रशिया को अब पेट्रोल दूसरे देशों से खरीदना पड़ रहा है और इनमें भी भारत काफी ऊपर है। पिछले 2 महीनों में भारत ने रशिया को जानते हैं 10 लाख बैरल पेट्रोल निर्यात किया है, जिस पर राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच आज बात हुई। देखिए,
2: मैं ये बहुत खुशी के साथ कहना चाहूँगा कि रूस और भारत के संबंध खास, बेहतर और आपसी साझेदारी के सिद्धांत के आधार पर लगातार मजबूत हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री, बेशक इसमें रूस भारत संबंधों पर आपके खास ध्यान और हमारे बीच बने कारोबारी और दोस्ताना रिश्तों की बड़ी भूमिका है और इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। हाल ही में आपके विदेश मंत्री श्री जयशंकर ने मॉस्को का दौरा किया और आपका संदेश पहुँचाया। मैं उन सभी बातों से पूरी तरह सहमत हूं। अगले साल हम अपने राजनयिक संबंधों की 80वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और बेशक हम सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए भी गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं। हमारे बीच पर्यटकों का आना जाना भी सक्रिय रूप से हो रहा है और हमने इसमें 16% की बढ़ोतरी देखी है। हम संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, G20 और SCO में अपने प्रयासों में करीबी तालमेल रखते हैं और आज हमारे पास अपने विचारों पर चर्चा करने और रूस भारत संबंधों के विकास के लिए भविष्य के सहयोग की योजना तैयार करने का अच्छा मौका है। G20 and the SCO. And today we have a good chance to compare
0: our notes and to outline a future cooperation. कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट

0: आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका और आपके डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा। धन्यवाद। स्पासिबा।
1: यहां ये भी समझिए कि राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी, इनकी मुलाकात मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर में अहम क्यों मानी जाती है। इसे आप इस लाइन से समझिए जिसमें भारत के लिए ये कहा जाता है कि फ्रेंड ऑफ द वेस्ट बट नॉट अ फॉलोअर ऑफ द वेस्ट, यानी भारत पश्चिमी देशों का सहयोगी उनका फॉलोअर नहीं है। जैसे भारत आज अमेरिका का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है, लेकिन भारत रक्षा सहयोग रशिया से भी करता है, ऊर्जा संबंध रशिया से भी रखता है, परमाणु सहयोग रशिया से भी करता है और उसके साथ व्यापार भी बढ़ा रहा है। दूसरा, इस मुलाकात से यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को भी चुनौती मिलती है। याद रखिए, यह ऐसा वक्त है जब अमेरिका यूनिलैटरली कई मुद्दों पर फैसले ले रहा है, यूनिलैटरली काम कर रहा है, यूनिलैटरली पॉलिसीज चला रहा है। खुद युद्ध के खिलाफ रशिया पर प्रतिबंध लगाता है और फिर ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ देता है। तो परिस्थितियां बहुत ही ऐसी हैं जहां पर अमेरिका जिस तरह के कदम उठा रहा है उसकी वजह से पूरे विश्व में एक अलग संदेश है। अब देखिए, शीत युद्ध खत्म हुआ और उसके बाद दुनिया में लंबे समय तक अमेरिका सबसे प्रभावशाली शक्ति रहा, लेकिन दुनिया बदल रही है। चाइना उठ रहा है, भारत उभर रहा है, रशिया अपनी शक्ति बनाए रखना चाहता है। ये सारी बातें मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ इशारा करती हैं, जिसमें दुनिया में शक्ति का केंद्र बिंदु सिर्फ कोई एक देश नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी बात, भारत और रशिया का रिश्ता बहुत नेचुरल है, यानी ऑर्गेनिक है। दुनिया में बहुत सारे रिश्ते परिस्थितियों से बनते हैं, लेकिन भारत और रशिया, हमारे रिश्तों की खासियत यह है कि उन्होंने शीत युद्ध देखा, सोवियत संघ का विघटन देखा, अमेरिका भारत की बढ़ती दोस्ती देखी, रशिया चाइना की बढ़ती नजदीकी देखी, यूक्रेन युद्ध देखा, पश्चिमी प्रतिबंध देखे, लेकिन फिर भी ये रिश्ता बना रहा। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की हर मुलाकात दुनिया को यह बताती है कि वक्त बदल रहा है, लेकिन दोनों देशों के रिश्ते आज भी कायम है। वो गर्माहट, वो गर्मजोशी, और आप प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की ये कार वाली डिप्लोमेसी एक बार फिर से देखिए, आज शाम की है।

आज प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनयान से एससीओ समिट के मेजबान देश किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादर जापारोव और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान तीनों से ही बायलैटरल मीटिंग की है, द्विपक्षीय मुलाकात की है। और ये मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ वक्त से ईरान पर यह आरोप लगा है कि उसकी तरफ से हॉर्मुज में भारतीय जहाजों पर हमला हुआ है। देखिए,

0: क्या आप जानते हैं एससीओ संगठन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है क्षेत्रीय आतंकवाद और उग्रवाद को रोकना। लेकिन विडंबना यह है कि जिस पाकिस्तान में आतंकवादियों के सबसे ज्यादा टेरर कैंप्स हैं, वही पाकिस्तान इस एससीओ संगठन का स्थायी सदस्य है। एससीओ बना ही इसीलिए था, काउंटर टेररिज्म, आतंकवाद से लड़ने के लिए। भारत साल 2017 में जब भारत को एससीओ का स्थायी सदस्य बनाया गया, तभी चाइना के कहने पर पाकिस्तान को भी संगठन में जगह दे दी गई। और हमें बताते हुए अफसोस हो रहा है कि पाकिस्तान भी संगठन की बैठकों में आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा करता है, जबकि इसी साल अमेरिकी संसद में पेश हुई रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को सुरक्षित पनाह दे रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने पाकिस्तान को कई आतंकवादी संगठनों के लिए बेस ऑफ ऑपरेशंस के रूप में पहचाना है। यानी पाकिस्तान केवल ऐसा देश नहीं है जहां से आतंकी हमला करते हैं, बल्कि वहां ऐसे आतंकी संगठन भी सक्रिय हैं जो पाकिस्तान से काम करते हैं, पड़ोसी देशों में हमले करते हैं, पूरी दुनिया के आतंकवादी नेटवर्क्स का हिस्सा है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इनमें कई आतंकी संगठन पाकिस्तान में साल 1980 से काम कर रहे हैं। यानी एससीओ बना 2001 में और पाकिस्तान आतंकवादियों का पालन पोषण कब से कर रहा है? 1980 से कर रहा है। यही नहीं, इस रिपोर्ट में लिखा है कि पाकिस्तान में अलग अलग श्रेणी के आतंकी संगठनों को शरण मिली हुई है। जैसे इनमें पहले है ग्लोबली ओरिएंटेड, यानी जिनका लक्ष्य पूरी दुनिया या वैश्विक जिहाद है। दूसरे हैं अफगानिस्तान ओरिएंटेड, यानी जिनका असली निशाना अफगानिस्तान है, उसको टारगेट करना। तीसरा है कश्मीर ओरिएंटेड, यानी जो जम्मू कश्मीर को अस्थिर करना चाहते हैं। और चौथा है डोमेस्टिकली ओरिएंटेड, यानी जो मुख्य रूप से पाकिस्तान के अंदर ही सक्रिय रहते हैं आपस में एक दूसरे पर अटैक करने। इस अमेरिकी रिपोर्ट में कुल 15 आतंकी संगठनों के बारे में बताया गया है, जिनमें से 12 को अमेरिका ने फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना है। और इनमें भी कम से कम 5 आतंकी संगठन भारत में आतंकवाद फैलाते हैं। और ये बात तो अब सब जानते हैं कि अमेरिका के 9/11 हमले का मास्टरमाइंड कहां पाया गया? उसामा बिन लादेन पाकिस्तान के ही एबटाबाद शहर में मारा गया। और मुंबई के 26/11 हमले का आतंकी मोहम्मद अजमल कसाब भी पाकिस्तान से था। लेकिन सोचिए, आज यही पाकिस्तान एससीओ समिट में आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हर साल आता है और आतंकवाद को बहुत गंभीर समस्या भी बताता है। हालांकि ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्ज़ियोयेव के साथ हुई बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना उसे आतंकवाद पर घेरा है और ये कहा है कि आतंकवाद को रोकना इस संगठन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यहां ये भी समझिए कि जिस एससीओ का उद्देश्य आतंकवाद रोकना है, उसी एससीओ का स्थायी सदस्य पाकिस्तान बना कैसे? तो कारण यह है कि एससीओ में शामिल देश आतंकवाद की एक परिभाषा को लेकर आज तक सहमत नहीं हो पाए। मतलब एससीओ बन गया, इतने सालों से बैठ के हो रही है हर साल, लेकिन टेररिज्म क्या है, आतंकवाद क्या है, इसका एक डेफिनेशन अभी तक नहीं तय कर पाए। अगर कुछ देश किसी घटना को आतंकवाद मान रहे होते हैं तो बाकी देश ऐसा नहीं करते। यही दोहरे मापदंड आतंकवाद को डिस्काउंट देते हैं। देखिए,
1: उज्बेकिस्तान की मेरी ये चौथी यात्रा है। ये हमारे संबंधों की निकटता, करीबी समन्वय और हमारी गहरी मित्रता को दर्शाता है। उज्बेकिस्तान इज एट द हार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया एंड एट द हार्ट ऑफ इंडिया एंगेजमेंट विद द रीजन। सुखद संयोग से हम इस वर्ष अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 15th एनिवर्सरी भी मना रहे हैं। मुझे खुशी है इस विशेष अवसर पर हम अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने जा रहे हैं।
2: उज्बेकिस्तान के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित करना मेरे लिए बहुत ही गर्व की पल है। यह सम्मान किसी एक व्यक्ति का नहीं, यह सम्मान 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है।
1: भारत और उज्बेकिस्तान की सोच और आकांक्षाओं में गहरी समानता है। स्ट्रॉन्गर इंडिया उज्बेकिस्तान पार्टनरशिप विल बी अ पावरफुल फोर्स फॉर पीस प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन सेंट्रल एशिया।

पूरी दुनिया में SCO, ब्रिक्स, G7, G20 जैसे 300 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि इनमें SCO अकेला ऐसा संगठन है जिसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइवल्स यानी प्रतिद्वंदियों का या दुश्मन देशों का सबसे बड़ा संगठन कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, आज उसकी भी कहानी को जरा समझिए। 30 साल पहले 1996 जब शांघाई 5 का गठन हुआ तब भारत इसका हिस्सा नहीं था। उस वक्त इस संगठन में थे चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, 5 देश। लेकिन बाद में संगठन का विस्तार हुआ, धीरे धीरे 10 देश शामिल हो गए और ये SCO यानी शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम का संगठन बन गया। ऐसा संगठन जिसमें टेबल पर बैठने वाले देशों के बीच दुश्मनी का लंबा इतिहास रहा, जैसे भारत और पाकिस्तान इसमें एक टेबल पर बैठते हैं जबकि दोनों देशों के बीच कट्टर दुश्मनी है। इसी तरह चाइना और भारत वो भी इसका हिस्सा है लेकिन दोनों देशों के बीच सीमा विवाद है, दोनों देशों को एक दूसरे का प्रतिद्वंदी माना जाता है। इसी तरह चाइना रशिया भी इस संगठन का हिस्सा है, हालांकि रिश्ता चाइना और रशिया का बनता बिगड़ता रहा है। अभी हाल के दिनों में अगर आप देखें तो ईरान युद्ध में दोनों एक तरफ नजर आए, लेकिन चाइना और रशिया को ही ले लीजिए, इनके बीच सहयोगी देशों का रिश्ता है और राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच दोस्ती मानी जाती है। लेकिन इसके बावजूद जब ये दोनों देश SCO के मंच पर साथ आते हैं तो दोनों का उद्देश्य अलग होता है। रशिया चाहता है सेंट्रल एशिया के देशों में उसका प्रभाव ज्यादा हो, क्योंकि एक जमाने में ये देश सोवियत संघ के हिस्सा का हिस्सा था और व्लादिमीर पुतिन को अगर आप देखेंगे तो वो हमेशा उस सोवियत संघ की ताकत को रशिया में दिखाना चाहते हैं, जबकि चाइना चाहता है कि इन देशों में उसका प्रभाव ज्यादा हो, चाइना की तूती बोले, जिसके कारण वो सेंट्रल एशिया के इन देशों में जबरदस्त तरीके से निवेश करता है, पैसा देता है, उसके दम पर साथ खींचता है और अब कर्ज भी बांट रहा है। दूसरी तरफ सेंट्रल एशिया के ये देश चाइना और रशिया को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क रहते हैं, वो ना तो चाइना पर अपनी निर्भरता को बढ़ाना चाहते हैं और ना ही रशिया पर इतना भरोसा करना चाहते हैं कि रशिया उनके देशों में दखल बढ़ाए। और इन देशों में जानते हैं कौन कौन है, उनमें है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अब ये सारे देश SCO के स्थायी सदस्य हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये देश भी एक दूसरे को दुश्मन मानते आए हैं। जैसे किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच सीमा, पानी, जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद है, दोनों देशों के बीच हिंसक झड़पें हो चुकी हैं। इसी तरह ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान पुरानी दुश्मनी है और दोनों देश एक दूसरे पर ज्यादा विश्वास दिखाते नहीं है। यानी अगर आप इस पूरे ग्राफिक्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन SCO देशों के बीच इस तरह का संगठन होना ही बहुत मुश्किल है और इन सारे देशों के बीच गहरा अविश्वास है, पुरानी दुश्मनी एक बड़ा मुद्दा है। यहां कई लोग ये भी पूछते हैं कि जब इन देशों के बीच दोस्ती कम है, दुश्मनी ज्यादा है, तो फिर भी SCO का ये मंच पश्चिमी देशों को असहज क्यों करता है और ये समिट हर साल क्यों किया जाता है, तो इसके पीछे सारा खेल है ताकत का। अमेरिका और यूरोप के देशों ने कई सालों तक यही माना कि एशिया, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, इनके देश कभी भी मिलकर एक मजबूत सहयोगी संगठन नहीं बना सकते क्योंकि इन देशों के बीच मतभेद इतने। लेकिन फिर धीरे धीरे SCO के समिट हुए, जैसे जैसे ये मंच भारत, चाइना, रशिया एक दूसरे के करीब आया, तीनों देशों के नेताओं की तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की हेडलाइन बनने लगी, तब पश्चिमी खेमे में हलचल पैदा हुई। उदाहरण के लिए आप पिछले साल के SCO समिट को याद कीजिए, इसमें राष्ट्रपति पुतिन, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की इस तस्वीर को देखकर राष्ट्रपति ट्रंप चिंतित हो गए थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था, मैं पोस्ट भी अपने साथ लेकर आई हूं, लुक्स लाइक वी लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। शायद अमेरिका ने भारत को रशिया और चाइना के खेमे में खो दिया है, ऐसा उन्होंने पोस्ट कर दिया था। तो ये पोस्ट हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा ही रहे हैं। उस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप का ये ट्वीट पश्चिमी देशों की पूरी कहानी को बता रहा था, वो कहानी जो ताकत की कहानी है। एक जमाने में जब G7 देशों का एक बहुत बड़ा संगठन बना, तब किसी ने नहीं सोचा था कि भविष्य में गैर पश्चिमी देशों का कोई संगठन G7 के बराबर आकर खड़ा हो जाएगा और SCO को तो उस वक्त गिनती में भी शामिल नहीं किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला, आज इस संगठन को पश्चिमी मीडिया के G7 का जवाब माना जाता है। और क्यों माना जाता है, उसके लिए आप इस बार इन आंकड़ों को एक बार देख लीजिए। SCO देशों में दुनिया की 42% आबादी रहती है, G7 देशों में दुनिया की 10% आबादी रहती है।
वैश्विक अर्थव्यवस्था में एससीओ देशों की हिस्सेदारी 32% है, जी सेवन की 44%। यानी अर्थव्यवस्था के मामले में जी सेवन देश एससीओ देशों से आगे तो है, लेकिन एक मुकाबला है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जी सेवन देशों की कुल अर्थव्यवस्था में अकेले अमेरिका की ही 56% हिस्सेदारी है। इसके बाद दुनिया का 20% कच्चा तेल, 45% प्राकृतिक गैस एससीओ देशों के पास है, जबकि जी सेवन के पास 14% कच्चा तेल, 10% प्राकृतिक यानी नेचुरल गैस है। दोनों संगठनों में सबसे ज्यादा परमाणु शक्ति एससीओ के देशों के पास है। और यही वजह है कि जैसे जैसे ये संगठन आपसी सहयोग को बढ़ा रहे हैं, इसमें शामिल देश एक दूसरे के साथ टेबल पर बैठकर चर्चा कर रहे हैं, तो पश्चिमी देशों में खासतौर पर अमेरिकी मीडिया में चर्चा का विषय है। कारण गैर पश्चिमी देशों का दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, जिसमें चाइना, रशिया, भारत, ये तीन बड़ी ताकतें हैं। इनमें भारत की भूमिका इसलिए बड़ी है क्योंकि हम किसी खेमे में नहीं है, हम संतुलन बनाते हैं, क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एससीओ का हिस्सा भी है और हम जी7 देश के सम्मेलन में भी लगातार शामिल हो रहे हैं। देखिए,

0: खैर आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि जब महंगाई का संकट है, ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतें अस्थिर हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जहाजों की आवाजाही सामान्य नहीं हुई है, तब इन तमाम संकट के बीच पहली तिमाही में भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट का प्रदर्शन अनुमान से ज्यादा रहा है। इस साल अप्रैल से जून महीने के बीच पहली तिमाही में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8% दर्ज हुआ। जनवरी से मार्च की तिमाही में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 8.6% था और ईरान युद्ध के बाद आरबीआई का अनुमान था कि इस साल की जो पहली तिमाही है उसमें 7% के आसपास रहेगा, लेकिन आज जब आंकड़े आए तो ये 7.8% दर्ज हुआ। दूसरा, आप इस ग्राफिक्स को भी देख सकते हैं जिसमें हमने ये दिखाया है कि अप्रैल 2025 से जून 2026 के बीच भारत का जो जीडीपी है, जीडीपी का ग्रोथ रेट है, वो लगभग 8% के आसपास बना हुआ है। आप सब जानते हैं कि नेपाल में आई भयानक बाढ़ की तस्वीरों ने लोगों को दहला दिया है। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। चारों तरफ कीचड़ से भरा पानी था, पानी के साथ बड़े बड़े पत्थर बह रहे थे, पेड़ उखड़कर नदी में दौड़ रहे थे, घरों का मलबा पानी के साथ बहता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पानी नहीं बल्कि तबाही की एक नदी सब कुछ अपने साथ बहाकर ले जा रही है। लेकिन इसी भयानक मंजर के बीच एक तस्वीर ने सबको हैरान कर दिया। चारों तरफ बाढ़ थी, आसपास के घर टूट रहे थे, लेकिन बीच में हल्के हरे रंग का एक घर मजबूती से खड़ा था। हमने पहले या दूसरे दिन ही आपको ये तस्वीरें दिखा दी थी और बताया था कि कैसे सोशल मीडिया पर पूरी चर्चा इस टेरेस में जूम इन करके देखने पर कई लोग खड़े दिखाई देते हैं, पीछे जैसे सैलाब ऐसा जो सब कुछ निकलने को तैयार, आगे मलबे का अंबार जो बह रहा था, आसपास घर टूट रहे थे, तिनके की तरह बिखर रहे थे। वीडियो में देखा जा सकता है कि घर चारों तरफ से पानी और कीचड़ से घिरा है, उसके पास से बड़े बड़े पत्थर मलबा गुजर रहा था। ये उस दिन की तस्वीर है, लेकिन घर गिर नहीं रहा। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। कई लोग इसको सोशल मीडिया पर, कुछ लोग चमत्कार बता रहे हैं, कुछ लोग इंजीनियरिंग मावल बता रहे हैं, लेकिन हमने सोचा आज आपको ये खबर जरूर दिखाएं क्योंकि उस दिन भी हमने आपको दिखाई थी और आज देखिए ये घर वैसे ही टिका हुआ है अपनी जगह पर। अब गल्फ न्यूज ने नेपाली मीडिया के हवाले से लिखा है कि इस घर की ताकत उसकी दीवारों में नहीं बल्कि उसके ढांचे में थी। आसान भाषा में कहें तो कई घर ऐसे होते हैं जिनमें ईंट दीवारें पूरा घर संभाल रही होती है और अगर तेज बाढ़ या कोई भारी चीज दीवार से टकरा जाए तो दीवार टूट जाती है, इसके बाद पूरा घर गिर सकता है। लेकिन इस घर के अंदर एक मजबूत ढांचा था, घर में मजबूत खंभे थे, खंभों को आपस में जोड़ने वाली मजबूत बीम्स थी, अंदर लोहे की सरियाएं लगी हुई थी, नीचे मजबूत नींव थी। इन्हीं चीजों के कारण पूरा घर मिलकर उस दबाव का सामना कर रहा था और यही शायद इस घर के बचने की सबसे बड़ी वजह थी। इसके अलावा इस घर के बचने की दूसरी बड़ी वजह उसकी जगह भी हो सकती है। बाढ़ का पानी हर जगह एक जैसी ताकत से नहीं बहता, नदी या बाढ़ के बीच अक्सर एक रास्ता बन जाता है, जहां पानी सबसे तेज दौड़ता है वही सबसे बड़े पत्थर रहते हैं, बहते हैं साथ में, और वही सबसे ज्यादा मलबा आता है। यानी बाढ़ का सबसे खतरनाक हिस्सा एक खास रास्ते से गुजरता है। विशेषज्ञों के मुताबिक संभव है कि यह घर बाढ़ के सबसे खतरनाक रास्ते के ठीक बीच में नहीं था, पानी उसके पास से आसपास से गुजरा और उसने घर को चारों तरफ से घेरा, लेकिन शायद सबसे तेज सबसे भारी मलबा सीधे घर पर नहीं टकराया और यही अंतर बहुत बड़ा साबित हुआ। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह किसी चर्च के पादरी का घर था, इसलिए ईसा मसीह ने चमत्कार करके इस घर को बचा दिया है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। किसी आधिकारिक रिपोर्ट में पुष्टि नहीं हुई है कि यह घर किसी पादरी का था और ना ही यह साबित हुआ कि पूरे इलाके में सिर्फ एक घर यही घर बचा है, इसलिए इसे पूरी तरह चमत्कार कहना सही नहीं होगा। हालांकि एक बात जरूर है कि जिस व्यक्ति ने अपनी आंखों के सामने आसपास के घरों को बहते देखा होगा और अपना घर बचा हुआ पाया हो उसके लिए किसी चमत्कार से कम भी नहीं। देखिए
1: काली बजा पहाड़ी इलाकों में जो लोग मारे गए, जो उस समय आपदा से बच नहीं पाए, उनकी लाशें जो है वो तैरती हुई नीचे आई है। और उसके बाद अभी जैसे यहाँ पर मेरे पीछे एक ऑपरेशन चल रहा है, पता चला कि यहाँ घर में भी एक लाश है। बदबू अब काफी ज्यादा आने लगी है, जिस एलिवेशन पर हम हैं यहाँ पर गर्मी काफी ज्यादा, और इस गर्मी की वजह से अगर जो शव हैं तो वो धीरे धीरे डीकम्पोज होंगे, और डीकम्पोज होने की वजह से उनमें से बदबू आने लगती है। तो अब सैनिटेशन और महामारी से बचने का भी एक खतरा है, उसके लिए भी प्रशासन की तैयारी है।

0: दुनिया में भारत या हिंदू धर्म से जुड़ा कोई भी कार्यक्रम हो, कुछ लोगों के पेट में दर्द जरूर शुरू हो जाता है। ये लोग हर कार्यक्रम में भारत का विरोध करने पहुंच जाते हैं, फिर चाहे वो भारत सरकार का कार्यक्रम ही क्यों ना हो। न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में अहेड फोरम का एक कार्यक्रम था जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत का संबोधन था, लेकिन भारत और हिंदू विरोध में अंधे हो चुके कुछ लोग वहां पर तिरंगे का अपमान करने पहुंच गए। शर्मनाक है। सोचिए, ये एक निजी संस्था का कार्यक्रम था जिससे ना भारत सरकार का कोई सीधा लेना देना है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर आरएसएस के विरोध के नाम पर भारत विरोधी नारे लगाए गए, तिरंगे का अपमान किया गया। तिरंगे के अपमान पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू काफी भड़के हुए हैं। अपने एक ट्वीट में उन्होंने धमकी दी है कि हमारे तिरंगे और देश का अपमान करोगे तो ये बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। आज ये तस्वीरें न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी को भी देखनी चाहिए और उन्हें इस पर एक बयान देना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि न्यूयॉर्क में फ्री स्पीच के नाम पर किसी देश के झंडे का अपमान क्यों होने दिया गया। जोहरान ममदानी ने मोहन भागवत के कार्यक्रम का विरोध किया था। न्यूयॉर्क में एक धर्म निरपेक्ष देश के झंडे का अगर अपमान हो रहा है तो आज सवाल तो उठेंगे ही। वैसे इन विरोध प्रदर्शनों के बावजूद मैडिसन स्क्वायर गार्डन में भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ और आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने करीब 42 मिनट का एक संबोधन भी दिया। अहेड फोरम के इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जो भी हिंदू ये मानता है कि मुसलमानों को भारत से निकाल देना चाहिए वो हिंदू नहीं रह सकता। मोहन भागवत ने यह बयान एक ऐसे कार्यक्रम में दिया जो मुख्य रूप से हिंदू समाज से जुड़ा हुआ था और इसमें 30 देशों से अलग अलग धर्मों के करीब 180 धर्मगुरु शामिल थे। मोहन भागवत का यह बयान उस सोच से उलट है जिसमें ऐसा माना जाता है कि आरएसएस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। ऐसे कई मौके आए हैं जब मोहन भागवत ने खुलकर यह बात कही है। पिछले साल अगस्त में आरएसएस के एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा था कि भारत अखंड है और एक हिंदू राष्ट्र है। उनके इस बयान से दो बातें समझी गई, जिसमें पहला ये कि आरएसएस का एक विचार अखंड भारत का है और दूसरा है हिंदू राष्ट्र। अब अमेरिका में मोहन भागवत द्वारा इस विचार से अलग अलग बातें कही जा रही है।
1: 2018 in Delhi, I had a lecture and Muslim brothers were also there and they asked me question, you are a Hindu organization, you say Hindu Rashtra, what about us Muslims? Would you drive us out? I said no, that is not Hindutva. If any Hindu thinks that there should be no Muslim in Bharat, he will not remain Hindu. If you want to call yourself Hindu, you must believe that all paths are leading to the same. And every human has a dignity. There is no difference between human beings.
0: मोहन भागवत ने अपने बयान में जो कहा है उसको लेकर कई मुस्लिम धर्मगुरुओं और नेताओं की प्रतिक्रियाएं आई हैं। इनमें लगभग एक सी बात ही कही गई है। लोगों का सवाल है कि अगर मोहन भागवत भारत के मुस्लिमों को लेकर ऐसा ही सोचते हैं तो क्या उनका संगठन भी इसी विचार पर चल रहा है। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने एक ट्वीट में लिखा है कि अगर मुसलमानों को देश से निकालने की बात करने वाला हिंदू नहीं है तो मोहन भागवत ऐसे विचार रखने वालों को आरएसएस से बाहर क्यों नहीं करते। अरशद मदनी आरोप लगा रहे हैं कि मुस्लिमों की मॉब लिंचिंग, आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार की अपील, मस्जिदों मदरसों को निशाना बनाने जैसे एक्शन के खिलाफ वो कब बोलेंगे या कार्रवाई करेंगे।
2: उनका भाषण ये दुनिया के लिए होता है और उनके मेंबर्स के लिए होता है आरएसएस के, तो शुरू का उनका हमेशा ये प्लेबुक स्टाइल है उनका।
3: भागवत साहब ने जो बयान दिया है वो एक बड़ा बयान है, अहम बयान है, बशर्ते कि ग्राउंड लेवल पर उसको अमली जामा पहनाया जाए।
4: देखिए, मोहन भागवत जी का बयान अच्छा बयान है और जो हिंदू मुसलमानों के खिलाफ है वो हिंदू नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमान, हिंदू को जब भी प्रॉब्लम आई मुसलमान खड़ा हुआ, मुसलमान को जब भी प्रॉब्लम आई हिंदू खड़ा हुआ, अजीज रिश्तेदार भाई नातेदार बाद में आता है, पड़ोसी पहले खड़ा होता है।
5: आप जो बात कह रहे हो वो तो है, डीएनए में है देश के, उसमें कोई नई बात नहीं है और ये देश का जो समाज है वो इस नफरत को स्वीकार नहीं करता, इसीलिए आप इतनी कोशिश के बावजूद नहीं हासिल कर पाते वो तमाम चीजें जो आप चाहते हो।
6: मोहन भागवत जी ने जो भी कुछ कहा है वो ठीक कहा है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है, देश दुनिया वो घूमे हुए हैं, देखे हुए हैं, तो जो लोग जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं।
3: सरसंघ चालक जी ने बहुत अच्छी बात कही है, कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं जो ये समझते हैं कि मुसलमानों के बिना ये देश चल सकता है, ऐसी बात नहीं है, हिंदू और मुसलमान मिलकर रहे हैं।
0: वैसे पिछले कुछ वर्षों में मुस्लिमों को लेकर आरएसएस चीफ के बयान कभी गरम कभी नरम होते रहे। उदाहरण के तौर पर दिसंबर 2019 में उन्होंने कहा था कि जो भी भारतीय संस्कृति का सम्मान करता है वो सब हिंदू है। फिर जून 2022 उन्होंने कहा था, इतिहास वो है जिसे हम बदल नहीं सकते, हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना। इसके बाद जनवरी 2023 में उन्होंने कहा था कि इस्लाम को देश में कोई खतरा नहीं, बस उसे हम बड़े हैं वाला भाव छोड़ना होगा। सितंबर 2023 में उन्होंने बयान दिया कि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है, सभी भारतीय हिंदू हैं। फिर अक्टूबर 2024 में उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना होगा। उनके इस बयान को बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान की तरह देखा गया। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि विदेशी जमीन पर दिए गए आरएसएस चीफ का यह बयान संगठन की छवि बदलने से जुड़ा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय रूप से। दरअसल आरएसएस अपनी शताब्दी वर्ष मना रहा है और इसके लिए दुनिया भर में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इन सभी में मोहन भागवत खुद जा रहे हैं। हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान मर्डर केस में 4 दिन के अंदर 2 शूटर्स का इनकाउंटर हुआ है। अंकित के पिता का कहना है कि उन्हें आधा इंसाफ मिल गया, आधा इंसाफ बाकी है। दरअसल 26 अगस्त को शामली के मसल स्टूडियो फिटनेस सेंटर के बाहर अंकित बालियान पर गोगी गैंग के 4 शूटर्स ने हमला बोल दिया था। अंकित पर करीब 18 राउंड फायरिंग की गई थी जिसमें उनकी मौत हो गई थी। इस वारदात के बाद 4 शूटर्स वहां से फरार हो गए थे और यूपी पुलिस के सामने उनके पकड़ने के लिए एक बड़ी चुनौती आ गई थी। ये काम यूपी एसटीएफ को सौंपा गया। उन्होंने इस हमले में शामिल 2 शूटर्स मोहित और सुमित को एनकाउंटर में मार गिराया। इस हत्याकांड में गोगी गैंग के 4 शूटर्स शामिल थे जिसमें मोहित और सुमित के अलावा सत्यम और आर्य नाम के गैंगस्टर्स शामिल थे। इन चारों में से मोहित और सुमित अंकित बालियान की रेकी में शामिल थे और वो शामली से कुछ ही दूरी कैराना रोड पर एनकाउंटर में मारे गए, जबकि सत्यम और आर्यन फरार हैं। पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर में मारे गए मोहित और सुमित सोनीपत भागने की फिराक में थे, लेकिन मुखबिर की सूचना पर उन्हें शामली से कुछ ही दूरी पर घेर लिया गया। पकड़े जाने के डर से इन शूटर्स ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस की फायरिंग में दोनों शूटर्स ढेर हो गए। मोहित और सुमित दोनों पर 50,000 रुपए का इनाम था और इसके अलावा सुमित पर एक और मोहित पर 15 मुकदमे दर्ज थे। अंकित बालियान की हत्या को लेकर शूटर्स ने एक लंबी चौड़ी प्लानिंग की थी। अंकित बालियान को मारने के लिए 2 शूटर्स मर्डर के 1 हफ्ता पहले से शामली आ गए थे। शूटर मोहित और सुमित को अंकित बालियान की रेकी का जिम्मा दिया गया था। ये दोनों शूटर 20 अगस्त से ही शामली के एक होटल में आके स्टे करने लगे, रुक गए। अब मोहित और सुमित तभी संकेत बालियान के पूरे रूटीन पर नजर रख रहे थे और कोई भी अगर हत्या की प्लानिंग होती है तो सबसे पहले यही होता है तरीका कि वो शख्स कब किस वक्त कहां जा रहा है, कौन सी सबसे माकूल जगह होगी जहां मारा जाए। और इसी कड़ी में इन दोनों शूटर्स ने होटल में अपना आधार कार्ड भी दिया था ताकि किसी को शक ना हो। अब योजना के मुताबिक हत्या के बाद 2 शूटर्स को बागपत और बाकी 2 करनाल में भाग कर पहुंचना था कि भाई भाग जाओ। अंकित के मर्डर के तुरंत बाद मोहित और सुमित बागपत की तरफ भागे और सत्यम और आर्यन करनाल निकल गए। यूपी पुलिस के पास सीसीटीवी तस्वीरों की एक लंबी लिस्ट थी जिसमें चारों शूटर्स के एचडी क्वालिटी की तस्वीरें थी, इसलिए अपराध के बाद उनकी पहचान करने और शामली में उनकी मूवमेंट का पता लगाना बहुत मुश्किल काम नहीं था। यूपी पुलिस एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने एनकाउंटर के बाद गैंगस्टर्स को सीधी धमकी दी है कि योगी सरकार में अपराध के प्रति 0 टॉलरेंस है और इसीलिए कोई भी गैंगस्टर इस पॉलिसी को टेस्ट करने की गलती ना करे। देखिए

0: के प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों में ही है, अभी उनके संरक्षण में ही हम सब लोग हैं। वो जो कार्रवाई करेंगे, वो जो कर रहे हैं, वो आगे भी जो करेंगे, हमें उन पे पूर्ण विश्वास है।
1: अधीक्षक शामली श्री एनपी सिंह के नेतृत्व में शामली पुलिस ने, स्वाट टीम ने, एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करके हत्याकांड में वांछित दो अपराधी, जिन पर 50,000 रुपए का रिवॉर्ड था, ये शार्प शूटर थे जो घटनाक्रम में हत्या में शामिल थे, उनके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है।
2: और अब अगली खबर आपको बताएंगे, अंजना 2.0। ये खबर पूर्व टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर से जुड़ी है, जिन्हें इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया और इस दौरान वो बहुत भावुक हो गए। मेरे मतलब अगर आप प्लेयर्स में देखें तो बहुत पसंद है मुझे वो। बताइए अंजना 2.0। बिल्कुल अंजना, वही रोजर फेडरर जिनका गुस्सा कभी टेनिस कोर्ट पर आग लगा देता था, जिनके हाथों में पड़कर रैकेट के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे, वही टेनिस का स्टार खिलाड़ी आज इतिहास के शानदार मौके पर खुद को संभाल नहीं पाया। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में जब रोजर फेडरर को टेनिस के सर्वकालिक महान का ताज पहनाया गया तो दुनिया ने उस शख्स को सिसक सिसक कर रोते देखा जो कभी अपने ही शॉट पर गुस्से से तमतमा जाया करता था। जो इंसान अपनी हार और गुस्से को रैकेट की टूटी हुई डंडियों के जरिए बाहर निकालता था, आज उसने अपनी जीत और विनम्रता को आंसुओं में डुबो दिया। वो रैकेट तोड़ना जोश और खेल का उबाल था और ये आंसू उस सफर की पूर्णता है जो दुनिया के हर पुरुष को आईना दिखाते हैं। बिल्कुल आपने सही बात कही है, बहुत दिलचस्प ये पूरी खबर है। एक ब्रेक के लिए रुकें, ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: spa state of mind with a Kohler spa at home. No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with a Kohler spa at home.
1: मैं करता हूँ ना,
2: मैं करूँगा।
3: ओए कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
1: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
3: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टे, डाइनिंग एंड मच मोर।
1: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB दोनों ही चैंपियन है।
3: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।
4: एक दो एक
5: श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आगे आगे
3: उधर
2: उधर गया। करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया।
5: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
1: एक्सपेक्टेशन से बेटर प्लेसमेंट मिली है तुझे, अब सब सेट है ना?
2: सब सेट है, बस अब चाहिए एक सैलरी अकाउंट जो मैच करे मेरी लाइफस्टाइल से।
3: तू सोचना क्या है, मेरा अपना बैंक है ना,
1: मतलब
3: पंजाब नेशनल बैंक, जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर, OTT सब्सक्रिप्शन, लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे।
1: वाओ दी, मैं कल ही बैंक जाता हूँ।
3: पर जाना क्यों है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। PNB, मेरा अपना बैंक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एक तो एक
3: श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।

0: in association with Vimal Bolo Zuba Kesri. Hint, ek hint to dete.
1: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये जो कुकृत्य किया है उत्तराखंड पुलिस पार्टी बन गई है। हमने अभी डीजीपी साहब से फोन टेलीफोनिकली और नीलेश भरणे जी जो यहाँ पे आईजी हैं जो ज्ञापन लेने आए थे उनको हमने कह दिया है कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आरएसएस और बीजेपी पार्टी थी, उन लोगों ने कुकृत्य किया था लेकिन पुलिस ने उसमें आग में घी डालने का काम किया है। पुलिस कौन होती है? अगर कॉग्निजेंस लेना था आपने तो आप 10 तारीख के प्रकरण का कॉग्निजेंस लेते और मुकदमा कायम करते, लेकिन आपने मुकदमा कायम कर दिया राहुल गांधी के खिलाफ। किन धाराओं में किया आपने? क्या अपराध किया राहुल गांधी ने? अगर देश के राष्ट्रीय पटल पे उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों के अपमान का मामला उठाया तो उन्होंने अपराध कर दिया, उनके खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया आपने सुनाई बात में। और जो लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं, स्वयं मुख्यमंत्री कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं, अजय टमटा कह रहे हैं कि वहां पर गंदगी हो गई थी, वहां पर यूरिन की भरी हुई बोतल थी, तो नगर निगम क्या कर रही थी? नगर निगम में मेयर कौन सी पार्टी का है? राज्य में सरकार तुम्हारी, केंद्र में सरकार तुम्हारी, नगर निगम में मेयर तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा। और कांग्रेस ने वहां पर पैसा जमा किया था बाकायदा, उस ग्राउंड के लिए पैसा जमा किया था नगर निगम को, तो नगर निगम क्या कर रहा था? उसने सफाई क्यों नहीं करी अगर वहां गंदगी थी?
3: बात हमारे संविधान की है और हर एक नागरिक की है। ये अलग बात है कि हमारे समाज में कुछ लोग दलित हैं, लेकिन समाज में बंटवारा कौन कर रहा है? ये भाजपा और आरएसएस की विचारधारा है जो बंटवारा कर रही है, और यही इनका मकसद था जो इन्होंने अपने कुछ लोगों को भेजकर वहां पर सो कॉल्ड शुद्धिकरण करके, मतलब क्या था इनका? अगर राजनीतिक मतलब नहीं था तो क्या था ये बता दें। चुनाव आ रहे हैं, इनका मतलब हमेशा बंटवारा का होता है, और अब राहुल जी ने आवाज उठाई है तो ये कर रहे हैं। साफ नजर आ रहा है इनकी जो राजनीति है, जहर की राजनीति है। जहां पर धर्म की बात हो धर्म की करो, जहां जातियों की बात है वहां जातियों की करो, लेकिन ये देश ऐसे इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता।
4: आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट पे इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और याद रहे मार्गदर्शन कोई भी करे, चलना आपको खुद ही पड़ेगा। नमस्कार।
0: प्रेजेंटेड बाय

0: मैं गर्म जोशी के साथ पुतिन मोदी की मुलाकात। बातचीत में यूक्रेन का उठा मुद्दा, पीएम ने कहा युद्ध मानवता के लिए खतरा, भारत शांति का पक्षधर। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार, चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी 7.8% रही। पीएम बोले निराशावादी लोगों की हुई हार। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का विरोध प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली पुलिस, 13 एफआईआर रद्द करने की मांगी आज्ञा। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 2873 लोगों पर दर्ज हो केस। नेपाल त्रासदी के बाद मरने वालों का नहीं थम रहा आंकड़ा, 939 लोगों की मौत, 3900 से अधिक लापता। रेस्क्यू के काम में भारतीय एक्सपर्ट भी शामिल। और मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से लिया संन्यास, अर्जेंटीना के कप्तान ने कहा अलविदा। सोशल मीडिया पर फैंस को लिखा भावुक पत्र।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

अंसारी, स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं, आज तक पर आप देख रहे हैं दस्तक। और आज दस्तक, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन में हो रहे महाशक्तियों के मिलन पर। जी हां, शंघाई सहयोग संगठन मतलब एससीओ में सबसे अधिक चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की है। मोदी, पुतिन और जिनपिंग की, क्योंकि इन तीनों शक्तियों के मिलने का मतलब है दुनिया में नए वर्ल्ड ऑर्डर की धाक और धमक। और इस बीच बिश्केक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की मुलाकात होती है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की यह तीसरी आमने सामने की मुलाकात है, और ऐसे में इस मुलाकात में दोनों के बीच क्या बात हुई, दुनिया ये जानना और समझना चाहती है। तो आइए हम आपको दिखाएं कि बिश्केक में मोदी और पुतिन की महामुलाकात का मतलब और मायने क्या है।

पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन मिले दोस्ती के सिलसिले। मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई, क्या क्या बात हुई। बिश्केक से मैसेज क्लियर, भारत और रूस की दोस्ती जिंदाबाद। एससीओ में मोदी पुतिन जिनपिंग की केमिस्ट्री, अमेरिका में खलबली। भारत चीन रूस का त्रिकोण, ट्रंप का तोड़। एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन में वैसे तो 10 देश हैं, भारत चीन रूस पाकिस्तान कजाकिस्तान किर्गिस्तान ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान और ईरान। इसके अलावा पर्यवेक्षक के तौर पर कई और देश भी शामिल हैं। लेकिन सिर्फ 3 देश यानी भारत रूस और चीन इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया की टॉप हेडलाइन बने हुए हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर क्यों दुनिया भारत रूस और चीन की चर्चा कर रही है और क्यों इन तीनों देशों के नेताओं की केमिस्ट्री से

0: डोनाल्ड ट्रंप भी टेंशन में हैं, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं किर्गिस्तान में हुई पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की द्विपक्षीय बैठक और मुलाकात। जब बिश्केक में पीएम मोदी और पुतिन मिलते हैं तो दोनों नेता एक दूसरे के गले मिलते हैं। ये वो मुलाकात है जो सिर्फ भारत और रूस के पुराने संबंधों को और पुख्ता करती है, बल्कि भारत रूस संबंधों की नई दिशा तय करने वाली है। इसीलिए पुतिन सीधे भारत और रूस के संबंधों पर बोलते हैं।
1: I'd like to note with satisfaction the following thing, namely that the Russian-Indian relations continue to get strengthened on the basis of the principles of the special and privileged partnership. Distinguished Prime Minister, of course, this is aided by your special attention to the Russian-Indian relations and the business and kind relations, friendly relations that have been established between us. And I'm very grateful to you for that.
0: लेकिन पीएम मोदी रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर राष्ट्रपति पुतिन से कहते हैं कि वो यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के पक्ष में हैं, क्योंकि युद्ध का हर दिन मानवता को पीछे धकेल रहा है।
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। पिछली बार भी जब हम मिले थे तब आपने विस्तार से सभी विषयों के बारे में मुझे अवगत किया था। जैसा कि आप जानते हैं, भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देती है, उमंग से भर देती है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर, उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: आपको बता दें कि पीएम मोदी ने यह भी बताया कि किस तरह से भारत और रूस का सहयोग नई ऊंचाइयां छू रहा है।
2: पिछले वर्ष आपकी भारत यात्रा बहुत ही सफल रही और बहुत ही यादगार रही। हमने कई घंटे साथ बिताए और विशेष रूप से बिजनेस फोरम और एक प्रकार से बिजनेस वर्ल्ड का रशिया का हुज हु कहे उन सब को लेकर के आप आए और आर्थिक संबंधों को एक नई ऊंचाई और ज्यादा विस्तार देने का काम भी हमारी चर्चा में हुआ। और मुझे खुशी है कि जो आउटकम निकले हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारी दोनों टीमें पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही हैं और बड़ी गति के साथ काम कर रही हैं। ये हमारे लिए गहरे संतोष का विषय है कि हमारा सहयोग निरंतर नई ऊंचाइयों को और बढ़ रहा है और दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब दुनिया का जियोपॉलिटिकल नक्शा पूरी तरह बदल रहा है। अमेरिका ईरान युद्ध को 6 महीने हो चुके हैं, रूस यूक्रेन युद्ध को 4.5 साल हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक तरफा विदेश नीति ने वैश्विक नियम आधारित व्यवस्था को चुनौती दी है और SCO अपनी 26वीं वर्षगांठ मना रहा है। ऐसे में भारत, रूस और चीन जैसी ताकतें एक मंच पर इकट्ठा हो रही हैं। इसे पश्चिमी प्रभाव के जवाब में एक काउंटर बैलेंस के तौर पर देखा जा रहा है। बिश्केक के बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन 12 से 13 सितंबर को नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी मिलेंगे। पीएम मोदी ने इसका न्योता दे दिया है।
2: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका और आपके डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
0: SCO का 26वां शिखर सम्मेलन किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हो रहा है जो 1 सितंबर तक चलेगा। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कई नेता शामिल हो रहे हैं, लेकिन मोदी, पुतिन और जिनपिंग की टिकड़ी ने यकीनन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ा दी है। इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट से ट्रंप की नींद और भी उड़ना लाजमी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि फ्रांस, न्यूजीलैंड, सेशेल्स, मलेशिया, स्लोवाकिया और इटली पिछले एक साल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

0: मोदी ने बहुत तेजी से दुनिया भर की यात्राएं की हैं। उन्होंने नए पार्टनर बनाए हैं या मौजूद पार्टनरों के साथ रिश्ते मजबूत किए हैं। उन्हें एक कड़वी सच्चाई ने तेजी से कदम उठाने पर मजबूर किया है। अखबार ने आगे ट्रंप की आलोचना करते हुए लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप की वजह से दुनिया में मची उथल पुथल का सामना करने और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का भारत के पास एकमात्र तरीका है कि वो अलग अलग जगह पर अपने रिश्ते बढ़ाए। रिपोर्ट में पीएम मोदी की उज्बेकिस्तान की यात्रा का जिक्र भी शामिल है। अखबार ने एससीओ समिट के बारे में लिखा है और राष्ट्रपति पुतिन के साथ मोदी की मुलाकात की चर्चा भी की है और ये भी लिखा है कि कैसे पीएम मोदी ट्रंप के मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, एक एक करके डील कर रहे हैं और इसे एक रणनीति करार दिया है। एससीओ की सबसे दिलचस्प तस्वीर शायद यही है। एक तरफ मोदी और शी जिनपिंग एक ही बहुपक्षीय मंच पर हैं, दूसरी तरफ भारत और चीन के बीच सीमा विवाद और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसे में एससीओ भारत को चीन के साथ बातचीत का एक अतिरिक्त मंच देता है। दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधरे या बिगड़े, बहुपक्षीय मंचों पर संवाद की गुंजाइश बनी रहती है। भारत लंबे समय से मिडल ईस्ट के देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। मध्य एशिया तेल, गैस, यूरेनियम और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों का बड़ा भंडार है। भारत मध्य एशिया के देशों के साथ व्यापार भी बढ़ाना चाहता है। इसके लिए वो नए व्यापार और परिवहन मार्ग विकसित करने पर काम कर रहा है। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को देखते हुए एससीओ की टेबल और भी दिलचस्प हो जाती है। भारत लंबे समय से आतंकवाद के मुद्दे को एससीओ जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा है। पीएम मोदी ने भी इस यात्रा के संदर्भ में आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद को क्षेत्रीय शांति के लिए चुनौती बताया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी एससीओ का पूर्ण सदस्य है, इसीलिए यहां भारत को पाकिस्तान के साथ किसी द्विपक्षीय मंच की तरह बातचीत करने के बजाय एक बड़े बहुपक्षीय ढांचे में अपनी सुरक्षा चिंताओं को रखने का मौका मिलता है। आज तक ब्यूरो।
1: आइए हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय के पास हम आपको लिए चलते हैं। प्रणय हमारे साथ हैं। प्रणय, दो चीज आपसे समझना चाहते हैं। तो मोदी पुतिन जिनपिंग के इस गठजोड़ से किस तरह का नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, अमेरिका परेशान है, और कल का क्या प्लान है?
2: मैं आपके इन दोनों सवालों का जवाब दूं, उसके पहले मैं आपको एक चीज महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं, वो ये कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो जो महत्वपूर्ण मुलाकातें थी, यानी ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान के साथ में और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ में, इन दोनों ही मुलाकातों में प्रधानमंत्री मोदी ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया और वो था भारत के नाविकों का मुद्दा, उनकी सुरक्षा का मुद्दा। क्योंकि दोनों ही बैटल थिएटर्स में, यानी रूस यूक्रेन की जंग में ब्लैक सी के इलाके के अंदर और ईरान और अमेरिका की जंग के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और गल्फ ऑफ जो हॉर्मुज है, जो खाड़ी का इलाका है, उसमें भारतीय नाविकों की जान के ऊपर जो संकट आया है, उसका मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी ने इन दोनों मुलाकातों के अंदर प्रमुखता से उठाया और इस बात के साथ उठाया कि शांति, बातचीत और कूटनीति ही एकमात्र समाधान का रास्ता है। लेकिन जहां तक आपने कहा कि जब मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन साथ आते हैं तो जाहिर तौर पर इसकी बड़ी मैसेजिंग होती है, यानी दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत और चीन, इसके अलावा रूस जब साथ आता है, साथ ही जब एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात होती है, एक बदलाव की बात होती है, एक नई व्यवस्था की बात होती है, तो इन तीनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और इनके साथ साथ यदि उस गठजोड़ के अंदर अन्य देश भी शामिल हो जाते हैं, यानी जो 10 देश एससीओ के, जब वो साथ आते हैं तो निश्चित रूप से, जैसी प्रतिक्रिया आपको याद होगा सही कि पिछली बार बड़ी तल्ख सी प्रतिक्रिया राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आई थी जब उन्होंने वो तस्वीर देखी थी जिसके अंदर पुतिन, शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी ठहाका लगाते हुए नजर आए थे, ये बात अलग है कि उसके घंटों बाद ही उनके सुर बदल गए थे भारत को लेकर, और उन्होंने केवल भारत को लेकर कहा था कि नहीं, भारत के साथ चिंता करने की जरूरत नहीं है, भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। उसके बाद हमने फ्रांस में भी देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और भारत की
1: बात पूरी। कुछ और कहना चाह रहे हैं कल के बारे में आप?
2: बिल्कुल, मैं कल के बारे में आपको बता दूं कि कल जो शिखर बैठक होगी, उस शिखर बैठक का कार्यक्रम होगा जिसके अंदर यह तय किया जाएगा कि एससीओ।
1: प्रणय, माफी के साथ रोक रहे हैं आपको, समय बहुत कम है। बहुत धन्यवाद प्रणय उपाध्याय, हमारे संवाददाता। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि एससीओ समिट के दौरान पीएम मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियान की मुलाकात हुई, तो पीएम मोदी आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान से भी मिले। भारत की दृष्टि से इन मुलाकातों के कूटनीतिक मायने क्या है? ईरान और आर्मेनिया दोनों देश एक दूसरे के करीबी हैं, लेकिन जिस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से हमले और युद्ध भड़का हुआ है, और दूसरी

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: एक दो एक
3: श्राम।

0: भारत की सावधान करने की भाषा अलग अलग है, पर विश्राम करने की सिर्फ एक हिंट।
1: एक हिंट तो देते।
2: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
3: कुछ भी खा नहीं पा रहा हूँ, बहुत अपसेट हूँ।
4: नो एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव के बिना डेट्स, बादाम, पिस्ता, काजू और शहद से तैयार किया गया लायन डेट्स नट बाइट्स।
5: लायन डेट नट बाइट्स।
6: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जाओ।

0: एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: एयू
2: सोच बदलो और बैंक भी।

0: इन एसोसिएशन विद
1: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, इट्स योर मोमेंट ऑफ सेरा।
2: आज तक ना होता तो हमारी बात देश दुनिया तक नहीं पहुंचती।
3: हम लोग को बड़े चैनल का सहयोग नहीं मिला था, हम लोग गरीब छात्र लोग हैं, तो आज आप लोग का सहयोग मिला है तो पूरा भारत और पूरा दुनिया में यहाँ की आवाज गूंज रही है।
2: खबरों के साथ पक्षपात नहीं।
4: 19 साल के छात्र साहिल रजा पे दावा किया, उन पर सुरक्षा बलों ने पेलेट गन का इस्तेमाल किया जिससे उनकी एक आंख की रोशनी जाने की नौबत आ गई।
2: हर बात देश के सामने।
3: अंजना मैम, सबसे पहले तो हम लोग आवाज को बुलंद की है, इसके लिए आपके पूरे टीम को धन्यवाद देते हैं।
2: मुद्दा कोई भी हो, सोए हुए सिस्टम को जगाता है आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूँ सईद अंसारी, स्वागत एक बार फिर से आपका। तो क्या नेपाल में एटम बॉम्ब जैसी तबाही मची? जी हाँ, जिस तरह से नेपाल में मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, इलाके के इलाके तहस नहस बर्बाद हो गए हैं, ऐसे में नेपाल में काठमांडू की त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर डिजास्टर स्टडीज के डायरेक्टर बसंत राज अधिकारी ने बेहद चौंकाने वाला दावा कर दिया है। बसंत राज अधिकारी का कहना है कि नेपाल में ग्लेशियर चट्टान के गिरने से जो महाप्रलय आई, उसमें पैदा हुई ऊर्जा हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बॉम्ब से पैदा हुई ऊर्जा से भी कहीं अधिक थी। तो आइए हम आपको दिखाएं कैसे नेपाल की त्रासदी ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है।

0: आया नेपाल की बाढ़ जापान के हिरोशिमा के परमाणु धमाके से ज्यादा शक्तिशाली थी। नेपाल की बाढ़ की हिरोशिमा के परमाणु धमाके से तुलना क्यों हो रही है? सुनने में ये तुलना आपको भी अजीब लग रही होगी। ये सच है, नेपाल की ये भीषण बाढ़ आज से 81 साल पहले जापान के परमाणु हमले से भी ज्यादा ताकतवर थी। ये दावा किसने किया, किस आधार पर किया, क्यों किया, ये हम आपको आगे बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इस दावे में कितना दम है। लेकिन उससे पहले संक्षेप में ये जान लीजिए कि आज से 81 साल पहले जापान के हिरोशिमा में क्या हुआ था। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा में अमेरिका ने लिटिल बॉय नाम का एक परमाणु बम दागा था। इस बम से 1.5 करोड़ किलोग्राम की ऊर्जा रिलीज हुई थी। इस विस्फोट में लगभग 80,000 लोग मारे गए और 35,000 घायल हो गए। रेडिएशन के प्रभावों में एक साल में कम से कम 60,000 और लोगों की मौत हो गई। अब सोचिए, यह दावा हो रहा है कि 26 अगस्त को नेपाल के फ्लैश फ्लड में इससे ज्यादा ऊर्जा रिलीज हुई थी और यह दावा किया है नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर डिजास्टर स्टडीज के निदेशक बसंत राज अधिकारी ने। अधिकारी नेपाल के जाने माने भूगर्भ विज्ञानी हैं। उनका दावा है कि नेपाल में ग्लेशियर चट्टान के गिरने से नदी में आई जल प्रलय से पैदा हुई ऊर्जा हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम से पैदा हुई ऊर्जा से भी ज्यादा थी। अधिकारी का कहना है कि बर्फ और मलबे के नीचे आने से पैदा हुई ऊर्जा की मात्रा की गणना की है, ये हिरोशिमा में हुए परमाणु बम विस्फोट से ज्यादा थी। इतने बड़े पैमाने पर ग्लेशियर के ढहने की आशंका नहीं थी।
1: हिरोशिमा में खसे जो एटम बम छो भा बड़ी शक्ति निकाले।
2: हिरोशिमा में गिरा एटम बम भी इस बाढ़ के सामने कम शक्तिशाली था। ककनी के भूकंप मापन केंद्र ने इसे रिकॉर्ड भी किया है। ऊपरी हिस्सा करीब 1200 से 1300 मीटर नीचे गिरा, उसमें बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें थीं, पहाड़ों से पत्थर और मिट्टी आई, इतनी चीजें एक साथ नीचे गिरी। ये सब ऊपर से नीचे लेंदे नदी में आकर गिरा। किसी को भी अनुमान नहीं था कि इतनी चीजें ऊपर से गिरेंगी। सबको ये लगा कि सामान्य बाढ़ का पानी आएगा जैसे कि हर साल आता है। सभी लोग ये तमाशा देखने के लिए छतों पर चढ़ गए। अपनी आंखों से देखने के बाद भी लोगों को ये अनुमान नहीं हुआ कि इतनी भयानक बाढ़ आएगी। ये कहना गलत है कि चीन ने सूचना नहीं दी। प्रधानमंत्री ने तो स्वीकार किया है कि उन्हें संदेश आया था। अगर चीन को पता होता तो उसकी तरफ भी तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उसका तो पोट ही इस बाढ़ में बह गया।
1: अर्को कुरा, चीन को पनि बन्दरगाह त गएको छ नि त।
0: नेपाल की इस बाढ़ में जो फोर्स था, जिस तरह से इस बाढ़ की लहरें घरों से कई कई फीट ऊंची जा रही थी, उससे तो यही लगता है कि इसका फोर्स बहुत ज्यादा था। जिस तरह से बाढ़ में बड़ी बड़ी चट्टानें गुब्बारे की तरह बह रही थी, जिस तरह से बड़े बड़े पुल ताश के पत्तों की तरह बिखर गए, जिस तरह से बड़ी बड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की परियोजनाएं रेत की तरह टूट गई, जिस तरह से बड़े बड़े बाजार ध्वस्त हो गए, स्कूल ढह गए, मकान टूट गए, सड़कें टूट गई, उससे तो यही लगता है कि इस पानी का फोर्स इतना ज्यादा था कि उसके सामने कोई टिक नहीं पाया। बाढ़ के बाद के हालात भी बता रहे हैं कि कितनी तबाही हुई है। त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के बसंत राज अधिकारी बता रहे हैं कि हिमालय में और खास तौर पर हिंदुकुश के इस इलाके में ऐसे फ्लैश फ्लड तो पहले भी आए हैं। उन्होंने चमोली, उत्तरकाशी के उदाहरण भी दिए, लेकिन इतना बड़ा फ्लैश फ्लड आएगा इसका अंदाजा किसी को नहीं था।
1: अब हमने होल हिंदुकुश हिमालय में,
2: हमारे पूरे हिंदुकुश हिमालय में यही हो रहा है। हुंजा वैली में एक बहुत बड़ी झील टूटी जिससे बहुत नुकसान हुआ। पिछले साल उत्तरकाशी के धराली में पूरा गांव ही बह गया। सिक्किम में भी एक झील बनी थी, वो टूटी और हाइड्रो पावर डैम भी टूट गया। तीस्ता नदी में बहुत ज्यादा बाढ़ आई, बहुत ज्यादा जानमाल का नुकसान हुआ। भूटान में भी पुल बहा, भीषण बाढ़ आई। ऐसी घटनाएं पहले भी होती रही हैं और आगे भी होंगी, लेकिन एक भूस्खलन से इतनी भीषण बाढ़ आएगी इसका किसी को अनुमान नहीं था।
1: भोली भी हुन्छन्, फेरि आगामी दिनहरु पनि हुन्छन्, तर यो एउटा स्नो एभलान्स खसेर यत्रो किसिमको बाढी निकाल्छ भन्ने चाहिँ
0: हकीकत यह है कि ऐसी तबाही के लिए कोई भी देश, कोई भी सरकार किसी तरह की तैयारी नहीं कर सकती है। अधिकतम ये हो सकता है कि ऐसी कोई झील बनी हो जो टूटने वाली हो तो उसके संभावित क्षेत्र में पड़ने वाले इलाकों को खाली करवाया जा सकता है, जिससे कम से कम जनहानि हो, जो नेपाल के केस में नहीं हो पाया। इसीलिए तो नेपाल में इतना ज्यादा नुकसान हुआ। 900 से ज्यादा लोगों के शव बरामद, 10,451 से ज्यादा लोग बचाए गए, 4,247 लोग अभी भी लापता, 20,819 बचाव कर्मी दिन रात तलाश कर रहे। ये नेपाल में चल रहे ऑपरेशन जिंदगी का अपडेट है। सैलाब के 6 दिनों के बाद अब इस भीषण प्रवाह का प्रभाव नजर आ रहा है। पता चल रहा है कि किस फोर्स से ये बाढ़ आई। मलबे से जिंदगी की तलाश जारी है, लेकिन दिक्कत यह है कि 6 दिनों के बाद अब किसी के जिंदा बचे होने की उम्मीद बेहद कम है, और इस मलबे में फंसे शवों को निकालना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अब ये शव सड़ने लगे हैं। लेकिन नेपाल की हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंगों में अभी भी फंसे हुए लोगों को खोजा जा रहा है।
3: 20 मीटर
0: उनकी तलाश में नेपाल की सेना दिन रात का ऑपरेशन चला रही है। नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के मुताबिक 11 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले 897 कर्मचारी लापता हैं। इनमें सबसे ज्यादा 576 लोग अपर त्रिशूली वन परियोजना से मिसिंग हैं। नेपाल के ऊर्जा और सिंचाई मंत्रालय के मुताबिक अलग अलग परियोजनाओं से 361 लोगों को बचाया गया। चिली में प्रोजेक्ट से 8, रसवागढ़ी से 93, त्रिशूली 4A से 42 और त्रिशूली 3B से 122 कर्मचारी लापता है। इन मिसिंग कर्मचारियों में बहुत से इंजीनियर हैं, मजदूर हैं। ये पता नहीं चल पा रहा कि इस आपदा में ये लोग बह गए या फिर कहीं किसी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। नेपाल की सेना और बचाव दल लगातार इन बिजली परियोजनाओं की तलाशी कर रहे हैं। नेपाली सेना की रेस्क्यू टीम को रसवागढ़ी जल विद्युत परियोजना की सुरंग में से कुछ नहीं मिला। इस परियोजना से कुल 93 लोग लापता है, लेकिन जब नेपाली सेना की टीम यहां रेस्क्यू के लिए गई तो उन्हें सुरंग के अंदर कोई भी जीवित या मृत नहीं मिला। इसके बाद सेना का बचाव दल वापस लौट आया। सुरंग के अंतिम हिस्से में लोगों के फंसे होने की आशंका के बाद नेपाली सेना की टीम इंजीनियरों और ड्रोन टीम के साथ खोज अभियान में जुटी थी। सुरंग के अंतिम पॉइंट पर पहुंचकर पूरी खोज भी की गई, लेकिन किसी के भी होने का संकेत नहीं मिला। नेपाली सेना को ये उम्मीद थी कि जैसे पिछले गुरुवार को उसने त्रिशूली बिजली परियोजना की सुरंग से 350 लोगों का रेस्क्यू किया था, वैसे ही वो रसवागढ़ी में भी करेंगे, लेकिन यहाँ तो उन्हें कोई मिला ही नहीं। नेपाली सेना एक एक करके अब इन जल विद्युत परियोजनाओं की सुरंगों को खंगाल रही है। जैसे नेपाली सेना रसवा में लांगटांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग में भी गई, लेकिन वहां सुरंग के अंदर इतना पानी और कीचड़ भरा हुआ था कि 50 मीटर से आगे जाना संभव नहीं हो पाया। देखिए नेपाली सेना कैसे इस खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। ये लांगटांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग के अंदर का वीडियो है, जिसे नेपाली सेना की तरफ से ही जारी किया गया है। सुरंग के अंदर बहुत ज्यादा मलबा दिख रहा है, भयंकर अंधेरा भी है, और इसमें नेपाली सेना के जवान बहुत मुश्किल से इस सुरंग के अंदर दाखिल हो रहे हैं। इसी तरह से नुवाकोट में अपर त्रिशूली 3A जल विद्युत परियोजना की सुरंग में एक क्राउन ब्लास्ट किया गया, जहां भोटेकोशी बाढ़ के बाद कई लोगों के फंसे होने की खबर थी, लेकिन यहां भी सुरंग में पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, इसलिए यहां भी अंदर जाना संभव नहीं हुआ। ये अपर त्रिशूली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल का वीडियो है। यहां एक एक जीवन कैसे तलाशा जा रहा है ये देखिए। यहां कैमरा लगाकर देखा जा रहा है कि कोई फंसा है या नहीं। आशुतोष मिश्रा, नुवाकोट, नेपाल, आज तक।
3: नेपाल के सामने अब चुनौती ये भी है कि इन प्रभावित इलाकों को महामारी से कैसे बचाया जाए, क्योंकि पता नहीं कि मलबे के नीचे कितने इंसानों और जानवरों की लाशें दबी पड़ी जो अब सड़ रही हैं। अब रेस्क्यू करने वाले लोगों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। हजारों टन मलबा हटाना है, लोगों के घरों का रिस्टोरेशन करना है, कोई जिंदगी हो तो उसे तलाशना है और इस मलबे में दबी लाशों को निकालना है। नेपाल के नुआकोट से हमारी संवाददाता आशुतोष मिश्रा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
0: तबाही के 6 दिनों के बाद नेपाल में अब सबसे बड़ा संकट है बीमारी फैलने का। 4,000 से ज्यादा लोग लापता हैं और ज्यादातर लोगों के जिंदा मिलने की उम्मीद बहुत क्षीण है। पहाड़ों पर सैलाब ने जो तबाही मचाई है, उस सैलाब में कौन कहां बह गया पता ही नहीं चला। अब एक एक करके उनके शव मिल रहे हैं। ये देवीघाट का इलाका है। कहा जा रहा है कि यहां भी त्रिशूली नदी में शव बहकर आए हैं। इस पूरे इलाके में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, एक ऐसा ऑपरेशन जिसका मेन मकसद है लाशों को खोजना।
4: नेपाल में एक तरफ जहां राहत बचाव कार्य चल रहे हैं, निचले इलाकों में महामारी का खतरा है, क्योंकि जो शव बहकर के आए थे वो इन बाजारों में अब कहीं ना कहीं मलबे में, दलदल में, कीचड़ में फंसे हुए हैं। बदबू शुरू हो गई है। प्रशासन कोशिश कर रहा है कि जिंदा लोगों को एक तरफ निकालना है, लेकिन उसके साथ साथ जो लोग कीचड़ दलदल में फंसे हो सकते हैं, लापता हैं, उन्हें भी निकाल लिया जाए। लेकिन उसके साथ साथ चुनौती दरअसल ये भी है कि इस इलाके में जो लोग, जिनके पास अब जरूरत का सामान घरों में बचा है, घर बच गए हैं, वो निकाल के ले जाएं ताकि अपनी जिंदगी शुरू करें। नेपाल को फिर से पटरी पर लाने में समय लगेगा और साथ ही इन लोगों की भी, जो इस आपदा के पीड़ित हैं, इसलिए अपनी जरूरत का सामान घरों से निकाल रहे हैं ताकि जिंदगी फिर से शुरू की जा सके।
0: तस्वीरें बता रही हैं कि ये बाढ़ कितनी भीषण रही होगी। इन टूटे हुए घरों को देख कर ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई बम विस्फोट हुआ होगा। सब कुछ बर्बाद नजर आता है। बाढ़ का प्रवाह कितना भीषण था ये देखिए। सब कुछ खत्म हो गया। लोग इस मलबे से धीरे धीरे करके अपना सामान निकाल रहे हैं। बगल में बह रही त्रिशूली नदी अभी तो शांत नजर आ रही है, लेकिन 6 दिन पहले इसी नदी ने वो तबाही मचाई कि पूरी दुनिया देखती रह गई। नेपाल के ये घर मलबे, गाद और कीचड़ में दबे पड़े हैं। ये घर नदी से बहुत दूर है, लेकिन उस दिन की बाढ़ इन घरों को बर्बाद करती चली गई।
4: ये बड़े बड़े दरख्त, लोहे के पुल, ब्रिज जो इसकी चपेट में आते गए, वो सब अपने साथ बहाती चले गए। अब सोचिए कि ये कई टन वजनी अगर तना इस तरह तिनके की तरह आया होगा तो इसके रास्ते में आए पुल, और जब वो इलाकों से गुजरे हैं, गांव कस्बों से गुजरे हैं, तो आखिर उनके सामने कौन सा स्ट्रक्चर भरा तैयार रह पाता। ये जो दुकान मकान इक्का दुक्का बच गए वो समझिए कि ज्यादा किनारे पर थे, लेकिन जो प्रवाह के रास्ते में थे, ये जो ठीक मेरे भटकोशी की धारा बह रही है, इसके प्रवाह के रास्ते में तो उसने मानिए सब कुछ समतल कर दिया।
0: नुआकोट के देवीघाट बाजार की एक एक दुकान और एक एक घर मलबे से भरा हुआ है। सभी घरों के ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से जमींदोज हैं। बाढ़ का पानी बह जाने के बाद भी यहाँ जमीन से करीब 10-10 फीट का मलबा जमा है, जिसको हटाना काफी मुश्किल है। और सबसे ज्यादा दिक्कत अब ये हो रही है कि यहाँ बदबू आ रही है। पता नहीं इस मलबे में कितनी लाशें दबी।
4: नेपाल में इस आपदा में मरने वालों का आंकड़ा 900 से ज्यादा पार कर चुका है, और वो समझ में आता है ग्राउंड जीरो पर कि आखिर ये संख्या क्यों बढ़ रही है। 4,000 से ज्यादा लापता है। दरअसल पहाड़ी इलाकों में जो लोग मारे गए, जो उस समय आपदा से बच नहीं पाए, उनकी लाशें जो है वो तैरती हुई नीचे आई हैं। और उसके बाद अभी जैसे यहाँ पर मेरे पीछे एक ऑपरेशन चल रहा है, पता चला कि यहाँ घर में भी एक लाश है। बदबू अब काफी ज्यादा आने लगी है। जिस एलिवेशन पर हम हैं यहाँ पर गर्मी काफी ज्यादा, और इस गर्मी की वजह से अगर जो शव हैं तो वो धीरे धीरे डीकम्पोज होंगे, और डीकम्पोज होने की वजह से उनमें से बदबू आने लगती है। तो अब सैनिटेशन और महामारी से बचने का भी एक खतरा है, उसके लिए भी प्रशासन की तैयारी है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती दरअसल ये है कि जिंदा अगर जो लोग अब तक बरामद हो जाए वो पहली प्राथमिकता, और उसी के साथ साथ जहाँ पर जो लोग लापता हैं, अगर वो कम से कम उनके शव भी बरामद होंगे तो पता तो चलेगा कि वो कौन थे, उनकी पहचान की जा सकेगी। तो नेपाल की सेना यहाँ ऑपरेशन चला रहे उन इलाकों में जहाँ से जानकारी मिली है, जिन कस्बों में, जैसे देवीघाट में हम जब पहुंचे यहाँ जानकारी मिली कि यहाँ से काफी बदबू आ रही है, तो अब यहाँ से भी कोशिश की जा रही है कि जो शव अंदर दबे हुए हैं उन्हें निकाला जा सके।
0: राहत और बचाव के कामों की चुनौतियों के बीच प्रभावग्रस्त इलाकों में महामारी का खतरा पैदा हो गया है। सेना इन इलाकों में फंसी लाशों को निकाल रही है। चुनौती सिर्फ यही नहीं है कि यहाँ हजारों टन मलबे में दबी लाशें निकालनी है, बल्कि यहाँ बाढ़ के बाद जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है उससे भी बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं।
4: निचले इलाकों में जहां जहां से पानी अब घटने लगा है, लोगों की कोशिश है कि एक बार जिंदगी को पटरी पर लाएं, सड़कों को जोड़ा जाए, लेकिन देवी घाट में दरअसल आगे जो काठमांडू या दूसरे इलाकों को जोड़ना हो, ये प्रमुख पुल देखिए बह गया। ये सोचिए सीमेंट का कंक्रीट पुल था, ये पूरी तरह तबाह हो गया। इसी के साथ एक वैली ब्रिज था, ये वैली ब्रिज लोहे का और बिल्कुल ऐसे टूटा पड़ा है जैसे तिनका रहा हो और पानी के प्रवाह ने इन सबको अपनी चपेट में ले लिया। इसी के साथ अब इस पूरे इलाके में रिस्टोरेशन तो शुरू हुआ है लेकिन बदबू यहाँ पर बहुत ज्यादा, इसलिए जो सफाई कर्मचारी भी काम कर रहे हैं आप उनके मास्क वगैरह यहाँ देखेंगे। संभवतः ये भी है कि मलबा बहुत ज्यादा है, ऊपर से जो लोग आए होंगे, आपको याद हो कि पहाड़ों से ज्यादा निचले इलाकों पर लोगों के शव बरामद हुए हैं और अब यहाँ बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, इसलिए दवाइयों के छिड़काव की भी जरूरत पड़ेगी और समय रहते अगर वो संभावित जो लाशें हैं या फिर पशु जो दबे हुए होंगे अगर वो नहीं निकाले जाते हैं तो अब महामारी का भी खतरा है, क्योंकि तापमान यहाँ बहुत ज्यादा है, गर्मी भी है और ऊपर से अब ये जिस चीजें सड़ रही है उस चीज की जो बदबू है वो भी इस इलाके में फैल रही है।
0: त्रिशूली नदी ने रसवा और नुआकोट में क्या तबाही मचाई है, ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही है। इन घरों के अंदर अब कीचड़ है, मलबा है, गाद है। घर तो सुरक्षित हैं, लेकिन इसकी दो दो मंजिलें इसी मलबे में डूबी हुई हैं। बताया जा रहा है कि इस घर के मालिक ने किसी तरह से ऊपरी मंजिलों पर पहुंचकर अपनी जान बचाई।
4: नेपाल की आपदा के बाद घर, गांव, कस्बे सब कुछ तबाह हो गए हैं। अब इन घरों में अगर आप देखेंगे, सोचिए पंखा सर के ऊपर है, मैं जिस घर में जा रहा हूँ ये छत का सबसे ऊंचा हिस्सा है और यहाँ पर भी आप सोचिए इतना ऊंचा तो मलबा है, 5 से 6 फीट तो घरों के ऊपर है जो कि मैं घर की पहली मंजिल पे हूँ। अगर आप पहली मंजिल पर इस तरह की तबाही देख रहे हैं तो सोचिए नीचे का हिस्सा तो पूरी तरह जमींदोज है। लोग जो होंगे कितनी मुश्किल होगी उन्हें घर से भागने में। और ठीक मेरे पीछे जो है मैं आपको दिखाता हूँ, ये त्रिशूली नदी है, एकदम नदी मेरे ठीक पीछे देखिए, पूरा हिस्सा बह गया, तोड़ गया, पानी यहाँ से आया, अपने साथ जो है बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर सब कुछ लेकर के नदी चले आई। इन घरों में हम आपको इसीलिए दिखाने के लाए हैं कि आखिर तबाही कितनी ज्यादा थी और अब लोगों को जब फिर से अपनी जिंदगी खड़ी करनी होगी तो कितनी ज्यादा मुश्किलें आएंगी।
0: सोचिए क्या फोर्स रहा होगा 26 अगस्त को इस त्रिशूली नदी का। इस घर के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो खुशकिस्मत थे कि बच गए और उनका घर भी नहीं बहा, नहीं तो यहाँ आसपास के तमाम मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गए थे।
4: धुंडे गांव में तबाही कैसे आई होगी, कितना खौफनाक डरावना रहा होगा। मैं इस घर में पहुंचा हूं और ये देखिए घर का पंखा जमीन से कितना ऊंचा होता है और ये नीचे जो है ये पूरा मलबा है। आप समझिए कि जो हाइड्रो प्रोजेक्ट में भी मलबा आया होगा वहां कैसे लोग फंसे होंगे, इस दलदल में निकलना मुश्किल होगा क्योंकि आप ऊपरी मंजिल पर है, नीचे से भाग करके आए। हालांकि जो परिवार सबसे ऊपर था वो सुरक्षित रह गया, उन्हें बाद में क्विक रिस्पॉन्स टीम ने बचाया। ये देखिए ये घर का पंखा है, घर के जरूरत के सामान, ये लॉबी का हिस्सा है, इसके आगे जा करके कमरे हैं और अब इन इलाकों में घुस करके कोशिशें की जा रही कि क्या कोई ऐसा हो सकता है जो मलबे में दबा हो जिसे निकाला जा सके। ज़्यादा दिन तक शव अगर यहाँ पर होते हैं तो महामारी भी फैलने का खतरा हो सकता है। चुनौतियाँ बहुत हैं नेपाल के सामने, जितने हाथ हों उतने कम पड़ेंगे इस मुश्किल दौर से लोगों को, नेपाल को फिर से पटरी पर लाने के लिए।
0: तस्वीरों में दिख रहा है कि नदी कितनी दूर थी और वहां से ये नदी अपना प्रवाह छोड़कर इस तरफ आई। अब नुआकोट के स्थानीय लोग आए हैं वॉलंटियर्स बनकर, जो एक एक करके इन बचे हुए घरों से मलबा हटा रहे हैं। 6 दिन बाद अब जिंदगी की तो उम्मीद भी मुश्किल है, लेकिन अगर यहाँ किसी का शव हो तो उसे तलाशा जा रहा है।
4: प्राकृतिक आपदा सब कुछ तबाह कर देती है, जिंदगियों के लिए मुश्किल खड़ी कर देती है और इस आपदा के बाद जिंदगी को शुरू करना बड़ी चुनौती है। इन मकानों में अब नगरपालिका, सिविल कर्मचारी जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग जीवित बच गए हैं अब उनके घरों से बचा हुआ सामान निकाला जा सके ताकि उनकी जिंदगी फिर से शुरू हो सके। मरने वालों का आंकड़ा ज्यादा है, लापता लोगों की संख्या ज्यादा है, लेकिन इन सब के बीच कोशिश ये भी हो रही है कि जिनके बारे में कोई पता न चल पाए घर घर जा करके मलबों में तलाशा जा रहा है। इस दलदल के बीच ये तमाम सारे लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम जिन लोगों का पता ही नहीं चल रहा है कुछ तो उनकी जानकारी लगे, जो लोगों का घर बच गया है उनके घरों से सामान वापस उन तक सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया जा सके। ये ऑपरेशन जिंदगी बड़े पैमाने पर नेपाल के दुर्गम इलाकों में चलाई जा रही है।
0: आशुतोष मिश्रा, नुआकोट, नेपाल, आज तक।
3: फुटबॉल की दुनिया के एक सुनहरे दौर का अंत हो गया। अर्जेंटीना के दिग्गज स्टार लियोनेल मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास का ऐलान कर दिया। अर्जेंटीना की जर्सी में दो दशक से अधिक समय तक मैदान पर अपना जादू बिखेरने वाले मेसी अब नेशनल टीम के लिए खेलते नजर नहीं आएंगे। मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीत चुका था। 2026 में भी टीम मेसी की कप्तानी में फाइनल खेल चुकी थी, लेकिन स्पेन से हार कर लगातार दूसरा खिताब जीतने से उनकी टीम चूक गई थी। लेकिन मेसी ने संन्यास के समय एक बेहद भावुक पोस्ट लिखा। दर्शक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
1: AU सोच बदलो और बैंक भी।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: सिंगर मर्डर केस में एक्शन, दो शूटरों का सीधे इनकाउंटर।
1: जानलेवा फायरिंग के पश्चात अर्थात फायरिंग के इनके ऊपर।
0: 26 अगस्त को बाल्यान की हत्या, 100 घंटे के भीतर आरोपी ढेर।
1: दो बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए, इनको सीएससी भेजा गया जहां इनकी मौत हो गई।
0: शामली में योगी मॉडल, जैसे को तैसा वाला जवाब।
2: माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से कहना चाहती हूँ कि क्या योगी जी, अंकित जी आपका बच्चा नहीं था? क्या हम आपके बच्चे नहीं है? हमने भी तो आपको वोट दे गए, आपको जन प्रतिभागी बनाया है ना, अपना वोट दिया है ना, तो आप हमारे लिए आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? आप तो माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं ना, तो फिर इस केस पे इतना लेट कार्रवाई क्यों हो रही है?
0: सुनिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम की अपील। 26 अगस्त को शामली में हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बाल्यान की हत्या होती है।
3: 4 दिन तक जब कोई एक्शन नहीं होता तो बाल्यान

0: की पत्नी सीमा सीएम योगी से हथियारों को मिट्टी में मिला देने की अपील करती है और एक दिन बाद हत्या के दो आरोपियों का हिसाब किताब हो जाता है। कैराना में पुलिस और एसटीएफ की आरोपियों से मुठभेड़ होती है। हत्या के दो आरोपियों को पुलिस की टीम घेर लेती है। एनकाउंटर में दोनों आरोपियों को मार गिराया जाता है।
1: सुबह दो शूटर सुमित और मोहित ये सामनी पुलिस से मुठभेड़ में मारे गए हैं। इनके पास से सोफिस्टिकेटेड वेपन्स बरामद हुए हैं। इन्होंने सामनी पुलिस पर काफी फायर भी किया, उसमें हमारे दो कांस्टेबल भी घायल हैं। इस प्रकरण में अन्य शूटर्स और गैंग के हायर मेंबर्स, इन सब के बारे में तफ्तीश की जा रही है और इन सभी को कानून के दायरे में लाया जाएगा।
0: बीते 5 दिनों से यूपी पुलिस की इस केस में बड़ी किरकिरी हो रही थी। अंकित बालियान इस इलाके का जाना पहचाना चेहरा था। हरियाणवी सिंगर के तौर पर बालियान की काफी लोकप्रियता थी। बालियान की 26 अगस्त को शामली में जिम से बाहर निकलते हुए हत्या कर दी गई थी। परिवार इस हत्याकांड को लेकर एक्शन की लगातार मांग कर रहा था। अब एनकाउंटर पर बालियान के पिता कह रहे हैं अभी तो आधा इंसाफ हुआ है।
2: और मिलना चाहिए
3: तो ये आधा कब तक का उम्मीद करोगे पुलिस कर देगी?
2: अब तो उम्मीद है।
0: और अंकित बालियान के हत्या के दो आरोपी का एनकाउंटर हो चुका है। 22 साल का मोहित ऑक, 24 साल का सुमित मुठभेड़ में मारा जा चुका है। इतनी छोटी सी उम्र में दोनों पर कई केस दर्ज हो चुके थे। 22 साल के मोहित पर 14 केस दर्ज थे और वो जेल भी जा चुका था। अपराध के जिस रास्ते पर दोनों आगे निकल चुके थे उसका यही अंजाम होना था। शामली से शरद मलिक के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

0: आज तक भर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ ही क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

बिश्केक में गर्मजोशी के साथ पुतिन पीएम मोदी की मुलाकात हुई। बातचीत में यूक्रेन का भी उठा मुद्दा। प्रधानमंत्री ने कहा युद्ध मानवता के लिए खतरा, भारत शांति का पक्षधर। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी 7.8% रही। प्रधानमंत्री मोदी बोले निराशावादी लोगों की हार हुई। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी विरोध प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट में पहुंची दिल्ली पुलिस। 13 एफआईआर रद्द करवाने की इजाजत मांगी। आपराधिक पृष्ठभूमि के 2873 लोगों पर दर्ज हो केस। नेपाल में त्रासदी के बाद मरने वालों का नहीं थम रहा है आंकड़ा। 939 लोगों की गई जान, 3900 से ज्यादा लापता। रेस्क्यू के काम में भारतीय एक्सपर्ट्स भी शामिल। और नियोलिन मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से लिया संन्यास। अर्जेंटीना के कप्तान ने कहा अलविदा। सोशल मीडिया पर फैंस को लिखा भावुक पत्र।

0: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान के जिन चार शूटरों को पिछले 5 दिनों से यूपी पुलिस ढूंढ रही थी, उनमें से 2 शूटरों को सोमवार सुबह एक एनकाउंटर में मार दिया गया। कमाल ये है कि जिस जगह यह एनकाउंटर हुआ वो शामली में ठीक उसी जिम से फकत 2 किलोमीटर की दूरी पर है जहां 26 अगस्त को अंकित बालियान को गोली मारी गई थी। अब सवाल ये है कि दोनों शूटर वापस शामली में आकर क्या कर रहे थे। ये शामली में मौजूद मसल स्टूडियो फिटनेस सेंटर है, यानी वो जिम जहां अंकित बालियान जाया करते थे, और इसी जिम से 10 कदम की दूरी पर 26 अगस्त की शाम 6:44 पर 4 शूटरों ने 18 राउंड गोलियां चलाकर अंकित को मार डाला था। इसी जिम से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर ये शामली कैराना रोड है। हाईवे से 500 मीटर अंदर ये जंगल झाड़ी जैसी जगह है, और ठीक इसी जगह पर सोमवार सुबह 4 शूटरों में से 2 शूटरों का यूपी पुलिस एनकाउंटर कर देती है। इस एनकाउंटर के दौरान कई राउंड गोलियां चलती हैं। यूपी पुलिस स्वैट के 2 हेड कांस्टेबल हरविंदर और प्रदीप गोली लगने से घायल भी हो जाते हैं, पर आखिर में दोनों शूटर मारे जाते हैं। इन 2 शूटरों के नाम थे मोहित और सुमित, ये रहे इनके चेहरे। अब आगे बढ़ें, उससे पहले जरूरी है कि खुद यूपी पुलिस के अफसरों की जुबान एनकाउंटर की कहानी सुन लें।
1: पुलिस अधीक्षक शामली श्री एनपी सिंह के नेतृत्व में शामली पुलिस ने, स्वाट टीम ने, एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करके हत्याकांड में वांछित 2 अपराधी, जिन पर 50,000 रुपए का रिवॉर्ड था, ये शार्प शूटर थे जो घटनाक्रम में हत्या में शामिल थे, उनके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें स्वाट टीम के हेड कांस्टेबल हरविंदर और हेड कांस्टेबल प्रदीप ये गोली लगने से घायल हुए। जवाबी फायरिंग में जो आत्मरक्षार्थ पुलिस ने फायरिंग की, उसमें दोनों अभियुक्त घायल हुए, उन्हें तत्काल जिला संयुक्त अस्पताल में ले जाया गया शामली में, जहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित किया। अभियुक्तों के कब्जे से 3 पिस्टल, बड़ी संख्या में जिंदा और खोखा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और तमाम चीज मिली है। पूरे प्रकरण में नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
2: आज सुबह लगभग 5 बजे एक मुठभेड़ हुई शामली पुलिस और इन शूटर्स के बीच में, और ये 2 शूटर्स मारे गए हैं, सुमित और मोहित, और इनके पास से भारी मात्रा में आग्नेयास्त्र बरामद हुए हैं। इन्होंने पुलिस पर भारी फायरिंग भी की है, जिससे 2 कांस्टेबल्स भी हमारे घायल हुए हैं। अभी इस घटना में और भी लोग शामिल हैं जिनके बारे में तफ्तीश जारी है, और खास करके जो शूटर्स हैं और जो इस गैंग के लीडर्स हैं जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को प्लान किया है या अंजाम दिलाया है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।
3: मास जनपद में मूवमेंट किए थे, उनको रोक कर चेकिंग का प्रयास किया गया, लेकिन वो पुलिस पे जानलेवा फायरिंग कर दिए। इसमें हमारे 2 आरक्षी गंभीर रूप से स्वाट के घायल हो गए, जिनको हम लोग CSC एडमिट कराए हुए हैं, और वहाँ से उनको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। हमारी पुलिस भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें क्रमशः सुमित और मोहित हैं। ये दोनों अपराधी रहने वाले सोनीपत के हैं, ये गोगी गैंग के बदमाश हैं, ये पहले भी शूट आउट में जेल गए हैं। इसमें जो मोहित है उस पर लगभग 14-15 मुकदमे हैं, जो सुमित उस पर लगभग सिंगल मुकदमा इस पर है। ये लोग चूंकि बहुत ही कम गिरफ्तार होते हैं लोग।
0: एक नहीं, 3-3 आला पुलिस अफसरों की जुबानी आपको एनकाउंटर की कहानी सुनाती। इन्हें कोई शिकायत ना हो तो आगे बढ़ने से पहले इनकी कुछ और बातें भी सुन लेते हैं। मसलन, कैसे टीम बनाई गई, कैसे शूटरों की पहचान हुई, कैसे शूटरों की जानकारी मिली, तो खुद DGP साहब से ही सुनिए।
1: पुलिस की प्राथमिकता बिल्कुल स्पष्ट थी, हत्या में सीधे शामिल जो शार्प शूटर्स हैं उनकी पहचान करना, उनकी गिरफ्तारी करना, और उनके पीछे मौजूद सारी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और गैंग नेटवर्क को भी सामने लाना। ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस के बेसिस पर लगातार साक्ष्य एकत्रित किए गए, CCTV, डिजिटल गतिविधियां, आरोपियों के मूवमेंट, ठहरने के स्थान, भुगतान, आपसी संपर्क, इन सब के आधार पर सारे साक्ष्य एकत्रित किए गए। विवेचना में सामने आया कि हत्या से पहले आरोपियों द्वारा अंकित बालियान की गतिविधियों की रेकी भी की गई थी और जिम के आने जाने की गतिविधियों पर भी नजर रखी गई थी। जांच में यह भी सामने आया कि शूटर्स को कहीं बाहर से हथियार भी उपलब्ध कराए गए थे और हत्या के दिन चार हमलावरों ने योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को अंजाम दिया।
0: अब आइए कुछ चेहरे दिखाता हूँ, शूटरों के चेहरे, उन चार शूटरों के चेहरे

0: के चेहरे जिन्होंने अंकित बालियान को गोली मारी थी। पहले दिन से ही यह चारों चेहरे यूपी पुलिस के पास थे, क्योंकि चारों चेहरे अलग अलग सीसीटीवी कैमरे में कैद थे। शूटआउट से पहले ये चार शूटर उसी जिम के करीब शामली में टहलते हुए एंड शूटआउट से पहले चारों शूटर अंकित बालियान को गोली मारने के लिए जाते हुए चारों शूटर अंकित बालियान को गोली मारते हुए चारों शूटर गोली मारने के बाद हवा में पिस्टल लहराते हुए चारों शूटर दो मोटरसाइकिल पर भागते हुए चार में से दो शूटर शामली के एक होटल के बाहर बाइक से उतरते हुए चार में से दो शूटर उसी होटल के अंदर रिसेप्शन पर पैसे देते हुए और चारों शूटरों की ये अलग अलग तस्वीरें, यानी शूटरों की कोई पहेली बची ही नहीं थी। चेहरे के साथ साथ यूपी पुलिस को अगले 24 से 48 घंटे में इनके नाम पता सब पता चल चुका था। उन्हें ये तक पता था कि शूटर लगातार ठिकाने बदल रहे हैं, यूपी के अलावा हरियाणा, हिमाचल, गुजरात तक भागते फिर रहे। खुद डीजीपी साहब ने कहा है,
1: घटना के बाद अपराधी पुलिस से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदलते रहे। घटना के बाद जो घटित टीमें थीं, उन्होंने कई प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश में भी और कई प्रदेशों में छापेमारी की, जिसमें हरियाणा में, हिमाचल में, गुजरात में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई विभिन्न स्थानों पर दबिश दी और आरोपियों की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए रखी। इसी क्रम में 29 अगस्त को ह्यूमन और टेक्निकल इंटेलिजेंस के बेसिस पर घटना में शामिल अभियुक्तों की पहचान की गई और इसमें से दो अभियुक्त मोहित और सुमित आज की पुलिस कार्रवाई में मारे गए हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मोहित के विरुद्ध हरियाणा में लगभग चौदह आपराधिक अभियोग पंजीकृत हैं और सुमित के विरुद्ध भी कम से कम एक आपराधिक अभियोग पंजीकृत होने की जानकारी प्राप्त हुई है। इनके अन्य आपराधिक इतिहास का भी सत्यापन कराया जा रहा है।
0: तो हरियाणा, हिमाचल से लेकर गुजरात तक शूटर भागते फिर रहे थे। खुद डीजीपी साहब के मुताबिक 29 अगस्त को सभी शूटर की जानकारी पुलिस को मिल चुकी थी, चेहरा पहले से ही उनके पास था। ऊपर से यूपी पुलिस की ऐसे मामलों में इनकाउंटर को लेकर इतिहास के बारे में तो सबको पता है। तो अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि अंकित बालियान को गोली मारने वाले चार में से दो शूटर 5 दिन बाद उसी शामली में उसी जिम से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर क्या करने आए थे। मतलब जिस यूपी की लोकल पुलिस एसटीएफ स्वैट को मिलाकर न जाने कितनी ही टीमें शूटरों को ढूंढ रही थी और वही शूटर जिनका शामली से कोई लेना देना भी नहीं 5 दिन बाद शूटआउट की जगह से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर एनकाउंटर में मारे जाते हैं। यह शामली में मौजूद वही मसल स्टूडियो फिटनेस सेंटर है। हमारे रिपोर्टर शरद मलिक इस वक्त इसी जिम के बाहर है जहां 26 अगस्त को अंकित बालियान को मारा गया था। शरद अब यहां से शामली कैराना रोड अपनी बाइक पर जाएंगे, हमें और आपको ये दिखाने और बताने कि इस जिम से वो जगह कितनी दूर है और वहां तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा जहां पर दोनों शूटरों का एनकाउंटर हुआ है।

0: तो हमारे रिपोर्टर शरद मलिक ने अपनी स्कूटी पर जिम से ठीक एनकाउंटर वाली इस जगह तक की कुल दूरी 15 मिनट में तय की। जिम से एनकाउंटर वाली इस जगह का कुल फासला 2 किलोमीटर के आसपास था। आमतौर पर किसी भी वारदात के बाद क्रिमिनल मौके वारदात से दूर भागते हैं पुलिस से बचने के लिए। अमूमन इस दौरान वो कहीं छुप कर रहते हैं, लेकिन ये दोनों शूटर जिनका एनकाउंटर हुआ मोटरसाइकिल पर हाईवे नाप रहे थे, वो भी शामली के बिल्कुल करीब।
1: आपको मैं दिखाना चाहूंगा, आप मेरे साथ चलिए कि हाईवे से कितना सटा हुआ है ये, कि यही वो, अगर इस रोड की बात करें तो

0: जहां पुलिस चेकिंग कर रही थी उसी चेकिंग के बाद वो जो बाइक से जो दोनों बदमाश थे वो आप सामने देख सकते हैं यहां से वो एंट्री करते हैं। उनको शायद जानकारी नहीं थी कि आगे वो नहीं जा सकते, यही से चलते हैं। यहाँ जो शामली पुलिस है वो उनको घेर लेती है और फिर यही मुठभेड़ होती है, फायरिंग होती है और दोनों बदमाश सुमित और मोहित ढेर हो जाते हैं।
1: आज सुबह हुए इनकाउंटर के बाद लखनऊ में यूपी पुलिस के बॉस यानी डीजीपी राजीव कृष्णा ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने एक सवाल पूछा। जैसे ही रिपोर्टर ने सवाल पूछा हॉल में हंसी की आवाज सुनाई थी।
2: जिंदा भी पकड़े जाने की संभावना या मुठभेड़ में चले जाएंगे, जानकारी कैसे मिलेगी?
1: सवाल ये था कि दो शूटर तो एनकाउंटर में मारे गए, पर क्या बाकी के दो शूटरों के जिंदा पकड़े जाने की संभावना है? ये सवाल और जवाब और वो हंसी लीजिए, आप भी सुनिए।
2: जिंदा भी पकड़े जाने की संभावना या मुठभेड़ में चले जाएंगे, जानकारी कैसे मिलेगी?
3: ऐसा नहीं होता। देखिए ये तो बदमाश के ऊपर है। जब बदमाश को पुलिस एंगेज करती है तो नेचुरली बदमाश को पुलिस अरेस्ट करने के लिए एंगेज करती है। 99% केसेस में अरेस्ट होते ही हैं, परंतु कुछ अपराधी इतने दुर्दांत होते हैं कि वो इस भ्रम में रहते हैं कि हम पुलिस पर फायरिंग करके हम बस निकल सकते हैं, तो पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है।
1: खैर, सवाल अपनी जगह पर यह भी सच है कि ये चारों वही शूटर थे जिन्होंने अंकित बालियान को गोली मारी, क्योंकि ये सारा सच लाइव कैमरे पर सबने देखा, तो शक की कोई गुंजाइश बचती नहीं। अब आते हैं कहानी पर। यूपी पुलिस के मुताबिक अंकित बालियान का कत्ल अचानक नहीं हुआ था, बल्कि इसकी पूरी प्लानिंग की गई थी। मारने से लेकर भागने तक के रूट तय किए गए थे, हथियारों के इंतजाम किए गए थे।
3: अभी तक की जांच से यह संकेत मिलता है कि यह कोई अचानक हुई वारदात नहीं थी, बल्कि इसके पीछे पूरी एक प्री प्लान प्लानिंग थी। शूटर्स का मोबिलाइजेशन था, हत्या के बाद का एस्केप प्लान था और सुनियोजित क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी थी। उत्तर प्रदेश पुलिस इस हत्याकांड में शामिल शेष अपराधियों, उनके नेटवर्क के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां हमको प्राप्त हुई हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार टीमें कार्य कर रही हैं। इस केस में हमारा उद्देश्य केवल शूटर्स तक पहुंचना नहीं है, बल्कि जिन लोगों ने साजिश रची, संसाधन उपलब्ध कराए, हथियार दिए, रैकी कराई या अपराधियों को संरक्षण दिया, ये पूरी चेन को कानून के दायरे में लाया जाएगा। मेरे द्वारा शामली पुलिस को और एसटीएफ को इस साहसिक कृत्य के लिए 2,00,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया है।
1: दरअसल अंकित बालियान की रेकी वारदात से एक हफ्ते पहले से ही की जा रही थी। आज जिन दो शूटरों का इनकाउंटर हुआ यानी मोहित और अमित, ये दोनों पहली बार 20 अगस्त को शामली आए थे। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीर उसी दिन की है। मोटरसाइकिल पर शामली पहुंचे ये दोनों मोहित और सुमित। इन दोनों ने शामली में ही सूर्या नाम के इस होटल में चेक इन किया। ये सूर्या होटल के सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें हैं। 20 और 21 अगस्त को दोनों ने अंकित बालियान की रेकी की और शक है कि इसी दौरान इन्होंने अंकित बालियान की स्कॉर्पियो गाड़ी में चुपके से GPS लगा दिया ताकि उसकी गाड़ी की लोकेशन पर नजर रख सके।
4: ये दो बदमाश भी 20 तारीख को जनपद शामली में आए थे अपनी एक्चुअल सही बाइक लेकर के, और सूर्या होटल में लोग रुके थे वहाँ पे, और वहाँ पे आके ये लोग अपना आधार कार्ड वहाँ दिए हैं, पैन कार्ड दिए हैं, इनका फुटेज है वहाँ सूर्या होटल में। ये GPS लेके आए थे, इनका गैंग का जो लीडर है भोलू साहपुरिया, GPS दिया था गाड़ी में लगा दो उसके 90-90 नंबर की गाड़ी में। ये लोग GPS लगाए गाड़ी में, बाद में चले गए थे और फिर प्लानिंग करके इन लोगों ने इनको वेपन्स दिया गया दिल्ली में ही। ये अलग अलग रूटों से लोग सिंगल लोग यहाँ पे शामली में आए, जिससे पुलिस इनको धरपकड़ न कर पाए इनकी। और बाद में आके इकट्ठा हुए वहाँ पे जिम के बगल में, अलग गाड़ी लोग खड़े किए और वहाँ ये लोग ऑटोमेटिक वेपन से गोली मार के उसकी हत्या कर दी। बाद में अलग रूट से लोग भाग गए थे यहाँ से। ये
1: यूपी पुलिस की माने तो अंकित बालियान को गोली बेशक चार शूटरों ने मारी, लेकिन इनके पीछे भी कई लोग हैं जिन्होंने इन शूटरों की मदद की।
5: सर, एक सवाल ये कि इसमें जो दो शूटर्स हैं जो बाकी हैं अभी, क्या उनकी शिनाख्त हो पाई? जो मददगार थे, रेकी करने वाले थे, फंडर थे, फाइनेंसर थे, वो शिनाख्त हो पाई है? कुल कितने लोग अभी तक शिनाख्त हो पाई है इस हत्याकांड में शामिल थे?
6: इस घटना में जैसा मैंने आपको पहले बताया, चार शूटर्स मौके पर मौजूद थे। इसके अलावा रेकी करने वाले अथवा इन्फॉर्मेशन देने वाले लोग भी थे। गैंग के लीडर्स भी हैं जो कुछ जिसमें से कुछ जेल में हैं। इन सभी के बारे में तफ्तीश की जा रही है और बहुत ही जल्दी इन सभी को कानून के दायरे में लाया जाएगा।
1: जिस गोगी गैंग के नाम पर यह हत्या की गई और जिस भोलू शाहपुरिया ने सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी ली, उसके बारे में खबर यह है कि वो देश से बाहर है, जबकि उसके गैंग के कुछ बड़े गुर्गे दिल्ली या हरियाणा की जेलों में बंद हैं।
3: मैं आपके माध्यम से यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई यहीं समाप्त नहीं हो रही। इस अपराध की साजिश में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका तय होगी और उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की सीमा के बाहर बैठकर अपराध की साजिश रचने वाले ये भ्रम ना पालें कि ये दूरी उनको कानून की पहुंच से दूर कर देगी। इसमें बाहर से जो शूटर्स भेजे गए, गैंगवार करने या अपराध कराने वालों के विरुद्ध उपलब्ध सभी कानूनी और अंतर्राज्यीय समन्वय के साथ ये कार्रवाई की जा रही है। मैं बताना चाहूंगा कि इस पूरी कार्रवाई में जो हमारे पड़ोसी प्रदेश थे, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, उनका पूरा समन्वय और सहयोग रहा, जिससे कि बहुत ही अल्प समय में इस घटना को वर्कआउट भी किया गया और ये कार्रवाई भी हुई। किसी भी हालत में उत्तर प्रदेश की भूमि को किसी भी गैंग की राइवलरी या उनकी शरण स्थली बनने की इजाजत किसी भी क्रिमिनल गैंग को नहीं दी जा सकती। और अगर जो लोग सोचते हैं, जो अपराधी सोचते हैं कि अपराध कहीं करेंगे, छुप कहीं और जाएंगे और कानून के पहुंच से बाहर पहुंच जाएंगे, तो वो अच्छी तरह से इस बात को स्पष्ट संदेश है कि किसी भी प्रकार का अपराध करके कहीं पर भी छुपेंगे, कानून के हाथ उनकी इस दौड़ से आगे हैं उससे, और वो कानून की जद में जरूर आएंगे। इसलिए जो ये आगे की कार्रवाई है उसमें कुछ अपराधी जेल में बैठे हुए हैं, जेल में बैठकर भी षड्यंत्र रच रहे हैं, कुछ अपराधी विदेशों में हैं, उन सभी के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की जा रही है और बहुत शीघ्र ही उस कानूनी कार्रवाई के अंजाम तक हम सभी पहुंचेंगे।
4: दो तीन चार बदमाश इसमें बचे हुए हैं, बहुत जल्दी हमारी शॉर्ट सर्विस की टीम लगी हुई है, इनको बहुत जल्दी हम लोग बिहाइंड दी बार करेंगे। इसमें दो अपराधी बड़े जो गोगी गैंग का संचालन लोग कर रहे हैं, इसमें एक तो राकेश पंपू है जो करनाल जेल में बंद है और एक जो है रोहित मुई है जो कटिहार जेल में बंद है, उनको हम लोग PCR पर लाएंगे, बिहाइंड दी बार करेंगे। इसके अलावा अभी इसमें एक अपराधी जो भोलू, जिसने क्लेम किया था, जिसके नाम से भोलू शाहपुरिया है, शाहपुर तुर्क का सोनीपत का है, उसमें 1,00,000 रुपये का रिवार्ड हरियाणा से पहले पूर्व से घोषित है। ये यमुनानगर में ट्रिपल मर्डर में वांटेड चल रहा है और सोनीपत में सिंगल मर्डर में वांटेड चल रहा है, अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाया है। वो चचेरा भाई उसका जो है वो कनाडा में है, वो पूरा पोस्ट करता है, इवन जो 26-27 की रात में जो पोस्ट इंस्टा पे आया था, इसमें क्लेम किया था इन लोगों ने हत्या करने की, वो पोस्ट हरियाणा कनाडा से ही आई थी वो, और इसका एक मोंटी मान करके है जो गोगी का चचेरा भतीजा है, वो अमेरिका में उन लोग प्रॉपर तरीके से जिसली सपोर्ट लोग करते हैं, एक बड़ा गैंग है ये।
1: अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर अंकित बालियान को गोली क्यों मारी गई, तो हमने इसी वारदात में पिछले हफ्ते ही आपको ये बताया था कि अंकित बालियान की जान उसे एक गाने ने ली, जिसे गोगी गैंग के लोगों ने दिल्ली में रोहनी कोर्ट के अंदर हुई जितेंद्र गोगी की हत्या से जोड़ दिया था।

0: विवेचना में इस हत्याकांड के पीछे गोगी गैंग से जुड़े नेटवर्क की भूमिका सामने आई है। 26-27 अगस्त को सोशल मीडिया पर राहुल उर्फ भोलू शाहपुरिया के द्वारा उससे जुड़े इंस्टाग्राम अकाउंट से हत्या की जिम्मेदारी ली गई थी और इसकी जांच भी विवेचना का एक हिस्सा है जिसकी जांच की जा रही है। इस हत्या के पीछे की पृष्ठभूमि भी महत्वपूर्ण है। वर्ष 2021 में रोहिणी कोर्ट दिल्ली में जितेंद्र मान उर्फ गोगी की हत्या हुई और उसके बाद गोगी और पिल्लू राजपुरिया के गैंगों के बीच में चली गैंगवार की कड़ियां इस विवेचना में सामने आई हैं। अंकित बालियान द्वारा अभिनीत, मतलब उनके द्वारा इसमें सिर्फ एक्टिंग की गई है, एक गाना जो YouTube पर काफी पॉपुलर हुआ उसको कथित रूप से गोगी की हत्या के घटनाक्रम से जोड़कर देखा गया, जो ये गैंग था उनके द्वारा देखा गया और उनके द्वारा इसमें पूर्व में भी उसको धमकियां वगैरह दी गई। अंकित द्वारा भी ये स्पष्ट बताया गया था कि इस गीत में उनके द्वारा सिर्फ अभिनय किया गया है, इसकी गीत के बोल और उसकी धुन उनकी नहीं थी। इसके बावजूद इस गैंग के द्वारा इसे विरोधी गैंग से जोड़कर देखने की बात विवेचना में सामने आई है।
1: पर एक छोटे से गाने पर जो गोगी की हत्या हुई थी सोहनी कोर्ट में, उस पर एक गाना बना था, उसमें मात्र अंकित बालियान ने अभिनय कर दिया था, जिसके बोल क्रम से आपको मालूम है कि कोर्ट में हत्या करेंगे मेरी जान, जज को पसीने आएंगे, और वो पूरा थीम गाने का वही कोर्ट में हत्या वाला था। इसको नहीं मालूम था कि ये वही वाला मामला है और उसी को लेके अदावत शुरू हो गई। बाद में इसको धमकी आई थी दिल्ली में, वहाँ जाता कम था लेकिन यहाँ किसी को शेयर नहीं किया इसने, और अचानक पूरा गैंग मोबिलाइज हुआ, इसकी हत्या लोग कर दिए।
2: शरद मलिक, मनुदेव उपाध्याय और अरविंद ओझा के साथ संतोष शर्मा आज तक।
3: दो शूटरों का काम तो यूपी पुलिस ने कर दिया, अब बाकी बचे दो शूटर। क्या उनके एनकाउंटर की खबर पहले आएगी या फिर गिरफ्तारी की? वैसे भी आजकल यूपी पुलिस फरमाइश पर ज्यादा काम करती है। अंकित के पिता ने यह कहा है कि अभी न्याय आधा हुआ है, आधा बाकी है, यानी अभी दो शूटर एनकाउंटर में मारे गए जबकि दो बचे हुए हैं।
2: आज जिन दो शूटरों का एनकाउंटर हुआ उनमें से एक मोहित सोनीपत के बंदेपुर का रहने वाला था। हालांकि कई महीने पहले ही उसके घर वालों ने उसे बेदखल कर रखा था। मोहित की मां ने बताया कि अब वो जुर्म की दुनिया छोड़ना चाहता था लेकिन उसके साथी उसे ऐसा करने नहीं दे रहे थे।
4: बेदखल करवा रखा हमारे साथ नहीं रहता वो।
5: कितने दिन पहले?
4: वो तो बहुत दिन पहले करवा रखा।
5: क्यों करवाया था?
6: बस वो बाहर ही रहे।
5: एक मिनट,
4: बाहर रहा है।
7: कितना पढ़ा लिखा है?
4: नो पढ़ रहा है।
5: आखिरी बार कब आया था आपके पास?
6: कितने महीने हो गए?
4: मुझे याद नहीं।
5: सुधरानी पहले पकड़ा गया था?
4: बस वो सुधर तो रहा था पर बस बाकी है ना, यहाँ का मोल देख के ना वो चला गया था जिसके पीछे लगे हुए थे बच्चे।
2: उधर अंकित बालियान के पिता ने दो शूटरों के एनकाउंटर के बाद कहा है कि फिलहाल ये अधूरा न्याय है, पूरा न्याय बाकी के शूटरों के एनकाउंटर के बाद ही होगा।
8: मैं भी यही कहना चाहूंगी जो हमारे पिताजी ने बोला है कि काम की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत बहुत अच्छे से हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अपील है कि इस काम को पूरा करके दम लीजिएगा क्योंकि गुंडागर्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और कल किसी और के परिवार का बच्चा भी जा सकता है, तो कल ये दुर्घटना किसी और के साथ ना हो तो आज इस चीज का खत्म हो जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोर्ट में जाके भी इंसाफ करते हो बेल मिल जाती है, वो बेल मिलने के बाद हम सबके फेस रिवील हो चुके हैं। कुछ असामाजिक तत्व होते हैं मैम, उनका समाज से कटना जरूरी हो जाता है। जब शरीर का कोई हिस्सा गल जाता है, सड़ जाता है, तो उसका कटना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर बेल मिलने के बाद वो हम सबकी जान पे बनाता तो उस बात का क्या? हमारी जान को तो खतरा है ना, अभी भी खतरा है कि दो लोग बाहर घूम रहे हैं, हो सकता है वो कल को गोली लेके हमारे घर के पास आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे? हम तो सब सीधे साधे ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए लोग हैं, हम कैसे मुकाबला कर पाएंगे उन लोगों का?
9: तो ये आधा कब तक का उम्मीद करोगे पुलिस कर देगी?
10: अब तो उम्मीद है।
2: अंकित बालियान के पिता वैसे गलत नहीं कह रहे, सिर्फ यूपी ही क्या, अब पूरे देश में एक नया चलन चल पड़ा है, हाथों हाथ इंसाफ का चलन, एनकाउंटर का चलन। लेकिन अगर इसी तरह हर क्राइम के बाद हर कोई एनकाउंटर को ही इंसाफ मानने लगेगा तो जल्द ही अदालतें सूनी हो जाएंगी।
7: यूपी में यूपी सरकार की क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। मैं यही कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की इस जीरो टॉलरेंस नीति का परीक्षण ना करें,
11: वरना अंजाम
0: बुरा
7: होगा। नहीं, वरना कानून अपना काम करेगा और यूपी पुलिस किसी भी क्राइम को लाइटली नहीं लेती। वी विल गो टू द बॉटम ऑफ द क्राइम और हर व्यक्ति को जस्टिस के दायरे में लाया जाएगा।
2: फिलहाल मोहित और सुमित के बाद अब भी दो शूटर बाकी बचे हैं, आर्यन और सत्यम। अब देखना यह है कि इनकी गिरफ्तारी की खबर पहले आती है या फिर एनकाउंटर। शरद मलिक, मनुदेव उपाध्याय और अरविंद ओझा के साथ संतोष शर्मा आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
13: नोवा कोटा से ऊपर मैं त्रिशूली में आया हूँ, देख लीजिए सैलाब का ये सितम।
14: ये वही त्रिशूली नदी है जिसमें पानी मलबे के साथ पूरे आवेग के साथ आया।
13: पीछे जो आपको इमारतें दिख रही है ना, वो सारी बिल्कुल खंडहर हो चुकी है।
14: जो निचले इलाके हैं उन सबसे ऊंचाई की तरफ लोगों को जाने के लिए कहा गया है।
15: चितवन में आज तक की टीम मौजूद है और आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं।
13: मैं आशुतोष मिश्रा,
15: रोहित सिंह,
14: श्वेता सिंह, नेपाल आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: बिश्केक में गर्मजोशी के साथ पुतिन पीएम मोदी की मुलाकात हुई। बातचीत में यूक्रेन का भी उठा मुद्दा। प्रधानमंत्री ने कहा युद्ध मानवता के लिए खतरा, भारत शांति का पक्षधर। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी 7.8% रही। प्रधानमंत्री मोदी बोले निराशावादी लोगों की हार हुई। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी विरोध प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट में पहुंची दिल्ली पुलिस। 13 एफआईआर रद्द करवाने की इजाजत मांगी। आपराधिक पृष्ठभूमि के 2873 लोगों पर दर्ज हो केस। नेपाल में त्रासदी के बाद मरने वालों का नहीं थम रहा है आंकड़ा। 939 लोगों की गई जान, 3900 से ज्यादा लापता। रेस्क्यू के काम में भारतीय एक्सपर्ट्स भी शामिल। और नियोलिन मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से लिया संन्यास। अर्जेंटीना के कप्तान ने कहा अलविदा। सोशल मीडिया पर फैंस को लिखा भावुक पत्र।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूँ शशि शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सबसे पहले आपको बता दें, अलवर से जानकारी मिल रही है जहां एक बच्चे को रेस्क्यू किया गया है क्योंकि ये बच्चा बोरवेल में गिर गया था। काफी घंटों की मशक्कत के बाद इस बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप समझ सकते हैं परिवार की क्या हालत रही होगी जिस समय ये रेस्क्यू चल रहा था, क्योंकि 300 फीट गहरा ये बोरवेल था। 10 साल के बच्चे के बोरवेल में गिरने के बाद आसपास के लोग इकट्ठा हुए और फिर से जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ये देखिए मासूम पूरी तरह से सुरक्षित है, हालांकि घबराया हुआ था, तुरंत ही उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 300 फीट गहरा बोरवेल जिसमें ये बच्चा गिरा था, बड़ी संख्या में यहाँ ग्रामीण पहुंच गए थे। तुरंत ही प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था और अच्छी बात यह है कि बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित है, सकुशल है। घंटों की मेहनत रंग लाई है और इस बच्चे की जान बच गई है। ये देखिए जरा किस तरीके से सावधानी पूर्वक इस बच्चे को निकालने की लगातार यहाँ कोशिश चलती रही। घंटों मेहनत के बाद इस 8 साल के बच्चे को यहाँ से निकालने में कामयाबी मिली है। बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित है। डरा हुआ जरूर नजर आया, सहमा हुआ था, क्योंकि अंदाजा लगाइए कि 300 फीट गहरे बोरवेल में ये मासूम फंस गया था। पचास पचपन फीट का ये बच्चा वहां जाकर फंसा था। 80 फीट हालांकि गहरा बताया जा रहा है बोरवेल, 50-55 फीट पर यह बच्चा फंसा हुआ था। आवाज लगातार वो अंदर से लगातार आ, जवाब देने की भी कोशिश लगातार उसकी तरफ से जारी थी। रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत ही शुरू कर दिया गया था और बहुत ही सावधानी पूर्वक इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है कि किसी भी तरह से मिट्टी गिरने से और ज्यादा मुश्किलें ना बढ़ जाएं। ये देखिए मासूम का पूरा परिवार बेसब्री के साथ, आसपास के लोग बेसब्री के साथ इस मासूम का इंतजार कर रहे थे। 8 साल का ये बच्चा है जो गलती से अंधेरा होने की वजह से बोरवेल में गिरा था, लेकिन इस बच्चे को पूरी तरह से सुरक्षित रूप में बाहर निकाल लिया गया है। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे इस बच्चे की तमाम मूवमेंट्स को चेक किया जा रहा था। बच्चे से लगातार बात की जा रही थी, उसे ढांढस बताया जा रहा था कि वो घबराए नहीं। बड़ी संख्या में यहाँ लोग मौजूद है और उसे निकालने का पूरा इंतजाम कर लिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु जुड़ गए। हिमांशु, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें, बहुत दिल को सुकून देने वाली तस्वीरें कि घंटों की मेहनत के बाद इस मासूम को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है।
2: बिल्कुल शशि, ये बड़ी अच्छी बात है और बड़ी खुशी की बात है पूरे परिवार के लिए, पूरे गांव के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए कि करीब 300 फुट गहरे बोरवेल में जब ये बच्चा गिरा जिसका नाम भानु था, वो गिरते के साथ पूरे गांव में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। करीब 4 से 5 जेसीबी की मशीनें लगातार पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी रही और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सहित तमाम ऐसी टीमें थी जो वहां पर मौजूद हो गई। और सबसे अहम चीज, प्रशासन ने इस मामले में तुरंत जो एक्शन लेते हुए पूरा मामले को तैनात हुई, प्रशासन की
0: कार्रवाई लगती है और तभी ये सफलता मिली। अब हमें ये भी बताइए कि आखिर पता कैसे चला कि बच्चा मासूम, जो बच्चा है वो गड्ढे में गिर गया, कोई उसके साथ मौजूद था और ये हादसा हुआ कैसे?
2: बिल्कुल शशि, बेसिकली शुरुआती जो जांच पड़ताल में सामने आया, जिस तरह से ग्रामीण वहां पर मौके पर मौजूद थे, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि बच्चा, क्योंकि इस समय अलवर और आसपास क्षेत्र में पतंगबाजी का जो क्रेज रहता है बच्चों में, लोगों में, तो इस समय जो पतंगबाजी का जो था वो एक पतंग कट रही थी, उसको पकड़ने के लिए बच्चा जो है भानु, जिसका नाम है, जो अपने दोस्तों के साथ दौड़ लगा रहा था, और जैसे ही वो दौड़ लगाते समय अचानक उसको आइडिया नहीं था कि यहाँ पर कोई बोरवेल है, और उसका अचानक जो पैर है वो वहां पर खुले हुए जो बोरवेल है उसके अंदर पड़ा और वो नीचे जाता हुआ चला गया। करीब 50 फुट के आसपास वो जाकर अचानक फंस गया, और उसके साथ वहां पर जो आसपास लोग मौजूद थे उनको अचानक उस बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, और उसके बाद पूरा गांव में हड़कंप मचा, और एक तरह से पूरा गांव अलर्ट हो गया और बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हो गए।
0: बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो वाकई में राहत देने वाली तस्वीरें, ये बहुत गहरे बोरवेल में बच्चा गिरा था पतंग के पीछे दौड़ते हुए, भानु इसका नाम है, 8 साल का ये मासूम है, 50-55 फीट पर ये फंस गया था, लेकिन SDRF NDRF की टीमें तुरंत वहां पहुंची और देखिए किस तरीके से इसको रेस्क्यू किया गया घंटों की मेहनत के बाद। अच्छी बात यह है कि इस बच्चे को सकुशल बचा लिया गया है। तो भानु खुश किस्मत रहा है, लेकिन अंश नहीं। एक दर्दनाक खबर मुंबई से है। जरा सोचिए, किसी बच्चे का बर्थडे है और उसकी मां बेटे के लिए जन्मदिन की प्लानिंग कर रही है, तैयारियां कर रही है, और अचानक उसे खबर मिले कि जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले उसके जिगर के टुकड़े की मौत हो गई है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि कुचलकर उसे मार डाला गया है। सोचिए उसकी मां पर क्या बीती होगी। मुंबई के बांद्रा पश्चिम में एक हिट एंड रन के मामले में 8 साल के अंश की कार की चपेट में आ जाने की वजह से मौत हो गई है। जो आरोपी महिला ड्राइवर है उसकी गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन उस बच्चे की मां सिर्फ यही लगातार गुहार लगा रही है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उसका बेटा वापस कर दो।
3: मेरे को न्याय चाहिए, मेरे सामने उसको फांसी दे, मेरा यही, हमको बंगला पैसा गाड़ी नहीं चाहिए, मेरा बस यही मांग है। मेरा क्या करे, एक ही और मेरी लड़की भी नहीं, एक ही लाल था मेरा, कल बर्थडे था, 1 सितंबर के मेरा लाल का बर्थडे था, 1 सितंबर के लाल को मेरा बर्थडे था, वो बाप आई वो मैया।
4: अपने बेटे अंश के जन्मदिन से ठीक पहले इस माँ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। 8 साल के अंश को अपने जन्मदिन का इंतजार था, वो अपने बर्थडे पर मिलने वाले गिफ्ट की लिस्ट बना रहा था, लेकिन जन्मदिन से एक दिन पहले ही एक सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। बांद्रा इलाके में हुए इस हिट एंड रन केस के बाद घर में मातम पसरा है। जन्मदिन के जश्न की जगह घर में अंश की माँ की चीखें सुनाई दे रही है। माँ की आंखों से निकलने वाला आंसुओं का झरना सूख चुका है। पथराई आंखें अब हर जगह अपने मासूम को ही तलाश रही है।
5: 8 वर्षीय लड़के अंश गुप्ता का हिट एंड रन एक्सीडेंट से मौत हो गई। उसके बाद उसके परिवार जो है वो सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं जो आरोपी हैं उनके लिए। पूनम गुप्ता यहां पर आप देखेंगे उस 8 वर्षीय अंश गुप्ता की माता जी हैं। आपको पता चला एक्सीडेंट के बारे में, क्या क्या पता चला अभी?
6: एक्सीडेंट कैसे हुआ?
7: 4 बजे वहाँ से मालूम पड़ा।
3: 4 बजे मालूम पड़ा, मैं गई खोजने गणेश मंदिर।
5: बच्चा खेलने गया था मैदान?
3: खेलने गया था, मेरे से नहीं बताया, रोज इसने तबेला में खेलता था। पहली बार मेरे से लाल झूठ बोला, मम्मी मैं जा रहा है उधर, अब कही किधर जा, मेरे से हंसते बोल रहा था, अभी आ रहा हूँ। 3:30 बज गया तो नहीं, हम कही था टाइम नहीं, मेरा लड़का नहीं घूमता था, अच्छा लड़का था पढ़ने लिखने में, लुखा टिपोरी नहीं।
5: पहली बार थोड़ा ज्यादा दूर चला गया घर से?
3: पहली बार गया था वो कोई साथ पाके, पहले मेरा लाल उधर ही एक बार गाड़ी से चढ़ाई, उठ के बैठा, फिर दूसरा का बेड चढ़ा दी, एसी चढ़ाई,
7: एसी
3: यही चढ़ाई, यही खत्म हो गया। लाल को मैंने देखा कहीं टूटा फटा नहीं था, यही से 2 बार चढ़ाया, ये सब मैंने उगार के देखा, कुछ भी नहीं टूटा फटा था। उसके में
5: टायर चढ़ गए, टायर बदन
3: 2 बार चढ़ाई, मेरा लाल का गलती, मेरा एक ही औलाद है, मेरे को न्याय चाहिए, मेरे सामने उसको फांसी दे, मेरा यही, हमको बंगला पैसा गाड़ी नहीं चाहिए, मेरा बस यही मांग है। मेरा क्या करे, एक ही और मेरी लड़की भी नहीं, एक ही लाल था मेरा, कल बर्थडे था, 1 सितंबर के मेरा लाल का बर्थडे था, 1 सितंबर के लाल को मेरा बर्थडे था, वो बाप आई वो मैया आई वो माई। सुनते तो हमारे लाल अपने में ना रहते, मम्मी हमारे बर्थडे है, मम्मी हम सबसे बोलते।
4: सुना आपने, अंश 1 सितंबर को अपना नवा जन्मदिन मनाने वाला था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अब बेसुध माँ कह रही है कि उसे मुआवजा नहीं बेटा वापस चाहिए या आरोपी महिला को फांसी दे दी जाए।
3: मेरे को बस उसको सामने फांसी दे दो, मैं कुछ नहीं माँ।
5: कोर्ट गए,
3: कोर्ट गया है, गया है, हमको नहीं माँ। बस मेरा यही मांग है, मेरी एक ही औलाद को न्याय दे दो।
4: अंश अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। ये परिवार यूपी के गोरखपुर से मुंबई पढ़ाई के लिए आया था। माँ और पड़ोसी बता रहे हैं कि अंश जीजा माता गार्डन खेलने गया था। आरोप है कि जब एक्सीडेंट हुआ तो आरोपी महिला फोन पर बात कर रही थी। वो एक्सीडेंट के बाद भी नहीं रुकी, लेकिन मौके से भाग रही महिला को लोगों ने पकड़ लिया।
8: बच्चे का बॉल बाहर आया, गार्डन से मैदान में से बाहर आया, बस बच्चा बॉल उठाने गया, इतने में वो गाड़ी लाई और बच्चे को धक्का लगा। धक्का लगा तो गाड़ी रोकी नहीं और उसने बच्चा उठ के बैठ गया। धक्का लगने के बाद गिरा और उठ के बैठ गया। वापस बच्चा गिरने के बाद उसने वो आउट ऑफ कंट्रोल थी और उसने बच्चे के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया। और बहुत दुख की बात है कि वो गाड़ी चढ़ाने के बाद भी वो रुक नहीं रही है, गाड़ी लेके भाग गई। आगे पब्लिक ने देखा, पब्लिक लोगों ने उसको रोका और फिर उसके ही गाड़ी में लेके हॉस्पिटल गए, जो कि वहां पे हॉस्पिटल होली फैमिली हॉस्पिटल पहुंचने का होली फैमिली पहुंचने के बाद बच्चे को डेथ घोषित किया डॉक्टर ने। और जो आज तक बच्चे का ये हाल है, माँ का बुरा हाल है। ये लोग एकदम गरीब है, ये भाड़े के घर में रहते हैं।
4: बांद्रा हिट एंड रन केस की आरोपी मेघा रावल को पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद बांद्रा कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उसे एक दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया।
9: मैडम पछतावा है आपको इस मामले में। मैडम
10: इनोवा गाड़ी की महिला चालक जब उसको हॉस्पिटल लेके गई, हॉस्पिटल जाने पे उसको डेथ डिक्लेयर कर दिया गया। इमीडिएटली बांद्रा पुलिस स्टेशन ने इसमें गुना दाखिल किया, सेक्शन 105, 125 और 281 BNS, साथ ही 184 MV एक्ट में गुना दाखिल किया गया। आरोपी महिला को कस्टडी में लेके मेडिकल अन्य जो SOP के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया थी उसको पूरा किया गया। कल आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया था। आज जब माननीय कोर्ट के सामने आरोपी को पेश किया गया तो माननीय कोर्ट ने एक दिन की पुलिस कस्टडी बढ़ा के दी है और आगे की तपास इस केस में चालू है।
4: बताया जा रहा है कि मुंबई के बांद्रा वेस्ट में ये महिला तेज रफ्तार से कार चला रही थी, लेकिन गेंद उठाते समय अंश कार की चपेट में आ गया।
0: आगे बढ़ेंगे, महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में बात करेंगे। महाराष्ट्र की सत्ता के साथ बैठकर सरकार चला रहे देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे अब एक बड़े राजनीतिक मुकाबले में आमने सामने आ सकते हैं। मामला जुड़ा हुआ है मुंबई बैंक यानी कि मुंबई जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के आने वाले चुनावों से। महायुति गठबंधन में सब कुछ ठीक दिखने के बावजूद पर्दे के पीछे सहकारिता क्षेत्र के इस पावर हाउस पर कब्जे की जंग शुरू हो चुकी है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए।
4: महायुति में BMC के मेयर पद पर मचे घमासान के बाद मुंबई बैंक के चुनाव में BJP और शिवसेना आमने सामने आ सकते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में सहकारी बैंकों का दबदबा किसी से छिपा नहीं है। आने वाले दिसंबर या जनवरी में होने वाले मुंबई बैंक के चुनाव में इस बार बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के करीबी और मुंबई बैंक के अध्यक्ष प्रवीण दरेकर लंबे समय से यहां मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं, लेकिन अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने इस बैंक चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर ली है। इधर ठाणे पालघर जिला बैंक चुनाव में स्वतंत्र रूप से मिली सफलता के बाद शिंदे गुट के हौसले बुलंद हैं। डिप्टी CM एकनाथ शिंदे के बेटे और शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना अब मुंबई के सहकारिता नेटवर्क में अपना दायरा बढ़ाने को बेकरार है। इससे BJP और शिवसेना के बीच सीधे टकराव के आसार बन गए हैं।
11: अरे एंट्री वेंट्री है क्या, कबड्डी की एंट्री नहीं है यार। सरकार में सब लोग को लेके साथ में हम काम करते है। अभी महायुति सरकार में है, देवेंद्र जी वहाँ क्या करना निर्णय लेने के लिए सक्षम है, लेकिन कई लोगों को मुंबई बैंक में आने के लिए बहुत घाई लगी होगी, तो ऐसा कुछ प्रेशर डाल के कुछ न्यूज बना के कुछ होता है क्या, देखते हैं। लेकिन इधर पेशेंसली शांत संयम से काम होता है और सरकार में 25-30 साल मैं उस बैंक का नेतृत्व कर रहा हूँ। सब पार्टी के लोगों को लेके अच्छी तरह से बैंक मैं चलाता हूँ और इसके आगे भी चलाऊंगा। और जिस तरह प्रगति मुंबई बैंक की हुई है, मुंबई में अनेक योजनाएं, सेल्फ डेवलपमेंट रहे, लाडली बहन के लिए 0% इंटरेस्ट रहे, गृहिणी कामगार रहे, माथाड़ी कामगार रहे, पुलिस, टीचर्स, ये सब लोग के लिए अच्छे अच्छे योजनाएं लाई है। तो राजनीति में थोड़ा पेट का दर्द होने वाले लोग रहते हैं, इसलिए वो कोई प्लांट यूज करता है, कोई क्या करता है, लेकिन अब भी घोड़ा मैदान दूर है, जो होगा वो ठीक होगा।
4: बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर के इस बयान को सीधे तौर पर शिंदे गुट पर निशाने के रूप में देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मौके की नजाकत को देखते हुए विपक्ष इस तथा कथित अंदरूनी कलह पर तंज कस रहा है।
12: एकनाथ शिंदेच्या जीवनामध्ये फोडाफोडी शिवाय दुसरं काय स्थान आहे का? हा, हे फोडा ते फोडा, हे झोडा हे विकत घ्या, यांचा जो साचा बनवलाय देवाने, तुम्हाला शोधायचंय कसं बनवलंय या माणसाला। मी त्यांच्या डोक्यामध्ये एकता, ऐक्य, संयम, बरं का, एकोपा या संकल्पनाच नाही। फोडा झोडा तोडा फोडा विकत घ्या, बरं का, याच्याशिवाय या माणसाला काय सुचत नाही, हे बरोबर नाही। बरं, हे भारतीय जनता पक्षाला सुद्धा असंच हवं आहे। त्याने जे किडे, शेणातले किडे जे होते सगळे, त्यांना जे काय मोठं केलं आहे, तर त्याच्यामुळे ते त्यांना चावणारच ना। आता आम्ही बघू, आमचंही पॅनल असतं शिवसेनेचं, आमचे लोक निवडून येतात।
4: गठबंधन में जारी इस खींचतान के बीच शिंदे की शिवसेना कोटे से मंत्री शंभूराज देसाई ने संभल कर बयान दिया है।
13: जे जे मुंबई मधले असतील, महाराष्ट्र मधले असतील, कुणीही पदाधिकारी, नगरसेवक, माजी नगरसेवक, कुणी नेते असतील, ज्यांना आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांचं नेतृत्व स्वीकारून शिवसेनेमध्ये यायचंय, त्या सगळ्यांच्यासाठी आम्ही स्वागत करायला तयार आहोत।
4: मुंबई बैंक सिर्फ एक वित्तीय संस्था नहीं है, बल्कि राजनीति का बड़ा केंद्र है। 10,282 करोड़ रुपए की पूंजी वाला ये बैंक मुंबई की हाउसिंग सोसाइटी के सेल्फ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए भारी फंडिंग करता है। इस बैंक पर नियंत्रण का मतलब है मुंबई के मध्यम वर्गीय मतदाताओं के बीच अपनी सीधी पकड़ बनाना। दो दिन पहले बीएमसी के मेयर पद को लेकर शिवसेना की तरफ से दावा किया गया था कि फडणवीस शिंदे के बीच ऐसी डील हुई थी कि 2.5 साल बीजेपी की मेयर रहेंगी और उसके बाद शिवसेना की मेयर बनेंगी, लेकिन बीजेपी ने शिवसेना नेता का ये दावा खारिज कर दिया था। भले ही मंत्रालय में शिंदे और फडणवीस साथ दिखते हों, लेकिन बीएमसी चुनाव के बाद सहकारिता क्षेत्र की ये जंग बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंचती दिख रही है।
14: मुंबई बैंक का चुनाव सिर्फ एक सहकारिता की जंग नहीं, बल्कि 2029 के चुनाव से पहले महायुति के भीतर अपनी जमीनी ताकत बढ़ाने का और दिखाने का सबसे बड़ा मौका बन चुकी है। अब देखना यह होगा कि क्या शिंदे की सेना बीजेपी के इस वित्तीय किले में सेंध लगा पाती है, या फिर देवेंद्र फडणवीस का खेमा अपनी ताकत बरकरार रखता है। कैमरा पर्सन राजू रेवनकर के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
0: पुणे में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में खराब खाने की शिकायत मिलने के बाद एमएनएस चीफ राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहां पहुंचे थे और जमकर उन्होंने हंगामा किया था। इसी दौरान प्रिंसिपल रूम में शिवाजी महाराज और राष्ट्रपति के साथ लगी हुई प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर को देखकर एमएनएस कार्यकर्ता भड़क उठे। उन्होंने सरकारी प्रोटोकॉल के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी की फोटो को दीवार से उतार दिया। उसके बाद पुलिस ने अमित ठाकरे के साथ कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और अब इस मामले पर सियासी वार पलटवार शुरू हो चुका है।
4: आक्रामक राजनीति महाराष्ट्र नव निर्माण सेना की पुरानी पहचान रही है। कभी मराठी भाषा के अपमान के नाम पर, कभी गैर मराठी बनाम मराठी को रोजगार के नाम पर, राज ठाकरे की तर्ज पर उनके बेटे अमित ठाकरे भी उसी राह पर चल पड़े हैं। सक्रिय सियासत में अपनी पहचान बनाने को बेकरार अमित ठाकरे आज पुणे के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचे। पहले अमित ठाकरे अपने कई कार्यकर्ताओं के साथ फिल्मी अंदाज में सीधे प्रिंसिपल ऑफिस में घुस गए। यहां उन्होंने खराब खाने और गंदगी को लेकर प्रिंसिपल को धमकी दी, अगर ये नहीं सुधरा तो वो एमएनएस स्टाइल में कैंटीन वाले को सबक सिखाएंगे। उन्होंने प्याज की टोकरी प्रिंसिपल की मेज पर पटकी और अपने साथ कई तस्वीरों को दिखाया जिसमें गंदगी के सबूत थे, जिसके बाद प्रिंसिपल ने उन्हें भरोसा दिया कि आगे से ऐसा नहीं होगा।
15: सार्वजनिक जगह
4: लेकिन इसी दौरान प्रिंसिपल ऑफिस में लगी तस्वीरों पर अमित ठाकरे और एमएनएस कार्यकर्ताओं की नजर पड़ी, जिसके बाद उनके कार्यकर्ताओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज और राष्ट्रपति की तस्वीरों के बीच में लगी पीएम मोदी की फोटो जबरन उतार दी। प्रिंसिपल सरकारी प्रोटोकॉल और नियमों का हवाला देकर एमएनएस कार्यकर्ताओं को मना करते रहे कि वो पीएम की तस्वीर ना हटाएं, लेकिन वो नहीं माने। अमित ठाकरे ने पीएम मोदी की फोटो पर एतराज जताते हुए कहा कि शिवाजी के साथ पीएम मोदी की फोटो नहीं लग सकती।
15: छत्रपति शिवाजी महाराज असतील, बाबासाहेब आंबेडकर असतील, त्यांच्याशी तुलना नाही होऊ शकत मोदींची। आणि त्यांच्या सरकारी कॉलेज आहे, दुसरीकडे लावा फोटो, आमच्या महाराजांच्या बाजूला बाबासाहेब आंबेडकरांच्या बाजूला नाही लावला पाहिजे। महाराजांच्या बाजूला नाही, शासकीय कॉलेजचं प्रोटोकॉल आहे की मोदींचा फोटो लावा तुम्ही, महाराजांच्या बाजूला नाही।
4: लेकिन ये बात बीजेपी को नागवाद गुजरी, उसने इसे संविधान का उल्लंघन बताया।
16: जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो नेता है अमित ठाकरे और उनके कार्यकर्ताओं ने मोदी जी की तस्वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर के बगल में लगाई है, वो निकाली है। मुझे ऐसा लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ये अपनी अस्मिता है, सभी लोगों की अस्मिता है, वैसे वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की भी अस्मिता है। केवल इसके ऊपर राजनीतिक बवाल करके लोगों को कंफ्यूज करना, ये बात गलत है। छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे देश के, हिंदुस्तान की शान है, और मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री, एक संविधानिक प्रधानमंत्री है। उनकी तस्वीर तो सभी शासकीय कार्यालयों में, ऑफिसों में लगाई जाती है, लेकिन गलती से अगर अनावधान से किसी ने ये तस्वीर बगल में लगाई है तो उस प्रशासन से बात करके उनको वो निकाला जा सकती है, बाजू में लगाई जा सकती है, लेकिन इसके ऊपर गंदी राजनीति करना ये गलत।
4: बवाल बढ़ा तो अमित ठाकरे और एमएनएस कार्यकर्ताओं के खिलाफ पीएम मोदी की फोटो हटाने को लेकर पुणे में केस दर्ज कर दिया गया। लेकिन केस दर्ज होने के बाद अमित ठाकरे ने कहा कि शिवाजी महाराज के सम्मान से समझौता नहीं हो सकता, उसके लिए सरकार चाहे कितने भी केस कर ले।
15: माझ्यावर पहिला गुन्हा दाखल झाला तो पण छत्रपती शिवाजी महाराजांसाठी होता, आणि आता दुसरा गुन्हा दाखल झाला शिवाजी महाराज आणि बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांच्यासाठी आहे, अत्यंत अभिनंदन।
4: वहीं पूरे मामले में शिवसेना यूबीटी ने राज ठाकरे के बेटे अमित का समर्थन करते हुए कहा कि उनके खिलाफ केस दर्ज करना तानाशाही है।
17: हर बात पर रोना धोना, सहानुभूति बटरना, यह मानो भारतीय जनता पार्टी की एक फितरत सी बन गई है। मन से नेता अमित ठाकरे, इन्होंने कहीं भी नहीं कहा कि मोदी जी का फोटो ही नहीं चाहिए। सरकारी आस्थापनाओं में इस देश के प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति का फोटो होना, यह बात हम समझ सकते हैं, किंतु इस देश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक या दार्शनिक आधारशिला जिन लोगों ने रखी है या धरोहर जिन लोगों ने रखी है, ऐसे महापुरुषों के बराबरी में किसी भी राजनेता के फोटो नहीं चाहिए। यह
18: और उधर महाराष्ट्र के ठाणे जिले के शाहपुर से एक शर्मनाक खबर सामने आई है। आपको बता दें कि ट्राइबल बोर्डिंग स्कूल के किचन हेल्पर पर क्लास 6 से 10वीं तक की 22 छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। छात्राएं जब किचन में बर्तन रखने जाती थीं, तब वो आरोपी उनसे बदसलूकी करता था। और हैरत की बात यह है कि आरोपी साल 2024 में भी पॉक्सो मामले में जेल जा चुका था, फिर भी जमानत मिलते ही उसने दोबारा उसे स्कूल में नौकरी दे दी। और छात्राओं की लिखित शिकायत के बावजूद पुलिस ने आरोपी को फिर से गिरफ्तार किया है और ITDP विभाग ने भी कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया।
19: मामा मुलींच्या कुठे पण अंगाला हात लावत होता। मुलींच्या अंगाला हात लावत होता।
15: तुला काय त्रास दिला होता त्यांनी?
19: हाताला इथं असं केलं त्यांनी।
20: हम इस वक्त मौजूद हैं जो आदिवासी प्रकल्प अधिकारी का दफ्तर है, शाहपुर का वहां पर, और जो आश्रमशाला में घटना हुई है उस बारे में बात करेंगे बीआर जाधव सर से, जो कि यहां पर असिस्टेंट प्रकल्प अधिकारी हैं और शिक्षण विभाग के हैं। सर ये बताइए कि गणपत गवली जो है, जो आरोपी है, और उसके ऊपर 2024 में भी एक केस हुआ था एक आश्रमशाला में एक महिला विद्यार्थी के साथ छेड़छाड़ करने का, मोलेस्टेशन का मामला दर्ज हुआ था, उसके बाद वो जेल भी गया था, और उसके बाद अब फिर से उसकी एक आश्रमशाला में जहां पे महिला विद्यार्थी नहीं है वहां पे कैसे उसका अपॉइंटमेंट हो गया?
21: महिला विद्यार्थिनी जो है उनके बारे में ये सब घटना हुई है, तो जिस समय वहाँ के एचएम है और सुप्रिटेंडेंट है, तो उन लोगों को जब पता चली ये बात तो उन्होंने एचएम को बताया, तो एचएम ने फिर हमको कॉल पे भी बताया था कि ऐसी ऐसी घटना हुई है।
18: तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: सॉरी।

0: बिश्केक में गर्मजोशी के साथ पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई। बातचीत में यूक्रेन का मुद्दा भी उठा। प्रधानमंत्री ने कहा, युद्ध मानवता के लिए खतरा, भारत शांति का पक्षधर। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी 7.8% रही। प्रधानमंत्री मोदी बोले, निराशावादी लोगों की हुई हार। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी विरोध प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट में पहुंची दिल्ली पुलिस। 13 एफआईआर रद्द करने की इजाजत मांगी। आपराधिक पृष्ठभूमि के 2873 लोगों पर दर्ज हो केस। नेपाल में त्रासदी के बाद मरने वालों का नहीं थम रहा है आंकड़ा। 939 लोगों की गई जान, 3900 से ज्यादा लापता। रेस्क्यू के काम में भारतीय एक्सपर्ट्स भी शामिल। और मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से लिया संन्यास। अर्जेंटीना के कप्तान ने कहा अलविदा। सोशल मीडिया पर फैंस को लिखा भावुक पत्र।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: बिश्केक में गर्मजोशी के साथ पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई। बातचीत में यूक्रेन का मुद्दा भी उठाया। बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक साथ नोमाड गेम्स कार्यक्रम के लिए रवाना हुए। एक बार फिर से कार डिप्लोमेसी की झलक के तौर पर इसे देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, युद्ध मानवता के लिए खतरा है, भारत शांति का पक्षधर है। पुतिन से बोले प्रधानमंत्री मोदी, अंतहीन युद्ध से युद्ध के अंत की ओर बढ़ना होगा।
1: एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर, उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: जल सिंधु जल संधि पर भारत का करार जवाब, हेग कोर्ट के फैसले को किया खारिज, कहा यह अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। पाकिस्तान को झटका लगा। 25 साल पुराना सोन नदी जल बंटवारा विवाद सुलझा, बिहार को 5.75 और झारखंड को 2 MAF पानी पर समझौता। सोन नदी जल बंटवारे पर बिहार झारखंड में समझौता, अमित शाह बोले 25 साल पुराने विवाद खत्म हुआ। दिल्ली में ड्राफ्ट मतदाता सूची तैयार करने में 33,226 बूथ लेवल एजेंट जुटे। इंदौर में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज, कार्यक्रम में सियासत, नेहरू स्टेडियम की अनुमति को लेकर कांग्रेस अड़ी, स्टेडियम की मांग अनुमति में देरी पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे पाटिल का ऐलान, 12 सितंबर से मुंबई में आंदोलन की तैयारियां। जरांगे का एकनाथ शिंदे पर हमला, 58 लाख कुड़बी, रिकॉर्ड कम हुआ तो घटेगा राजनीतिक वजन। पुणे के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में खराब खाने और अव्यवस्थाओं को लेकर कॉलेज पहुंचे अमित ठाकरे, प्रिंसिपल के सामने उठाए सवाल। शिवाजी महाराज की प्रतिमा के पास लगी प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर, एमएनएस कार्यकर्ताओं ने हटाई, तस्वीरें भी सामने आई। छत्रपति संभाजी नगर में हाई कोर्ट के लिपिक परीक्षा दोबारा कराने के फैसले का छात्रों ने स्वागत किया, आंदोलन को बताया सफल। नागपुर में युवा कांग्रेस का मनुस्मृति दहन आंदोलन, आरएसएस कार्यालय की ओर से बढ़ रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया था। इंदौर में खाद्य सुरक्षा प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, ए डेली पिज्जा और बिग बास्केट और सोशल इंदौर के लाइसेंस को निलंबित किया गया। एम्स सीआरई 5 री एग्जाम में भी सर्वर ने धोखा दिया, जयपुर सेंटर पर फिर से बवाल हुआ, अभ्यर्थियों का हंगामा। शुद्धिकरण विवाद पर सियासत तेज हुई, कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं पर SC ST एक्ट में केस की मांग की है। राहुल गांधी पर SC ST एक्ट में केस में विरोध में देहरादून में कांग्रेस का प्रदर्शन, बीजेपी ने पुतला फूंका। बिहार में बीपीएससी TRE4 की 32,388 शिक्षक पदों पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया टली। पठानकोट सिविल अस्पताल में आउटसोर्स कर्मचारियों का धरना, 1.5 घंटे प्रभावित रही ओपीडी पर्ची की व्यवस्था। बाराबंकी में माला पहनाते ही धड़ाम हुआ मंच, 3 कार्यकर्ताओं को मामूली चोटें आई, 150 गाड़ियों के काफिलों के साथ पहुंचे थे हरीश द्विवेदी। मुजफ्फरपुर में जमीन कब्जा गिरोह पर बड़ा एक्शन, 28 FIR में 7 की गिरफ्तारी, विधायक अमित रानू पर भी 8 प्राथमिकी, अब पुलिस गिरफ्तारी के लिए वारंट का इंतजार। संभल में सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजार पर बुलडोजर चलाया गया, प्रशासन ने कब्जा हटाया। नेपाल के बुसी तुसु इलाके में 25 लोग बचाए गए, रेस्क्यू में 15 हेलीकॉप्टर्स लगे, मौत का आंकड़ा 900 के पार, 4200 से ज्यादा लापता। नेपाल में बाढ़ के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हुआ, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की सुरंगों में फंसे 933 लोगों की तलाश जारी। नेपाल में तबाही की वजह से भूकंप या GLOF नहीं है, हिमालय में भारी बर्फ पत्थर गिरने से आई थी बाढ़, विशेषज्ञों का बयान। नेपाल त्रासदी के बीच सादगी से नई ट्रेन की शुरुआत, योगी वैष्णव ने 2 मिनट का मौन रखकर किया रवाना। नेपाल त्रासदी के बाद कुशीनगर पहुंच रहे शव, नारायणी नदी से अब तक 13 शव बरामद किए गए। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी में आई भीषण बाढ़ ने मचाई है तबाही। मंदाकिनी नदी का जलस्तर बहुत बड़ा, रामगढ़ किनारे बने कई घर क्षतिग्रस्त हुए, खतरे के निशान से ऊपर है जलस्तर। ऋषिकेश में 2 वाहनों की जोरदार टक्कर में फंसे 4 लोग, SDRF ने अभियान चलाकर 4 लोगों को वाहन से बाहर निकाला। उत्तराखंड के बागेश्वर में पहाड़ दर का 70 परिवारों पर मंडराया है खतरा। चंदौली में बाढ़ में फंसे लोगों के लिए देवदूत बनी है पुलिस, चंद्रप्रभा नदी में फंसे 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया। भारी बारिश के बावजूद उत्साह से जारी है केदारनाथ यात्रा, अभी तक 14,73,000 से ज्यादा भक्त कर चुके हैं दर्शन। नवगछिया में बारिश का कहर, कोसी के पानी में डूबा है पूरा गांव, 15 दिनों से घर बार जलमग्न। नवगछिया में बारिश के कारण कोई छत पर तो कोई रेलवे पटरी किनारे रहने को मजबूर है। 15 साल से टूटे रिंग बांध को बनाने का इंतजार, सरकार ने मदद की गुहार लगाई। कुल्लू के निर्मंड में अचानक से दरका पहाड़, 200 मीटर सड़क गायब हुई, यातायात प्रभावित हुआ, सड़क बहाली में जुटा हुआ है पीडब्ल्यूडी विभाग। रायपुर में भारी बारिश से कई इलाकों में भर गया पानी, लोगों की बढ़ गई है परेशानी। उत्तराखंड और हिमाचल सहित कई राज्यों में फिर से सक्रिय होगा मॉनसून, मौसम विभाग ने जारी किया है भारी बारिश का अलर्ट। पुणे में शराब के नशे में पुलिस वालों से बदसलूकी, पुलिस कर्मियों को दी गालियां, फिर नशा उतरा तो माफी भी मांगी। वाशिम में 2 सिलेंडर और गैस कटर लेकर तिजोरी काटने के लिए ज्वेलर की दुकान में आए थे 5 डकैत, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। असम के बोकाखाट में लगी भीषण आग से 4 दुकानें जलकर खाक हुई, आग के आसपास की दुकानें भी जली, एक के बाद एक कई सिलेंडर्स भी फटे। गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में एयर फिल्टर फैक्ट्री में भीषण आग लगी, 2 घंटे में इस पर काबू पाया जा सका। अलवर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हुआ, आगे चल रहे कंटेनर से टकरा गई थी मर्सिडीज कार, गाड़ी चला रहे इंजीनियर छात्र की मौत हुई। सेलम में पानी की टंकी में महिला के कटे हुए शरीर के अंग मिलने के बाद लोग हैरान, जांच में जुटी हुई है पुलिस। जालना में शॉर्ट सर्किट से 4 एकड़ गन्ना जलकर खाक हुआ, किसानों

आते हुए चूहे का वीडियो वायरल हुआ है। रेलवे प्रशासन ने तुरंत ही फूड स्टॉल को सील करवा दिया है। जामनगर में हाईवे पर ट्रिपल सड़क हादसा, कार बाइक रिक्शा की टक्कर में 3 की मौत हुई, 5 बच्चे और 2 महिलाएं इसमें घायल। औरैया में 9 साल का मासूम खेलते समय गहरे कुएं में गिरा, फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू करके सुरक्षित बाहर निकाला। दिल्ली में स्लीपर बस में 16 साल की लड़की के साथ गैंगरेप, आरोपी बस कंडक्टर और ड्राइवर गिरफ्तार। गोरखपुर में मां से नाराज होकर लड़की ने पानी की टंकी से कूदने की कोशिश की, महिला दरोगा ने सूझबूझ से बचाई उसकी जान। दुर्ग में मेयर की गाड़ी को भीषण आग लगी, गाड़ी जलकर खाक हुई, शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका। गुजरात के नवाबंदर समुद्र में मछली पकड़ने गई नाव डूब गई थी, 5 मछुआरों का रेस्क्यू किया गया। पुणे में एक सोशल मीडिया शूट के लिए ट्रैफिक रोके जाने पर हंगामा हुआ, विवाद सामने आया। यमुनानगर के खेतों में 10 फीट के अजगर से मच गया था हड़कंप, 20 किलो के कुत्ते को निकलने का दावा, वाइल्ड लाइफ टीम ने रेस्क्यू किया। पुरी में खुद रुकनी ओषा पूजा के लिए फूल तोड़ने गई लड़की का हाथ लोहे की ग्रिल में फंसा, इलाज के लिए लोहे की ग्रिल काट कर ले जाना पड़ा अस्पताल। कौशाम्बी में अवैध फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ, 11 की मौत हुई, पिपरी थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर, 2 बीट कांस्टेबल सस्पेंड। कौशाम्बी घटना पर सीएम योगी का बड़ा ऐलान, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, घायलों को 50,000 का मुआवजे का ऐलान। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर, रंग बिरंगी लाइटों से मंदिरों को सजाया गया, भगवान कृष्ण की लीलाओं को लाइटों के जरिए दर्शाया गया, 4 सितंबर को मनाया जाएगा जन्माष्टमी का पर्व। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 300 सीसीटीवी कैमरों में कैद होगा, श्रद्धालुओं की निगरानी रखी जाएगी। श्रद्धालुओं के लिए मेडिकल सुविधाओं का भी खास इंतजाम होगा, 8 एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौजूद होंगी। महाराष्ट्र में बीड़ के अंबाजोगाई में अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए नंगे पैर दौड़ी मां, मैराथन रेस जीती। सतपुड़ा की पहाड़ियों में 3,000 फीट की ऊंचाई पर धारगढ़ में आस्था का सैलाब उमड़ा, गुफा में विराजमान स्वयंभू महादेव के दर्शनों को हजारों श्रद्धालु पहुंचे। भारतीय नौसेना को मिली बड़ी ताकत, आज बेड़े में शामिल हुआ एनएस निपुण, ये जहाज समुद्र की गहराई में गोताखोरी और अंडर वाटर ऑपरेशंस में मदद करेगा। एनएस निपुण के शामिल होने से नौसेना के गहरे समुद्र में काम करने की क्षमता और मजबूत हुई है। एनएस निस्तार के साथ मिलकर ये दोनों ही जहाज अंडर वाटर मिशन में अहम भूमिका निभाएंगे। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देश के लिए अच्छी खबर है, पहली तिमाही में देश की जीडीपी विकास दर 7.8। मेसी का बड़ा ऐलान, अर्जेंटीना का राष्ट्रीय टीम से लिया संन्यास, बोले आप मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं। 20 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर को मेसी ने अलविदा कहा, बोले हमने साथ मिलकर वो पल जिए जिनका कभी सपना देखा था। वैभव सूर्यवंशी ने 81 गेंदों पर 92 रन बनाए, दलीप ट्रॉफी में सबसे कम उम्र में 50 का रिकॉर्ड बनाया, 7 छक्के और 4 चौके लगाए। राजकुमार संतोषी की नई फिल्म में सनी देओल की एंट्री, 1996 में रिलीज फिल्म, घातक से जुड़े किरदारों की दिखाई जाएगी कहानी। मुसाफिर कैफे की सफलता के बाद विक्रांत मैसी की लॉटरी लगी है, फिल्म कर्ण में नजर आएंगे, सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। बिलेनिया सीरीज में विजय माल्या के रोल में नजर आएंगे अर्जुन रामपाल, नवंबर में शुरू होगी फिल्म की शूटिंग। अनुमान अंश बनी 2026 की सरप्राइज ब्लॉकबस्टर, 2 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने अब तक की 39 करोड़ की कमाई। टॉक्सिक ने कमाई में कुरुप्पू को पछाड़ा, जननायकन को भी छोड़ा पीछे, 6 दिनों में पार किया 200 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा। 1 सितंबर से टैक्स, एलपीजी और बैंकिंग से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे, ITR 3, ITR 4 और एलपीजी ग्राहकों के लिए बायोमेट्रिक EKYC की आखिरी तारीख 31 अगस्त। गोल्डमैन सैक्स ने 2026 के आखिरी तक सोने का भाव $4,900 प्रति औंस तक पहुंचने का अनुमान लगाया है, सेंट्रल बैंकों की खरीदारी जारी रहने से तेजी की उम्मीद। 31 अगस्त से शुरू होने वाले हफ्ते में 3 मेन बोर्ड और 4 SME IPO खुलेंगे, इन 7 IPO से कंपनियां करीब 1,415 करोड़ रुपए जुटाएंगी। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक तेल निर्यात 15 से 16 मिलियन बैरल रोजाना पहुंचा है, लंबे समय तक सप्लाई बाधित रहने पर ब्रेंट क्रूड के $120 प्रति बैरल तक जाने की संभावना। यस सिक्योरिटीज के मुताबिक अगस्त में पैसेंजर व्हीकल की रिटेल डिमांड 9 से 10% तक बढ़ सकती है, ओणम और सप्लाई चेन में सुधार से सहारा मिलने की उम्मीद। CLSA के मुताबिक अगस्त में टॉप 10 शहरों में फ्लिपकार्ट मिनट्स के 627 डार्क स्टोर हो गए हैं, स्विगी इंस्टामार्ट के 615 स्टोर को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया है। देश में चीनी की औसत खुदरा कीमत अभी भी 7 रुपए प्रति किलो के पार है, एक हफ्ते में 1.77% बढ़कर 64.24 रुपए किलो के स्तर पर मौजूद है। आदित्य बिरला कैपिटल के मुताबिक 2031 तक ब्यूटी पर्सनल केयर बाजार दोगुना हो जाएगा, 2026 के $23 अरब से बढ़कर 2031 तक $42 अरब होने का अनुमान है।

में भी भारत के यूपीआई से जुड़ने के बाद कई देशों में यूपीआई ऑपरेशन सफल। भारत की डिजिटल पेमेंट व्यवस्था की ग्लोबल पहुंच में महत्वपूर्ण प्रगति। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक 2047 तक विकसित देश बनने का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल है। 9% या उससे ज्यादा आर्थिक विकास दर बनाए रखकर ही मिलेगा टारगेट। ईरान अमेरिका जंग के बीच राष्ट्रपति पजिश्कियान से मिले प्रधानमंत्री मोदी। एससीओ समिट में अलग हुई मुलाकात। दोनों ही देशों के बीच ऊर्जा संकट समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल से भी मुलाकात। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिश्कियान का बड़ा बयान। कहा ईरान युद्ध नहीं चाहता लेकिन आक्रामकता का निर्णायक जवाब देने में सक्षम है। साथ ही कहा क्षेत्रीय अस्थिरता किसी भी देश के हित में नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान। का ईरान अब एक असफल देश है। हॉर्मुज में नाकेबंदी अविश्वसनीय है। हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें आर्थिक चोट पहुंचा रहे हैं। ईरान के खार्ग द्वीप पर हमले से इनकार किया। कहा खार्ग द्वीप पर हमले में कोई सबूत हमारे खिलाफ नहीं। ईरानी अधिकारियों ने ट्रंप के पोस्ट को बताया हास्यास्पद। मक्का में रक्षा समझौते के बाद पाकिस्तान तुर्की और सऊदी अरब की पहली रक्षा बैठक। इस्तांबुल में तीनों ही देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों से मुलाकात की। उत्तर कोरिया ने अमेरिका की परमाणु हथियार छोड़ने की मांग को ठुकराया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा अमेरिका की शत्रुतापूर्ण नीति में कोई बदलाव नहीं आया, इसीलिए देश की सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार जरूरी। इंडोनेशिया की अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ। सुपर गरुण शील्ड सैन्य अभियान में जापान, दक्षिण कोरिया और कैनेडा समेत 15 देशों के करीब 5,000 सैनिकों ने हिस्सा लिया। इसराइली हमले में गाजा में राहत गोदाम तबाह हुआ। बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए संकट ज्यादा गहरा है। यूएस ओपन के पहले राउंड में हारे नोवाक जोकोविच। हार के बाद यूएस ओपन से हुए बाहर। पहले दौर में अर्जेंटीना के मारियानो ने जोकोविच को हराया।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर किर्गिस्तान के बिश्केक से है, जहां SCO समिट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन मुद्दे पर भारत का रुख जो है वो स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत शांति का पक्षधर है, इसलिए पुतिन को युद्ध रोकने की पहल करनी चाहिए। इस मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के अलावा किर्गिस्तान और आर्मेनिया के राष्ट्र प्रमुखों के साथ भी द्विपक्षीय बैठक कर चुके हैं। इन मुलाकातों के साथ आपको कल होने वाली प्रधानमंत्री मोदी, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बारे में बताएंगे। इस मुलाकात पर किसकी नजर है? जी हां, डोनाल्ड ट्रंप की सीधी नजर है, और वो क्यों बनी हुई है और क्या ट्रंप इस मुलाकात को लाइव देखेंगे? आज आपको ये भी बताएंगे कि आखिर SCO समिट में ऐसा क्या है जो अमेरिका को परेशान कर रहा है। कहानी पूरी तरह से ताकत के समीकरण की है। आखिर डोनाल्ड ट्रंप SCO समिट पर हर बार परेशान क्यों होते हैं? दशकों तक अमेरिका और यूरोप को लगता था कि एशिया के देश ये क्या कर लेंगे, एशिया के देश एक मंच पर आ ही नहीं सकते, और आ भी गए तो क्या कर लेंगे, कभी भी बड़े प्लेयर नहीं बन सकते। लेकिन जब SCO के बहाने भारत, रशिया, चाइना एक साथ फ्रेम में आ रहे हैं तो अमेरिका के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। भारत अपनी कूटनीति के दम पर दोनों तरफ संतुलन बना रहा है। इसके बाद आपको ईरान पर अमेरिका के बड़े हमले के बारे में बताएंगे। अमेरिका ने ईरान के लारक और खार्क द्वीप पर हमला किया है। लारक द्वीप पर हमले की जानकारी अमेरिका की सेना पहले ही दे चुकी थी। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि खार्क आइलैंड को भी निशाना बनाया गया है। इसके जवाब में ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। देखिए,

और इसके बाद आपको नेपाल में आई तबाही के पीछे की वजह बताएंगे। शुरुआत में कहा गया था कि तिब्बत में ग्लेशियर फटने, चाइना की चुप्पी की वजह से तबाही आई। नेपाल में अनेकों वैज्ञानिक एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि चाइना ने पहले बताया होता तो शायद लोग बच जाते। नेपाली वैज्ञानिकों और रॉयटर्स की नई रिपोर्ट में अब यह दावा किया है कि आपदा किसी झील के फटने से नहीं बल्कि 5000 मीटर की ऊंचाई से बर्फ और चट्टानों के अचानक गिरने से हुई थी। इस मलबे की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। और इसके बाद आपको बताएंगे कि न्यूयॉर्क में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने न सिर्फ भारत विरोधी नारे लगाए बल्कि तिरंगे का भी अपमान कर दिया। इस हरकत पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि तिरंगे के अपमान की कीमत चुकानी होगी। दूसरी तरफ मोहन भागवत के उस बयान पर भी सियासी पारा चढ़ गया है जिसमें उन्होंने कहा कि जो मुसलमानों को देश से निकालने की बात करे वो हिंदू हो ही नहीं सकता। और इसके बाद आपको हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान मर्डर केस के बारे में बताएंगे। हत्या के 4 दिन के भीतर पुलिस ने मुठभेड़ में शामिल रहे 2 शूटर्स मोहित और सुमित का एनकाउंटर कर दिया। अब इस एनकाउंटर के बाद सियासी पारा भी चढ़ गया है। अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए जिस पर अंकित के पिता ने नाराजगी जताई है और कहा है कि अभी तो 2 ही मरे हैं, आधा इंसाफ बताया है, बाकी 2 फरार आरोपी सत्यम और आर्यन पर भी जल्द शिकंजा कसने की मांग की है। इसके बाद आपको संभल में फिर से बुलडोजर एक्शन दिखाएंगे। यहां प्रशासन ने चारागाह की सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजार को ध्वस्त किया। प्रशासन और राजस्व विभाग की टीम के अलावा मौके पर भारी पुलिस फोर्स लगाई गई। करीब 20 मिनट तक बुलडोजर कार्रवाई चली। और इसके बाद आपको बताएंगे कि देश की बहुत सारी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो कैसे अपनी रैंक बढ़ाने के लिए किस तरह का झोल करते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की टॉप रैंकिंग के पीछे असल खेल इंडियन पेटेंट ऑफिस के आंकड़ों से सामने आया है। अब ये यूनिवर्सिटी तमाम फिजूल के जो पेटेंट्स हैं उनको फाइल कर देते हैं। असल में इनका मकसद कुछ नया खोजना नहीं है बल्कि NIRF रैंकिंग के उस नियम का फायदा उठाना है जो सिर्फ पेटेंट फाइल और पब्लिश होने पर पॉइंट्स दे देता है, फिर चाहे वो कोई बेतुकी भी चीज हो, क्योंकि उसके मेरिट को देखा नहीं जाता है। और आखिर में आपको पूर्व टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर की वो तस्वीर दिखाएंगे जब वो रो पड़े। एक वक्त था जब कोर्ट पर गुस्सा उतारने वाले रोजर फेडरर के हाथों में रैकेट टूट जाते थे, लेकिन जब इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में उन्हें टेनिस के सर्वकालिक महान का ताज पहनाया गया तो वही लेजेंड अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए। लेकिन इस वक्त SCO समिट को लेकर 3 बड़े अपडेट्स हैं जो आपको बताना चाहते हैं। पहला बड़ा अपडेट यह है कि जिस वक्त हम आपको यह खबर दिखा रहे हैं तब किर्गिस्तान में राष्ट्रपति सादिर जापरोफ SCO समिट में आए सभी राष्ट्राध्यक्षों के सम्मान में एक शानदार गाला डिनर होस्ट कर रहे हैं। दूसरा, आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की अपील की है। और तीसरा अपडेट यह है कि SCO का 26वां शिखर सम्मेलन कल सुबह 9:50 से दोपहर 1 बजे तक चलेगा जिसमें चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे 1 साल बाद एक ही मंच पर नजर आएंगे। और इसके बाद ऐसी उम्मीद है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स समिट में भी शामिल हो सकते हैं।

0: तो काफी भव्य रंगारंग कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है और एआई और ग्राफिक्स का किस तरह से इस्तेमाल हुआ है वो भी आप देख रहे हैं। जब भारत की टीम को बुलाया गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका अभिवादन किया और बहुत ही खुशनुमा इस वक्त वहां पर तस्वीरें। इस वक्त लेकिन जब आप देख रहे हैं तो एक गाला डिनर वहां पर चल रहा है। इससे पहले आज शाम प्रधानमंत्री मोदी और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय मुलाकात हुई जो आधे घंटे तक चली। इस मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि हमें युद्धों से हटकर अब आगे बढ़ना चाहिए, युद्ध का हर एक दिन मानवता को पीछे धकेल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अब एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर की तरफ बढ़ना होगा, यानी अंतहीन युद्धों से युद्ध के अंत की तरफ जाना होगा। जबकि राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि भारत और रशिया का रिश्ता अटूट है और रशिया अब भी भारत के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत कर रहा है।
1: Prime Minister, of course, this is aided by your special attention to the Russian-Indian relations.
2: जैसा कि आप जानते हैं, भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देती है, उमंग से भर देती है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर, उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: पिछले एक साल में राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की यह तीसरी मुलाकात है। इनमें पहली मुलाकात चाइना के त्यानजिन शहर में सितंबर 2025 को हुई थी। दूसरी मुलाकात दिसंबर 2025 में हुई जब राष्ट्रपति पुतिन भारत के दौरे पर आए थे और तीसरी मुलाकात आज हुई है। और कूटनीतिक रूप से इस मुलाकात के चार बड़े मायने हैं। पहला, जब अमेरिका और पश्चिमी जितने देश हैं वो रशिया को पूरी तरह अलग थलग कर रहे हैं, तब प्रधानमंत्री मोदी का राष्ट्रपति पुतिन से हाथ मिलाना यह दिखाता है कि भारत अपनी विदेश नीति किसी के दबाव में तय नहीं करता और हम अपने कूटनीतिक संबंधों को बैलेंस करेंगे। हम रशिया से अच्छा रिश्ता रखेंगे, अमेरिका से भी अच्छा रिश्ता रखने की कोशिश करेंगे। दूसरा, यूक्रेन युद्ध के बाद से रशिया कूटनीतिक रूप से चाइना के ज्यादा करीब आया है और ऐसे में भारत के लिए जरूरी है कि वो रशिया के साथ मजबूत रिश्ते रखे ताकि मॉस्को पूरी तरह बीजिंग के पाले में ना चला जाए। तीसरा, ये मुलाकात भारत में 11 दिनों बाद होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए एक मजबूत नींव की तरह है जहां राष्ट्रपति पुतिन खुद भारत का दौरा करने वाले हैं। और चौथा, भारत अपनी विदेश नीति से यह स्पष्ट कर रहा है कि रशिया के साथ उसके रिश्ते किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं है बल्कि ये विशुद्ध रूप से भारत के अपने राष्ट्रीय हित, अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए है। यानी जब राष्ट्रपति ट्रंप रशिया के साथ भारत के रिश्तों को लेकर एतराज जताते हैं, कहते हैं कि वो युद्ध में लगा हुआ है फिर भी उससे तेल खरीद रहे हैं, तब भारत अपने इस रुख पर कायम है कि रशिया के साथ हमारा रिश्ता किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं है और रशिया हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी है, सहयोगी भी है। अब उदाहरण के लिए, मौजूदा वक्त में भारत अपनी जरूरत का जानते हैं 50% यानी आधा कच्चा तेल अकेले रशिया से खरीद रहा है। इसके अलावा रशिया आज भी भारत को कई आधुनिक हथियार निर्यात कर रहा है जिनमें S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। ऐसा माना जा रहा है कि इस मुलाकात में भी S-400 की आपूर्ति और ऊर्जा संकट को लेकर चर्चा हुई है। इसके पीछे कारण यह है कि यूक्रेन लगातार रशिया की तेल रिफाइनरीज को निशाना बना रहा है जिसके कारण रशिया को अब पेट्रोल दूसरे देशों से खरीदना पड़ रहा है और इनमें भी भारत काफी ऊपर है। पिछले 2 महीनों में भारत ने रशिया को, जानते हैं, 10 लाख बैरल पेट्रोल निर्यात किया है। जिस पर राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच आज बात हुई। देखिए,
3: मैं ये बहुत खुशी के साथ कहना चाहूँगा कि रूस और भारत के संबंध खास, बेहतर और आपसी साझेदारी के सिद्धांत के आधार पर लगातार मजबूत हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री, बेशक इसमें रूस भारत संबंधों पर आपके खास ध्यान और हमारे बीच बने कारोबारी और दोस्ताना रिश्तों की बड़ी भूमिका है और इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। हाल ही में आपके विदेश मंत्री श्री जयशंकर ने मॉस्को का दौरा किया और आपका संदेश पहुँचाया। मैं उन सभी बातों से पूरी तरह सहमत हूं। अगले साल हम अपने राजनयिक संबंधों की 80वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और बेशक हम सितंबर में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए भी गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं। हमारे बीच पर्यटकों का आना जाना भी सक्रिय रूप से हो रहा है और हमने इसमें 16% की बढ़ोतरी देखी है। हम संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, G20 और SCO में अपने प्रयासों में करीबी तालमेल रखते हैं और आज हमारे पास अपने विचारों पर चर्चा करने और रूस भारत संबंधों के विकास के लिए भविष्य के सहयोग की योजना तैयार करने का अच्छा मौका है। G20 and the SCO. And today we have a good chance to compare our notes and to outline a future cooperation.
2: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका और आपके डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा। धन्यवाद। स्पासिबा।
0: यहां ये भी समझिए कि राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी, इनकी मुलाकात मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर में अहम क्यों मानी जाती है। इसे आप इस लाइन से समझिए जिसमें भारत के लिए ये कहा जाता है कि फ्रेंड ऑफ द वेस्ट बट नॉट अ फॉलोअर ऑफ द वेस्ट, यानी भारत पश्चिमी देशों का सहयोगी, उनका फॉलोअर नहीं है। जैसे भारत आज अमेरिका का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है, लेकिन भारत रक्षा सहयोग रशिया से भी करता है, ऊर्जा संबंध रशिया से भी रखता है, परमाणु सहयोग रशिया से भी करता है और उसके साथ व्यापार भी बढ़ा रहा है। दूसरा, इस मुलाकात से यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को भी चुनौती मिलती है। याद रखिए, यह ऐसा वक्त है जब अमेरिका यूनिलैटरली कई मुद्दों पर फैसले ले रहा है, यूनिलैटरली काम कर रहा है, यूनिलैटरली पॉलिसीज चला रहा है। खुद युद्ध के खिलाफ रशिया पर प्रतिबंध लगाता है और फिर ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ देता है। तो परिस्थितियां बहुत ही ऐसी हैं जहां पर अमेरिका जिस तरह के कदम उठा रहा है उसकी वजह से पूरे विश्व में एक अलग संदेश है। अब देखिए, शीत युद्ध खत्म हुआ और उसके बाद दुनिया में लंबे समय तक अमेरिका सबसे प्रभावशाली शक्ति रहा, लेकिन दुनिया बदल रही है। चाइना उठ रहा है, भारत उभर रहा है, रशिया अपनी शक्ति बनाए रखना चाहता है। ये सारी बातें मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ इशारा करती हैं, जिसमें दुनिया में शक्ति का केंद्र बिंदु सिर्फ कोई एक देश नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी बात, भारत और रशिया का रिश्ता बहुत नेचुरल है, यानी ऑर्गेनिक है। दुनिया में बहुत सारे रिश्ते परिस्थितियों से बनते हैं, लेकिन भारत और रशिया, हमारे रिश्तों की खासियत यह है कि उन्होंने शीत युद्ध देखा, सोवियत संघ का विघटन देखा, अमेरिका भारत की बढ़ती दोस्ती देखी, रशिया चाइना की बढ़ती नजदीकी देखी, यूक्रेन युद्ध देखा, पश्चिमी प्रतिबंध देखे, लेकिन फिर भी ये रिश्ता बना रहा। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की हर मुलाकात दुनिया को यह बताती है कि वक्त बदल रहा है, लेकिन दोनों देशों के रिश्ते आज भी कायम है। वो गर्माहट, वो गर्मजोशी, और आप प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की ये कार वाली डिप्लोमेसी एक बार फिर से देखिए आज शाम की।

आज प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनयान से एससीओ समिट के मेजबान देश किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादर जापारोव और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान तीनों से ही बायलैटरल मीटिंग की है, द्विपक्षीय मुलाकात की है। और यह मुलाकात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ वक्त से ईरान पर यह आरोप लगा है कि उसकी तरफ से हॉर्मुज में भारतीय जहाजों पर हमला हुआ है। देखिए,

0: क्या आप जानते हैं एससीओ संगठन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है क्षेत्रीय आतंकवाद और उग्रवाद को रोकना। लेकिन विडंबना यह है कि जिस पाकिस्तान में आतंकवादियों के सबसे ज्यादा टेरर कैंप्स हैं, वही पाकिस्तान इस एससीओ संगठन का स्थायी सदस्य है। एससीओ बना ही इसीलिए था, काउंटर टेररिज्म, आतंकवाद से लड़ने के लिए। भारत साल 2017 में जब भारत को एससीओ का स्थायी सदस्य बनाया गया, तभी चाइना के कहने पर पाकिस्तान को भी संगठन में जगह दे दी गई। और हमें बताते हुए अफसोस हो रहा है कि पाकिस्तान भी संगठन की बैठकों में आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा करता है, जबकि इसी साल अमेरिकी संसद में पेश हुई रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को सुरक्षित पनाह दे रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने पाकिस्तान को कई आतंकवादी संगठनों के लिए बेस ऑफ ऑपरेशंस के रूप में पहचाना है। यानी पाकिस्तान केवल ऐसा देश नहीं है जहां से आतंकी हमला करते हैं, बल्कि वहां ऐसे आतंकी संगठन भी सक्रिय हैं जो पाकिस्तान से काम करते हैं, पड़ोसी देशों में हमले करते हैं, पूरी दुनिया के आतंकवादी नेटवर्क्स का हिस्सा है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इनमें कई आतंकी संगठन पाकिस्तान में साल 1980 से काम कर रहे हैं। यानी एससीओ बना 2001 में और पाकिस्तान आतंकवादियों का पालन पोषण कब से कर रहा है? 1980 से कर रहा है। यही नहीं, इस रिपोर्ट में लिखा है कि पाकिस्तान में अलग अलग श्रेणी के आतंकी संगठनों को शरण मिली हुई है। जैसे इनमें पहले है ग्लोबली ओरिएंटेड, यानी जिनका लक्ष्य पूरी दुनिया या वैश्विक जिहाद है। दूसरे हैं अफगानिस्तान ओरिएंटेड, यानी जिनका असली निशाना अफगानिस्तान है, उसको टारगेट करना। तीसरा है कश्मीर ओरिएंटेड, यानी जो जम्मू कश्मीर को अस्थिर करना चाहते हैं। और चौथा है डोमेस्टिकली ओरिएंटेड, यानी जो मुख्य रूप से पाकिस्तान के अंदर ही सक्रिय रहते हैं आपस में एक दूसरे पर अटैक करने। इस अमेरिकी रिपोर्ट में कुल 15 आतंकी संगठनों के बारे में बताया गया है, जिनमें से 12 को अमेरिका ने फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना है। और इनमें भी कम से कम 5 आतंकी संगठन भारत में आतंकवाद फैलाते हैं। और ये बात तो अब सब जानते हैं कि अमेरिका के 9/11 हमले का मास्टरमाइंड कहां पाया गया? उसामा बिन लादेन पाकिस्तान के ही एबटाबाद शहर में मारा गया। और मुंबई के 26/11 हमले का आतंकी मोहम्मद अजमल कसाब भी पाकिस्तान से था। लेकिन सोचिए, आज यही पाकिस्तान एससीओ समिट में आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हर साल आता है और आतंकवाद को बहुत गंभीर समस्या भी बताता है। हालांकि ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्ज़ियोयेव के साथ हुई बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना उसे आतंकवाद पर घेरा है और ये कहा है कि आतंकवाद को रोकना इस संगठन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यहां ये भी समझिए कि जिस एससीओ का उद्देश्य आतंकवाद रोकना है, उसी एससीओ का स्थायी सदस्य पाकिस्तान बना कैसे? तो कारण यह है कि एससीओ में शामिल देश आतंकवाद की एक परिभाषा को लेकर आज तक सहमत नहीं हो पाए। मतलब एससीओ बन गया, इतने सालों से बैठ के हो रही है हर साल, लेकिन टेररिज्म क्या है, आतंकवाद क्या है, इसका एक डेफिनेशन अभी तक नहीं तय कर पाए। अगर कुछ देश किसी घटना को आतंकवाद मान रहे होते हैं तो बाकी देश ऐसा नहीं करते। यही दोहरे मापदंड आतंकवाद को डिस्काउंट देते हैं। देखिए,
1: उज्बेकिस्तान की मेरी ये चौथी यात्रा है। ये हमारे संबंधों की निकटता, करीबी समन्वय और हमारी गहरी मित्रता को दर्शाता है। उज्बेकिस्तान इज एट द हार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया एंड एट द हार्ट ऑफ इंडियाज एंगेजमेंट विद द रीजन। सुखद संयोग से हम इस वर्ष अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 15th एनिवर्सरी भी मना रहे हैं। मुझे खुशी है इस विशेष अवसर पर हम अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने जा रहे हैं।
2: उज्बेकिस्तान के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित करना मेरे लिए बहुत ही गर्व की पल है। यह सम्मान किसी एक व्यक्ति का नहीं, यह सम्मान 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है।
1: भारत और उज्बेकिस्तान की सोच और आकांक्षाओं में गहरी समानता है। अ स्ट्रॉन्गर इंडिया उज्बेकिस्तान पार्टनरशिप विल बी अ पावरफुल फोर्स फॉर पीस प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी इन सेंट्रल एशिया।

पूरी दुनिया में SCO, ब्रिक्स, G7, G20 जैसे 300 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि इनमें SCO अकेला ऐसा संगठन है जिसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइवल्स यानी प्रतिद्वंदियों का या दुश्मन देशों का सबसे बड़ा संगठन कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, आज उसकी भी कहानी को जरा समझिए। 30 साल पहले 1996 जब शांघाई 5 का गठन हुआ तब भारत इसका हिस्सा नहीं था। उस वक्त इस संगठन में थे चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, 5 देश। लेकिन बाद में संगठन का विस्तार हुआ, धीरे धीरे 10 देश शामिल हो गए और ये SCO यानी शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम का संगठन बन गया। ऐसा संगठन जिसमें टेबल पर बैठने वाले देशों के बीच दुश्मनी का लंबा इतिहास रहा, जैसे भारत और पाकिस्तान इसमें एक टेबल पर बैठते हैं जबकि दोनों देशों के बीच कट्टर दुश्मनी है। इसी तरह चाइना और भारत वो भी इसका हिस्सा है लेकिन दोनों देशों के बीच सीमा विवाद है, दोनों देशों को एक दूसरे का प्रतिद्वंदी माना जाता है। इसी तरह चाइना रशिया भी इस संगठन का हिस्सा है, हालांकि रिश्ता चाइना और रशिया का बनता बिगड़ता रहा है। अभी हाल के दिनों में अगर आप देखें तो ईरान युद्ध में दोनों एक तरफ नजर आए, लेकिन चाइना और रशिया को ही ले लीजिए, इनके बीच सहयोगी देशों का रिश्ता है और राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच दोस्ती मानी जाती है। लेकिन इसके बावजूद जब ये दोनों देश SCO के मंच पर साथ आते हैं तो दोनों का उद्देश्य अलग होता है। रशिया चाहता है सेंट्रल एशिया के देशों में उसका प्रभाव ज्यादा हो, क्योंकि एक जमाने में ये देश सोवियत संघ के हिस्सा का हिस्सा था और व्लादिमीर पुतिन को अगर आप देखेंगे तो वो हमेशा उस सोवियत संघ की ताकत को रशिया में दिखाना चाहते हैं, जबकि चाइना चाहता है कि इन देशों में उसका प्रभाव ज्यादा हो, चाइना की तूती बोले, जिसके कारण वो सेंट्रल एशिया के इन देशों में जबरदस्त तरीके से निवेश करता है, पैसा देता है, उसके दम पर साथ खींचता है और अब कर्ज भी बांट रहा है। दूसरी तरफ सेंट्रल एशिया के ये देश चाइना और रशिया को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क रहते हैं, वो ना तो चाइना पर अपनी निर्भरता को बढ़ाना चाहते हैं और ना ही रशिया पर इतना भरोसा करना चाहते हैं कि रशिया उनके देशों में दखल बढ़ाए। और इन देशों में जानते हैं कौन कौन है, उनमें है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अब ये सारे देश SCO के स्थायी सदस्य हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये देश भी एक दूसरे को दुश्मन मानते आए हैं। जैसे किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच सीमा, पानी, जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद है, दोनों देशों के बीच हिंसक झड़पें हो चुकी हैं। इसी तरह ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान पुरानी दुश्मनी है और दोनों देश एक दूसरे पर ज्यादा विश्वास दिखाते नहीं है। यानी अगर आप इस पूरे ग्राफिक्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन SCO देशों के बीच इस तरह का संगठन होना ही बहुत मुश्किल है और इन सारे देशों के बीच गहरा अविश्वास है, पुरानी दुश्मनी एक बड़ा मुद्दा है। यहां कई लोग ये भी पूछते हैं कि जब इन देशों के बीच दोस्ती कम है, दुश्मनी ज्यादा है, तो फिर भी SCO का ये मंच पश्चिमी देशों को असहज क्यों करता है और ये समिट हर साल क्यों किया जाता है, तो इसके पीछे सारा खेल है ताकत का। अमेरिका और यूरोप के देशों ने कई सालों तक यही माना कि एशिया, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, इनके देश कभी भी मिलकर एक मजबूत सहयोगी संगठन नहीं बना सकते क्योंकि इन देशों के बीच मतभेद इतने। लेकिन फिर धीरे धीरे SCO के समिट हुए, जैसे जैसे ये मंच भारत, चाइना, रशिया एक दूसरे के करीब आया, तीनों देशों के नेताओं की तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की हेडलाइन बनने लगी, तब पश्चिमी खेमे में हलचल पैदा हुई। उदाहरण के लिए आप पिछले साल के SCO समिट को याद कीजिए, इसमें राष्ट्रपति पुतिन, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की इस तस्वीर को देखकर राष्ट्रपति ट्रंप चिंतित हो गए थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था, मैं पोस्ट भी अपने साथ लेकर आई हूं, लुक्स लाइक वी लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। शायद अमेरिका ने भारत को रशिया और चाइना के खेमे में खो दिया है, ऐसा उन्होंने पोस्ट कर दिया था। तो ये पोस्ट हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा ही रहे हैं। उस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप का ये ट्वीट पश्चिमी देशों की पूरी कहानी को बता रहा था, वो कहानी जो ताकत की कहानी है। एक जमाने में जब G7 देशों का एक बहुत बड़ा संगठन बना तब किसी ने नहीं सोचा था कि भविष्य में गैर पश्चिमी देशों का कोई संगठन G7 के बराबर आकर खड़ा हो जाएगा और SCO को तो उस वक्त गिनती में भी शामिल नहीं किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला, आज इस संगठन को पश्चिमी मीडिया के G7 का जवाब माना जाता है। और क्यों माना जाता है, उसके लिए आप इस बार इन आंकड़ों को एक बार देख लीजिए। SCO देशों में दुनिया की 42% आबादी रहती है, G7 देशों में दुनिया की 10% आबादी रहती है।
वैश्विक अर्थव्यवस्था में एससीओ देशों की हिस्सेदारी 32% है, G7 की 44%। यानी अर्थव्यवस्था के मामले में G7 देश एससीओ देशों से आगे तो है, लेकिन एक मुकाबला है। और ऐसा इसलिए क्योंकि G7 देशों की कुल अर्थव्यवस्था में अकेले अमेरिका की ही 56% हिस्सेदारी है। इसके बाद दुनिया का 20% कच्चा तेल, 45% प्राकृतिक गैस एससीओ देशों के पास है, जबकि G7 के पास 14% कच्चा तेल, 10% प्राकृतिक यानी नेचुरल गैस है। दोनों संगठनों में सबसे ज्यादा परमाणु शक्ति एससीओ के देशों के पास है। और यही वजह है कि जैसे जैसे ये संगठन आपसी सहयोग को बढ़ा रहे हैं, इसमें शामिल देश एक दूसरे के साथ टेबल पर बैठकर चर्चा कर रहे हैं, तो पश्चिमी देशों में, खासतौर पर अमेरिकी मीडिया में चर्चा का विषय है। कारण, गैर पश्चिमी देशों का दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, जिसमें चाइना, रशिया, भारत, ये तीन बड़ी ताकतें हैं। इनमें भारत की भूमिका इसलिए बड़ी है क्योंकि हम किसी खेमे में नहीं है, हम संतुलन बनाते हैं, क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एससीओ का हिस्सा भी है और हम G7 देश के सम्मेलन में भी लगातार शामिल हो रहे हैं। देखिए,

0: खैर आगे बढ़ते और आपको ये बताते हैं कि जब महंगाई का संकट है, ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतें अस्थिर हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जहाजों की आवाजाही सामान्य नहीं हुई है, तब इन तमाम संकट के बीच पहली तिमाही में भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट का प्रदर्शन अनुमान से ज्यादा रहा है। इस साल अप्रैल से जून महीने के बीच पहली तिमाही में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8% दर्ज हुआ। जनवरी से मार्च की तिमाही में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 8.6% था और ईरान युद्ध के बाद आरबीआई का अनुमान था कि इस साल की जो पहली तिमाही है उसमें 7% के आसपास रहेगा, लेकिन आज जब आंकड़े आए तो ये 7.8% दर्ज हुआ। दूसरा, आप इस ग्राफिक्स को भी देख सकते हैं जिसमें हमने ये दिखाया है कि अप्रैल 2025 से जून 2026 के बीच भारत का जो जीडीपी है, जीडीपी का ग्रोथ रेट है, वो लगभग 8% के आसपास बना हुआ है। आप सब जानते हैं कि नेपाल में आई भयानक बाढ़ की तस्वीरों ने लोगों को दहला दिया है। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। चारों तरफ कीचड़ से भरा पानी था, पानी के साथ बड़े बड़े पत्थर बह रहे थे, पेड़ उखड़कर नदी में दौड़ रहे थे, घरों का मलबा पानी के साथ बहता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पानी नहीं बल्कि तबाही की एक नदी सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जा रही। लेकिन इसी भयानक मंजर के बीच एक तस्वीर ने सबको हैरान कर दिया। चारों तरफ बाढ़ थी, आसपास के घर टूट रहे थे, लेकिन बीच में हल्के हरे रंग का एक घर मजबूती से खड़ा था। हमने पहले या दूसरे दिन ही आपको ये तस्वीरें दिखा दी थी और बताया था कि कैसे सोशल मीडिया पर पूरी चर्चा है। इस टेरेस में जूम इन करके देखने पर कई लोग खड़े दिखाई देते हैं, पीछे जैसे सैलाब ऐसा जो सब कुछ निकलने को तैयार, आगे मलबे का अंबार जो बह रहा था, आसपास घर टूट रहे थे, तिनके की तरह बिखर रहे थे। वीडियो में देखा जा सकता है कि घर चारों तरफ से पानी और कीचड़ से घिरा है, उसके पास से बड़े बड़े पत्थर मलबा गुजर रहा था। ये उस दिन की तस्वीर है, लेकिन घर गिर नहीं रहा। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। कई लोग इसको सोशल मीडिया पर, कुछ लोग चमत्कार बता रहे हैं, कुछ लोग इंजीनियरिंग मावल बता रहे हैं, लेकिन हमने सोचा आज आपको ये खबर जरूर दिखाएं क्योंकि उस दिन भी हमने आपको दिखाई थी और आज देखिए ये घर वैसे ही टिका हुआ है अपनी जगह पर। अब गल्फ न्यूज ने नेपाली मीडिया के हवाले से लिखा है कि इस घर की ताकत उसकी दीवारों में नहीं बल्कि उसके ढांचे में थी। आसान भाषा में कहें तो कई घर ऐसे होते हैं जिनमें ईंट दीवारें पूरा घर संभाल रही होती है और अगर तेज बाढ़ या कोई भारी चीज दीवार से टकरा जाए तो दीवार टूट जाती है, इसके बाद पूरा घर गिर सकता है। लेकिन इस घर के अंदर एक मजबूत ढांचा था, घर में मजबूत खंभे थे, खंभों को आपस में जोड़ने वाली मजबूत बीम्स थी, अंदर लोहे की सरियाएं लगी हुई थी, नीचे मजबूत नींव थी। इन्हीं चीजों के कारण पूरा घर मिलकर उस दबाव का सामना कर रहा था और यही शायद इस घर के बचने की सबसे बड़ी वजह थी। इसके अलावा इस घर के बचने की दूसरी बड़ी वजह उसकी जगह भी हो सकती है। बाढ़ का पानी हर जगह एक जैसी ताकत से नहीं बहता, नदी या बाढ़ के बीच अक्सर एक रास्ता बन जाता है, जहां पानी सबसे तेज दौड़ता है वही सबसे बड़े पत्थर रहते हैं, बहते हैं साथ में, और वही सबसे ज्यादा मलबा आता है। यानी बाढ़ का सबसे खतरनाक हिस्सा एक खास रास्ते से गुजरता है। विशेषज्ञों के मुताबिक संभव है कि यह घर बाढ़ के सबसे खतरनाक रास्ते के ठीक बीच में नहीं था, पानी उसके पास से आसपास से गुजरा और उसने घर को चारों तरफ से घेरा, लेकिन शायद सबसे तेज सबसे भारी मलबा सीधे घर पर नहीं टकराया और यही अंतर बहुत बड़ा साबित हुआ। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ये किसी चर्च के पादरी का घर था, इसलिए ईसा मसीह ने चमत्कार करके इस घर को बचा दिया है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। किसी आधिकारिक रिपोर्ट में पुष्टि नहीं हुई है कि यह घर किसी पादरी का था और ना ही यह साबित हुआ कि पूरे इलाके में सिर्फ एक घर यही घर बचा है, इसलिए इसे पूरी तरह चमत्कार कहना सही नहीं होगा। हालांकि एक बात जरूर है कि जिस व्यक्ति ने अपनी आंखों के सामने आसपास के घरों को बहते देखा होगा और अपना घर बचा हुआ पाया हो, उसके लिए किसी चमत्कार से कम भी नहीं। देखिए,
1: चल भाई साहब। पहाड़ी इलाकों में जो लोग मारे गए, जो उस समय आपदा से बच नहीं पाए, उनकी लाशें जो है वो तैरती हुई नीचे आई हैं। और उसके बाद अभी जैसे यहाँ पर मेरे पीछे एक ऑपरेशन चल रहा है, पता चला कि यहाँ घर में भी एक लाश है। बदबू अब काफी ज्यादा आने लगी है। जिस एलिवेशन पर हम हैं यहाँ पर गर्मी काफी ज्यादा, और इस गर्मी की वजह से अगर जो शव हैं तो वो धीरे धीरे डीकम्पोज होंगे, और डीकम्पोज होने की वजह से उनमें से बदबू आने लगती है। तो अब सैनिटेशन और महामारी से बचने का भी एक खतरा है, उसके लिए भी प्रशासन की तैयारी है।

0: सरकार से क्या कहेंगे, मेरी बेटी मुझे वापस ला के दे दो, मेरी बेटी को ढूंढ लो, कहीं भी हो, किसी भी हॉस्पिटल में हो, कहीं पर भी हो, रेस्क्यू कर दो।
1: दुई दिन भयो आज यतै बसेर, हामी यतै बिहानदेखि बेलुकैसम्म हामी यहीँ छौँ, तर अहिलेसम्म उद्धार गरेर ल्याएको छैन। कन्ट्याक्ट दिइन्छ, या खोलामा छ या जङ्गलमा छ, अहिलेसम्म हामीले केही सल्लाह सुझाव पाएको छौँ।

दुनिया में भारत या हिंदू धर्म से जुड़ा कोई भी कार्यक्रम हो, कुछ लोगों के पेट में दर्द जरूर शुरू हो जाता है। ये लोग हर कार्यक्रम में भारत का विरोध करने पहुंच जाते हैं, फिर चाहे वो भारत सरकार का कार्यक्रम ही क्यों ना हो। न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में अहेड फोरम का एक कार्यक्रम था जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत का संबोधन था, लेकिन भारत और हिंदू विरोध में अंधे हो चुके कुछ लोग वहां पर तिरंगे का अपमान करने पहुंच गए। शर्मनाक है। सोचिए, ये एक निजी संस्था का कार्यक्रम था जिससे ना भारत सरकार का कोई सीधा लेना देना है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर आरएसएस के विरोध के नाम पर भारत विरोधी नारे लगाए गए, तिरंगे का अपमान किया गया। तिरंगे के अपमान पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू काफी भड़के हुए हैं। अपने एक ट्वीट में उन्होंने धमकी दी है कि हमारे तिरंगे और देश का अपमान करोगे तो ये बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। आज ये तस्वीरें न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी को भी देखनी चाहिए और उन्हें इस पर एक बयान देना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि न्यूयॉर्क में फ्री स्पीच के नाम पर किसी देश के झंडे का अपमान क्यों होने दिया गया। जोहरान ममदानी ने मोहन भागवत के कार्यक्रम का विरोध किया था। न्यूयॉर्क में एक धर्म निरपेक्ष देश के झंडे का अगर अपमान हो रहा है तो आज सवाल तो उठेंगे ही। वैसे इन विरोध प्रदर्शनों के बावजूद मैडिसन स्क्वायर गार्डन में भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ और आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने करीब 42 मिनट का एक संबोधन भी दिया। अहेड फोरम के इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जो भी हिंदू ये मानता है कि मुसलमानों को भारत से निकाल देना चाहिए वो हिंदू नहीं रह सकता। मोहन भागवत ने यह बयान एक ऐसे कार्यक्रम में दिया जो मुख्य रूप से हिंदू समाज से जुड़ा हुआ था और इसमें 30 देशों से अलग अलग धर्मों के करीब 180 धर्मगुरु शामिल थे। मोहन भागवत का यह बयान उस सोच से उलट है जिसमें ऐसा माना जाता है कि आरएसएस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। ऐसे कई मौके आए हैं जब मोहन भागवत ने खुलकर यह बात कही है। पिछले साल अगस्त में आरएसएस के एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा था कि भारत अखंड है और एक हिंदू राष्ट्र है। उनके इस बयान से दो बातें समझी गई, जिससे पहला ये कि आरएसएस का एक विचार अखंड भारत का है और दूसरा है हिंदू राष्ट्र। अब अमेरिका में मोहन भागवत द्वारा इस विचार ऐसा माना जाता है कि आरएसएस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। ऐसे कई मौके आए हैं जब मोहन भागवत ने खुलकर ये बात कही है। पिछले साल अगस्त में आरएसएस के एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा था कि भारत अखंड है और एक हिंदू राष्ट्र है।

दिया था। अंकित पर करीब 18 राउंड फायरिंग की गई थी जिसमें उनकी मौत हो गई थी। इस वारदात के बाद चारों शूटर्स वहां से फरार हो गए थे और यूपी पुलिस के सामने उनके पकड़ने के लिए एक बड़ी चुनौती आ गई थी। ये काम यूपी एसटीएफ को सौंपा गया। उन्होंने इस हमले में शामिल दो शूटर्स मोहित और सुमित को एनकाउंटर में मार गिराया। इस हत्याकांड में गोगी गैंग के चार शूटर्स शामिल थे जिसमें मोहित और सुमित के अलावा सत्यम और आर्य नाम के गैंगस्टर्स शामिल थे। इन चारों में से मोहित और सुमित अंकित बालियान की रेकी में शामिल थे और वो शामली से कुछ ही दूरी कैराना रोड पर एनकाउंटर में मारे गए, जबकि सत्यम और आर्यन फरार हैं। पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर में मारे गए मोहित और सुमित सोनीपत भागने की फिराक में थे, लेकिन मुखबिर की सूचना पर उन्हें शामली से कुछ ही दूरी पर घेर लिया गया। पकड़े जाने के डर से इन शूटर्स ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस की फायरिंग में दोनों शूटर्स ढेर हो गए। मोहित और सुमित दोनों पर 50,000 रुपए का इनाम था और इसके अलावा सुमित पर एक और मोहित पर 15 मुकदमे दर्ज थे। अंकित बालियान की हत्या को लेकर शूटर्स ने एक लंबी चौड़ी प्लानिंग की थी। अंकित बालियान को मारने के लिए दो शूटर्स मर्डर के एक हफ्ता पहले से शामली आ गए थे। शूटर मोहित और सुमित को अंकित बालियान की रेकी का जिम्मा दिया गया था। ये दोनों शूटर 20 अगस्त से ही शामली के एक होटल में आके स्टे करने लगे, रुक गए। अब मोहित और सुमित तभी अंकित बालियान के पूरे रूटीन पर नजर रख रहे थे। और कोई भी अगर हत्या की प्लानिंग होती है तो सबसे पहले यही होता है तरीका कि वो शख्स कब किस वक्त कहां जा रहा है, कौन सी सबसे माकूल जगह होगी जहां मारा जाए। और इसी कड़ी में इन दोनों शूटर्स ने होटल में अपना आधार कार्ड भी दिया था ताकि किसी को शक ना हो। अब योजना के मुताबिक हत्या के बाद दो शूटर्स को बागपत और बाकी दो करनाल में भागकर पहुंचना था कि भाई भाग जाओ। अंकित के मर्डर के तुरंत बाद मोहित और सुमित बागपत की तरफ भागे और सत्यम और आर्यन करनाल निकल गए। यूपी पुलिस के पास सीसीटीवी तस्वीरों की एक लंबी लिस्ट थी जिसमें चारों शूटर्स के एचडी क्वालिटी की तस्वीरें थी, इसलिए अपराध के बाद उनकी पहचान करने और शामली में उनकी मूवमेंट का पता लगाना बहुत मुश्किल काम नहीं था। यूपी पुलिस एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने एनकाउंटर के बाद गैंगस्टर्स को सीधी धमकी दी है कि योगी सरकार में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस है और इसीलिए कोई भी गैंगस्टर इस पॉलिसी को टेस्ट करने की गलती ना करे। देखिए,

0: ये प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों में ही है, अभी उनके संरक्षण में ही हम सब लोग हैं। वो जो कार्रवाई करेंगे, वो जो कर रहे हैं, वो आगे भी जो करेंगे, हमें उन पर पूर्ण विश्वास है।
1: अधीक्षक शामली श्री एनपी सिंह के नेतृत्व में शामली पुलिस ने, स्वाट टीम ने, एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करके हत्याकांड में वांछित दो अपराधी जिन पर 50,000 रुपए का रिवॉर्ड था, ये शार्प शूटर थे जो घटनाक्रम में हत्या में शामिल थे, उनके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है।
2: और अब अगली खबर आपको बताएंगे, अंजना 2.0। ये खबर पूर्व टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर से जुड़ी है, जिन्हें इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया और इस दौरान वो बहुत भावुक हो गए। मेरे मतलब अगर आप प्लेयर्स में देखें तो बहुत पसंद है मुझे वो। बताइए अंजना 2.0। बिल्कुल अंजना, वही रोजर फेडरर जिनका गुस्सा कभी टेनिस कोर्ट पर आग लगा देता था, जिनके हाथों में पड़कर रैकेट के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे, वही टेनिस का स्टार खिलाड़ी आज इतिहास के शानदार मौके पर खुद को संभाल नहीं पाया। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में जब रोजर फेडरर को टेनिस के सर्वकालिक महान का ताज पहनाया गया तो दुनिया ने उस शख्स को सिसक सिसक कर रोते देखा जो कभी अपने ही शॉट पर गुस्से से तमतमा जाया करता था। जो इंसान अपनी हार और गुस्से को रैकेट की टूटी हुई डंडियों के जरिए बाहर निकालता था, आज उसने अपनी जीत और विनम्रता को आंसुओं में डुबो दिया। वो रैकेट तोड़ना जोश और खेल का उबाल था और ये आंसू उस सफर की पूर्णता है जो दुनिया के हर पुरुष को आईना दिखाते हैं। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट पे इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और याद रहे, मार्गदर्शन कोई भी करे, चलना आपको खुद ही पड़ेगा। नमस्कार।

0: दुनिया ये जानना और समझना चाहती है। देखिए बिश्केक में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की महामुलाकात के मायने क्या हैं।
1: पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन मिले दोस्ती के सिलसिले। मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई, क्या क्या बात हुई। बिश्केक से मैसेज क्लियर, भारत और रूस की दोस्ती जिंदाबाद। एससीओ में मोदी पुतिन जिनपिंग की केमिस्ट्री, अमेरिका में खलबली। भारत चीन रूस का त्रिकोण, ट्रंप का तोड़। एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन में वैसे तो 10 देश हैं, भारत चीन रूस पाकिस्तान कजाकिस्तान किर्गिस्तान ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान और ईरान। इसके अलावा पर्यवेक्षक के तौर पर कई और देश भी शामिल हैं। लेकिन सिर्फ 3 देश यानी भारत रूस और चीन इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया की टॉप हेडलाइंस बने हुए हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर क्यों दुनिया भारत रूस और चीन की चर्चा कर रही है और क्यों इन तीनों देशों के नेताओं की केमिस्ट्री से डोनाल्ड ट्रंप भी टेंशन में हैं। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं किर्गिस्तान में हुई पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की द्विपक्षीय बैठक और मुलाकात। जब बिश्केक में पीएम मोदी और पुतिन मिलते हैं तो दोनों नेता एक दूसरे के गले मिलते हैं। ये वो मुलाकात है जो सिर्फ भारत और रूस के पुराने संबंधों को और पुख्ता करती है बल्कि भारत रूस संबंधों की नई दिशा तय करने वाली है। इसीलिए पुतिन सीधे भारत और रूस के संबंधों पर बोलते हैं।
2: I'd like to note with satisfaction the following thing, namely that the Russian-Indian relations continue to get strengthened on the basis of the principles of the special and privileged partnership. Distinguished Prime Minister, of course, this is aided by your special attention to the Russian-Indian relations and the business and kind relations, friendly relations that have been established between us, and I'm very grateful to you for that.
1: लेकिन पीएम मोदी रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर राष्ट्रपति पुतिन से कहते हैं कि वो यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के पक्ष में हैं, क्योंकि युद्ध का हर दिन मानवता को पीछे धकेल रहा है।
3: यूक्रेन के विषय पर

बिश्केक में एससीओ समिट के बीच प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की ये तीसरी आमने सामने मुलाकात है। ऐसे में इस मुलाकात में दोनों के बीच क्या बात हुई?

0: भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देती है, उमंग से भर देती है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: आपको बता दें कि पीएम मोदी ने यह भी बताया कि किस तरह से भारत और रूस का सहयोग नई ऊंचाइयां छू रहा है।
0: पिछले वर्ष आपकी भारत यात्रा बहुत ही सफल रही और बहुत ही यादगार रही। हमने कई घंटे साथ बिताए और विशेष रूप से बिजनेस फोरम और एक प्रकार से बिजनेस वर्ल्ड का रशिया का हूजहू कहे उन सब को लेकर के आप आए और आर्थिक संबंधों को एक नई ऊंचाई और ज्यादा विस्तार देने का काम भी हमारी चर्चा में हुआ। और मुझे खुशी है कि जो आउटकम निकले हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारी दोनों टीमें पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही हैं और बड़ी गति के साथ काम कर रही हैं। यह हमारे लिए गहरे संतोष का विषय है कि हमारा सहयोग निरंतर नई ऊंचाइयों को और बढ़ रहा है और दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब दुनिया का जियोपॉलिटिकल नक्शा पूरी तरह बदल रहा है। अमेरिका ईरान युद्ध को 6 महीने हो चुके हैं, रूस यूक्रेन युद्ध को 4.5 साल हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक तरफा विदेश नीति ने वैश्विक नियम आधारित व्यवस्था को चुनौती दी है और SCO अपनी 26वीं वर्षगांठ मना रहा है। ऐसे में भारत, रूस और चीन जैसी ताकतें एक मंच पर इकट्ठा हो रही हैं। इसे पश्चिमी प्रभाव के जवाब में एक काउंटर बैलेंस के तौर पर देखा जा रहा है। बिश्केक के बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन 12 से 13 सितंबर को नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी मिलेंगे। पीएम मोदी ने इसका न्योता दे दिया है।
0: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका और आपके डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक है। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
1: SCO का 26वां शिखर सम्मेलन किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हो रहा है जो 1 सितंबर तक चलेगा। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कई नेता शामिल हो रहे हैं, लेकिन मोदी, पुतिन और जिनपिंग की टिकड़ी ने यकीनन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ा दी है। इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट से ट्रंप की नींद और भी उड़ना लाजमी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि फ्रांस, न्यूजीलैंड, सेशेल्स, मलेशिया, स्लोवाकिया और इटली पिछले 1 साल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत तेजी से दुनिया भर की यात्राएं की हैं। उन्होंने नए पार्टनर बनाए हैं या मौजूद पार्टनरों के साथ रिश्ते मजबूत किए हैं। उन्हें एक कड़वी सच्चाई ने तेजी से कदम उठाने पर मजबूर किया है। अखबार ने आगे ट्रंप की आलोचना करते हुए लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप की वजह से दुनिया में मची उथल पुथल का सामना करने और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का भारत के पास एकमात्र तरीका है कि वो अलग अलग जगह पर अपने रिश्ते बढ़ाए। रिपोर्ट में पीएम मोदी की उज्बेकिस्तान की यात्रा का जिक्र भी शामिल है। अखबार ने SCO समिट के बारे में लिखा है और राष्ट्रपति पुतिन के साथ मोदी की मुलाकात की चर्चा भी की है और ये भी लिखा है कि कैसे पीएम मोदी ट्रंप के मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, एक एक करके डील कर रहे हैं और इसे एक रणनीति करार दिया है। SCO की सबसे दिलचस्प तस्वीर शायद यही है। एक तरफ मोदी और शी जिनपिंग एक ही बहुपक्षीय मंच पर हैं, दूसरी तरफ भारत और चीन के बीच सीमा विवाद और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसे में SCO भारत को चीन के साथ बातचीत का एक अतिरिक्त मंच देता है। दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधरे या बिगड़े, बहुपक्षीय मंचों पर संवाद की

0: गुंजाइश बनी रहती है। भारत लंबे समय से मिडल ईस्ट के देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। मध्य एशिया तेल, गैस, यूरेनियम और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों का बड़ा भंडार है। भारत मध्य एशिया के देशों के साथ व्यापार भी बढ़ाना चाहता है। इसके लिए वो नए व्यापार और परिवहन मार्ग विकसित करने पर काम कर रहा है। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को देखते हुए एससीओ की टेबल और भी दिलचस्प हो जाती है। भारत लंबे समय से आतंकवाद के मुद्दे को एससीओ जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा है। पीएम मोदी ने भी इस यात्रा के संदर्भ में आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद को क्षेत्रीय शांति के लिए चुनौती बताया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी एससीओ का पूर्ण सदस्य है, इसीलिए यहां भारत को पाकिस्तान के साथ किसी द्विपक्षीय मंच की तरह बातचीत करने के बजाय एक बड़े बहुपक्षीय ढांचे में अपनी सुरक्षा चिंताओं को रखने का मौका मिलता है। आज तक ब्यूरो।
1: यूपी में सभी दलों ने 27 के चुनाव के लिए कमर कसी हुई है और लखनऊ में सोमवार का दिन बैठकों का दिन रहा। यूपी की तीन बड़ी पार्टियों ने लखनऊ में तीन बड़ी बड़ी बैठकें की हैं। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तीनों ने चुनावी तैयारियों पर मंथन किया।
2: उत्तर प्रदेश में चुनावी दस्तक होने ही वाली है, उससे पहले हर दल पूरी तैयारी में जुटा है। बीजेपी की नई टीम ने सभी जिलाध्यक्षों, मोर्चा अध्यक्षों से लेकर सीएम, डिप्टी सीएम के साथ तैयारी की बैठकें की हैं, तो समाजवादी पार्टी ने भी प्रदेश भर से जिलाध्यक्षों, महानगर अध्यक्षों को टेक टीम के साथ बुलाया था और बीएसपी ने भी अपने सभी जिला प्रमुखों के साथ बैठक की। बीजेपी ने अपनी बैठक में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर सेवा संकल्प अभियान चलाने का प्लान बनाया है।
3: हर जिले से 5-5 पदाधिकारी, विधायक, सांसदों को आज बुलाया गया है। एक खाका तैयार किया जाएगा यूपी चुनाव के मद्देनजर कि किस तरीके से आखिर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को जवाब देने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी भी आज ही लखनऊ में बड़ी बैठकें कर रही है। देखना यह है कि इन बैठकों के दौर में कौन बाजी मारेगा, लेकिन एक बात तो साफ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे चुनाव में चेहरे के तौर पर नजर आ रहे हैं और स्मृति ईरानी का ध्यान भी अब उत्तर प्रदेश में केंद्रित हो चुका है।
2: बैठक के बाद सीएम योगी बहराइच के कार्यक्रम में पहुंचे और यहां उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा।
4: किसी बेटी को, किसी व्यापारी को, किसी माफिया और किसी अपराधी से भयभीत होने की आवश्यकता भी अब यूपी में नहीं पड़ती है। यही है डबल इंजन सरकार की कार्य।
2: इधर समाजवादी पार्टी की बैठक में अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार अभियान का शंखनाद कर दिया।
5: कल से हमारी पार्टी का प्रचार एक तरह से शुरू।
2: अखिलेश यादव के लिए घोटाले, भ्रष्टाचार, पीडी, अत्याचार, बंद स्कूल, फर्जी मुठभेड़, किसान संकट, अपराध और एसएआर ये मुद्दे हैं।
5: एसआईआर के बाद भारतीय जनता पार्टी की चुनाव आयोग के माध्यम से साजिश होगी और एक षड्यंत्र होगा कि दोबारा एसएआर कराया जाए।
2: तो फिर सवाल है कि एसएआर क्या है? एसएआर बोले तो स्पेशल एनुअल रिविजन, ये चुनाव आयोग अनिवार्य रूप से हर साल करता है। इसे स्पेशल समरी रिवीजन कहा जाता है, जो सालाना आमतौर पर अक्टूबर नवंबर में शुरू होता है। इसमें 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 साल की उम्र के हो चुके नौजवानों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाता है। अखिलेश इस संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
5: ये चुनाव से पहले एक एनुअल रिवीजन करेंगे ये लोग एसएआर, जिससे कि ये अपने लोगों के वोटों को एडजस्ट करेंगे। सुनने में आ रहा है कि बड़े पैमाने पर बिहार से लोग, झारखंड से लोग, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उनके ये लोग वोट बनाएंगे और अपने बूथों पर वोट बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए हमारे संगठन, हमारे जो बूथ स्तर पर ऐप के माध्यम से काम कर रहे हैं, उन सब का हमने सहयोग मांगा है।
2: अखिलेश एसआईआर के बाद एसएआर को नियम के विपरीत बताते हैं और इसे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने की मंशा से किए जाने वाला अभ्यास बता रहे हैं। इस तथ्य का जिक्र जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में सामने आया तो अदालत ने फिलहाल चल रहे सिर्फ 19 ट्रिब्यूनल्स की संख्या बढ़ाने और वाजिब नामों को लिस्ट में जोड़ते जाने को कहा था। आज तक ब्यूरो।
1: शुद्धिकरण विवाद पर उत्तराखंड की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। राहुल गांधी पर एफआईआर के बाद इस विवाद ने पूरा तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस ने बाकायदा पुलिस से मिलकर एफआईआर का विरोध किया तो बीजेपी ने भी राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया।
6: ये एससी एसटी एक्ट के खिलाफ ये काम है. लेट मी रिपीट हियर, इट इज अ क्राइम टू डू शुद्धिकरण. नो एक्शन हैज बीन टेकन. हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी जिन लोगों ने शुद्धिकरण किया है उत्तराखंड में उन पर एफआईआर लागू हो. ये जो इंसिडेंट है ये हमें दिखाता है बीजेपी और आरएसएस का माइंडसेट. वो नहीं चाहते कि इस देश के दलित प्रगति करें, वो नहीं चाहते कि इस देश के दलित रिस्पेक्ट के साथ जिए और सक्सेसफुल.
2: यही वो बयान है जिसके आधार पर उत्तराखंड की पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. 8 अगस्त को मल्लिकार्जुन खड़गे की हल्द्वानी रैली के बाद 11 अगस्त को वहां के रामलीला ग्राउंड पर पूजा और हवन किया गया. 29 अगस्त को जब राहुल गांधी ने इस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो दलित समाज से आने वाले अमित कुमार की शिकायत पर हल्द्वानी में राहुल गांधी के खिलाफ एससी एसटी उत्पीड़न एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई. लेकिन अब ये एफआईआर उत्तराखंड समेत पूरे देश में दलितों के नाम पर नए सियासी संग्राम को जन्म दे रही है. उत्तराखंड में कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है. उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं की कथित शुद्धिकरण पर एफआईआर दर्ज करने को लेकर पुलिस से बहस हुई.
7: एससी एसटी का मामला है, ये सीओ स्तर का अधिकारी इसमें जांच करता, लेकिन जांच करने के बाद जो है क्या सही है तो उसके बाद है, लेकिन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लेने के लिए आप तैयार नहीं.
2: इधर दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा के मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई.
8: हमारे समाज में कुछ लोग दलित हैं, लेकिन समाज में बंटवारा कौन कर रहा है? ये भाजपा और आरएसएस की विचारधारा है जो बंटवारा कर रही है, और यही इनका मकसद था जो इन्होंने अपने कुछ लोगों को भेजकर वहां पर सो कॉल्ड शुद्धिकरण करके. मतलब क्या था इनका? अगर राजनीतिक मतलब नहीं था तो क्या था ये बता दें.
2: खड़गे के बहाने दलितों के अपमान को मुद्दा बना रही कांग्रेस पर पलटवार बीजेपी ने भी किया.
9: यहाँ पर रामलीला का मंचन होता है, बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, ऐसे आयोजनों पर जो गंदगी हुई थी, जो धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए थे और एक धर्म विशेष के लोगों ने लगाए थे, उसके विरोध में लोगों ने जो धार्मिक संगठन थे उन्होंने उस वहाँ पर शुद्धिकरण का जो कार्यक्रम किया था वो कार्यक्रम था, और इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी मुद्दाविहीन हो गई है.
6: कांग्रेस प्रेसिडेंट
2: राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर में भी खड़गे की रैली के बाद रामलीला मैदान में न सिर्फ शराब की बोतलें बल्कि धार्मिक नारेबाजी की शिकायत दर्ज है. अब कांग्रेस उत्तराखंड पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगा रही है.
10: हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे. आरएसएस और बीजेपी पार्टी थी, उन लोगों ने कुकृत्य किया था, लेकिन पुलिस ने उसमें आग में घी डालने का काम किया है. पुलिस कौन होती है? अगर कॉग्निजेंस लेना था आपने तो आप 10 तारीख के प्रकरण का कॉग्निजेंस लेते और मुकदमा कायम करते, लेकिन आपने मुकदमा कायम कर दिया राहुल गांधी के खिलाफ.
2: हल्द्वानी का मामला ऐसे समय में गंभीर राजनीतिक मोड़ ले रहा है जब राहुल चाय की दुकानों पर भी दलितों से भेदभाव जैसे आरोप लगा रहे हैं. आज तक ब्यूरो
6: देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए.
1: अब बात यूपी में हुए मर्डर को लेकर चल रही राजनीति के बारे में करेंगे. अंकित बालियान की हत्या के हफ्ते भर के अंदर दो आरोपी ढेर कर दिए गए, लेकिन अंकित बालियान मर्डर केस को लेकर अपराध से ज्यादा सियासत की चर्चाएं हुई हैं. दरअसल इस हत्याकांड की बुनियाद में ही जात गोत्र की बड़ी वजह थी. हत्या के बाद अखिलेश यादव ने उसी जाति गोत्र की बात की तो राजनीति गर्मा गई.
0: छब्बीस अगस्त को शामली में हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बालियान की हत्या होती है. चार दिन तक जब कोई एक्शन नहीं होता तो बालियान की पत्नी सीएम योगी से हथियारों को मिट्टी में मिला देने की अपील करती हैं, और एक दिन बाद हत्या के दो आरोपियों का हिसाब किताब पूरा हो जाता है. केरला में पुलिस और एसटीएफ के आरोपियों से मुठभेड़ होती है. हत्या के दो आरोपियों को पुलिस की टीम घेर लेती है. एनकाउंटर में दोनों आरोपियों को मार गिराया जाता है.
11: दो शूटर्स मारे गए हैं, सुमित और मोहित, और इनके पास से भारी मात्रा में अग्निशस्त्र बरामद हुए हैं. इन्होंने पुलिस पर भारी फायरिंग भी की है जिससे दो कांस्टेबल्स भी हमारे घायल हुए हैं. अभी इस घटना में और भी लोग शामिल हैं जिनके बारे में तफ्तीश जारी है, और खास करके जो शूटर्स हैं और जो इस गैंग के लीडर्स हैं जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को प्लान किया है या अंजाम दिलाया है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी.
0: लेकिन इस एनकाउंटर पर सियासत सुलग उठी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस पीडीए के लोगों का एनकाउंटर कर रही है। उन्होंने एसटीएफ की भी नई परिभाषा दी।
5: मुख्यमंत्री जी की एसटीएफ स्वजाति टॉर्चर फोर्स, स्वजाति टॉर्चर फोर्स और लगातार पीडीए का उत्पीड़न हो रहा है।
0: अकेले अखिलेश यादव ही नहीं, समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव भी इस एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं।
12: कोई लॉ एंड ऑर्डर है उत्तर प्रदेश में? सिवाय हत्याएं या गोली मार के एनकाउंटर कराना फर्जी, इसके अलावा कुछ भी नहीं।
0: हालांकि राम गोपाल यादव के बयान को अंकित बालियान के पिता ने ही खारिज कर दिया।
13: कहा है उन्होंने कि ये फर्जी, इसके पीछे आप क्या समझते हैं
14: भाई? वे तो राजनीतिक पार्टी है, वे तो पता नहीं क्या कहेगी क्या नहीं, लेकिन जब मैं खुद देख आया उनको दोनों को जिन्होंने पीछे से गोली मारी थी, तो मैं फर्जी कैसे कहूंगा।
0: अब यूपी की सरकार कह रही है कि आरोपियों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
15: बहुत ही दुखद घटना थी और प्रदेश पुलिस ने उन्हें पुलिस मुठभेड़ में मारा है। अंकित बलियान जी की जो निर्मम हत्या हुई थी, प्रदेश दुखी था। उन हत्यारों ने पुलिस पर भी गोलियां चलाई जिसकी किए की सजा उन्हें मिल चुकी है।
0: दो आरोपी पुलिस के एनकाउंटर में मारे गए और बाकी के आरोपियों को पुलिस तलाश रही है। इन सब के बीच अंकित की बहन मांग कर रही है कि बाकी आरोपियों का भी एनकाउंटर होना चाहिए।
16: हमें तब तक संतुष्टि नहीं मिलेगी तब तक मेरे भाई के हत्यारे संपूर्ण खत्म नहीं हो जाते, आपकी जड़ तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हम संतुष्ट नहीं होगी, नहीं हम शांति से बैठेंगे।
0: एक तरफ परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है और दूसरी तरफ एनकाउंटर पर जबरदस्त सियासत हो रही है। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
1: एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में निर्भया जैसी दरिंदगी की गई है। इस बार ग्रेटर नोएडा में बस में चढ़ी एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप किया गया है। हैरानी की बात यह है कि ग्रेटर नोएडा के परीचौक से कश्मीरी गेट तक बस चली और इस दौरान लड़की के साथ दरिंदगी हुई, लेकिन दोनों ही राज्यों की पुलिस को कानो कान खबर नहीं लगी।
0: दो राज्यों की पुलिस सचेत रहती तो एक और निर्भया कांड नहीं होता। ग्रेटर नोएडा के सबसे व्यस्त चौराहे परी चौक से बस में सवार एक बच्ची दरिंदों का शिकार हो गई। करीब 47 किलोमीटर तक बस दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर दौड़ती रही और ड्राइवर और कंडक्टर नाबालिग से वहशत को अंजाम देते रहे। वारदात 4 अगस्त की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक छात्रा अपने परिवार वालों से नाराज होकर घर से निकली थी और चचेरे भाई के घर जा रही थी जो नोएडा में रहता है। भारी बारिश और अंधेरे की वजह से छात्रा गलती से परिचौक पर उतर गई। इसी दौरान एक खाली स्लीपर बस वहां से गुजरी। छात्रा को नोएडा सेक्टर 62 छोड़ने का भरोसा दिया और फिर ड्राइवर और कंडक्टर ने छात्रा से गैंगरेप किया। वारदात के बाद आरोपी छात्रा को कश्मीरी गेट बस अड्डे के पास रिंग रोड पर उतार कर वहां से फरार हो गए। फिर छात्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपियों की धरपकड़ की कोशिश शुरू हुई।
17: दिल्ली में एक बार फिर से एक ऐसा मामला सामने आया है जो फिर से पूरी दिल्ली एनसीआर को शमसार कर देगा। दरअसल ये मामला चलती बस में एक गैंग रेप का है। 16 वर्षीय मैनपुरी की रहने वाली 11वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की घर से लड़कर घर से बाहर निकलती है, बस पकड़ के अपने भाई के घर मैनपुरी से नोएडा आना चाहती है, लेकिन उस रात बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से उसे पता नहीं लगा और परी चौक के पास वो बस से उतर जाती है, जिसके बाद वो हाथ देकर एक स्लीपर बस को रोकती है। बस रुकती है और उसे कहती है कि वो सेक्टर 63 तक उसे छोड़ देंगे। बस पे चढ़ने के कुछ देर बाद ही जो बस का कंडक्टर है उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, उसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट करने लगता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने कुछ किया तो उसे जान से मार देंगे। इसके बाद करीब 47 किलोमीटर तक जो वो बस है दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर चलती है। नोएडा में इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद लड़की को कश्मीरी गेट के पास लाकर उतार दिया जाता है और फिर वो लड़की पीड़िता खुद पुलिस के पास पहुंचती है। और यहां आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन है। इसी पुलिस स्टेशन में आकर वो कंप्लेन देती है।
0: दिल्ली पुलिस ने गैंगरेप की वारदात के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। स्लीपर बस को जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है।
16: नए आपराधिक कानूनों के अनुसार बिना ज्यूरिसडिक्शनल इश्यूज में गए हुए थाना कश्मीरी गेट ने तुरंत विक्टिम का मेडिकल कराया और केस दर्ज किया। साथ ही सीसीटीवी कैमरेज की सहायता से कुछ ही घंटे में बस को भी ट्रेस किया और दोनों अपराधियों को भी अरेस्ट किया।
0: सवाल ज्यूरिसडिक्शन का नहीं है, सवाल यह है कि ग्रेटर नोएडा से दिल्ली तक बस चलती रही और गैंगरेप होता रहा और दोनों राज्यों की पुलिस को कानो कान खबर नहीं हुई। सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस की उन साझा बैठकों से क्या हासिल हुआ जो मिलजुल कर अपराध रोकने के लिए होती हैं। दिल्ली से अरविंद ओझा और अंशुल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
1: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: अभिषेक में गर्मजोशी के साथ पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई। बातचीत में यूक्रेन का मुद्दा भी उठा। प्रधानमंत्री ने कहा युद्ध मानवता के लिए खतरा, भारत शांति का पक्षधर। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी 7.8% रही। प्रधानमंत्री मोदी बोले निराशावादी लोगों की हुई हार। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी विरोध प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट में पहुंची दिल्ली पुलिस। 13 एफआईआर रद्द करने की इजाजत मांगी। आपराधिक पृष्ठभूमि के 2873 लोगों पर दर्ज हो केस। नेपाल में त्रासदी के बाद मरने वालों का नहीं थम रहा है आंकड़ा। 939 लोगों की गई जान, 3900 से ज्यादा लापता। रेस्क्यू के काम में भारतीय एक्सपर्ट्स भी शामिल। और मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से लिया संन्यास। अर्जेंटीना के कप्तान ने कहा अलविदा। सोशल मीडिया पर फैंस को लिखा भावुक पत्र। बिश्केक में एससीओ समिट के बीच प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की यह तीसरी आमने सामने मुलाकात है। ऐसे में इस मुलाकात में दोनों के बीच क्या बात हुई, दुनिया ये जानना और समझना चाहती है। देखिए बिश्केक में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की महामुलाकात के मायने क्या है।
1: मोदी और राष्ट्रपति पुतिन मिले दोस्ती के सिलसिले। मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई, क्या क्या बात हुई। बिश्केक से मैसेज क्लियर, भारत और रूस की दोस्ती जिंदाबाद। एससीओ में मोदी पुतिन जिनपिंग की केमिस्ट्री, अमेरिका में खलबली। भारत चीन रूस का त्रिकोण, ट्रंप का तोड़। एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन में वैसे तो 10 देश हैं, भारत चीन रूस पाकिस्तान कजाकिस्तान किर्गिस्तान ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान और ईरान। इसके अलावा पर्यवेक्षक के तौर पर कई और देश भी शामिल हैं। लेकिन सिर्फ 3 देश यानी भारत रूस और चीन इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया की टॉप हेडलाइंस बने हुए हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर क्यों दुनिया भारत रूस और चीन की चर्चा कर रही है और क्यों इन तीनों देशों के नेताओं की केमिस्ट्री से डोनाल्ड ट्रंप भी टेंशन में हैं। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं किर्गिस्तान में हुई पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की द्विपक्षीय बैठक और मुलाकात। जब बिश्केक में पीएम मोदी और पुतिन मिलते हैं तो दोनों नेता एक दूसरे के गले मिलते हैं। ये वो मुलाकात है जो सिर्फ भारत और रूस के पुराने संबंधों को और पुख्ता करती है बल्कि भारत रूस संबंधों की नई दिशा तय करने वाली है। इसीलिए पुतिन सीधे भारत और रूस के संबंधों पर बोलते हैं।
2: I'd like to note with satisfaction the following thing, namely that the Russian-Indian relations continue to get strengthened on the basis of the principles of the special and privileged partnership. Distinguished Prime Minister, of course, this is aided by your special attention to the Russian-Indian relations and the business and kind relations, friendly relations that have been established between us. And I'm very grateful to you for that.
1: लेकिन पीएम मोदी रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर राष्ट्रपति पुतिन से कहते हैं कि वो यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के पक्ष में हैं, क्योंकि युद्ध का हर दिन मानवता को पीछे धकेल रहा है।
3: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। पिछली बार भी जब हम मिले थे तब आपने विस्तार से सभी विषयों के बारे में मुझे अवगत किया था। जैसा कि आप जानते हैं भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देती है, उमंग से भर देती है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: आपको बता दें कि पीएम मोदी ने यह भी बताया कि किस तरह से भारत और रूस का सहयोग नई ऊंचाइयां छू रहा है।
3: पिछले वर्ष आपकी भारत यात्रा बहुत ही सफल रही और बहुत ही यादगार रही। हमने कई घंटे साथ बिताए और विशेष रूप से बिजनेस फोरम और एक प्रकार से बिजनेस वर्ल्ड का रशिया का हुज हु कहे उन सबको लेकर के आप आए और आर्थिक संबंधों को एक नई ऊंचाई और ज्यादा विस्तार देने का काम भी हमारी चर्चा में हुआ और मुझे खुशी है कि जो आउटकम निकले हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारी दोनों टीमें पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही हैं और बड़ी गति के साथ काम कर रही हैं। ये हमारे लिए गहरे संतोष का विषय है कि हमारा सहयोग निरंतर नई ऊंचाइयों को और बढ़ रहा है और दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब दुनिया का जियोपॉलिटिकल नक्शा पूरी तरह बदल रहा है। अमेरिका ईरान युद्ध को 6 महीने हो चुके हैं, रूस यूक्रेन युद्ध को 4.5 साल हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक तरफा विदेश नीति ने वैश्विक नियम आधारित व्यवस्था को चुनौती दी है और SCO अपनी 26वीं वर्षगांठ मना रहा है। ऐसे में भारत, रूस और चीन जैसी ताकतें एक मंच पर इकट्ठा हो रही हैं। इसे पश्चिमी प्रभाव के जवाब में एक काउंटर बैलेंस के तौर पर देखा जा रहा है। बिश्केक के बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन 12 से 13 सितंबर को नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी मिलेंगे। पीएम मोदी ने इसका न्योता दे दिया है।
3: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका और आपके डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक है। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
1: SCO का 26वां शिखर सम्मेलन किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हो रहा है जो 1 सितंबर तक चलेगा। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कई नेता शामिल हो रहे हैं, लेकिन मोदी, पुतिन और जिनपिंग की टिकड़ी ने यकीनन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ा दी है। इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट से ट्रंप की नींद और भी उड़ना लाजमी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि फ्रांस, न्यूजीलैंड, सेशेल्स, मलेशिया, स्लोवाकिया और इटली पिछले 1 साल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत तेजी से दुनिया भर की यात्राएं की हैं। उन्होंने नए पार्टनर बनाए हैं या मौजूद पार्टनरों के साथ रिश्ते मजबूत किए हैं। उन्हें एक कड़वी सच्चाई ने तेजी से कदम उठाने पर मजबूर किया है। अखबार ने आगे ट्रंप की आलोचना करते हुए लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप की वजह से दुनिया में मची उथल पुथल का सामना करने और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का भारत के पास एकमात्र तरीका है कि वो अलग अलग जगह पर अपने रिश्ते बढ़ाए। रिपोर्ट में पीएम मोदी की उज्बेकिस्तान की यात्रा का जिक्र भी शामिल है। अखबार ने SCO समिट के बारे में लिखा है और राष्ट्रपति पुतिन के साथ मोदी की मुलाकात की चर्चा भी की है और ये भी लिखा है कि कैसे पीएम मोदी ट्रंप के मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, एक एक करके डील कर रहे हैं और इसे एक रणनीति करार दिया है। SCO की सबसे दिलचस्प तस्वीर शायद यही है। एक तरफ मोदी और शी जिनपिंग एक ही बहुपक्षीय मंच पर हैं, दूसरी तरफ भारत और चीन के बीच सीमा विवाद और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसे में SCO भारत को चीन के साथ बातचीत का एक अतिरिक्त मंच देता है। दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधरे या बिगड़े, बहुपक्षीय मंचों पर संवाद की गुंजाइश बनी रहती है। भारत लंबे समय से मिडल ईस्ट के देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। मध्य एशिया तेल, गैस, यूरेनियम और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों का बड़ा भंडार है। भारत मध्य एशिया के देशों के साथ व्यापार भी बढ़ाना चाहता है। इसके लिए वो नए व्यापार और परिवहन मार्ग विकसित करने पर काम कर रहा है। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को देखते हुए SCO की टेबल और भी दिलचस्प हो जाती है। भारत लंबे समय से आतंकवाद के मुद्दे को एससीओ जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा है। पीएम मोदी ने भी इस यात्रा के संदर्भ में आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद को क्षेत्रीय शांति के लिए चुनौती बताया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी एससीओ का पूर्ण सदस्य है, इसीलिए यहां भारत को पाकिस्तान के साथ किसी द्विपक्षीय मंच की तरह बातचीत करने के बजाय एक बड़े बहुपक्षीय ढांचे में अपनी सुरक्षा चिंताओं को रखने का मौका मिलता है। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी में सभी दलों ने 27 के चुनाव के लिए कमर कसी हुई है और लखनऊ में सोमवार का दिन बैठकों का दिन रहा। यूपी की तीन बड़ी पार्टियों ने लखनऊ में तीन बड़ी बड़ी बैठकें की हैं। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तीनों ने चुनावी तैयारियों पर मंथन किया।
4: उत्तर प्रदेश में चुनावी दस्तक होने ही वाली है, उससे पहले हर दल पूरी तैयारी में जुटा है। बीजेपी की नई टीम ने सभी जिला अध्यक्षों, मोर्चा अध्यक्षों से लेकर सीएम, डिप्टी सीएम के साथ तैयारी की बैठकें की हैं, तो समाजवादी पार्टी ने भी प्रदेश भर से जिला अध्यक्षों, महानगर अध्यक्षों को टेक टीम के साथ बुलाया था और बीएसपी ने भी अपने सभी जिला प्रमुखों के साथ बैठक की। बीजेपी ने अपनी बैठक में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर सेवा संकल्प अभियान चलाने का प्लान बनाया है।
5: हर जिले से 5-5 पदाधिकारी, विधायक, सांसदों को आज बुलाया गया है। एक खाका तैयार किया जाएगा यूपी चुनाव के मद्देनजर कि किस तरीके से आखिर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को जवाब देने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी भी आज ही लखनऊ में बड़ी बैठकें कर रही हैं। देखना यह है कि इन बैठकों के दौर में कौन बाजी मारेगा, लेकिन एक बात तो साफ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे चुनाव में चेहरे के तौर पर नजर आ रहे हैं और स्मृति ईरानी का ध्यान भी अब उत्तर प्रदेश में केंद्रित हो चुका है।
4: बैठक के बाद सीएम योगी बहराइच के कार्यक्रम में पहुंचे और यहां उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा।
6: किसी बेटी को, किसी व्यापारी को, किसी माफिया और किसी अपराधी से भयभीत होने की आवश्यकता भी अब यूपी में नहीं पड़ती है। यही है डबल इंजन सरकार की कार्य।
4: इधर समाजवादी पार्टी की बैठक में अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार अभियान का शंखनाद कर दिया।
7: कल से हमारी पार्टी का प्रचार एक तरह से शुरू।
4: अखिलेश यादव के लिए घोटाले, भ्रष्टाचार, पीडीए अत्याचार, बंद स्कूल, फर्जी मुठभेड़, किसान संकट, अपराध और एसएआर ये मुद्दे हैं।
7: एसआईआर के बाद भारतीय जनता पार्टी की चुनाव आयोग के माध्यम से साजिश होगी और एक षड्यंत्र होगा कि दोबारा एसएआर कराया जाए।
4: तो फिर सवाल है कि एसएआर क्या है? एसएआर बोले तो स्पेशल एनुअल रिविजन, ये चुनाव आयोग अनिवार्य रूप से हर साल करता है। इसे स्पेशल समरी रिवीजन कहा जाता है, जो सालाना आमतौर पर अक्टूबर नवंबर में शुरू होता है। इसमें 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 साल के उम्र के हो चुके नौजवानों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाता है। अखिलेश इस संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
7: चुनाव से पहले एक एनुअल रिवीजन करेंगे ये लोग एसएआर, जिससे कि ये अपने लोगों के वोटों को एडजस्ट करेंगे। सुनने में आ रहा है कि बड़े पैमाने पर बिहार से लोग, झारखंड से लोग, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उनके ये लोग वोट बनाएंगे और अपने बूथों पर वोट बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए हमारे संगठन, हमारे जो बूथ स्तर पर ऐप के माध्यम से काम कर रहे हैं, उन सब का हमने सहयोग मांगा है।
4: अखिलेश एसआईआर के बाद एसएआर को नियम के विपरीत बताते हैं और इसे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने की मंशा से किए जाने वाला अभ्यास बता रहे हैं। इस तथ्य का जिक्र जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में सामने आया तो अदालत ने फिलहाल चल रहे सिर्फ 19 ट्रिब्यूनल्स की संख्या बढ़ाने और वाजिब नामों को लिस्ट में जोड़ते जाने को कहा था। आज तक ब्यूरो।
0: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कनाडा में हैं, मगर उनके यूएस में दिए गए बयान पर सियासत तेज हो चुकी है। ओवैसी ने भागवत के बयान पर सवाल उठाए हैं। उधर कनाडा में ऐतिहासिक मंच से संघ प्रमुख ने दुनिया को लेकर भारत की सोच को पूरी तरह से साफ कर दिया है।
8: इफ एनी हिंदू थिंक्स दैट देयर शुड बी नो मुस्लिम इन भारत, ही विल नॉट रिमेन हिंदू। If you want to call yourself Hindu, you must believe that all paths are leading to the same. And every human has a dignity. There is no difference between human beings.
4: मोहन भागवत के इसी बयान पर हिंदुस्तान में हंगामा बरपा है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि आरएसएस की कथनी और करनी में अंतर है। असदुद्दीन ओवैसी ने आज सोशल मीडिया पर लिखा कि आरएसएस की सबसे पुरानी चाल है, कुछ बातें बाहरी दुनिया के लिए होती हैं, जबकि कुछ उसके अपने सदस्यों के लिए। आरएसएस ने कभी भी अपने मुख्य विचारकों और लेखकों की सोच से खुद को अलग नहीं किया है। वे मुसलमानों और दूसरे अल्पसंख्यकों के बारे में क्या कहते हैं? इस बयान पर यहाँ भले ही सियासत हो रही है, मगर इसके बाद मोहन भागवत अपनी विदेश यात्रा के दूसरे पड़ाव पर कनाडा के टोरंटो पहुँचे। संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है और इस मौके पर मोहन भागवत कई देशों के दौरे पर हैं। टोरंटो के भव्य कार्यक्रम में संघ प्रमुख ने दुनिया को लेकर भारत के नजरिए और संस्कृति की पहचान को सामने रखा।
9: Whenever there was crisis anywhere in the world and help from Bharat was sought, Bharat never said no. And without even calling for help, it helps. This is the tradition. This is the DNA of Bharat. Therefore, you heard the song. Hindu jage to Vishwa jagega. You heard the first stanza. Hindu sada se Vishwa bandhu hai. Hindu is always like that.
4: भागवत ने साफ किया कि भारत का उदय दुनिया पर सैन्य या आर्थिक ताकत का ध्वंस जमाने के लिए नहीं है। भारत एक महाशक्ति के रूप में दूसरों पर प्रभुत्व नहीं जताना चाहता, बल्कि निस्वार्थ सेवा, ज्ञान और मानवीय मूल्यों के आधार पर विश्वगुरु बनना चाहता है।
9: विश्व का हर देश जब भी दिग्भ्रमित हो लड़खड़ाया, सत्य की पहचान करने इस धरा के पास आया।
4: इस आयोजन की कूटनीतिक अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि कनाडा के कुछ विपक्षी सांसदों और चुनिंदा संगठनों ने मोहन भागवत के वीजा और कार्यक्रम को रोकने का भारी राजनीतिक दबाव बनाया था, लेकिन कनाडा के 100 से अधिक बड़े हिंदू और सामाजिक संगठनों के पुरजोर समर्थन के बाद ये ऐतिहासिक आयोजन बिना किसी बाधा के पूरा हुआ। आज तक ब्यूरो।
0: शुद्धिकरण विवाद पर उत्तराखंड की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। राहुल गांधी पर एफआईआर के बाद इस विवाद ने पूरा तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस ने बाकायदा पुलिस से मिलकर एफआईआर का विरोध किया तो बीजेपी ने भी राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया।
10: ये SC ST एक्ट के खिलाफ ये काम है। लेट मी रिपीट हियर, इट इज अ क्राइम टू डू शुद्धिकरण। नो एक्शन हैज बीन टेकन। हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी जिन लोगों ने शुद्धिकरण किया है उत्तराखंड में, उन पर FIR लागू हो। ये जो इंसिडेंट है, ये हमें दिखाता है बीजेपी और RSS का माइंडसेट। वो नहीं चाहते कि इस देश के दलित प्रगति करें, वो नहीं चाहते कि इस देश के दलित रिस्पेक्ट के साथ जिए और सक्सेसफुल।
4: यही वो बयान है जिसके आधार पर उत्तराखंड की पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज की है। 8 अगस्त को मल्लिकार्जुन खड़गे की हल्द्वानी रैली के बाद 11 अगस्त को वहां के रामलीला ग्राउंड पर पूजा और हवन किया गया। 29 अगस्त को जब राहुल गांधी ने इस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो दलित समाज से आने वाले अमित कुमार की शिकायत पर हल्द्वानी में राहुल गांधी के खिलाफ SC ST उत्पीड़न एक्ट के तहत FIR दर्ज की गयी। लेकिन अब ये FIR उत्तराखंड समेत पूरे देश में दलितों के नाम पर नए सियासी संग्राम को जन्म दे रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं की कथित शुद्धिकरण पर FIR दर्ज करने को लेकर पुलिस से बहस हुई।
11: सुन लीजिए, ये SC ST का मामला है, ये CO स्तर का अधिकारी इसमें जांच करता, लेकिन जांच करने के बाद जो है क्या सही है तो उसके बाद है, लेकिन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लेने के लिए आप तैयार नहीं।
4: इधर दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा के मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई।
12: हमारे समाज में कुछ लोग दलित हैं, लेकिन समाज में बंटवारा कौन कर रहा है? ये भाजपा और RSS की विचारधारा है जो बंटवारा कर रही है, और यही इनका मकसद था जो इन्होंने अपने कुछ लोगों को भेजकर वहां पर सो कॉल्ड शुद्धिकरण करके। मतलब क्या था इनका? अगर राजनीतिक मतलब नहीं था तो क्या था, ये बता दें।
4: खड़गे के बहाने दलितों के अपमान को मुद्दा बना रही कांग्रेस पर पलटवार बीजेपी ने भी किया।
13: जहाँ पर रामलीला का मंचन होता है, बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, ऐसे आयोजनों पर जो गंदगी हुई थी, जो धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए थे, और एक धर्म विशेष के लोगों ने लगाए थे, उसके विरोध में लोगों ने जो धार्मिक संगठन थे उन्होंने उस वहाँ पर शुद्धिकरण का जो कार्यक्रम किया था वो कार्यक्रम था, और इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है।
4: कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज FIR में भी खड़गे की रैली के बाद रामलीला मैदान में न सिर्फ शराब की बोतलें बल्कि धार्मिक नारेबाजी की शिकायत दर्ज है। अब कांग्रेस उत्तराखंड पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगा रही है।
14: हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, RSS और BJP पार्टी थी, उन लोगों ने कुकृत्य किया था, लेकिन पुलिस ने उसमें आग में घी डालने का काम किया है। पुलिस कौन होती है? अगर कॉग्निजेंस लेना था आपने तो आप 10 तारीख के प्रकरण का कॉग्निजेंस लेते और मुकदमा कायम करते, लेकिन आपने मुकदमा कायम कर दिया राहुल गांधी के खिलाफ।
4: हल्द्वानी का मामला ऐसे समय में गंभीर राजनीतिक मोड़ ले रहा है जब राहुल चाय की दुकानों पर भी दलितों से भेदभाव जैसे आरोप लगा रहे हैं। आज तक ब्यूरो,
10: देश के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए।
0: अब बात यूपी में हुए मर्डर को लेकर चल रही राजनीति के बारे में करेंगे। अंकित बालियान की हत्या के हफ्ते भर के अंदर दो आरोपी ढेर कर दिए गए, लेकिन अंकित बालियान मर्डर केस को लेकर अपराध से ज्यादा सियासत की चर्चाएं हुई हैं। दरअसल इस हत्याकांड की बुनियाद में ही जात गोत्र की बड़ी वजह थी। हत्या के बाद अखिलेश यादव ने उसी जाति गोत्र की बात की तो राजनीति गर्मा गई।
1: छब्बीस अगस्त को शामली में हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बालियान की हत्या होती है। चार दिन तक जब कोई एक्शन नहीं होता तो बालियान की पत्नी CM योगी से हथियारों को मिट्टी में मिला देने की अपील करती हैं, और एक दिन बाद हत्या के दो आरोपियों का हिसाब किताब पूरा हो जाता है। केरला में पुलिस और STF के आरोपियों से मुठभेड़ होती है। हत्या के दो आरोपियों को पुलिस की टीम घेर लेती है। एनकाउंटर में दोनों आरोपियों को मार गिराया जाता है।
15: दो शूटर्स मारे गए हैं, सुमित और मोहित, और इनके पास से भारी मात्रा में आग्नेयास्त्र बरामद हुए हैं। इन्होंने पुलिस पर भारी फायरिंग भी की है जिससे दो कांस्टेबल्स भी हमारे घायल हुए हैं। अभी इस घटना में और भी लोग शामिल हैं जिनके बारे में तफ्तीश जारी है, और खास करके जो शूटर्स हैं और जो इस गैंग के लीडर्स हैं जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को प्लान किया है या अंजाम दिलाया है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।
1: लेकिन इस एनकाउंटर पर सियासत सुलग उठी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस PDA के लोगों का एनकाउंटर कर रही है। उन्होंने STF की भी नई परिभाषा दी।
7: मुख्यमंत्री जी की STF स्वजाति टॉर्चर फोर्स, स्वजाति टॉर्चर फोर्स, और लगातार PDA का उत्पीड़न हो रहा है।
1: अकेले अखिलेश यादव ही नहीं, समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव भी इस एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं।
16: कोई लॉ एंड ऑर्डर है उत्तर प्रदेश में सिवाय हत्याएं या गोली मार के एनकाउंटर कराना फर्जी? इसके अलावा कुछ भी नहीं।
1: हालांकि राम गोपाल यादव के बयान को अंकित बालियान के पिता ने ही खारिज कर दिया।
17: कहा है उन्होंने कि ये फर्जी, इसके पीछे आप क्या समझते हैं
18: भाई? वो तो राजनीतिक पार्टी है, वे तो पता नहीं क्या कहेगी क्या नहीं, लेकिन जब मैं खुद देख आया उनको दोनों को जिन्होंने पीछे से गोली मारी थी, तो मैं फर्जी कैसे कहूंगा।
1: अब यूपी की सरकार कह रही है कि आरोपियों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
19: बहुत ही दुखद घटना थी और प्रदेश पुलिस ने उन्हें पुलिस मुठभेड़ में मारा है। अंकित बलियान जी की जो निर्मम हत्या हुई थी, प्रदेश दुखी था। उन हत्यारों ने पुलिस पर भी गोलियां चलाई जिसकी किए की सजा उन्हें मिल चुकी है।
1: दो आरोपी पुलिस के एनकाउंटर में मारे गए और बाकी के आरोपियों को पुलिस तलाश रही है। इन सब के बीच अंकित की बहन मांग कर रही है कि बाकी आरोपियों का भी एनकाउंटर होना चाहिए।
20: हमें तब तक संतुष्टि नहीं मिलेगी तब तक मेरे भाई के हत्यारे संपूर्ण खत्म नहीं हो जाते, आपकी जड़ तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे, नहीं हम शांति से बैठेंगे।
1: एक तरफ परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है और दूसरी तरफ एनकाउंटर पर जबरदस्त सियासत हो रही है। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: एक बार फिर दिल्ली NCR में निर्भया जैसी दरिंदगी की गई है। इस बार ग्रेटर नोएडा में बस में चढ़ी एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप किया गया है। हैरानी की बात यह है कि ग्रेटर नोएडा के परी चौक से कश्मीरी गेट तक बस चली और इस दौरान लड़की के साथ दरिंदगी हुई, लेकिन दोनों ही राज्यों की पुलिस को कानो कान खबर नहीं लगी।

0: दो राज्यों की पुलिस सचेत रहती तो एक और निर्भया कांड नहीं होता। ग्रेटर नोएडा के सबसे व्यस्त चौराहे परी चौक से बस में सवार एक बच्ची दरिंदों का शिकार हो गई। करीब 47 किलोमीटर तक बस दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर दौड़ती रही और ड्राइवर और कंडक्टर नाबालिग से वहशत को अंजाम देते रहे। वारदात 4 अगस्त की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक छात्रा अपने परिवार वालों से नाराज होकर घर से निकली थी और चचेरे भाई के घर जा रही थी जो नोएडा में रहता है। भारी बारिश और अंधेरे की वजह से छात्रा गलती से परी चौक पर उतर गई। इसी दौरान एक खाली स्लीपर बस वहां से गुजरी। छात्रा को नोएडा सेक्टर 62 छोड़ने का भरोसा दिया और फिर ड्राइवर और कंडक्टर ने छात्रा से गैंगरेप किया। वारदात के बाद आरोपी छात्रा को कश्मीरी गेट बस अड्डे के पास रिंग रोड पर उतारकर वहां से फरार हो गए। फिर छात्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपियों की धरपकड़ की कोशिश शुरू हुई।
1: दिल्ली में एक बार फिर से एक ऐसा मामला सामने आया है जो फिर से पूरी दिल्ली एनसीआर को शमसार कर देगा। दरअसल ये मामला चलती बस में एक गैंग रेप का है। 16 वर्षीय मैनपुरी की रहने वाली 11वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की घर से लड़कर घर से बाहर निकलती है, बस पकड़ के अपने भाई के घर मैनपुरी से नोएडा आना चाहती है, लेकिन उस रात बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से उसे पता नहीं लगा और परी चौक के पास वो बस से उतर जाती है, जिसके बाद वो हाथ देकर एक स्लीपर बस को रोकती है। बस रुकती है और उसे कहती है कि वो सेक्टर 63 तक उसे छोड़ देंगे। बस पे चढ़ने के कुछ देर बाद ही जो बस का कंडक्टर है उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, उसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट करने लगता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने कुछ किया तो उसे जान से मार देंगे। इसके बाद करीब 47 किलोमीटर तक जो वो बस है दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर चलती है। नोएडा में इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद लड़की को कश्मीरी गेट के पास लाकर उतार दिया जाता है और फिर वो लड़की पीड़िता खुद पुलिस के पास पहुंचती है। और यहां आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन है। इसी पुलिस स्टेशन में आकर वो कंप्लेन देती है।
0: दिल्ली पुलिस ने गैंगरेप की वारदात के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। स्लीपर बस को जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है।
2: नए आपराधिक कानूनों के अनुसार बिना ज्यूरिसडिक्शनल इश्यूज में गए हुए थाना कश्मीरी गेट ने तुरंत विक्टिम का मेडिकल कराया और केस दर्ज किया। साथ ही सीसीटीवी कैमरेज की सहायता से कुछ ही घंटे में बस को भी ट्रेस किया और दोनों अपराधियों को भी अरेस्ट किया।
0: सवाल ज्यूरिसडिक्शन का नहीं है, सवाल यह है कि ग्रेटर नोएडा से दिल्ली तक बस चलती रही और गैंगरेप होता रहा और दोनों राज्यों की पुलिस को कानो कान खबर नहीं हुई। सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस की उन साझा बैठकों से क्या हासिल हुआ जो मिलजुल कर अपराध रोकने के लिए होती हैं। दिल्ली से अरविंद ओझा और अंशुल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
3: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: अभिषेक में गर्मजोशी के साथ पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई। बातचीत में यूक्रेन का मुद्दा भी उठा। प्रधानमंत्री ने कहा युद्ध मानवता के लिए खतरा, भारत शांति का पक्षधर। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी 7.8% रही। प्रधानमंत्री मोदी बोले निराशावादी लोगों की हुई हार। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी विरोध प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट में पहुंची दिल्ली पुलिस। 13 एफआईआर रद्द करने की इजाजत मांगी। आपराधिक पृष्ठभूमि के 2873 लोगों पर दर्ज हो केस। नेपाल में त्रासदी के बाद मरने वालों का नहीं थम रहा है आंकड़ा। 939 लोगों की गई जान, 3900 से ज्यादा लापता। रेस्क्यू के काम में भारतीय एक्सपर्ट्स भी शामिल। और मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से लिया संन्यास। अर्जेंटीना के कप्तान ने कहा अलविदा। सोशल मीडिया पर फैंस को लिखा भावुक पत्र। बिश्केक में एससीओ समिट के बीच प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की ये तीसरी आमने सामने मुलाकात है। ऐसे में इस मुलाकात में दोनों के बीच क्या बात हुई, दुनिया ये जानना और समझना चाहती है। देखिए बिश्केक में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की महामुलाकात के मायने क्या है।
1: मोदी और राष्ट्रपति पुतिन मिले दोस्ती के सिलसिले। मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई, क्या क्या बात हुई। बिश्केक से मैसेज क्लियर, भारत और रूस की दोस्ती जिंदाबाद। एससीओ में मोदी पुतिन जिनपिंग की केमिस्ट्री, अमेरिका में खलबली। भारत चीन रूस का त्रिकोण, ट्रंप का तोड़। एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन में वैसे तो 10 देश हैं, भारत चीन रूस पाकिस्तान कजाकिस्तान किर्गिस्तान ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान और ईरान। इसके अलावा पर्यवेक्षक के तौर पर कई और देश भी शामिल हैं। लेकिन सिर्फ 3 देश यानी भारत रूस और चीन इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया की टॉप हेडलाइंस बने हुए हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर क्यों दुनिया भारत रूस और चीन की चर्चा कर रही है और क्यों इन तीनों देशों के नेताओं की केमिस्ट्री से डोनाल्ड ट्रंप भी टेंशन में हैं। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं किर्गिस्तान में हुई पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की द्विपक्षीय बैठक और मुलाकात। जब बिश्केक में पीएम मोदी और पुतिन मिलते हैं तो दोनों नेता एक दूसरे के गले मिलते हैं। ये वो मुलाकात है जो सिर्फ भारत और रूस के पुराने संबंधों को और पुख्ता करती है बल्कि भारत रूस संबंधों की नई दिशा तय करने वाली है। इसीलिए पुतिन सीधे भारत और रूस के संबंधों पर बोलते हैं।
2: I'd like to note with satisfaction the following thing, namely that the Russian-Indian relations continue to get strengthened on the basis of the principles of the special and privileged partnership. Distinguished Prime Minister, of course, this is aided by your special attention to the Russian-Indian relations and the business and kind relations, friendly relations that have been established between us. And I'm very grateful to you for that.
1: लेकिन पीएम मोदी रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर राष्ट्रपति पुतिन से कहते हैं कि वो यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के पक्ष में हैं, क्योंकि युद्ध का हर दिन मानवता को पीछे धकेल रहा है।
3: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। पिछली बार भी जब हम मिले थे तब आपने विस्तार से सभी विषयों के बारे में मुझे अवगत किया था। जैसा कि आप जानते हैं भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देती है, उमंग से भर देती है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: आपको बता दें कि पीएम मोदी ने यह भी बताया कि किस तरह से भारत और रूस का सहयोग नई ऊंचाइयां छू रहा है।
3: पिछले वर्ष आपकी भारत यात्रा बहुत ही सफल रही और बहुत ही यादगार रही। हमने कई घंटे साथ बिताए और विशेष रूप से बिजनेस फोरम और एक प्रकार से बिजनेस वर्ल्ड का रशिया का हुज हु कहे उन सबको लेकर के आप आए और आर्थिक संबंधों को एक नई ऊंचाई और ज्यादा विस्तार देने का काम भी हमारी चर्चा में हुआ और मुझे खुशी है कि जो आउटकम निकले हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारी दोनों टीमें पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही हैं और बड़ी गति के साथ काम कर रही हैं। ये हमारे लिए गहरे संतोष का विषय है कि हमारा सहयोग निरंतर नई ऊंचाइयों को और बढ़ रहा है और दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब दुनिया का जियोपॉलिटिकल नक्शा पूरी तरह बदल रहा है। अमेरिका ईरान युद्ध को 6 महीने हो चुके हैं, रूस यूक्रेन युद्ध को 4.5 साल हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक तरफा विदेश नीति ने वैश्विक नियम आधारित व्यवस्था को चुनौती दी है और SCO अपनी 26वीं वर्षगांठ मना रहा है। ऐसे में भारत, रूस और चीन जैसी ताकतें एक मंच पर इकट्ठा हो रही हैं। इसे पश्चिमी प्रभाव के जवाब में एक काउंटर बैलेंस के तौर पर देखा जा रहा है। बिश्केक के बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन 12 से 13 सितंबर को नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी मिलेंगे। पीएम मोदी ने इसका न्योता दे दिया है।
3: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका और आपके डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक है। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
1: SCO का 26वां शिखर सम्मेलन किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हो रहा है जो 1 सितंबर तक चलेगा। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कई नेता शामिल हो रहे हैं, लेकिन मोदी, पुतिन और जिनपिंग की तिकड़ी ने यकीनन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ा दी है। इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट से ट्रंप की नींद और भी उड़ना लाजमी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि फ्रांस, न्यूजीलैंड, सेशेल्स, मलेशिया, स्लोवाकिया और इटली पिछले 1 साल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत तेजी से दुनिया भर की यात्राएं की हैं। उन्होंने नए पार्टनर बनाए हैं या मौजूद पार्टनरों के साथ रिश्ते मजबूत किए हैं। उन्हें एक कड़वी सच्चाई ने तेजी से कदम उठाने पर मजबूर किया है। अखबार ने आगे ट्रंप की आलोचना करते हुए लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप की वजह से दुनिया में मची उथल पुथल का सामना करने और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का भारत के पास एकमात्र तरीका है कि वो अलग अलग जगह पर अपने रिश्ते बढ़ाए। रिपोर्ट में पीएम मोदी की उज्बेकिस्तान की यात्रा का जिक्र भी शामिल है। अखबार ने SCO समिट के बारे में लिखा है और राष्ट्रपति पुतिन के साथ मोदी की मुलाकात की चर्चा भी की है और ये भी लिखा है कि कैसे पीएम मोदी ट्रंप के मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, एक एक करके डील कर रहे हैं और इसे एक रणनीति करार दिया है। SCO की सबसे दिलचस्प तस्वीर शायद यही है। एक तरफ मोदी और शी जिनपिंग एक ही बहुपक्षीय मंच पर हैं, दूसरी तरफ भारत और चीन के बीच सीमा विवाद और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसे में SCO भारत

0: भारत लंबे समय से मिडल ईस्ट के देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। मध्य एशिया तेल, गैस, यूरेनियम और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों का बड़ा भंडार है। भारत मध्य एशिया के देशों के साथ व्यापार भी बढ़ाना चाहता है। इसके लिए वो नए व्यापार और परिवहन मार्ग विकसित करने पर काम कर रहा है। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को देखते हुए एससीओ की टेबल और भी दिलचस्प हो जाती है। भारत लंबे समय से आतंकवाद के मुद्दे को एससीओ जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा है। पीएम मोदी ने भी इस यात्रा के संदर्भ में आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद को क्षेत्रीय शांति के लिए चुनौती बताया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी एससीओ का पूर्ण सदस्य है, इसीलिए यह भारत को पाकिस्तान के साथ किसी द्विपक्षीय मंच की तरह बातचीत करने के बजाय एक बड़े बहुपक्षीय ढांचे में अपनी सुरक्षा चिंताओं को रखने का मौका मिलता है। आज तक ब्यूरो।
1: यूपी में सभी दलों ने 27 के चुनाव के लिए कमर कसी हुई है और लखनऊ में सोमवार का दिन बैठकों का दिन रहा। यूपी की तीन बड़ी पार्टियों ने लखनऊ में तीन बड़ी बड़ी बैठकें की हैं। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तीनों ने चुनावी तैयारियों पर मंथन किया।
2: उत्तर प्रदेश में चुनावी दस्तक होने ही वाली है, उससे पहले हर दल पूरी तैयारी में जुटा है। बीजेपी की नई टीम ने सभी जिलाध्यक्षों, मोर्चा अध्यक्षों से लेकर सीएम, डिप्टी सीएम के साथ तैयारी की बैठकें की हैं, तो समाजवादी पार्टी ने भी प्रदेश भर से जिलाध्यक्षों, महानगर अध्यक्षों को टेक टीम के साथ बुलाया था और बीएसपी ने भी अपने सभी जिला प्रमुखों के साथ बैठक की। बीजेपी ने अपनी बैठक में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर सेवा संकल्प अभियान चलाने का प्लान बनाया है।
3: हर जिले से 5-5 पदाधिकारी, विधायक, सांसदों को आज बुलाया गया है। एक खाका तैयार किया जाएगा यूपी चुनाव के मद्देनजर कि किस तरीके से आखिर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को जवाब देने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी भी आज ही लखनऊ में बड़ी बैठकें कर रही है। देखना यह है कि इन बैठकों के दौर में कौन बाजी मारेगा, लेकिन एक बात तो साफ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे चुनाव में चेहरे के तौर पर नजर आ रहे हैं और स्मृति ईरानी का ध्यान भी अब उत्तर प्रदेश में केंद्रित हो चुका है।
2: बैठक के बाद सीएम योगी बहराइच के कार्यक्रम में पहुंचे और यहां उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा।
4: किसी बेटी को, किसी व्यापारी को, किसी माफिया और किसी अपराधी से भयभीत होने की आवश्यकता भी अब यूपी में नहीं पड़ती है। यही है डबल इंजन सरकार की कार्य।
2: इधर समाजवादी पार्टी की बैठक में अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार अभियान का शंखनाद कर दिया।
5: कल से हमारी पार्टी का प्रचार एक तरह से शुरू।
2: अखिलेश यादव के लिए घोटाले, भ्रष्टाचार, पीडीए अत्याचार, बंद स्कूल, फर्जी मुठभेड़, किसान संकट, अपराध और एसएआर ये मुद्दे हैं।
5: एसआईआर के बाद भारतीय जनता पार्टी की चुनाव आयोग के माध्यम से साजिश होगी और एक षड्यंत्र होगा कि दोबारा एसएआर कराया जाए।
2: तो फिर सवाल है कि एसएआर क्या है? एसएआर बोले तो स्पेशल एनुअल रिविजन, ये चुनाव आयोग अनिवार्य रूप से हर साल करता है। इसे स्पेशल समरी रिवीजन कहा जाता है, जो सालाना आमतौर पर अक्टूबर नवंबर में शुरू होता है। इसमें 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 साल की उम्र के हो चुके नौजवानों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाता है। अखिलेश इस संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
5: चुनाव से पहले एक एनुअल रिवीजन करेंगे ये लोग एसएआर, जिससे कि ये अपने लोगों के वोटों को एडजस्ट करेंगे। सुनने में आ रहा है कि बड़े पैमाने पर बिहार से लोग, झारखंड से लोग, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उनके ये लोग वोट बनाएंगे और अपने बूथों पर वोट बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए हमारे संगठन, हमारे जो बूथ स्तर पर ऐप के माध्यम से काम करें, उन सब का हमने सहयोग मांगा है।
2: अखिलेश एसआईआर के बाद एसएआर को नियम के विपरीत बताते हैं और इसे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने की मंशा से किए जाने वाला अभ्यास बता रहे हैं। इस तथ्य का जिक्र जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में सामने आया तो अदालत ने फिलहाल चल रहे सिर्फ 19 ट्रिब्यूनल्स की संख्या बढ़ाने और वाजिब नामों को लिस्ट में जोड़ते जाने को कहा था। आज तक ब्यूरो।
1: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कनाडा में हैं, मगर उनके यूएस में दिए गए बयान पर सियासत तेज हो चुकी है। ओवैसी ने भागवत के बयान पर सवाल उठाए हैं। उधर कनाडा में ऐतिहासिक मंच से संघ प्रमुख ने दुनिया को लेकर भारत की सोच को पूरी तरह से साफ कर दिया है।

0: no Muslim in Bharat, he will not remain Hindu. If you want to call yourself Hindu, you must believe that all paths are leading to the same. And every human has a dignity. There is no difference between human beings.
1: मोहन भागवत के इसी बयान पर हिंदुस्तान में हंगामा बरपा है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि आरएसएस की कथनी और करनी में अंतर है। असदुद्दीन ओवैसी ने आज सोशल मीडिया पर लिखा कि आरएसएस की सबसे पुरानी चाल है, कुछ बातें बाहरी दुनिया के लिए होती हैं, जबकि कुछ उसके अपने सदस्यों के लिए। आरएसएस ने कभी भी अपने मुख्य विचारकों और लेखकों की सोच से खुद को अलग नहीं किया है। वे मुसलमानों और दूसरे अल्पसंख्यकों के बारे में क्या कहते हैं? इस बयान पर यहाँ भले ही सियासत हो रही है, मगर इसके बाद मोहन भागवत अपनी विदेश यात्रा के दूसरे पड़ाव पर कनाडा के टोरंटो पहुँचे। संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है और इस मौके पर मोहन भागवत कई देशों के दौरे पर हैं। टोरंटो के भव्य कार्यक्रम में संघ प्रमुख ने दुनिया को लेकर भारत के नजरिए और संस्कृति की पहचान को सामने रखा।
2: Whenever there was crisis anywhere in the world and help from Bharat was sought, Bharat never said no. And without even calling for help, it helps. This is the tradition. This is the DNA of Bharat. Therefore, you heard the song. Hindu jage to Vishwa jagega. You heard the first stanza. Hindu sada se Vishwa bandhu hai. Hindu is always like that.
1: भागवत ने साफ किया कि भारत का उदय दुनिया पर सैन्य या आर्थिक ताकत का ध्वंस जमाने के लिए नहीं है। भारत एक महाशक्ति के रूप में दूसरों पर प्रभुत्व नहीं जताना चाहता, बल्कि निस्वार्थ सेवा, ज्ञान और मानवीय मूल्यों के आधार पर विश्वगुरु बनना चाहता है।
2: विश्व का हर देश जब भी दिग्भ्रमित हो लड़खड़ाया, सत्य की पहचान करने इस धरा के पास आया।
1: इस आयोजन की कूटनीतिक अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि कनाडा के कुछ विपक्षी सांसदों और चुनिंदा संगठनों ने मोहन भागवत के वीजा और कार्यक्रम को रोकने का भारी राजनीतिक दबाव बनाया था, लेकिन कनाडा के 100 से अधिक बड़े हिंदू और सामाजिक संगठनों के पुरजोर समर्थन के बाद ये ऐतिहासिक आयोजन बिना किसी बाधा के पूरा हुआ। आज तक ब्यूरो।
3: शुद्धिकरण विवाद पर उत्तराखंड की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। राहुल गांधी पर एफआईआर के बाद इस विवाद ने पूरा तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस ने बाकायदा पुलिस से मिलकर एफआईआर का विरोध किया तो बीजेपी ने भी राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया।
4: ये SC ST एक्ट के खिलाफ ये काम है। लेट मी रिपीट हियर, इट इज अ क्राइम टू डू शुद्धिकरण। नो एक्शन हैज बीन टेकन। हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी जिन लोगों ने शुद्धिकरण किया है उत्तराखंड में, उन पर FIR लागू हो। ये जो इंसिडेंट है, ये हमें दिखाता है बीजेपी और RSS का माइंडसेट। वो नहीं चाहते कि इस देश के दलित प्रगति करें, वो नहीं चाहते कि इस देश के दलित रिस्पेक्ट के साथ जिए और सक्सेसफुल।
1: यही वो बयान है जिसके आधार पर उत्तराखंड की पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज की है। 8 अगस्त को मल्लिकार्जुन खड़गे की हल्द्वानी रैली के बाद 11 अगस्त को वहां के रामलीला ग्राउंड पर पूजा और हवन किया गया। 29 अगस्त को जब राहुल गांधी ने इस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो दलित समाज से आने वाले अमित कुमार की शिकायत पर हल्द्वानी में राहुल गांधी के खिलाफ SC ST उत्पीड़न एक्ट के तहत FIR दर्ज की गयी। लेकिन अब ये FIR उत्तराखंड समेत पूरे देश में दलितों के नाम पर नए सियासी संग्राम को जन्म दे रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं की कथित शुद्धिकरण पर FIR दर्ज करने को लेकर पुलिस से बहस हुई।
5: SC ST का मामला है, ये CO स्तर का अधिकारी इसमें जांच करता, लेकिन जांच करने के बाद जो है क्या सही है तो उसके बाद है, लेकिन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लेने के लिए आप तैयार नहीं।
1: इधर दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा के मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई।
6: हमारे समाज में कुछ लोग दलित हैं, लेकिन समाज में बंटवारा कौन कर रहा है? ये भाजपा और RSS की विचारधारा है जो बंटवारा कर रही है, और यही इनका मकसद था जो इन्होंने अपने कुछ लोगों को भेजकर वहां पर सो कॉल्ड शुद्धिकरण करके मतलब क्या था इनका? अगर राजनीतिक मतलब नहीं था तो क्या था, ये बता दें।
1: खड़गे के बहाने दलितों के अपमान को मुद्दा बना रही कांग्रेस पर पलटवार बीजेपी ने भी किया।
7: जहाँ पर रामलीला का मंचन होता है, बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, ऐसे आयोजनों पर जो गंदगी हुई थी, जो धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए थे और एक धर्म विशेष के लोगों ने लगाए थे, उसके विरोध में लोगों ने जो धार्मिक संगठन थे उन्होंने उस वहाँ पर शुद्धिकरण का जो कार्यक्रम किया था वो कार्यक्रम था। और इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है।
4: कांग्रेस प्रेसिडेंट
1: राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज FIR में भी खड़गे की रैली के बाद रामलीला मैदान में न सिर्फ शराब की बोतलें बल्कि धार्मिक नारेबाजी की शिकायत दर्ज है। अब कांग्रेस उत्तराखंड पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगा रही है।
8: हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। RSS और BJP पार्टी थी, उन लोगों ने कुकृत्य किया था, लेकिन पुलिस ने उसमें आग में घी डालने का काम किया है। पुलिस कौन होती है? अगर कॉग्निजेंस लेना था आपने तो आप 10 तारीख के प्रकरण का कॉग्निजेंस लेते और मुकदमा कायम करते, लेकिन आपने मुकदमा कायम कर दिया राहुल गांधी के खिलाफ।
1: हल्द्वानी का मामला ऐसे समय में गंभीर राजनीतिक मोड़ ले रहा है जब राहुल चाय की दुकानों पर भी दलितों से भेदभाव जैसे आरोप लगा रहे हैं। आज तक ब्यूरो
4: देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए।
3: अब बात यूपी में हुए मर्डर को लेकर चल रही राजनीति के बारे में करेंगे। अंकित बालियान की हत्या के हफ्ते भर के अंदर दो आरोपी ढेर कर दिए गए, लेकिन अंकित बालियान मर्डर केस को लेकर अपराध से ज्यादा सियासत की चर्चाएं हुई हैं। दरअसल इस हत्याकांड की बुनियाद में ही जात गोत्र की बड़ी वजह थी। हत्या के बाद अखिलेश यादव ने उसी जाति गोत्र की बात की तो राजनीति गर्मा गई।
9: छब्बीस अगस्त को शामली में हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बालियान की हत्या होती है। चार दिन तक जब कोई एक्शन नहीं होता तो बालियान की पत्नी CM योगी से हथियारों को मिट्टी में मिला देने की अपील करती हैं और एक दिन बाद हत्या के दो आरोपियों का हिसाब किताब पूरा हो जाता है। कैराना में पुलिस और STF के आरोपियों से मुठभेड़ होती है। हत्या के दो आरोपियों को पुलिस की टीम घेर लेती है। एनकाउंटर में दोनों आरोपियों को मार गिराया जाता है।
10: दो शूटर्स मारे गए हैं, सुमित और मोहित, और इनके पास से भारी मात्रा में आग्नेयास्त्र बरामद हुए हैं। इन्होंने पुलिस पर भारी फायरिंग भी की है जिससे दो कांस्टेबल्स भी हमारे घायल हुए हैं। अभी इस घटना में और भी लोग शामिल हैं जिनके बारे में तफ्तीश जारी है, और खास करके जो शूटर्स हैं और जो इस गैंग के लीडर्स हैं जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को प्लान किया है या अंजाम दिलाया है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।
9: लेकिन इस एनकाउंटर पर सियासत सुलग उठी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस PDA के लोगों का एनकाउंटर कर रही है। उन्होंने STF की भी नई परिभाषा दी।
11: मुख्यमंत्री जी की STF स्वजाति टॉर्चर फोर्स, स्वजाति टॉर्चर फोर्स, और लगातार PDA का उत्पीड़न हो रहा है।
9: अकेले अखिलेश यादव ही नहीं, समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव भी इस एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं।
12: कोई लॉ एंड ऑर्डर है उत्तर प्रदेश में? सिवाय हत्याएं या गोली मार के एनकाउंटर कराना फर्जी, इसके अलावा कुछ भी नहीं।
9: हालांकि राम गोपाल यादव के बयान को अंकित बालियान के पिता ने ही खारिज कर दिया।
13: कहा है उन्होंने कि ये फर्जी, इसके पीछे आप क्या समझते हैं
14: भाई? वो तो राजनीतिक पार्टी है, वे तो पता नहीं क्या कहेगी क्या नहीं, लेकिन जब मैं खुद देख आया उनको दोनों को जिन्होंने पीछे से गोली मारी थी, तो मैं फर्जी कैसे कहूंगा।
9: अब यूपी की सरकार कह रही है कि आरोपियों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
15: बहुत ही दुखद घटना थी और प्रदेश पुलिस ने उन्हें पुलिस मुठभेड़ में मारा है। अंकित बलियान जी की जो निर्मम हत्या हुई थी, प्रदेश दुखी था। उन हत्यारों ने पुलिस पर भी गोलियां चलाई जिसकी किए की सजा उन्हें मिल चुकी है।
9: दो आरोपी पुलिस के एनकाउंटर में मारे गए और बाकी के आरोपियों को पुलिस तलाश रही है। इन सब के बीच अंकित की बहन मांग कर रही है कि बाकी आरोपियों का भी एनकाउंटर होना चाहिए।
16: हमें तब तक संतुष्टि नहीं मिलेगी तब तक मेरे भाई के हत्यारे संपूर्ण खत्म नहीं हो जाते, आपकी जड़ तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। नहीं, हम शांति से बैठेंगे।
9: एक तरफ परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है और दूसरी तरफ एनकाउंटर पर जबरदस्त सियासत हो रही है। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
3: एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में निर्भया जैसी दरिंदगी की गई है। इस बार ग्रेटर नोएडा में बस में चढ़ी एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप किया गया है। हैरानी की बात यह है कि ग्रेटर नोएडा के परी चौक से कश्मीरी गेट तक बस चली और इस दौरान लड़की के साथ दरिंदगी हुई, लेकिन दोनों ही राज्यों की पुलिस को कानो कान खबर नहीं लगी।

0: दो राज्यों की पुलिस सचेत रहती तो एक और निर्भया कांड नहीं होता। ग्रेटर नोएडा के सबसे व्यस्त चौराहे परी चौक से बस में सवार एक बच्ची दरिंदों का शिकार हो गई। करीब 47 किलोमीटर तक बस दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर दौड़ती रही और ड्राइवर और कंडक्टर नाबालिग से वहशत को अंजाम देते रहे। वारदात 4 अगस्त की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक छात्रा अपने परिवार वालों से नाराज होकर घर से निकली थी और चचेरे भाई के घर जा रही थी जो नोएडा में रहता है। भारी बारिश और अंधेरे की वजह से छात्रा गलती से परी चौक पर उतर गई। इसी दौरान एक खाली स्लीपर बस वहां से गुजरी। छात्रा को नोएडा सेक्टर 62 छोड़ने का भरोसा दिया और फिर ड्राइवर और कंडक्टर ने छात्रा से गैंगरेप किया। वारदात के बाद आरोपी छात्रा को कश्मीरी गेट बस अड्डे के पास रिंग रोड पर उतार कर वहां से फरार हो गए। फिर छात्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपियों की धरपकड़ की कोशिश शुरू हुई।
1: दिल्ली में एक बार फिर से एक ऐसा मामला सामने आया है जो फिर से पूरी दिल्ली एनसीआर को शमसार कर देगा। दरअसल ये मामला चलती बस में एक गैंग रेप का है। 16 वर्षीय मैनपुरी की रहने वाली 11वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की घर से लड़कर घर से बाहर निकलती है, बस पकड़ के अपने भाई के घर मैनपुरी से नोएडा आना चाहती है, लेकिन उस रात बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से उसे पता नहीं लगा और परी चौक के पास वो बस से उतर जाती है, जिसके बाद वो हाथ देकर एक स्लीपर बस को रोकती है। बस रुकती है और उसे कहती है कि वो सेक्टर 63 तक उसे छोड़ देंगे। बस पे चढ़ने के कुछ देर बाद ही जो बस का कंडक्टर है उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, उसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट करने लगता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने कुछ किया तो उसे जान से मार देंगे। इसके बाद करीब 47 किलोमीटर तक जो वो बस है दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर चलती है। नोएडा में इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद लड़की को कश्मीरी गेट के पास लाकर उतार दिया जाता है और फिर वो लड़की पीड़िता खुद पुलिस के पास पहुंचती है। और यहां आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन है। इसी पुलिस स्टेशन में आकर वो कंप्लेन देती है।
0: दिल्ली पुलिस ने गैंगरेप की वारदात के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। स्लीपर बस को जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है।
2: नए आपराधिक कानूनों के अनुसार बिना ज्यूरिसडिक्शनल इश्यूज में गए हुए थाना कश्मीरी गेट ने तुरंत विक्टिम का मेडिकल कराया और केस दर्ज किया। साथ ही सीसीटीवी कैमरेज की सहायता से कुछ ही घंटे में बस को भी ट्रेस किया और दोनों अपराधियों को भी अरेस्ट किया।
0: सवाल ज्यूरिसडिक्शन का नहीं है, सवाल यह है कि ग्रेटर नोएडा से दिल्ली तक बस चलती रही और गैंगरेप होता रहा और दोनों राज्यों की पुलिस को कानो कान खबर नहीं हुई। सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस की उन साझा बैठकों से क्या हासिल हुआ जो मिलजुल कर अपराध रोकने के लिए होती हैं। दिल्ली से अरविंद ओझा और अंशुल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
3: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, पहले प्रधानमंत्री हमारे नेहरू जी बने। उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे पहले प्रधानमंत्री बनते तो भारत की क्या दिशा और दशा होती?
1: ये तुमने सवाल क्वेश्चन किया, ये संसद में होता तो बड़ा मजा आता। हर तरीके एक पार्टी बोलती कि कश्मीर हमारा होता, अफगानिस्तान तक हम कब्जा कर लेते, पब्लिक बाहर सुन के ताली वाली ही बजाती।

0: बिश्केक में गर्मजोशी के साथ पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई। बातचीत में यूक्रेन का मुद्दा भी उठा। प्रधानमंत्री ने कहा युद्ध मानवता के लिए खतरा, भारत शांति का पक्षधर। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी 7.8% रही। प्रधानमंत्री मोदी बोले निराशावादी लोगों की हुई हार। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी विरोध प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट में पहुंची दिल्ली पुलिस। 13 एफआईआर रद्द करने की इजाजत मांगी। आपराधिक पृष्ठभूमि के 2873 लोगों पर दर्ज हो केस। नेपाल में त्रासदी के बाद मरने वालों का नहीं थम रहा है आंकड़ा। 939 लोगों की गई जान, 3900 से ज्यादा लापता। रेस्क्यू के काम में भारतीय एक्सपर्ट्स भी शामिल। और मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से लिया संन्यास। अर्जेंटीना के कप्तान ने कहा अलविदा। सोशल मीडिया पर फैंस को लिखा भावुक पत्र। बिश्केक में एससीओ समिट के बीच प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की ये तीसरी आमने सामने मुलाकात है। ऐसे में इस मुलाकात में दोनों के बीच क्या बात हुई, दुनिया ये जानना और समझना चाहती है। देखिए बिश्केक में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की महामुलाकात के मायने क्या है।
1: मोदी और राष्ट्रपति पुतिन मिले दोस्ती के सिलसिले। मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई, क्या क्या बात हुई। बिश्केक से मैसेज क्लियर, भारत और रूस की दोस्ती जिंदाबाद। एससीओ में मोदी पुतिन जिनपिंग की केमिस्ट्री, अमेरिका में खलबली। भारत चीन रूस का त्रिकोण, ट्रंप का तोड़। एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन में वैसे तो 10 देश हैं, भारत चीन रूस पाकिस्तान कजाकिस्तान किर्गिस्तान ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान और ईरान। इसके अलावा पर्यवेक्षक के तौर पर कई और देश भी शामिल हैं। लेकिन सिर्फ 3 देश यानी भारत रूस और चीन इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया की टॉप हेडलाइंस बने हुए हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर क्यों दुनिया भारत रूस और चीन की चर्चा कर रही है और क्यों इन तीनों देशों के नेताओं की केमिस्ट्री से डोनाल्ड ट्रंप भी टेंशन में हैं। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं किर्गिस्तान में हुई पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की द्विपक्षीय बैठक और मुलाकात। जब बिश्केक में पीएम मोदी और पुतिन मिलते हैं तो दोनों नेता एक दूसरे के गले मिलते हैं। ये वो मुलाकात है जो सिर्फ भारत और रूस के पुराने संबंधों को और पुख्ता करती है बल्कि भारत रूस संबंधों की नई दिशा तय करने वाली है। इसीलिए पुतिन सीधे भारत और रूस के संबंधों पर बोलते हैं।
2: I'd like to note with satisfaction the following thing, namely that the Russian-Indian relations continue to get strengthened on the basis of the principles of the special and privileged partnership. Distinguished Prime Minister, of course this is aided by your special attention to the Russian-Indian relations and the business and kind relations, friendly relations that have been established between us, and I'm very grateful to you for that.
1: लेकिन पीएम मोदी रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर राष्ट्रपति पुतिन से कहते हैं कि वो यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के पक्ष में हैं, क्योंकि युद्ध का हर दिन मानवता को पीछे धकेल रहा है।
3: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। पिछली बार भी जब हम मिले थे तब आपने विस्तार से सभी विषयों के बारे में मुझे अवगत किया था। जैसा कि आप जानते हैं भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देती है, उमंग से भर देती है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: आपको बता दें कि पीएम मोदी ने यह भी बताया कि किस तरह से भारत और रूस का सहयोग नई ऊंचाइयां छू रहा है।
3: पिछले वर्ष आपकी भारत यात्रा बहुत ही सफल रही और बहुत ही यादगार रही। हमने कई घंटे साथ बिताए और विशेष रूप से बिजनेस फोरम और एक प्रकार से बिजनेस वर्ल्ड का रशिया का हुज हु कहे उन सबको लेकर के आप आए और आर्थिक संबंधों को एक नई ऊंचाई और ज्यादा विस्तार देने का काम भी हमारी चर्चा में हुआ। और मुझे खुशी है कि जो आउटकम निकले हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारी दोनों टीमें पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही हैं और बड़ी गति के साथ काम कर रही हैं। ये हमारे लिए गहरे संतोष का विषय है कि हमारा सहयोग निरंतर नई ऊंचाइयों को और बढ़ रहा है और दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब दुनिया का जियोपॉलिटिकल नक्शा पूरी तरह बदल रहा है। अमेरिका ईरान युद्ध को 6 महीने हो चुके हैं, रूस यूक्रेन युद्ध को 4.5 साल हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक तरफा विदेश नीति ने वैश्विक नियम आधारित व्यवस्था को चुनौती दी है और SCO अपनी 26वीं वर्षगांठ मना रहा है। ऐसे में भारत, रूस और चीन जैसी ताकतें एक मंच पर इकट्ठा हो रही हैं। इसे पश्चिमी प्रभाव के जवाब में एक काउंटर बैलेंस के तौर पर देखा जा रहा है। बिश्केक के बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन 12 से 13 सितंबर को नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी मिलेंगे। पीएम मोदी ने इसका न्योता दे दिया है।
3: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका और आपके डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक है। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
1: SCO का 26वां शिखर सम्मेलन किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हो रहा है जो 1 सितंबर तक चलेगा। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कई नेता शामिल हो रहे हैं, लेकिन मोदी, पुतिन और जिनपिंग की तिकड़ी ने यकीनन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ा दी है। इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट से ट्रंप की नींद और भी उड़ना लाजमी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि फ्रांस, न्यूजीलैंड, सेशेल्स, मलेशिया, स्लोवाकिया और इटली पिछले 1 साल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत तेजी से दुनिया भर की यात्राएं की हैं। उन्होंने नए पार्टनर बनाए हैं या मौजूद पार्टनरों के साथ रिश्ते मजबूत किए हैं। उन्हें एक कड़वी सच्चाई ने तेजी से कदम उठाने पर मजबूर किया है। अखबार ने आगे ट्रंप की आलोचना करते हुए लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप की वजह से दुनिया में मची उथल पुथल का सामना करने और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का भारत के पास एकमात्र तरीका है कि वो अलग अलग जगह पर अपने रिश्ते बढ़ाए। रिपोर्ट में पीएम मोदी की उज्बेकिस्तान की यात्रा का जिक्र भी शामिल है। अखबार ने SCO समिट के बारे में लिखा है और राष्ट्रपति पुतिन के साथ मोदी की मुलाकात की चर्चा भी की है और ये भी लिखा है कि कैसे पीएम मोदी ट्रंप के मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, एक एक करके डील कर रहे हैं और इसे एक रणनीति करार दिया है। SCO की सबसे दिलचस्प तस्वीर शायद यही है। एक तरफ मोदी और शी जिनपिंग एक ही बहुपक्षीय मंच पर हैं, दूसरी तरफ भारत और चीन के बीच सीमा विवाद और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसे में SCO भारत को चीन के साथ बातचीत का एक अतिरिक्त मंच देता है। दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधरे या बिगड़े, बहुपक्षीय मंचों पर संवाद की गुंजाइश बनी रहती है। भारत लंबे समय से मिडल ईस्ट के देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। मध्य एशिया तेल, गैस, यूरेनियम और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों का बड़ा भंडार है। भारत मध्य एशिया के देशों के साथ व्यापार भी बढ़ाना चाहता है। इसके लिए वो नए व्यापार और परिवहन मार्ग विकसित करने पर काम कर रहा है। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को देखते हुए SCO की टेबल और भी दिलचस्प हो जाती है। भारत लंबे समय से आतंकवाद के मुद्दे को एससीओ जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा है। पीएम मोदी ने भी इस यात्रा के संदर्भ में आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद को क्षेत्रीय शांति के लिए चुनौती बताया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी एससीओ का पूर्ण सदस्य है, इसीलिए यहां भारत को पाकिस्तान के साथ किसी द्विपक्षीय मंच की तरह बातचीत करने के बजाय एक बड़े बहुपक्षीय ढांचे में अपनी सुरक्षा चिंताओं को रखने का मौका मिलता है। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी में सभी दलों ने 27 के चुनाव के लिए कमर कसी हुई है और लखनऊ में सोमवार का दिन बैठकों का दिन रहा। यूपी की तीन बड़ी पार्टियों ने लखनऊ में तीन बड़ी बड़ी बैठकें की हैं। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तीनों ने चुनावी तैयारियों पर मंथन किया।
4: उत्तर प्रदेश में चुनावी दस्तक होने ही वाली है, उससे पहले हर दल पूरी तैयारी में जुटा है। बीजेपी की नई टीम ने सभी जिलाध्यक्षों, मोर्चा अध्यक्षों से लेकर सीएम, डिप्टी सीएम के साथ तैयारी की बैठकें की हैं, तो समाजवादी पार्टी ने भी प्रदेश भर से जिलाध्यक्षों, महानगर अध्यक्षों को टेक टीम के साथ बुलाया था और बीएसपी ने भी अपने सभी जिला प्रमुखों के साथ बैठक की। बीजेपी ने अपनी बैठक में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर सेवा संकल्प अभियान चलाने का प्लान बनाया है।
5: हर जिले से 5-5 पदाधिकारी, विधायक, सांसदों को आज बुलाया गया है। एक खाका तैयार किया जाएगा यूपी चुनाव के मद्देनजर कि किस तरीके से आखिर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को जवाब देने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी भी आज ही लखनऊ में बड़ी बैठकें कर रही है। देखना यह है कि इन बैठकों के दौर में कौन बाजी मारेगा, लेकिन एक बात तो साफ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे चुनाव में चेहरे के तौर पर नजर आ रहे हैं और स्मृति ईरानी का ध्यान भी अब उत्तर प्रदेश में केंद्रित हो चुका है।
4: बैठक के बाद सीएम योगी बहराइच के कार्यक्रम में पहुंचे और यहां उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा।
6: किसी बेटी को, किसी व्यापारी को, किसी माफिया और किसी अपराधी से भयभीत होने की आवश्यकता भी अब यूपी में नहीं पड़ती है। यही है डबल इंजन सरकार की कार्य।
4: इधर समाजवादी पार्टी की बैठक में अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार अभियान का शंखनाद कर दिया।
7: कल से हमारी पार्टी का प्रचार एक तरह से शुरू।
4: अखिलेश यादव के लिए घोटाले, भ्रष्टाचार, पीडीए अत्याचार, बंद स्कूल, फर्जी मुठभेड़, किसान संकट, अपराध और एसएआर ये मुद्दे हैं।
7: एसआईआर के बाद भारतीय जनता पार्टी की चुनाव आयोग के माध्यम से साजिश होगी और एक षड्यंत्र होगा कि दोबारा एसएआर कराया जाए।
4: तो फिर सवाल है कि एसएआर क्या है? एसएआर बोले तो स्पेशल एनुअल रिविजन, ये चुनाव आयोग अनिवार्य रूप से हर साल करता है। इसे स्पेशल समरी रिवीजन कहा जाता है, जो सालाना आमतौर पर अक्टूबर नवंबर में शुरू होता है। इसमें 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 साल के उम्र के हो चुके नौजवानों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाता है। अखिलेश इस संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
7: चुनाव से पहले एक एनुअल रिवीजन करेंगे ये लोग एसएआर, जिससे कि ये अपने लोगों के वोटों को एडजस्ट करेंगे। सुनने में आ रहा है कि बड़े पैमाने पर बिहार से लोग, झारखंड से लोग, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उनके ये लोग वोट बनाएंगे और अपने बूथों पर वोट बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए हमारे संगठन, हमारे जो बूथ स्तर पर ऐप के माध्यम से काम कर रहे हैं, उन सब का हमने सहयोग मांगा है।
4: अखिलेश एसआईआर के बाद एसएआर को नियम के विपरीत बताते हैं और इसे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने की मंशा से किए जाने वाला अभ्यास बता रहे हैं। इस तथ्य का जिक्र जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में सामने आया तो अदालत ने फिलहाल चल रहे सिर्फ 19 ट्रिब्यूनल्स की संख्या बढ़ाने और वाजिब नामों को लिस्ट में जोड़ते जाने को कहा था। आज तक ब्यूरो।
0: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कनाडा में हैं, मगर उनके यूएस में दिए गए बयान पर सियासत तेज हो चुकी है। ओवैसी ने भागवत के बयान पर सवाल उठाए हैं। उधर कनाडा में ऐतिहासिक मंच से संघ प्रमुख ने दुनिया को लेकर भारत की सोच को पूरी तरह से साफ कर दिया है।
8: इफ एनी हिंदू थिंक्स दैट देयर शुड बी नो मुस्लिम इन भारत, ही विल नॉट बी हिंदू। If you want to call yourself Hindu, you must believe that all paths are leading to the same. And every human has a dignity. There is no difference between human beings.
4: मोहन भागवत के इसी बयान पर हिंदुस्तान में हंगामा बरपा है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि आरएसएस की कथनी और करनी में अंतर है। असदुद्दीन ओवैसी ने आज सोशल मीडिया पर लिखा कि आरएसएस की सबसे पुरानी चाल है, कुछ बातें बाहरी दुनिया के लिए होती हैं, जबकि कुछ उसके अपने सदस्यों के लिए। आरएसएस ने कभी भी अपने मुख्य विचारकों और लेखकों की सोच से खुद को अलग नहीं किया है। वे मुसलमानों और दूसरे अल्पसंख्यकों के बारे में क्या कहते हैं? इस बयान पर यहां भले ही सियासत हो रही है, मगर इसके बाद मोहन भागवत अपनी विदेश यात्रा के दूसरे पड़ाव पर कनाडा के टोरंटो पहुंचे। संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है और इस मौके पर मोहन भागवत कई देशों के दौरे पर हैं। टोरंटो के भव्य कार्यक्रम में संघ प्रमुख ने दुनिया को लेकर भारत के नजरिए और संस्कृति की पहचान को सामने रखा।
9: Whenever there was crisis anywhere in the world and help from Bharat was sought, Bharat never said no. And without even calling for help, it helps. This is the tradition. This is the DNA of Bharat. Therefore, you heard the song. Hindu jage to Vishwa jagega. You heard the first stanza. Hindu sada se Vishwa bandhu hai. Hindu is always like that.
4: भागवत ने साफ किया कि भारत का उदय दुनिया पर सैन्य या आर्थिक ताकत का ध्वंस जमाने के लिए नहीं है। भारत एक महाशक्ति के रूप में दूसरों पर प्रभुत्व नहीं जताना चाहता, बल्कि निस्वार्थ सेवा, ज्ञान और मानवीय मूल्यों के आधार पर विश्वगुरु बनना चाहता है।
9: विश्व का हर देश जब भी दिग्भ्रमित हो लड़खड़ाया, सत्य की पहचान करने इस धरा के पास आया।
4: इस आयोजन की कूटनीतिक अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि कनाडा के कुछ विपक्षी सांसदों और चुनिंदा संगठनों ने मोहन भागवत के वीजा और कार्यक्रम को रोकने का भारी राजनीतिक दबाव बनाया था, लेकिन कनाडा के 100 से अधिक बड़े हिंदू और सामाजिक संगठनों के पुरजोर समर्थन के बाद ये ऐतिहासिक आयोजन बिना किसी बाधा के पूरा हुआ। आज तक ब्यूरो।
0: शुद्धिकरण विवाद पर उत्तराखंड की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। राहुल गांधी पर एफआईआर के बाद इस विवाद ने पूरा तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस ने बाकायदा पुलिस से मिलकर एफआईआर का विरोध किया तो बीजेपी ने भी राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया।
10: ये SC ST एक्ट के खिलाफ ये काम है। लेट मी रिपीट हियर, इट इज अ क्राइम टू डू शुद्धिकरण। नो एक्शन हैज बीन टेकन। हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी जिन लोगों ने शुद्धिकरण किया है उत्तराखंड में, उन पर FIR लागू हो। ये जो इंसिडेंट है, ये हमें दिखाता है बीजेपी और RSS का माइंडसेट। वो नहीं चाहते कि इस देश के दलित प्रगति करें, वो नहीं चाहते कि इस देश के दलित रिस्पेक्ट के साथ जिए और सक्सेसफुल।
4: यही वो बयान है जिसके आधार पर उत्तराखंड की पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज की है। 8 अगस्त को मल्लिकार्जुन खड़गे की हल्द्वानी रैली के बाद 11 अगस्त को वहां के रामलीला ग्राउंड पर पूजा और हवन किया गया। 29 अगस्त को जब राहुल गांधी ने इस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो दलित समाज से आने वाले अमित कुमार की शिकायत पर हल्द्वानी में राहुल गांधी के खिलाफ SC ST उत्पीड़न एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई। लेकिन अब ये FIR उत्तराखंड समेत पूरे देश में दलितों के नाम पर नए सियासी संग्राम को जन्म दे रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं की कथित शुद्धिकरण पर FIR दर्ज करने को लेकर पुलिस से बहस हुई।
11: SC ST का मामला है, ये CO स्तर का अधिकारी तो जांच करता, लेकिन जांच करने के बाद जो है क्या सही है तो उसके बाद है, लेकिन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लेने के लिए आप तैयार नहीं।
4: इधर दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा के मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई।
12: हमारे समाज में कुछ लोग दलित हैं, लेकिन समाज में बंटवारा कौन कर रहा है? ये भाजपा और RSS की विचारधारा है जो बंटवारा कर रही है, और यही इनका मकसद था जो इन्होंने अपने कुछ लोगों को भेजकर वहां पर सो कॉल्ड शुद्धिकरण करके, मतलब क्या था इनका? अगर राजनीतिक मतलब नहीं था तो क्या था, ये बता दें।
4: खड़गे के बहाने दलितों के अपमान को मुद्दा बना रही कांग्रेस पर पलटवार बीजेपी ने भी किया।
13: जहाँ पर रामलीला का मंचन होता है, बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, ऐसे आयोजनों पर जो गंदगी हुई थी, जो धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए थे और एक धर्म विशेष के लोगों ने लगाए थे, उसके विरोध में लोगों ने जो धार्मिक संगठन थे उन्होंने उस वहाँ पर शुद्धिकरण का जो कार्यक्रम किया था वो कार्यक्रम था, और इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है।
4: कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज FIR में भी खड़गे की रैली के बाद रामलीला मैदान में न सिर्फ शराब की बोतलें बल्कि धार्मिक नारेबाजी की शिकायत दर्ज है। अब कांग्रेस उत्तराखंड पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगा रही है।
14: हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। RSS और BJP पार्टी थी, उन लोगों ने कुकृत्य किया था, लेकिन पुलिस ने उसमें आग में घी डालने का काम किया है। पुलिस कौन होती है? अगर कॉग्निजेंस लेना था आपने तो आप 10 तारीख के प्रकरण का कॉग्निजेंस लेते और मुकदमा कायम करते, लेकिन आपने मुकदमा कायम कर दिया राहुल गांधी के खिलाफ।
4: हल्द्वानी का मामला ऐसे समय में गंभीर राजनीतिक मोड़ ले रहा है जब राहुल चाय की दुकानों पर भी दलितों से भेदभाव जैसे आरोप लगा रहे हैं। आज तक ब्यूरो
10: देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए।
0: अब बात यूपी में हुए मर्डर को लेकर चल रही राजनीति के बारे में करेंगे। अंकित बालियान की हत्या के हफ्ते भर के अंदर दो आरोपी ढेर कर दिए गए, लेकिन अंकित बालियान मर्डर केस को लेकर अपराध से ज्यादा सियासत की चर्चाएं हुई हैं। दरअसल इस हत्याकांड की बुनियाद में ही जात गोत्र की बड़ी वजह थी। हत्या के बाद अखिलेश यादव ने उसी जाति गोत्र की बात की तो राजनीति गर्मा गई।
1: छब्बीस अगस्त को शामली में हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बालियान की हत्या होती है। चार दिन तक जब कोई एक्शन नहीं होता तो बालियान की पत्नी CM योगी से हथियारों को मिट्टी में मिला देने की अपील करती हैं, और एक दिन बाद हत्या के दो आरोपियों का हिसाब किताब पूरा हो जाता है। कैराना में पुलिस और STF के आरोपियों से मुठभेड़ होती है। हत्या के दो आरोपियों को पुलिस की टीम घेर लेती है। एनकाउंटर में दोनों आरोपियों को मार गिराया जाता है।
15: दो शूटर्स मारे गए हैं, सुमित और मोहित, और इनके पास से भारी मात्रा में आग्नेयास्त्र बरामद हुए हैं। इन्होंने पुलिस पर भारी फायरिंग भी की है जिससे दो कांस्टेबल्स भी हमारे घायल हुए हैं। अभी इस घटना में और भी लोग शामिल हैं जिनके बारे में तफ्तीश जारी है, और खास करके जो शूटर्स हैं और जो इस गैंग के लीडर्स हैं जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को प्लान किया है या अंजाम दिलाया है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।
1: लेकिन इस एनकाउंटर पर सियासत सुलग उठी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस PDA के लोगों का एनकाउंटर कर रही है। उन्होंने STF की भी नई परिभाषा दी।
7: मुख्यमंत्री जी की STF स्वजाति टॉर्चर फोर्स, स्वजाति टॉर्चर फोर्स, और लगातार PDA का उत्पीड़न हो रहा है।
1: अकेले अखिलेश यादव ही नहीं, समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव भी इस एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं।
16: कोई लॉ एंड ऑर्डर है उत्तर प्रदेश में? सिवाय हत्याएं या गोली मार के एनकाउंटर कराना फर्जी, इसके अलावा कुछ भी नहीं।
1: हालांकि राम गोपाल यादव के बयान को अंकित बालियान के पिता ने ही खारिज कर दिया।
17: कहा है उन्होंने कि ये फर्जी, इसके पीछे आप क्या समझते हैं
18: भाई? वे तो राजनीतिक पार्टी है, वे तो पता नहीं क्या कहेगी क्या नहीं, लेकिन जब मैं खुद देख आया उनको दोनों को जिन्होंने पीछे से गोली मारी थी, तो मैं फर्जी कैसे कहूंगा।
1: अब यूपी की सरकार कह रही है कि आरोपियों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
19: बहुत ही दुखद घटना थी और प्रदेश पुलिस ने उन्हें पुलिस मुठभेड़ में मारा है। अंकित बलियान जी की जो निर्मम हत्या हुई थी, प्रदेश दुखी था। उन हत्यारों ने पुलिस पर भी गोलियां चलाई जिसकी किए की सजा उन्हें मिल चुकी है।
1: दो आरोपी पुलिस के एनकाउंटर में मारे गए और बाकी के आरोपियों को पुलिस तलाश रही है। इन सब के बीच अंकित की बहन मांग कर रही है कि बाकी आरोपियों का भी एनकाउंटर होना चाहिए।
20: हमें तब तक संतुष्टि नहीं मिलेगी तब तक मेरे भाई के हत्यारे संपूर्ण खत्म नहीं हो जाते, आपकी जड़ तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे, हम शांति से बैठेंगे।
1: एक तरफ परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है और दूसरी तरफ एनकाउंटर पर जबरदस्त सियासत हो रही है। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: एक बार फिर दिल्ली NCR में निर्भया जैसी दरिंदगी की गई है। इस बार ग्रेटर नोएडा में बस में चढ़ी एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप किया गया है। हैरानी की बात यह है कि ग्रेटर नोएडा के परी चौक से कश्मीरी गेट तक बस चली और इस दौरान लड़की के साथ दरिंदगी हुई, लेकिन दोनों ही राज्यों की पुलिस को कानो कान खबर नहीं लगी।

0: दो राज्यों की पुलिस सचेत रहती तो एक और निर्भया कांड नहीं होता। ग्रेटर नोएडा के सबसे व्यस्त चौराहे परी चौक से बस में सवार एक बच्ची दरिंदों का शिकार हो गई। करीब 47 किलोमीटर तक बस दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर दौड़ती रही और ड्राइवर और कंडक्टर नाबालिग से वहशत को अंजाम देते रहे। वारदात 4 अगस्त की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक छात्रा अपने परिवार वालों से नाराज होकर घर से निकली थी और चचेरे भाई के घर जा रही थी जो नोएडा में रहता है। भारी बारिश और अंधेरे की वजह से छात्रा गलती से परी चौक पर उतर गई। इसी दौरान एक खाली स्लीपर बस वहां से गुजरी। छात्रा को नोएडा सेक्टर 62 छोड़ने का भरोसा दिया और फिर ड्राइवर और कंडक्टर ने छात्रा से गैंगरेप किया। वारदात के बाद आरोपी छात्रा को कश्मीरी गेट बस अड्डे के पास रिंग रोड पर उतार कर वहां से फरार हो गए। फिर छात्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपियों की धरपकड़ की कोशिश शुरू हुई।
1: दिल्ली में एक बार फिर से एक ऐसा मामला सामने आया है जो फिर से पूरी दिल्ली एनसीआर को शमसार कर देगा। दरअसल ये मामला चलती बस में एक गैंग रेप का है। 16 वर्षीय मैनपुरी की रहने वाली 11वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की घर से लड़कर घर से बाहर निकलती है, बस पकड़ के अपने भाई के घर मैनपुरी से नोएडा आना चाहती है, लेकिन उस रात बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से उसे पता नहीं लगा और परी चौक के पास वो बस से उतर जाती है, जिसके बाद वो हाथ देकर एक स्लीपर बस को रोकती है। बस रुकती है और उसे कहती है कि वो सेक्टर 63 तक उसे छोड़ देंगे। बस पे चढ़ने के कुछ देर बाद ही जो बस का कंडक्टर है उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, उसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट करने लगता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने कुछ किया तो उसे जान से मार देंगे। इसके बाद करीब 47 किलोमीटर तक जो वो बस है दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर चलती है। नोएडा में इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद लड़की को कश्मीरी गेट के पास लाकर उतार दिया जाता है और फिर वो लड़की पीड़िता खुद पुलिस के पास पहुंचती है। और यहां आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन है। इसी पुलिस स्टेशन में आकर वो कंप्लेन देती है।
0: दिल्ली पुलिस ने गैंगरेप की वारदात के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। स्लीपर बस को जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है।
2: नए आपराधिक कानूनों के अनुसार बिना ज्यूरिसडिक्शनल इश्यूज में गए हुए थाना कश्मीरी गेट ने तुरंत विक्टिम का मेडिकल कराया और केस दर्ज किया। साथ ही सीसीटीवी कैमरेज की सहायता से कुछ ही घंटे में बस को भी ट्रेस किया और दोनों अपराधियों को भी अरेस्ट किया।
0: सवाल ज्यूरिसडिक्शन का नहीं है, सवाल यह है कि ग्रेटर नोएडा से दिल्ली तक बस चलती रही और गैंगरेप होता रहा और दोनों राज्यों की पुलिस को कानो कान खबर नहीं हुई। सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस की उन साझा बैठकों से क्या हासिल हुआ जो मिलजुल कर अपराध रोकने के लिए होती हैं। दिल्ली से अरविंद ओझा और अंशुल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
3: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: बिश्केक में गर्मजोशी के साथ पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई। बातचीत में यूक्रेन का मुद्दा भी उठा। प्रधानमंत्री ने कहा युद्ध मानवता के लिए खतरा, भारत शांति का पक्षधर। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार, चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी 7.8% रही। प्रधानमंत्री मोदी बोले, निराशावादी लोगों की हुई हार। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी विरोध प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट में पहुंची दिल्ली पुलिस, 13 एफआईआर रद्द करने की इजाजत मांगी। आपराधिक पृष्ठभूमि के 2873 लोगों पर दर्ज हो केस। नेपाल में त्रासदी के बाद मरने वालों का नहीं थम रहा है आंकड़ा, 939 लोगों की गई जान, 3900 से ज्यादा लापता। रेस्क्यू के काम में भारतीय एक्सपर्ट्स भी शामिल। और मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से लिया संन्यास, अर्जेंटीना के कप्तान ने कहा अलविदा। सोशल मीडिया पर फैंस को लिखा भावुक पत्र। बिश्केक में एससीओ समिट के बीच प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की ये तीसरी आमने सामने मुलाकात है। ऐसे में इस मुलाकात में दोनों के बीच क्या बात हुई, दुनिया ये जानना और समझना चाहती है। देखिए बिश्केक में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की महामुलाकात के मायने क्या है।
1: मोदी और राष्ट्रपति पुतिन मिले दोस्ती के सिलसिले। मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई, क्या क्या बात हुई। बिश्केक से मैसेज क्लियर, भारत और रूस की दोस्ती जिंदाबाद। एससीओ में मोदी पुतिन जिनपिंग की केमिस्ट्री, अमेरिका में खलबली। भारत चीन रूस का त्रिकोण, ट्रंप का तोड़। एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन में वैसे तो 10 देश हैं, भारत चीन रूस पाकिस्तान कजाकिस्तान किर्गिस्तान ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान और ईरान। इसके अलावा पर्यवेक्षक के तौर पर कई और देश भी शामिल हैं, लेकिन सिर्फ 3 देश यानी भारत रूस और चीन इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया की टॉप हेडलाइन बने हुए हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर क्यों दुनिया भारत रूस और चीन की चर्चा कर रही है और क्यों इन तीनों देशों के नेताओं की केमिस्ट्री से डोनाल्ड ट्रंप भी टेंशन में हैं। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं किर्गिस्तान में हुई पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की द्विपक्षीय बैठक और मुलाकात। जब बिश्केक में पीएम मोदी और पुतिन मिलते हैं तो दोनों नेता एक दूसरे के गले मिलते हैं। ये वो मुलाकात है जो सिर्फ भारत और रूस के पुराने संबंधों को और पुख्ता करती है, बल्कि भारत रूस संबंधों की नई दिशा तय करने वाली है। इसीलिए पुतिन सीधे भारत और रूस के संबंधों पर बोलते हैं।
2: I'd like to note with satisfaction the following thing, namely that the Russian-Indian relations continue to get strengthened on the basis of the principles of the special privileged partnership. Distinguished Prime Minister, of course this is aided by your special attention to the Russian-Indian relations and the business and kind relations, friendly relations that have been established between us, and I'm very grateful to you for that.
1: लेकिन पीएम मोदी रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर राष्ट्रपति पुतिन से कहते हैं कि वो यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के पक्ष में हैं, क्योंकि युद्ध का हर दिन मानवता को पीछे धकेल रहा है।
3: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। पिछली बार भी जब हम मिले थे तब आपने विस्तार से सभी विषयों के बारे में मुझे अवगत किया था। जैसा कि आप जानते हैं, भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देती है, उमंग से भर देती है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: आपको बता दें कि पीएम मोदी ने यह भी बताया कि किस तरह से भारत और रूस का सहयोग नई ऊंचाइयां छू रहा है।
3: पिछले वर्ष आपकी भारत यात्रा बहुत ही सफल रही और बहुत ही यादगार रही। हमने कई घंटे साथ बिताए और विशेष रूप से बिजनेस फोरम और एक प्रकार से बिजनेस वर्ल्ड का रशिया का हूज हू कहे उन सबको लेकर के आप आए और आर्थिक संबंधों को एक नई ऊंचाई और ज्यादा विस्तार देने का काम भी हमारी चर्चा में हुआ और मुझे खुशी है कि जो आउटकम निकले हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारी दोनों टीमें पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही हैं और बड़ी गति के साथ काम कर रही हैं। ये हमारे लिए गहरे संतोष का विषय है कि हमारा सहयोग निरंतर नई ऊंचाइयों को और बढ़ रहा है और दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब दुनिया का जियोपॉलिटिकल नक्शा पूरी तरह बदल रहा है। अमेरिका ईरान युद्ध को 6 महीने हो चुके हैं, रूस यूक्रेन युद्ध को 4.5 साल हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक तरफा विदेश नीति ने वैश्विक नियम आधारित व्यवस्था को चुनौती दी है और SCO अपनी 26वीं वर्षगांठ मना रहा है। ऐसे में भारत, रूस और चीन जैसी ताकतें एक मंच पर इकट्ठा हो रही हैं। इसे पश्चिमी प्रभाव के जवाब में एक काउंटर बैलेंस के तौर पर देखा जा रहा है। बिश्केक के बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन 12 से 13 सितंबर को नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी मिलेंगे। पीएम मोदी ने इसका देवता दे दिया है।
3: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका और आपके डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक है। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
1: SCO का 26वां शिखर सम्मेलन किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हो रहा है जो 1 सितंबर तक चलेगा। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कई नेता शामिल हो रहे हैं, लेकिन मोदी, पुतिन और जिनपिंग की टिकड़ी ने यकीनन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ा दी है। इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट से ट्रंप की नींद और भी उड़ना लाजमी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि फ्रांस, न्यूजीलैंड, सेशेल्स, मलेशिया, स्लोवाकिया और इटली पिछले 1 साल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत तेजी से दुनिया भर की यात्राएं की हैं। उन्होंने नए पार्टनर बनाए हैं या मौजूद पार्टनरों के साथ रिश्ते मजबूत किए हैं। उन्हें एक कड़वी सच्चाई ने तेजी से कदम उठाने पर मजबूर किया है। अखबार ने आगे ट्रंप की आलोचना करते हुए लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप की वजह से दुनिया में मची उथल पुथल का सामना करने और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का भारत के पास एकमात्र तरीका है कि वो अलग अलग जगह पर अपने रिश्ते बढ़ाए। रिपोर्ट में पीएम मोदी की उज्बेकिस्तान की यात्रा का जिक्र भी शामिल है। अखबार ने SCO समिट के बारे में लिखा है और राष्ट्रपति पुतिन के साथ मोदी की मुलाकात की चर्चा भी की है और ये भी लिखा है कि कैसे पीएम मोदी ट्रंप के मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, एक एक करके डील कर रहे हैं और इसे एक रणनीति करार दिया है। SCO की सबसे दिलचस्प तस्वीर शायद यही है। एक तरफ मोदी और शी जिनपिंग एक ही बहुपक्षीय मंच पर है, दूसरी तरफ भारत और चीन के बीच सीमा विवाद और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसे में SCO भारत को चीन के साथ बातचीत का एक अतिरिक्त मंच देता है। दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधरे या बिगड़े, बहुपक्षीय मंचों पर संवाद की गुंजाइश बनी रहती है। भारत लंबे समय से मिडल ईस्ट के देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। मध्य एशिया तेल, गैस, यूरेनियम और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों का बड़ा भंडार है। भारत मध्य एशिया के देशों के साथ व्यापार भी बढ़ाना चाहता है। इसके लिए वो नए व्यापार और परिवहन मार्ग विकसित करने पर काम कर रहा है। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को देखते हुए SCO की टेबल और भी दिलचस्प हो जाती है। भारत लंबे समय से आतंकवाद के मुद्दे को एससीओ जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा है। पीएम मोदी ने भी इस यात्रा के संदर्भ में आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद को क्षेत्रीय शांति के लिए चुनौती बताया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी एससीओ का पूर्ण सदस्य

0: 2027 के चुनाव के लिए कमर कसी हुई है और लखनऊ में सोमवार का दिन बैठकों का दिन रहा। यूपी की तीन बड़ी पार्टियों ने लखनऊ में तीन बड़ी बड़ी बैठकें की हैं। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तीनों ने चुनावी तैयारियों पर मंथन किया।
1: उत्तर प्रदेश में चुनावी दस्तक होने ही वाली है, उससे पहले हर दल पूरी तैयारी में जुटा है। बीजेपी की नई टीम ने सभी जिलाध्यक्षों, मोर्चा अध्यक्षों से लेकर सीएम, डिप्टी सीएम के साथ तैयारी की बैठकें की हैं, तो समाजवादी पार्टी ने भी प्रदेश भर से जिलाध्यक्षों, महानगर अध्यक्षों को टेक टीम के साथ बुलाया था और बीएसपी ने भी अपने सभी जिला प्रमुखों के साथ बैठक की। बीजेपी ने अपनी बैठक में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर सेवा संकल्प अभियान चलाने का प्लान बनाया है।
2: हर जिले से 5-8 पदाधिकारी, विधायक, सांसदों को आज बुलाया गया है। एक खाका तैयार किया जाएगा यूपी चुनाव के मद्देनजर कि किस तरीके से आखिर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को जवाब देने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी भी आज ही लखनऊ में बड़ी बैठकें कर रही है। देखना यह है कि इन बैठकों के दौर में कौन बाजी मारेगा, लेकिन एक बात तो साफ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे चुनाव में चेहरे के तौर पर नजर आ रहे हैं और स्मृति ईरानी का ध्यान भी अब उत्तर प्रदेश में केंद्रित हो चुका है।
1: बैठक के बाद सीएम योगी बहराइच के कार्यक्रम में पहुंचे और यहां उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा।
3: किसी बेटी को, किसी व्यापारी को, किसी माफिया और किसी अपराधी से भयभीत होने की आवश्यकता भी अब यूपी में नहीं पड़ती है। यही है डबल इंजन सरकार की कार्य।
1: इधर समाजवादी पार्टी की बैठक में अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार अभियान का शंखनाद कर दिया।
4: कल से हमारी पार्टी का प्रचार एक तरह से शुरू।
1: अखिलेश यादव के लिए घोटाले, भ्रष्टाचार, पीडीए अत्याचार, बंद स्कूल, फर्जी मुठभेड़, किसान संकट, अपराध और एसएआर ये मुद्दे हैं।
4: एसआईआर के बाद भारतीय जनता पार्टी की चुनाव आयोग के माध्यम से साजिश होगी और एक षड्यंत्र होगा कि दोबारा एसएआर कराया जाए।
1: तो फिर सवाल है कि एसएआर क्या है? एसएआर बोले तो स्पेशल एनुअल रिविजन, ये चुनाव आयोग अनिवार्य रूप से हर साल करता है। इसे स्पेशल समरी रिवीजन कहा जाता है, जो सालाना आमतौर पर अक्टूबर नवंबर में शुरू होता है। इसमें 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 साल की उम्र के हो चुके नौजवानों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाता है। अखिलेश इस संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
4: चुनाव से पहले एक एनुअल रिवीजन करेंगे ये लोग एसएआर, जिससे कि ये अपने लोगों के वोटों को एडजस्ट करेंगे। सुनने में आ रहा है कि बड़े पैमाने पर बिहार से लोग, झारखंड से लोग, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उनके ये लोग वोट बनाएंगे और अपने बूथों पर वोट बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए हमारे संगठन, हमारे जो बूथ स्तर पर ऐप के माध्यम से काम करें, उन सब का हमने सहयोग मांगा है।
1: अखिलेश एसआईआर के बाद एसएआर को नियम के विपरीत बताते हैं और इसे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने की मंशा से किए जाने वाला अभ्यास बता रहे हैं। इस तथ्य का जिक्र जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में सामने आया तो अदालत ने फिलहाल चल रहे सिर्फ 19 ट्रिब्यूनल्स की संख्या बढ़ाने और वाजिब नामों को लिस्ट में जोड़ते जाने को कहा था। आज तक ब्यूरो।
0: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कनाडा में हैं, मगर उनके यूएस में दिए गए बयान पर सियासत तेज हो चुकी है। ओवैसी ने भागवत के बयान पर सवाल उठाए हैं। उधर कनाडा में ऐतिहासिक मंच से संघ प्रमुख ने दुनिया को लेकर भारत की सोच को पूरी तरह से साफ कर दिया है।
5: If any Hindu thinks that there should be no Muslim in Bharat, he will not remain Hindu. If you want to call yourself Hindu, you must believe that all paths are leading to the same. And every human has a dignity. There is no difference between human beings.
1: मोहन भागवत के इसी बयान पर हिंदुस्तान में हंगामा बरपा है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि आरएसएस की कथनी और करनी में अंतर है। असदुद्दीन ओवैसी ने आज सोशल मीडिया पर लिखा कि आरएसएस की सबसे पुरानी चाल है, कुछ बातें बाहरी दुनिया के लिए होती हैं, जबकि कुछ उसके अपने सदस्यों के लिए। आरएसएस ने कभी भी अपने मुख्य विचारकों और लेखकों की सोच से खुद को अलग नहीं किया है। वे मुसलमानों और दूसरे अल्पसंख्यकों के बारे में क्या कहते हैं? इस बयान पर यहां भले ही सियासत हो रही है, मगर इसके बाद मोहन भागवत अपनी विदेश यात्रा के दूसरे पड़ाव पर कनाडा के टोरंटो पहुंचे। संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है और इस मौके पर

0: मोहन भागवत कई देशों के दौरे पर हैं। टोरंटो के भव्य कार्यक्रम में संघ प्रमुख ने दुनिया को लेकर भारत के नजरिए और संस्कृति की पहचान को सामने रखा।
1: Whenever there was crisis anywhere in the world and help from Bharat was sought, Bharat never said no. And without even calling for help, it helps. This is the tradition. This is the DNA of Bharat. Therefore, you heard the song. Hindu jage to Vishwa jagega. You heard the first stanza. Hindu sada se Vishwa bandhu hai. Hindu is always like that.
0: भागवत ने साफ किया कि भारत का उदय दुनिया पर सैन्य या आर्थिक ताकत का ध्वंस जमाने के लिए नहीं है। भारत एक महाशक्ति के रूप में दूसरों पर प्रभुत्व नहीं जताना चाहता, बल्कि निस्वार्थ सेवा, ज्ञान और मानवीय मूल्यों के आधार पर विश्वगुरु बनना चाहता है।
1: विश्व का हर देश जब भी दिग्भ्रमित हो लड़खड़ाया, सत्य की पहचान करने इस धरा के पास आया।
0: इस आयोजन की कूटनीतिक अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि कनाडा के कुछ विपक्षी सांसदों और चुनिंदा संगठनों ने मोहन भागवत के वीजा और कार्यक्रम को रोकने का भारी राजनीतिक दबाव बनाया था, लेकिन कनाडा के 100 से अधिक बड़े हिंदू और सामाजिक संगठनों के पुरजोर समर्थन के बाद ये ऐतिहासिक आयोजन बिना किसी बाधा के पूरा हुआ। आज तक ब्यूरो।
2: शुद्धिकरण विवाद पर उत्तराखंड की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। राहुल गांधी पर एफआईआर के बाद इस विवाद ने पूरा तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस ने बाकायदा पुलिस से मिलकर एफआईआर का विरोध किया तो बीजेपी ने भी राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया।
3: ये एससी एसटी एक्ट के खिलाफ ये काम है। लेट मी रिपीट हियर, इट इज अ क्राइम टू डू शुद्धिकरण। नो एक्शन हैज बीन टेकन। हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी जिन लोगों ने शुद्धिकरण किया है उत्तराखंड में, उन पर एफआईआर लागू हो। ये जो इंसिडेंट है, ये हमें दिखाता है बीजेपी और आरएसएस का माइंडसेट। वो नहीं चाहते कि इस देश के दलित प्रगति करें, वो नहीं चाहते कि इस देश के दलित रिस्पेक्ट के साथ जिए और सक्सेसफुल।
0: यही वो बयान है जिसके आधार पर उत्तराखंड की पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 8 अगस्त को मल्लिकार्जुन खड़गे की हल्द्वानी रैली के बाद 11 अगस्त को वहां के रामलीला ग्राउंड पर पूजा और हवन किया गया। 29 अगस्त को जब राहुल गांधी ने इस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो दलित समाज से आने वाले अमित कुमार की शिकायत पर हल्द्वानी में राहुल गांधी के खिलाफ एससी एसटी उत्पीड़न एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन अब ये एफआईआर उत्तराखंड समेत पूरे देश में दलितों के नाम पर नए सियासी संग्राम को जन्म दे रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं की कथित शुद्धिकरण पर एफआईआर दर्ज करने को लेकर पुलिस से बहस हुई।
4: सुनिए जी, एससी एसटी का मामला है, ये सीओ स्तर का अधिकारी इसमें जांच करता, लेकिन जांच करने के बाद जो है क्या सही है तो उसके बाद है, लेकिन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट देने के लिए आप तैयार नहीं।
0: इधर दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा के मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई।
5: हमारे समाज में कुछ लोग दलित हैं, लेकिन समाज में बंटवारा कौन कर रहा है? ये भाजपा और आरएसएस की विचारधारा है जो बंटवारा कर रही है, और यही इनका मकसद था जो इन्होंने अपने कुछ लोगों को भेजकर वहां पर सो कॉल्ड शुद्धिकरण करके। मतलब क्या था इनका? अगर राजनीतिक मतलब नहीं था तो क्या था, ये बता दें।
0: खड़गे के बहाने दलितों के अपमान को मुद्दा बना रही कांग्रेस पर पलटवार बीजेपी ने भी किया।
6: जहाँ पर रामलीला का मंचन होता है, बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, ऐसे आयोजनों पर जो गंदगी हुई थी, जो धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए थे और एक धर्म विशेष के लोगों ने लगाए थे, उसके विरोध में लोगों ने जो धार्मिक संगठन थे उन्होंने उस वहाँ पर शुद्धिकरण का जो कार्यक्रम किया था वो कार्यक्रम था, और इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है।
3: कांग्रेस प्रेसिडेंट
0: राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर में भी खड़गे की रैली के बाद रामलीला मैदान में न सिर्फ शराब की बोतलें बल्कि धार्मिक नारेबाजी की शिकायत दर्ज है। अब कांग्रेस उत्तराखंड पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगा रही है।
7: हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, आरएसएस और बीजेपी पार्टी थी, उन लोगों ने कुकृत्य किया था, लेकिन पुलिस ने उसमें आग में घी डालने का काम किया है। पुलिस कौन होती है? अगर कॉग्निजेंस लेना था आपने तो आप 10 तारीख के प्रकरण का कॉग्निजेंस लेते और मुकदमा कायम करते, लेकिन आपने मुकदमा कायम कर दिया राहुल गांधी के खिलाफ।
0: हल्द्वानी का मामला ऐसे समय में गंभीर राजनीतिक मोड़ ले रहा है जब राहुल चाय की दुकानों पर भी दलितों से भेदभाव जैसे आरोप लगा रहे हैं। आज तक ब्यूरो,
3: देश के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए।
2: अब बात यूपी में हुए मर्डर को लेकर चल रही राजनीति के बारे में करेंगे। अंकित बालियान की हत्या के हफ्ते भर के अंदर दो आरोपी ढेर कर दिए गए, लेकिन अंकित बालियान मर्डर केस को लेकर अपराध से ज्यादा सियासत की चर्चाएं हुई हैं। दरअसल इस हत्याकांड की बुनियाद में ही जात गोत्र की बड़ी वजह थी। हत्या के बाद अखिलेश यादव ने उसी जाति गोत्र की बात की तो राजनीति गर्मा गई।
8: छब्बीस अगस्त को शामली में हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बालियान की हत्या होती है। चार दिन तक जब कोई एक्शन नहीं होता तो बालियान की पत्नी सीएम योगी से हथियारों को मिट्टी में मिला देने की अपील करती हैं और एक दिन बाद हत्या के दो आरोपियों का हिसाब किताब पूरा हो जाता है। केरला में पुलिस और एसटीएफ के आरोपियों से मुठभेड़ होती है। हत्या के दो आरोपियों को पुलिस की टीम घेर लेती है। एनकाउंटर में दोनों आरोपियों को मार गिराया जाता है।
9: दो शूटर्स मारे गए हैं, सुमित और मोहित, और इनके पास से भारी मात्रा में आग्नेयास्त्र बरामद हुए हैं। इन्होंने पुलिस पर भारी फायरिंग भी की है जिससे दो कांस्टेबल्स भी हमारे घायल हुए हैं। अभी इस घटना में और भी लोग शामिल हैं जिनके बारे में तफ्तीश जारी है, और खास करके जो शूटर्स हैं और जो इस गैंग के लीडर्स हैं जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को प्लान किया है या अंजाम दिलाया है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए।
8: लेकिन इस एनकाउंटर पर सियासत सुलग उठी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस पीडीए के लोगों का एनकाउंटर कर रही है। उन्होंने एसटीएफ की भी नई परिभाषा दी।
10: मुख्यमंत्री जी की एसटीएफ स्वजाति टॉर्चर फोर्स, स्वजाति टॉर्चर फोर्स, और लगातार पीडीए का उत्पीड़न हो रहा है।
8: अकेले अखिलेश यादव ही नहीं, समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव भी इस एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं।
11: कोई लॉ एंड ऑर्डर है उत्तर प्रदेश में? सिवाय हत्याएं या गोली मार के एनकाउंटर कराना फर्जी, इसके अलावा कुछ भी नहीं।
8: हालांकि राम गोपाल यादव के बयान को अंकित बालियान के पिता ने ही खारिज कर दिया।
12: कहा है उन्होंने कि ये फर्जी, इसके पीछे आप क्या समझते हैं
13: भाई? वे तो राजनीतिक पार्टी है, वे तो पता नहीं क्या कहेगी क्या नहीं, लेकिन जब मैं खुद देख आया उनको दोनों को जिन्होंने पीछे से गोली मारी थी, तो मैं फर्जी कैसे कहूंगा।
8: अब यूपी की सरकार कह रही है कि आरोपियों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
14: बहुत ही दुखद घटना थी और प्रदेश पुलिस ने उन्हें पुलिस मुठभेड़ में मारा है। अंकित बलियान जी की जो निर्मम हत्या हुई थी, प्रदेश दुखी था। उन हत्यारों ने पुलिस पर भी गोलियां चलाई जिसकी किए की सजा उन्हें मिल चुकी है।
8: दो आरोपी पुलिस के एनकाउंटर में मारे गए और बाकी के आरोपियों को पुलिस तलाश रही है। इन सब के बीच अंकित की बहन मांग कर रही है कि बाकी आरोपियों का भी एनकाउंटर होना चाहिए।
15: हमें तब तक संतुष्टि नहीं मिलेगी तब तक मेरे भाई के हत्यारे संपूर्ण खत्म नहीं हो जाते, आपकी जड़ तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे, हम शांति से बैठेंगे।
8: एक तरफ परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है और दूसरी तरफ एनकाउंटर पर जबरदस्त सियासत हो रही है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
2: एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में निर्भया जैसी दरिंदगी की गई है। इस बार ग्रेटर नोएडा में बस में चढ़ी एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप किया गया है। हैरानी की बात यह है कि ग्रेटर नोएडा के परीचौक से कश्मीरी गेट तक बस चली और इस दौरान लड़की के साथ दरिंदगी हुई, लेकिन दोनों ही राज्यों की पुलिस को कानो कान खबर नहीं लगी।

0: दो राज्यों की पुलिस सचेत रहती तो एक और निर्भया कांड नहीं होता। ग्रेटर नोएडा के सबसे व्यस्त चौराहे परी चौक से बस में सवार एक बच्ची दरिंदों का शिकार हो गई। करीब 47 किलोमीटर तक बस दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर दौड़ती रही और ड्राइवर और कंडक्टर नाबालिग से वहशत को अंजाम देते रहे। वारदात 4 अगस्त की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक छात्रा अपने परिवार वालों से नाराज होकर घर से निकली थी और चचेरे भाई के घर जा रही थी जो नोएडा में रहता है। भारी बारिश और अंधेरे की वजह से छात्रा गलती से परी चौक पर उतर गई। इसी दौरान एक खाली स्लीपर बस वहां से गुजरी। छात्रा को नोएडा सेक्टर 62 छोड़ने का भरोसा दिया और फिर ड्राइवर और कंडक्टर ने छात्रा से गैंगरेप किया। वारदात के बाद आरोपी छात्रा को कश्मीरी गेट बस अड्डे के पास रिंग रोड पर उतारकर वहां से फरार हो गए। फिर छात्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपियों की धरपकड़ की कोशिश शुरू हुई।
1: दिल्ली में एक बार फिर से एक ऐसा मामला सामने आया है जो फिर से पूरी दिल्ली एनसीआर को शमसार कर देगा। दरअसल ये मामला चलती बस में एक गैंग रेप का है। 16 वर्षीय मैनपुरी की रहने वाली 11वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की घर से लड़कर घर से बाहर निकलती है, बस पकड़ के अपने भाई के घर मैनपुरी से नोएडा आना चाहती है, लेकिन उस रात बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से उसे पता नहीं लगा और परी चौक के पास वो बस से उतर जाती है, जिसके बाद वो हाथ देकर एक स्लीपर बस को रोकती है। बस रुकती है और उसे कहती है कि वो सेक्टर 63 तक उसे छोड़ देंगे। बस पे चढ़ने के कुछ देर बाद ही जो बस का कंडक्टर है उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, उसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट करने लगता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने कुछ किया तो उसे जान से मार देंगे। इसके बाद करीब 47 किलोमीटर तक जो वो बस है दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर चलती है। नोएडा में इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद लड़की को कश्मीरी गेट के पास लाकर उतार दिया जाता है और फिर वो लड़की पीड़िता खुद पुलिस के पास पहुंचती है। और यहां आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन है। इसी पुलिस स्टेशन में आकर वो कंप्लेन देती है।
0: दिल्ली पुलिस ने गैंगरेप की वारदात के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। स्लीपर बस को जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है।
2: नए आपराधिक कानूनों के अनुसार बिना ज्यूरिसडिक्शनल इश्यूज में गए हुए थाना कश्मीरी गेट ने तुरंत विक्टिम का मेडिकल कराया और केस दर्ज किया। साथ ही सीसीटीवी कैमरेज की सहायता से कुछ ही घंटे में बस को भी ट्रेस किया और दोनों अपराधियों को भी अरेस्ट किया।
0: सवाल ज्यूरिसडिक्शन का नहीं है, सवाल यह है कि ग्रेटर नोएडा से दिल्ली तक बस चलती रही और गैंगरेप होता रहा और दोनों राज्यों की पुलिस को कानो कान खबर नहीं हुई। सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस की उन साझा बैठकों से क्या हासिल हुआ जो मिलजुल कर अपराध रोकने के लिए होती हैं। दिल्ली से अरविंद ओझा और अंशुल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
3: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

आज तक ला रहा है आपके लिए वीडियो वाला पेपर, हर रोज सुबह आपके मोबाइल पर, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। इसे पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर ePaper.aajtak.in टाइप करें या

0: बिश्केक में गर्मजोशी के साथ पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई। बातचीत में यूक्रेन का मुद्दा भी उठा। प्रधानमंत्री ने कहा युद्ध मानवता के लिए खतरा, भारत शांति का पक्षधर। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी 7.8% रही। प्रधानमंत्री मोदी बोले निराशावादी लोगों की हुई हार। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी विरोध प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट में पहुंची दिल्ली पुलिस। 13 एफआईआर रद्द करने की इजाजत मांगी। आपराधिक पृष्ठभूमि के 2873 लोगों पर दर्ज हो केस। नेपाल में त्रासदी के बाद मरने वालों का नहीं थम रहा है आंकड़ा। 939 लोगों की गई जान, 3900 से ज्यादा लापता। रेस्क्यू के काम में भारतीय एक्सपर्ट्स भी शामिल। और मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से लिया संन्यास। अर्जेंटीना के कप्तान ने कहा अलविदा। सोशल मीडिया पर फैंस को लिखा भावुक पत्र। बिश्केक में एससीओ समिट के बीच प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की ये तीसरी आमने सामने मुलाकात है। ऐसे में इस मुलाकात में दोनों के बीच क्या बात हुई, दुनिया ये जानना और समझना चाहती है। देखिए बिश्केक में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की महामुलाकात के मायने क्या है।
1: मोदी और राष्ट्रपति पुतिन मिले दोस्ती के सिलसिले। मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई, क्या क्या बात हुई। बिश्केक से मैसेज क्लियर, भारत और रूस की दोस्ती जिंदाबाद। एससीओ में मोदी पुतिन जिनपिंग की केमिस्ट्री, अमेरिका में खलबली। भारत चीन रूस का त्रिकोण, ट्रंप का तोड़। एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन में वैसे तो 10 देश हैं, भारत चीन रूस पाकिस्तान कजाकिस्तान किर्गिस्तान ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान और ईरान। इसके अलावा पर्यवेक्षक के तौर पर कई और देश भी शामिल हैं। लेकिन सिर्फ 3 देश यानी भारत रूस और चीन इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया की टॉप हेडलाइंस बने हुए हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर क्यों दुनिया भारत रूस और चीन की चर्चा कर रही है और क्यों इन तीनों देशों के नेताओं की केमिस्ट्री से डोनाल्ड ट्रंप भी टेंशन में हैं। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं किर्गिस्तान में हुई पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की द्विपक्षीय बैठक और मुलाकात। जब बिश्केक में पीएम मोदी और पुतिन मिलते हैं तो दोनों नेता एक दूसरे के गले मिलते हैं। ये वो मुलाकात है जो सिर्फ भारत और रूस के पुराने संबंधों को और पुख्ता करती है बल्कि भारत रूस संबंधों की नई दिशा तय करने वाली है। इसीलिए पुतिन सीधे भारत और रूस के संबंधों पर बोलते हैं।
2: I'd like to note with satisfaction the following thing, namely that the Russian-Indian relations continue to get strengthened on the basis of the principles of the special and privileged partnership. Distinguished Prime Minister, of course this is aided by your special attention to the Russian-Indian relations and the business and kind relations, friendly relations that have been established between us, and I'm very grateful to you for that.
1: लेकिन पीएम मोदी रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर राष्ट्रपति पुतिन से कहते हैं कि वो यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के पक्ष में हैं, क्योंकि युद्ध का हर दिन मानवता को पीछे धकेल रहा है।
3: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। पिछली बार भी जब हम मिले थे तब आपने विस्तार से सभी विषयों के बारे में मुझे अवगत किया था। जैसा कि आप जानते हैं भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देती है, उमंग से भर देती है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: आपको बता दें कि पीएम मोदी ने यह भी बताया कि किस तरह से भारत और रूस का सहयोग नई ऊंचाइयां छू रहा है।
3: पिछले वर्ष आपकी भारत यात्रा बहुत ही सफल रही और बहुत ही यादगार रही। हमने कई घंटे साथ बिताए और विशेष रूप से बिजनेस फोरम और एक प्रकार से बिजनेस वर्ल्ड का रशिया का हुज हु कहे उन सब को लेकर के आप आए और आर्थिक संबंधों को एक नई ऊंचाई और ज्यादा विस्तार देने का काम भी हमारी चर्चा में हुआ। और मुझे खुशी है कि जो आउटकम निकले हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारी दोनों टीमें पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही हैं और बड़ी गति के साथ काम कर रही हैं। ये हमारे लिए गहरे संतोष का विषय है कि हमारा सहयोग निरंतर नई ऊंचाइयों को और बढ़ रहा है और दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब दुनिया का जियोपॉलिटिकल नक्शा पूरी तरह बदल रहा है। अमेरिका ईरान युद्ध को 6 महीने हो चुके हैं, रूस यूक्रेन युद्ध को 4.5 साल हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक तरफा विदेश नीति ने वैश्विक नियम आधारित व्यवस्था को चुनौती दी है और SCO अपनी 26वीं वर्षगांठ मना रहा है। ऐसे में भारत, रूस और चीन जैसी ताकतें एक मंच पर इकट्ठा हो रही हैं। इसे पश्चिमी प्रभाव के जवाब में एक काउंटर बैलेंस के तौर पर देखा जा रहा है। बिश्केक के बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन 12 से 13 सितंबर को नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी मिलेंगे। पीएम मोदी ने इसका न्योता दे दिया है।
3: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका और आपके डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक है। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
1: SCO का 26वां शिखर सम्मेलन किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हो रहा है जो 1 सितंबर तक चलेगा। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कई नेता शामिल हो रहे हैं, लेकिन मोदी, पुतिन और जिनपिंग की तिकड़ी ने यकीनन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ा दी है। इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट से ट्रंप की नींद और भी उड़ना लाजमी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि फ्रांस, न्यूजीलैंड, सेशेल्स, मलेशिया, स्लोवाकिया और इटली पिछले 1 साल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत तेजी से दुनिया भर की यात्राएं की हैं। उन्होंने नए पार्टनर बनाए हैं या मौजूद पार्टनरों के साथ रिश्ते मजबूत किए हैं। उन्हें एक कड़वी सच्चाई ने तेजी से कदम उठाने पर मजबूर किया है। अखबार ने आगे ट्रंप की आलोचना करते हुए लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप की वजह से दुनिया में मची उथल पुथल का सामना करने और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का भारत के पास एकमात्र तरीका है कि वो अलग अलग जगह पर अपने रिश्ते बढ़ाए। रिपोर्ट में पीएम मोदी की उज्बेकिस्तान की यात्रा का जिक्र भी शामिल है। अखबार ने SCO समिट के बारे में लिखा है और राष्ट्रपति पुतिन के साथ मोदी की मुलाकात की चर्चा भी की है और ये भी लिखा है कि कैसे पीएम मोदी ट्रंप के मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, एक एक करके डील कर रहे हैं और इसे एक रणनीति करार दिया है। SCO की सबसे दिलचस्प तस्वीर शायद यही है। एक तरफ मोदी और शी जिनपिंग एक ही बहुपक्षीय मंच पर हैं, दूसरी तरफ भारत और चीन के बीच सीमा विवाद और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसे में SCO भारत को चीन के साथ बातचीत का एक अतिरिक्त मंच देता है। दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधरे या बिगड़े, बहुपक्षीय मंचों पर संवाद की गुंजाइश बनी रहती है। भारत लंबे समय से मिडल ईस्ट के देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। मध्य एशिया तेल, गैस, यूरेनियम और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों का बड़ा भंडार है। भारत मध्य एशिया के देशों के साथ व्यापार भी बढ़ाना चाहता है। इसके लिए वो नए व्यापार और परिवहन मार्ग विकसित करने पर काम कर रहा है। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को देखते हुए SCO की टेबल और भी दिलचस्प हो जाती है। भारत लंबे समय से आतंकवाद के मुद्दे को एससीओ जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा है। पीएम मोदी ने भी इस यात्रा के संदर्भ में आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद को क्षेत्रीय शांति के लिए चुनौती बताया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी एससीओ का पूर्ण सदस्य है, इसीलिए यहां भारत को पाकिस्तान के साथ किसी द्विपक्षीय मंच की तरह बातचीत करने के बजाय एक बड़े बहुपक्षीय ढांचे में अपनी सुरक्षा चिंताओं को रखने का मौका मिलता है। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी में सभी दलों ने 27 के चुनाव के लिए कमर कसी हुई है और लखनऊ में सोमवार का दिन बैठकों का दिन रहा। यूपी की तीन बड़ी पार्टियों ने लखनऊ में तीन बड़ी बड़ी बैठकें की हैं। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तीनों ने चुनावी तैयारियों पर मंथन किया।
4: उत्तर प्रदेश में चुनावी दस्तक होने ही वाली है, उससे पहले हर दल पूरी तैयारी में जुटा है। बीजेपी की नई टीम ने सभी जिलाध्यक्षों, मोर्चा अध्यक्षों से लेकर सीएम, डिप्टी सीएम के साथ तैयारी की बैठकें की हैं, तो समाजवादी पार्टी ने भी प्रदेश भर से जिलाध्यक्षों, महानगर अध्यक्षों को टेक टीम के साथ बुलाया था और बीएसपी ने भी अपने सभी जिला प्रमुखों के साथ बैठक की। बीजेपी ने अपनी बैठक में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर सेवा संकल्प अभियान चलाने का प्लान बनाया है।
5: हर जिले से 5-5 पदाधिकारी, विधायक, सांसदों को आज बुलाया गया है। एक खाका तैयार किया जाएगा यूपी चुनाव के मद्देनजर कि किस तरीके से आखिर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को जवाब देने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी भी आज ही लखनऊ में बड़ी बैठकें कर रही है। देखना यह है कि इन बैठकों के दौर में कौन बाजी मारेगा, लेकिन एक बात तो साफ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे चुनाव में चेहरे के तौर पर नजर आ रहे हैं और स्मृति ईरानी का ध्यान भी अब उत्तर प्रदेश में केंद्रित हो चुका है।
4: बैठक के बाद सीएम योगी बहराइच के कार्यक्रम में पहुंचे और यहां उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा।
6: किसी बेटी को, किसी व्यापारी को, किसी माफिया और किसी अपराधी से भयभीत होने की आवश्यकता भी अब यूपी में नहीं पड़ती है। यही है डबल इंजन सरकार की कार्य।
4: इधर समाजवादी पार्टी की बैठक में अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार अभियान का शंखनाद कर दिया।
7: कल से हमारी पार्टी का प्रचार एक तरह से शुरू।
4: अखिलेश यादव के लिए घोटाले, भ्रष्टाचार, पीडीए अत्याचार, बंद स्कूल, फर्जी मुठभेड़, किसान संकट, अपराध और एसएआर ये मुद्दे हैं।
7: एसआईआर के बाद भारतीय जनता पार्टी की चुनाव आयोग के माध्यम से साजिश होगी और एक षड्यंत्र होगा कि दोबारा एसएआर कराया जाए।
4: तो फिर सवाल है कि एसएआर क्या है? एसएआर बोले तो स्पेशल एनुअल रिविजन, ये चुनाव आयोग अनिवार्य रूप से हर साल करता है। इसे स्पेशल समरी रिवीजन कहा जाता है, जो सालाना आमतौर पर अक्टूबर नवंबर में शुरू होता है। इसमें 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 साल की उम्र के हो चुके नौजवानों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाता है। अखिलेश इस संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
7: चुनाव से पहले एक एनुअल रिवीजन करेंगे ये लोग एसएआर, जिससे कि ये अपने लोगों के वोटों को एडजस्ट करेंगे। सुनने में आ रहा है कि बड़े पैमाने पर बिहार से लोग, झारखंड से लोग, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उनके ये लोग वोट बनाएंगे और अपने बूथों पर वोट बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए हमारे संगठन, हमारे जो बूथ स्तर पर ऐप के माध्यम से काम कर रहे हैं, उन सब का हमने सहयोग मांगा है।
4: अखिलेश एसआईआर के बाद एसएआर को नियम के विपरीत बताते हैं और इसे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने की मंशा से किए जाने वाला अभ्यास बता रहे हैं। इस तथ्य का जिक्र जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में सामने आया तो अदालत ने फिलहाल चल रहे सिर्फ 19 ट्रिब्यूनल्स की संख्या बढ़ाने और वाजिब नामों को लिस्ट में जोड़ते जाने को कहा था। आज तक ब्यूरो।
0: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कनाडा में हैं, मगर उनके यूएस में दिए गए बयान पर सियासत तेज हो चुकी है। ओवैसी ने भागवत के बयान पर सवाल उठाए हैं। उधर कनाडा में ऐतिहासिक मंच से संघ प्रमुख ने दुनिया को लेकर भारत की सोच को पूरी तरह से साफ कर दिया है।
8: इफ एनी हिंदू थिंक्स दैट देयर शुड बी नो मुस्लिम इन भारत, ही विल नॉट रिमेन हिंदू। If you want to call yourself Hindu, you must believe that all paths are leading to the same. And every human has a dignity. There is no difference between human beings.
4: मोहन भागवत के इसी बयान पर हिंदुस्तान में हंगामा बरपा है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि आरएसएस की कथनी और करनी में अंतर है। असदुद्दीन ओवैसी ने आज सोशल मीडिया पर लिखा कि आरएसएस की सबसे पुरानी चाल है, कुछ बातें बाहरी दुनिया के लिए होती हैं, जबकि कुछ उसके अपने सदस्यों के लिए। आरएसएस ने कभी भी अपने मुख्य विचारकों और लेखकों की सोच से खुद को अलग नहीं किया है। वे मुसलमानों और दूसरे अल्पसंख्यकों के बारे में क्या कहते हैं? इस बयान पर यहां भले ही सियासत हो रही है, मगर इसके बाद मोहन भागवत अपनी विदेश यात्रा के दूसरे पड़ाव पर कनाडा के टोरंटो पहुंचे। संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है और इस मौके पर मोहन भागवत कई देशों के दौरे पर हैं। टोरंटो के भव्य कार्यक्रम में संघ प्रमुख ने दुनिया को लेकर भारत के नजरिए और संस्कृति की पहचान को सामने रखा।
9: Whenever there was crisis anywhere in the world and help from Bharat was sought, Bharat never said no. And without even calling for help, it helps. This is the tradition. This is the DNA of Bharat. Therefore, you heard the song. Hindu jage to Vishwa jagega. You heard the first stanza. Hindu sada se Vishwa bandhu hai. Hindu is always like that.
4: भागवत ने साफ किया कि भारत का उदय दुनिया पर सैन्य या आर्थिक ताकत का ध्वंस जमाने के लिए नहीं है। भारत एक महाशक्ति के रूप में दूसरों पर प्रभुत्व नहीं जताना चाहता, बल्कि निस्वार्थ सेवा, ज्ञान और मानवीय मूल्यों के आधार पर विश्वगुरु बनना चाहता है।
9: विश्व का हर देश जब भी दिग्भ्रमित हो लड़खड़ाया, सत्य की पहचान करने इस धरा के पास आया।
4: इस आयोजन की कूटनीतिक अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि कनाडा के कुछ विपक्षी सांसदों और चुनिंदा संगठनों ने मोहन भागवत के वीजा और कार्यक्रम को रोकने का भारी राजनीतिक दबाव बनाया था, लेकिन कनाडा के 100 से अधिक बड़े हिंदू और सामाजिक संगठनों के पुरजोर समर्थन के बाद ये ऐतिहासिक आयोजन बिना किसी बाधा के पूरा हुआ। आज तक ब्यूरो।
0: शुद्धिकरण विवाद पर उत्तराखंड की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। राहुल गांधी पर एफआईआर के बाद इस विवाद ने पूरा तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस ने बाकायदा पुलिस से मिलकर एफआईआर का विरोध किया तो बीजेपी ने भी राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया।
10: ये SC ST एक्ट के खिलाफ ये काम है। लेट मी रिपीट हियर, इट इज अ क्राइम टू डू शुद्धिकरण। नो एक्शन हैज बीन टेकन। हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी जिन लोगों ने शुद्धिकरण किया है उत्तराखंड में, उन पर FIR लागू हो। ये जो इंसिडेंट है, ये हमें दिखाता है बीजेपी और RSS का माइंडसेट। वो नहीं चाहते कि इस देश के दलित प्रगति करें, वो नहीं चाहते कि इस देश के दलित रिस्पेक्ट के साथ जिए और सक्सेसफुल।
4: यही वो बयान है जिसके आधार पर उत्तराखंड की पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज की है। 8 अगस्त को मल्लिकार्जुन खड़गे की हल्द्वानी रैली के बाद 11 अगस्त को वहां के रामलीला ग्राउंड पर पूजा और हवन किया गया। 29 अगस्त को जब राहुल गांधी ने इस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो दलित समाज से आने वाले अमित कुमार की शिकायत पर हल्द्वानी में राहुल गांधी के खिलाफ SC ST उत्पीड़न एक्ट के तहत FIR दर्ज की गयी। लेकिन अब ये FIR उत्तराखंड समेत पूरे देश में दलितों के नाम पर नए सियासी संग्राम को जन्म दे रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं की कथित शुद्धिकरण पर FIR दर्ज करने को लेकर पुलिस से बहस हुई।
11: SC ST का मामला है, ये CO स्तर का अधिकारी इसमें जांच करता है, लेकिन जांच करने के बाद जो है क्या सही है तो उसके बाद है, लेकिन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लेने के लिए आप तैयार नहीं।
4: इधर दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा के मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई।
12: हमारे समाज में कुछ लोग दलित हैं, लेकिन समाज में बंटवारा कौन कर रहा है? ये भाजपा और RSS की विचारधारा है जो बंटवारा कर रही है, और यही इनका मकसद था जो इन्होंने अपने कुछ लोगों को भेजकर वहां पर सो कॉल्ड शुद्धिकरण करके, मतलब क्या था इनका? अगर राजनीतिक मतलब नहीं था तो क्या था, ये बता दें।
4: खड़गे के बहाने दलितों के अपमान को मुद्दा बना रही कांग्रेस पर पलटवार बीजेपी ने भी किया।
13: जहां पर रामलीला का मंचन होता है, बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, ऐसे आयोजनों पर जो गंदगी हुई थी, जो धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए थे और एक धर्म विशेष के लोगों ने लगाए थे, उसके विरोध में लोगों ने जो धार्मिक संगठन थे उन्होंने उस वहां पर शुद्धिकरण का जो कार्यक्रम किया था वो कार्यक्रम था, और इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है।
4: कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज FIR में भी खड़गे की रैली के बाद रामलीला मैदान में न सिर्फ शराब की बोतलें बल्कि धार्मिक नारेबाजी की शिकायत दर्ज है। अब कांग्रेस उत्तराखंड पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगा रही है।
14: हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। RSS और BJP पार्टी थी, उन लोगों ने कुकृत्य किया था, लेकिन पुलिस ने उसमें आग में घी डालने का काम किया है। पुलिस कौन होती है? अगर कॉग्निजेंस लेना था आपने तो आप 10 तारीख के प्रकरण का कॉग्निजेंस लेते और मुकदमा कायम करते, लेकिन आपने मुकदमा कायम कर दिया राहुल गांधी के खिलाफ।
4: हल्द्वानी का मामला ऐसे समय में गंभीर राजनीतिक मोड़ ले रहा है जब राहुल चाय की दुकानों पर भी दलितों से भेदभाव जैसे आरोप लगा रहे हैं। आज तक ब्यूरो
10: देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए।
0: अब बात यूपी में हुए मर्डर को लेकर चल रही राजनीति के बारे में करेंगे। अंकित बालियान की हत्या के हफ्ते भर के अंदर दो आरोपी ढेर कर दिए गए, लेकिन अंकित बालियान मर्डर केस को लेकर अपराध से ज्यादा सियासत की चर्चाएं हुई हैं। दरअसल इस हत्याकांड की बुनियाद में ही जात गोत्र की बड़ी वजह थी। हत्या के बाद अखिलेश यादव ने उसी जाति गोत्र की बात की तो राजनीति गर्मा गई।
1: छब्बीस अगस्त को शामली में हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बालियान की हत्या होती है। चार दिन तक जब कोई एक्शन नहीं होता तो बालियान की पत्नी CM योगी से हथियारों को मिट्टी में मिला देने की अपील करती हैं, और एक दिन बाद हत्या के दो आरोपियों का हिसाब किताब पूरा हो जाता है। कैराना में पुलिस और STF के आरोपियों से मुठभेड़ होती है। हत्या के दो आरोपियों को पुलिस की टीम घेर लेती है। एनकाउंटर में दोनों आरोपियों को मार गिराया जाता है।
15: दो शूटर्स मारे गए हैं, सुमित और मोहित, और इनके पास से भारी मात्रा में आग्नेयास्त्र बरामद हुए हैं। इन्होंने पुलिस पर भारी फायरिंग भी की है जिससे दो कांस्टेबल्स भी हमारे घायल हुए हैं। अभी इस घटना में और भी लोग शामिल हैं जिनके बारे में तफ्तीश जारी है, और खास करके जो शूटर्स हैं और जो इस गैंग के लीडर्स हैं जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को प्लान किया है या अंजाम दिलाया है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।
1: लेकिन इस एनकाउंटर पर सियासत सुलग उठी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस PDA के लोगों का एनकाउंटर कर रही है। उन्होंने STF की भी नई परिभाषा दी।
7: मुख्यमंत्री जी की STF स्वजाति टॉर्चर फोर्स, स्वजाति टॉर्चर फोर्स, और लगातार PDA का उत्पीड़न हो रहा है।
1: अकेले अखिलेश यादव ही नहीं, समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव भी इस एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं।
16: कोई लॉ एंड ऑर्डर है उत्तर प्रदेश में? सिवाय हत्याएं या गोली मार के एनकाउंटर कराना फर्जी, इसके अलावा कुछ भी नहीं।
1: हालांकि राम गोपाल यादव के बयान को अंकित बालियान के पिता ने ही खारिज कर दिया।
17: कहा है उन्होंने कि ये फर्जी, इसके पीछे आप क्या समझते हैं
18: भाई? वे तो राजनीतिक पार्टी है, वे तो पता नहीं क्या कहेगी क्या नहीं, लेकिन जब मैं खुद देख आया उनको दोनों को जिन्होंने पीछे से गोली मारी थी, तो मैं फर्जी कैसे कहूंगा।
1: अब यूपी की सरकार कह रही है कि आरोपियों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
19: बहुत ही दुखद घटना थी और प्रदेश पुलिस ने उन्हें पुलिस मुठभेड़ में मारा है। अंकित बलियान जी की जो निर्मम हत्या हुई थी, प्रदेश दुखी था। उन हत्यारों ने पुलिस पर भी गोलियां चलाई जिसकी किए की सजा उन्हें मिल चुकी है।
1: दो आरोपी पुलिस के एनकाउंटर में मारे गए और बाकी के आरोपियों को पुलिस तलाश रही है। इन सब के बीच अंकित की बहन मांग कर रही है कि बाकी आरोपियों का भी एनकाउंटर होना चाहिए।
20: हमें तब तक संतुष्टि नहीं मिलेगी तब तक मेरे भाई के हत्यारे संपूर्ण खत्म नहीं हो जाते, आपकी जड़ तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे, नहीं हम शांति से बैठेंगे।
1: एक तरफ परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है और दूसरी तरफ एनकाउंटर पर जबरदस्त सियासत हो रही है। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: एक बार फिर दिल्ली NCR में निर्भया जैसी दरिंदगी की गई है। इस बार ग्रेटर नोएडा में बस में चढ़ी एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप किया गया है। हैरानी की बात यह है कि ग्रेटर नोएडा के परी चौक से कश्मीरी गेट तक बस चली और इस दौरान लड़की के साथ दरिंदगी हुई, लेकिन दोनों ही राज्यों की पुलिस को कानो कान खबर नहीं लगी।

0: दो राज्यों की पुलिस सचेत रहती तो एक और निर्भया कांड नहीं होता। ग्रेटर नोएडा के सबसे व्यस्त चौराहे परी चौक से बस में सवार एक बच्ची दरिंदों का शिकार हो गई। करीब 47 किलोमीटर तक बस दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर दौड़ती रही और ड्राइवर और कंडक्टर नाबालिग से वहशत को अंजाम देते रहे। वारदात 4 अगस्त की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक छात्रा अपने परिवार वालों से नाराज होकर घर से निकली थी और चचेरे भाई के घर जा रही थी जो नोएडा में रहता है। भारी बारिश और अंधेरे की वजह से छात्रा गलती से परी चौक पर उतर गई। इसी दौरान एक खाली स्लीपर बस वहां से गुजरी। छात्रा को नोएडा सेक्टर 62 छोड़ने का भरोसा दिया और फिर ड्राइवर और कंडक्टर ने छात्रा से गैंगरेप किया। वारदात के बाद आरोपी छात्रा को कश्मीरी गेट बस अड्डे के पास रिंग रोड पर उतार कर वहां से फरार हो गए। फिर छात्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपियों की धरपकड़ की कोशिश शुरू हुई।
1: दिल्ली में एक बार फिर से एक ऐसा मामला सामने आया है जो फिर से पूरी दिल्ली एनसीआर को शमसार कर देगा। दरअसल ये मामला चलती बस में एक गैंग रेप का है। 16 वर्षीय मैनपुरी की रहने वाली 11वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की घर से लड़कर घर से बाहर निकलती है, बस पकड़ के अपने भाई के घर मैनपुरी से नोएडा आना चाहती है, लेकिन उस रात बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से उसे पता नहीं लगा और परी चौक के पास वो बस से उतर जाती है, जिसके बाद वो हाथ देकर एक स्लीपर बस को रोकती है। बस रुकती है और उसे कहती है कि वो सेक्टर 63 तक उसे छोड़ देंगे। बस पे चढ़ने के कुछ देर बाद ही जो बस का कंडक्टर है उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, उसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट करने लगता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने कुछ किया तो उसे जान से मार देंगे। इसके बाद करीब 47 किलोमीटर तक जो वो बस है दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर चलती है। नोएडा में इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद लड़की को कश्मीरी गेट के पास लाकर उतार दिया जाता है और फिर वो लड़की पीड़िता खुद पुलिस के पास पहुंचती है। और यहां आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन है। इसी पुलिस स्टेशन में आकर वो कंप्लेन देती है।
0: दिल्ली पुलिस ने गैंगरेप की वारदात के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। स्लीपर बस को जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है।
2: नए आपराधिक कानूनों के अनुसार बिना ज्यूरिसडिक्शनल इश्यूज में गए हुए थाना कश्मीरी गेट ने तुरंत विक्टिम का मेडिकल कराया और केस दर्ज किया। साथ ही सीसीटीवी कैमरेज की सहायता से कुछ ही घंटे में बस को भी ट्रेस किया और दोनों अपराधियों को भी अरेस्ट किया।
0: सवाल ज्यूरिसडिक्शन का नहीं है, सवाल यह है कि ग्रेटर नोएडा से दिल्ली तक बस चलती रही और गैंगरेप होता रहा और दोनों राज्यों की पुलिस को कानो कान खबर नहीं हुई। सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस की उन साझा बैठकों से क्या हासिल हुआ जो मिलजुल कर अपराध रोकने के लिए होती हैं। दिल्ली से अरविंद ओझा और अंशुल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
3: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

आज तक ला रहा है आपके लिए वीडियो वाला पेपर, हर रोज सुबह आपके मोबाइल पर, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। इसे पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर epaper.aajtak.in टाइप करें या फिर स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड को स्कैन करें।

0: बिश्केक में गर्मजोशी के साथ पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई। बातचीत में यूक्रेन का मुद्दा भी उठा। प्रधानमंत्री ने कहा युद्ध मानवता के लिए खतरा, भारत शांति का पक्षधर। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार, चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी 7.8% रही। प्रधानमंत्री मोदी बोले, निराशावादी लोगों की हुई हार। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी विरोध प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट में पहुंची दिल्ली पुलिस, 13 एफआईआर रद्द करने की इजाजत मांगी। आपराधिक पृष्ठभूमि के 2873 लोगों पर दर्ज हो केस। नेपाल में त्रासदी के बाद मरने वालों का नहीं थम रहा है आंकड़ा, 939 लोगों की गई जान, 3900 से ज्यादा लापता। रेस्क्यू के काम में भारतीय एक्सपर्ट्स भी शामिल। और मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से लिया संन्यास, अर्जेंटीना के कप्तान ने कहा अलविदा। सोशल मीडिया पर फैंस को लिखा भावुक पत्र। बिश्केक में एससीओ समिट के बीच प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की ये तीसरी आमने सामने मुलाकात है। ऐसे में इस मुलाकात में दोनों के बीच क्या बात हुई, दुनिया ये जानना और समझना चाहती है। देखिए बिश्केक में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की महामुलाकात के मायने क्या है।
1: मोदी और राष्ट्रपति पुतिन मिले दोस्ती के सिलसिले। मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई, क्या क्या बात हुई। बिश्केक से मैसेज क्लियर, भारत और रूस की दोस्ती जिंदाबाद। एससीओ में मोदी पुतिन जिनपिंग की केमिस्ट्री, अमेरिका में खलबली। भारत चीन रूस का त्रिकोण, ट्रंप का तोड़। एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन में वैसे तो 10 देश हैं, भारत चीन रूस पाकिस्तान कजाकिस्तान किर्गिस्तान ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान और ईरान। इसके अलावा पर्यवेक्षक के तौर पर कई और देश भी शामिल हैं। लेकिन सिर्फ 3 देश यानी भारत रूस और चीन इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया की टॉप हेडलाइंस बने हुए हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर क्यों दुनिया भारत रूस और चीन की चर्चा कर रही है और क्यों इन तीनों देशों के नेताओं की केमिस्ट्री से डोनाल्ड ट्रंप भी टेंशन में हैं। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं किर्गिस्तान में हुई पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की द्विपक्षीय बैठक और मुलाकात। जब बिश्केक में पीएम मोदी और पुतिन मिलते हैं तो दोनों नेता एक दूसरे के गले मिलते हैं। ये वो मुलाकात है जो सिर्फ भारत और रूस के पुराने संबंधों को और पुख्ता करती है बल्कि भारत रूस संबंधों की नई दिशा तय करने वाली है। इसीलिए पुतिन सीधे भारत और रूस के संबंधों पर बोलते हैं।
2: I'd like to note with satisfaction the following thing, namely that the Russian-Indian relations continue to get strengthened on the basis of the principles of the special and privileged partnership. Distinguished Prime Minister, of course, this is aided by your special attention to the Russian-Indian relations and the business and kind relations, friendly relations that have been established between us. And I'm very grateful to you for that.
1: लेकिन पीएम मोदी रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर राष्ट्रपति पुतिन से कहते हैं कि वो यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के पक्ष में हैं, क्योंकि युद्ध का हर दिन मानवता को पीछे धकेल रहा है।
3: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। पिछली बार भी जब हम मिले थे तब आपने विस्तार से सभी विषयों के बारे में मुझे अवगत किया था। जैसा कि आप जानते हैं, भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देती है, उमंग से भर देती है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: आपको बता दें कि पीएम मोदी ने यह भी बताया कि किस तरह से भारत और रूस का सहयोग नई ऊंचाइयां छू रहा है।
3: पिछले वर्ष आपकी भारत यात्रा बहुत ही सफल रही और बहुत ही यादगार रही। हमने कई घंटे साथ बिताए और विशेष रूप से बिजनेस फोरम और एक प्रकार से बिजनेस वर्ल्ड का रशिया का हूज हू कहे उन सबको लेकर के आप आए और आर्थिक संबंधों को एक नई ऊंचाई और ज्यादा विस्तार देने का काम भी हमारी चर्चा में हुआ और मुझे खुशी है कि जो आउटकम निकले हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारी दोनों टीमें पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही हैं और बड़ी गति के साथ काम कर रही हैं। ये हमारे लिए गहरे संतोष का विषय है कि हमारा सहयोग निरंतर नई ऊंचाइयों को और बढ़ रहा है और दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब दुनिया का जियोपॉलिटिकल नक्शा पूरी तरह बदल रहा है। अमेरिका ईरान युद्ध को 6 महीने हो चुके हैं, रूस यूक्रेन युद्ध को 4.5 साल हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक तरफा विदेश नीति ने वैश्विक नियम आधारित व्यवस्था को चुनौती दी है और एससीओ अपनी 26वीं वर्षगांठ मना रहा है। ऐसे में भारत, रूस और चीन जैसी ताकतें एक मंच पर इकट्ठा हो रही हैं। इसे पश्चिमी प्रभाव के जवाब में एक काउंटर बैलेंस के तौर पर देखा जा रहा है। बिश्केक के बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन 12 से 13 सितंबर को नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी मिलेंगे। पीएम मोदी ने इसका न्योता दे दिया है।
3: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका और आपके डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
1: एससीओ का 26वां शिखर सम्मेलन किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हो रहा है जो 1 सितंबर तक चलेगा। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कई नेता शामिल हो रहे हैं, लेकिन मोदी, पुतिन और जिनपिंग की तिकड़ी ने यकीनन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ा दी है। इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट से ट्रंप की नींद और भी उड़ना लाजमी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि फ्रांस, न्यूजीलैंड, सेशेल्स, मलेशिया, स्लोवाकिया और इटली पिछले 1 साल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत तेजी से दुनिया भर की यात्राएं की हैं। उन्होंने नए पार्टनर बनाए हैं या मौजूद पार्टनरों के साथ रिश्ते मजबूत किए हैं। उन्हें एक कड़वी सच्चाई ने तेजी से कदम उठाने पर मजबूर किया है। अखबार ने आगे ट्रंप की आलोचना करते हुए लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप की वजह से दुनिया में मची उथल पुथल का सामना करने और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का भारत के पास एकमात्र तरीका है कि वो अलग अलग जगह पर अपने रिश्ते बढ़ाए। रिपोर्ट में पीएम मोदी की उज्बेकिस्तान की यात्रा का जिक्र भी शामिल है। अखबार ने एससीओ समिट के बारे में लिखा है और राष्ट्रपति पुतिन के साथ मोदी की मुलाकात की चर्चा भी की है और ये भी लिखा है कि कैसे पीएम मोदी ट्रंप के मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, एक एक करके डील कर रहे हैं और इसे एक रणनीति करार दिया है। एससीओ की सबसे दिलचस्प तस्वीर शायद यही है। एक तरफ मोदी और शी जिनपिंग एक ही बहुपक्षीय मंच पर है, दूसरी तरफ भारत और चीन के बीच सीमा विवाद और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसे में एससीओ भारत को चीन के साथ बातचीत का एक अतिरिक्त मंच देता है। दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधरे या बिगड़े, बहुपक्षीय मंचों पर संवाद की गुंजाइश बनी रहती है। भारत लंबे समय से मिडल ईस्ट के देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। मध्य एशिया तेल, गैस, यूरेनियम और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों का बड़ा भंडार है। भारत मध्य एशिया के देशों के साथ व्यापार भी बढ़ाना चाहता है। इसके लिए वो नए व्यापार और परिवहन मार्ग विकसित करने पर काम कर रहा है। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को देखते हुए एससीओ की टेबल और भी दिलचस्प हो जाती है। भारत लंबे समय से आतंकवाद के मुद्दे को एससीओ जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा है। पीएम मोदी ने भी इस यात्रा के संदर्भ में आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद को क्षेत्रीय शांति के लिए चुनौती बताया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी एससीओ का पूर्ण सदस्य है, इसीलिए यह भारत को पाकिस्तान के साथ किसी द्विपक्षीय मंच की तरह बातचीत करने के बजाय एक बड़े बहुपक्षीय ढांचे में अपनी सुरक्षा चिंताओं को रखने का मौका मिलता है। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी में सभी दलों ने 27 के चुनाव के लिए कमर कसी हुई है और लखनऊ में सोमवार का दिन बैठकों का दिन रहा। यूपी की तीन बड़ी पार्टियों ने लखनऊ में तीन बड़ी बड़ी बैठकें की हैं। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तीनों ने चुनावी तैयारियों पर मंथन किया।
4: उत्तर प्रदेश में चुनावी दस्तक होने ही वाली है, उससे पहले हर दल पूरी तैयारी में जुटा है। बीजेपी की नई टीम ने सभी जिला अध्यक्षों, मोर्चा अध्यक्षों से लेकर सीएम, डिप्टी सीएम के साथ तैयारी की बैठकें की हैं, तो समाजवादी पार्टी ने भी प्रदेश भर से जिला अध्यक्षों, महानगर अध्यक्षों को टेक टीम के साथ बुलाया था और बीएसपी ने भी अपने सभी जिला प्रमुखों के साथ बैठक की। बीजेपी ने अपनी बैठक में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर सेवा संकल्प

0: नजर कि किस तरीके से आखिर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को जवाब देने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी भी आज ही लखनऊ में बड़ी बैठकें कर रही हैं। देखना यह है कि इन बैठकों के दौर में कौन बाजी मारेगा। लेकिन एक बात तो साफ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे चुनाव में चेहरे के तौर पर नजर आ रहे हैं और स्मृति ईरानी का ध्यान भी अब उत्तर प्रदेश में केंद्रित हो चुका है।
1: बैठक के बाद सीएम योगी बहराइच के कार्यक्रम में पहुंचे और यहां उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा।
2: किसी बेटी को, किसी व्यापारी को, किसी माफिया और किसी अपराधी से भयभीत होने की आवश्यकता भी अब यूपी में नहीं पड़ती है। यही है डबल इंजन सरकार की कार्य।
1: इधर समाजवादी पार्टी की बैठक में अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार अभियान का शंखनाद कर दिया।
3: कल से हमारी पार्टी का प्रचार एक तरह से शुरू।
1: अखिलेश यादव के लिए घोटाले, भ्रष्टाचार, पीडीए अत्याचार, बंद स्कूल, फर्जी मुठभेड़, किसान संकट, अपराध और SAR ये मुद्दे हैं।
3: SIR के बाद भारतीय जनता पार्टी की चुनाव आयोग के माध्यम से साजिश होगी और एक षड्यंत्र होगा कि दोबारा SAR कराया जाए।
1: तो फिर सवाल है कि SAR क्या है? SAR बोले तो स्पेशल एनुअल रिवीजन। ये चुनाव आयोग अनिवार्य रूप से हर साल करता है। इसे स्पेशल समरी रिवीजन कहा जाता है, जो सालाना आमतौर पर अक्टूबर नवंबर में शुरू होता है। इसमें 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 साल के उम्र के हो चुके नौजवानों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाता है। अखिलेश इस संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
3: चुनाव से पहले एक एनुअल रिवीजन करेंगे ये लोग SAR, जिससे कि ये अपने लोगों के वोटों को एडजस्ट करेंगे। सुनने में आ रहा है कि बड़े पैमाने पर बिहार से लोग, झारखंड से लोग, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उनके ये लोग वोट बनाएंगे और अपने बूथों पर वोट बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए हमारे संगठन, हमारे जो बूथ स्तर पर ऐप के माध्यम से काम कर रहे हैं, उन सब का हमने सहयोग मांगा है।
1: अखिलेश SIR के बाद SAR को नियम के विपरीत बताते हैं और इसे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने की मंशा से किए जाने वाला अभ्यास बता रहे हैं। इस तथ्य का जिक्र जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में सामने आया तो अदालत ने फिलहाल चल रहे सिर्फ 19 ट्रिब्यूनल्स की संख्या बढ़ाने और वाजिब नामों को लिस्ट में जोड़ते जाने को कहा था। आज तक ब्यूरो।
4: RSS प्रमुख मोहन भागवत कनाडा में हैं, मगर उनके US में दिए गए बयान पर सियासत तेज हो चुकी है। ओवैसी ने भागवत के बयान पर सवाल उठाए हैं। उधर कनाडा में ऐतिहासिक मंच से संघ प्रमुख ने दुनिया को लेकर भारत की सोच को पूरी तरह से साफ कर दिया है।
5: If any Hindu thinks that there should be no Muslim in Bharat, he will not remain Hindu. If you want to call yourself Hindu, you must believe that all paths are leading to the same. And every human has a dignity. There is no difference between human beings.
1: मोहन भागवत के इसी बयान पर हिंदुस्तान में हंगामा बरपा है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि RSS की कथनी और करनी में अंतर है। असदुद्दीन ओवैसी ने आज सोशल मीडिया पर लिखा कि RSS की सबसे पुरानी चाल है, कुछ बातें बाहरी दुनिया के लिए होती हैं, जबकि कुछ उसके अपने सदस्यों के लिए। RSS ने कभी भी अपने मुख्य विचारकों और लेखकों की सोच से खुद को अलग नहीं किया है। वे मुसलमानों और दूसरे अल्पसंख्यकों के बारे में क्या कहते हैं? इस बयान पर यहां भले ही सियासत हो रही है, मगर इसके बाद मोहन भागवत अपनी विदेश यात्रा के दूसरे पड़ाव पर कनाडा के टोरंटो पहुंचे। संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है और इस मौके पर मोहन भागवत कई देशों के दौरे पर हैं। टोरंटो के भव्य कार्यक्रम में संघ प्रमुख ने दुनिया को लेकर भारत के नजरिए और संस्कृति की पहचान को सामने रखा।
6: Whenever there was crisis anywhere in the world and help from Bharat was sought, Bharat never said no. And without even calling for help, it helps. This is the tradition. This is the DNA of Bharat. Therefore, you heard the song. Hindu jage to Vishwa jagega. You heard the first stanza. Hindu sada se Vishwa bandhu hai. Hindu is always like that.

0: भागवत ने साफ किया कि भारत का उदय दुनिया पर सैन्य या आर्थिक ताकत का ध्वंस जमाने के लिए नहीं है। भारत एक महाशक्ति के रूप में दूसरों पर प्रभुत्व नहीं जताना चाहता, बल्कि निस्वार्थ सेवा, ज्ञान और मानवीय मूल्यों के आधार पर विश्वगुरु बनना चाहता है।
1: विश्व का हर देश जब भी दिग्भ्रमित हो लड़खड़ाया, सत्य की पहचान करने इस धरा के पास आया।
0: इस आयोजन की कूटनीतिक अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि कनाडा के कुछ विपक्षी सांसदों और चुनिंदा संगठनों ने मोहन भागवत के वीजा और कार्यक्रम को रोकने का भारी राजनीतिक दबाव बनाया था, लेकिन कनाडा के 100 से अधिक बड़े हिंदू और सामाजिक संगठनों के पुरजोर समर्थन के बाद ये ऐतिहासिक आयोजन बिना किसी बाधा के पूरा हुआ। आज तक ब्यूरो।
2: शुद्धिकरण विवाद पर उत्तराखंड की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। राहुल गांधी पर एफआईआर के बाद इस विवाद ने पूरा तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस ने बाकायदा पुलिस से मिलकर एफआईआर का विरोध किया तो बीजेपी ने भी राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया।
3: ये एससी एसटी एक्ट के खिलाफ ये काम है। लेट मी रिपीट हियर, इट इज अ क्राइम टू डू शुद्धिकरण। नो एक्शन हैज बीन टेकन। हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी जिन लोगों ने शुद्धिकरण किया है उत्तराखंड में, उन पर एफआईआर लागू हो। ये जो इंसिडेंट है, ये हमें दिखाता है बीजेपी और आरएसएस का माइंडसेट। वो नहीं चाहते कि इस देश के दलित प्रगति करें, वो नहीं चाहते कि इस देश के दलित रिस्पेक्ट के साथ जिए और सक्सेसफुल।
0: यही वो बयान है जिसके आधार पर उत्तराखंड की पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 8 अगस्त को मल्लिकार्जुन खड़गे की हल्द्वानी रैली के बाद 11 अगस्त को वहां के रामलीला ग्राउंड पर पूजा और हवन किया गया। 29 अगस्त को जब राहुल गांधी ने इस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो दलित समाज से आने वाले अमित कुमार की शिकायत पर हल्द्वानी में राहुल गांधी के खिलाफ एससी एसटी उत्पीड़न एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन अब ये एफआईआर उत्तराखंड समेत पूरे देश में दलितों के नाम पर नए सियासी संग्राम को जन्म दे रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं की कथित शुद्धिकरण पर एफआईआर दर्ज करने को लेकर पुलिस से बहस हुई।
4: एससी एसटी का मामला है, ये सीओ स्तर का अधिकारी इसमें जांच करता, लेकिन जांच करने के बाद जो है क्या सही है तो उसके बाद है, लेकिन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट देने के लिए आप तैयार नहीं।
0: इधर दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा के मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई।
5: हमारे समाज में कुछ लोग दलित हैं, लेकिन समाज में बंटवारा कौन कर रहा है? ये भाजपा और आरएसएस की विचारधारा है जो बंटवारा कर रही है, और यही इनका मकसद था जो इन्होंने अपने कुछ लोगों को भेजकर वहां पर सो कॉल्ड शुद्धिकरण करके, मतलब क्या था इनका? अगर राजनीतिक मतलब नहीं था तो क्या था, ये बता दें।
0: खड़गे के बहाने दलितों के अपमान को मुद्दा बना रही कांग्रेस पर पलटवार बीजेपी ने भी किया।
6: जहां पर रामलीला का मंचन होता है, बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, ऐसे आयोजनों पर जो गंदगी हुई थी, जो धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए थे और एक धर्म विशेष के लोगों ने लगाए थे, उसके विरोध में लोगों ने जो धार्मिक संगठन थे उन्होंने उस वहाँ पर शुद्धिकरण का जो कार्यक्रम किया था वो कार्यक्रम था, और इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है।
3: कांग्रेस प्रेसिडेंट
0: राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर में भी खड़गे की रैली के बाद रामलीला मैदान में न सिर्फ शराब की बोतलें बल्कि धार्मिक नारेबाजी की शिकायत दर्ज है। अब कांग्रेस उत्तराखंड पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगा रही है।
7: हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आरएसएस और बीजेपी पार्टी थी, उन लोगों ने कुकृत्य किया था, लेकिन पुलिस ने उसमें आग में घी डालने का काम किया है। पुलिस कौन होती है? अगर कॉग्निजेंस लेना था आपने तो आप 10 तारीख के प्रकरण का कॉग्निजेंस लेते और मुकदमा कायम करते, लेकिन आपने मुकदमा कायम कर दिया राहुल गांधी के खिलाफ।
0: हल्द्वानी का मामला ऐसे समय में गंभीर राजनीतिक मोड़ ले रहा है जब राहुल चाय की दुकानों पर भी दलितों से भेदभाव जैसे आरोप लगा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
3: देश के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए।
2: अब बात यूपी में हुए मर्डर को लेकर चल रही राजनीति के बारे में करेंगे। अंकित बालियान की हत्या के हफ्ते भर के अंदर दो आरोपी ढेर कर दिए गए, लेकिन अंकित बालियान मर्डर केस को लेकर अपराध से ज्यादा सियासत की चर्चाएं हुई हैं। दरअसल इस हत्याकांड की बुनियाद में ही जात गोत्र की बड़ी वजह थी। हत्या के बाद अखिलेश यादव ने उसी जाति गोत्र की बात की तो राजनीति गर्मा गई।
8: 26 अगस्त को शामली में हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बालियान की हत्या होती है। चार दिन तक जब कोई एक्शन नहीं होता तो बालियान की पत्नी सीएम योगी से हत्यारों को मिट्टी में मिला देने की अपील करती हैं और एक दिन बाद हत्या के दो आरोपियों का हिसाब किताब पूरा हो जाता है। केरला में पुलिस और एसटीएफ के आरोपियों से मुठभेड़ होती है। हत्या के दो आरोपियों को पुलिस की टीम घेर लेती है। एनकाउंटर में दोनों आरोपियों को मार गिराया जाता है।
9: दो शूटर्स मारे गए हैं, सुमित और मोहित, और इनके पास से भारी मात्रा में आग्नेयास्त्र बरामद हुए हैं। इन्होंने पुलिस पर भारी फायरिंग भी की है जिससे दो कांस्टेबल्स भी हमारे घायल हुए हैं। अभी इस घटना में और भी लोग शामिल हैं जिनके बारे में तफ्तीश जारी है, और खास करके जो शूटर्स हैं और जो इस गैंग के लीडर्स हैं जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को प्लान किया है या अंजाम दिलाया है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।
8: लेकिन इस एनकाउंटर पर सियासत सुलग उठी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस पीडीए के लोगों का एनकाउंटर कर रही है। उन्होंने एसटीएफ की भी नई परिभाषा दी।
10: मुख्यमंत्री जी की एसटीएफ स्वजाति टॉर्चर फोर्स, स्वजाति टॉर्चर फोर्स, और लगातार पीडीए का उत्पीड़न हो रहा है।
8: अकेले अखिलेश यादव ही नहीं, समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव भी इस एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं।
11: कोई लॉ एंड ऑर्डर है उत्तर प्रदेश में? सिवाय हत्याएं या गोली मार के एनकाउंटर कराना फर्जी, इसके अलावा कुछ भी नहीं।
8: हालांकि राम गोपाल यादव के बयान को अंकित बालियान के पिता ने ही खारिज कर दिया।
12: कहा है उन्होंने कि ये फर्जी, इसके पीछे आप क्या समझते हैं
13: भाई? वो तो राजनीतिक पार्टी है, वे तो पता नहीं क्या कहेगी क्या नहीं, लेकिन जब मैं खुद देख आया उनको दोनों को जिन्होंने पीछे से गोली मारी थी, तो मैं फर्जी कैसे कहूंगा।
8: अब यूपी की सरकार कह रही है कि आरोपियों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
14: बहुत ही दुखद घटना थी और प्रदेश पुलिस ने उन्हें पुलिस मुठभेड़ में मारा है। अंकित बलियान जी की जो निर्मम हत्या हुई थी, प्रदेश दुखी था। उन हत्यारों ने पुलिस पर भी गोलियां चलाई जिसकी किए की सजा उन्हें मिल चुकी है।
8: दो आरोपी पुलिस के एनकाउंटर में मारे गए और बाकी के आरोपियों को पुलिस तलाश रही है। इन सब के बीच अंकित की बहन मांग कर रही है कि बाकी आरोपियों का भी एनकाउंटर होना चाहिए।
15: हमें तब तक संतुष्टि नहीं मिलेगी तब तक मेरे भाई के हत्यारे संपूर्ण खत्म नहीं हो जाते, आपकी जड़ तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे, नहीं हम शांति से बैठेंगे।
8: एक तरफ परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है और दूसरी तरफ एनकाउंटर पर जबरदस्त सियासत हो रही है। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
2: एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में निर्भया जैसी दरिंदगी की गई है। इस बार ग्रेटर नोएडा में बस में चढ़ी एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप किया गया है। हैरानी की बात यह है कि ग्रेटर नोएडा के परीचौक से कश्मीरी गेट तक बस चली और इस दौरान लड़की के साथ दरिंदगी हुई, लेकिन दोनों ही राज्यों की पुलिस को कानो कान खबर नहीं लगी।

0: दो राज्यों की पुलिस सचेत रहती तो एक और निर्भया कांड नहीं होता। ग्रेटर नोएडा के सबसे व्यस्त चौराहे परी चौक से बस में सवार एक बच्ची दरिंदों का शिकार हो गई। करीब 47 किलोमीटर तक बस दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर दौड़ती रही और ड्राइवर और कंडक्टर नाबालिग से वहशत को अंजाम देते रहे। वारदात 4 अगस्त की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक छात्रा अपने परिवार वालों से नाराज होकर घर से निकली थी और चचेरे भाई के घर जा रही थी जो नोएडा में रहता है। भारी बारिश और अंधेरे की वजह से छात्रा गलती से परी चौक पर उतर गई। इसी दौरान एक खाली स्लीपर बस वहां से गुजरी। छात्रा को नोएडा सेक्टर 62 छोड़ने का भरोसा दिया और फिर ड्राइवर और कंडक्टर ने छात्रा से गैंगरेप किया। वारदात के बाद आरोपी छात्रा को कश्मीरी गेट बस अड्डे के पास रिंग रोड पर उतारकर वहां से फरार हो गए। फिर छात्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपियों की धरपकड़ की कोशिश शुरू हुई।
1: दिल्ली में एक बार फिर से एक ऐसा मामला सामने आया है जो फिर से पूरी दिल्ली एनसीआर को शमसार कर देगा। दरअसल ये मामला चलती बस में एक गैंग रेप का है। 16 वर्षीय मैनपुरी की रहने वाली 11वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की घर से लड़कर घर से बाहर निकलती है, बस पकड़ के अपने भाई के घर मैनपुरी से नोएडा आना चाहती है, लेकिन उस रात बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से उसे पता नहीं लगा और परी चौक के पास वो बस से उतर जाती है, जिसके बाद वो हाथ देकर एक स्लीपर बस को रोकती है। बस रुकती है और उसे कहती है कि वो सेक्टर 63 तक उसे छोड़ देंगे। बस पे चढ़ने के कुछ देर बाद ही जो बस का कंडक्टर है उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, उसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट करने लगता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने कुछ किया तो उसे जान से मार देंगे। इसके बाद करीब 47 किलोमीटर तक जो वो बस है दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर चलती है। नोएडा में इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद लड़की को कश्मीरी गेट के पास लाकर उतार दिया जाता है और फिर वो लड़की पीड़िता खुद पुलिस के पास पहुंचती है। और यहां आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन है। इसी पुलिस स्टेशन में आकर वो कंप्लेन देती है।
0: दिल्ली पुलिस ने गैंगरेप की वारदात के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। स्लीपर बस को जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है।
2: नए आपराधिक कानूनों के अनुसार बिना ज्यूरिसडिक्शनल इश्यूज में गए हुए थाना कश्मीरी गेट ने तुरंत विक्टिम का मेडिकल कराया और केस दर्ज किया। साथ ही सीसीटीवी कैमरेज की सहायता से कुछ ही घंटे में बस को भी ट्रेस किया और दोनों अपराधियों को भी अरेस्ट किया।
0: सवाल ज्यूरिसडिक्शन का नहीं है, सवाल यह है कि ग्रेटर नोएडा से दिल्ली तक बस चलती रही और गैंगरेप होता रहा और दोनों राज्यों की पुलिस को कानो कान खबर नहीं हुई। सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस की उन साझा बैठकों से क्या हासिल हुआ जो मिलजुल कर अपराध रोकने के लिए होती हैं। दिल्ली से अरविंद ओझा और अंशुल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
3: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, और वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।
1: 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, पहले प्रधानमंत्री हमारे नेहरू जी बने। उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे पहले प्रधानमंत्री बनते तो भारत की क्या दिशा और दशा होती?
2: ये तुमने सवाल क्वेश्चन किया, ये संसद में होता तो बड़ा मजा आता। तरीके एक पार्टी बोलती कि कश्मीर हमारा होता, अफगानिस्तान तक हम कब्जा कर लेते, पब्लिक बाहर सुन के ताली वाली ही बजाती।

0: बिश्केक में गर्मजोशी के साथ पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई। बातचीत में यूक्रेन का मुद्दा भी उठा। प्रधानमंत्री ने कहा युद्ध मानवता के लिए खतरा, भारत शांति का पक्षधर। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार, चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी 7.8% रही। प्रधानमंत्री मोदी बोले, निराशावादी लोगों की हुई हार। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी विरोध प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट में पहुंची दिल्ली पुलिस, 13 एफआईआर रद्द करने की इजाजत मांगी। आपराधिक पृष्ठभूमि के 2873 लोगों पर दर्ज हो केस। नेपाल में त्रासदी के बाद मरने वालों का नहीं थम रहा है आंकड़ा, 939 लोगों की गई जान, 3900 से ज्यादा लापता। रेस्क्यू के काम में भारतीय एक्सपर्ट्स भी शामिल। और मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से लिया संन्यास, अर्जेंटीना के कप्तान ने कहा अलविदा। सोशल मीडिया पर फैंस को लिखा भावुक पत्र। बिश्केक में एससीओ समिट के बीच प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की ये तीसरी आमने सामने मुलाकात है। ऐसे में इस मुलाकात में दोनों के बीच क्या बात हुई, दुनिया ये जानना और समझना चाहती है। देखिए बिश्केक में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की महामुलाकात के मायने क्या है।
1: पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन मिले दोस्ती के सिलसिले। मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई, क्या क्या बात हुई। बिश्केक से मैसेज क्लियर, भारत और रूस की दोस्ती जिंदाबाद। एससीओ में मोदी पुतिन जिनपिंग की केमिस्ट्री, अमेरिका में खलबली। भारत चीन रूस का त्रिकोण, ट्रंप का तोड़। एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन में वैसे तो 10 देश हैं, भारत चीन रूस पाकिस्तान कजाकिस्तान किर्गिस्तान ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान और ईरान। इसके अलावा पर्यवेक्षक के तौर पर कई और देश भी शामिल हैं। लेकिन सिर्फ 3 देश यानी भारत रूस और चीन इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया की टॉप हेडलाइंस बने हुए हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर क्यों दुनिया भारत रूस और चीन की चर्चा कर रही है और क्यों इन तीनों देशों के नेताओं की केमिस्ट्री से डोनाल्ड ट्रंप भी टेंशन में हैं। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं किर्गिस्तान में हुई पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की द्विपक्षीय बैठक और मुलाकात। जब बिश्केक में पीएम मोदी और पुतिन मिलते हैं तो दोनों नेता एक दूसरे के गले मिलते हैं। ये वो मुलाकात है जो सिर्फ भारत और रूस के पुराने संबंधों को और पुख्ता करती है बल्कि भारत रूस संबंधों की नई दिशा तय करने वाली है। इसीलिए पुतिन सीधे भारत और रूस के संबंधों पर बोलते हैं।
2: I'd like to note with satisfaction the following thing, namely that the Russian-Indian relations continue to get strengthened on the basis of the principles of the special and privileged partnership. Distinguished Prime Minister, of course, this is aided by your special attention to the Russian-Indian relations and the business and kind relations, friendly relations that have been established between us, and I'm very grateful to you for that.
1: लेकिन पीएम मोदी रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर राष्ट्रपति पुतिन से कहते हैं कि वो यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के पक्ष में हैं, क्योंकि युद्ध का हर दिन मानवता को पीछे धकेल रहा है।
3: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। पिछली बार भी जब हम मिले थे तब आपने विस्तार से सभी विषयों के बारे में मुझे अवगत किया था। जैसा कि आप जानते हैं, भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देती है, उमंग से भर देती है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: आपको बता दें कि पीएम मोदी ने यह भी बताया कि किस तरह से भारत और रूस का सहयोग नई ऊंचाइयां छू रहा है।
3: पिछले वर्ष आपकी भारत यात्रा बहुत ही सफल रही और बहुत ही यादगार रही। हमने कई घंटे साथ बिताए और विशेष रूप से बिजनेस फोरम और एक प्रकार से बिजनेस वर्ल्ड का रशिया का हूज हू कहे उन सब को लेकर के आप आए और आर्थिक संबंधों को एक नई ऊंचाई और ज्यादा विस्तार देने का काम भी हमारी चर्चा में हुआ और मुझे खुशी है कि जो आउटकम निकले हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारी दोनों टीमें पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही हैं और बड़ी गति के साथ काम कर रही हैं। ये हमारे लिए गहरे संतोष का विषय है कि हमारा सहयोग निरंतर नई ऊंचाइयों को और बढ़ रहा है और दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब दुनिया का जियोपॉलिटिकल नक्शा पूरी तरह बदल रहा है। अमेरिका ईरान युद्ध को 6 महीने हो चुके हैं, रूस यूक्रेन युद्ध को 4.5 साल हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक तरफा विदेश नीति ने वैश्विक नियम आधारित व्यवस्था को चुनौती दी है और SCO अपनी 26वीं वर्षगांठ मना रहा है। ऐसे में भारत, रूस और चीन जैसी ताकतें एक मंच पर इकट्ठा हो रही हैं। इसे पश्चिमी प्रभाव के जवाब में एक काउंटर बैलेंस के तौर पर देखा जा रहा है। बिश्केक के बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन 12 से 13 सितंबर को नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी मिलेंगे। पीएम मोदी ने इसका न्योता दे दिया है।
3: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका और आपके डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक है। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
1: SCO का 26वां शिखर सम्मेलन किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हो रहा है जो 1 सितंबर तक चलेगा। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कई नेता शामिल हो रहे हैं, लेकिन मोदी, पुतिन और जिनपिंग की टिकड़ी ने यकीनन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ा दी है। इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट से ट्रंप की नींद और भी उड़ना लाजमी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि फ्रांस, न्यूजीलैंड, सेशेल्स, मलेशिया, स्लोवाकिया और इटली पिछले 1 साल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत तेजी से दुनिया भर की यात्राएं की हैं। उन्होंने नए पार्टनर बनाए हैं या मौजूद पार्टनरों के साथ रिश्ते मजबूत किए हैं। उन्हें एक कड़वी सच्चाई ने तेजी से कदम उठाने पर मजबूर किया है। अखबार ने आगे ट्रंप की आलोचना करते हुए लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप की वजह से दुनिया में मची उथल पुथल का सामना करने और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का भारत के पास एकमात्र तरीका है कि वो अलग अलग जगह पर अपने रिश्ते बढ़ाए। रिपोर्ट में पीएम मोदी की उज्बेकिस्तान की यात्रा का जिक्र भी शामिल है। अखबार ने SCO समिट के बारे में लिखा है और राष्ट्रपति पुतिन के साथ मोदी की मुलाकात की चर्चा भी की है और ये भी लिखा है कि कैसे पीएम मोदी ट्रंप के मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, एक एक करके डील कर रहे हैं और इसे एक रणनीति करार दिया है। SCO की सबसे दिलचस्प तस्वीर शायद यही है। एक तरफ मोदी और शी जिनपिंग एक ही बहुपक्षीय मंच पर हैं, दूसरी तरफ भारत और चीन के बीच सीमा विवाद और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसे में SCO भारत को चीन के साथ बातचीत का एक अतिरिक्त मंच देता है। दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधरे या बिगड़े, बहुपक्षीय मंचों पर संवाद की गुंजाइश बनी रहती है। भारत लंबे समय से मिडल ईस्ट के देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। मध्य एशिया तेल, गैस, यूरेनियम और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों का बड़ा भंडार है। भारत मध्य एशिया के देशों के साथ व्यापार भी बढ़ाना चाहता है। इसके लिए वो नए व्यापार और परिवहन मार्ग विकसित करने पर काम कर रहा है। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को देखते हुए SCO की टेबल और भी दिलचस्प हो जाती है। भारत लंबे समय से आतंकवाद के मुद्दे को एससीओ जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा है। पीएम मोदी ने भी इस यात्रा के संदर्भ में आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद को क्षेत्रीय शांति के लिए चुनौती बताया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी एससीओ का पूर्ण सदस्य है, इसीलिए यहां भारत को पाकिस्तान के साथ किसी द्विपक्षीय मंच की तरह बातचीत करने के बजाय एक बड़े बहुपक्षीय ढांचे में अपनी सुरक्षा चिंताओं को रखने का मौका मिलता है। आज तक ब्यूरो।
0: यूपी में सभी दलों ने 27 के चुनाव के लिए कमर कसी हुई है और लखनऊ में सोमवार का दिन बैठकों का दिन रहा। यूपी की तीन बड़ी पार्टियों ने लखनऊ में तीन बड़ी बड़ी बैठकें की हैं। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तीनों ने चुनावी तैयारियों पर मंथन किया।
4: उत्तर प्रदेश में चुनावी दस्तक होने ही वाली है, उससे पहले हर दल पूरी तैयारी में जुटा है। बीजेपी की नई टीम ने सभी जिला अध्यक्षों, मोर्चा अध्यक्षों से लेकर सीएम, डिप्टी सीएम के साथ तैयारी की बैठकें की हैं, तो समाजवादी पार्टी ने भी प्रदेश भर से जिला अध्यक्षों, महानगर अध्यक्षों को टेक टीम के साथ बुलाया था और बीएसपी ने भी अपने सभी जिला प्रमुखों के साथ बैठक की। बीजेपी ने अपनी बैठक में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर सेवा संकल्प अभियान चलाने का प्लान बनाया है।
5: हर जिले से 5-8 पदाधिकारी, विधायक, सांसदों को आज बुलाया गया है। एक खाका तैयार किया जाएगा यूपी चुनाव के मद्देनजर कि किस तरीके से आखिर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को जवाब देने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी भी आज ही लखनऊ में बड़ी बैठकें कर रही है। देखना यह है कि इन बैठकों के दौर में कौन बाजी मारेगा, लेकिन एक बात तो साफ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे चुनाव में चेहरे के तौर पर नजर आ रहे हैं और स्मृति ईरानी का ध्यान भी अब उत्तर प्रदेश में केंद्रित हो चुका है।
4: बैठक के बाद सीएम योगी बहराइच के कार्यक्रम में पहुंचे और यहां उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा।
6: किसी बेटी को, किसी व्यापारी को, किसी माफिया और किसी अपराधी से भयभीत होने की आवश्यकता भी अब यूपी में नहीं पड़ती है। यही है डबल इंजन सरकार की कार्य।
4: इधर समाजवादी पार्टी की बैठक में अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार अभियान का शंखनाद कर दिया।
7: कल से हमारी पार्टी का प्रचार एक तरह से शुरू।
4: अखिलेश यादव के लिए घोटाले, भ्रष्टाचार, पीडीए अत्याचार, बंद स्कूल, फर्जी मुठभेड़, किसान संकट, अपराध और एसएआर ये मुद्दे हैं।
7: एसआईआर के बाद भारतीय जनता पार्टी की चुनाव आयोग के माध्यम से साजिश होगी और एक षड्यंत्र होगा कि दोबारा एसएआर कराया जाए।
4: तो फिर सवाल है कि एसएआर क्या है? एसएआर बोले तो स्पेशल एनुअल रिविजन, ये चुनाव आयोग अनिवार्य रूप से हर साल करता है। इसे स्पेशल समरी रिवीजन कहा जाता है, जो सालाना आमतौर पर अक्टूबर नवंबर में शुरू होता है। इसमें 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 साल की उम्र के हो चुके नौजवानों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाता है। अखिलेश इस संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
7: चुनाव से पहले एक एनुअल रिवीजन करेंगे ये लोग एसएआर, जिससे कि ये अपने लोगों के वोटों को एडजस्ट करेंगे। सुनने में आ रहा है कि बड़े पैमाने पर बिहार से लोग, झारखंड से लोग, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उनके ये लोग वोट बनाएंगे और अपने बूथों पर वोट बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए हमारे संगठन, हमारे जो बूथ स्तर पर ऐप के माध्यम से काम कर रहे हैं, उन सब का हमने सहयोग मांगा है।
4: अखिलेश एसआईआर के बाद एसएआर को नियम के विपरीत बताते हैं और इसे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने की मंशा से किए जाने वाला अभ्यास बता रहे हैं। इस तथ्य का जिक्र जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में सामने आया तो अदालत ने फिलहाल चल रहे सिर्फ 19 ट्रिब्यूनल्स की संख्या बढ़ाने और वाजिब नामों को लिस्ट में जोड़ते जाने को कहा था। आज तक ब्यूरो।
0: संभल में बाबा का बुलडोजर गर्जा। संभल में ग्राम समाज की जमीन पर अवैध तौर पर मजार बना ली गई थी, जिस पर आज प्रशासन ने एक्शन लिया है और बुलडोजर से मजार को दहा दिया गया।
4: फिर गर्जा है बाबा का बुलडोजर, फिर ढाया गया है अवैध अतिक्रमण, फिर से हुई है बुलडोजर वाली कार्रवाई। जी हाँ, ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के संभल में नीम खेड़ा बछेड़ा की हैं। आरोप है कि यहाँ ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जा करके ये मजार बना दी गई थी, मगर आज इस अवैध मजार को तोड़ दिया गया।
8: संभल में लगातार सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त करने के लिए प्रशासन का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, जहां संभल के रायसत्ती थाना क्षेत्र के नीमखेड़ा बझेड़ा गांव में सरकारी भूमि पर बनी हुई फिलहाल यहां पर जो मजार थी उसको फिलहाल यहां पर ध्वस्त करने की जो पूरी कार्यवाही है वो यहां पर बुलडोजर एक्शन के जरिए की जा रही है। और फिलहाल यहां आप जो तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो बुलडोजर एक्शन के जरिए पूरी मजार को यहां पर ध्वस्त किया गया है और कुछ ही मिनट के अंदर इस पूरी मजार को जमींदोज कर दिया गया है। लगातार बुलडोजर इस पूरी मजार पर गरज रहा है। आपसे कुछ ही देर पहले तक यहाँ मजार बनी हुई थी और अवैध कब्जा करके मजार बनाई गई थी। और देखिए अब यहाँ पर ये पूरा जो बुलडोजर एक्शन के जरिए जो यहाँ पर मजार है उसको यहाँ पर हटाने की कार्रवाई यहाँ की गई है। फिलहाल आप यहाँ जो देखेंगे तो देखिए पुलिस फोर्स की यहाँ पर जो तैनाती बनी हुई है और लगातार फिलहाल यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को यहाँ तैनात किया गया था।
4: दरअसल संभल जिला प्रशासन अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रहा है। इसी क्रम में लेखपाल ने अपनी एक रिपोर्ट में इस मजार के विषय में बताया था, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई।
9: लगातार ग्राम सभा की संपत्तियों से अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है। इसी क्रम में ग्राम नीम खेड़ा बझेड़ा के लेखपाल के द्वारा एक आख्या दी गई तहसीलदार महोदय के न्यायालय में, जिसमें यह बताया गया कि एक अवैध मजार जो है पशुचर की भूमि पे बनाई गई थी। हमारी पशुचर की जमीन लगभग 1.5 हेक्टेयर की थी, उसमें 50 से 70 वर्ग मीटर के भूमि पर लगभग इतनी भूमि पर एक अवैध मजार का निर्माण किया गया था, जिसमें 9/6/2026 को तहसीलदार महोदय के न्यायालय से एक बेदखली का आदेश पारित किया गया। उसी के अनुपालन के लिए आज पुलिस विभाग के साथ समन्वय करके हमारी राजस्व टीम ने इस मजार को बेदखल करके और संपत्ति को ग्राम सभा को सौंप दी है।
4: इस कार्रवाई से एक बात तो साफ है कि यूपी में अगर अवैध मकान दुकान मजार बनाएंगे तो प्रशासन के लोग उसे हर हाल में ढहाएंगे। अभिनव माथुर, संभल आज तक।
0: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कनाडा में हैं, मगर उनके यूएस में दिए गए बयान पर सियासत तेज हो चुकी है। ओवैसी ने भागवत के बयान पर सवाल उठाए हैं। उधर कनाडा में ऐतिहासिक मंच से संघ प्रमुख ने दुनिया को लेकर भारत की सोच को पूरी तरह से साफ कर दिया है।
10: इफ एनी हिंदू थिंक्स दैट देयर शुड बी नो मुस्लिम इन भारत, ही विल नॉट बी हिंदू। If you want to call yourself Hindu, you must believe that all paths are leading to the same. And every human has a dignity. There is no difference between human beings.
4: मोहन भागवत के इसी बयान पर हिंदुस्तान में हंगामा बरपा है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि आरएसएस की कथनी और करनी में अंतर है। असदुद्दीन ओवैसी ने आज सोशल मीडिया पर लिखा कि आरएसएस की सबसे पुरानी चाल है, कुछ बातें बाहरी दुनिया के लिए होती हैं, जबकि कुछ उसके अपने सदस्यों के लिए। आरएसएस ने कभी भी अपने मुख्य विचारकों और लेखकों की सोच से खुद को अलग नहीं किया है। वे मुसलमानों और दूसरे अल्पसंख्यकों के बारे में क्या कहते हैं? इस बयान पर यहाँ भले ही सियासत हो रही है, मगर इसके बाद मोहन भागवत अपनी विदेश यात्रा के दूसरे पड़ाव पर कनाडा के टोरंटो पहुंचे। संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है और इस मौके पर मोहन भागवत कई देशों के दौरे पर हैं। टोरंटो के भव्य कार्यक्रम में संघ प्रमुख ने दुनिया को लेकर भारत के नजरिए और संस्कृति की पहचान को सामने रखा।
10: Whenever there was crisis anywhere in the world and help from Bharat was sought, Bharat never said no. And without even calling for help, it helps. This is the tradition. This is the DNA of Bharat. Therefore, you heard the song. Hindu jage to Vishwa jagega. You heard the first stanza. Hindu sada se Vishwa bandhu hai. Hindu is always like that.
4: भागवत ने साफ किया कि भारत का उदय दुनिया पर सैन्य या आर्थिक ताकत का ध्वंस जमाने के लिए नहीं है। भारत एक महाशक्ति के रूप में दूसरों पर प्रभुत्व नहीं जताना चाहता, बल्कि निस्वार्थ सेवा, ज्ञान और मानवीय मूल्यों के आधार पर विश्वगुरु बनना चाहता है।
10: विश्व का हर देश जब भी दिग्भ्रमित हो लड़खड़ाया, सत्य की पहचान करने इस धरा के पास आया।
4: इस आयोजन की कूटनीतिक अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि कनाडा के कुछ विपक्षी सांसदों और चुनिंदा संगठनों ने मोहन भागवत के वीजा और कार्यक्रम को रोकने का भारी राजनीतिक दबाव बनाया था, लेकिन कनाडा के 100 से अधिक बड़े हिंदू और सामाजिक संगठनों के पुरजोर समर्थन के बाद ये ऐतिहासिक आयोजन बिना किसी बाधा के पूरा हुआ। आज तक ब्यूरो।
0: शुद्धिकरण विवाद पर उत्तराखंड की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। राहुल गांधी पर एफआईआर के बाद इस विवाद ने पूरा तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस ने बाकायदा पुलिस से मिलकर एफआईआर का विरोध किया तो बीजेपी ने भी राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया।
11: ये एससी एसटी एक्ट के खिलाफ ये काम है। लेट मी रिपीट हियर, इट इज ए क्राइम टू डू शुद्धिकरण। नो एक्शन हैज बीन टेकन। हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी जिन लोगों ने शुद्धिकरण किया है उत्तराखंड में उन पर एफआईआर लागू हो। ये जो इंसिडेंट है ये हमें दिखाता है बीजेपी और आरएसएस का माइंडसेट। वो नहीं चाहते कि इस देश के दलित प्रगति करें, वो नहीं चाहते कि इस देश के दलित रिस्पेक्ट के साथ जिए और सक्सेसफुल।
4: यही वो बयान है जिसके आधार पर उत्तराखंड की पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 8 अगस्त को मल्लिकार्जुन खड़गे की हल्द्वानी रैली के बाद 11 अगस्त को वहां के रामलीला ग्राउंड पर पूजा और हवन किया गया। 29 अगस्त को जब राहुल गांधी ने इस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो दलित समाज से आने वाले अमित कुमार की शिकायत पर हल्द्वानी में राहुल गांधी के खिलाफ एससी एसटी उत्पीड़न एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन अब ये एफआईआर उत्तराखंड समेत पूरे देश में दलितों के नाम पर नए सियासी संग्राम को जन्म दे रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं की कथित शुद्धिकरण पर एफआईआर दर्ज करने को लेकर पुलिस से बहस हुई।
12: एससी एसटी का मामला है, ये सीओ स्तर का अधिकारी इसमें जांच करता, लेकिन जांच करने के बाद जो है क्या सही है तो उसके बाद है, लेकिन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट देने के लिए आप तैयार नहीं।
4: इधर दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा के मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई।
13: हमारे समाज में कुछ लोग दलित हैं, लेकिन समाज में बंटवारा कौन कर रहा है? ये भाजपा और आरएसएस की विचारधारा है जो बंटवारा कर रही है, और यही इनका मकसद था जो इन्होंने अपने कुछ लोगों को भेजकर वहां पर सो कॉल्ड शुद्धिकरण करके। मतलब क्या था इनका? अगर राजनीतिक मतलब नहीं था तो क्या था ये बता दें।
4: खड़गे के बहाने दलितों के अपमान को मुद्दा बना रही कांग्रेस पर पलटवार बीजेपी ने भी किया।
14: यहाँ पर रामलीला का मंचन होता है, बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, ऐसे आयोजनों पर जो गंदगी हुई थी, जो धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए थे और एक धर्म विशेष के लोगों ने लगाए थे, उसके विरोध में लोगों ने जो धार्मिक संगठन थे उन्होंने उस वहाँ पर शुद्धिकरण का जो कार्यक्रम किया था वो कार्यक्रम था, और इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी मुद्दाविहीन हो गई है।
4: कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर में भी खड़गे की रैली के बाद रामलीला मैदान में न सिर्फ शराब की बोतलें बल्कि धार्मिक नारेबाजी की शिकायत दर्ज है। अब कांग्रेस उत्तराखंड पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगा रही है।
15: हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आरएसएस और बीजेपी पार्टी थी, उन लोगों ने कुकृत्य किया था, लेकिन पुलिस ने उसमें आग में घी डालने का काम किया है। पुलिस कौन होती है? अगर कॉग्निजेंस लेना था आपने तो आप 10 तारीख के प्रकरण का कॉग्निजेंस लेते और मुकदमा कायम करते, लेकिन आपने मुकदमा कायम कर दिया राहुल गांधी के खिलाफ।
4: हल्द्वानी का मामला ऐसे समय में गंभीर राजनीतिक मोड़ ले रहा है जब राहुल चाय की दुकानों पर भी दलितों से भेदभाव जैसे आरोप लगा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
11: देश के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए।
0: अब बात यूपी में हुए मर्डर को लेकर चल रही राजनीति के बारे में करेंगे। अंकित बालियान की हत्या के हफ्ते भर के अंदर दो आरोपी ढेर कर दिए गए, लेकिन अंकित बालियान मर्डर केस को लेकर अपराध से ज्यादा सियासत की चर्चाएं हुई हैं। दरअसल इस हत्याकांड की बुनियाद में ही जात गोत्र की बड़ी वजह थी। हत्या के बाद अखिलेश यादव ने उसी जाति गोत्र की बात की तो राजनीति गर्मा गई।
1: छब्बीस अगस्त को शामली में हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बालियान की हत्या होती है। चार दिन तक जब कोई एक्शन नहीं होता तो बालियान की पत्नी सीएम योगी से हथियारों को मिट्टी में मिला देने की अपील करती हैं, और एक दिन बाद हत्या के दो आरोपियों का हिसाब किताब पूरा हो जाता है। केरला में पुलिस और एसटीएफ के आरोपियों से मुठभेड़ होती है। हत्या के दो आरोपियों को पुलिस की टीम घेर लेती है। एनकाउंटर में दोनों आरोपियों को मार गिराया जाता है।
16: दो शूटर्स मारे गए हैं, सुमित और मोहित, और इनके पास से भारी मात्रा में आग्नेयास्त्र बरामद हुए हैं। इन्होंने पुलिस पर भारी फायरिंग भी की है जिससे दो कांस्टेबल्स भी हमारे घायल हुए हैं। अभी इस घटना में और भी लोग शामिल हैं जिनके बारे में तफ्तीश जारी है, और खास करके जो शूटर्स हैं और जो इस गैंग के लीडर्स हैं जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को प्लान किया है या अंजाम दिलाया है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।
1: लेकिन इस एनकाउंटर पर सियासत सुलग उठी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस पीडीए के लोगों का एनकाउंटर कर रही है। उन्होंने एसटीएफ की भी नई परिभाषा दी।
7: मुख्यमंत्री जी की एसटीएफ स्वजाति टॉर्चर फोर्स, स्वजाति टॉर्चर फोर्स, और लगातार पीडीए का उत्पीड़न हो रहा है।
1: अकेले अखिलेश यादव ही नहीं, समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव भी इस एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं।
17: कोई लॉ एंड ऑर्डर है उत्तर प्रदेश में सिवाय हत्याएं या गोली मार के एनकाउंटर कराना फर्जी? इसके अलावा कुछ भी नहीं।
1: हालांकि राम गोपाल यादव के बयान को अंकित बालियान के पिता ने ही खारिज कर दिया।
18: कहा है उन्होंने कि ये फर्जी, इसके पीछे आप क्या समझते हैं
19: भाई? वे तो राजनीतिक पार्टी है, वे तो पता नहीं क्या कहेगी क्या नहीं, लेकिन जब मैं खुद देख आया उनको दोनों को जिन्होंने पीछे से गोली मारी थी, तो मैं फर्जी कैसे कहूंगा।
1: अब यूपी की सरकार कह रही है कि आरोपियों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
20: बहुत ही दुखद घटना थी और प्रदेश पुलिस ने उन्हें पुलिस मुठभेड़ में मारा है। अंकित बलियान जी की जो निर्मम हत्या हुई थी, प्रदेश दुखी था। उन हत्यारों ने पुलिस पर भी गोलियां चलाई जिसकी किए की सजा उन्हें मिल चुकी है।
1: दो आरोपी पुलिस के एनकाउंटर में मारे गए और बाकी के आरोपियों को पुलिस तलाश रही है। इन सब के बीच अंकित की बहन मांग कर रही है कि बाकी आरोपियों का भी एनकाउंटर होना चाहिए।
21: हमें तब तक संतुष्टि नहीं मिलेगी तब तक मेरे भाई के हत्यारे संपूर्ण खत्म नहीं हो जाते, आप की जड़ तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। हम सामने से बैठेंगे।
1: एक तरफ परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है और दूसरी तरफ एनकाउंटर पर जबरदस्त सियासत हो रही है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में निर्भया जैसी दरिंदगी की गई है। इस बार ग्रेटर नोएडा में बस में चढ़ी एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप किया गया है। हैरानी की बात यह है कि ग्रेटर नोएडा के परी चौक से कश्मीरी गेट तक बस चली और इस दौरान लड़की के साथ दरिंदगी हुई, लेकिन दोनों ही राज्यों की पुलिस को कानो कान खबर नहीं लगी।

0: दो राज्यों की पुलिस सचेत रहती तो एक और निर्भया कांड नहीं होता। ग्रेटर नोएडा के सबसे व्यस्त चौराहे परी चौक से बस में सवार एक बच्ची दरिंदों का शिकार हो गई। करीब 47 किलोमीटर तक बस दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर दौड़ती रही और ड्राइवर और कंडक्टर नाबालिग से वहशत को अंजाम देते रहे। वारदात 4 अगस्त की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक छात्रा अपने परिवार वालों से नाराज होकर घर से निकली थी और चचेरे भाई के घर जा रही थी जो नोएडा में रहता है। भारी बारिश और अंधेरे की वजह से छात्रा गलती से परी चौक पर उतर गई। इसी दौरान एक खाली स्लीपर बस वहां से गुजरी। छात्रा को नोएडा सेक्टर 62 छोड़ने का भरोसा दिया और फिर ड्राइवर और कंडक्टर ने छात्रा से गैंगरेप किया। वारदात के बाद आरोपी छात्रा को कश्मीरी गेट बस अड्डे के पास रिंग रोड पर उतार कर वहां से फरार हो गए। फिर छात्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपियों की धरपकड़ की कोशिश शुरू हुई।
1: दिल्ली में एक बार फिर से एक ऐसा मामला सामने आया है जो फिर से पूरी दिल्ली एनसीआर को शमसार कर देगा। दरअसल ये मामला चलती बस में एक गैंग रेप का है। 16 वर्षीय मैनपुरी की रहने वाली 11वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की घर से लड़कर घर से बाहर निकलती है, बस पकड़ के अपने भाई के घर मैनपुरी से नोएडा आना चाहती है, लेकिन उस रात बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से उसे पता नहीं लगा और परी चौक के पास वो बस से उतर जाती है, जिसके बाद वो हाथ देकर एक स्लीपर बस को रोकती है। बस रुकती है और उसे कहती है कि वो सेक्टर 63 तक उसे छोड़ देंगे। बस पे चढ़ने के कुछ देर बाद ही जो बस का कंडक्टर है उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, उसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट करने लगता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने कुछ किया तो उसे जान से मार देंगे। इसके बाद करीब 47 किलोमीटर तक जो वो बस है दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर चलती है। नोएडा में इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद लड़की को कश्मीरी गेट के पास लाकर उतार दिया जाता है और फिर वो लड़की पीड़िता खुद पुलिस के पास पहुंचती है। और यहां आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन है। इसी पुलिस स्टेशन में आकर वो कंप्लेन देती है।
0: दिल्ली पुलिस ने गैंगरेप की वारदात के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। स्लीपर बस को जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है।
2: नए आपराधिक कानूनों के अनुसार बिना ज्यूरिसडिक्शनल इश्यूज में गए हुए थाना कश्मीरी गेट ने तुरंत विक्टिम का मेडिकल कराया और केस दर्ज किया। साथ ही सीसीटीवी कैमरेज की सहायता से कुछ ही घंटे में बस को भी ट्रेस किया और दोनों अपराधियों को भी अरेस्ट किया।
0: सवाल ज्यूरिसडिक्शन का नहीं है, सवाल यह है कि ग्रेटर नोएडा से दिल्ली तक बस चलती रही और गैंगरेप होता रहा और दोनों राज्यों की पुलिस को कानो कान खबर नहीं हुई। सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस की उन साझा बैठकों से क्या हासिल हुआ जो मिलजुल कर अपराध रोकने के लिए होती हैं। दिल्ली से अरविंद ओझा और अंशुल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
3: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: बिश्केक में गर्मजोशी के साथ पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई। बातचीत में यूक्रेन का मुद्दा भी उठा। प्रधानमंत्री ने कहा, युद्ध मानवता के लिए खतरा, भारत शांति का पक्षधर। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी 7.8% रही। प्रधानमंत्री मोदी बोले, निराशावादी लोगों की हुई हार। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी विरोध प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट में पहुंची दिल्ली पुलिस। 13 एफआईआर रद्द करने की इजाजत मांगी। आपराधिक पृष्ठभूमि के 2873 लोगों पर दर्ज हो केस। नेपाल में त्रासदी के बाद मरने वालों का नहीं थम रहा है आंकड़ा। 939 लोगों की गई जान, 3900 से ज्यादा लापता। रेस्क्यू के काम में भारतीय एक्सपर्ट्स भी शामिल। और मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से लिया संन्यास। अर्जेंटीना के कप्तान ने कहा अलविदा। सोशल मीडिया पर फैंस को लिखा भावुक पत्र। बिश्केक में एससीओ समिट के बीच प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की ये तीसरी आमने सामने मुलाकात है। ऐसे में इस मुलाकात में दोनों के बीच क्या बात हुई, दुनिया ये जानना और समझना चाहती है। देखिए बिश्केक में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की महामुलाकात के मायने क्या है।
1: पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन मिले दोस्ती के सिलसिले। मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई, क्या क्या बात हुई। बिश्केक से मैसेज क्लियर, भारत और रूस की दोस्ती जिंदाबाद। एससीओ में मोदी पुतिन जिनपिंग की केमिस्ट्री, अमेरिका में खलबली। भारत चीन रूस का त्रिकोण, ट्रंप का तोड़। एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन में वैसे तो 10 देश हैं, भारत चीन रूस पाकिस्तान कजाकिस्तान किर्गिस्तान ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान और ईरान। इसके अलावा पर्यवेक्षक के तौर पर कई और देश भी शामिल हैं। लेकिन सिर्फ 3 देश यानी भारत रूस और चीन इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया की टॉप हेडलाइंस बने हुए हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर क्यों दुनिया भारत रूस और चीन की चर्चा कर रही है और क्यों इन तीनों देशों के नेताओं की केमिस्ट्री से डोनाल्ड ट्रंप भी टेंशन में हैं। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं किर्गिस्तान में हुई पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की द्विपक्षीय बैठक और मुलाकात। जब बिश्केक में पीएम मोदी और पुतिन मिलते हैं तो दोनों नेता एक दूसरे के गले मिलते हैं। ये वो मुलाकात है जो सिर्फ भारत और रूस के पुराने संबंधों को और पुख्ता करती है बल्कि भारत रूस संबंधों की नई दिशा तय करने वाली है। इसीलिए पुतिन सीधे भारत और रूस के संबंधों पर बोलते हैं।
2: I'd like to note with satisfaction the following thing, namely that the Russian-Indian relations continue to get strengthened partnership. Distinguished Prime Minister, of course this is aided by your special attention to the Russian-Indian relations and the business and kind relations, friendly relations that have been established between us, and I'm very grateful to you for that.
1: लेकिन पीएम मोदी रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर राष्ट्रपति पुतिन से कहते हैं कि वो यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के पक्ष में हैं, क्योंकि युद्ध का हर दिन मानवता को पीछे धकेल रहा है।
3: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। पिछली बार भी जब हम मिले थे तब आपने विस्तार से सभी विषयों के बारे में मुझे अवगत किया था। जैसा कि आप जानते हैं, भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देती है, उमंग से भर देती है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर, उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: आपको बता दें कि पीएम मोदी ने यह भी बताया कि किस तरह से भारत और रूस का सहयोग नई ऊंचाइयां छू रहा है।
3: पिछले वर्ष आपकी भारत यात्रा बहुत ही सफल रही और बहुत ही यादगार रही। हमने कई घंटे साथ बिताए और विशेष रूप से बिजनेस फोरम और एक प्रकार से बिजनेस वर्ल्ड का रशिया का हुज हु कहे उन सब को लेकर के आप आए और आर्थिक संबंधों को एक नई ऊंचाई और ज्यादा विस्तार देने का काम भी हमारी चर्चा में हुआ। और मुझे खुशी है कि जो आउटकम निकले हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारी दोनों टीमें पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही हैं और बड़ी गति के साथ काम कर रही हैं। ये हमारे लिए गहरे संतोष का विषय है कि हमारा सहयोग निरंतर नई ऊंचाइयों को और बढ़ रहा है और दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब दुनिया का जियोपॉलिटिकल नक्शा पूरी तरह बदल रहा है। अमेरिका ईरान युद्ध को 6 महीने हो चुके हैं, रूस यूक्रेन युद्ध को 4.5 साल हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक तरफा विदेश नीति ने वैश्विक नियम आधारित व्यवस्था को चुनौती दी है और SCO अपनी 26वीं वर्षगांठ मना रहा है। ऐसे में भारत, रूस और चीन जैसी ताकतें एक मंच पर इकट्ठा हो रही हैं। इसे पश्चिमी प्रभाव के जवाब में एक काउंटर बैलेंस के तौर पर देखा जा रहा है। बिश्केक के बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन 12 से 13 सितंबर को नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी मिलेंगे। पीएम मोदी ने इसका न्योता दे दिया है।
3: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका और आपके डेलीगेशन का स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक है। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
1: SCO का 26वां शिखर सम्मेलन किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हो रहा है जो 1 सितंबर तक चलेगा। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत कई नेता शामिल हो रहे हैं, लेकिन मोदी, पुतिन और जिनपिंग की तिकड़ी ने यकीनन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ा दी है। इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट से ट्रंप की नींद और भी उड़ना लाजमी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि फ्रांस, न्यूजीलैंड, सेशेल्स, मलेशिया, स्लोवाकिया और इटली पिछले 1 साल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत तेजी से दुनिया भर की यात्राएं की हैं। उन्होंने नए पार्टनर बनाए हैं या मौजूद पार्टनरों के साथ रिश्ते मजबूत किए हैं। उन्हें एक कड़वी सच्चाई ने तेजी से कदम उठाने पर मजबूर किया है। अखबार ने आगे ट्रंप की आलोचना करते हुए लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप की वजह से दुनिया में मची उथल पुथल का सामना करने और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का भारत के पास एकमात्र तरीका है कि वो अलग अलग जगह पर अपने रिश्ते बढ़ाए। रिपोर्ट में पीएम मोदी की उज्बेकिस्तान की यात्रा का जिक्र भी शामिल है। अखबार ने SCO समिट के बारे में लिखा है और राष्ट्रपति पुतिन के साथ मोदी की मुलाकात की चर्चा भी की है और ये भी लिखा है कि कैसे पीएम मोदी ट्रंप के मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, एक एक करके डील कर रहे हैं और इसे एक रणनीति करार दिया है। SCO की सबसे दिलचस्प तस्वीर शायद यही है। एक तरफ मोदी और शी जिनपिंग एक ही बहुपक्षीय मंच पर हैं, दूसरी तरफ भारत और चीन के बीच सीमा विवाद और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसे में SCO भारत को चीन के साथ बातचीत का एक अतिरिक्त मंच देता है। दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधरे या बिगड़े, बहुपक्षीय मंचों पर संवाद की गुंजाइश बनी रहती है। भारत लंबे समय से मिडल ईस्ट के देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। मध्य एशिया तेल, गैस, यूरेनियम और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों का बड़ा भंडार है। भारत मध्य एशिया के देशों के साथ व्यापार भी बढ़ाना चाहता है। इसके लिए वो नए व्यापार और परिवहन मार्ग विकसित करने पर काम कर रहा है।

0: देखते हुए एससीयू की टेबल और भी दिलचस्प हो जाती है। भारत लंबे समय से आतंकवाद के मुद्दे को एससीयू जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा है। पीएम मोदी ने भी इस यात्रा के संदर्भ में आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद को क्षेत्रीय शांति के लिए चुनौती बताया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी एससीयू का पूर्ण सदस्य है, इसीलिए यह भारत को पाकिस्तान के साथ किसी द्विपक्षीय मंच की तरह बातचीत करने के बजाय एक बड़े बहुपक्षीय ढांचे में अपनी सुरक्षा चिंताओं को रखने का मौका मिलता है। आज तक ब्यूरो।
1: यूपी में सभी दलों ने 27 के चुनाव के लिए कमर कसी हुई है और लखनऊ में सोमवार का दिन बैठकों का दिन रहा। यूपी की तीन बड़ी पार्टियों ने लखनऊ में तीन बड़ी बड़ी बैठकें की हैं। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तीनों ने चुनावी तैयारियों पर मंथन किया।
2: उत्तर प्रदेश में चुनावी दस्तक होने ही वाली है, उससे पहले हर दल पूरी तैयारी में जुटा है। बीजेपी की नई टीम ने सभी जिला अध्यक्षों, मोर्चा अध्यक्षों से लेकर सीएम, डिप्टी सीएम के साथ तैयारी की बैठकें की हैं, तो समाजवादी पार्टी ने भी प्रदेश भर से जिला अध्यक्षों, महानगर अध्यक्षों को टेक टीम के साथ बुलाया था और बीएसपी ने भी अपने सभी जिला प्रमुखों के साथ बैठक की। बीजेपी ने अपनी बैठक में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर सेवा संकल्प अभियान चलाने का प्लान बनाया है।
3: हर जिले से 5-5 पदाधिकारी, विधायक, सांसदों को आज बुलाया गया है। एक खाका तैयार किया जाएगा यूपी चुनाव के मद्देनजर कि किस तरीके से आखिर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को जवाब देने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी भी आज ही लखनऊ में बड़ी बैठकें कर रही है। देखना यह है कि इन बैठकों के दौर में कौन बाजी मारेगा, लेकिन एक बात तो साफ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे चुनाव में चेहरे के तौर पर नजर आ रहे हैं और स्मृति ईरानी का ध्यान भी अब उत्तर प्रदेश में केंद्रित हो चुका है।
2: बैठक के बाद सीएम योगी बहराइच के कार्यक्रम में पहुंचे और यहां उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधा।
4: किसी बेटी को, किसी व्यापारी को, किसी माफिया और किसी अपराधी से भयभीत होने की आवश्यकता भी अब यूपी में नहीं पड़ती है। यही है डबल इंजन सरकार की कार्य।
2: इधर समाजवादी पार्टी की बैठक में अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार अभियान का शंखनाद कर दिया।
5: कल से हमारी पार्टी का प्रचार एक तरह से शुरू।
2: अखिलेश यादव के लिए घोटाले, भ्रष्टाचार, पीडीए अत्याचार, बंद स्कूल, फर्जी मुठभेड़, किसान संकट, अपराध और एसएआर, ये मुद्दे हैं।
5: एसआईआर के बाद भारतीय जनता पार्टी की चुनाव आयोग के माध्यम से साजिश होगी और एक षड्यंत्र होगा कि दोबारा एसएआर कराया जाए।
2: तो फिर सवाल है कि एसएआर क्या है? एसएआर बोले तो स्पेशल एनुअल रिविजन, ये चुनाव आयोग अनिवार्य रूप से हर साल करता है। इसे स्पेशल समरी रिवीजन कहा जाता है, जो सालाना आमतौर पर अक्टूबर नवंबर में शुरू होता है। इसमें 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 साल के उम्र के हो चुके नौजवानों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाता है। अखिलेश इस संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
5: चुनाव से पहले एक एनुअल रिवीजन करेंगे ये लोग एसएआर, जिससे कि ये अपने लोगों के वोटों को एडजस्ट करेंगे। सुनने में आ रहा है कि बड़े पैमाने पर बिहार से लोग, झारखंड से लोग, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उनके ये लोग वोट बनाएंगे और अपने बूथों पर वोट बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए हमारे संगठन, हमारे जो बूथ स्तर पर ऐप के माध्यम से काम करें, उन सब का हमने सहयोग मांगा है।
2: अखिलेश एसआईआर के बाद एसएआर को नियम के विपरीत बताते हैं और इसे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने की मंशा से किए जाने वाला अभ्यास बता रहे हैं। इस तथ्य का जिक्र जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में सामने आया तो अदालत ने फिलहाल चल रहे सिर्फ 19 ट्रिब्यूनल्स की संख्या बढ़ाने और वाजिब नामों को लिस्ट में जोड़ते जाने को कहा था। आज तक ब्यूरो।
1: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कनाडा में हैं, मगर उनके यूएस में दिए गए बयान पर सियासत तेज हो चुकी है। ओवैसी ने भागवत के बयान पर सवाल उठाए हैं। उधर कनाडा में ऐतिहासिक मंच से संघ प्रमुख ने दुनिया को लेकर भारत की सोच को पूरी तरह से साफ कर दिया है।
6: इफ एनी हिंदू थिंक्स दैट देयर शुड बी नो मुस्लिम इन भारत, ही विल नॉट रिमेन हिंदू। If you want to call yourself Hindu, you must believe that all paths are leading to the same. And every human has a dignity. There is no difference between human beings.

0: मोहन भागवत के इसी बयान पर हिंदुस्तान में हंगामा बरपा है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि आरएसएस की कथनी और करनी में अंतर है। असदुद्दीन ओवैसी ने आज सोशल मीडिया पर लिखा कि आरएसएस की सबसे पुरानी चाल है, कुछ बातें बाहरी दुनिया के लिए होती हैं, जबकि कुछ उसके अपने सदस्यों के लिए। आरएसएस ने कभी भी अपने मुख्य विचारकों और लेखकों की सोच से खुद को अलग नहीं किया है। वे मुसलमानों और दूसरे अल्पसंख्यकों के बारे में क्या कहते हैं? इस बयान पर यहाँ भले ही सियासत हो रही है, मगर इसके बाद मोहन भागवत अपनी विदेश यात्रा के दूसरे पड़ाव पर कनाडा के टोरंटो पहुँचे। संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है और इस मौके पर मोहन भागवत कई देशों के दौरे पर हैं। टोरंटो के भव्य कार्यक्रम में संघ प्रमुख ने दुनिया को लेकर भारत के नजरिए और संस्कृति की पहचान को सामने रखा।
1: Whenever there was crisis anywhere in the world and help from Bharat was sought, Bharat never said no. And without even calling for help, it helps. This is the tradition. This is the DNA of Bharat. Therefore, you heard the song. Hindu jage to Vishwa jagega. You heard the first stanza. Hindu sada se Vishwa bandhu hai. Hindu is always like that.
0: भागवत ने साफ किया कि भारत का उदय दुनिया पर सैन्य या आर्थिक ताकत का ध्वंस जमाने के लिए नहीं है। भारत एक महाशक्ति के रूप में दूसरों पर प्रभुत्व नहीं जताना चाहता, बल्कि निस्वार्थ सेवा, ज्ञान और मानवीय मूल्यों के आधार पर विश्वगुरु बनना चाहता है।
1: विश्व का हर देश जब भी दिग्भ्रमित हो लड़खड़ाया, सत्य की पहचान करने इस धरा के पास आया।
0: इस आयोजन की कूटनीतिक अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि कनाडा के कुछ विपक्षी सांसदों और चुनिंदा संगठनों ने मोहन भागवत के वीजा और कार्यक्रम को रोकने का भारी राजनीतिक दबाव बनाया था, लेकिन कनाडा के 100 से अधिक बड़े हिंदू और सामाजिक संगठनों के पुरजोर समर्थन के बाद ये ऐतिहासिक आयोजन बिना किसी बाधा के पूरा हुआ। आज तक ब्यूरो।
2: शुद्धिकरण विवाद पर उत्तराखंड की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। राहुल गांधी पर एफआईआर के बाद इस विवाद ने पूरा तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस ने बाकायदा पुलिस से मिलकर एफआईआर का विरोध किया तो बीजेपी ने भी राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया।
3: ये SC ST एक्ट के खिलाफ ये काम है। लेट मी रिपीट हियर, इट इज अ क्राइम टू डू शुद्धिकरण। नो एक्शन हैज बीन टेकन। हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी जिन लोगों ने शुद्धिकरण किया है उत्तराखंड में, उन पर FIR लागू हो। ये जो इंसिडेंट है, ये हमें दिखाता है बीजेपी और RSS का माइंडसेट। वो नहीं चाहते कि इस देश के दलित प्रगति करें, वो नहीं चाहते कि इस देश के दलित रिस्पेक्ट के साथ जिए और सक्सेसफुल।
0: यही वो बयान है जिसके आधार पर उत्तराखंड की पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज की है। 8 अगस्त को मल्लिकार्जुन खड़गे की हल्द्वानी रैली के बाद 11 अगस्त को वहां के रामलीला ग्राउंड पर पूजा और हवन किया गया। 29 अगस्त को जब राहुल गांधी ने इस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो दलित समाज से आने वाले अमित कुमार की शिकायत पर हल्द्वानी में राहुल गांधी के खिलाफ SC ST उत्पीड़न एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई। लेकिन अब ये FIR उत्तराखंड समेत पूरे देश में दलितों के नाम पर नए सियासी संग्राम को जन्म दे रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं की कथित शुद्धिकरण पर FIR दर्ज करने को लेकर पुलिस से बहस हुई।
4: सुनिए जी, ये SC ST का मामला है, ये CO स्तर का अधिकारी इसमें जांच करता, लेकिन जांच करने के बाद जो है क्या सही है तो उसके बाद है, लेकिन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लेने के लिए आप तैयार नहीं।
0: इधर दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा के मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई।
5: हमारे समाज में कुछ लोग दलित हैं, लेकिन समाज में बंटवारा कौन कर रहा है? ये भाजपा और RSS की विचारधारा है जो बंटवारा कर रही है, और यही इनका मकसद था जो इन्होंने अपने कुछ लोगों को भेजकर वहां पर सो कॉल्ड शुद्धिकरण करके, मतलब क्या था इनका? अगर राजनीतिक मतलब नहीं था तो क्या था, ये बता दें।
0: खड़गे के बहाने दलितों के अपमान को मुद्दा बना रही कांग्रेस पर पलटवार बीजेपी ने भी किया।
6: यहाँ पर रामलीला का मंचन होता है, बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, ऐसे आयोजनों पर जो गंदगी हुई थी, जो धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए थे, और एक धर्म विशेष के लोगों ने लगाए थे, उसके विरोध में लोगों ने जो धार्मिक संगठन थे उन्होंने उस वहाँ पर शुद्धिकरण का जो कार्यक्रम किया था वो कार्यक्रम था। और इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है।
3: कांग्रेस प्रेसिडेंट
0: राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज FIR में भी खड़गे की रैली के बाद रामलीला मैदान में न सिर्फ शराब की बोतलें बल्कि धार्मिक नारेबाजी की शिकायत दर्ज है। अब कांग्रेस उत्तराखंड पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगा रही है।
7: हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। RSS और BJP पार्टी थी, उन लोगों ने कुकृत्य किया था, लेकिन पुलिस ने उसमें आग में घी डालने का काम किया है। पुलिस कौन होती है? अगर कॉग्निजेंस लेना था आपने तो आप 10 तारीख के प्रकरण का कॉग्निजेंस लेते और मुकदमा कायम करते, लेकिन आपने मुकदमा कायम कर दिया राहुल गांधी के खिलाफ।
0: हल्द्वानी का मामला ऐसे समय में गंभीर राजनीतिक मोड़ ले रहा है जब राहुल चाय की दुकानों पर भी दलितों से भेदभाव जैसे आरोप लगा रहे हैं। आज तक ब्यूरो
3: देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए।
2: अब बात यूपी में हुए मर्डर को लेकर चल रही राजनीति के बारे में करेंगे। अंकित बालियान की हत्या के हफ्ते भर के अंदर दो आरोपी ढेर कर दिए गए, लेकिन अंकित बालियान मर्डर केस को लेकर अपराध से ज्यादा सियासत की चर्चाएं हुई हैं। दरअसल इस हत्याकांड की बुनियाद में ही जात गोत्र की बड़ी वजह थी। हत्या के बाद अखिलेश यादव ने उसी जाति गोत्र की बात की तो राजनीति गर्मा गई।
8: छब्बीस अगस्त को शामली में हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बालियान की हत्या होती है। चार दिन तक जब कोई एक्शन नहीं होता तो बालियान की पत्नी CM योगी से हथियारों को मिट्टी में मिला देने की अपील करती हैं और एक दिन बाद हत्या के दो आरोपियों का हिसाब किताब पूरा हो जाता है। केरला में पुलिस और STF के आरोपियों से मुठभेड़ होती है। हत्या के दो आरोपियों को पुलिस की टीम घेर लेती है। एनकाउंटर में दोनों आरोपियों को मार गिराया जाता है।
9: दो शूटर्स मारे गए हैं, सुमित और मोहित, और इनके पास से भारी मात्रा में आग्नेयास्त्र बरामद हुए हैं। इन्होंने पुलिस पर भारी फायरिंग भी की है जिससे दो कांस्टेबल्स भी हमारे घायल हुए हैं। अभी इस घटना में और भी लोग शामिल हैं जिनके बारे में तफ्तीश जारी है, और खास करके जो शूटर्स हैं और जो इस गैंग के लीडर्स हैं जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को प्लान किया है या अंजाम दिलाया है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।
8: लेकिन इस एनकाउंटर पर सियासत सुलग उठी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस PDA के लोगों का एनकाउंटर कर रही है। उन्होंने STF की भी नई परिभाषा दी।
10: मुख्यमंत्री जी की STF स्वजाति टॉर्चर फोर्स, स्वजाति टॉर्चर फोर्स, और लगातार PDA का उत्पीड़न हो रहा है।
8: अकेले अखिलेश यादव ही नहीं, समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव भी इस एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं।
11: कोई लॉ एंड ऑर्डर है उत्तर प्रदेश में? सिवाय हत्याएं या गोली मार के एनकाउंटर कराना फर्जी, इसके अलावा कुछ भी नहीं।
8: हालांकि राम गोपाल यादव के बयान को अंकित बालियान के पिता ने ही खारिज कर दिया।
12: कहा है उन्होंने कि ये फर्जी, इसके पीछे आप क्या समझते हैं
13: भाई? वे तो राजनीतिक पार्टी है, वे तो पता नहीं क्या कहेगी क्या नहीं, लेकिन जब मैं खुद देख आया उनको दोनों को जिन्होंने पीछे से गोली मारी थी, तो मैं फर्जी कैसे कहूंगा।
8: अब यूपी की सरकार कह रही है कि आरोपियों को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
14: बहुत ही दुखद घटना थी और प्रदेश पुलिस ने उन्हें पुलिस मुठभेड़ में मारा है। अंकित बलियान जी की जो निर्मम हत्या हुई थी, प्रदेश दुखी था। उन हत्यारों ने पुलिस पर भी गोलियां चलाई जिसकी किए की सजा उन्हें मिल चुकी है।
8: दो आरोपी पुलिस के एनकाउंटर में मारे गए और बाकी के आरोपियों को पुलिस तलाश रही है। इन सब के बीच अंकित की बहन मांग कर रही है कि बाकी आरोपियों का भी एनकाउंटर होना चाहिए।
15: हमें तब तक संतुष्टि नहीं मिलेगी तब तक मेरे भाई के हत्यारे संपूर्ण खत्म नहीं हो जाते, आपकी जड़ तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हम संतुष्ट नहीं होगी, नहीं हम शांति से बैठेंगे।
8: एक तरफ परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है और दूसरी तरफ एनकाउंटर पर जबरदस्त सियासत हो रही है। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
2: एक बार फिर दिल्ली NCR में निर्भया जैसी दरिंदगी की गई है। इस बार ग्रेटर नोएडा में बस में चढ़ी एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप किया गया है। हैरानी की बात यह है कि ग्रेटर नोएडा के परीचौक से कश्मीरी गेट तक बस चली और इस दौरान लड़की के साथ दरिंदगी हुई, लेकिन दोनों ही राज्यों की पुलिस को कानो कान खबर नहीं लगी।

0: दो राज्यों की पुलिस सचेत रहती तो एक और निर्भया कांड नहीं होता। ग्रेटर नोएडा के सबसे व्यस्त चौराहे परी चौक से बस में सवार एक बच्ची दरिंदों का शिकार हो गई। करीब 47 किलोमीटर तक बस दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर दौड़ती रही और ड्राइवर और कंडक्टर नाबालिग से वहशत को अंजाम देते रहे। वारदात 4 अगस्त की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक छात्रा अपने परिवार वालों से नाराज होकर घर से निकली थी और चचेरे भाई के घर जा रही थी जो नोएडा में रहता है। भारी बारिश और अंधेरे की वजह से छात्रा गलती से परी चौक पर उतर गई। इसी दौरान एक खाली स्लीपर बस वहां से गुजरी। छात्रा को नोएडा सेक्टर 62 छोड़ने का भरोसा दिया और फिर ड्राइवर और कंडक्टर ने छात्रा से गैंगरेप किया। वारदात के बाद आरोपी छात्रा को कश्मीरी गेट बस अड्डे के पास रिंग रोड पर उतारकर वहां से फरार हो गए। फिर छात्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपियों की धरपकड़ की कोशिश शुरू हुई।
1: दिल्ली में एक बार फिर से एक ऐसा मामला सामने आया है जो फिर से पूरी दिल्ली एनसीआर को शमसार कर देगा। दरअसल ये मामला चलती बस में एक गैंग रेप का है। 16 वर्षीय मैनपुरी की रहने वाली 11वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की घर से लड़कर घर से बाहर निकलती है, बस पकड़ के अपने भाई के घर मैनपुरी से नोएडा आना चाहती है, लेकिन उस रात बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से उसे पता नहीं लगा और परी चौक के पास वो बस से उतर जाती है, जिसके बाद वो हाथ देकर एक स्लीपर बस को रोकती है। बस रुकती है और उसे कहती है कि वो सेक्टर 63 तक उसे छोड़ देंगे। बस पे चढ़ने के कुछ देर बाद ही जो बस का कंडक्टर है उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, उसके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट करने लगता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने कुछ किया तो उसे जान से मार देंगे। इसके बाद करीब 47 किलोमीटर तक जो वो बस है दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर चलती है। नोएडा में इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद लड़की को कश्मीरी गेट के पास लाकर उतार दिया जाता है और फिर वो लड़की पीड़िता खुद पुलिस के पास पहुंचती है। और यहां आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन है। इसी पुलिस स्टेशन में आकर वो कंप्लेन देती है।
0: दिल्ली पुलिस ने गैंगरेप की वारदात के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। स्लीपर बस को जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है।
2: नए आपराधिक कानूनों के अनुसार बिना ज्यूरिसडिक्शनल इश्यूज में गए हुए थाना कश्मीरी गेट ने तुरंत विक्टिम का मेडिकल कराया और केस दर्ज किया। साथ ही सीसीटीवी कैमरेज की सहायता से कुछ ही घंटे में बस को भी ट्रेस किया और दोनों अपराधियों को भी अरेस्ट किया।
0: सवाल ज्यूरिसडिक्शन का नहीं है, सवाल यह है कि ग्रेटर नोएडा से दिल्ली तक बस चलती रही और गैंगरेप होता रहा और दोनों राज्यों की पुलिस को कानो कान खबर नहीं हुई। सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस की उन साझा बैठकों से क्या हासिल हुआ जो मिलजुल कर अपराध रोकने के लिए होती हैं। दिल्ली से अरविंद ओझा और अंशुल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
3: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

बिश्केक में गर्मजोशी के साथ पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई। बातचीत में यूक्रेन का मुद्दा भी उठा। प्रधानमंत्री ने कहा, युद्ध मानवता के लिए खतरा, भारत शांति का पक्षधर। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी 7.8% रही। प्रधानमंत्री मोदी बोले, निराशावादी लोगों की हुई हार। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी विरोध प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट में पहुंची दिल्ली पुलिस। 13 एफआईआर रद्द करने की इजाजत मांगी। आपराधिक पृष्ठभूमि के 2873 लोगों पर दर्ज हो केस।